0: उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
2: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's global hits to start listening now.
1: सच्ची खबर।
3: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है? कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है? धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई, नवी मुंबई में स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी घोषित। सड़क, रेल और हवाई सेवा हुई प्रभावित। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। पर्यावरण के मोर्चे पर दिल्ली सरकार की बड़ी पहल। 70 लाख पेड़ लगाने के लक्ष्य के साथ आज शुरू होगा वृक्षारोपण अभियान। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। देवभूमि उत्तराखंड में बारिश के बीच धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। आज भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे नॉटिंगम में शुरू होगा मैच। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज।

0: सुग्रीव को राम जी से किसने मिलवाया, विभीषण को राम जी से किसने मिलवाया, बिछड़ी हुई माता जानकी जी को राम जी से किसने मिलवाया, बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी, हनुमान जी ने, इन सबको हनुमान जी ने ही मिलवाया। हम इतना ही कह सकते, यदि आप भी राम जी से बिछड़ गए हो तो आपको भी हनुमान जी मिलवाए। हाँ, ये पक्का है, ये पक्का है। और हनुमान जी जिसकी गारंटी ले ले, राम जी को उसका डाटा चेक नहीं करते। हाँ, जिसकी गारंटी हनुमान जी दे दें तो ये आदमी ठीक है, पर क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता। हाँ, ये पक्का है। विभीषण की गारंटी हनुमान जी ने ली, वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वरना वेरिफिकेशन होता तो पता ये चलता कि जो शत्रु है उसका भाई है। बोले जो दुश्मन है उसका भाई है, और दुश्मन का भाई दुश्मन के ही समान, इस पे भरोसा करने लायक नहीं। पर हनुमान जी बोले नहीं नहीं, हमारी गारंटी। राम जी बोले हनुमान जी की गारंटी है, बस छोड़ो छोड़ो। और हमें लगता कि हनुमान जी ने सुग्रीव की गारंटी ली, पर बुरा ना मानना, सुग्रीव से बेहतर वाली था। आप ये सुन के बड़ा चौंकेंगे, सुग्रीव से बेहतर बाली था। और ये बात बहुत अप्रमाणित तो नहीं, बहुत प्रमाणित हम आपको कह पा रहे। सुग्रीव से जब राम जी मिले तो सुग्रीव क्या कहता, सुग्रीव कहता कि मंत्रिन सहित सहित एक बारा, एक बार हम मंत्रियों के सहित यहां बैठे थे, कोई नारी होती हुई चली जा रही थी, ऊपर से उसने कुछ आभूषण नीचे फेंके हैं, यदि आप कहो तो मैं दिखाऊं। भगवान बोले हाँ दिखाओ। अब वो आभूषण माता जानकी जी के, तो राम जी बोले तुमने किया क्या? बोले हमने कुछ किया तो नहीं, हम तो विचार कर रहे थे कि ये स्त्री को ले जा रहा है। तो लक्ष्मण जी बोले तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? बोले हम क्यों बोले, उनका उनका मामला, क्या मसला, काहे को लफड़े में फंसे।
1: ऐसे बहुत लोग होते हैं, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग कहते हैं।
0: ये ना नंबर एक के स्वार्थी है। आजकल लोगों के अंदर यही सबसे बड़ी दिक्कत हो गई, क्यों लफड़ों में फंसे। अरे भाई, मानवता भी तो कुछ होती है। आजकल आदमी कोई किसी का साथ नहीं देता। हम बैठे थे, भोजन पा रहे थे, तो हमारी माँ, मनीला वाली माँ, फिलीपींस वाली माँ, कह रही थी रोमा माँ कि आजकल उसको कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ, हम प्रैक्टिकल, क्यों लफड़ों में फंसे।
1: अरे धत तेरे की ठटरी बराए ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ।
0: तुम सत्य को सत्य ना बोल पाओ तो तुमसे बेहतर तो रामचरितमानस का जटायु है। सुग्रीव से बेहतर जटायु था कि रावण ले जा रहा था, तब उसने रोती है खबरदार रावण, खबरदार, किसी अबला स्त्री को, अकेली स्त्री को ले जा रहा, सावधान, मैं जटायु जरूर हूं पर ले जाने नहीं दूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। जब तक सच में जटायु जमीन पर नहीं गिर गया तब तक लड़ता रहा रावण से, तो जटायु बेहतर है सुग्रीव से। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि आप कई बार बहुत कड़वी बातें बोल जाते हैं, यदि ना बोलेंगे तो शास्त्र हमको जीने नहीं देगा। साधु का धर्म है न्याय संगत बात करना, सत्य को सत्य बोलना, ये साधु का धर्म है। और उनसे तो बेहतर है जो नहीं बोलते। और ऐसे लोग जरूर कान खोल करके बात को सुने कि हम क्यों लफड़ों में पड़े, हम क्यों बोले। कई बार कुछ हो जाता, घटना हो जाती, भैया हमने नहीं देखा, उसने पूरा देखा, हमने कौन कोर्ट में जाए, कौन गवाही दे, उसकी दो गवाही दे देने से जिसने कांड किया है कम से कम उसको सजा तो मिल जाएगी, अपराधी को सजा तो मिलेगी। पर आज ये सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कोई किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, इसलिए तो अपराध बढ़ गए। देखते जा रहे हैं अपराध होते जा रहे हैं, आदमी चुप है। बुरा ना मानना, ये धर्म नहीं है, नैतिकता नहीं है, मानवता नहीं है। मानवता ये है यदि तुम्हारे कहने से सत्य उजागर हो सकता है तो कह देना चाहिए। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया सुग्रीव के ऊपर, तो बाली से बेहतर, अब सुग्रीव से बेहतर बाली, लेकिन सुग्रीव को राम जी मिले, बाली को ना, बाली को तो मारा। कारण सिर्फ एक था, हनुमान जी, हनुमान जी कारण थे, क्योंकि सुग्रीव का पक्ष लिया। तो सुग्रीव ने तो कुछ नहीं कहा, माता जानकी जी जब जा रही थी कुछ नहीं कहा, सुग्रीव तो बोले ही नहीं।

और बाली यदि हमसे, हमने आपको प्रारंभ में कहा कि हम बाली बेहतर मानते, आप कहेंगे कि आप बड़ी अजीब कथा सुना रहे हैं। नहीं, बाली बेहतर। बाली ये हमने जो संतों से सुना वो बात कह रहे, हम कोई अपनी मन की बात नहीं कह रहे, संतों से जो हमने सुना, महापुरुषों से जो सुना उसकी बात कह रहे। बाली ने भी भगवान से कहा।

बाली को मारा, राम जी का बाण बाली के हृदय में लगा, छाती में, सीने में, तो गिर पड़ा। तो भगवान पहुंच गए। जैसे ही भगवान सामने गए तो बाली कहता, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं आपका बैरी कैसे हो गया और सुग्रीव कैसे प्रिय हो गया? आप तो समदर्शी, सबको समान देखते हो, पर मैं आपका दुश्मन कैसे हुआ? तो भगवान ने बहुत दलीलें दी, तर्क दिए, पर बाली पहली बार भगवान के तर्क खारिज किए, बाली और इतने खतरनाक किए कि राम जी भी लगा कि जितना मुश्किल है। हाँ, भगवान ने जो तर्क दिए जरा वो सुनना। भगवान ने तर्क क्या दिया? भगवान ने कहा, पहली बात तो ये है, अनुज बधू भगनी सुतना

चार बेटी के समान स्त्रियां होती हैं। बाली बोला कौन कौन? राम जी बोले सुनो, अनुज बधु छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधु भगनी यानी बहन, सुत नारी यानी बेटा की पत्नी, और बेटी, ये चार बेटियों के समान होती हैं। इनके ऊपर कुदृष्टि डालने वाला बेटी के ऊपर कुदृष्टि डालने जैसा पाप पाता है। और तुमने अपने भाई की पत्नी का को अपने पास रख लिया, रोमा को, अपनी भाई की पत्नी को अपने पास रख लिया, ये तुमने अपराध किया कि नहीं किया? ऐसी राम जी कह ही रहे थे कि वो धीरे से बोला, बाली बेट रुको रुको रुको रुको, पहली बात तो अनुज बधु जो है, हमने अपनी भाई की पत्नी को रखा, हमने कैसे रखा ये हमें पता। दूसरी बात, ये जो कायदे हैं ना, आपके में चलते हैं, हमारे में नहीं चलते। राम जी बोले मतलब? मुस्कुरा करके बाली कहता है लेटा लेटा कि आप नर हो हम मानव, और हर समाज का नियम अलग अलग होता है, और महाभारत में भी ये नियम था, पांच पांडवों की एक पत्नी थी, पांच पति हो सकते, और राजाओं का ऐसा नियम था कि राज सत्ता में अनेक पत्नियां बहु पत्नियां हो सकती, दशरथ जी के ही तीन रानियां थी, तो समाज की बात है अपने अपने। अच्छा, उस नियम में फिर कानून भी कुछ नहीं बोलता, अपने अपने समाज का नियम होता है। तो राम जी से बोले सुनो, अपने अपने समाज की बात है, ये हमारे समाज में ऐसा चलता है। राम जी बोले ठीक है, मान लिया, मैं पहली बार लगा के हमारी दलील विफल हो गई। तो राम जी ने दूसरी दलील दी, मूढ़ तो ही ए मूर्ख। बाली बोला हां बोलो।

अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, ये भी गलती की। बाली से भगवान दूसरी बात करें, दूसरी गलती की, क्या? अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। तो बाली बोला, हमारी पत्नी ने क्या बोला? बोले वाह, जब तुमको सुग्रीव ललकार रहा था तो तुम्हारी पत्नी कह रही थी ना तारा, नाथ बाहर मत जाओ, ये सुग्रीव नहीं ललकार रहा, अंगद अभी बता रहा था कि कोई बनवासी से इसकी दोस्ती हो गई है, कोई राम है उनसे दोस्ती हो गई है, तो ये अपने बल पे नहीं ललकार रहा, राम के बल पर ललकार रहा, मत जाओ। बाली बोला, पहले एक बात बताओ, ये हमारी पति पत्नी की बातें आपने सुनी कैसे? राम जी बोले, तुम्हें पता है हम कौन है? बाली बोले, बताओ कौन है? बोले, हम अखंड ब्रह्मांड नायक है, कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बाणी भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्राम बिनु वास असेखा, अस सब भात अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं मरनी। है रामचरितमानस, इसमें निराकार ब्रह्म के बारे में कहा कि बिन पद चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के चलता बिना कानों के सुनता, तो हम वहां थे और हमने सुन लिया। बाली बोला, थैंक यू। भगवान बोले, मतलब? बोले, कम से कम आपने एक्सेप्ट तो किया कि आप भगवान हो, अब हमको संतुष्टि हो गई कि भला आपका। बाली बोला, प्रभु आपने चलो सुन मान लिया हमने, तो आपने ये नहीं सुना कि हमने कुछ कहा था? भगवान बोले, क्या कहा था? बोले बा, आपने सुना तो आपने वो नहीं सुना। बोले क्या? कहे बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी भगवान, जब हमारी पत्नी ने कहा कि मत जाओ बाहर, वो बनवासी राम जी हैं भगवान, वो सुग्रीव की तरफ से लड़ने के लिए आए हो, तुम मारे जाओगे, तो आप कह रहे कि पत्नी की बात क्यों नहीं मानी, तो हमने ये भी तो पत्नी को कहा था कि यदि भगवान राम आए हैं तो वो समदर्शी हैं, समानता से देखेंगे, न उनको बाली प्रिय होगा न सुग्रीव प्रिय होगा, दोनों समान। इसलिए कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, इसलिए तो हम बाहर आए कि आप समदर्शी होगे, लेकिन बाहर आके पता लगा आपने बाण मार दिया, आप समदर्शी नहीं। भगवान, अब भगवान को लगा ये भी दलील खारिज, ये भी दलील गई, तो भगवान बोले, रुको, हमारे ऊपर बहुत आरोप लगा लिए, अब हमारी भी सुनो। क्या? भगवान बोले कि तुमने जो दूसरी प्रार्थना की थी हमने वो सुनी। बाली बोला, हमने दूसरी प्रार्थना कौन सी की? बोले वाह, आपने अपनी पत्नी को एक बात बोली थी ना। बोले क्या? जो कदापि मोहि मारिहि, यदि वो हमको मार भी दे, जो कदापि मोहि मारी है तो मैं हूं सनाथ, मैं अनाथ हूं, यदि राम जी मुझे मार दें तो हे पत्नी तुम मुझे समझना, मैं सनाथ हो गया, अनाथ नहीं रहा, सनाथ हो गया। भगवान बोले, तुमने ये जो प्रार्थना की उसी प्रार्थना के लिए हमने बाण मारा। बाली बोला, गजब न्याय है आपका, पहली बाली सुनी नहीं, लास्ट बाली मान ली, वाह प्रभु वाह वाह, मतलब हमने मारने वाली बात कही कि जो कदापि मोहि मारिहि तो मैं हूं सनाथ, ये सुन लिया आपने, और ऊपर वाली सुनी नहीं कि समदर्शी रघुनाथ, ये सुनी नहीं, मारने वाली जल्दी सुन ली, वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह, अब हम समझ गए, हम समझ गए, मैं बेरी सुग्रीव प्रिय, हम समझ गए आपको, मैं बेरी हूं सुग्रीव प्रिय। भगवान बोले, वाली ऐसा है, ज्यादा दुखी हो तो मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या? हम अभी तीर बाहर निकाल के फिर से अमर होने का वरदान दे देते, लो ठीक है, अब ठीक है। बोले अब रहने दो, अब नहीं हमें जीना है। क्यों? बोले जिस मौत के लिए बड़े बड़े महात्मा तप करते हैं वो हमको ऐसे ही मिल गई ऑटोमेटिक, तो काय को बे फिजूली में अब जो है ये मौका गवाए। बात भी सही है, रामचरितमानस में ऐसा लिखा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, अंत समय राम नहीं कहे आता, जन्म जन्म अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जतन कराते पर अंत में राम कहां कही आता है। और बोले हमारे तो सामने, हम लोग जब कीर्तन गाते तो भगवान से क्या प्रार्थना करते,

0: गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले हैं। इधर नाम क्या लेना, तुम ही सामने खड़े हो। जिस नाम को लेकर प्राण निकलने की प्रार्थना स्तुति बड़े बड़े महात्मा करते हैं, तब जाकर के उनको भी ये अवसर सौभाग्य प्राप्त नहीं होता और हमको ऑटोमेटिक मिल गया है, तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक काम जरूर करो आप।
1: भगवान बोले बताओ। बोले एक नहीं दो।
0: भगवान बोले दो बताओ।
1: पहली बार हारे हैं भगवान,
0: दो बताओ। बाली कहता प्रभु पहला वरदान दो
1: कि हमें भक्ति मिले आपके।
0: बोले वाह क्या बढ़िया वरदान। अच्छा कुछ और मांगते तो भगवान और कुछ जल्दी दे देते, भक्ति थोड़ा देरी से देते। पूछो क्यों, पूछो क्यों? क्योंकि कुछ और मांगने में व्यक्ति फंसता, भक्ति देने में भगवान फंसते। ये घाटा है। तो भगवान इसलिए किसी को कुछ और मांगे, कोई कि भाई कुछ और मांगो तो वो जल्दी दे देते हैं। भाई संतति मानो, मांगो संपत्ति, मांगो बहुत बढ़िया है, मांगो मांगो बेटा मांगो। क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए, संतति चाहिए, घरवाली चाहिए, वाइफ, हाँ लो लो लो लो लो। क्या चाहिए? हस्बैंड, बहुत बढ़िया, मांगो मांगो मांगो, लो लो लो। पद चाहिए, कद चाहिए। पर कोई कह दे कि आप भक्ति चाहिए, मतलब आप चाहिए, वो थोड़ा खतरा होता है। क्योंकि अगर भक्त कोई भगवान का सेवक संपत्ति मांगता है तो उसको नाचना पड़ता, लेकिन कोई भक्ति मांगता है तो भगवान को नाचना पड़ता है, भगवान को नाचना पड़ता। और सच भी यही है। जब आप भागवत पढ़ो तो भागवत में ऐसा वर्णन आता है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाई निरंतर ध्यावे, ताही अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो भगवान को नाचना पड़ता है यदि कोई भक्ति मांगे तो। उस बाली ने पहला वरदान क्या मांगा? भक्ति दो और मुक्ति तो हमें हो ही जानी। किसी ने कान में बाली के कहा कि मुक्ति मांग। बोले अब इनके मरने से ही मुक्ति ना मिलेगी तो कहां मिलेगी। बोले वो नहीं मांगे, भक्ति दो। तो पहला वरदान भक्ति दो।
1: भगवान बोले भक्ति दी।
0: दूसरा बोले हमारी जो संतति है।
1: बोले कौन? बोले बेटा इसको अपनी सेवा में लगा।
0: ये वरदान बाली का गजब का था। पूरी दुनिया में ऐसा कोई वरदान किसी ने नहीं मांगा हो जो बाली ने मांगा। पहला तो भक्ति दो और दूसरा हमारी संतति को अपनी सेवा में लगा लो। प्रायः लोग क्या कहते हैं, हम दान पुण्य कर रहे हैं, बेटा तू बिजनेस कर, तू धंधा कर, तू इन लफड़ों में मत पड़, बाबा जी के चक्कर में मत पड़, बागेश्वर वालों के चक्कर में मत पड़,
1: हम इनसे निपट लेंगे, हम बात करते हैं, हम तो तेरे लिए कुछ करते, पूजा पाठ कराते हैं, तू धंधा कर धंधा कर।
0: लेकिन पहला बाली चतुर आदमी है जो कहता हे प्रभु हे नाथ आपने हमें सनाथ कर ही दिया है, अब हमारे बालक अंगद को अपनी सेवा में लगा लो, अपनी चरणों की सेवा में लगाओ। ये अद्भुत है। कोई अपनी संतति को भगवान की भक्ति में लगाने का वरदान मांगे, समझना वो ऊंचे खानदान का आदमी है। ये फायदे का सौदा है। तो इस दृष्टि से यदि बाली के इस वृतांत को सुना जाए तो सुग्रीव से बेहतर बाली है कि नहीं है? है। लेकिन भगवान ने साथ किसका दिया? क्यों? एक कारण है। सुग्रीव और विभीषण के जीवन में यदि राम जी का प्रभाव आया, राम जी आए, उसका एकमात्र कारण हनुमान जी है। हम आपसे कहना यह चाह रहे कि जब सुग्रीव के हनुमान जी के कारण सुग्रीव को हनुमान राम जी मिल सकते,
1: तो हनुमान जी के कारण तुमको भी राम जी प्राप्त हो सकते।

0: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pierce shared why she loves award show season.
1: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
0: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है? कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है? धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: A good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game, from all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: भीषण बारिश के चलते आज भी मुंबई में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, सड़क रेल और हवाई सेवा हुई प्रभावित, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। भारी बारिश के दौरान मुंबई पुणे हाईवे पर लोगों को बड़ी राहत, लैंडस्लाइड के कारण करीब 18 घंटे बंद रहेंगे मिसिंग लिंक की 2 लेन, यातायात के लिए खोली गई। दिल्ली में आज गृहमंत्री अमित शाह करेंगे वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन, पर्यावरण संरक्षण के लिए 70 लाख पेड़ लगाने का है लक्ष्य। देवभूमि उत्तराखंड में बारिश के बीच धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। आज भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मैच, भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे नॉटिंघम में शुरू होगा मैच।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
9: अमरनाथ यात्रा का आज 5वां दिन, बाबा अरफानी के दर्शन के लिए बालटाल और पहलगाम बेस कैंप में जुटे तीर्थयात्री। अमरनाथ यात्रा के लिए देश विदेश से पहुंच रहे तीर्थयात्री, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है यात्रा मार्ग। अमरनाथ यात्रा में पिछले साल के मुकाबले इस साल श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ी, 4 दिन में 60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तीर्थयात्रियों की बढ़ती तादाद के कारण 9 जुलाई तक अभी रजिस्ट्रेशन लॉट बुक, बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों से अपनी यात्रा कुछ दिन आगे बढ़ाने की अपील। इस साल 57 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा, अब 4 लाख श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी, रोजाना लगभग 9 से 10 हजार श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के कर रहे हैं दर्शन। मॉनसून सक्रिय होने के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था अडेग, जुलाई के पहले हफ्ते में भी भक्तों की संख्या 14.5 लाख के पार पहुंचना लोगों की अटूट आस्था का उदाहरण। मॉनसून के चलते बद्रीनाथ में उफान पर अलकनंदा नदी, राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ जगह लैंडस्लाइड से यातायात हुआ प्रभावित। मौसम की परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है प्रशासन, श्रद्धालुओं से मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील। कोलकाता में दुर्गा पूजा उत्सव की तैयारियों का शुभारंभ, पारंपरिक ढोल की गूंज के साथ हुआ खूंटी पूजा अनुष्ठान। कोलकाता की मशहूर चोर बागान दुर्गा पूजा समिति में भव्य समारोह, दुर्गा पूजा उत्सव का काउंटडाउन शुरू। दुर्गा पूजा उत्सव से जुड़े समारोह में इस साल की थीम अकाल बोधन का अनावरण किया गया, रामायण के प्रसंग से प्रेरित है ये थीम। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित विशाल कलाकृति का अनावरण भी किया गया, दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान पंडाल में भी किया जाएगा प्रदर्शन। इस बार पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव की भव्य तैयारियां, 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक मनाया जाएगा मुख्य उत्सव। जामनगर के लाठीदड़ से देवभूमि द्वारका तक निकाली गई गौ माता वेदना पदयात्रा, इस पैदल यात्रा में 21 गौ माता हुई शामिल। लगभग 19 दिनों की यात्रा के बाद 21 गायों का झुंड पहुंचा द्वारकाधीश के दरबार, जय गौ माता जय द्वारकाधीश के नारों से गूंज उठा पूरा परिसर। गौ माता की सुरक्षा और सम्मान का संदेश देने के लिए आयोजित की गई यात्रा, गायों के लिए की गई द्वारकाधीश के दर्शन की विशेष व्यवस्था। अमरावती में पांडव गुफा के नाम से मशहूर पवित्र प्राचीन गुफा आज भी श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र, मान्यता है के अनुसार महाबली भीम ने यही किया था कीचक का वध। इसी गुफा में है करीब 400 वर्ष पुराना मां दुर्गा का मंदिर, मां के दरबार और भगवान शिव के शिवलिंग का जलाभिषेक करती है पहाड़ की चट्टानों से निरंतर बहने वाली प्राकृतिक जलधारा। मंडी से चंडीगढ़ के बीच शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस रूट पर लोगों को मिलेंगी रोजाना 2 उड़ानें, 3,500 रुपए किराए के साथ मात्र 30 मिनट में सिमटी मंडी से चंडीगढ़ की दूरी। पंजाबी युवक को इंडोनेशिया के शाही परिवार ने दिया प्रिंस का खिताब, 70 से अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं कुंवर अमृतबीर सिंह। बटाला के नजदीकी गांव उमरवाल के रहने वाले कुंवर अमृतबीर सिंह, इंडोनेशिया के शाही परिवार ने औपचारिक रूप से प्रिंस की उपाधि देकर इन्हें सम्मानित किया। झांसी के दंपति ने दिखाई अनोखी भक्ति, 3 साल की बेटी के साथ शुरू की खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा। आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 नॉटिंघम में खेला जाएगा मैच। आज के मैच के समय में हुआ बदलाव, भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा मैच, 9:30 पर होगा टॉस। 5 मैचों की सीरीज में भारत जीत का खाता खोलने के लिए बेकरार, पहला मैच पारित से धुल जाने के बाद दूसरे मैच में मिली हार, फिलहाल सीरीज में मेजबान इंग्लैंड 1-0 से आगे है। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान, 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान। चार नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह की टीम में वापसी। प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, अशोक वर्मा जैसे खिलाड़ियों के पास इस सीरीज में अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका। नौसेना के P-17A क्लास के छठे जंगी जहाज महेंद्र गिरी के क्रेस्ट का अनावरण। भारत की समुद्री ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है युद्धपोत। इसके क्रेस्ट में सबसे ऊपर शिकारी बाज की एक प्रजाति कोस्टेड गोशाक को महेंद्रगिरी पर्वत पर बैठा हुआ दिखाया गया। साहस, तेजी और सटीकता का है प्रतीक। 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से है लैस। उड़ीसा स्थित महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया इस पोत का नाम। इसके निर्माण में लगभग 75% स्वदेशी सामग्री का हुआ इस्तेमाल। भारतीय वायुसेना जोधपुर में एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति की करेगी मेजबानी। अमेरिका और फ्रांस समेत 30 से ज्यादा देशों के हिस्सा लेने की उम्मीद। मुंबई में आज भी तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट। सभी स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी घोषित। मुंबई में भारी बारिश के चलते सड़क, रेल और हवाई सेवा हुई प्रभावित। लोगों को बहुत जरूरी होने पर घरों से बाहर निकलने की सलाह। आपात हालात में हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क की अपील। दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया 2 दिन का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अगले 2 दिन जमकर बरस सकते हैं बादल। गुजरात, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। भारी बारिश के दौरान मुंबई पुणे हाईवे पर लोगों को बड़ी राहत। लैंडस्लाइड के कारण करीब 18 घंटे बंद रहने के बाद मिसिंग लिंक की 2 लेन यातायात के लिए खोली गई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में लगातार 4 दिनों से मूसलाधार बारिश। नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा। उल्हास नदी में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। सूरत में भारी बारिश के कारण पानी जमा होने से स्कूल में फंसे 7 टीचर और 12 छात्र। फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। मौसम विभाग ने अभी और बारिश का अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के कारण बाढ़ से नेशनल हाईवे 244 हुआ बंद। राहत और बचाव में जुटी थी। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच मरीन ड्राइव पर समुद्र में हाई टाइड। अलर्ट पर प्रशासन और रेस्क्यू टीम। मुंबई के बसई विरार और नालासोपारा में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। कमर तक भरा पानी, बाढ़ जैसे हालात। रायगढ़ के पास पूना से मुंबई के लिए आने वाले रास्ते पर लैंडस्लाइड, लगा लंबा जाम। महाराष्ट्र में दिख रहा है मानसून का जोर। लोनावला के पास ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पर भरा पानी, सड़क जलमग्न। पुणे में दिखा बारिश का कहर, ताश के पत्तों की तरह ढहा 2 मंजिल का मकान। वीडियो हुआ वायरल। पर्यावरण के मोर्चे पर दिल्ली सरकार की बड़ी पहल। आज होगा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ। 70 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के आरकेपुरम में करेंगे वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन। एक पेड़ माह के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाएगी दिल्ली सरकार। 91 वर्ष के हुए बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ले के जविस्थाल साल में मनाया गया दलाई लामा का जन्मदिन। इस मौके पर काटा गया विशाल केक। दलाई लामा के लंबे जीवन के लिए मांगी गई दुआएं। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। परम पावन दलाई लामा ने श्रद्धालुओं का जताया आभार। फिल्म फुकरे के बाद फिर लौटेगी भोली पंजाबन और जफर की जोड़ी। नई कॉमेडी फिल्म का हुआ ऐलान। अर्जुन रामपाल ने अपने हमजा यानी रणवीर सिंह को दी जन्मदिन की बधाई। शेर रणवीर के लिए शेयर किया स्पेशल पोस्ट। 8 जुलाई को सौरभ गांगुली के बर्थडे पर रिलीज होगा उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक। राजकुमार राव निभा रहे हैं दादा का किरदार। हल्की फुल्की रोमांटिक ड्रामा फिल्म तेरा यार हूं मैं का ट्रेलर रिलीज। फिल्म में डायरेक्टर प्रोड्यूसर इंद्र कुमार के बेटे अमन इंद्र कुमार कर रहे हैं एक्टिंग डेब्यू। प्लस लॉटरी का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। कोर्टरूम ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री के साथ दिखेगा सस्पेंस का तड़का। 18 सितंबर को होगी रिलीज। और भी बताएंगे अपनी भावनाएं। कोटा के छात्र आर्यन सिंह ने बनाया स्मार्ट इमोशन पॉट। ये स्मार्ट इमोशन पॉट पौधे की स्थिति को इमोजी के माध्यम से प्रदर्शित करता है ताकि कोई व्यक्ति आसानी से समझ सके कि पौधे को इस समय किस तरह की देखभाल की जरूरत है। इस अत्याधुनिक स्मार्ट पॉट में लगाए गए हैं सॉइल मॉइस्चर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी लाइट और वाटर लेवल जैसे आधुनिक सेंसर जिसके आधार पर डिजिटल स्क्रीन पर बदलते हैं पौधे के चेहरे के भाव। ये सिर्फ एक स्मार्ट गमला नहीं बल्कि एक डिजिटल प्लांट कंपेनियन है जिसका उद्देश्य पौधे और इंसान के बीच भावनात्मक रिश्ता मजबूत करना है। अब रोज दौड़ेगी बरहमपुर सूरत अमृत भारत एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर दैनिक सेवा का शुभारंभ किया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है? कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है? धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
7: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
2: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
10: Williams keeps it. First down. Touchdown.
2: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
11: Good news today. अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

थे आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे आपकी नींद के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को बढ़िया नींद आती है, कुछ को नींद के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो दवाइयां भी खाते हैं फिर भी उन्हें नींद नहीं आती है। तो नींद के पीछे ज्योतिष के कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और नींद लाने के अच्छे उपाय क्या हैं, इस विषय पे चर्चा करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान है वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं नींद के बारे में, यानी निद्रा के बारे में। निद्रा हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको नींद आएगी या नहीं आएगी इसमें भी ग्रहों की बड़ी भूमिका है। क्या भूमिका है? नींद व्यक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यक आवश्यकता है। जीव के चार लक्षण हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो आहार के बाद सबसे महत्वपूर्ण है निद्रा, यानी नींद। बिना नींद के या कम नींद के हम कई बीमारियों और समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। ज्योतिष में लग्न, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव से नींद और शैया सुख देखा जाता है। मुख्यतः द्वादश भाव से बेड कंफर्ट देखते हैं। शनि नींद का सबसे प्रमुख ग्रह है। आपके दिमाग में जो नींद के एंजाइम्स होते हैं, हिप्नोटिक एंजाइम हैं, वो शनि पैदा करते हैं। इसके अलावा चंद्रमा, शुक्र और बुध भी नींद से संबंध रखते हैं। जो जल की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, और जो वायु की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, ये नींद की राशियां हैं। इसीलिए जो जल की राशियों के लोग हैं या जो वायु की राशियों के लोग हैं, उनको नींद सामान्य से ज्यादा आती है। नींद पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बड़ी अच्छी और गहरी नींद आती है। तो नींद कब किसको अच्छी आती है? अगर कुंडली शनि प्रधान है, शनि की सिचुएशन कुंडली में ठीक है, तो व्यक्ति को अच्छी नींद आती है। चंद्रमा, शुक्र या बुध में से एक भी अगर कुंडली के अच्छे स्थान पर बैठा है तो नींद अच्छी आएगी।
केंद्र में या अष्टम भाव में केवल शुभ ग्रह अगर हो तो भी जीवन में अच्छी नींद आती है। अगर कुंडली में जल तत्व के ग्रह मजबूत हो, जल की राशियां मजबूत हो, तो आपको जीवन में आराम मिलेगा, नींद अच्छी आएगी। कर्क, वृश्चिक, मीन यानी जल की राशियां, मिथुन, तुला और कुंभ यानी वायु की राशियां, इन राशि के लोगों को सामान्यतः अच्छी नींद आती है। जिनके घर के पास जल का स्रोत होता है, पानी होता है, या जिनके घरों के पास जंगल या पहाड़ होते हैं, ऐसे लोगों को भी सामान्यतः अच्छी नींद आ जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नींद के लिए दवाइयां खानी पड़ती हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दवाइयां तो खाते हैं लेकिन दवाई खाने के बावजूद भी नींद नहीं आती। तो नींद आने में कब समस्या होती है? अगर शनि दूषित होगा तो आप हर समय आलस्य में डूबे रहेंगे, लेकिन आपको गहरी नींद नहीं आएगी। चंद्रमा या शुक्र अगर पीड़ित होंगे तो अकारण बिना वजह के आप करवट बदलते रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। अगर बुध पीड़ित हो गया, चंद्र भी गड़बड़ है, बुध भी पीड़ित हो गया, तो तनाव की वजह से, चिंता की वजह से आपको नींद नहीं आएगी। अगर कुंडली अग्नि तत्व प्रधान हो, कुंडली में फायर की मात्रा ज्यादा हो, या पृथ्वी तत्व प्रधान कुंडली हो, तो भी नींद आने में मुश्किल होती है। मंगल की प्रचंडता जब कुंडली में होती है तो शरीर में दर्द है, घाव है, कष्ट है, तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ की वजह से नींद नहीं आती, रात भर पैरों में शरीर में दर्द होता रहता है, आदमी दर्द और कष्ट की वजह से सो नहीं पाता है। नींद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी और गहरी नींद आए तो अच्छी नींद के उपाय क्या हैं? जो आपके बेडरूम का रंग है, सोने के कमरे का रंग क्रीम, हल्का हरा या गुलाबी या सफेद रखिएगा। अपने बेडरूम में जिस पलंग पर आप सोते हैं उसका भी बहुत ध्यान रखिए। इसके अलावा कमरे में हल्की सुगंध हो तो अच्छा है। पलंग के नीचे कोई भी सामान मत रखिए, खास तौर से लोहे की वस्तु अपनी पलंग के नीचे ना रखें। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में गंदे कपड़े भी मत रखिएगा। और अगर आपको नींद आने में दिक्कत होती है तो गले में चांदी जरूर पहनिए। लाल तिलक का प्रयोग मत करिएगा, लाल रंग का तिलक लगाने से एनर्जी लेवल ताकतवर होता है, जिनको नींद में दिक्कत है उनकी दिक्कत बढ़ेगी। रात को सोते समय अपने पलंग के पाए के पास
अपने सर के नीचे की तरफ जमीन पर लोटे में जल भर करके रखिए खुला, और सुबह उठकर उस जल को पौधे में डाल दीजिए। जिस कमरे में थोड़ी बहुत सूर्य और चंद्रमा की किरणें आती हों, उसी कमरे को सोने के लिए प्रयोग करिएगा। सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। नींद लाने में, मन को रिलैक्स करने में, गहरी नींद आने में ओपल के फायदे बहुत हैं। अगर आप ओपल उंगली में या गले में लॉकेट में पहनते हैं, लगभग हफ्ते 10 दिन में आपकी नींद की साइकिल रेगुलेट होने लगेगी। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको दवाई दी है तो डॉक्टर की सलाह से ही बंद करिएगा, खुद प्रैक्टिकल मत करिएगा। और जब आप सोने जाते हैं पलंग पर लेटने के बाद भगवान के किसी भी नाम का लगातार जप करते जाइए, आंखें बंद करके गहरी सांस के साथ। अगर आप ऐसा करें तो ऐसा करने से भी नींद का आना आसान होगा। तो आज हमने बात की नींद के बारे में, अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है आज का लकी टिप। रसोई घर में चूल्हा पानी के निकट, सिंक के निकट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रसोई घर में पानी और चूल्हा आसपास होंगे तो आपके घर में सेवक और सहायक नहीं टिकेंगे, मेड और सर्वेंट की समस्या आपको हमेशा परेशान करेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा और घर से निकलते समय उस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: भीषण बारिश के चलते आज भी मुंबई में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, सड़क रेल और हवाई सेवा हुई प्रभावित, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। भारी बारिश के दौरान मुंबई पुणे हाईवे पर लोगों को बड़ी राहत, लैंडस्लाइड के कारण करीब 18 घंटे बंद रहे मिसिंग लिंक की दो लेन यातायात के लिए खोली गई। दिल्ली में आज गृहमंत्री अमित शाह करेंगे वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन, पर्यावरण संरक्षण के लिए 70 लाख पेड़ लगाने का है लक्ष्य। देवभूमि उत्तराखंड में बारिश के बीच धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। आज भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे नॉटिंघम में शुरू होगा मैच।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
4: नमस्कार।
3: क्या आप धन की बचत नहीं कर पाते? धन की बचत के पीछे ग्रहों का क्या कनेक्शन होता है और कैसे कर सकते हैं धन की बचत? पंडित जी से जानेंगे ज्योतिषीय महा उपाय, लेकिन पहले जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक मंत्र।
4: घर में पूजा के स्थान पर आकृतियों वाले और चित्रों वाले यंत्र ना रखें। अगर आप चित्र वाले यंत्र रखते हैं और यंत्र में जरा सी भी गड़बड़ होती है तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। अगर आपको अपने घर

0: दिनांक 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 1:24 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 4:24 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं और आप पंडित जी से जान लेते हैं कि धन की बचत के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं।
0: जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि धन की बचत का ग्रहों से क्या संबंध है, धन की बचत कब हो पाती है और धन की बचत के उपाय क्या हैं, ज्योतिष में कौन से ग्रह धन की बचत के लिए जिम्मेदार होते हैं, कुंडली का 6वां भाव 6th हाउस मुख्य रूप से धन की बचत से संबंध रखता है। इसके अलावा कुंडली का 11वां भाव आपके आय को, आपके पैसे रुपए को कंट्रोल करता है, तो जितना पैसा आएगा उसी हिसाब से आप बचा पाएंगे। इसीलिए कुंडली के 11वें भाव को भी देखना चाहिए कि अर्निंग कितनी है, धन का आय और व्यय कितना आया और कितना गया, ये बुध से नियंत्रित होता है। इसीलिए बुध को देखना भी जरूरी है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं और कितना बचा पाते हैं। बुध की प्लेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र, बृहस्पति और मंगल, इनकी स्थिति भी देखनी चाहिए कि आप किस वजह से पैसा खर्च करते हैं और पैसे के बचाने में आपका इंटरेस्ट कितना है। जब आप इन तमाम चीजों को देखेंगे तब आप जान पाएंगे कि पैसा कितना आता है और पैसा कितना बचाया जा सकता है।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है राशिफल के बारे में जानने का। पंडित जी, क्या है मेष, वृषभ और मिथुन राशि का भाग्य पर?
0: मेष राशि, काम में आपके समस्या हो सकती है, काम का ध्यान दें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, अचानक धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा।

0: आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, करियर में फायदा होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि कब धन की बचत नहीं हो पाती, किस ग्रह के कमजोर होने पर ऐसा होता है, इसके अलावा और क्या कारण होते हैं इसके।
0: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा आता है, लेकिन पैसा बच नहीं पाता। तो कब धन की बचत नहीं हो पाती है? कुंडली में अगर बुध कमजोर हो गया, अगर कुंडली में बुध गड़बड़ हो गया तो आप पैसे का बैलेंस नहीं कर पाएंगे। कितना कमाया, कितना खर्च किया, ये सेट नहीं होगा और पैसा नहीं बचेगा। अगर शुक्र बहुत ज्यादा प्रधान हो तो आदमी पैसा बहुत खर्चता है, पैसे का खर्चा ज्यादा करता है, कपड़ों पर, खाने पर, लग्जरी पर, और इस वजह से धन बचना कठिन होता है। कुंडली में अगर छठवें भाव का स्वामी खराब हो गया तो आपका बहुत सारा पैसा बीमारियों में खर्च होगा, कर्ज चुकाने में खर्च होगा, ब्याज देने में खर्च होगा। ऐसी स्थिति में भी धन की बचत आसान नहीं होगी। वायु तत्व अगर कुंडली में ज्यादा मजबूत हो गया तो ऐसी स्थिति में आप पैसों को लेकर के लापरवाह रहेंगे और आपकी लापरवाही की वजह से पैसा बचा पाना कठिन होगा। घर में सही स्थान पर अगर आप धन न रखें, आपने घर में पैसा रख दिया वायव्य कोण में, पैसा बचा पाना इम्पॉसिबल होगा। यानी घर में अगर सही स्थान पर धन न रखें आप, तो पैसे की बचत बहुत मुश्किल होगी। और अगर बिना सोचे विचारे गलत रूप से आपने पन्ना पहन लिया, या गलत रूप से बिना सोचे विचारे अगर पुखराज पहन लिया, तो इसकी वजह से भी आपको पैसे की बचत में मुश्किल होगी, पैसा बचा पाना बहुत कठिन होगा।
1: और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आगे की राशियों का हाल जानेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का क्या है राशिफल और कितने प्रतिशत है आपका लक मीटर?
0: कर्क राशि, प्रियजन से मुलाकात होने की स्थिति बन रही है, मान सम्मान मिलेगा आपको, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, करियर में लापरवाही ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है दर्शकों के सवालों का। आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंडित जी, सबसे पहले आप किसका सवाल लेना चाहेंगे?
0: जी, आज का पहला प्रश्न एक महिला ने हमें हरियाणा से लिखा है। 15 सितंबर 1997 का जन्म है, 9:40 रात को, हरियाणा। ये कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, क्या मेरा डिवोर्स होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की चल रही है। कुंडली के हिसाब से डिवोर्स होने की संभावना प्रबल है। अगले एक वर्ष में आपसी सुलह समझौते से आपका डिवोर्स होगा। और अगर आप नौकरी की कोशिश करें तो शिक्षा क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी पा सकती हैं। आपका डिवोर्स सरलता से हो और आपका भविष्य बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए, अब वक्त हो चला है दूसरे सवाल का। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका रहेगा?
0: जी, अगला प्रश्न पंखुड़ी कुमारी ने हमें लिखा है, गोवा से लिखती हैं। 26 जुलाई 1998 का जन्म है, 4:05 प्रातः, सीतामढ़ी, बिहार। ये पूछ रही हैं कि आने वाले समय में मेरा करियर कैसा होगा, विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। पंखुड़ी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और सिंह राशि की, महादशा सूर्य की और अंतरदशा केतु की चल रही है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं, एसएससी की, सीजीएल की, तो इसमें सफलता पाने की संभावनाएं अच्छी हैं और साल 2027 के आरंभिक समय तक आपको नौकरी मिलनी चाहिए। 2027 के अंत तक आपके विवाह होने की संभावना भी कुंडली में बन रही है। पन्ना आप धारण किए रखें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करने से आपको लाभ होगा।
1: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि कब व्यक्ति धन की बचत सरलता से कर पाता है।
0: देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पैसा कम कमाते हैं, कम अर्निंग होती है, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा बचाते हैं, धन की बचत आसानी से कर ले जाते हैं। तो धन की बचत कब सरलता से होती है ये भी जानते हैं। अगर कुंडली में बुध मजबूत है तो आपके पैसे का आना, खर्च होना, ये सब आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे बुध या बृहस्पति के मजबूत होने पर। धन की बचत आसान होती है। शनि अगर धन भाव के निकट होता है तो ऐसे लोग भी अच्छा पैसा कमाते हैं और अच्छा पैसा बचाते हैं। कुंडली में अगर पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो जाए, कुंडली में अगर अर्थियल एलिमेंट ज्यादा हो जाए, तो आदमी हर जगह पैसा बचाता है। हालांकि कई कई बार पृथ्वी तत्व वाले काफी कंजूस भी हो जाते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व की प्रधानता से पैसे की बचत होती है। अगर आपके घर में रसोई ठीक है तो बीमारियों में पैसा बर्बाद नहीं होगा। अगर तिजोरी ठीक स्थान पर रखी है तो पैसे का अपव्यय नहीं होगा। धन की बचत सरलता से हो पाएगी। अगर आप धन के कुछ हिस्से का नियमित रूप से दान करते हैं तो ऐसा करने से भी धन की बचत आसानी से कर पाएंगे।
1: और चलिए अब पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल जान लेते हैं।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर की समस्या आपकी हल होगी। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। करियर में लाभ होगा। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में लापरवाही ना करें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: तो पंडित जी से हमने जाना कि कब धन की बचत नहीं हो पाती और कब आसानी से धन की बचत हो जाती है, और अब जान लेते हैं उपाय के बारे में कि धन की बचत के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।
0: देखिए, पैसे की बचत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी अर्निंग में से जो हिस्सा आप बचाते हैं वो भविष्य के लिए आपके काम आता है। तो धन की बचत के लिए क्या करें, सलाह लेकर एक पन्ना या एक पीला पुखराज धारण करें, अपने घर के रसोई के स्थान को, रसोई घर को साफ सुथरा बनाए रखें, ऐसी अलमारी में पैसा रखें जो उत्तर या पूरब की तरफ खुलती हो। उत्तर या पूर्व की तरफ खुलने वाली अलमारी में धन आपको रखना चाहिए। पीले कपड़े में दो गांठें हल्दी की बांधकर अपने रसोई में रखें या अपने धन के स्थान पर रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और हर शनिवार को गरीबों को धन का, खास तौर से क्वाइन के रूप में, सिक्कों के रूप में धन का दान करें तो बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब आखिरी की तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है?
0: मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए आप जान लेते हैं आज के तीसरे सवाल के बारे में। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका रहेगा?
0: जी, अगला प्रश्न पूजा शॉ ने हमें लिखा है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से लिखती हैं, 12 नवंबर 2004 का जन्म है, 11:27 प्रातः दुर्ग छत्तीसगढ़। ये कह रही हैं कि मेरी सिविल इंजीनियरिंग पूरी हो गई है, आगे नौकरी की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। पूजा आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और तुला राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, आपको अभी एक साधारण नौकरी सितंबर अक्टूबर के महीने में मिलेगी, वो कर लीजिएगा। बहुत अच्छा करियर और बहुत अच्छी नौकरी जून 2027 के बाद दिखाई दे रहा है। अच्छे करियर और अच्छे जीवन के लिए एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब बढ़ते हैं अंतिम सवाल की ओर। पंडित जी, आज का अंतिम सवाल किसका है?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न मोहित सुभाष तिवारी ने हमें लिखा है, नागपुर से लिखते हैं, 26 सितंबर 1986 का जन्म है, 8:21 रात को नागपुर महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से मेरा करियर रुका हुआ है, कोई प्रगति नहीं हो पा रही है, तो आने वाले समय में मेरे करियर के हाल कैसे रहेंगे, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। मोहित, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। देखिए, अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाएं, तकनीक के क्षेत्र में जाएं, तो उसमें आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं और अभी आपका करियर 2026 के अक्टूबर नवंबर में शुरू होगा। अगस्त 2027 के बाद आपका करियर काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6-8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, इसी के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दान पुण्य करने का धन की बचत से क्या मेल होता है?
0: जी देखिए, लगभग हर धर्म में ये कहा गया है कि आप जो अर्निंग करते हैं, जो आपकी आय है, उसका कुछ हिस्सा आपको दान करना चाहिए या लोगों की सहायता में लगाना चाहिए। जब आप अपने आय का कुछ हिस्सा दान में या दूसरों की सहायता में लगाते हैं, तो ऐसा करने से आपका धन बर्बाद नहीं होता, धन का अपव्यय नहीं होता, बीमारियों में धन बर्बाद नहीं होता और पर्याप्त मात्रा में आप धन की बचत कर पाते हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको अपनी अर्निंग के कुछ हिस्से का दान अवश्य करना चाहिए।
1: तो जिनका भी जन्मदिन 7 जुलाई को है, सबसे पहले उन्हें हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जानते हैं उनका साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 7 जुलाई को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, करियर की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रहेगी, धन की स्थिति भी अच्छी होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, लेकिन विवाह और संतान के मामलों में इस साल में भी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और चलिए अब समय हो गया है आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का। पंडित जी, क्या है आज की जिज्ञासा और क्या है इसका समाधान?
0: देखिए, आज की जिज्ञासा ये है कि क्या शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद या फल या मिठाई ग्रहण नहीं करना चाहिए? देखिए, मान्यता ये है कि शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करने से दुख भोगना पड़ता है। इस दोष के निवारण के लिए शिवलिंग के पास शालिग्राम की स्थापना की जाती है। अगर शिवलिंग के साथ शालिग्राम स्थापित है तो शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि दिनांक 7 जुलाई 2026 का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा, आपके कर्ज संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 7 जुलाई मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुडलक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुडलक राशि है कन्या। इस समय आपके पारिवारिक जीवन में समस्या हो सकती है और इस समय अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो बड़े निर्णय लेने में आपको सावधानी रखनी चाहिए।
1: और चलिए अब कार्यक्रम के अंत में समय हो गया है आज के महा उपाय के बारे में जानने का। पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है?
0: जी, अगर आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से किसी महत्वपूर्ण काम के लिए मिलने जा रहे हैं और चाहते हैं कि आपको काम में सफलता मिले तो क्या करेंगे? जिस दिन मिलने जाना है उस दिन सुबह हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। इसके बाद एक बार हनुमान चालीसा बोल बोल कर पढ़िएगा। घर से निकलते समय उस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा। जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं आपकी मुलाकात सफल होगी और आपका काम बन जाएगा।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
2: From the New York Times, I'm Michael Barro. This is The Daily.
1: Smartless.
3: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
1: Marketplace.
4: The big three on the program today, or, you know, the big three of the
1: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
0: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर की खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
10: मॉनसून ने देशभर में गर्मी से राहत तो दी है और लोग मॉनसून को खूब एंजॉय भी करते रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में अभी बारिश लोगों का कड़ा इम्तिहान भी ले रही है। जम्मू कश्मीर, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से पनपे हालातों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां उफनती नदियों और बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
11: जिस मॉनसून ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है, वही मॉनसून अब कई इलाकों में लोगों की कठिन परीक्षा ले रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सांबा की हैं, जहां अचानक नदी में आए पानी ने 5 लोगों को मुश्किल में डाल दिया। देखते देखते हालात चुनौतीपूर्ण बन गए, लेकिन वक्त गंवाए बिना SDRF और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रस्सियों के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए। जोरदार बारिश के बाद उड़ीसा के सालुन की नदी उफान पर आ गई। तेज बहाव के बीच 2 महिलाएं फंस गई। पानी का रौद्र रूप और तेज धार दोनों ही बचाव अभियान में बड़ी चुनौती थे। इसके बावजूद रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं हारी। करीब 4 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद दोनों महिलाओं को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया। बाढ़ के बीच रेस्क्यू अभियान की ऐसी ही तस्वीर छत्तीसगढ़ के महासमुंद से भी सामने आई। लगातार बारिश के चलते पुल बनाने के काम में लगे 14 मजदूर चारों तरफ पानी में घिर गए। खबर मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा, घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और आखिरकार सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जाहिर है मॉनसून ने आते ही भले ही लोगों को गर्मी से राहत दी हो, लेकिन कुछ जगहों पर मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। अब जरा सैटेलाइट तस्वीरों से समझिए कि आखिर कई इलाकों में मॉनसून हदें क्यों लांघ रहा है। दरअसल इस वक्त पूर्व मध्य अरब सागर से लेकर कोंकण तट तक घने बादलों का एक सिस्टम एक्टिव है। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी एक मजबूत वेदर सिस्टम बना हुआ है, जो देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह बना हुआ है। मॉनसून के मिजाज को और करीब से समझना हो तो इस तस्वीर पर भी गौर फरमाइए। ये इंफ्रारेड तस्वीरें बता रही हैं कि अगले कुछ घंटों में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहने वाला है। अरब सागर से लगातार नमी मिलने की वजह से महाराष्ट्र, मुंबई, कोंकण और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं बारिश के सिस्टम को और ताकत दे रही हैं। उधर बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सिस्टम का असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत तक साफ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और उफनती नदियों के करीब न जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: एक दिन के विराम के बाद नवसारी डांग जिले में मॉनसून एक बार फिर से जोरदार वापसी की है। पर्यटकों से घिरे सापूतारा समेत अहवा, वघई और सुबीर में मूसलाधार बारिश से मौसम बेहद सुहाना हो गया है और इसका आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहां पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीरें।
11: मॉनसून की बारिश जमकर बरस रही है, कहीं राहत बनकर तो कहीं आफत बनकर। लेकिन जो लोग गर्मी से राहत के लिए सैर पर निकल गए हैं, वो इस मौसम का भी खूब आनंद ले रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां घूमने आए सैलानी मूसलाधार बारिश में भी बोटिंग का लुत्फ लेते नजर आए। नीचे झील का पानी और ऊपर आसमान से बरसती बूंदे।
12: कल तक यहाँ पर कोई बारिश नहीं थी, आज बहुत बारिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर वेदर भी बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत सारे आए। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की है, रास्ते में पेड़ भी गिरे हुए थे वो भी हटाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत भीड़ है, बहुत पब्लिक आई हुई है।
11: असल में नवसारी डांग जिले में मानसून ने एक बार फिर जोरदार वापसी की है। पर्यटकों से घिरे सापुतारा समेत आहवा, वघई और सुबीर में मूसलाधार बारिश से मौसम बेहद सुहावना हो गया है और इस मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। आहवा, वघई, सुबीर और सापुतारा जैसी जगहों पर वीकेंड और छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक डांग पहुंचे हैं। नवसारी से रौनक जाने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी एक बार फिर रंगों, परंपराओं और सांस्कृतिक उल्लास से सराबोर हो उठी है। आपातकालीन समुदाय के सबसे प्रमुख कृषि पर्व ड्री महोत्सव इस वर्ष भी पूरे उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ यहां मनाया जा रहा है। ऐसे में हमारी आज की ये गुड न्यूज है कि अरुणाचल में आपातानी समुदाय के ड्री महोत्सव की धूम आप भी देखें। ये अच्छी फसल, समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ मनाया जाता है और इसे पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अनूठी झलक ये इससे पेश भी करता है।

0: रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, पारंपरिक अनुष्ठान और सामुदायिक सहभागिता, ये तस्वीरें हैं अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत जीरो घाटी की, जहां इस साल ड्री महोत्सव पूरे उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है। ड्री महोत्सव के इस शुभ अवसर पर जनप्रतिनिधियों से लेकर लोक कलाकारों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जबकि पारंपरिक अनुष्ठानों के जरिए अच्छी फसल, समृद्धि और समाज के कल्याण की कामना की।
1: ये दिरी की ब्रदरहुड, हारमोनी, पीस और इसका सभी समाज में शांति बहाल हो, प्रकृति को बचाए और उसके साथ मनुष्य का अच्छा जीवन मिलेगा।
0: ड्री महोत्सव केवल एक उत्सव नहीं बल्कि वो पर्व बन गया है, जो सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। अरुणाचल प्रदेश में इस पर्व का सबसे बड़ा आयोजन लोअर सुबनसिरी जिले की जीरो घाटी और राजधानी ईटानगर में हुआ है। ये ड्री महोत्सव हर साल 4 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ये महोत्सव आपातानी समुदाय का कृषि एवं सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें अच्छी फसल, समय पर मॉनसून, उर्वरता और मानव कल्याण के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती है और इस दौरान लोग अच्छी बारिश, भरपूर पैदावार, सूखा और अकाल से रक्षा और परिवार की सुख समृद्धि के लिए विशेष पूजा पाठ भी करते हैं।
2: डी फेस्टिवल जो है, हम लोग का जो एग्रीकल्चर जो भी गार्डन है, एग्रीकल्चर है, वहाँ पे कीड़ा मकोड़ा ना खाए, तो उसके लिए पूजा किया जाता है दरी में।
0: खास बात है कि यहाँ की संस्कृति और इस महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए विदेश से भी पर्यटक पहुँचे हैं। इस साल महोत्सव में स्पेन से 7 पर्यटकों ने भी हिस्सा लिया। दरअसल जीरो घाटी अपनी सीढ़ी नुमा धान की खेती, देवदार के जंगलों और पारंपरिक सिंचाई प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। आपातानी समुदाय की टिकाऊ कृषि पद्धति भी उनकी सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा मानी जाती है। जीरो घाटी से युवराज मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
4: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी। बच्चा भी सड़क पर चल रहे दोपहिया वाहन पर बहन के साथ बैठा है। बहन नींद में और बच्चा बहन के हाथ में रखी आइसक्रीम का लुत्फ लेने पर उतारू है। मुंह में बस आइसक्रीम का स्वाद लेने को ही था, लेकिन तभी पीछे की गाड़ी ने इतनी तेज हॉर्न बजा दिया कि बच्चे ने कमाल का रिएक्शन दिया। बच्चे ने हॉर्न बजाने वाली गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर आइसक्रीम ही दे मारी। अब बच्चे का ये आखिरी वाला रिएक्शन यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है। अब इस मदर डक और उसके ट्रिक्स को ही जरा देख लीजिए। देखने पर ये मदर डक आपको एक सख्त माँ लगेगी, लेकिन अपने बच्चों को मजबूत, काबिल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदर डक बता रही हैं कि ऐसे बनते हैं बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंट और तभी कर पाते हैं मुश्किलों का सामना, वरना तो कमजोर पड़ जाएंगे। यूजर्स को अपने बच्चों को सिखाने का मदर डक का ये स्टाइल बहुत पसंद आ रहा है। कई यूजर्स कह रहे हैं कि इंसानों में इसी चीज की कमी होती है, वो अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं जिससे वो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और मुश्किलों का सामना करने में कमजोर पड़ जाते हैं। ये माँ हमें सिखा रही है कि कैसे मजबूत और काबिल बच्चे तैयार किए जाएं जो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सके। दादी माँ को वर्कआउट करने का खुमार चढ़ा है। ओपन पार्क में वो जिम इक्विपमेंट्स के साथ वर्कआउट करती नजर आ रही हैं, लेकिन इस उत्साह में दादी माँ की वर्कआउट की रफ्तार देखकर एक तरफ तो सब दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूजर्स दादी माँ को कह रहे हैं कि माना कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, पर रियलिटी यही है कि आप ओल्ड हैं, इसीलिए उन्हें सुरक्षित रहने की हिदायत भी दे रहे हैं। भाई माँ तो माँ होती है, चाहे इंसान की माँ हो या फिर बछड़े की माँ। इन वायरल तस्वीरों को जरा देखिए। गाय अपने नवजात बछड़े को ढूंढ रही है और तभी जब उसे बछड़ा दिख जाता है तो वो बछड़े के पास किसी को खड़ा हुआ देखती है। फिर क्या, तेजी से दौड़ती हुई गाय माता अपने बच्चे को सुरक्षित करने पहुंचती है। पास खड़ा व्यक्ति तो भाग जाता है और गाय अपने बच्चे को चाट चाट कर दुलारने लगती है। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें बता रही हैं कि रास्ते चाहे कितने भी खतरनाक क्यों न हो, अगर दिल में हौसला है, जुनून है, तो कामयाबी मिलना तय है। भरी बरसात में सिंगल लाइन जुगाड़ू पुल पर इस तरह भला साइकिल चलाने का हौसला किसके पास होगा। इन भाई साहब का बैलेंस देखकर तो हर किसी के होश उड़ गए। यूजर्स वाहवाही तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सेफ्टी को लेकर भी चिंतित हैं।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
7: To right field, and it will leave.
6: From the first pitch of the season to the stretch run,
7: and that's the ball game.
6: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
8: जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: क्या आपको नींद आने में परेशानी होती है? क्या बेवजह की चिंताओं की वजह से आपको नींद नहीं आती? क्या आलस्य तो बना रहता है लेकिन नींद कभी पूरी नहीं हो पाती? कौन से ग्रह हैं नींद के लिए जिम्मेदार, और अच्छी नींद के क्या हैं ज्योतिषीय उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज टुडे

0: भारी बारिश के दौरान मुंबई पुणे हाईवे पर लोगों को बड़ी राहत। लैंडस्लाइड के कारण करीब 18 घंटे बाद रहे मिसिंग लिंक की 2 लेन यातायात के लिए खोली गई। दिल्ली में आज गृहमंत्री अमित शाह करेंगे वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन। पर्यावरण संरक्षण के लिए 70 लाख पेड़ लगाने का है लक्ष्य। देवभूमि उत्तराखंड में बारिश के बीच धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। आज भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मैच भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे नॉटिंघम में शुरू होगा मैच।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
0: दो भरे पहर की खुशोभरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
0: शुभ समाचार की शुरुआत बाढ़, बारिश और रेस्क्यू के साथ होगी। देश के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है। कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कें जलमग्न हैं और नदियां उफान पर हैं, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण समय में राहत और बचाव में जुटी एजेंसीज उम्मीद की मजबूत तस्वीर पेश कर रही हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक हर मुश्किल इलाके में राहत टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों तक पहुंच रही हैं। कहां कहां से सामने आई है तस्वीर आगे आपको दिखाएंगे।
2: साथ ही भारतीय नौसेना अपने बेड़े में 11 जुलाई को 6 स्वदेशी प्रोजेक्टर 17A स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को शामिल करेगी। ये वॉरशिप 75% से अधिक स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है, जो कि भारत की रक्षा क्षमता को एक नया मुकाम देगी। इस महेंद्रगिरी में मिसाइल से लेकर एडवांस सेंसर और एंटी सबमरीन क्षमताएं भी मौजूद है। इसकी और खूबियां पर बात करेंगे आगे।
0: तो उधर कोटा के एक स्टूडेंट ने ऐसा स्मार्ट प्लांट पॉट तैयार किया है जो पौधों की जरूरतों को आसान तरीके से समझने में मदद करता है। ये स्मार्ट इमोशन पॉट सेंसर और तकनीक की मदद से पौधे की स्थिति पर नजर रखता है और पानी, धूप या देखभाल की जरूरत होने पर मोबाइल पर इमोजी के जरिए अलर्ट भेजता है। इसके बारे में भी आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे।
2: तो वही आज करोड़ों दिलों की धड़कन, महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे है। ऐसे में उनके फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। कैसे हो रहा है ये खास सेलिब्रेशन बताएंगे आगे।
0: इसके अलावा बात टी20 सीरीज की होगी। आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मैच नॉटिंघम में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 0-1 से पिछड़ रही है। ऐसे में अब वो यहां वापसी करना चाहेगी, लिहाजा कैसी है टीम इंडिया की रणनीति आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
2: अमरनाथ यात्रा का आज 5वां दिन। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बालटाल और पहलगाम बेस कैंप में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा यात्रा मार्ग गूंज रहा है। सिर्फ 4 दिनों में 65,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए 9 जुलाई तक के सभी रजिस्ट्रेशन स्लॉट भर चुके हैं। बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं से कुछ दिन बाद यात्रा करने की अपील की गई है।
0: देवभूमि में चारधाम यात्रा पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। खराब मौसम और सक्रिय मॉनसून के बावजूद रोज 9 से 10 हजार भक्त धाम पहुंच रहे हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में भी श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14.5 लाख पार करना लोगों की अटूट आस्था की बड़ी मिसाल है।
2: तो वहीं कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियों का आगाज हो गया है। पारंपरिक ढोल की गूंज के बीच खूंटी पूजा के साथ उत्सव का काउंटडाउन शुरू हुआ। चोर बागान दुर्गा पूजा समिति ने इस साल अकाल बोधन थीम का अनावरण किया, जो कि रामायण से प्रेरित है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित एक विशाल कलाकृति भी पेश की गई है। 17 से 21 अक्टूबर तक मुख्य दुर्गा पूजा उत्सव मनाया जाएगा।
0: गुजरात में 21 गायों ने करीब 19 दिन की पदयात्रा पूरी कर द्वारकाधीश के दरबार में मत्था टेका। गौमाता वेदना पदयात्रा का मकसद गौमाता की सुरक्षा और सम्मान का संदेश देना था। गायों के लिए की गई द्वारकाधीश के दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई।
2: मंडी से चंडीगढ़ का सफर अब और आसान हो गया है। मंडी चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका वर्चुअल शुभारंभ किया। इस रूट पर रोज 2 उड़ानें मिलेंगी 3500 रुपए किराए में। अब सिर्फ 30 मिनट में मंडी से चंडीगढ़ पहुंचा जा सकेगा।
0: मध्य प्रदेश के सिवनी से निकली बाबा खाटू श्याम की

0: 1100 किलोमीटर लंबी पदयात्रा झांसी पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने परिवार का भव्य स्वागत किया। ब्रेन अटैक और पैरालिसिस से स्वस्थ होने के बाद विक्की हरदिनवार ने परिवार के साथ लिया संकल्प पूरा करने पैदल यात्रा खाटू श्याम धाम वो जा रहे हैं। ये यात्रा आस्था हौसले और विश्वास की मिसाल बन गई है।
1: 11 जुलाई को भारतीय नौसेना को मिलेगा नया स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी, आधुनिक हथियारों और हाईटेक सेंसर से लैस इस युद्धपोत का नाम ओडिशा की महेंद्रगिरी पर्वतमाला पर रखा गया है। खास बात यह है कि इसके निर्माण में करीब 75% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टी20 मुकाबला नॉटिंघम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक मुकाबला रात 10 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस रात 9:30 पर होगा। सीरीज में पहली जीत की तलाश में उतरेगी टीम इंडिया।
1: लव लॉटरी का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। फिल्म में कोर्टरूम ड्रामा, मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। मेकर्स का दावा है कि कहानी आखिर तक दर्शकों को बांधे रखेगी। फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

0: और देश के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है। कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं, सड़कें जलमग्न हैं और नदियां उफान पर हैं। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण समय में राहत और बचाव में जुटी एजेंसीज उम्मीद की मजबूत तस्वीर पेश कर रही हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक हर मुश्किल इलाके में राहत टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों तक पहुंच रही हैं। गुजरात के अमरेली में उफनते पानी के बीच जेसीबी की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं सूरत में पानी भरने के बाद एक इमारत में फंसे कई छात्रों का नाव के जरिए सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। दूसरी ओर मुंबई के पास लोनावला में भारी बारिश के बीच फंसे 20 से ज्यादा लोगों को राहत टीमों ने सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। कुदरत की इस कठिन परीक्षा के बीच समय पर की गई तैयारी ही काम आती है। तो देखिए, बाढ़ जैसे हालात जो हैं देश के अलग अलग राज्यों में बने हुए हैं। अमरौली से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको महाराष्ट्र की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरह से लोग जो है उनका रेस्क्यू किया जा रहा है वो भी आप देखिए कि जवान जो है लगातार मुस्तैद है और बाढ़ बारिश जैसे हालात में लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू भी किया जा रहा है। तो ये चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सूरत की तस्वीरें देखिए जहां लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं पालघर में लोगों के कमर तक पानी पहुंच चुका है। और तीसरी तस्वीर जो है वो देखिए लोनावला से आ रही है जहाँ लोग जो है पानी में किस तरह से रास्ता पार कर रहे हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि चारों तरफ सिर्फ पानी है और पानी ही है। पेड़ गिर गए हैं और कमर तक जो है वो पानी भर चुका है।
1: तो वही अमरेली में ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। ऐसे में कुछ लोग कहीं पर फंसे हैं तो कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में अमरेली के राजुला में बारिश के बीच 108 टीम ने एक महिला मरीज की जान बचाई। दरअसल चांच बंदर गांव में बीमार महिला तक पहुंचने के लिए डॉक्टर पानी के बहाव के बीच ट्रैक्टर से पहुंचे, फिर जेसीबी की मदद ली गई और महिला को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया। 108 टीम की इस तत्परता की सराहना हो रही है और इसी तत्परता की वजह से महिला को वहां से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू कर उसके बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। अमरेली की तस्वीर आप देख रहे हैं, जेसीबी की मदद यहां पर ली गई है और मानसून जिस तरीके से लोगों के लिए राहत लेकर आया है, थोड़ी आफत की तस्वीरें भी निकलकर मानसून की वजह से सामने आ रही हैं। कहीं पर बाढ़ का कहर बरस रहा है लोगों पर, बारिश हो रही है और अभी भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, आगे भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।
0: और महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है। पुणे से लेकर मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई और लोनावला तक मूसलाधार बारिश के हालात बने हुए हैं जिसने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कहीं इमारतें ढह रही हैं तो कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो कहीं सड़कें और रेलवे स्टेशन जलमग्न हो गए हैं। लेकिन इस बीच पहुंच रहे एनडीआरएफ के जवान किसी देवदूत से कम नहीं है। लोनावला में घरों में पानी भरा तो एनडीआरएफ के जवान मदद के लिए पहुंचे और करीब 20 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। तो तस्वीरें लोनावला की हैं। देखिए, महाराष्ट्र के लोनावला में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया है और किस तरह से जो जवान हैं वो लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात लोनावला में बन गए हैं।
1: तो महाराष्ट्र में तो झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली की बात कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली में भी मॉनसून के लिए अभी भी दिल्लीवासी तरस रहे हैं। दिल्ली में बादल रोज आ रहे हैं लेकिन उस हिसाब से बरस नहीं रहे। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर दिल्ली से मॉनसून को हुआ क्या है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और उत्तर भारत में अभी मॉनसून पहुंचा है, आगे उसके जमकर बरसने की उम्मीदें की जा रही हैं।

0: दिल्ली वालों ने पहले मॉनसून का इंतजार किया। मॉनसून आया तो लगा उमस के दिनों पर राहत के फुहारें बरसेंगी और मन भरकर मॉनसून सबकी मुराद पूरी करेगा। लेकिन दिल्ली पहुंचकर मॉनसून अभी भी रूठा रूठा लग रहा है। आसमान में बादल भी हैं, हवा में नमी भी है, लेकिन बारिश बस बूंदाबांदी तक सिमटी नजर आ रही है।
1: देश के अलग अलग राज्य में मॉनसून जो है वो तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बात अगर दिल्ली की जाए तो यहाँ पर अभी भी वो बरसात जो है वो देखी नहीं गई है। 5 जुलाई जो है वो निकल चुकी है, लेकिन अभी अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तो औसतन कम बारिश जो है वो देखी गई है।
0: दिल्ली का हाल ये है कि बादल आते हैं, उम्मीद जगाते हैं और अक्सर बिना बरसे आगे निकल जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इसे लेकर मौसम विभाग क्या कह रहा है।
1: लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में मॉनसून जो देखा जाता है वो अभी तक नहीं देखा गया, तो क्या आने वाले दिनों में भी हम यही समझे कि कम बारिश देखी जाएगी दिल्ली NCR में?
2: देखिए, आने वाले 7 दिनों की बात करें तो दिल्ली में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा आने वाले 2 दिनों में पूरी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं, और उसके बाद हल्के स्तर की वर्षा भी जारी रह सकती है। तो जहां तक रिकवरी का सवाल है तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी सीजन की शुरुआत ही है। आने वाले समय में हाँ, ये जरूर हो सकता है वीक 2 वीक 3 में वर्षा थोड़ी सी कम दिखाई देती है ओवरऑल, परंतु फिर भी हल्के स्तर की वर्षा दिल्ली को मिलते रहने की संभावना आने वाले 4 से 5 दिनों में दिखाई देती है।
0: मौसम विभाग भले दिल्ली में बारिश को लेकर उम्मीद से हो, लेकिन आसमान में बने हालात बता रहे हैं कि उत्तर भारत और खासकर दिल्ली पहुंचा मॉनसून अभी कमजोर है। फिलहाल मॉनसून का इस बार सबसे बड़ा दुश्मन अलनीनो बताया जा रहा है, जिसने उत्तर भारत में मॉनसून का मिजाज बदल रखा है।
2: वो जैसा हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में पहले ही से बताया गया भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कि ओवरऑल इस साल मॉनसून सामान्य से कम रहेगा, तो उसमें तो कोई हमारी एस्टिमेट में कोई बदलाव नहीं है। परंतु नेक्स्ट 7 डेज में जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मॉनसून एक्टिव कंडीशन में पिछले 1 सप्ताह में रहा भी है, जुलाई 1 से लेकर के अभी तक, और आने वाले 3 से 4 दिनों तक मॉनसून जो है वर्षा मिलती रहेगी। उसके बाद ये हो सकता है कि मॉनसून की वर्षा में थोड़ी सी कमी आई, परंतु अभी क्योंकि मॉनसून के सीजन की शुरुआत ही है, अभी जुलाई का पहला सप्ताह है, तो अभी संभावनाएं पूरी पूरी दिखाई देती है।
0: लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दिल्ली में मॉनसून इसी तरह सुस्त रहने वाला है। मौसम विभाग साफ कह रहा है अभी मॉनसून के लिए देर नहीं हुई है। जुलाई और अगस्त बारिश के सबसे अहम महीने माने जाते हैं। अगर नमी वाली हवाएं मजबूत हुई तो दिल्ली में आगे अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और बारिश और बाढ़ की खबरों के बीच कश्मीर से सुकून देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। श्रीनगर की मशहूर डल झील इन दिनों देशभर से आए पर्यटकों से गुलजार है। सुहाना मौसम, ठंडी हवाएं और चारों ओर फैली प्राकृतिक खूबसूरती, ये सभी सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। इस मौसम में पर्यटक शिकारे का आनंद ले रहे हैं। ये सभी कश्मीर की मेहमान नवाजी और वादियों की खूबसूरती से काफी खुश दिखे। पर्यटकों का कहना है कि डल झील का नजारा उनके लिए यादगार अनुभव है। ये तस्वीरें न सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती को बयां कर रही हैं, बल्कि सकारात्मक संदेश भी दे रही हैं।
4: दम एक्सलेंट वेदर है। एंड कल शाम में तो हम शंकराचार्य मंदिर भी गए थे, वहां पर भी इट वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा दर्शन हुई थी, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। सभी को तो आना चाहिए यहाँ पे, एक बार जिंदगी में एक बार विजिट करना ही चाहिए कश्मीर को, ये तो भूतल स्वर्ग है यहाँ पर, तो इट वॉज वेरी गुड।
3: तो वही अमरनाथ यात्रा मार्ग में इन दिनों आस्था और भक्ति का महामेला लगा हुआ है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60,000 को पार कर गया है। इस बीच प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।
0: गूंज रहा है हर हर महादेव का जय घोष। भगवान भोलेनाथ के भक्त चले हैं अपने आराध्य से मिलने। दर्शन होंगे, जन्मों के पाप मिटेंगे। बाबा बर्फानी के दरबार में हर मन्नत पूरी होगी। भावनाएं उमड़ रही हैं, उत्साह में कदम चुनौतियों को पार कर रहे हैं। भाव बह रहे हैं आंसू बनकर। ये रौनक श्री अमरनाथ यात्रा की है। कोई पैदल एक दूसरे को थामे आगे बढ़ रहा है तो कोई घोड़े खच्चर पर सवार होकर बाबा बर्फानी के दरबार की ओर बढ़ रहा है। होठों पर महादेव का जय घोष है, दिल में उनके दर्शन की आस। 3 जुलाई से शुरू हुई ये यात्रा हर नए जत्थे के साथ बड़ी होती जा रही है। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की चहल पहल है, हर तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है।
5: हमने अपने परिवार के सुख शांति के लिए ही हमने बाबा से मांगा है और बड़ी मन्नत से इस बार आए हैं और बाबा ने बहुत कुछ पूरा भी किया और आगे भी पूरा करेंगे उम्मीद है।
6: तो मैंने बाबा से वादा किया था कि बाबा अगर मैं सही सलामत रहा तो मैं फिर जल्दी से आपके पास दर्शन करने के लिए आऊंगा। मन में उत्साह यही है कि मैं अच्छा रहूं, चलता रहूं, मुझे महसूस ना हो कि मैं एक विकलांग व्यक्ति हूं।
0: जिस भाव और उम्मीद के साथ तीर्थयात्री दूर दूर से बाबा बर्फानी के दरबार के लिए चले हैं, प्रशासन की कोशिश है कि उन्हें यात्रा मार्ग में भी किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, लिहाजा तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। भारतीय रेलवे ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू से श्रीनगर के बीच विशेष ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की है। इसका मकसद यात्रा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक सफर उपलब्ध कराना है। इसको लेकर जम्मू और श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं और यात्रियों को जानकारी दी जा रही है। श्रद्धालुओं ने रेलवे की इस पहल का स्वागत किया है।
7: बहुत बहुत ही अच्छी सुविधा है, रेलवे की बहुत ही अच्छी सुविधा है और ये जो वंदे भारत डायरेक्ट जम्मू से कर दिया गया है उससे और ज़्यादा सुविधा बढ़ गई है, जो कि डायरेक्ट हम लोग श्रीनगर पहुंच जा रहे हैं बिना किसी थकान के। हम लोग सुबह उतरे हैं और वहां से डायरेक्ट हम लोग यहां आ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुगम यात्रा रहा।
8: हम लोग यहाँ से वंदे भारत से आए, बहुत ही सुविधा सुंदर थी। जो हमारे पहले यात्रीगण हैं उन्होंने बताया कि जब वो पहले ट्रैवल करते थे तो बहुत ही कठिनाइयाँ आती थी। टचुड़ अभी वंदे भारत के कारण एसी और होने के कारण जो उन लोगों ने बताया जो उन लोगों को झेलना पड़ रहा था, टचुड़ हम लोगों को नहीं झेलना पड़ा।
9: वंदे भारत ट्रेन प्लस जो सुविधाएं हैं, जो सिक्योरिटी है, उसको देख के अभी फील हो रहा है कि अभी कोई भी यहाँ पे डर नहीं है, आराम से आ सकते हैं और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी अरेंजमेंट और रहना चाहिए और इसमें कोई 1% के भी गुंजाइश नहीं की और कुछ करें, काफ़ी बेटर है।
10: इससे 40 दिन और चलेगी और आने वाले दिनों में मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगा, सभी लोग आइए भोले बाबा के दर्शन कीजिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेफ हो, आप सिक्योर हो। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: 60,000 से ज्यादा तीर्थयात्री अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा करीब 50,000 था। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 9 जुलाई तक सभी पंजीकरण स्लॉट फुल होने की बात कही है। साथ ही बिना आधिकारिक रजिस्ट्रेशन के यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल रुकने की सलाह दी गई है। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन तक चलेगी। बालटाल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: भक्ति जब अटूट विश्वास बन जाए तो ना उम्र मायने रखती है ना मुश्किलों की परवाह होती है। ऐसी दो तस्वीरें सामने आई हैं। तिरुमला में 116 साल की बुजुर्ग ने पैदल चलकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सबको चकित कर दिया, तो वहीं अपनी मन्नत पूरी होने के बाद एक परिवार ने 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर खाटू श्याम धाम के दर्शन किए।
0: कहने को ये दो तस्वीरें हैं, लेकिन इन दोनों तस्वीरों की कहानी एक सी है। एक तस्वीर 116 साल की उम्र में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास की अनूठी मिसाल है, तो दूसरी तस्वीर ईश्वर के चमत्कार को साक्षात नमस्कार है। जैसे ही 116 साल की नवनीथम्मा ने पैदल चलकर तिरुमला की चढ़ाई पूरी की, वहां मौजूद हर किसी की आंखें छलक आईं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने उनकी आस्था और भगवान के प्रति अद्भुत समर्पण को देखते हुए विशेष वीआईपी दर्शन की व्यवस्था की। 116 वर्ष की नवनीथम्मा ने अपने परिवार के साथ पवित्र तिरुमला मंदिर तक की चढ़ाई उसी रास्ते से पूरी की जहां से हजारों श्रद्धालु रोज मंदिर पहुंचते हैं। 116 साल की नवनी थम्मा के इस भक्तिभाव की तस्वीरें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तक भी पहुंची। उन्होंने नवनी थम्मा का वीडियो शेयर किया और लिखा कि सच्ची भक्ति के मामले में उम्र सचमुच बस एक नंबर है। कर्नाटक की 116 साल की इस दादी को देखकर मैं हैरान और प्रभावित हूँ। दक्षिण के साथ उत्तर से भी आस्था और भगवान के प्रति अटूट विश्वास की कैसी ही तस्वीर सामने आई। सिवनी के विक्की हरिंदरवार कुछ महीने पहले जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। 3 महीने के भीतर 2 बार ब्रेन अटैक आया, शरीर का एक हिस्सा पैरालिसिस की चपेट में आ गया, लेकिन उन्होंने बाबा खाटू श्याम से स्वस्थ होने की मन्नत मांगी। आज वही विक्की पत्नी आशा, 3 साल की बेटी काव्या और साथियों के साथ करीब 1100 किलोमीटर की पदयात्रा पर है। 18 जून से शुरू हुई ये यात्रा जुलाई के आखिर तक खाटू श्याम धाम पहुंचने की उम्मीद है।
11: मैं खाटू श्याम पदयात्रा जा रहा हूँ, मेरी बाबा से अर्जी थी। मेरा स्वास्थ्य खराब था पिछले 10 महीने पहले, ब्रेन अटैक पैरालिसिस था मुझे, तो उसी की अर्जी लेके बाबा के पास जा रहा हूँ। आज स्वस्थ हूँ पूरा मैं, और मैं चाहूँगा, मेरी अर्जी तो है, बाकी सबकी अर्जी लेके जा रहा हूँ।
0: एक और 116 साल की उम्र में भी अटूट विश्वास के साथ भगवान के दरबार तक पहुंची नवनी थम्मा, तो दूसरी ओर बीमारी को हरा कर पूरे परिवार के साथ 1100 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले विक्की हरिंदरवार। ये दोनों तस्वीरें बताती हैं कि जब आस्था दिल में बस जाए तो उम्र, दूरी और कठिनाइयां सब पीछे छूट जाते हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मत जाएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अर्जुन की बहन अंशुला की शादी।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: क्या आपको नींद आने में परेशानी होती है? क्या बेवजह की चिंताओं की वजह से आपको नींद नहीं आती? क्या आलस्य तो बना रहता है लेकिन नींद कभी पूरी नहीं हो पाती? कौन से ग्रह हैं नींद के लिए जिम्मेदार, और अच्छी नींद के क्या हैं ज्योतिषीय उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
14: No ticket, no line, just showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: भीषण बारिश के चलते आज भी मुंबई में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, सड़क रेल और हवाई सेवा प्रभावित, सावधानी बरतने की अपील।
3: भारी बारिश के दौरान मुंबई पुणे हाईवे पर लगातार लोगों को बड़ी राहत, लैंडस्लाइड के कारण करीब 18 घंटे बंद रहे मिसिंग लिंक की 2 लेन यातायात के लिए खोली गई।
2: दिल्ली में आज गृहमंत्री अमित शाह करेंगे वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन, पर्यावरण संरक्षण के लिए 70 लाख पेड़ लगाने का है लक्ष्य।
3: देवभूमि उत्तराखंड में बारिश के बीच धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन।
2: आज भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे नॉटिंघम में शुरू होगा मैच।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
2: अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभ समाचार में। अब बात बॉलीवुड की कर लेते हैं। बॉलीवुड के कपूर परिवार में खुशियां ही खुशियां फैली हैं, क्योंकि कपूर परिवार की बेटी की शादी संपन्न हो गई है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी और अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ 7 फेरे लेकर अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया है। मुंबई में बेहद निजी लेकिन भव्य अंदाज में हुई शादी में कपूर परिवार के कई बड़े सितारे इसमें शामिल हुए। मेहंदी से लेकर फेरे और रिसेप्शन तक हर रस्म की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इस खास मौके पर पूरा कपूर परिवार एक साथ नजर आया। पिता बोनी कपूर अपनी बेटी की शादी में भावुक दिखाई दिए, वहीं भाई अर्जुन कपूर ने बहन के हर खास पल को करीब से जिया। शादी में जानवी कपूर, खुशी कपूर, अनिल कपूर, सोनम कपूर, शनाया कपूर सहित परिवार के कई सदस्य शामिल हुए और सभी ने मिलकर शादी की रस्मों और सेलिब्रेशन का भरपूर आनंद लिया।

देखिए, अंशुला ने पारंपरिक अंदाज में खूबसूरत ब्राइडल लुक अपनाया, जबकि रोहन भी शेरवानी में बेहद आकर्षक नजर आए। दोनों की जोड़ी ने हर किसी का दिल जीत लिया है। आपको बता दें कि अंशुला कपूर भले ही फिल्मों से दूर रही हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। उन्होंने कई मौकों पर रोहन ठक्कर के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार किया था। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब परिवार की मौजूदगी में हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए हो गए।

तो शादी से पहले मेहंदी, हल्दी, चूड़ा और कलीरे की रस्में भी धूमधाम से निभाई गई। इन प्री वेडिंग फंक्शंस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इस बीच अंशुला कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कलीरे सेरेमनी का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें पंजाबी शादियों की परंपरा के मुताबिक दुल्हन अपनी सहेलियों और बहनों के सर पर कलीरे गिराने की रस्म निभाती है। अंशुला ने जब कलीरा पीछे की तरफ उछाला तो वो किसी लड़की के बजाय सीधे उनके भाई अर्जुन कपूर पर जाकर गिरा। कलीरा गिरते ही वहां मौजूद जानवी कपूर, खुशी कपूर और बाकी रिश्तेदार हंसने लगे। अर्जुन कपूर भी कलीरा गिरने के बाद अपनी मुस्कान रोक नहीं पाए।

0: चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टीम इंडिया की, जो आज इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में उतरेगी। पांच मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के हिसाब से रात 10 बजे शुरू होगा और इस सीरीज में भारतीय टीम 0-1 से पिछड़ रही है। ऐसे में वो उसकी निगाहें यहां वापसी पर होगी। पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था, जबकि दूसरा मैच जिसमें इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत अब तक एक भी मैच नहीं जीत सका। वो लगातार 4 मैच गंवा चुके हैं। वैसे भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 32 टी20 खेले गए, इनमें भारत ने 18 और इंग्लैंड ने 13 मैच जीते, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा।
1: और जिम्बाब्वे के खिलाफ इस महीने होने वाले 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, जबकि उप कप्तानी का जिम्मा तिलक वर्मा के कंधों पर रहेगा। टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में 23, 25 और 26 जुलाई को 3 टी20 मुकाबले खेलेगी। गुड न्यूज ये है कि वैभव सूर्यवंशी भी सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा है। उनके अलावा रिंकू सिंह, विकेट कीपर बल्लेबाज प्रभ सिमरन सिंह, तेज गेंदबाज अशोक शर्मा, यश ठाकुर और स्पिनर हर्ष दुबे को टीम इंडिया में जगह मिली है। तेज गेंदबाज मयंक यादव भी काफी समय बाद भारतीय टीम में लौटे हैं। मयंक अक्टूबर 2024 में भारतीय टीम के लिए आखिरी बार मैदान पर उतरे थे, जबकि संजू सैमसन इस सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं रहेंगे।
0: देखिए, टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। आज कैप्टन कूल 45 साल के हो गए हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के बीच धोनी थाला के नाम से मशहूर भी हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स ने खास अंदाज में धोनी को जन्मदिन की बधाई दी है। चेन्नई ने सोशल मीडिया पर धोनी की शान में खास वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि एक ऐसा नायक जो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका बन गया, ऐसी विरासत जो हर पीढ़ी में जिंदा रहेगी। बेशक MSG टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान रहे हैं, उन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 मैचों को मिलाकर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच में कप्तानी की। उन्होंने कुल 332 इंटरनेशनल मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की है, जिसमें 178 मैचों में जीत हासिल की।

0: और अब बात फीफा वर्ल्ड कप की कर लेते हैं। कनाडा के वैंकूवर शहर में कोलंबिया के फैंस ने रंग बिरंगे नजारे, संगीत और डांस का माहौल बना दिया। ये हयात रीजेंसी होटल के बाहर जमा हुए थे, जहां स्विट्जरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 मैच से पहले उनकी नेशनल टीम रुकी हुई थी। वैंकूवर में रहने वाले कई कोलंबियाई समर्थकों के लिए टीम का शहर में आना अपने कल्चर को घर के पास सेलिब्रेट करने का एक अनोखा मौका था। आज कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। टीम कोलंबिया के फैंस को भरोसा है कि उनकी टीम स्विट्जरलैंड के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल करेगी।
1: चलिए अब बात कर लेते हैं क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव की। सूर्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो हेयर कट करवाते नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में वो मुंबई के बांद्रा स्थित एक सैलून में पहुंचे, जहां उन्होंने एक अलग हेयर कट करवाया। इसी वीडियो में सूर्य मस्ती भी करते नजर आ रहे हैं।
2: बोला हर हर महादेव,
3: हर हर महादेव। फाइनली
2: अभी इधर आके थोड़ा और अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्मार्ट बन जाऊंगा ना मैं।
3: सबसे पहले तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस।
2: थैंक यू।
3: ठीक है, और वो पापा वाली फीलिंग में दिख रही है मुझे।
2: देख रहे हो ना, रात में सो नहीं पा रहा हूँ।
3: मेरा भी यही हाल होता है।
0: और इन दिनों मानसून की वजह से मुंबई में हर तरफ पानी भरा हुआ है। ऐसे में सपनों के शहर की रफ्तार थम सी गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में तेज बारिश में एक आदमी टैंकर से सड़क किनारे पौधों को पानी देता दिख रहा है। ये अजीब नजारा देखकर अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, जो तेजी से वायरल हो गया। स्पेन का पैम्पलोना शहर इन दिनों रोमांच, उत्साह और अनोखी परंपरा का साक्षी बन रहा है। यहां 10,000 से ज्यादा लोग विश्व प्रसिद्ध सैन फर्मिन उत्सव में शामिल हुए। अगले 9 दिनों तक चलने वाले इस जश्न में सबसे बड़ा आकर्षण होगा बुल रन, यानी वो दौड़ जहां इंसानों और बुल के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा।
4: हजारों लोगों का सैलाब, हवा में लहराता लाल रुमाल, आसमान छूते रंग बिरंगे बैलून, ये इस बात का प्रमाण है कि स्पेन के पैम्पलोना शहर में सैन फर्मिन महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो चुकी है। पैम्पलोना के ऐतिहासिक कॉन्सिस्टोरियल स्क्वायर में करीब 10,000 से ज्यादा लोग जुटे। इस मौके पर आतिशबाजी और गीत संगीत के साथ 9 दिनों तक चलने वाले मशहूर उत्सव का आगाज हुआ। सफेद कपड़े और लाल स्कार्फ इस त्योहार की पहचान है। जैसे ही उत्सव की शुरुआत हुई, लोगों ने एक दूसरे पर पानी की बौछार कर जश्न मनाया। साथ ही पूरा चौक उत्साह, संगीत और उल्लास से सराबोर नजर आया। सैन फर्मिन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि स्पेन की सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। अब अगले 9 दिनों तक पैम्पलोना की सकरी गलियों में रनिंग ऑफ द बुल्स के नाम से मशहूर रोमांचक परंपरा निभाई जाएगी, जो इस उत्सव की सबसे बड़ी पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: 1,000 मीटर की ऊंचाई, हवा में संतुलन, खाई के ऊपर साहस और सदियों पुरानी कहानी का आधुनिक मंचन। अब आपको लेकर चलते हैं चीन, जहां पर एक अनोखा प्रदर्शन ये साबित करता है कि जब संस्कृति और रोमांच साथ आते हैं तो नजारा यादगार बन जाता है।

0: हजार मीटर गहरी खाई, हवा में तनी एक पतली सी रस्सी और उस पर करतब दिखाते मंकी किंग और उनके साथी चीन में मशहूर महाकाव्य जर्नी टू द वेस्ट के किरदारों को इस अंदाज में जिंदा किया गया है कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। चीन के गुआंगशी प्रांत के बेईदी माउंटेन सीनिक एरिया में रोमांच, संस्कृति और हैरत का ये संगम देखने को मिला। संतुलन की ऐसी नुमाइश शायद ही कहीं देखने को मिले। लेकिन कलाकार सिर्फ रस्सी पर चले ही नहीं, बल्कि हवा में कलाबाजियां, साइकिल चलाना, पुशअप्स करना, रस्सी पर लेट जाना जैसे कई अजब गजब करतब दिखाकर लोगों को हैरान कर रहे थे। बेईदी माउंटेन की ऊंचाइयों पर पेश किया गया ये रोमांचक शो सिर्फ एडवेंचर का प्रदर्शन नहीं, बल्कि चीन की सांस्कृतिक विरासत को नए अंदाज में दुनिया के सामने लाने की अनोखी पहल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब तक आपने बाजारों में खाने पीने और खरीदारी के स्टॉल तो खूब देखे होंगे, लेकिन अगर सड़क किनारे लगा एक स्टॉल आपको किसी भी जान बचाना सिखा दे, किसी की भी जान बचाना सिखाए, तो सुनने में कैसा लगेगा। चीन में इन दिनों ऐसे ही लाइफ सेविंग स्ट्रीट स्टॉल लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहां निःशुल्क CPR से लेकर घुटन की स्थिति में बचाव और घाव पर फर्स्ट एड देने की ट्रेनिंग दी जा रही है।
0: कोई CPR देना सिखा रहा है तो कोई घुटन से बचने का उपचार बता रहा है। सड़क किनारे लगे इन स्टॉल्स पर ना तो कोई सामान बेचा जा रहा है, ना ही किसी तरह की कोई नुमाइश हो रही है, बल्कि यहाँ लोगों को जिंदगी बचाने की कला सिखाई जा रही है। चीन के हेनान प्रांत के झेंगझोउ शहर में ये अनोखा लाइफ सेविंग स्ट्रीट स्टॉल लगा है, जिसके जरिए लोगों को मुफ्त में प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जा रही है। वॉलंटियर्स लोगों को CPR, गले में खाना फंसने पर अपनाई जाने वाली हाई मिलिख तकनीक, घाव पर पट्टी बांधने के सही तरीके और गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक और डूबने जैसी घटनाओं से बचाव के उपाय सिखा रहे हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई इन स्टॉल्स पर रुक कर जीवन बचाने का गुर सीखने में दिलचस्पी दिखा रहा है, क्योंकि अगर हर कोई ये समझ जाए कि आपात स्थिति में कैसे फर्स्ट एड देना है, तो एम्बुलेंस या डॉक्टर के पहुंचने से पहले किसी की जान बचाई जा सकती है। इन स्टॉल्स के जरिए समाज के हर व्यक्ति को लाइफ सेवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि सड़क हो या घर या फिर कोई पब्लिक प्लेस, कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। ऐसे में फर्स्ट एड की छोटी सी जानकारी भी किसी को जीवन दान दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: क्यूबा इन दिनों आर्थिक संकट, ईंधन की कमी और बिजली कटौती जैसी मुश्किलों से जूझ रहा है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच राजधानी हवाना के नेशनल जू से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने जू कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान लौटाती है। 4 बंगाल टाइगर के बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें एक बेहद ही दुर्लभ सफेद बंगाल टाइगर भी शामिल है। देखिए खास रिपोर्ट।
0: छोटे छोटे कदम, मासूम शरारतें और हर तरफ बिखरी जिंदगी की नई उम्मीद। हवाना के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में 4 बंगाल टाइगर के बच्चों का जन्म सिर्फ एक खुशखबरी नहीं, बल्कि मुश्किल दौर में उम्मीद की नई किरण बनकर आया है। जन्म के बाद सभी शावकों का वजन किया जा रहा है, उनकी सेहत की बारीकी से निगरानी रखी जा रही है ताकि उनकी बेहतर परवरिश सुनिश्चित की जा सके।
2: tratamos de garantizar los estándares de bienestar animal para la especie, el tigre bengala, con lo más alto posible en dependencia de las condiciones que tengamos.
0: कभी एक दूसरे के पीछे भागते, कभी उछलते कूदते, तो कभी अपनी माँ के इर्द गिर्द मस्ती करते, इन नन्हे शावकों की हर अदा जू कर्मचारियों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। उनके लिए ये सिर्फ 4 नए मेहमान नहीं, बल्कि मुश्किल दौर में उम्मीद की नई मुस्कान है। करीब 44 साल से जू में काम कर रहे एंजल पैची कॉरिडो के लिए ये पल किसी सपने के सच होने जैसा है। अपने लंबे करियर में दूसरी बार उन्होंने सफेद बंगाल टाइगर का जन्म देखा है।
3: muy difícil, muy intenso. En cuanto al bloqueo férreo que se nos ha impuesto y que ahora se ha recrudecido.
0: Zebra, दरियाई घोड़े, अफ्रीकन सवाना और अब इन नन्हे टाइगर शावकों की किलकारियां। मुश्किल हालात के बावजूद क्यूबा का ये जू एक संदेश दे रहा है कि अगर जज्बा और समर्पण मजबूत हो तो उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। चार नए मेहमानों की आमद ने न सिर्फ एक दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण की उम्मीद बढ़ाई है बल्कि ये भी साबित किया है कि चुनौतियों के बीच भी जिंदगी अपना रास्ता बना ही लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और कोचा के एक स्टूडेंट ने ऐसा स्मार्ट प्लांट पॉट तैयार किया है जो पौधों की जरूरतों को आसान तरीके से समझने में मदद करता है। ये स्मार्ट इमोशन पॉट सेंसर और टेक्निक की मदद से पौधे की स्थिति पर नजर रखता है और पानी, धूप या देखभाल की जरूरत होने पर मोबाइल पर इमोजी के जरिए अलर्ट भेजता है। इस अनोखे इनोवेशन का मकसद पौधों की देखभाल को आसान, रोचक और टेक्निक से जोड़ना है।
4: जरा सोचिए, अगर आपके घर का पौधा बोल पाता तो शायद आपको अपना हाल बताता और आप उसकी जरूरत को पूरा कर पाते। अब तक ये सिर्फ कल्पना थी, लेकिन कोटा के एक युवा इनोवेटर ने इस कल्पना को हकीकत में बदलने की पहल की है। आजाद पब्लिक स्कूल के छात्र और वेल्ट्रियोनेक्स स्मार्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक आर्यन सिंह ने ऐसा स्मार्ट इमोशन पॉट बनाया है जो पौधों की खामोशी को इमोजी की भाषा में बदल देता है।
5: जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जान आ गई है, जहाँ पे प्लांट जो है अपने इमोशन शो कर सकता है कि हाँ उसको प्यास लगने में वो रो रहा है, अंदर रहने पे अगर अकेला है तो उसको डर लग रहा है, या मोशन सेंस कर रहा है तो डर लग रहा है, नाइट में वो सो रहा है, तो जहाँ पे हम उसको देख सकें कि वो एक हमारा फ्रेंड है, हम एज अ फ्रेंड ट्रीट कर सकें उसको।
4: आज के दौर में लोग बड़े जोश से पौधे तो घर ले आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद भागदौड़ भरी जिंदगी में वही पौधे एक कोने में अकेले छूट जाते हैं। पौधों को कभी समय पर पानी नहीं मिलता, कभी धूप नहीं मिल पाती। जब पौधा मुरझाने लगता है तब हमें पेड़ों की तकलीफ पता चलती है। इसी प्रॉब्लम के हल के तौर पर आर्यन को इस स्मार्ट गमले का आइडिया आया।
5: क्या हमने कि कुछ ना कुछ एक ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि वो किसी इंसान से इंटरेक्ट करते हैं, कर सके। जैसे कि हमें पता है आज इंसान आपस में बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो जाता है, लोग एक दूसरे से काफी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो ये हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा प्लांट के साथ किया जाए ताकि उसको एज अपना फ्रेंड ही उसको ट्रीट करें और अपनी सारी बातें उसको शेयर कर सकें, उसके इमोशन देख सकें कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है हर एक चीज में।
4: ये सिर्फ एक स्मार्ट गमला नहीं बल्कि एक डिजिटल प्लांट कंपेनियन है। इसमें लगे सेंसर मिट्टी में नमी, पौधों के हिसाब से तापमान, पानी की जरूरत और रोशनी की आवश्यकता को भाप लेते हैं और ये स्मार्ट गमला अपने एक्सप्रेशन से हमें पौधों की जरूरत के बारे में बता देता है। जैसे जैसे पौधे की जरूरत बदलती है वैसे वैसे स्क्रीन पर उसके चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं।
5: ध्यान में रखकर इसको बनाया, इसके अंदर अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं जो कि अलग अलग चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर मॉइस्चर लेवल या मॉइस्चर या वाटर लेवल है तो उसको वो सेंसर देख रहा है, मोशन को मोशन सेंसर डिटेक्ट करने के लिए कर रहा है कि उसके साथ अगर कोई है, तो उसको पूरा बच्चों से फ्रेंडली बनाया है कि अगर वो इतना अभी से ही उतना केयरिंग बन जाते हैं तो आने वाले टाइम पे कुछ वो बेटर आउटपुट दे सकते हैं इस एनवायरमेंट को।
4: आज की पीढ़ी मोबाइल और गैजेट्स के साथ तो जल्दी जुड़ रही है, लेकिन प्रकृति से उनका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में ये स्मार्ट इमोशन पॉट इंसानों और पौधों के बीच दोस्ती का पुल बन सकता है। आर्यन का कहना है कि आने वाले समय में इस स्मार्ट इमोशन पॉट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और API मॉडल से और स्मार्ट बनाया जाएगा ताकि भविष्य में ये सिर्फ चेहरे के भाव ही ना दिखाए बल्कि यूजर से बात भी कर सके। कोटा से चेतन गुर्जर, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए बात इंस्टा स्टोरी की कर लेते हैं और आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए विकास ग्रोवर की फनी इंस्टा स्टोरी।
6: मेरे प्यार में वो इतना पागल है, दो बार मेरे हाथ की नसें भी काट चुका है।
7: तुम्हारे हाथ की नसें क्यों काट चुका है भाई?
6: प्यार में पागल है ना,
7: तो अपनी नसें क्यों नहीं काटता?
6: इतना भी पागल नहीं है।
8: मैं कब से पूछ रही हूँ कि आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बस मुझे ही देखे जा रहे हो, कुछ बताते क्यों नहीं।
1: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
10: क्या आपको नींद आने में परेशानी होती है? क्या बेवजह की चिंताओं की वजह से आपको नींद नहीं आती? क्या आलस्य तो बना रहता है लेकिन नींद कभी पूरी नहीं हो पाती? कौन से ग्रह हैं नींद के लिए जिम्मेदार और अच्छी नींद के क्या हैं ज्योतिषीय उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
11: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
12: To right field, and it will leave.
11: From the first pitch of the season to the stretch run,
12: and that's the ball game.
11: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
13: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: Thank you.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति भवन में ऐतिहासिक स्वागत, आसमान में फाइटर जेट्स ने की अगवानी, ब्रह्मोस की सबसे बड़ी झील पर होगी बात। भीषण बारिश के चलते आज भी मुंबई में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, सड़क रेल और हवाई सेवा प्रभावित, सावधानी बरतने की अपील। भारी बारिश के दौरान मुंबई पुणे हाईवे पर लोगों को बड़ी राहत, लैंडस्लाइड के कारण करीब 18 घंटे बंद रहे, मिसिंग लिंक की 2 लेन यातायात के लिए खोली गई। दिल्ली में आज गृहमंत्री अमित शाह करेंगे वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन, पर्यावरण संरक्षण के लिए 70 लाख पेड़ लगाने का है लक्ष्य। देवभूमि उत्तराखंड में बारिश के बीच धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। आज भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मैच, भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे नॉटिंगम में शुरू होगा मैच।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे आपकी नींद के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को बढ़िया नींद आती है, कुछ को नींद के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो दवाइयां भी खाते हैं फिर भी उन्हें नींद नहीं आती है। तो नींद के पीछे ज्योतिष के कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और नींद लाने के अच्छे उपाय क्या हैं, इस विषय पे चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:24 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम के 4:24 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 7 जुलाई

राशि फल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं नींद के बारे में, यानी निद्रा के बारे में। निद्रा हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको नींद आएगी या नहीं आएगी इसमें भी ग्रहों की बड़ी भूमिका है। क्या भूमिका है? नींद व्यक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यक आवश्यकता है। जीव के चार लक्षण हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो आहार के बाद सबसे महत्वपूर्ण है निद्रा, यानी नींद। बिना नींद के या कम नींद के हम कई बीमारियों और समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। ज्योतिष में लग्न, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव से नींद और शैया सुख देखा जाता है। मुख्यतः द्वादश भाव से बेड कंफर्ट देखते हैं। शनि नींद का सबसे प्रमुख ग्रह है। आपके दिमाग में जो नींद के एंजाइम्स होते हैं, हिप्नोटिक एंजाइम हैं, वो शनि पैदा करते हैं। इसके अलावा चंद्रमा, शुक्र और बुध भी नींद से संबंध रखते हैं। जो जल की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, और जो वायु की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, ये नींद की राशियां हैं। इसीलिए जो जल की राशियों के लोग हैं या जो वायु की राशियों के लोग हैं, उनको नींद सामान्य से ज्यादा आती है। नींद पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काम में समस्या हो सकती है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। अचानक धन का लाभ होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा। करियर में लाभ यानी फायदा होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, प्रियजन से मुलाकात होगी। मान सम्मान मिलेगा। काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बड़ी अच्छी और गहरी नींद आती है। तो नींद कब किसको अच्छी आती है? अगर कुंडली शनि प्रधान है, शनि की सिचुएशन कुंडली में ठीक है,
तो व्यक्ति को अच्छी नींद आती है।

चंद्रमा, शुक्र या बुध में से एक भी अगर कुंडली के अच्छे स्थान पर बैठा है तो नींद अच्छी आएगी। केंद्र में या अष्टम भाव में केवल शुभ ग्रह अगर हो तो भी जीवन में अच्छी नींद आती है। अगर कुंडली में जल तत्व के ग्रह मजबूत हों, जल की राशियां मजबूत हों, तो आपको जीवन में आराम मिलेगा, नींद अच्छी आएगी। कर्क, वृश्चिक, मीन यानी जल की राशियां, मिथुन, तुला और कुंभ यानी वायु की राशियां, इन राशि के लोगों को सामान्यतः अच्छी नींद आती है। जिनके घर के पास जल का स्रोत होता है, पानी होता है, या जिनके घरों के पास जंगल या पहाड़ होते हैं, ऐसे लोगों को भी सामान्यतः अच्छी नींद आ जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नींद के लिए दवाइयां खानी पड़ती हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दवाइयां तो खाते हैं लेकिन दवाई खाने के बावजूद भी नींद नहीं आती। तो नींद आने में कब समस्या होती है? अगर शनि दूषित होगा तो आप हर समय आलस्य में डूबे रहेंगे, लेकिन आपको गहरी नींद नहीं आएगी। चंद्रमा या शुक्र अगर पीड़ित होंगे तो अकारण बिना वजह के आप करवट बदलते रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। अगर बुध पीड़ित हो गया, चंद्र भी गड़बड़ है, बुध भी पीड़ित हो गया, तो तनाव की वजह से, चिंता की वजह से आपको नींद नहीं आएगी। अगर कुंडली अग्नि तत्व प्रधान हो, कुंडली में फायर की मात्रा ज्यादा हो, या पृथ्वी तत्व प्रधान कुंडली हो, तो भी नींद आने में मुश्किल होती है। मंगल की प्रचंडता जब कुंडली में होती है तो शरीर में दर्द है, घाव है, कष्ट है, तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ की वजह से नींद नहीं आती। रात भर पैरों में, शरीर में दर्द होता रहता है, आदमी दर्द और कष्ट की वजह से सो नहीं पाता है। नींद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, करियर में लापरवाही ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, अनाज का दान कर दें
तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में आपके लाभ होगा, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी और गहरी नींद आए तो अच्छी नींद के उपाय क्या हैं? जो आपके बेडरूम का रंग है, सोने के कमरे का रंग क्रीम, हल्का हरा या गुलाबी या सफेद रखिएगा। अपने बेडरूम में जिस पलंग पर आप सोते हैं उसका भी बहुत ध्यान रखिए। इसके अलावा कमरे में हल्की सुगंध हो तो अच्छा है। पलंग के नीचे कोई भी सामान मत रखिए, खास तौर से लोहे की वस्तु अपनी पलंग के नीचे ना रखें। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में गंदे कपड़े भी मत रखिएगा। और अगर आपको नींद आने में दिक्कत होती है तो गले में चांदी जरूर पहनिए। लाल तिलक का प्रयोग मत करिएगा, लाल रंग का तिलक लगाने से एनर्जी लेवल ताकतवर होता है, जिनको नींद में दिक्कत है उनकी दिक्कत बढ़ेगी। रात को सोते समय अपने पलंग के पाए के पास, अपने सर के नीचे की तरफ जमीन पर लोटे में जल भर कर के रखिए खुला, और सुबह उठकर उस जल को पौधे में डाल दीजिए। जिस कमरे में थोड़ी बहुत सूर्य और चंद्रमा की किरणें आती हों उसी कमरे को सोने के लिए प्रयोग करिएगा। सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। नींद लाने में, मन को रिलैक्स करने में, गहरी नींद आने में ओपल के फायदे बहुत हैं। अगर आप ओपल उंगली में या गले में लॉकेट में पहनते हैं, लगभग हफ्ते 10 दिन में आपकी नींद की साइकिल रेगुलेट होने लगेगी। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको दवाई दी है तो डॉक्टर की सलाह से ही बंद करिएगा, खुद प्रैक्टिकल मत करिएगा। और जब आप सोने जाते हैं पलंग पर लेटने के बाद भगवान के किसी भी नाम का लगातार जप करते जाइए, आंखें बंद करके गहरी सांस के साथ। अगर आप ऐसा करें तो ऐसा करने से भी नींद का आना आसान होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा,
करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन

करियर में लाभ के योग बन रहे हैं लेकिन काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। तो आज हमने बात की नींद के बारे में, अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है आज का लकी टिप। रसोई घर में चूल्हा पानी के निकट, सिंक के निकट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रसोई घर में पानी और चूल्हा आसपास होंगे तो आपके घर में सेवक और सहायक नहीं टिकेंगे, मेड और सर्वेंट की समस्या आपको हमेशा परेशान करेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा और घर से निकलते समय उस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: हनुमान जी को गुरु कहा गया। और गुरु का काम जोड़ना, क्या काम है? सुग्रीव को राम जी से किसने मिलवाया, विभीषण को राम जी से किसने मिलवाया, बिछड़ी हुई माता जानकी जी को राम जी से किसने मिलवाया? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी को, हनुमान जी ने, इन सबको हनुमान जी ने ही मिलवाया। हम इतना ही कह सकते, यदि आप भी राम जी से बिछड़ गए हो तो आपको भी हनुमान जी मिलवाए। ये पक्का है, ये पक्का है। और हनुमान जी जिसकी गारंटी ले ले, राम जी को उसका डाटा चेक नहीं कर। हाँ, जिसकी गारंटी हनुमान जी दे दें तो ये आदमी ठीक है, पर क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता। हाँ, ये पक्का है। विभीषण की गारंटी हनुमान जी ने ली, वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वरना वेरिफिकेशन होता तो पता ये चलता कि जो शत्रु है उसका भाई है। बोले जो दुश्मन है उसका भाई है, और दुश्मन का भाई दुश्मन के ही समान, इस पे भरोसा करने लायक नहीं। पर हनुमान जी बोले नहीं नहीं, हमारी गारंटी। राम जी बोले हनुमान जी की गारंटी है, बस बस छोड़ो छोड़ो। और हमें लगता कि हनुमान जी ने सुग्रीव की गारंटी ली, पर बुरा ना मानना, सुग्रीव से बेहतर बाली था। आप ये सुन के बड़ा चौंकेंगे, सुग्रीव से बेहतर बाली था। ये बात बहुत अप्रमाणित नहीं, बहुत प्रमाणित हम आपको कह पा रहे। सुग्रीव से जब राम जी मिले तो सुग्रीव क्या कहता? सुग्रीव कहता कि मंत्रिन सहित सहित एक बारा, एक बार हम मंत्रियों के सहित यहां बैठे थे, कोई नारी होती हुई चली जा रही थी, ऊपर से उसने कुछ आभूषण नीचे फेंके हैं, यदि आप कहो तो मैं दिखाऊं। भगवान बोले हां दिखाओ। अब वो आभूषण माता जानकी जी के। तो राम जी बोले तुमने किया क्या? बोले हमने कुछ किया तो नहीं, हम तो विचार कर रहे थे कि ये स्त्री को ले जा रहा है। तो लक्ष्मण जी बोले तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? बोले हम क्यों बोले, उनका उनका मामला, क्या मसला, काय को लफड़े में फंसे।
1: ऐसे बहुत लोग होते हैं, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग कहते हैं।
0: ये ना नंबर एक के स्वार्थी। आजकल लोगों के अंदर यही सबसे बड़ी दिक्कत हो गई, क्यों लफड़ों में फंसे। अरे भाई, मानवता भी तो कुछ होती है। आजकल आदमी कोई किसी का साथ नहीं देता। हम बैठे थे, भोजन पा रहे थे, तो हमारी मां, मनीला वाली मां, फिलीपींस वाली मां, कह रही थी रोमा मां कि आजकल उसको कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ। हम प्रैक्टिकल, क्यों लफड़ों में फंसे।
1: अरे धत तेरे की ठटरी बराए ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ।
0: तुम सत्य को सत्य ना बोल पाओ तो तुमसे बेहतर तो रामचरित मानस का जटायु है। सुग्रीव से बेहतर जटायु था कि रावण ले जा रहा था, तब उसने रोती है खबरदार रावण, खबरदार, किसी अबला स्त्री को, अकेली स्त्री को ले जा रहा, सावधान, मैं जटायु जरूर हूं पर ले जाने नहीं दूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। जब तक सच में जटायु जमीन पर नहीं गिर गया तब तक लड़ता रहा रावण से। तो जटायु बेहतर है सुग्रीव से। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि आप कई बार बहुत कड़वी बातें बोल जाते हैं, यदि ना बोलेंगे तो शास्त्र हमको जीने नहीं देगा। साधु का धर्म है न्याय संगत बात करना, सत्य को सत्य बोलना, ये साधु का धर्म है। और उनसे तो बेहतर है जो नहीं बोलते। और ऐसे लोग जरूर कान खोल करके बात को सुने कि हम क्यों लखनऊ में पड़े, हम क्यों बोले। कई बार कुछ हो जाता, घटना हो जाती, भैया हमने नहीं देखा, उसने पूरा देखा, हमने कौन कोर्ट में जाए, कौन गवाही दे, उसकी दो गवाही दे देने से जिसने कांड किया है कम से कम उसको सजा तो मिल जाएगी, अपराधी को सजा तो मिलेगी। पर आज ये सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कोई किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, इसलिए तो अपराध बढ़ गए। देखते जा रहे हैं, अपराध होते जा रहे हैं, आदमी चुप है। बुरा ना मानना, ये धर्म नहीं है, नैतिकता नहीं है, मानवता नहीं है। मानवता ये है यदि तुम्हारे कहने से सत्य उजागर हो सकता है तो कह देना चाहिए। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया सुग्रीव के ऊपर, तो बाली से बेहतर, अब सुग्रीव से बेहतर बाली। लेकिन सुग्रीव को राम जी मिले, बाली को ना मिले, बाली को तो मारा। कारण सिर्फ एक था, हनुमान जी। हनुमान जी कारण थे क्योंकि सुग्रीव का पक्ष लिया। तो सुग्रीव ने तो कुछ नहीं कहा। माता जानकी जी जब जा रही थी कुछ नहीं कहा, सुग्रीव तो बोले ही नहीं। और बाली यदि हमसे, हमने आपको प्रारंभ में कहा कि हम बाली बेहतर मानते, आप कहेंगे कि आप बड़ी अजीब कथा सुना रहे हैं।
1: नहीं, बाली बेहतर,
0: बाली ये हमने जो संतों से सुना वो बात कह रहे, हम कोई अपनी मन की बात नहीं कह रहे, संतों से जो हमने सुना, महापुरुषों से जो सुना उसकी बात कह रहे। बाली ने भी भगवान से कहा।

बाली को मारा, राम जी का बाण बाली के हृदय में लगा, छाती में, सीने में, तो गिर पड़ा। तो भगवान पहुंच गए। जैसे ही भगवान सामने गए तो बाली कहता, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं आपका बैरी कैसे हो गया और सुग्रीव कैसे प्रिय हो गया? आप तो समदर्शी, सबको समान देखते हो, पर मैं आपका दुश्मन कैसे हुआ? तो भगवान ने बहुत दलीलें दी, तर्क दिए, पर बाली पहली बार भगवान के तर्क खारिज किए, बाली और इतने खतरनाक किए कि राम जी भी लगा कि जीतना मुश्किल है। हाँ, भगवान ने जो तर्क दिए जरा वो सुनना। भगवान ने तर्क क्या दिया? भगवान ने कहा, पहली बात तो ये है, अनुज बधू भगिनी सुतना

चार बेटी के समान स्त्रियां होती हैं। बाली बोला कौन कौन? राम जी बोले सुनो, अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधू भगनी यानी बहन, सुतनारी यानी बेटा की पत्नी, और बेटी, ये चार बेटियों के समान होती हैं। इनके ऊपर कुदृष्टि डालने वाला बेटी के ऊपर कुदृष्टि डालने जैसा पाप पाता है। और तुमने अपने भाई की पत्नी का को अपने पास रख लिया, रोमा को, अपनी भाई की पत्नी को अपने पास रख लिया, ये तुमने अपराध किया कि नहीं किया? ऐसी राम जी कह ही रहे थे कि वो धीरे से बोला, बाली बेट रुको रुको रुको रुको, पहली बात तो अनुज बधु जो है, हमने अपनी भाई की पत्नी को रखा, हमने कैसे रखा ये हमें पता। दूसरी बात, ये जो कायदे हैं ना आपके में चलते हैं, हमारे में नहीं चलते। राम जी बोले मतलब? मुस्कुरा करके बाली कहता है लेटा लेटा कि आप नर हो हम मानव, और हर समाज का नियम अलग अलग होता है, और महाभारत में भी ये नियम था, पांच पांडवों की एक पत्नी थी, पांच पति हो सकते, और राजाओं का ऐसा नियम था कि राज सत्ता में अनेक पत्नियां बहु पत्नियां हो सकती, दशरथ जी के ही तीन रानियां थी, तो समाज की बात है अपने अपने। अच्छा उस नियम में फिर कानून भी कुछ नहीं बोलता, अपने अपने समाज का नियम होता है। तो राम जी से बोले सुनो, अपने अपने समाज की बात है, ये हमारे समाज में ऐसा चलता है। राम जी बोले ठीक है, मान लिया, मैं पहली बार लगा के हमारी दलील विफल हो गई। तो राम जी ने दूसरी दलील दी, मूढ़ तो ही ए मूर्ख। बाली बोला हां बोलो।

0: अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, ये भी गलती की। बाली से भगवान दूसरी बात करें, दूसरी गलती की, क्या? अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। तो बाली बोला, हमारी पत्नी ने क्या बोला? बोले वाह, जब तुमको सुग्रीव ललकार रहा था तो तुम्हारी पत्नी कह रही थी ना तारा, नाथ बाहर मत जाओ, ये सुग्रीव नहीं ललकार रहा, अंगद अभी अभी बता रहा था कि कोई वनवासी से इसकी दोस्ती हो गई है, कोई राम है उनसे दोस्ती हो गई है, तो ये अपने बल पे नहीं ललकार रहा, राम के बल पर ललकार रहा, मत जाओ। बाली बोला, पहले एक बात बताओ, ये हमारी पति पत्नी की बातें आपने सुनी कैसे? राम जी बोले, तुम्हें पता है हम कौन है? बाली बोले, बताओ कौन है? बोले, हम अखंड ब्रह्मांड नायक है, कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहे ग्राम बिनु वास असेखा, अस सब भात अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं मरनी। है रामचरितमानस, इसमें निराकार ब्रह्म के बारे में कहा कि बिन पद चले सुने बिन काना, बिना पैरों के चलता बिना कानों के सुनता, तो हम वहां थे और हमने सुन लिया।
1: बाली बोला, थैंक यू। भगवान बोले, मतलब?
0: बोले, कम से कम आपने एक्सेप्ट तो किया कि आप भगवान हो, अब हमको संतुष्टि हो गई कि भला। बाली बोला, प्रभु आपने चलो सुन मान लिया हमने, तो आपने ये नहीं सुना कि हमने कुछ कहा था?
1: भगवान बोले, क्या कहा था? बोले, बा
0: आपने सुना तो आपने वो नहीं सुना। बोले, क्या?
2: कहे बाली सुनो भीर प्रिय समदर्शी भगवान,
0: जब हमारी पत्नी ने कहा कि मत जाओ बाहर, वो वनवासी राम जी हैं भगवान, वो सुग्रीव की तरफ से लड़ने के लिए आए हो, तुम मारे जाओगे, तो आप कह रहे कि पत्नी की बात क्यों नहीं मानी, तो हमने ये भी तो पत्नी को कहा था कि यदि भगवान राम आए हैं तो वो समदर्शी हैं, समानता से देखेंगे, न उनको बाली प्रिय होगा न सुग्रीव प्रिय होगा, दोनों समान। इसलिए कारण कवन नाथ मुई मारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, इसलिए तो हम बाहर आए कि आप समदर्शी होगे, लेकिन बाहर आके पता लगा आपने बाण मार दिया, आप समदर्शी नहीं।
1: भगवान, अब भगवान को लगा ये भी दलील खारिज,
0: ये भी दलील गई। तो भगवान बोले, रोको,
1: हमारे ऊपर बहुत आरोप लगा लिए, अब हमारी भी सुनो।
0: क्या? भगवान बोले कि तुमने जो दूसरी प्रार्थना की थी हमने वो सुनी। बाली बोला, हमने दूसरी प्रार्थना कौन सी की? बोले, वाह, आपने अपनी पत्नी को एक बात बोली थी ना। बोले, क्या? जो कदापि मोहि मारिहि, यदि वो हमको मार भी दे, जो कदापि मोहि मारी है तो मैं हूं सनाथ, मैं अनाथ हूं, यदि राम जी मुझे मार दें तो हे पत्नी तुम मुझे समझना, मैं सनाथ हो गया, अनाथ नहीं रहा, सनाथ हो गया। भगवान बोले, तुमने ये जो प्रार्थना की उसी प्रार्थना के लिए हमने बाण मारा।
1: बाली बोला, गजब न्याय है आपका,
0: पहली वाली सुनी नहीं, लास्ट वाली मान ली। वाह प्रभु वाह वाह, मतलब हमने मारने वाली बात कही कि जो कदापि मोहि मार है तो मैं हूं सनाथ, ये सुन लिया आपने, और ऊपर वाली सुनी नहीं कि समदर्शी रघुनाथ, ये सुनी नहीं, मारने वाली जल्दी सुन ली। वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह, अब हम समझ गए, हम समझ गए,
2: मैं बेरी सुग्रीव प्रिया,
0: हम समझ गए आपको, मैं बेरी हूं सुग्रीव प्रिय। भगवान बोले, बाली ऐसा है, ज्यादा दुखी हो तो मेरे पास एक उपाय है। बोले, क्या? हम अभी तीर बाहर निकाल के फिर से अमर होने का वरदान दे देते, लो ठीक है, अब ठीक है।
1: बोले, अब रहने दो, अब नहीं हमें जीना है।
0: क्यों? बोले, जिस मौत के लिए बड़े बड़े महात्मा तप करते हैं वो हमको ऐसे ही मिल गई ऑटोमेटिक, अब काय को बे फिजूली में, अब जो है ये मौका गवाएं। बात भी सही है, रामचरितमानस में ऐसा लिखा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, अंत समय राम नहीं कहे आता, जन्म जन्म अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जतन कराते पर अंत में राम कहां कही आता है। और बोले, हमारे तो सामने, हम लोग जब कीर्तन गाते तो भगवान से क्या प्रार्थना करते।

0: लेकर मेरे प्राण तन से निकले हैं, इधर नाम क्या लेना, तुम ही सामने खड़े हो। जिस नाम को लेकर प्राण निकलने की प्रार्थना स्तुति बड़े बड़े महात्मा करते हैं, तब जाकर के उनको भी ये अवसर सौभाग्य प्राप्त नहीं होता और हमको ऑटोमेटिक मिल गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक काम जरूर करो आप।
1: भगवान बोले बताओ। बोले एक नहीं दो।
0: भगवान बोले दो बताओ।
1: पहली बार हारे हैं भगवान,
0: दो बताओ। बाली कहता प्रभु पहला वरदान दो कि हमें भक्ति मिले आपके।
1: बोले वाह क्या बढ़िया वरदान।
0: अच्छा कुछ और मांगते तो भगवान और कुछ जल्दी दे देते, भक्ति थोड़ा देरी से देते।
1: पूछो क्यों, पूछो क्यों?
0: क्योंकि कुछ और मांगने में व्यक्ति फंसता और भक्ति देने में भगवान फंसते। ये घाटा है। तो भगवान इसलिए किसी को कुछ और मांगे कोई कि भाई कुछ और मांगो तो वो जल्दी दे देते हैं। भाई संतति मानो, मांगो संपत्ति, मांगो बहुत बढ़िया है, मांगो मांगो बेटा मांगो। क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए, संतति चाहिए, घरवाली चाहिए, वाइफ, हाँ लो लो लो लो लो। क्या चाहिए? हस्बैंड, बहुत बढ़िया, मांगो मांगो मांगो, लो लो लो। पद चाहिए, कद चाहिए। पर कोई कह दे कि आप भक्ति चाहिए, मतलब आप चाहिए, वो थोड़ा खतरा होता है। क्योंकि अगर भक्त कोई भगवान का सेवक संपत्ति मांगता है तो उसको नाचना पड़ता, लेकिन कोई भक्ति मांगता है तो भगवान को नाचना पड़ता है, भगवान को नाचना पड़ता। और सच भी यही है, जब आप भागवत पढ़ो तो भागवत में ऐसा वर्णन आता है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाई निरंतर ध्यावे, ताही अहिर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहिर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो भगवान को नाचना पड़ता है यदि कोई भक्ति मांगे तो। उस बाली ने पहला वरदान क्या मांगा? भक्ति दो और मुक्ति तो हमें हो ही जानी। किसी ने कान में बाली के कहा कि मुक्ति मांग। बोले अब इनके मरने से ही मुक्ति ना मिलेगी तो कहां मिले। बोले वो नहीं मांगा, भक्ति दो। तो पहला वरदान भक्ति दो।
1: भगवान बोले भक्ति दी।
0: दूसरा बोले हमारी जो संतति है।
1: बोले कौन? बोले बेटा इसको अपनी सेवा में लगा।
0: ये वरदान बाली का गजब का था। पूरी दुनिया में ऐसा कोई वरदान किसी ने नहीं मांगा हो जो बाली ने मांगा। पहला तो भक्ति दो और दूसरा हमारी संतति को अपनी सेवा में लगा लो। प्रायः लोग क्या कहते हैं, हम दान पुण्य कर रहे हैं, बेटा तू बिजनेस कर, तू धंधा कर, तू इन लफड़ों में मत पड़, बाबा जी के चक्कर में मत पड़, बागेश्वर वालों के चक्कर में मत पड़,
1: हम इनसे निपट लेंगे, हम बात करते हैं, हम तेरे लिए कुछ करते, पूजा पाठ कराते हैं, तू धंधा कर धंधा कर।
0: लेकिन पहला बाली चतुर आदमी है जो कहता, हे प्रभु, हे नाथ, आपने हमें सनात कर ही दिया है, अब हमारे बालक अंगद को अपनी सेवा में लगा लो, अपनी चरणों की सेवा में लगाओ। ये अद्भुत है, कोई अपनी संतति को भगवान की भक्ति में लगाने का वरदान मांगे, समझना वो ऊंचे खानदान का आदमी है। ये फायदे का सौदा है। तो इस दृष्टि से यदि बाली के इस वृतांत को सुना जाए तो सुग्रीव से बेहतर बाली है कि नहीं है? है। लेकिन भगवान ने साथ किसका दिया? क्यों? एक कारण है। सुग्रीव और विभीषण के जीवन में यदि राम जी का प्रभाव आया, राम जी आए, उसका एकमात्र कारण हनुमान जी है। हम आपसे कहना यह चाह रहे थे जब सुग्रीव के हनुमान जी के कारण सुग्रीव को हनुमान राम जी मिल सकते,
1: तो हनुमान जी के कारण तुमको भी राम जी प्राप्त हो सकते।

0: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: Right field, and it will.
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: खबरें तो समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब
10: खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
17: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से भाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनु जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
22: इंडोनेशिया में पीएम मोदी का राष्ट्रपति भवन में ऐतिहासिक स्वागत, आसमान में फाइटर जेट्स ने की अगवानी, ब्रह्मोस की सबसे बड़ी डील पे लगी मोहर। रक्षाबंधन पर दिल्ली में महिला समृद्धि योजना होगी लागू, आर्थिक रूप से कमजोर 21 से 60 वर्ष के पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। भीषण बारिश के चलते आज भी मुंबई में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, सड़क रेल और हवाई सेवा प्रभावित, सावधानी बरतने की अपील। भारी बारिश के दौरान मुंबई पुणे हाईवे पर लोगों को बड़ी राहत, लैंडस्लाइड के कारण करीब 18 घंटे बंद रही मिसिंग लिंक की 2 लेन यातायात के लिए खोली गई। आज भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे नॉटिंगम में शुरू होगा ये मैच।

अमरनाथ यात्रा का आज पांचवा दिन, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बालटाल और पहलगाम बेस कैंप में जुटे तीर्थयात्री। अमरनाथ यात्रा के लिए देश विदेश से पहुंच रहे तीर्थयात्री, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है यात्रा मार्ग। अमरनाथ यात्रा में पिछले साल के मुकाबले इस साल श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ी, 4 दिन में 65,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। तीर्थयात्रियों की बढ़ती तादाद के कारण 9 जुलाई तक सभी रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुक, बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों से अपनी यात्रा कुछ दिन आगे बढ़ाने की गई है अपील। इस साल 57 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा, अब तक 4,00,000 श्रद्धालुओं ने कराया अपना रजिस्ट्रेशन। कोलकाता में दुर्गा पूजा उत्सव की तैयारियों का हुआ शुभारंभ, पारंपरिक ढोल की गूंज के साथ हुआ खुंटी पूजा अनुष्ठान। कोलकाता के मशहूर चोर बागान दुर्गा पूजा समिति में भव्य समारोह, दुर्गा पूजा उत्सव का काउंटडाउन शुरू। दुर्गा पूजा उत्सव से जुड़े समारोह में इस साल के थीम अकाल बोधन का अनावरण किया गया, रामायण के प्रसंग से प्रेरित है ये थीम। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित विशाल कलाकृति का अनावरण भी किया गया। दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान पंडाल में भी किया जाएगा इसका प्रदर्शन। इस बार पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव की भव्य तैयारियां, 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक मनाया जाएगा मुख्य उत्सव। हरिद्वार के कनखल में श्री गुरु गोरखनाथ अलक अखाड़ा परिषद ने 11 संतों का पटाभिषेक किया, संतों ने उन्हें धर्म सेवा का संदेश दिया। फूलों की बारिश के बीच हुआ यह समारोह, महामंडलेश्वरों को चादर विधि से सम्मान दिया। नए महामंडलेश्वरों से सनातन धर्म गायों की रक्षा और लोगों की मदद करने के लिए कहा गया, संतों ने आशीर्वाद देकर उनकी नई जिम्मेदारी सौंपी। श्री गुरु गोरखनाथ अलक अखाड़ा परिषद ने 51 महामंडलेश्वर बनाने का संकल्प लिया है, अब तक 41 बनाए जा चुके हैं महामंडलेश्वर। अखाड़ा परिषद बाकी 10 महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी कर रहा है, ये काम कुंभ से पहले पूरा करने की है योजना। जामनगर के लाठीदड़ से देवभूमि द्वारका तक निकाली गई गौ माता वेदना पद यात्रा, इस पैदल यात्रा में 21 गौ माता हुई शामिल। लगभग 19 दिनों की यात्रा के बाद 21 गायों का झुंड पहुंचा द्वारकाधीश के दरबार, जय गौ माता जय द्वारकाधीश के नारों से गूंज उठा पूरा परिसर। गौ माता की सुरक्षा सम्मान का संदेश देने के लिए आयोजित की गई थी खास यात्रा, गायों के लिए की गई द्वारकाधीश के दर्शन की विशेष व्यवस्था। अमरावती में पांडव गुफा के नाम से मशहूर पवित्र प्राचीन गुफा आज भी श्रद्धालु की अटूट आस्था का है केंद्र, मान्यता के अनुसार महाबली भीम ने यही किया था कीचक कवच। इसी गुफा में है करीब 400 वर्ष पुराना मां दुर्गा का मंदिर, मां के दरबार और भगवान शिव के शिवलिंग का जलाभिषेक करती है पहाड़ के चट्टानों से निरंतर बहने वाली प्राकृतिक जलधारा। देवभूमि में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14,50,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी, रोजाना लगभग 9,000 से 10,000 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच के भगवान बद्री विशाल के कर रहे हैं दर्शन। मॉनसून सक्रिय होने के बावजूद श्रद्धालु की आस्था अडिग, जुलाई के पहले हफ्ते में भक्तों की संख्या 14,50,000 के पार पहुंचना लोगों की अटूट आस्था का उदाहरण। मॉनसून के चलते बद्रीनाथ में उफान पर अलकनंदा नदी, राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ जगह लैंडस्लाइड से यातायात हुआ प्रभावित, सीमा सड़क संगठन की टीम ने फंसे वाहनों को निकाला। मौसम की परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है प्रशासन, श्रद्धालुओं से मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की जा रही है अपील। धर्मशाला में दलाई लामा का 91वां जन्मदिन मनाया गया, स्यूलाखांग मंदिर में प्रार्थना और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। तिब्बती समुदाय ने दलाई लामा को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, लोगों ने पूजा पाठ और पारंपरिक प्रस्तुतियों में लिया हिस्सा। धर्मशाला में दलाई लामा के जन्मदिन पर उत्सव का माहौल, तिब्बती समुदाय के लोगों ने मिलकर समारोह आयोजित किया। तिब्बती समुदाय ने ऊटी में 14वें दलाई लामा का 91वां जन्मदिन मनाया, लोगों ने उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। लेह में दलाई लामा का 91वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, चोगल मसर के जीवेत्सल में लोगों ने

0: प्रार्थना कार्यक्रमों के साथ जश्न मनाया। डल लेक में पर्यटकों की रौनक बढ़ी, श्रीनगर में पर्यटन सीजन ने पकड़ी रफ्तार। शिकारा शहर का लुत्फ उठाते पर्यटकों से झील हुआ गुलजार, वहीं पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर दिख रही है खुशी। देश विदेश से पहुंचे सैलानी झील की खूबसूरती का ले रहे हैं आनंद, डल लेक बनी पर्यटकों की पहली पसंद। डल लेक में बढ़ती चहल पहल ने पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया, शिकारा शहर से यादगार बन रहे हैं पर्यटक। शिकारा और स्थानीय कारोबार से जुड़े लोगों में दिख रहा है खासा उत्साह, पर्यटकों की लगातार बढ़ती आमद से होटल व्यापारी भी खुश। मुंबई में आज भी तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी, सभी स्कूल कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी घोषित। मुंबई में भारी बारिश के चलते सड़क रेल और हवाई सेवा हुई प्रभावित, लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह, आपात हालात में हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की अपील। दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया 2 दिन का येलो अलर्ट, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में अगले 2 दिन जमकर बरस सकते हैं बादल। गुजरात छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। भारी बारिश के दौरान मुंबई पुणे हाईवे पर लोगों को बड़ी राहत, लैंडस्लाइड के कारण करीब 18 घंटे बंद रहने के बाद मिसिंग लिंक की 2 लेन यातायात के लिए खोली गई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में लगातार 4 दिनों से मूसलाधार बारिश, नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा, उल्हास नदी में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। सूरत में भारी बारिश के कारण पानी जमा होने से स्कूल में फंसे 7 टीचर और 12 छात्र, फायर ब्रिगेड की टीम ने किया उनका रेस्क्यू। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से कई इलाकों में हुआ जल भराव, मौसम विभाग ने अभी और बारिश का अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के डोरा में भारी बारिश के कारण बाढ़ से नेशनल हाईवे 244 हुआ बंद, राहत और बचाव में जुटी टीम। अब पौधे भी बताएंगे अपनी भावनाएं, कोटा के छात्र आर्यन सिंह ने बनाया स्मार्ट इमोशन पॉट। ये स्मार्ट इमोशन पॉट पौधे की स्थिति को इमोजी के माध्यम से करता है प्रदर्शित, ताकि कोई व्यक्ति आसानी से समझ सकते हैं कि पौधे को इस समय किस तरह की देखभाल की जरूरत है। इस अत्याधुनिक स्मार्ट पॉट में लगाए गए हैं सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट एंड वाटर लेवल जैसे आधुनिक सेंसर, जिसके आधार पर डिजिटल स्क्रीन पर बदलते हैं पौधे के चेहरे के भाव। ये सिर्फ एक स्मार्ट गमला नहीं बल्कि एक डिजिटल प्लांट कंपेनियन है, जिसका उद्देश्य पौधों और इंसानों के बीच भावनात्मक रिश्ता मजबूत करना है। अब रोज दौड़ेगी बरहमपुर सूरत अमृत भारत एक्सप्रेस, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर दैनिक सेवा का किया शुभारंभ। आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 नॉटिंघम में खेला जाएगा मैच। आज के मैच के समय में हुआ बदलाव, भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा यह मैच, 9:30 पर होगा टॉस। 5 मैचों की सीरीज में भारत जीत का खाता खोलने के लिए बेकरार, पहला मैच बारिश से धुल जाने के बाद दूसरे मैच में मिली हार, फिलहाल सीरीज में मेजबान इंग्लैंड 1-0 से आगे है। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान, 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान। 4 नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह की टीम में होगी वापसी, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, अशोक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के पास इस सीरीज में अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका। चिली के रियल ओसेस ने बचपन के स्लिटर एल्बम के सपने को अपनी कार पर किया पूरा, उन्होंने अपनी नई कार को पूरी तरीके से स्किटर से ढका। 33 वर्षीय एरियल ओसेस ने सिर्फ 2 हफ्तों में अपनी कार पर 373 स्टिकर्स लगवाए हैं, यह अनोखा मिशन 3 दिन पहले पूरा हुआ है। एरियल ने इंस्टाग्राम के जरिए लोगों को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया है, कमेंट करने वालों को उन्होंने स्टिकर्स उपहार में दिए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरि का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरि है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है, वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरि आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी, आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है, जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है, तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है, तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium. What you got for me, Jack?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इंडोनेशिया ने पीएम मोदी को दिया अपने देश का सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रपति भवन में ऐतिहासिक स्वागत। ब्रह्मोस्त्र की सबसे बड़ी डील पे लगी मोहर, 10 से ज्यादा समझौतों पर बनी बात। रक्षाबंधन पर दिल्ली में महिला समृद्धि योजना होगी लागू, आर्थिक रूप से कमजोर 21 से 60 वर्ष के पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। भीषण बारिश के चलते आज भी मुंबई में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, सड़क रेल और हवाई सेवा प्रभावित, सावधानी बरतने की अपील। भारी बारिश के दौरान मुंबई पुणे हाईवे पर लोगों को बड़ी राहत, लैंडस्लाइड के कारण करीब 18 घंटे बंद रहे मिसिंग लिंक की 2 लाइन यातायात के लिए खुली गई। आज भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे नॉटिंगम में शुरू होगा ये मैच।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारे खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे देवदूत की। जी हां, बाढ़, बारिश और रेस्क्यू के बीच कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो उम्मीद के किरण बनकर सामने आते हैं। जब लोग पानी के सैलाब में फंस जाते हैं, जब हर तरफ मदद की पुकार ही सुनाई देती है, तब अपनी जान की परवाह किए बिना मोर्चा संभालते हैं हमारे जवान, जो हर वक्त साहस, सेवा और इंसानियत की मिसाल पेश करते हैं। दरअसल देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश है, कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, उसके चलते सड़कें जो है वो जलमग्न है और नदियां उफान पर हैं। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण समय में राहत और बचाव में जुटी एजेंसियां उम्मीद की मजबूत तस्वीर पेश कर रही हैं और वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। देखिए, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक हर मुश्किल इलाके में राहत की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों तक पहुंच रही है। गुजरात के अमरेली में उफनते पानी के बीच जेसीबी की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं सूरत की अगर हम बात करें तो सूरत में पानी भरने के बाद एक इमारत में फंसे कई छात्रों का नाव के जरिए सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। दूसरी ओर मुंबई के पास लोनावला में भी भारी बारिश के बीच फंसे 20 से ज्यादा लोगों को राहत टीमों ने सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। कुदरत की इस कठिन परीक्षा के बीच समय पर की गई तैयारी ही हमेशा काम आती है।
1: महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और जल जमाव से लोगों की जिंदगी पर जबरदस्त असर पड़ा है। भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग की ओर से अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसे देखते हुए सूबे के 6 जिलों मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, नासिक और रायगढ़ के स्कूल और कॉलेजेस में मंगलवार की छुट्टी घोषित कर दी गई है। भारी बारिश और जलभराव की वजह से कई लोग मुश्किलों में फंस गए हैं। मुसीबत में फंसे ऐसे लोगों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के साथ ही कुछ सोशल वर्कर देवदूत बनकर सामने आ रहे हैं। पालघर के बीरेंद्र नगर में जब लोग अपने घरों में सो रहे थे तो मूसलाधार बारिश की वजह से पानी उनके घरों में घुस गया। जब उनकी नींद खुली तो देखा कि पानी मुसीबत बनकर न सिर्फ घरों को बल्कि पूरे इलाके को ही लबालब कर चुका है। लेकिन राहत की बात यह है कि कुछ सोशल वर्कर संकट की इस घड़ी में रेस्क्यू के साथ जो सामान के साथ मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने पहुंच गए।
2: पालघर के वीरेंद्र नगर में जहां सब सो रहे थे उसी समय उनके घरों में पानी भराया। उन घर वालों को बाहर कैसे निकला जाए, सब परेशान थे। उसी समय सूरत धोत्रे अपनी टीम लेकर के उस जगह पहुंचे और उन लोगों को बाहर निकालने की पूरी मशक्कत की। इस समय हमारे साथ में जो बगल में जो है एक छोटा बच्चा है, ये बच्चा भी उस आपदा में फंसा हुआ था, उस घर में फंसा हुआ था। सूरज ने उसे अपने कंधे पे बांधकर उस बच्चे को बाहर निकाला है। उसके पिताजी हमारे साथ में हैं, उनसे जानना चाहेंगे इस बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। क्या कहोगे आप, क्या क्या स्थिति थी जब आप लोग अंदर?
3: रात में से ही बारिश होने लगा तो अपन उठे तो देखे तो बारिश ज्यादा बढ़ गया था, तो इसके लिए हमारा दिल घबराने लगा। मैं बोला अभी क्या करने का, तो फिर हमने बैठे थे तो वहाँ पे संजू भाई ने आया, उसने बोला कि भाई आप लोग का मदद मैं करता हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो। वो अपने टीम को लेके हमारे साथ
4: उधर आए थे,
3: हमारे को लेके बोले कि भाई अपने बच्चे को दो, हम अपने सर पे बैठा के आज करते हैं, थोड़ा थोड़ा सबको लेके बाहर आते हैं।
1: पालघर के बीरेंद्र नगर में रात भर हुई मूसलाधार बारिश की वजह से सैकड़ों लोग फंस चुके थे, लेकिन देवदूत के रूप में आए सोशल वर्कर्स ने एक एक कर सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, जिसके बाद लोग राहत की सांस ले रहे हैं।
5: हम लोग 7 बजे तक सोए थे, 7 बजे के बाद उठे तो देखे पानी भर रहा था, फिर हम लोग निकलने देखे कि अभी थोड़ा कम होएगा तो निकल जाएंगे, उतने में ज्यादा हो गया। फिर पिंटू भाई सब बच्चे लोग को लेके आए, रस्सी बांध के ट्यूब लेके आए, उसमें बच्चे को बिठा के सबको बाहर निकाले, और उनके साथ में और कुछ लड़के लोग थे, उन लोग बचाए हम लोग को यहाँ से।
1: महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है, लेकिन अच्छी बात ये कि राहत और बचाव का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। लोनावला के मालीवाली गांव में स्थित विंदाता एकेडमी में पानी घुसने के बाद 20 लोग असहाय फंस गए थे। लेकिन पीएमआरडीए की डिजास्टर रिलीफ फोर्स ने मौके पर पहुंचकर सभी 20 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ आसमान से बारिश मुसीबत के रूप में बरस रही है, तो दूसरी ओर डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी टीम राहत का पैगाम बनकर लोगों की मदद कर रही है। पुणे के चकन इलाके में भारी बारिश की वजह से 70 से 80 लोग पानी के बीच घिर चुके थे, जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन कर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। मुसीबत में फंसे इंसान की मदद मानवता का सबसे बड़ा तकाजा है, इसे किसी भी पूजा उपासना या इबादत से बड़ा पुण्य माना गया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच मानवीय संवेदना और परोपकार की ऐसी तस्वीरें लोगों के दिलों को छू रही हैं। पालघर से मोहम्मद हुसैन खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो देखिए, मॉनसून ने देश भर में गर्मी से राहत तो दी है, लोग मॉनसून बयार को खूब इंजॉय भी करते हैं, लेकिन कई राज्यों में अब ये बारिश लोगों का कड़ा इम्तिहान भी ले रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से पनपे हालातों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां उफनती नदियों और बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

0: मॉनसून ने पूरे देश में दस्तक दे दी है। फिलहाल कहीं बारिश कम तो कहीं मूसलाधार बारिश। मॉनसून आने के बाद पूरे देश का कमोबेश यही नजारा है। हालांकि जहां मूसलाधार बारिश है वहां मुसीबतें भी हैं। जहां कम बारिश है वहां उमस और गर्मी से लोग अभी भी परेशान हैं। महाराष्ट्र के पुणे में लगातार भारी बारिश से मुसीबत में घिरे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। दरअसल लगातार हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे और मुंबई पुणे नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद है। इस बीच पुणे के चाकन इलाके में एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुणे के अम्बेथन रोड पर कुछ इमारतें चारों ओर पानी से घिर गई, जिससे उन इमारतों में करीब 70 से 80 लोग फंस गए। फायर ब्रिगेड ने खबर मिलते ही बचाव अभियान शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इमारत में फंसे लोगों को कंधे पर बैठाकर किनारे सुरक्षित जगह पर पहुंचाते दिखे। रेस्क्यू की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सांबा की है, जहां अचानक नदी में आए पानी ने 5 लोगों को मुश्किल में डाल दिया। लेकिन खबर मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और रस्सियों के सहारे एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ओडिशा के बौद्ध जिले की सालुंकी नदी बारिश के बाद उफान पर आ गई। तेज बहाव के बीच 2 महिलाएं फंस गई। पानी का रौद्र रूप और तेज बहाव दोनों ही बचाव अभियान में बड़ी चुनौती थे। इसके बावजूद रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं हारी। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों महिलाओं को नदी से बाहर निकाल लिया गया। ओडिशा की महानदी उफान पर है। रविवार को 3 युवा कटक में बहने वाली महानदी की तेज धार में फंस गए। जानकारी के मुताबिक एक युवक फिसलन की वजह से नदी में गिर गया। उसे बचाने के लिए बाकी दोनों युवक भी नदी में कूद गए और तीनों डूबने लगे। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय लोग बोट लेकर पहुंचे और 2 युवकों को सुरक्षित किनारे पर बचा लाए। बाढ़ के बीच रेस्क्यू अभियान की ऐसी ही तस्वीर छत्तीसगढ़ के महासमुंद से भी आई है। लगातार बारिश के चलते पुल बनाने के काम में लगे 14 मजदूर चारों तरफ पानी में घिर गए। खबर मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा। घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और आखिरकार सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मॉनसून आने के बाद से ही मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित कोयना नगर के झरने मॉनसून के मौसम में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते। यहाँ का कोयना डैम कुदरत का वो करिश्मा है कि इसे जो भी देखता है वो इसमें खो जाता है। ऊंचाई से गिरती पानी की धार पर्यटकों को आकर्षित कर लेती है।
1: कोयना डैम इलाके में बहुत ही जोरदार बारिश चल रही है और यहाँ पे जो आजू बाजू का परिसर है वो पूरा ग्रीन हो चुका है और हम खासकर यहाँ पे जो कोयना का प्रसिद्ध ओझरडे वाटरफॉल है ये देखने के लिए आए हैं। सो ये जो वाटरफॉल है वो 800-900 फीट ऊपर से गिरता है और यहाँ का आजू बाजू का जो परिसर है पूरा ग्रीन हो चुका है। खासकर कोयना और आजू बाजू के जो और भी वाटरफॉल है वो भी अच्छी तरह से बह रहे हैं। रेनी सीजन में यहाँ पे घूमने का मजा ही कुछ और है। यहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात से बहुत ही टूरिस्ट यहाँ पे खासकर ये ओझरडे वाटरफॉल देखने के लिए आते हैं। हमें यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है और रेनी सीजन में कोयना का ये ओझरडे वाटरफॉल बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस।
0: वहीं सतारा के महाबलेश्वर में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे यहाँ पारा में काफी गिरावट आई है। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। पीपल कोठी के नजदीक गुलाब कोठी में भूस्खलन की वजह से सड़क पर मलबा आने के कारण बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लिहाजा बद्रीनाथ धाम जाने वाले और वापस ऋषिकेश देहरादून हरिद्वार की ओर जाने वाले यात्री और स्थानीय लोग बीच रास्ते में ही फंस गए। हालांकि 2 घंटे बाद भनीर पानी में मार्ग को खोल दिया गया। चमोली जिले में कल देर रात हुई बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। फिलहाल नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मूसलाधार बारिश से सड़कें लबालब हो गई और घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
2: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और जहां हम खड़े हैं प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर 3 में, यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पे सारे बड़े मंत्रियों के घर हैं, जहां के विजुअल्स अगर हम आपको दिखाएं तो लगेगा कि वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अधिकतर हिस्से अभी पानी में डूबे हुए हैं। और ये सिर्फ 48 आवर्स में हुआ, यानी कि 48 घंटों में ये हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग ने सेंट्रल छत्तीसगढ़ यानी कि बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग, ऐसे सारे एरिया में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। देखिए, ड्रेनेज जो सिस्टम बनाना, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, इसके लिए क्या वैज्ञानिक को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि बन ही नहीं पा रहा है से इतने सालों से यही समस्या।
3: मैं तो 15 साल से हूँ यहाँ पे, देख रहा हूँ हर साल कैसा प्रॉब्लम आता है। इधर के तो बहुत सारे घर जो रेंट पर कई लोग छोड़ छोड़ के भी जा चुके हैं।
0: जाहिर है मॉनसून ने आते ही भले ही लोगों को गर्मी से राहत दे दी, लेकिन कुछ जगहों पर मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। अब जरा सैटेलाइट तस्वीरों से समझिए कि आखिर कई इलाकों में मॉनसून हदें क्यों लांग रहा है। दरअसल इस वक्त पूर्व मध्य अरब सागर से लेकर कोंकण तट तक घने बादलों का एक बड़ा सिस्टम एक्टिव है। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी एक मजबूत वेदर सिस्टम बना हुआ है, जो देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह बना हुआ है। अरब सागर से लगातार नमी मिलने की वजह से महाराष्ट्र, मुंबई, कोंकण और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं बारिश के सिस्टम को और ताकत दे रही हैं। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सिस्टम का असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत तक साफ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जाहिर है मॉनसून ने आने में देर जरूर की, लेकिन जिस तरह देश के बड़े हिस्से में बारिश हो रही है, उसके संकेत खेती के लिहाज से भी अच्छे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में मॉनसूनी गतिविधियां आने वाले वक्त में जोर पकड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों से रोजाना लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं, लेकिन भारी बारिश होने पर सबसे पहले लोकल ट्रेनों पर ब्रेक लग जाता है। लेकिन इस बार खुशी की तस्वीरें देखी जा रही हैं। देखिए, मुंबई में लगातार 5 दिनों से मूसलाधार बारिश होने के बावजूद रेल पटरियों पर जलभराव जैसे हालात नहीं देखने को मिल रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे की एक खास रिपोर्ट।
5: लगातार 5 दिनों से मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है। हर किसी को चिंता इस बात की थी कि जो मुंबई की लाइफलाइन है यानी कि लोकल, कहीं वो ठप ना हो जाए, क्योंकि रोजाना 33 लाख से ज्यादा यात्री मुंबई की लोकल से सफर करते हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ मुंबई के सेंट्रल रेलवे के घाटकोपर स्टेशन पर और तस्वीरों के माध्यम से देखें पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म इस समय खाली पड़ा हुआ है। इसके 2 कारण है। पहला तो ये कि महाराष्ट्र सरकार ने बकायदा मुंबई करो के मोबाइल पर एक SMS भेज दिया है, जिसमें साफ तौर से ये लिखा गया है कि 90 घंटे तक लगातार मुंबई में मूसलाधार बारिश होगी। रेड अलर्ट भी जो है मौसम विभाग की तरफ से घोषित किया गया है। पहली ये वजह है कि मुंबई का घाटकोपर रेलवे स्टेशन इस समय खाली दिख रहा है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी वजह है वो ये थी कि लगातार मुंबई की जो लोकल है वो पटरियों पर दौड़ रही है, भले ही 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे देरी से चल रही हो, लेकिन लगातार मुंबई की जो लोकल है वो दौड़ रही है। यानी कि मुंबई की लाइफलाइन, वेस्टर्न रेलवे, हर्बर रेलवे और सेंट्रल रेलवे, ये तीनों ही बकायदा बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं।
4: महानगरी मुंबई में मॉनसून पूरी रफ्तार से मेहरबान है। इस बीच लगातार हो रही बारिश के बीच जुहू बीच पर समंदर का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। ऊंची ऊंची लहरें, ठंडी हवाएं और फुहारों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग समुद्र किनारे पहुंच रहे हैं।
5: पांच दिनों से मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें, ये मुंबई का जुहू बीच है जो उपनगर मुंबई में आता है, और पर्यटक सिर्फ न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से यहाँ अपने परिवार के साथ एंजॉय करने आते हैं। खास बात आज की यहाँ पर ये है कि आसपास ही एक बढ़िया सा खाओ गली यहाँ पर है। जुहू बीच का ये खाओ गली है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लोग अपने अपने मन पसंदीदा व्यंजन जो है यहाँ पर ऑर्डर कर रहे हैं, खा रहे हैं। ये जुहू बीच की जो सबसे बड़ी खासियत है खाओ गली को लेकर के, वो है पाव भाजी, भेलपुरी, पानीपुरी, चाइनीज, बहुत सारी डिशेज जो यहाँ पर मिलती हैं, लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। जहाँ एक तरफ लगातार सात दिनों से मुंबई में जिस तरीके से समस्याएं और परेशानी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। साहब, मैं देख रहा हूँ काफी देर से आप भीग रहे हैं, कहाँ से आए?
6: जम्मू से आए।
5: जम्मू से आए, हाँ। बारिश और जुहू बीच क्या कहेंगे
6: सर? अच्छा है, लेकिन पानी ज्यादा है थोड़ा, लेकिन फिर भी मुंबई का मौसम अच्छा है।
5: अच्छा, मतलब
4: तो चलिए मॉनसून को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं माया नगरी के लोग। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे।

0: all sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
1: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
0: Big 12 Radio.
2: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
0: and
2: down.
0: Talk sports.
3: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
0: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
11: तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है, मानसून आ गया है, लेकिन दिल्ली मन भर मानसून के लिए अभी भी तरस रही है। देखिए दिल्ली में बादल तो रोज आ रहे हैं, बारिश भी हो रही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं बरस रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर दिल्ली से मानसून को क्या हो गया है। इस बीच मौसम विभाग का ये कहना है कि दिल्ली और उत्तर भारत में अभी मानसून पहुंचा है, आगे उसके जमकर बरसने की भी उम्मीदें हैं।

0: दिल्ली वालों ने पहले मॉनसून का इंतजार किया। मॉनसून आया तो लगा उमस के दिनों पर राहत के फुहारे बरसेंगी और मन भरकर मॉनसून सबकी मुराद पूरी करेगा। लेकिन दिल्ली पहुंचकर मॉनसून अभी भी रूठा रूठा लग रहा है। आसमान में बादल भी हैं, हवा में नमी भी है, लेकिन बारिश बस बूंदा बांदी तक सिमटी नजर आ रही है।
1: देश के अलग अलग राज्य में मॉनसून जो है वो तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बात अगर दिल्ली की जाए तो यहाँ पर अभी भी वो बरसात जो है वो देखी नहीं गई है। 5 जुलाई जो है वो निकल चुकी है, लेकिन अभी अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तो औसतन कम बारिश जो है वो देखी गई है।
0: दिल्ली का हाल ये है कि बादल आते हैं, उम्मीद जगाते हैं और अक्सर बिना बरसे आगे निकल जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इसे लेकर मौसम विभाग क्या कह रहा है।
1: लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में मॉनसून जो देखा जाता है वो अभी तक नहीं देखा गया, तो क्या आने वाले दिनों में भी हम यही समझे कि कम बारिश देखी जाएगी दिल्ली NCR में?
2: देखिए, आने वाले 7 दिनों की बात करें तो दिल्ली में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा आने वाले 2 दिनों में पूरी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं, और उसके बाद हल्के स्तर की वर्षा भी जारी रह सकती है। तो जहां तक रिकवरी का सवाल है तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी सीजन की शुरुआत ही है। आने वाले समय में हाँ, ये जरूर हो सकता है वीक 2 वीक 3 में वर्षा थोड़ी सी कम दिखाई देती है ओवरऑल, परंतु फिर भी हल्के स्तर की वर्षा दिल्ली को मिलती रहने की संभावना आने वाले 4 से 5 दिनों में दिखाई देती है।
0: मौसम विभाग भले दिल्ली में बारिश को लेकर उम्मीद से हो, लेकिन आसमान में बने हालात बता रहे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the 3 dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
3: गुंडे लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाएगी, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया अपने देश का सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रपति भवन में ऐतिहासिक स्वागत, ब्रह्मोस की सबसे बड़ी डील पर मोहर, 10 से ज्यादा समझौतों पर बनी बात। रक्षाबंधन पर दिल्ली में महिला समृद्धि योजना होगी लागू, आर्थिक रूप से कमजोर 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रूपये। भीषण बारिश के चलते आज भी मुंबई में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, सड़क रेल हवाई सेवा प्रभावित, सावधानी बरतने की अपील। भारी बारिश के दौरान मुंबई पुणे हाईवे पर लोगों को बड़ी राहत, लैंडस्लाइड के कारण करीब 18 घंटे बंद रहे मिसिंग लिंक की 2 लेन यातायात के लिए खोली गई। आज भारत और इंग्लैंड के बीच में T20 सीरीज का तीसरा मैच, भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे नॉटिंघम में शुरू होगा ये मैच।

0: सज गए हैं, खबरों की प्लेट तैयार है। गुड न्यूज का मेन्यू, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराश। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
0: अमरनाथ यात्रा का आज 5वां दिन, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बालटाल और पहलगाम बेस कैंप में जुटे तीर्थ यात्री। अमरनाथ यात्रा के लिए देश विदेश से पहुंच रहे हैं तीर्थ यात्री, हर हर महादेव के जयकारों के साथ गूंज रहा यात्रा मार्ग।
3: अमरनाथ से अशरफ।
0: अमरनाथ यात्रा में पिछले साल के मुकाबले इस साल श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ी, 4 दिन में 65,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। तीर्थ यात्रियों की बढ़ती तादाद के चलते 9 जुलाई तक सभी रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुक, बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थ यात्रियों से अपनी यात्रा कुछ दिन आगे बढ़ाने की अपील की गई। इस साल 57 दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा, अब 4 लाख श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन।
1: कोलकाता में दुर्गा पूजा उत्सव की तैयारियों का शुभारंभ, पारंपरिक ढोल की गूंज के साथ हुआ खूंटी पूजा अनुष्ठान। कोलकाता की मशहूर चोर बागान दुर्गा पूजा समिति में भव्य समारोह, दुर्गा पूजा उत्सव का काउंटडाउन शुरू। हरिद्वार के कनखल में श्री गुरु गोरखनाथ अलख अखाड़ा परिषद ने 11 संतों का पट्टाभिषेक किया, संतों ने उन्हें धर्म सेवा का संदेश दिया। जामनगर के लाठीदड से देवभूमि द्वारका तक निकाली गई गौ माता वेदना पद यात्रा, इस पैदल यात्रा में 21 गौ माता हैं शामिल। देवभूमि में धूमधाम से जारी 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन।
0: डल लेक में पर्यटकों की रौनक बढ़ी, श्रीनगर में पर्यटन सीजन ने पकड़ी रफ्तार। शिकारा सैर का लुत्फ उठाते पर्यटकों से झील गुलजार, वही पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही। अब पौधे भी बताएंगे अपनी भावनाएं, कोटा के छात्र आर्यन सिंह ने बनाया स्मार्ट इमोशन पॉट। ये स्मार्ट इमोशन पॉट पौधे की स्थिति को इमोजी के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता है। आज भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा T20 मैच नॉटिंघम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। ये मैच 9:30 बजे पर होगा टॉस। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान, 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान, 4 नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह की टीम में वापसी।
1: पर्यावरण के मोर्चे पर दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, आज से वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ, 70 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के आरकेपुरम में करेंगे वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन, एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाएगी दिल्ली सरकार। विज्ञान के वर्ष के हुए बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, ले में मनाया गया दलाई लामा का जन्मदिन। इस मौके पर काटा गया विशाल केक, दलाई लामा के लंबे जीवन के लिए मांगी गई दुआएं। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, परम पावन दलाई लामा ने श्रद्धालुओं का जताया आभार।
0: फिल्म फुकरे के बाद फिर लौटेगी भोली पंजाबन और जफर की जोड़ी, नई कॉमेडी फिल्म का हुआ ऐलान। अर्जुन रामपाल ने अपने हमजा यानी रणवीर सिंह को दी जन्मदिन की बधाई, शेर ए रणवीर के लिए शेयर किया स्पेशल पोस्ट। आठ जुलाई को सौरभ गांगुली के बर्थडे पर रिलीज होगा उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक, राजकुमार राव निभा रहे हैं दादा का किरदार। हल्की फुल्की रोमांटिक ड्रामा फिल्म तेरा यार हूं मैं का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में डायरेक्टर प्रोड्यूसर इंद्र कुमार के बेटे अमन इंद्र कुमार कर रहे हैं एक्टिंग डेब्यू। लव लॉटरी का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, कोर्टरूम ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री के साथ दिखेगा सस्पेंस का तड़का, 18 सितंबर को रिलीज होगी ये फिल्म।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार

0: करोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है,
2: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
1: इंडोनेशिया दौरे पर पीएम को मिला देश का सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रपति भवन में हुआ ऐतिहासिक स्वागत।
2: रक्षाबंधन पर दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा दिल्ली सरकार से तोहफा, समृद्धि योजना का होगा शुभारंभ।
1: मुंबई में धुआंधार बरस रहे हैं मॉनसूनी बादल, यातायात प्रभावित, लोगों से घरों में रहने की जा रही अपील, दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह।
2: धुरंधर में रणवीर सिंह की मस्कुलर बॉडी के राज से उठा पर्दा, एक ही फिल्म के लिए रणवीर ने वजन बढ़ाया भी और घटाया भी।
1: फिल्म निर्देशक इंद्र कुमार के बेटे अमन कुमार का बॉलीवुड में डेब्यू, फिल्म तेरा यार हूं में से कर रहे हैं बॉलीवुड में एंट्री, ट्रेलर लॉन्च।
2: और चलिए लंच टाइम में आज सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं फिल्मी सफर को, और सबसे पहले बात करते हैं धुरंधर रणवीर सिंह की, जिनकी मस्कुलर बॉडी का राज आखिरकार सामने आ गया है। धुरंधर में रणवीर सिंह ने हमजा अली मजारी का किरदार निभाने के लिए कैसे खुद को झोंक दिया और महज 6 हफ्तों में 10 किलो वजन बढ़ाकर मस्कुलर बॉडी बनाई, और फिर जसकीरत सिंह रंगी के किरदार के लिए कैसे 15 किलो वजन घटाया, इसका खुलासा हो गया है।
3: धुरंधर के हमजा अली मजारी की स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी हो या जसकीरत सिंह रंगी की स्लिम टोन्ड बॉडी, रणवीर सिंह ने अपनी दमदार एक्टिंग से न सिर्फ दोनों किरदारों में जान डाली बल्कि इन दोनों किरदार को पर्दे पर प्रभावशाली दिखाने के लिए खुद को ही पूरी तरह झोंक दिया था। रणवीर सिंह ने हमजा और जसकीरत के किरदार से न्याय करने के लिए किस कदर खुद को समर्पित कर दिया था, इसका कुछ अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हमजा के किरदार के लिए रणवीर सिंह ने महज 6 हफ्तों में 10 किलो वजन बढ़ाया, रोज 4000 कैलोरीज, 240 ग्राम प्रोटीन और कड़ी ट्रेनिंग से पूरा लुक बदल दिया, तो जसकीरत के रोल के लिए उन्होंने 15 किलो वजन घटाया। रणवीर सिंह के इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में धुरंधर में उनके साथ अंडरकवर भारतीय एजेंट का किरदार निभाने वाले रिजवान शाह का बड़ा योगदान रहा है। रिजवान का रोल मुस्तफा अहमद ने निभाया था, जो असल जिंदगी में एक जाने माने सेलिब्रिटी, जिम ट्रेनर और फिटनेस कोच हैं, और ऋतिक रोशन, विकी कौशल और यामी गौतम जैसे सितारों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। धुरंधर में रणवीर सिंह को ट्रेंड करने की जिम्मेदारी मुस्तफा अहमद ने ही निभाई थी। एक इंटरव्यू में मुस्तफा अहमद ने खुलासा किया कि रणवीर सिंह रोजाना 3600 से 4000 कैलोरीज लेते थे। उनकी डाइट में भरपूर मात्रा में चिकन, चावल और रेड मीट शामिल था। इसके अलावा वो हर दिन लगभग 240 ग्राम प्रोटीन लेते थे। रणवीर सिंह दिन में 2 प्रोटीन शेक पीते थे। हर शेक से उन्हें करीब 600 से 700 कैलोरीज मिलती थी, यानी केवल प्रोटीन शेक से ही रोजाना लगभग 1200 से 1500 कैलोरीज पूरी हो जाती थी। बाकी कैलोरी हाई प्रोटीन खाने के जरिए पूरी की जाती थी। अपने शरीर को बिना थकाए और बिना किसी अकड़न के मस्कुलर बनाने के लिए रणवीर दिन में 2 बार वर्कआउट करते थे। यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान भी टेक के बीच वर्कआउट करते रहते थे, ताकि उनका शरीर हर समय किरदार के अनुरूप दिखाई दे। सुबह के समय अपनी सहन शक्ति और फुर्ती बढ़ाने के लिए कलारी पायर 2 सेशन और मोबिलिटी एक्सरसाइज करते थे, और शाम को उनका फोकस हैवी वेट ट्रेनिंग पर होता था ताकि मसल्स का साइज बढ़ सके। मुस्तफा ने बताया कि रणवीर सिर्फ शरीर फुलाने के लिए वेट ट्रेनिंग नहीं करते, वो इसे कलाकार की तरह अपनाते हैं। उन्हें समझ आ गया कि इससे उनकी सांस लेने की क्षमता बेहतर होती है, शरीर मजबूत बनता है और किरदार में गहराई आती है। मुस्तफा ने आगे बताया कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले रणवीर सिंह के पास केवल 6 हफ्तों का समय था। उस दौरान उनका शुरुआती वजन करीब 76 से 77 किलो था, लेकिन शूटिंग शुरू होते होते उनका वजन बढ़कर 87 से 88 किलो पहुंच गया था। धुरंधर पार्ट 2 की शुरुआत रणवीर सिंह के दूसरे किरदार जसकीरत सिंह रंगी से होती है। इस किरदार को निभाने के लिए रणवीर सिंह को अपना वजन काफी कम करना पड़ा था। जसकीरत के रोल में रणवीर सिंह को काफी स्लिम दिखना था। इस किरदार की शूटिंग हमजा के किरदार की शूटिंग के बाद की गई थी। इसके लिए रणवीर सिंह ने पूरे 15 किलो वजन घटाया ताकि कैमरे पर बॉडी बिल्कुल रियलिस्टिक लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: और चलिए अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर इंद्र कुमार के बेटे की, जो एक हीरो बन गए हैं। अमन इंद्र कुमार की अपकमिंग फिल्म तेरा यार हूं मैं का ट्रेलर एक दिन पहले रिलीज हुआ, जिसे सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिस्पांस मिल रहा है। इस फिल्म से अब अमन कुमार के साथ आकांक्षा शर्मा भी डेब्यू कर रही हैं। फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होने वाली है।
4: तेरी जगह अगर कोई सच्चा दोस्त होता तो पता है वो क्या करता?
5: क्या करता?
4: हवा निकाल।
5: अरे बेटा टायर पंचर हो गया है।
6: पापा मुझे लगता है स्कूटर पंचर नहीं हुआ है, किसी गधे ने टायर की हवा निकाल दी।
7: दोस्ती प्यार और प्यार को पाने की शिद्दत से कोशिश।
4: ले जाऊं?
5: अरे मार दूंगा जान से।
7: एक लाइन में कहे तो तेरा यार हूं मैं की कुछ यही कहानी फिल्म के ट्रेलर से समझ आती है।
8: अब अपने इसी यार के लिए तुझे इतना मारूंगा कि तेरे जख्म देखकर मरहम भी कहेगा कि उन्हें ठीक करने की उसकी औकात नहीं है।
7: इंद्र कुमार के बेटे अमन कुमार और आकांक्षा शर्मा की डेब्यू फिल्म का ट्रेलर एक दिन पहले रिलीज हुआ। रोमांस, ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर तेरा यार हूँ मैं एक ऐसे कपल की कहानी है जहाँ प्यार एक तरफा दिख रहा है।
4: बहुत महंगा।
9: फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड
4: फ्रेगन एक लड़की की लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है ना तो उसे सॉल्व करने वाला लवर ही होता है।
7: लड़की के लिए बॉयफ्रेंड से अधिक पिता का प्यार अहमियत रखता है। हालांकि लड़का खुद लड़की के पिता से उनकी बेटी का दिल जीतने के लिए कुछ वक्त मांगता है।
10: कि अनु तुझसे प्यार ही नहीं करती है भाई।
4: एक महीने, अगर इस एक महीने में तुझे लगे कि मैं अनु के लिए बेस्ट,
7: और यही वक्त फिल्म की कहानी का आधार है। कहने का मतलब ये है कि प्यार को पाने की कोशिश के इर्द गिर्द ही इस फिल्म की कहानी रची बुनी गई है।
8: कि तेरे जख्म देखकर
7: ट्रेलर से कम यही अंदाजा लगता है। फिल्म में परेश रावल ने एक्ट्रेस के पिता का किरदार निभाया है और अपनी चिर परिचित कॉमेडी से छाप छोड़े हुए कामयाब रहे हैं।
11: लगता है ये नया फ्रेंड आगे जाके काफी महंगा।
7: देखा जाए तो फिल्म की कहानी नई नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट पर कई सारी बॉलीवुड फिल्में पहले भी बन चुकी है। इस लिहाज से तेरा यार हूं मैं कोई नई बोतल में पुरानी शराब कही जा सकती है। फिल्म के हीरो अमन कुमार बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर इंद्र कुमार के बेटे हैं, जिन्होंने दिल, बेटा, राजा, मस्ती, धमाल जैसी कई हिट फिल्में दी। लेकिन जब बेटे को लॉन्च करने की बारी आई तो इसकी जिम्मेदारी मिलाप मिलन जावेदी ने उठा ली।
5: यार बोल।
7: ट्रेलर को सोशल मीडिया पर वैसे मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। एक यूजर ने कहा है कि अच्छा लग रहा है ये देखकर कि इंद्र कुमार के बेटे को फाइनली बॉलीवुड में एंट्री मिली। तो किसी ने कहा रीमेक मूवी को इतना पॉजिटिव रिस्पांस, बाकी सब तो ठीक है लेकिन किस एंगल से ये हीरो लग रहा है। एक और यूजर ने लिखा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म को डिजास्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वहीं किसी ने कहा, जितनी मेहनत रीमेक बनाने में की इससे अच्छा कोई फ्रेश मूवी बना लेते।
12: इसका मतलब ये है कि तेरे यार ही तेरी बेटी को घुमा रहे हैं।
10: अरे तू भेजा मत घुमाना यार, गाड़ी घुमा चल।
7: मतलब जितने मुंह उतनी बातें। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म तेलुगु की सुपरहिट रोमांटिक फिल्म नेला टिकट की रीमेक बताई जा रही है। फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: और चलिए अब फिल्मी दुनिया की एक और बड़ी हाईलाइट की बात करते हैं। कपूर फैमिली में खुशियों की बधाई की तस्वीर आपको दिखाते हैं।

0: और देखिए, बॉलीवुड के कपूर परिवार में खुशियां ही खुशियां फैली हैं क्योंकि कपूर परिवार की बेटी की शादी हो गई है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी और अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ सात फेरे लेकर नए रिश्ते को नया नाम दिया है। मुंबई में बेहद निजी लेकिन भव्य अंदाज में इस शादी में सभी सितारे, बड़े सितारे शामिल हुए। कपूर परिवार भी पूरा, उनके बड़े सितारे शामिल थे। मेहंदी से लेकर फेरे और रिसेप्शन तक हर रस्म की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इस खास मौके पर पूरा कपूर परिवार एक साथ नजर आया। पिता बोनी कपूर और अपनी बेटी की शादी में भावुक भी दिखाई दिए। वहीं भाई अर्जुन कपूर ने बहन के हर खास पल को करीब से जिया।
1: और देखिए, इस शादी में आपको तस्वीरों में भी नजर आएंगी जानवी कपूर, खुशी कपूर, अनिल कपूर, सोनम कपूर, शनाया समेत परिवार के कई मेंबर्स इस शादी की रस्म में शामिल हुए। सभी ने मिलकर शादी की रस्म और सेलिब्रेशन का भरपूर मजा लिया।
0: देखिए, अंशुला ने पारंपरिक अंदाज में खूबसूरत ब्राइडल लुक अपनाया, जबकि रोहन भी शेरवानी में बेहद आकर्षक नजर आए। दोनों की जोड़ी ने हर किसी का दिल जीत लिया। आपको बता दें कि अंशुला कपूर भले ही फिल्मों से दूर रही हों, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है। उन्होंने कई मौकों पर रोहन ठक्कर के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार किया है।
1: और देखिए, दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब परिवार की मौजूदगी में हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं।

0: और देखिए, इस शादी से पहले मेहंदी, हल्दी, चूड़ा और कलीरे की रस्में भी धूमधाम से निभाई गई। इन प्री वेडिंग फंक्शंस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इस बीच अंशुला कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कलीरा सेरेमनी की एक वीडियो भी शेयर की है, जिसमें पंजाबी शादियों की परंपरा के मुताबिक दुल्हन अपनी सहेलियों और बहनों के सर पर कलीरा गिराने की रस्म निभाती हैं। अंशुला ने जब कलीरा पीछे की तरफ उछाला तो वो किसी लड़की के बजाय सीधे उनके भाई अर्जुन कपूर पर जाकर गिरा।
1: कलीरा गिरते ही वहां मौजूद जानवी कपूर, खुशी कपूर और बाकी रिश्तेदार हंसने लगे। अर्जुन कपूर भी कलीरा गिरने के बाद अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए। तो वहीं जुलाई 2026 के महीने में सिनेमाघरों में धमाकेदार फिल्मों की बारिश हो रही है। अल्फा के बाद इसी महीने 10 जुलाई को एक साथ दो बड़ी फिल्में सिनेमाघरों और ओटीटी पर दस्तक देने वाली है। देखा जाए तो जुलाई का ये महीना सिने प्रेमियों के मनोरंजन के लिए किसी सौगात से कम नहीं है।
2: अनबीटेबल लॉयर इन द सिटी, मिस्टर अर्जुन मेहरा।
3: हम कोर्ट में जीतने के लिए नहीं, हक के लिए लड़ते हैं।
4: इतना भारी सजा दे दिया, इतना भारी।
5: जुलाई का ये महीना सिने प्रेमियों के लिए एक के बाद एक मनोरंजन का सौगात लेकर आया है। महीने की शुरुआत 3 जुलाई को आलिया के अल्फा से हुई। और अब 10 जुलाई को बड़े पर्दे पर धमाल 4 समेत सनी देओल की इक्का ओटीटी पर दस्तक देने को तैयार है।
3: कर सके?
6: तुम कभी बदल नहीं सकते।
7: बदलते वो लोग हैं जो सच नहीं बोल पाते।
5: पहले बात करें सुपरहिट धमाल फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म धमाल 4 की।
4: देखो मेरे भाई, ये फैमिली फिल्म है, इसमें ना ये सब नहीं चलता है।
5: तो कॉमेडी फिल्म धमाल फ्रेंचाइज की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। इसके बाद 2011 में सीक्वल डबल धमाल आया, फिर 2019 में टोटल धमाल आई। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। धमाल 4 दर्शकों को कितना हंसाएगी, गुदगुदाएगी, इसका अंदाज फिल्म के ट्रेलर से लगाया जा सकता है।
3: बिचक गया ये।
4: बचाओ।
8: अरे हम हैं ना जी।
3: अरे तुम इसे तो बचना है।
5: धमाल 4 का ट्रेलर ही काफी हंसाने वाला है। इसमें कमाल का ट्विस्ट है, हंसी से लोटपोट होने वाले पलों की भरमार है, जबरदस्त पंच है। फिल्म का ट्रेलर ही जब इतना मजेदार हो, भला दर्शकों के सब्र का बांध क्यों ना टूटे। फिर भी दर्शकों को 10 जुलाई तक इंतजार तो करना ही होगा। धमाल 4 को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया है।
4: मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाना।
5: एडवेंचर कॉमेडी पर बेस्ड इस फिल्म में धमाल गैंग समुद्र में खजाने की खोज करती नजर आ रही है। इस बार वो समुद्र लुटेरों और भूतों जैसी अजीब अलौकिक चीजों से सामना करते नजर आएंगे। फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा हैं। साथ में ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, रवि किशन और विजय पाटकर भी हैं।
3: पानी में बैठ जाओ, सारे पंचर चेक कर लेते हैं।
9: मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हर्षवर्धन गौर के बेटे शौर्यमान गौर का नाम अटेम्प्टेड मर्डर केस में सामने आया।
2: द अनबीटेबल लॉयर इन द सिटी, मिस्टर अर्जुन मेहरा।
3: हम कोर्ट में जीतने के लिए नहीं, हक के लिए लड़ते हैं।
7: मुझे डिफेंड कर केस जीत हीरो बन।
5: ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों में सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म इक्का है।
3: पुलिस के डर से लोग इंसानियत भूल गया मिलॉर्ड।
10: ऑब्जेक्शन योर ऑनर।
5: इस कोर्टरूम ड्रामा में सनी देओल के साथ अक्षय खन्ना नजर आएंगे,
11: जिसकी वजह से मेरी बेटी का ये हाल है आज।
7: मैं गलती कर सकता हूँ, गुनाह नहीं।
5: फिल्म में तिलोत्तमा शोम भी अहम रोल अदा कर रही हैं। ये फिल्म 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।
7: दुनिया तुझे राम मानती है और मुझे रावण।
12: प्रोसिक्यूशन से लड़ने वाली मधुरा बैनर्जी क्या शोमा के केस को हैंडल कर पाएगी?
5: सनी देओल और अक्षय खन्ना करीब 30 साल बाद इक्का में साथ आ रहे हैं। ये कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें सनी एक जाने माने वकील की भूमिका में दिखेंगी। उन्हें इस फिल्म में उसी शख्स का बचाव करना है, जिस पर उन्होंने कभी हत्या की कोशिश का मुकदमा चलाया था।
13: वो घर पर थे रात को 1 बजे।
14: अप्रूव कर सकते हैं?
3: प्रोसिक्यूशन के पास कुछ है जो मेरे क्लाइंट का वर्जन कॉन्ट्रडिक्ट कर सके?
13: तुम कभी बदल नहीं सकते।
5: सनी और अक्षय के अलावा इस फिल्म में तिलोत्तमा शो में प्रोसिक्यूटर मधुरा बनर्जी के किरदार में नजर आएंगी। वहीं दिया मिर्जा, अर्जुन की पत्नी अवंतिका का किरदार निभा रही हैं। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने किया है। इक्का को आप घर बैठे सुकून के साथ देख सकते हैं क्योंकि इसे सीधे ओटीटी पर ही रिलीज किया जाएगा। इक्का में अक्षय खन्ना नेगेटिव किरदार में हैं और उनका लुक काफी हद तक धुरंधर के रहमान द केत की याद दिलाता है।
6: वाह इक्का, ये सब करने के बाद
8: दुनिया तुझे राम मानती है और मुझे रावण।
1: चलिए फिल्मों की बात तो हो गई, अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा मार्ग की। इन दिनों आस्था और भक्ति के रंग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60,000 को पार कर गया है।
10: इस बीच प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए
14: गूंज रहा है हर हर महादेव का जय घोष। भगवान भोलेनाथ के भक्त चले हैं अपने आराध्य से मिलने। दर्शन होंगे, जन्मों के पाप मिटेंगे। बाबा बर्फानी के दरबार में हर मन्नत पूरी होगी। भावनाएं उमड़ रही हैं, उत्साह में कदम चुनौतियों को पार कर रहे हैं। भाव बह रहे हैं आंसू बनकर। ये रौनक श्री अमरनाथ यात्रा की है। कोई पैदल एक दूसरे को थामे आगे बढ़ रहा है तो कोई घोड़े खच्चर पर सवार होकर बाबा बर्फानी के दरबार की ओर बढ़ रहा है। होठों पर महादेव का जय घोष है, दिल में उनके दर्शन की आस। 3 जुलाई से शुरू हुई ये यात्रा हर नए जत्थे के साथ बड़ी होती जा रही है। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की चहल पहल है। हर तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है।
15: हमने अपने परिवार के सुख शांति के लिए ही हमने बाबा से मांगा है और बड़ी मन्नत से इस बार आए हैं और बाबा ने बहुत कुछ पूरा भी किया और आगे भी पूरा करेंगे उम्मीद है।
16: तो मैंने बाबा से वादा किया था कि बाबा अगर मैं सही सलामत रहा तो मैं फिर जल्दी से आपके पास दर्शन करने के लिए आऊंगा। मन में उत्साह यही है कि मैं अच्छा रहूं, चलता रहूं, मुझे महसूस ना हो कि मैं एक विकलांग व्यक्ति हूं।
14: जिस भाव और उम्मीद के साथ तीर्थयात्री दूर दूर से बाबा बर्फानी के दरबार के लिए चले हैं, प्रशासन की कोशिश है कि उन्हें यात्रा मार्ग में भी किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। लिहाजा तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। भारतीय रेलवे ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू से श्रीनगर के बीच विशेष ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की है। इसका मकसद यात्रा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक सफर उपलब्ध कराना है। इसको लेकर जम्मू और श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं और यात्रियों को जानकारी दी जा रही है।
17: और वहाँ पे आप लोगों के लिए गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं।
14: श्रद्धालुओं ने रेलवे की इस पहल का स्वागत किया है।
17: जिन यात्रियों को अमरनाथ यात्रा के लिए जाना है,
18: बहुत बहुत ही अच्छी सुविधा है, रेलवे की बहुत ही अच्छी सुविधा है। और ये जो वंदे भारत डायरेक्ट जम्मू से कर दिया गया है उससे और ज्यादा सुविधा बढ़ गई है, जो कि डायरेक्ट हम लोग श्रीनगर पहुंच जा रहे हैं बिना किसी थकान के। हम लोग सुबह उतरे हैं और वहाँ से डायरेक्ट हम लोग यहाँ आ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुगम यात्रा रहा।
19: हम लोग यहाँ से वंदे भारत से आए, बहुत ही सुविधा सुंदर थी। जो हमारे पहले यात्रीगण हैं उन्होंने बताया कि जब वो पहले ट्रैवल करते थे तो बहुत ही कठिनाइयाँ आती थी। टचुड़ अभी वंदे भारत के कारण एसी और होने के कारण जो उन लोगों ने बताया जो उन लोगों को झेलना पड़ रहा था, टचुड़ हम लोगों को नहीं झेलना पड़ा।
20: वंदे भारत ट्रेन प्लस जो सुविधाएं हैं, जो सिक्योरिटी है, उसको देख के अभी फील हो रहा है कि अभी कोई भी यहाँ पे डर नहीं है, आराम से आ सकते हैं और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी अरेंजमेंट और रहना चाहिए और इसमें कोई 1% के भी गुंजाइश नहीं की और कुछ करें, काफ़ी बेटर है।
21: इससे 40 दिन और चलेगी और आने वाले दिनों में मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग आइए भोले बाबा के दर्शन कीजिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेफ हो, आप सिक्योर हो। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
14: 60,000 से ज्यादा तीर्थयात्री अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा करीब 50,000 था। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 9 जुलाई तक सभी पंजीकरण स्लॉट फुल होने की बात कही है। साथ ही बिना आधिकारिक रजिस्ट्रेशन के यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल रुकने की सलाह दी गई है। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन तक चलेगी। बालटाल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: भक्ति जब अटूट विश्वास बन जाए तो ना उम्र मायने रखती है ना मुश्किलों की परवाह होती है। ऐसी दो तस्वीरें सामने आई हैं। तिरुमाला में 116 साल के बुजुर्ग ने पैदल चलकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सबको चकित कर दिया, तो वहीं अपनी मन्नत पूरी होने के बाद एक परिवार 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर खाटू श्याम धाम के लिए निकल पड़ा है।
14: कहने को ये दो तस्वीरें हैं, लेकिन इन दोनों तस्वीरों की कहानी एक सी है। एक तस्वीर 116 साल की उम्र में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास की अनूठी मिसाल है, तो दूसरी तस्वीर ईश्वर के चमत्कार को साक्षात नमस्कार है। जैसे ही 116 साल की नवनीथम्मा ने पैदल चलकर तिरुमला की चढ़ाई पूरी की, वहां मौजूद हर किसी की आंखें छलक आईं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने उनकी आस्था और भगवान के प्रति अद्भुत समर्पण को देखते हुए विशेष वीआईपी दर्शन की व्यवस्था की। 116 वर्ष की नवनीथम्मा ने अपने परिवार के साथ पवित्र तिरुमाला मंदिर तक की चढ़ाई उसी रास्ते से पूरी की जहां से हजारों श्रद्धालु रोज मंदिर पहुंचते हैं। 116 साल की नवनीथम्मा के इस भक्तिभाव की तस्वीरें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तक भी पहुंची। उन्होंने नवनीथम्मा का वीडियो शेयर किया और लिखा कि सच्ची भक्ति के मामले में उम्र सचमुच बस एक नंबर है। कर्नाटक की 116 साल की इस दादी को देखकर मैं हैरान और प्रभावित हूँ। दक्षिण के साथ उत्तर से भी आस्था और भगवान के प्रति अटूट विश्वास की कैसी ही तस्वीर सामने आई। सिवनी के विक्की हरिंदरवार कुछ महीने पहले जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। 3 महीने के भीतर 2 बार ब्रेन अटैक आया, शरीर का एक हिस्सा पैरालिसिस की चपेट में आ गया, लेकिन उन्होंने बाबा खाटू श्याम से स्वस्थ होने की मन्नत मांगी। आज वही विक्की पत्नी आशा, 3 साल की बेटी काव्या और साथियों के साथ करीब 1100 किलोमीटर की पदयात्रा पर है। 18 जून से शुरू हुई ये यात्रा जुलाई के आखिर तक खाटू श्याम धाम पहुंचने की उम्मीद है।
0: मैं खाटू श्याम पदयात्रा जा रहा हूँ, मेरी बाबा से अर्जी थी। मेरा स्वास्थ्य खराब था पिछले 10 महीने पहले, ब्रेन अटैक पैरालिसिस था मुझे, तो उसी की अर्जी लेके बाबा के पास जा रहा हूँ। आज स्वस्थ हूँ पूरा मैं, और मैं चाहूँगा, मेरी अर्जी तो है, बाकी सबकी अर्जी लेके जा रहा हूँ।
14: एक और 116 साल की उम्र में भी अटूट विश्वास के साथ भगवान के दरबार तक पहुंची नवनीथम्मा, तो दूसरी ओर बीमारी को हराकर पूरे परिवार के साथ 1100 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले विक्की हरिंदरवार। ये दोनों तस्वीरें बताती हैं कि जब आस्था दिल में बस जाए तो उम्र, दूरी और कठिनाइयां सब पीछे छूट जाती हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: और चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए हवा में हैरतअंगेज स्टंट।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
22: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
23: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: अमरनाथ यात्रा पर जा रहे भक्तों की सेहत का रखा जा रहा पूरा ख्याल। CRPF 84 बटालियन मुहैया करवा रही स्वास्थ्य सेवाएं, रूट पर तैनात है मोबाइल मेडिकल वैन। मथुरा में चंदा चढ़ावा को लेकर बढ़ती जा रही है सतर्कता, गणना कक्ष में बढ़ाई जा रही है सीसीटीवी कैमरों की संख्या, सुपरवाइजर की संख्या भी बढ़ाई गई। इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया अपने देश का सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रपति भवन में ऐतिहासिक स्वागत, ब्रह्मोस की सबसे बड़ी डील पर मोहर, 10 से ज्यादा समझौतों पर बनी बात। रक्षाबंधन पर दिल्ली में महिला समृद्धि योजना होगी लागू, आर्थिक रूप से कमजोर 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये। भीषण बारिश के चलते आज भी मुंबई में स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, सड़क रेल और हवाई सेवा प्रभावित, सावधानी बरतने की अपील की गई।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
2: ब्रेक के बाद के ऊपर साहस और सदियों पुरानी कहानी का आधुनिक मंचन। अब आपको लेकर चलते हैं चीन, जहां एक अनोखा प्रदर्शन ये साबित करता है कि जब संस्कृति और रोमांच साथ में आते हैं तो नजारा यादगार बन जाता है।

0: हजार मीटर गहरी खाई, हवा में तनी एक पतली सी रस्सी और उस पर करतब दिखाते मंकी किंग और उनके साथी। चीन में मशहूर महाकाव्य जर्नी टू द वेस्ट के किरदारों को इस अंदाज में जिंदा किया गया है कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। चीन के गुआंगशी प्रांत के बेईदी माउंटेन सीनिक एरिया में रोमांच, संस्कृति और हैरत का ये संगम देखने को मिला। संतुलन की ऐसी नुमाइश शायद ही कहीं देखने को मिले। लेकिन कलाकार सिर्फ रस्सी पर चले ही नहीं, बल्कि हवा में कलाबाजियां, साइकिल चलाना, पुशअप्स करना, रस्सी पर लेट जाना जैसे कई अजब गजब करतब दिखाकर लोगों को हैरान कर रहे थे। बेईदी माउंटेन की ऊंचाइयों पर पेश किया गया ये रोमांचक शो सिर्फ एडवेंचर का प्रदर्शन नहीं, बल्कि चीन की सांस्कृतिक विरासत को नए अंदाज में दुनिया के सामने लाने की अनोखी पहल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: स्पेन का पैम्पलोना शहर इन दिनों रोमांच, उत्साह और अनोखी परंपरा का साक्षी बन रहा है। यहां पर 10,000 से ज्यादा लोग विश्व प्रसिद्ध सैन फर्मिन उत्सव में शामिल हुए। अगले 9 दिनों तक चलने वाले इस जश्न में सबसे बड़ा आकर्षण होगा बुल रन, यानी वो दौड़ जहां पर इंसानों और बुल के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा।
0: हजारों लोगों का सैलाब, हवा में लहराता लाल रुमाल, आसमान छूते रंग बिरंगे बैलून, ये इस बात का प्रमाण है कि स्पेन के पैम्पलोना शहर में सैन फर्मिन महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो चुकी है। पैम्पलोना के ऐतिहासिक कॉन्सिस्टोरियल स्क्वायर में करीब 10,000 से ज्यादा लोग जुटे। इस मौके पर आतिशबाजी और गीत संगीत के साथ 9 दिनों तक चलने वाले मशहूर उत्सव का आगाज हुआ। सफेद कपड़े और लाल स्कार्फ इस त्योहार की पहचान है। जैसे ही उत्सव की शुरुआत हुई, लोगों ने एक दूसरे पर पानी की बौछार कर जश्न मनाया। साथ ही पूरा चौक उत्साह, संगीत और उल्लास से सराबोर नजर आया। सैन फर्मिन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि स्पेन की सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। अब अगले 9 दिनों तक पैम्पलोना की सकरी गलियों में रनिंग ऑफ द बुल्स के नाम से मशहूर रोमांचक परंपरा निभाई जाएगी, जो इस उत्सव की सबसे बड़ी पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब तक आपने बाजारों में खाने पीने और खरीदारी के स्टॉल्स तो खूब देखे होंगे, लेकिन अगर सड़क किनारे लगा एक स्टॉल आपको किसी की जान बचाना सिखाए तो सुनने में कैसा लगेगा। चीन में इन दिनों ऐसे ही लाइफ सेविंग स्ट्रीट स्टॉल लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हैं। यहां निशुल्क CPR से लेकर घुटन की स्थिति में बचाव और घाव पर फर्स्ट एड देने की ट्रेनिंग दी जा रही है।
0: कोई CPR देना सिखा रहा है तो कोई घुटन से बचने का उपचार बता रहा है। सड़क किनारे लगे इन स्टॉल्स पर ना तो कोई सामान बेचा जा रहा है, ना ही किसी तरह की कोई नुमाइश हो रही है, बल्कि यहाँ लोगों को जिंदगी बचाने की कला सिखाई जा रही है। चीन के हेनान प्रांत के झेंगझोउ शहर में ये अनोखा लाइफ सेविंग स्ट्रीट स्टॉल लगा है, जिसके जरिए लोगों को मुफ्त में प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जा रही है। वॉलंटियर्स लोगों को CPR, गले में खाना फंसने पर अपनाई जाने वाली हाई मिलिख तकनीक, घाव पर पट्टी बांधने के सही तरीके और गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक और डूबने जैसी घटनाओं से बचाव के उपाय सिखा रहे हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई इन स्टॉल्स पर रुक कर जीवन बचाने का गुर सीखने में दिलचस्पी दिखा रहा है, क्योंकि अगर हर कोई ये समझ जाए कि आपात स्थिति में कैसे फर्स्ट एड देना है तो एम्बुलेंस या डॉक्टर के पहुंचने से पहले किसी की जान बचाई जा सकती है। इन स्टॉल्स के जरिए समाज के हर व्यक्ति को लाइफ सेवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि सड़क हो या घर या फिर कोई पब्लिक प्लेस, कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। ऐसे में फर्स्ट एड की छोटी सी जानकारी भी किसी को जीवन दान दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: क्यूबा इन दिनों आर्थिक संकट, ईंधन की कमी और बिजली कटौती जैसी मुश्किलों से जूझ रहा है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच राजधानी हवाना के नेशनल जू से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने जू कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। चार बंगाल टाइगर के बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें एक बेहद ही दुर्लभ सफेद बंगाल टाइगर भी शामिल है। देखिए खास रिपोर्ट।
2: छोटे छोटे कदम, मासूम शरारतें और हर तरफ बिखरी जिंदगी की नई उम्मीद। हवाना के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में चार बंगाल टाइगर के बच्चों का जन्म सिर्फ एक खुशखबरी नहीं, बल्कि मुश्किल दौर में उम्मीद की नई किरण बनकर आया है। जन्म के बाद सभी शावकों का वजन किया जा रहा है, उनकी सेहत की बारीकी से निगरानी रखी जा रही है ताकि उनकी बेहतर परवरिश सुनिश्चित की जा सके।
3: Tratamos de garantizar los estándares de bienestar animal para la especie el tigre bengala con lo más alto posible en dependencia de las condiciones que tengamos.
2: कभी एक दूसरे के पीछे भागते, कभी उछलते कूदते, तो कभी अपनी माँ के इर्द गिर्द मस्ती करते। इन नन्हे शावकों की हर अदा जू कर्मचारियों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। उनके लिए ये सिर्फ चार नए मेहमान नहीं, बल्कि मुश्किल दौर में उम्मीद की नई मुस्कान है। करीब 44 साल से जू में काम कर रहे एंजल पैची कॉरिडो के लिए ये पल किसी सपने के सच होने जैसा है। अपने लंबे करियर में दूसरी बार उन्होंने सफेद बंगाल टाइगर का जन्म देखा है। ज़ेब्रा, दरियाई घोड़े, अफ्रीकन सवाना और अब इन नन्हे टाइगर शावकों की किलकारियां। मुश्किल हालात के बावजूद क्यूबा का ये जू एक संदेश दे रहा है कि अगर जज्बा और समर्पण मजबूत हो तो उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। चार नए मेहमानों की आमद ने न सिर्फ एक दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण की उम्मीद बढ़ाई है, बल्कि ये भी साबित किया है कि चुनौतियों के बीच भी जिंदगी अपना रास्ता बना ही लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: कोटा के एक स्टूडेंट ने ऐसा स्मार्ट प्लांट पॉट तैयार किया है जो पौधों की जरूरतों को आसान तरीके से समझने में मदद करता है। ये स्मार्ट इमोशन पॉट सेंसर और तकनीक की मदद से पौधे की स्थिति पर नजर रखता है और पानी, धूप या देखभाल की जरूरत होने पर मोबाइल पर इमोजी के जरिए अलर्ट भी भेज देता है। इस अनोखे इनोवेशन का मकसद पौधों की देखभाल को आसान, रोचक और तकनीक के साथ जोड़ना है।

0: जरा सोचिए, अगर आपके घर का पौधा बोल पाता तो शायद आपको अपना हाल बताता और आप उसकी जरूरत को पूरा कर पाते। अब तक ये सिर्फ कल्पना थी, लेकिन कोटा के एक युवा इनोवेटर ने इस कल्पना को हकीकत में बदलने की पहल की है। आजाद पब्लिक स्कूल के छात्र और वेल्ट्रियोनेक्स स्मार्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक आर्यन सिंह ने ऐसा स्मार्ट इमोशन पॉट बनाया है जो पौधों की खामोशी को इमोजी की भाषा में बदल देता है।
1: जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जान आ गई है, जहाँ पे प्लांट जो है अपने इमोशन शो कर सकता है कि हाँ उसको प्यास लगने में वो रो रहा है, अंदर रहने पे अगर अकेला है तो उसको डर लग रहा है, या मोशन सेंस कर रहा है तो डर लग रहा है, नाइट में वो सो रहा है, तो जहाँ पे हम उसको देख सकें कि वो एक हमारा फ्रेंड है, हम एज अ फ्रेंड ट्रीट कर सकें उसको।
0: आज के दौर में लोग बड़े जोश से पौधे तो घर ले आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद भागदौड़ भरी जिंदगी में वही पौधे एक कोने में अकेले छूट जाते हैं। पौधों को कभी समय पर पानी नहीं मिलता, कभी धूप नहीं मिल पाती। जब पौधा मुरझाने लगता है तब हमें पेड़ों की तकलीफ पता चलती है। इसी प्रॉब्लम के हल के तौर पर आर्यन को इस स्मार्ट गमले का आइडिया आया।
1: क्या हमने कि कुछ ना कुछ एक ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि वो किसी इंसान से इंटरेक्ट करते हैं, कर सके। जैसे कि हमें पता है आज इंसान आपस में बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो जाता है, लोग एक दूसरे से काफी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो ये हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा प्लांट के साथ किया जाए ताकि उसको एज अपना फ्रेंड ही उसको ट्रीट करें और अपनी सारी बातें उसको शेयर कर सकें, उसके इमोशन देख सकें कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है हर एक चीज में।
0: ये सिर्फ एक स्मार्ट गमला नहीं बल्कि एक डिजिटल प्लांट कंपेनियन है। इसमें लगे सेंसर मिट्टी में नमी, पौधों के हिसाब से तापमान, पानी की जरूरत और रोशनी की आवश्यकता को भाप लेते हैं, और ये स्मार्ट गमला अपने एक्सप्रेशन से हमें पौधों की जरूरत के बारे में बता देता है। जैसे जैसे पौधे की जरूरत बदलती है, वैसे वैसे स्क्रीन पर उसके चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं।
1: ध्यान में रखकर इसको बनाया, इसके अंदर अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं जो कि अलग अलग चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर मॉइस्चर लेवल या मॉइस्चर या वाटर लेवल है तो उसको वो सेंसर देख रहा है, मोशन को मोशन सेंसर डिटेक्ट करने के लिए कर रहा है कि उसके साथ अगर कोई है, तो उसको पूरा बच्चों से फ्रेंडली बनाया है कि अगर वो इतना अभी से ही उतना केयरिंग बन जाते हैं तो आने वाले टाइम पे कुछ वो बेटर आउटपुट दे सकते हैं इस एनवायरमेंट को।
0: आज की पीढ़ी मोबाइल और गैजेट्स के साथ तो जल्दी जुड़ रही है, लेकिन प्रकृति से उनका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में ये स्मार्ट इमोशन पॉट इंसानों और पौधों के बीच दोस्ती का पुल बन सकता है। आर्यन का कहना है कि आने वाले समय में इस स्मार्ट इमोशन पॉट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और API मॉडल से और स्मार्ट बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में ये सिर्फ चेहरे के भाव ही ना दिखाए बल्कि यूजर से बात भी कर सके। कोटा से चेतन गुर्जर, गुड न्यूज टुडे।
2: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
5: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
10: अविश्वास में विश्वास बसता है।
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन है। आज कैप्टन कूल 45 साल के हो गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के बीच में धोनी थाला के नाम से मशहूर हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने खास अंदाज में धोनी को जन्मदिन की बधाई दी है।
17: चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से एक सोशल मीडिया पर धोनी की शान में वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि एक ऐसा नायक जो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका बन गया, ऐसी विरासत जो हर पीढ़ी में जिंदा रहेगी। बेशक एमएसडी टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान रहे हैं, उन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 मैचों को मिलाकर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी की है।
2: और देखिए उन्होंने कुल 332 इंटरनेशनल मैचों में टीम इंडिया की कैप्टनसी की है, जिसमें 178 मैचों में उन्होंने जीत हासिल की है।

0: चलिए इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम मैच के लिए बस इतना ही,
1: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
2: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
1: to live sports action.
3: To the near side corner, to wrap around, he scores!
1: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। Sage University, transforming your passion into profession.
12: अमरनाथ यात्रा पर जा रहे भक्तों की सेहत का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। CRPF 84 बटालियन मुहैया करा रही है स्वास्थ्य सेवाएं। रूट पर तैनात है मोबाइल मेडिकल वैन। मथुरा में चंदा चढ़ावा को लेकर बढ़ती जा रही है सतर्कता। गणना कक्ष में बढ़ाई जा रही है CCTV कैमरे की संख्या। सुपरवाइजर की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया अपने देश का सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रपति भवन में ऐतिहासिक स्वागत। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी डील पर मोहर। 10 से ज्यादा समझौतों पर बनी बात। रक्षाबंधन पर दिल्ली में महिला समृद्धि योजना होगी लागू। आर्थिक रूप से कमजोर 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹2500। भीषण बारिश के चलते आज भी मुंबई में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम। सड़क रेल और हवाई सेवा प्रभावित। सावधानी बरतने की अपील।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: अमरनाथ यात्रा का आज पांचवा दिन, बाबर फानी

गूंज के साथ हुआ खूंटी पूजा अनुष्ठान। कोलकाता की मशहूर चोर बागान दुर्गा पूजा समिति में भव्य समारोह, दुर्गा पूजा उत्सव का काउंटडाउन शुरू।

दुर्गा पूजा उत्सव से जुड़े समारोह में इस साल की थीम अकाल बोधन का अनावरण किया गया। रामायण के प्रसंग से प्रेरित है ये थीम। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित विशाल कलाकृति के अनावरण भी किया गया। दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान पंडाल में भी किया जाएगा प्रदर्शन। इस बार पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव की भव्य तैयारियां। 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक मनाया जाएगा मुख्य उत्सव। हरिद्वार के कनखल में श्री गुरु गोरखनाथ अलख अखाड़ा परिषद ने 11 संतों का पटाभिषेक किया। संतों ने उन्हें धर्म सेवा का संदेश दिया। फूलों की बारिश के बीच हुआ समारोह। महामंडलेश्वरों को चादर विधि से सम्मानित किया गया। नए महामंडलेश्वरों से सनातन धर्म, गायों की रक्षा और लोगों की मदद करने के कहा गया। संतों ने आशीर्वाद देकर उनकी नई जिम्मेदारी सौंपी। श्री गुरु गोरखनाथ अलख अखाड़ा परिषद ने 51 महामंडलेश्वर बनाने का संकल्प लिया। अब तक 41 बनाए जा चुके हैं। अखाड़ा परिषद बाकी 10 महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी कर रहा है। एक आम कुंभ से पहले पूरा करने की योजना। जामनगर के लाठीदड़ से देवभूमि द्वारका तक निकाली गई गौ माता वेदना पदयात्रा। इस पैदल यात्रा में 21 गौ माता हुई शामिल। लगभग 19 दिनों की यात्रा के बाद 21 गायों का झुंड पहुंचा द्वारकाधीश के दरबार। जय गौ माता, जय द्वारकाधीश के नारों से गूंज उठा पूरा परिसर। गौ माता की सुरक्षा और सम्मान का संदेश देने के लिए आयोजित की गई थी यात्रा। गायों के लिए की गई द्वारकाधीश के दर्शन की विशेष व्यवस्था। अमरावती में पांडव गुफा के नाम से मशहूर पवित्र प्राचीन गुफा आज भी श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र। मान्यता के अनुसार महाबली भीम ने यहीं किया था कीचक का वध। इसी गुफा में है करीब 400 वर्ष पुराना मां दुर्गा का मंदिर। मां के दरबार और भगवान शिव के शिवलिंग का जलाभिषेक करती है पहाड़ की चट्टानों से निरंतर बहने वाली प्राकृतिक जलधारा। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीआरपीएफ की 84 बटालियन ने श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल कैंप लगाया। चंदरकोट में दी जा रही है 24 घंटे मुफ्त स्वास्थ्य मदद। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की सेहत का सीआरपीएफ रख रही है खास ध्यान। मोबाइल हेल्थ कैंप से यात्रियों को तुरंत मिल रहा है इलाज। चंदरकोट में सीआरपीएफ जवान बने यात्रियों के लिए मददगार। बीमार या जरूरतमंद श्रद्धालुओं का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी बना रहे हैं अपना 45वां जन्मदिन। रांची में धोनी के फैंस ने उनके फार्म हाउस के बाहर केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर हैप्पी बर्थडे माही के नारों से माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया गया। धोनी के लाखों फैंस ने अपने पसंदीदा क्रिकेटर को शुभकामनाएं दी। धर्मशाला में दलाई लामा का 91वां जन्मदिन मनाया गया। तुसुला खांग मंदिर में प्रार्थना और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। तिब्बती समुदाय ने दलाई लामा को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। लोगों ने पूजा पाठ और पारंपरिक प्रस्तुतियों में हिस्सा लिया। धर्मशाला में दलाई लामा के जन्मदिन पर उत्सव का माहौल। तिब्बती समुदाय के लोगों ने मिलकर समारोह आयोजित किया। तिब्बती समुदाय ने ऊटी में 14वें दलाई लामा का 91वां जन्मदिन मनाया। लोगों ने उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। ले में दलाई लामा का जन्मदिन

0: धूमधाम से मनाया गया चोगल मसा के जीवोत्सव में लोगों ने प्रार्थना और कार्यक्रमों के साथ जश्न मनाया। डल लेक में पर्यटकों की रौनक बढ़ी, श्रीनगर में पर्यटन सीजन ने पकड़ी रफ्तार। शिकारा शहर का लुत्फ उठाते पर्यटकों से झील गुलजार, वहीं पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर खुशी। देश विदेश से पहुंचे सैलानी झील की खूबसूरती का ले रहे हैं आनंद, डल लेक बनी पर्यटकों की पहली पसंद। डल लेक में बढ़ती चहल पहल ने पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया, शिकारा शहर से यादगार बन रही है पर्यटन। शिकारा और स्थानीय कारोबार से जुड़े लोगों में उत्साह, पर्यटकों की लगातार बढ़ती आमद से होटल व्यापारी भी खुश। मुंबई में आज भी तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट, सभी स्कूल कॉलेजेस और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी घोषित। मुंबई में भारी बारिश के चलते सड़क, रेल और हवाई सेवा हुई प्रभावित, लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह। दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया 2 दिन का येलो अलर्ट, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में अगले 2 दिन जमकर बरस सकते हैं बादल। गुजरात छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन हो सकती भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। भारी बारिश के दौरान मुंबई पुणे हाईवे पर लोगों को बड़ी राहत, लैंडस्लाइड के कारण करीब 18 घंटे बंद रहने के बाद मिसिंग लिंक की 2 लेन यातायात के लिए खोली गई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में लगातार 4 दिनों से मूसलाधार बारिश, नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा, उल्हास नदी में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। सूरत में भारी बारिश के कारण पानी जमा होने से स्कूल में फंसे 7 टीचर और 12 छात्र, फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, मौसम विभाग ने अभी और बारिश का अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के कारण बाढ़ से नेशनल हाईवे 244 हुआ बंद, राहत और बचाव में जुटी टीम। अब पौधे भी बताएंगे अपनी भावनाएं, कोटा के छात्र आर्यन सिंह ने बनाया स्मार्ट इमोशन पॉट। ये स्मार्ट इमोशन पॉट पौधों की स्थिति को इमोजी के माध्यम से प्रदर्शित करता है ताकि कोई व्यक्ति आसानी से समझ सके कि पौधे को इस समय किस तरह की देखभाल की जरूरत है। इस अत्याधुनिक स्मार्ट पॉट में लगाए गए हैं सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और वाटर लेवल जैसे आधुनिक सेंसर, जिसके आधार पर डिजिटल स्क्रीन पर बदलते हैं पौधे के चेहरे के भाव। ये सिर्फ एक स्मार्ट गमला नहीं बल्कि एक डिजिटल प्लांट कंपेनियन है जिसका उद्देश्य पौधे और इंसानों के बीच भावनात्मक रिश्ता मजबूत करना है। अब रोज दौड़ेगी बरहमपुर सूरत अमृत भारत एक्सप्रेस, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर दैनिक सेवा का किया शुभारंभ। आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 नॉटिंगम में खेला जाएगा मैच। आज के मैच के समय में हुआ बदलाव, भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा मैच, 9:30 पर होगा टॉस। 5 मैचों की सीरीज में भारत जीत का खाता खोलने के लिए बेकरार, पहला मैच बारिश से धुल जाने के बाद दूसरे मैच में मिली हार, फिलहाल सीरीज में मेजबान इंग्लैंड 1-0 से आगे। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान, 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान। चार नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह की टीम में वापसी, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, अशोक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के पास इस सीरीज में अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका। चिली के एरियल ओसेन ने बचपन के स्टीकर एल्बम के सपने को अपनी कार पर पूरा किया। उन्होंने अपनी नई कार को पूरी तरह से स्टीकर से ढका। तैतीस वर्षीय एरियल ओसेन ने सिर्फ दो हफ्तों में अपनी कार पर 373 स्टीकर्स लगवाए। ये अनोखा मिशन 3 दिन पहले पूरा हुआ। एरियल ने इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया। कमेंट करने वालों को स्टीकर्स उपहार में दिए। एरियल की इस अनोखी पहल को दुनिया भर से मिल रही है सराहना। कई देशों के लोग उन्हें अपनी कार लेकर आने का दे रहे हैं निमंत्रण। स्टीकर बनाने वाली कंपनी ने भी एरियल के इस खास अभियान का समर्थन किया। उनकी स्टीकर से सजी कार अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है। पाम्पलोना में सैन फोमिन फेस्टिवल शुरू। 10,000 से ज्यादा लोगों ने लाल रुमाल लहराकर जश्न मनाया। 9 दिन तक चलने वाले उत्सव में बुल रन मुख्य आकर्षण का केंद्र बने। पटाखों की आवाज के साथ स्पेन के मशहूर फेस्टिवल की शुरुआत हुई। सफेद कपड़े और लाल स्कार्फ में दिखे लोग। अनिसे टोमिंगवे के उपन्यास से मशहूर हुआ यह फेस्टिवल दुनिया भर के पर्यटकों को करता है आकर्षित। लॉन्ग लिव सैन फोमिन के नारों से गूंजा शहर। आने वाले दिनों में हजारों लोग बैलों के साथ दौड़ में हिस्सा लेंगे। ये परंपरा रोमांच के साथ विवादों में भी रहती है। सैन फोमिन के उद्घाटन में लोगों ने जमकर उत्सव मनाया। पानी की बौछारों के बीच हुआ जश्न। क्यूबा के नेशनल जू में खुशखबरी। ईंधन संकट के बीच 4 बंगाल टाइगर शार्कों का जन्म। सफेद बाघ का बच्चा बना आकर्षण का केंद्र। डीजल की कमी से जानवरों की देखभाल मुश्किल। कर्मचारी घोड़ा गाड़ी से चला रहे हैं काम। हजारों जानवरों को बचाने के लिए जू स्टाफ रोज कर रहा है जीतोड़ मेहनत। निजी कंपनियां भी कर रही हैं मदद। 44 साल के केयर टेकर की उम्मीद। मुश्किल दौर में टाइगर श्रॉफों का जन्म बड़ी राहत।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
4: continue to face political pressure to reach a peace deal,
3: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: और अब बात फीफा वर्ल्ड कप की कर लेते हैं। कनाडा के वैंक्यूवर शहर में कोलंबिया के फैंस ने रंग बिरंगे नजारे, संगीत और डांस का माहौल बना दिया। वे हयात रीजेंसी होटल के बाहर जमा हुए थे, जहां स्विट्जरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 मैच से पहले उनकी नेशनल टीम रुकी हुई थी। वैंक्यूवर में रहने वाले कई कोलंबियाई समर्थकों के लिए टीम का शहर में आना अपने कल्चर को घर के पास सेलिब्रेट करने का एक अनोखा मौका था। आज कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। टीम कोलंबिया के फैंस को भरोसा है कि उनकी टीम स्विट्जरलैंड के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल करेगी।

0: और अब बात क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव की। सूर्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वो हेयर कट करवाते नजर आए। दरअसल हाल ही में वो मुंबई के बांद्रा स्थित एक सलून पहुंचे, जहां उन्होंने एक अलग हेयर कट करवाया। इसी वीडियो में सूर्य मस्ती करते हुए भी नजर आए और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
1: बोलो हर हर महादेव,
2: हर हर महादेव। फाइनली
1: अभी इधर आके थोड़ा और अच्छा लग रहा है क्योंकि स्मार्ट बन जाऊंगा ना मैं।
2: सबसे पहले तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस।
1: थैंक यू।
2: ठीक है, और वो पापा वाली फीलिंग में दिख रही है मुझे।
1: देख रहे हो ना, रात में सो नहीं पा रहा हूँ।
2: मेरा भी यही हाल होता है।
1: ऐसी होता है।
2: चलो सर बताओ, सर क्या प्लान किया जाए फिर?
1: अभी आपको मालूम ही है, साइड से एकदम छोटा कर दीजिए और ऊपर से भी मतलब यही
2: स्पाइक में
1: हल्का स्पाइक, बट जैसा आपको सही लगता है।
2: नेचुरल कलर,
1: नेचुरल कलर।
2: साइड शॉट
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
1: कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: अमरनाथ यात्रा पर जा रहे भक्तों की सेहत का रखा जा रहा है पूरा ख्याल, सीआरपीएफ 84 बटालियन मुहैया करा रही है स्वास्थ्य सेवाएं, रूट पर तैनात है मोबाइल मेडिकल वैन। मथुरा में चंदा चढ़ावा को लेकर बरती जा रही है सतर्कता, गणना कक्ष में बढ़ाई जा रही है सीसीटीवी कैमरे की संख्या, सुपरवाइजर की संख्या भी बढ़ाई गई। इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया अपने देश का सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रपति भवन में ऐतिहासिक स्वागत, ब्रह्मोस की सबसे बड़ी डील पर मोहर, 10 से ज्यादा समझौतों पर बनी बात। रक्षाबंधन पर दिल्ली में महिला समृद्धि योजना होगी लागू, आर्थिक रूप से कमजोर 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। भीषण बारिश के चलते आज भी मुंबई में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, सड़क रेल और हवाई सेवा प्रभावित, सावधानी बरतने की अपील।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: चॉकलेट एक ऐसी चीज जिसका नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर आ जाती है स्माइल और दिल में हैप्पीनेस, और बिल्कुल चॉकलेट्स की तरह हमारे टीवी स्टार्स भी लेकर आते हैं ना इमोशंस के अलग अलग फ्लेवर्स. कहीं है रोमांस की स्वीटनेस तो कहीं ड्रामा का बिटरनेस, तो कहीं है सस्पेंस का क्रंची फ्लेवर. तो आज वर्ल्ड चॉकलेट डे पर हम खोलेंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट का स्वीटेस्ट हैम्पर. चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट से भरा हमारा ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ.
7: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए अरमान देगा अभीरा को प्यारा सा सरप्राइज. इमोशनल होंगे अरमान अभीरा. मन्नत बनाएगी प्लान. धैर्य का करेगी पर्दाफाश.

0: अंश और प्रेरणा की शादी के बाद शुरू होगा नया बवाल। क्या करेगी अनुपमा?
1: क्योंकि वो डायरी तो प्रेम बाबू अपने साथ कोठारी हाउस लेकर चले गए हैं, वहाँ कहीं पर छुपा के रखी होगी, है ना प्रेम?
0: और कैसी तेरी दिल लगी की कचरी यानी कि मनप्रीत संग करेंगे डे आउट, जानेंगे उनका दिनचर्या सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में

0: हर दुआ हर मन्नत के साथ जुड़ी होती है एक उम्मीद, और हम तो यही चाहते हैं कि हमारी जो मन्नत है उनकी हर मन्नत पूरी हो जाए। वैसे मन्नत आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड चॉकलेट डे, और यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में हो चॉकलेट की तरह खुशियों वाली मिठास। क्या कुछ हो रहा है मन्नत की कहानी में आज? क्या अभिमन्यु हो जाएंगे ठीक? क्या अभिमन्यु रियलाइज करेंगे कि वो है विक्रांत जो अपनी याददाश्त को भुला बैठे हैं? वेल, कहानी में अभी तो ढेर सारा कंफ्यूजन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन को सॉर्ट होते होते थोड़ा वक्त लगेगा। लेकर चलते हैं आपको मन्नत के सेट पर।
1: मन्नत की नई मुश्किल। धैर्य संग शुरू किया नया ड्रामा। बच्चों को कहानी सुनाती मन्नत। कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में मन्नत को पता चल चुका है कि विक्रांत को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि धैर्य ही है जो अब भी विक्रांत को मारने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उसने हालात से समझौता करते हुए बनाया है एक प्लान, और प्लान ये है कि मन्नत कर रही है धैर्य के सामने ड्रामा कि वो मान चुकी है कि अब विक्रांत उसकी जिंदगी से जा चुका है, और जो विक्रांत है वो विक्रांत नहीं बल्कि उसका हमशक्ल है। यही बात का यकीन मन्नत धैर्य को दिलाना चाहती है। तभी तो देखिए कैसे आज वो धैर्य से कह रही है कि वो विक्रांत को अपनी जिंदगी से निकाल देगी और सिर्फ अपने परिवार पर ध्यान देगी। और लगता है कि मन्नत का ये प्लान काम भी कर रहा है, क्योंकि मन्नत की ये सारी बातें सुनकर धैर्य काफी खुश है।
2: मेजबानी कर दो विक्रांत को, दुआ और मेजबानी के जरिए।

देखिए कैसे धैर्य मन्नत से प्यार जता रहा है और उसकी बात पर एग्री भी कर रहा है। ऐसे में लगता है मन्नत का प्लान हो गया है कामयाब।

0: ऐसे में दूसरी तरफ बच्चे तो जिद पर अड़े हैं कि उन्हें विक्रांत पापा चाहिए, लेकिन मन्नत बच्चों को भी ये कह देती है कि वो विक्रांत नहीं बल्कि उसका कोई हमशक्ल है, क्योंकि पीछे धैर्य जो खड़ा था, और मन्नत को ये यकीन दिलाना है धैर्य को कि वो सब कुछ भुला देगी। ऐसे में देखिए कैसे धैर्य को यकीन भी हो रहा है कि मन्नत झूठ को सच मान चुकी है।
1: मम्मा क्या हुआ, अपने बाबा से बात की? आंटी वो मरीज है ना? हाँ, और नहीं तो क्या, वो ट्विंस हो ही थे।
2: इसका मतलब मन्नत जी विक्रांत से मिलने गई थी।
1: बोलो ना मम्मा क्या हुआ, अच्छे पापा से बात की?
3: मेरी इस चोट के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, खास करके धैर्य जी को।

0: सॉरी सॉरी बच्चों, गलती मेरी है। मुझे ना आपको उम्मीद ही नहीं देनी चाहिए, जिसकी उम्मीद करनी बेकार है। आई एम सॉरी।
1: मतलब पापा ने आपको नहीं पहचाना?
0: वो कैसे पहचानते बेटा, वो पापा है ही नहीं, वो हमशक्ल है पापा के। हाँ बेटा, आपका विश्वास ट्रू है। अभिमन्यु भी विक्रांत है, आपके पापा हैं। आपके पापा ने उन्हें मारा था और आज भी उन्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं। पर बहुत जल्द मम्मा तेरे कुमार का पर्दाफाश करके उनका सच सबके सामने लेकर आएगी।
2: भाई सच्चाई तो मन्नत ही जानती है, उसे पता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। ऐसे में देखिए कैसे आज मन्नत अपने बच्चों संग पहुंच गई है और उन्हें सुना रही है कहानी।
3: प्रिंस की मौत हो गई, प्रिंसेस बहुत हुई, प्रिंसेस ने पूरी कोशिश करी प्रिंस को उठाने की, माँ जी से प्रे करने की, पर प्रिंसेस को छू के जा चुका था।
4: पेन हुआ होगा ना प्रिंस को?
3: बहुत पेन हुआ प्रिंसेस को, इतना पेन हुआ कि प्रिंसेस ने दर्द से चीखा, बहुत तेज चीखा, इतना तेज कि उसकी चीख पूरे जगह पर पहुंच गई।
2: कहानी में देखना होगा कि क्या मन्नत अपने इस मकसद में कामयाब हो पाती है या फिर धैर्य मन्नत का ये प्लान पता कर लेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
0: आज के बाद से हम दोनों पति पत्नी हो जाएंगे।
5: आपकी पत्नी मैं हूँ मिस्टर विक्रांत सलूजा, आपके लिए मैं मौत से भी लड़ जाऊंगी। जैसे सावित्री यमराज से लड़कर अपने सत्यवान को वापस ले आई थी, वैसे वक्त और हालात से लड़कर आपको याद दिलाऊंगी कि आपका पहला और आखिरी प्यार सिर्फ मैं हूँ।
6: कहते हैं ना कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन जब दिल मिल जाए तो खुद ब खुद इश्क की मिठास आ ही जाती है। तो किस तरह बढ़ रही है आज ये कहानी, आगे लेकर चलते हैं आपको 30 के पार जब मिला प्यार के सेट पर, और पता कर आते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है कहानी में अब, क्योंकि कहानी का लेखक फिर से लेकर आया है इसमें भी एक इंटरेस्टिंग मोड।
2: मुश्किल में फंसी तन्वी, धुएं ने बना दी तन्वी और युग की जोड़ी।

चाकू और पड़ी का षड्यंत्र। दंगल टीवी के सीरियल 30 के पार जब मिला प्यार में आज आ गया है मौसम रोमांस का। असल में कमरे में तन्वी है और वहाँ किसी ने बेहोशी का धुआं छोड़ दिया है, जिस वजह से तन्वी हो गई है परेशान।

ऐसे में तन्वी गिरने ही वाली होती है कि युग आकर उसे संभाल लेता है। ऐसे में दोनों की आंखें चार हो जाती है।

भाई इस मुश्किल घड़ी में भी दोनों को मिल गया है रोमांस का बहाना, क्योंकि इनका जुड़ गया है लव कनेक्शन। देखिए कैसे युग तन्वी को बचा रहे हैं, उसके पल्लू से उसका मुंह ढक रहे हैं ताकि तन्वी बेहोश ना हो जाए। ऐसे में रक्षक बन आज युग पहुंच गया है तन्वी को बचाने।

भाई इन्हें रोमांस का बहाना तो मिल गया है, लेकिन इन्हें ये भी जानना है कि आखिरकार तन्वी पर इस तरह से हमला किया किसने। ऐसे में ये दोनों जाते हैं बाहर देखने कि आखिर कौन है इस षड्यंत्र के पीछे।

0: तभी काकू और परी वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन अब तन्वी को ढूंढना है कि आखिर कौन है उसका दुश्मन। वहीं दूसरी तरफ चल रही है व्योम और परी की खट्टी मीठी नोकझोंक, जहां व्योम परी से प्यार करता है लेकिन परी जा रही है उससे दूर दूर।
1: पिछली बार तो खुद से आगे दूसरे पर देखे, इस बार मैंने
2: ये पूरी चॉकलेट ना अपने मुंह में ढूंढ लो ताकि तुम्हारा घटिया मुंह थोड़ी देर के लिए बंद हो सके।
1: वैसे मैं तो तुम्हारे फायदे की बात बोलने वाला था।
0: भाई परी और व्योम का रिश्ता व्योम की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए तो देखिए कैसे वो व्योम को सजा दे रही है स्केल से उसके हाथों पर मारकर।

0: ऐसे में आज व्योम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे परी को वो अगर इस घर में ले आएगा तो वो भी षड्यंत्रों में उसका साथ देगी। और देखिए कैसे वो मना रहा है और लगता है आई साहेब मान भी गई है।
1: जो कुछ भी कर रहा हूँ समझ के कर रहा
2: हूँ। सोचने समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है व्योम। इतने सालों शराब पी पी कर तुमने अपने दिमाग को खोखला कर लिया है। तुमने सोचा भी कैसे कि तनवीर काफी नहीं थी। परी को भी तुम हमारे गले बांधना चाहते हो। वो परी जिसकी बिल्ली जैसी शक्ल लोमड़ी जैसा दिमाग है जब भी हमारा रास्ता काटती है कुछ ना कुछ अनर्थ होता है। तुमने सोचा भी कैसे नहीं होने देंगे हम ये। हमारे जीते जी ये नहीं हो सकता।
0: जहाँ युग और तन्वी की नजदीकियां बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ रचा जा रहा है षड्यंत्र। अब देखना होगा इन सब का सामना तन्वी और युग कैसे करते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: अब कौन सी कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट अचानक आ जाएगा, इसका तो ऑडियंस को भी अंदाजा नहीं होता। तो किस सीरियल में रिश्तों की मिठास बढ़ रही है, तो कहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही हैं कड़वा टेस्ट, चलिए दिखाते हैं आपको हमारा ये इंटरेस्टिंग सेगमेंट और पता कर आते हैं आज कौन से टेलीविजन शो में आया है कोई नया ट्विस्ट।
1: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है, जहां करण अपनी माँ तुलसी से नफरत करने लगा है। ऐसे में वो नहीं चाहता कि तुलसी का साया भी उसके बच्चों पर पड़े।
2: करण को लगता है वो सब कंट्रोल कर रहा है शांतिनी, एक बच्चा उसकी बात नहीं सुनता, एक एक बच्चा उसके हाथ से फिसलता जा रहा है।
3: बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो रहे हैं, तो करण उन पे इतनी सख्ती करना।
4: मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कुछ गलत करें मेरी माँ की तरह।
3: ठीक तो है ना?
5: मेरे कुछ सवाल है नंदनी, जिनके मुझे जवाब चाहिए, मिलोगे मुझसे?
3: कहाँ मिलना है?
1: तो वहीं दूसरी तरफ भेष बदल कर तुलसी घर में मौजूद है, तो क्या होगा तुलसी और करण का आमना सामना?
4: अरे संभल के माजी।
6: कंपटीशन जीतने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि दिमाग और स्ट्रैटेजी की भी जरूरत होती है, क्यों प्रेम बाबू?
1: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। भयांश और प्रेरणा की शादी तो हो चुकी है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब शादी के बाद शुरू हुआ ड्रामा, जहां तुषु ने ये खुलासा किया कि अनुपमा की रेसिपी की डायरी प्रेम ने चुरा ली है, जिसके बाद शुरू हो गया है घर में नया बवाल, जहाँ रिश्ते बिखरते नजर आ रहे हैं।
6: और ये प्रेम बाबू तो बिल्कुल डरते नहीं है, कोई डर ही नहीं है अपने कॉम्पिटिटर का, जैसे कि इसे सारे राज, रहस्य, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स सब पता है।
7: आपकी रेसिपी वाली डायरी कहाँ पे है मम्मी?
8: तुझे मेरी डायरी से क्या करना है?
6: अरे मैं तो बस सिर्फ पूछ रहा हूँ, बताइए ना, आपकी रेसिपी की डायरी आप ही के पास है ना?
8: एक्चुअली मम्मी की डायरी मिल नहीं रही है। मम्मी अपने अपने कमरे में चेक किया था ना?
6: कहीं भी ढूंढ लो मम्मी, शाह हाउस में तो आपकी डायरी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो डायरी तो प्रेम बाबू अपने साथ कोठारी हाउस लेकर चले गए हैं, वहां कहीं पर छुपा के रखी होगी, है ना प्रेम?
1: इसी के साथ अब अनुपमा भी प्रेम से करेगी आमना सामना और पूछेगी सवाल।
6: क्यों आई है?
8: एक सवाल पूछ रही हूँ। प्रेम पूरा बदल चुका है, अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते हैं तो फिर मुझसे मेरे प्रेम को छीन क्यों लिया आपने?
9: जो होठों की हंसी था वो आंखों का आंसू कैसे बन गया? जो मन पर मरहम लगाता था वो दिल पर घाव कैसे करने लग गया?
8: वो अनुपमा बस रु, आपका मम्मी से जो भी प्रॉब्लम है ना वो आप उनसे डील कीजिए, लेकिन मुझे और प्रेम को अपनी लड़ाई में मोहरा मत बनाइए।
9: तेरा सपना तो कैफे शुरू करना था ने? फिर ये सपना इस अनुपमा को बर्बाद करना कब से बन गया?
1: प्लस के सीरियल तुम देना साथ मेरा में रक्षित और अपराजिता इस कमरे से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जहां उन्हें बंद कर रखा था।
9: हल्के से
8: फोकस।
10: वही तो कर रहा हूँ।
8: क्या?
10: वही तो कर रहा था। वही तो मैं क्या करूँ, कुंडली से गिर गई।
8: अब छोड़िए, मैं करती हूँ।
10: पता है साथ में करने से ना कामयाबी मिल जाती है। तुम एक सिरा पकड़।
1: और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। इससे पहले कि ललित आता, ये दोनों हो गए हैं वहाँ से रफू चक्कर। और ललित जब वहाँ पहुँचता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता।
11: आइए सर,
12: क्या हुआ, यहाँ तो कोई भी नहीं है।
11: सर लगता है वो लोग भाग गए।
12: सीधे सीधे बता मेरी बीवी कहाँ है।
13: ए, छोड़ मुझे।
1: इसी के साथ इस मुश्किल घड़ी में रक्षित और अपराजिता की नजदीकियाँ भी बढ़ रही है।
14: एक ललित है जिसने सात फेरों में ली हर कसम तोड़ती और आज मेरी जान लेना चाहते हैं, और रक्षित है जिन्होंने बिना किसी रिश्ते के साथ निभाया है।
1: कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब ललित इन दोनों को ढूंढ लेगा और तान देगा अपराजिता पर बंदूक। अब देखना होगा कि रक्षित कैसे उसे बचाता है।
12: बहुत हीरोइन बनने का शौक है ना तुझे अपराजिता। लो आ गया तुम्हारी कहानी का क्लाइमेक्स। तेरा हीरो जमीन पे है और तेरी सांसें मेरी उंगलियों पर।
9: आपने हमेशा मुझे कमजोर समझे, लेकिन आप भूल गए। आपने जितना मुझे तोड़ने की कोशिश की उतनी ही मजबूत बनती है। चलाइए, खत्म कर दीजिए आज ये किस्से। आज भले ही मेरी सांसें रुक जाए लेकिन आपका अंत तय है।
1: टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में चल रहा है ससुराल गेंदा फूल, जहां पर देवरानी और जेठानियां एक दूसरे से लड़ रही हैं, जहां नर्मदा और रज्जी को करना है मोगरा का खुलासा।
15: इसे देखा जाए तो तुम दोनों के पत्ते बहुत ही कमजोर हैं। जितनी बाजी और चालबाजी चलनी थी ना तुम दोनों ने, चल थी। अब चुपचाप लाइन पे आ जाओ वरना इस घर से बाहर निकलोगे एक साथ। लेकिन हम जानते हैं कि तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगी।
1: तो वही मोगरा चाल पर चाल चले जा रही है और बचती जा रही है। ऐसे में नर्मदा और रज्जी का हर प्लान हो रहा है फेल।
9: तू भी कर ले जो तू कर सकती है।

0: भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां महादेव खुद नर्मदा और रज्जू से माफ़ी मांगने को कहेंगे, वो भी मोगरा से।
1: अगर माफ़ी मांगनी है तो नर्मदा को मांगनी चाहिए मोगरा से। नर्मदा, माफ़ी मांगो मोगरा से।
2: हर चॉकलेट के पीछे एक मीठी कहानी होती है, उसी तरह हर इंसान के पीछे भी एक बैक स्टोरी होती है। और तुम हो ना के इस मंच पर हर कंटेस्टेंट सुनाता है हमें अपनी इंस्पायरिंग स्टोरीज, और उसके साथ साथ इमोशंस, लाफ्टर, मस्ती एंड गेम्स बनाते हैं इस शो को बहुत ही एंटरटेनिंग। तो चलिए फिर मिलते हैं आज के स्पेशल गेस्ट से, लेकर चलते हैं आपको सीधा तुम हो ना के इस मंच पर।
3: इनका ये मानना है कि अगर इनका मूड ऑफ हो तो इनके पति का भी मूड ऑफ होना चाहिए। जोरदार तालियां पटना से आई हमारी सुपरस्टार आरती कुमारी जी के लिए।
4: बहुत बहुत धन्यवाद
3: यार, बड़ी डिमांडिंग है।
4: इतना ध्यान रखते हो, आपको पता है उनके कपड़े तक मैं सिलेक्ट करती हूँ। आज देखो अच्छे ही लग रहा है।
3: नमस्कार, कमाल के लग रहे हैं। ये आपकी सिलेक्शन है?
4: कपड़े मेरे
3: कपड़े आपकी सिलेक्शन है, और
4: वो,
3: ये
4: वो हमारे माता पिता जी की सिलेक्शन।
5: ये हर लाइफ के फेज में इन्होंने मेरे साथ दिया है। कोविड में हम घर में ही थे, बट कोविड के बाद एक से एक बार डिजीज आया, ऑटो इम्यून डिजीज हो गया। ऑटो इम्यून वॉज अर्थराइटिस, जो काफी सीवियर था। इट वॉज लाइक 6 months में बेड रिडन था। वो टाइम में इन्होंने काफी साथ दिया। ऑफकोर्स डॉक्टर्स तो थे ही, बट काफी मालिश करती थी, बिकॉज ऑल जॉइंट्स वेयर लाइक यू कांट मूव इट, सब डिसफॉर्म जैसे हो गए थे।
4: जब आप इस तरीके की फेस से निकलते, सिर्फ इसी फेस से नहीं, हमारी शादी को 13 साल हो गए, हमारे बच्चे नहीं है। ये फेज में जैसे वो फेज में मैंने साथ दिया, मेरे ट्रीटमेंट में मेरे लिए ट्रीटमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे। अगर वो साथ नहीं है तो मेरा ट्रीटमेंट पॉजिटिव कभी होगा भी नहीं। बिकॉज जब आप IVF के लिए जाते हो, आपको हर एक साइकिल से गुजरना पड़ता है, एंड इट्स पेनफुल एट द सेम टाइम। ऑलरेडी मेरे मिसकैरेजेस हो चुके हैं, सो मैं इतने सारे हम लोग अप एंड डाउन्स में गुजरे हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वो है, हम दोनों हैं। मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ, बट हर बार सेम चीज़ें।
5: मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, हम दोनों भी अकेले रहे तो कोई बात नहीं है, आई एम ऑलवेज विद यू, आई लव यू।
3: इनके बारे में ऐसी अफवाह है कि शादी के मंडप पर भी जब पंडित जी मंत्र जप रहे थे, ये चुपचाप सूमड़ी में किताब पर। जोरदार तालियां मेरठ से आई हमारी सुपरस्टार अंशु जौहरी जी के लिए। बचपन लाइब्रेरी में गुजरा गया आपका?
6: सर पढ़ाई करती रही मैं
3: जी,
6: तो बॉयफ्रेंड भी नहीं बना, सीधे हस्बैंड आ गया मेरे पास। हम इत्तेफाक से मिल गए कि मेरी पुणे में जॉब लगी, और हम दोनों एक ही कंपनी में थे, हम बात नहीं करते थे। और बोलते हैं ना, जब ऊपर वाला चाहता है कुछ तो वो हो जाता है। इनके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, हम कंपनी में अकोमोडेशन दी थी, हम वहाँ रहते थे, और वॉक पे ऐसे ही मिले, बात हुई, यूपी बिहार का मिलन हुआ, और हमारी शादी हो गई। मेरी शादी के 1 साल बाद मैंने कंसीव किया, और बच्चा मतलब था, और कोरोना आ गया सर। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को कोरोना रहा तो मैं आपकी डिलीवरी नहीं करूँगी। तो सर रोज मैं डर के अंदर में जी रही थी, पर वो जो हमारी बॉन्डिंग हुई सर, मैं बोलूंगी मुझे और इन्हें ऐसा लगा कि सातों जन्म हमें साथ रहना चाहिए। ये हमेशा मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि तुम ना, हमारी अरेंज मैरिज हुई है, पर लोग बेस्ट फ्रेंड से शादी करते हैं, पर वाइफ इनकी बेस्ट फ्रेंड बन गई हूँ मैं। वो ठीक है, रोमांटिक नहीं है, थोड़े एक्सप्रेसिवनेस भी नहीं है, चीजों को खुल के नहीं बोलते।
7: मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं, कभी थैंक यू बोलना है, मैं बहुत कम बोलता हूँ। अब मुझे लगता है कि थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर में कोई भी हो, और मैंने खास करके अंशु से सीखा है कि कभी भी कोई भी काम करो तो उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। जैसे आप एक अंशु देख रहे हैं, मैं एक वाइफ देख रहा हूँ, एक बच्चों की माँ देख रहा हूँ, एक बहू देख रहा हूँ। आई लव यू अंशु, और थैंक यू वेरी मच मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर का।
2: चॉकलेट डे पर हमारे लिए एंटरटेनमेंट की चॉकलेटी मिठास अब लेकर आ रही है मनप्रीत कौर, जो है कैसी तेरी दिल लगी की कजरी। आज हमारी टीम कर रही है उनसे एक खास मुलाकात. कैसी हैं वो ऑफ स्क्रीन, कैसा है उनका घर, किस तरह रखती हैं अपने आप को फिट. हमने किया है इनके साथ घर से सेट तक का सफर भी. आइए करते हैं इनसे ये खास मुलाकात.

0: कजरी के कजरारे नैन। मनप्रीत का स्वैगर, कभी काजल तो कभी कजरी का अनोखा अंदाज। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है मनप्रीत कौर, जिन्हें आप सीरियल मन सुंदर में पलक के किरदार में देख चुके हैं और अब वो नजर आएंगी डबल रोल में। जी हाँ, दंगल के शो कैसी तेरी दिल लगी में वो डबल रोल निभा रही हैं, यानी एक है कजरी तो दूसरी काजल। दोनों ही एक दूसरे से काफी अलग है।
1: कजरी, काजल या कठपुतली, मेरे हाथों की तुम्हारी जिंदगी पर मेरा कर्ज है।
2: कर ऐसा कर्ज चल जाए ना जिंदगी भर उतारने का मन ना हो।
1: सिद्धार्थ, ये है मेरा जिगरी दोस्त, अपनी शादी के लिए एक परफेक्ट सी लड़की ढूंढ रहा था। मैंने कहा शादी तेरी है पर पसंद मेरी होगी।
3: झूठा प्यार जताया क्यों, चाहना ही था तो मेरी जिंदगी में आएगी।
0: ऐसे में आज हम कजरी काजल के साथ साथ मनप्रीत के बारे में भी ढेर सारी बातें जानेंगे। आज हम देखेंगे मनप्रीत का आशियाना। करेंगे उनके साथ उनके घर की सैर। देखेंगे उनका डांसिंग टैलेंट। जानेंगे मनप्रीत का दिनचर्या, उनका फिटनेस फंडा। मिलेंगे उनकी बहना से। घर से सेट तक का सफर होगा और साथ देखेंगे वो कैसे मनप्रीत से कजरी के किरदार में ढलती है। साथ ही मिलेंगे उनके को-स्टार से भी, यानी कि ये डे आउट में है ढेर सारी मस्ती और फन। तो बिना देर किए चलिए करते हैं मनप्रीत संग इस डे आउट की शुरुआत। तो भाई मनप्रीत अपने दिन की शुरुआत जिम से करती है। जी हाँ, वो एक भी दिन वर्कआउट मिस नहीं करती, अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखती है और आज भी वो सुबह सुबह पहुँच गई है जिम में करने अपना वर्कआउट सेशन। तो चलिए हम भी देखते हैं कि क्या है उनकी इस फिटनेस का राज और अपने इस वर्कआउट सेशन में वो क्या कुछ एक्सरसाइजेस करती है।
4: सास बहू बेटिया की आज की मेहमान है मनप्रीत, जो प्ले कर रही है कजरी कैसी तेरी दिल लगी में। कैसा लग रहा है, मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है एकदम जोश भरी हुई, जिम के बाहर है हम और अब अंदर जाके वर्कआउट भी करने वाले हैं, तो ऐसी रोज मॉर्निंग होती है?
2: हाँ, मेरी मॉर्निंग हमेशा जिम से स्टार्ट होती है। मैं सुबह उठते ही सबसे पहला काम करती हूँ कि आई टेक माय ब्लैक कॉफी एंड आई हेड स्ट्रेट टू द जिम।
4: तो आज कैसा रहने वाला है वर्कआउट सेशन?
2: आज मेरा वर्कआउट सेशन वो मेरे ट्रेनर बताएंगे, उनको ही पता होता है, मैं कुछ नहीं जानती वर्कआउट के बारे में। ही गाइड मी एंड आई विल डू इट।

0: तो देखा आपने आज उन्होंने कितनी सारी एक्सरसाइजेस की है। तो आइए मनप्रीत और उनके ट्रेनर से ही जानते हैं कि आज के वर्कआउट सेशन में क्या कुछ खास रहा।
1: सो हेलो एवरीवन, मैं 3 दिन से मेरा जिम

0: यूजुअली मैं वैसे नहीं करती हूँ, बट
1: कि जितना मैंने मैम को डाइट चार्ट में बना के दिया हुआ है उससे काफ़ी वेटरी करते हैं मैम। जैसे कि मैंने उसमें 1700 कैलोरीज दी हुई है, तो मैम उससे भी कमी अफोर्ड करते हैं। तो डाइट में तो मैम काफ़ी बेटर है, पर वर्कआउट में थोड़ा स्लो है, पर वो बाकी मैं देख लेता हूँ इधर।
2: तो भाई वर्कआउट सेशन हुआ पूरा, अब बारी घर जाने की, क्योंकि झटपट से रेडी जो होना है सेट पर जाने के लिए। तो चलिए हम भी चलते हैं मनप्रीत के घर पर और जानते हैं उनके बारे में कई और बातें।
0: तो अभी मेरा जिम वर्कआउट पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम सीधा घर जा रहे हैं और आप लोगों को भी अपना घर दिखाती हूँ कि मेरा घर कैसा है, फिर अपना डाइट प्लान भी दिखाऊंगी जो अभी उन्होंने बताया। चलो फिर घर चलते।

0: तो ड्राइव कर मनप्रीत सर हम भी पहुंच गए हैं उनके घर पर। अब घूमते हैं इनका आशियाना और देखते हैं किस तरह से मनप्रीत ने अपने घर को सजाया है।
1: सब हम आ गए मेरे घर, सो वेलकम टू माय होम स्वीट होम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरे पापा की पिक्चर है, आई लव माय फादर। ये मेरे मम्मी पापा है, फिर से मेरे पापा है क्योंकि मैं अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये मेरी कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें पलक भी है, जो मैंने पहला कैरेक्टर किया है मन सुंदर में, वो भी है। ये मेरे मन सुंदर के टाइम की है, जब मैं मन सुंदर में शूट करी थी एज पलक का कैरेक्टर करती थी, तो वहाँ पे सेट पे मैंने ये पिक्चर क्लिक करवाई थी और मैंने इसको, हमने किसी शूट में इस पिक्चर को यूज़ किया था, तो मैंने वहाँ से ले लिया था और मैंने घर पे लगाई है अपनी पिक्चर। और ये सब चीज़ें थोड़ी सी गिफ्टेड है, मेरे को एक्टर ने मुझे गिफ्ट की थी, ये भी मेरे को एक्टर ने मुझे गिफ्ट की है। ये मेरा मन सुंदर का 1000 एपिसोड का है। ये हमने 1000 एपिसोड्स कंप्लीट किए थे दंगल पे ही, और अब मेरा नया शो आ रहा है तो वो भी आप लोगों को देखना है, और उसको भी 1000, 2000, 3000, 5000 एपिसोड्स तक लेके जाना है, ठीक है। प्लांट्स की भी ना अलग ही हिस्ट्री है, मैं बहुत ही नेचर लवर इंसान थी, तो मैंने अपने पूरे घर में से प्लांट्स लगाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था प्लांट्स। बट फिर मैंने एस्ट्रोलॉजर से बात की, उसने बोला प्लांट्स आपके लिए हानिकारक है, हटा दो जितने हो सकते हैं। अब मैं उसको सोच रही, मैंने इतने सारे प्लांट्स लगा रहे, मैं क्या करूँ उसका। फिर मैंने धीरे धीरे धीरे धीरे उसको पानी देना बंद किया, फिर धीरे धीरे बेचारे चले गए, फिर मैंने ये सब कर दिया कि ठीक है। और ये हमारे घर का मंदिर है जिसमें हम रोज़ पूजा करते हैं। ये बाबा जी हैं, मैं सरदार हूँ, तो ये हमारे 10 गुरु हैं, बाकी सबकी भी है। लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, तो कुछ बुक्स मैं पढ़ती हूँ जो कि मैं कभी कभी, मैंने इसलिए टीवी के सामने रखा है, जब भी मुझे टीवी देखने का मन करे तो मुझे याद रहे कि बुक्स भी है, बुक्स भी पढ़ सकती हूँ मैं टीवी की जगह। तो कुछ बुक्स तो इसमें पढ़ती हूँ, एन एक्टर प्रिपेयर्स जो अभी मैं रिसेंटली पढ़ रही हूँ इस बुक में, और अभी मैंने स्टार्ट किया है तो उसके बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगी। दूसरी बुक मैंने ये पढ़ चुकी हूँ, एल्केमिस्ट, ये मुझे लगता है सबको पढ़नी चाहिए, बहुत ही अच्छी बुक है और आपको बताएगी कि मतलब बहुत चीज़ें सिखा जाती है। एक और मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं नॉन फिक्शन बुक्स थोड़ी कम पढ़ती हूँ, तो इट्स अ फिक्शन बुक, स्टोरी है प्रॉपर, बट काफ़ी लेसन्स दे के जाएगी ये बुक। कुछ ये मिथ्स एंड लोर ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, तो मैं अपने रिलीजन के बारे में काफ़ी पढ़ना पसंद करती हूँ, तो ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में, मैंने गुरु नानक देव जी के बारे में एक बुक पढ़ी थी जिससे मुझे इतनी नॉलेज मिली और इतना कुछ सीखने को मिला उनकी लाइफ से रिलेटेड, या वो जो 10% हम सरदारों में होता है कि हम 10% अपना कमाई का दान दे देते हैं, तो वो पता चला कि उन्होंने कब शुरू किया था, कैसे शुरू हुआ था।
0: भाई ये पंजाबी कुड़ी मुंबई में काम के चलते अकेले ही रहती है, और इन दिनों उनकी बहन आई हुई है जो किचन में बना रही है अपनी बहन के लिए स्पेशल वाला टिफिन, क्योंकि मनप्रीत का डाइट वाला खाना होता है और उनकी बहन इसका पूरा पूरा ध्यान रखती है। तो चलिए मिलते हैं उनकी बहना से।
1: तो वैसे तो मैं घर पे अकेली रहती हूँ, मतलब ये मेरा अकेले का फ्लैट है, मैं अकेले ही रहती हूँ, बट अभी मुझे शो मिला है तो मेरी सिस्टर आई हुई है, मतलब चीज़ें सेट करने के लिए, बिकॉज अभी बहुत हेक्टिक हो जाता है जब आप नया शो लेते हो, जब आप बहुत रेगुलर काम करते हो, तो अभी वो चीज़ें सेट करने आई है, तो चलो मैं आपको अपनी दीदी से मिलवाती हूँ। आ जाओ। तो यहाँ पे तो प्रिपरेशन चल रही है प्रॉपर मेरी, जैसे मैंने बताया मैं डाइट करती हूँ, तो प्रॉपरली प्रिपरेशन चल रही है मेरे डाइट की।

0: और ये मेरी सिस्टर है अजमनीत, शी इज माई सिस्टर मनमीत मनप्रीत मनमीत. मेरे पापा को, मेरे मम्मी पापा को कोई नाम नहीं सूझा, उनको लगा मन है प्रीतमीत कर दो तो इट्स मनमीत मनप्रीत.
1: बहुत खुश है हम लोग इसे ग्रो करें, हम लोग यही चाहते हैं.
0: अब ये भी देखेगी कैसी तेरी दिल लगी रोज, मेरे घर वाले भी देखेंगे और आप सब भी देखोगे. वो खाना बनाने वाली है, खाना बनाती है और मुझे बहुत हेल्प है इनकी. मतलब अगर ये नहीं होती ना तो मुझे नहीं लगता मैं अपनी डाइट कर पाती. बहुत अच्छी है और सब कुछ हाथ में दे देती है. मतलब सब बना के मेरे हाथ में पकड़ा देती कि दीदी जाओ.
2: तो अभी हम ये मेरे लिए नहीं आता बन रहा है ये हम गार्लिक चीज स्प्रेड बना रहे हैं और हम इसको भी एयर फ्रायर में डालेंगे. दीदी मेरी प्रिपरेशन कर रही हैं मेरे डाइट की, विच इज़ दिस एग वाइट ऑमलेट. ये सिर्फ एग वाइट का बना है. ये लो पार्ट हमने योक निकाल दिया है बेसिकली. दिस इज पनीर सॉटे कर दिया हमने, पनीर सॉटे किया उसमें हल्का सा नमक, पिंच ऑफ सॉल्ट, दैट्स इट. तो ये मेरा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर हो चुका है, वो हमने इडली में, ये हमने इडली फ्राई किया और साथ में हमने सांभर बनाया है. किसको पसंद है इडली सांभर? ये मेरा दिन का लंच होगा. और अभी मैं रेडी हो गई, नारियल पानी पीऊंगा.
3: अब बाकी के घर के बीच सैर कर ली जाए.
0: तो अभी मैं आप लोग को अपना रूम दिखाऊंगी. अभी मैं सेट पे जा रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरी नीस सोई हुई है, मेरी दीदी की बेटी है ये और ये बहुत शैतान है और सोई हुई है. अभी उठी होती तो सबका जीना आराम कर दिया होता, इसने अभी सबसे बात कर रही होती बट अभी सो रही है. तो ये मेरा छोटा सा प्यारा सा रूम है और कुछ गुड्डे हैं जो मैंने अंदर ही रख दिए ऊपर ही, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी नीज आई हुई है तो उसको वो सारा ख़राब कर देगी, तो मैंने सब अंदर रख दिया. तो अभी इसके बाद मैं रेडी होती हूँ, तब तक मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है और मैं आपको रेडी होके मिलती हूँ. तो अब हमने कर लिया है चेंज, और चेंज करने के बाद सबसे पहले काम होता है हम पूजा करेंगे, फिर पूजा करने के बाद हम सेट के लिए निकलेंगे. हम बहुत लेट होने वाले हैं, हुए नहीं अभी तक, होने वाले हैं. तो हम जल्दी जल्दी पूजा करेंगे और हम जल्दी जल्दी जाएंगे.

तो भाई मनप्रीत झटपट से चेंज कर आ गई है और हो गई है रेडी सेट पर जाने के लिए। लेकिन घर से निकलने से पहले वो रोजाना पूजा करना नहीं भूलती और आज भी वो कुछ यही कर रही है, जहां वो भक्ति में लीन हो चुकी है।

भाई पूजा तो हो गई, अब बारी इनके डांसिंग टैलेंट की। तो आइए देखते हैं कैसा होता है मनप्रीत का हैप्पी डांस। इस डांस में मनप्रीत की बहन ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया है। और जब दो पंजाबी कुड़ी साथ हो तो ऐसे में भांगड़ा ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है।

0: तो भाई अब बारी झटपट से ब्रेकफास्ट कर सेट के लिए रवाना होने की। तो आज डाइट से थोड़ा ब्रेक लेकर मनप्रीत क्या नाश्ता कर रही हैं, आइए देखते हैं।
1: सुबह हो गई है, मैं रेडी हो चुकी हूँ शूट पे जाने के लिए, पूजा भी हो गई। तो अब हम पीएंगे अपना नारियल पानी, और नारियल पानी पीने के बाद फिर हम अपना ब्रेकफास्ट लेंगे और हम शूट पे जाएंगे। तो और हमने यहाँ पे गार्लिक ब्रेड भी रेडी किया हुआ है, साथ में कॉफ़ी है। तो गार्लिक ब्रेड मैं खा लेती हूँ साथ में। सो दिस इज़ गार्लिक ब्रेड, इसमें चीज़ है, नहीं खाया जाता मुझे डाइट रूम में, बस फिर भी खा लेती हूँ, चीट डे। वाओ वाओ मम्मी बहुत अच्छा बने
2: है।
0: तो चलिए ब्रेकफास्ट भी हो गया, अब बारी सेट पर जाने की। लेकिन इससे पहले मनप्रीत अपना टिफिन रेडी कर रही है और अपने डब्बे को पैक कर वो जा रही है सेट की ओर।
1: तो ये मेरे सेट का बैग है जो कि ऑलरेडी मैं रात से रेडी करके रखती हूँ। अभी ये लंच बॉक्स अभी रेडी हुआ है, मुझे भी नहीं पता दीदी ने क्या क्या दिया है, तो मेरे लिए भी सरप्राइज होगा, मैं भी चेक करती हूँ। ओके, तो ये तो मैंने बताया ही था, ये एग वाइट ऑमलेट है जो कि मैं ब्रेकफास्ट में लेती हूँ। ये पनीर सॉटे किया हुआ है, और दिस इज इडली फ्राई की हुई है दीदी ने, और साथ में स्प्राउट्स सांभर या दाल बड़े बड़े मुझे नहीं पता। तो अभी हमारा आपने घर देख लिया, होम स्वीट होम। अब हम जा रहे हैं सेट पे, अब मैं सेट आपको सबसे मिलवाती हूँ, चलो सेट पे चले अब। तो अभी हम सेट पे जा रहे हैं, सेट है हमारा कैसी तेरी दिल लगी का, और मैं चाहती हूँ कि आप उस शो को इतना इतना इतना प्यार दो जितना आपने पलक कैरेक्टर को दिया है। मैं चाहूँगी उससे कहीं गुना ज़्यादा आप उस कैरेक्टर को कजरी को प्यार दो। कजरी बहुत ही रियल लड़की है जो आपको लगेगा, जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे कहीं ना कहीं, वो मतलब उसका कैरेक्टर आपको लगेगा कि रियल है बहुत ही। तो प्लीज़ उसको देखो और उसको उतना ही प्यार दो जितना आपने मुझे दिया है, और आगे भी ऐसे ही देते रहो। और अभी बाय, अभी हम जा रहे हैं सेट पे, चलो।
0: तो शुरू हो चुका है घर से सेट तक का ये सफर। वैसे आपको बता दें कि मनप्रीत खुद ही ड्राइव कर सेट तक पहुंचती है।

0: फाइनली हम पहुंच गए हैं कैसी तेरी दिल लगी के सेट पर, जहां अब मनप्रीत कजरी के किरदार में ढलने वाली है। तो सीधा चलते हैं इनके मेकअप रूम में।
1: सेट पे रेडी होने जा रहे हैं, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं रेडी कैसे होती हूँ, मनप्रीत से कजरी कैसे बनती हूँ और अपने सेट की फैमिली से भी मिलाती हूँ। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। तो आ जाइए, मैं आपको अपना मेकअप रूम दिखाती हूँ, मेरा मेकअप रूम कैसा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये है मेरा मेकअप रूम, अभी यहाँ पे मैं मनप्रीत से कजरी बनूंगी। तो ये मेरा आज का कजरी का कॉस्ट्यूम, तो अभी हम चेंज करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है, बाय बाय।
0: तो चेंज कर, आधी कजरी तो मनप्रीत बन चुकी है, अब बारी मेकअप की। आज वो काजल नहीं बल्कि कजरी बनने वाली है, जिसका थोड़ा डार्क मेकअप होता है, हेयर स्टाइलिंग भी अलग होती है। लेकिन इन सब से पहले मनप्रीत कर रही है अपना स्किन प्रेप, जो है काफी जरूरी।
1: जो चुका है, मैंने अपना चेंज कर लिया है, अब मैं थोड़ा सा स्किन प्रेप करूंगी, फिर हमारा मेकअप स्टार्ट होगा और हेयर स्टार्ट होगा, और उसके बाद मैं मनप्रीत कजरी बन जाऊंगी, ठीक है। तो स्किन प्रेप करते वक्त स्किन प्रेप भी बताती हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ अपना टोनर, उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ अपनी विटामिन सी की क्रीम।

0: क्या मेरा मॉइस्चराइजर यूज करेंगे हम मॉइस्चराइजर।
1: तो भाई हो चुकी है मेकअप की शुरुआत और अब धीरे धीरे मनप्रीत कजरी बन जाएंगी। तो आइए देखते हैं कैसा है इनका मेकअप, क्योंकि होने वाला है मनप्रीत का मेकओवर।
0: अभी हमने मेकअप शुरू कर दिया है, मैं मनप्रीत से कजरी बन रही हूँ और मुझे मनप्रीत से कजरी बनाते हैं ये हमारे कार्तिक दादा। कार्तिक ये मेकअप करते हैं और बहुत ही अच्छा मेकअप करते हैं। कजरी में कुछ नहीं होता, देखो कजरी में ना मुझे से ये लोग टोन डाउन कर देते हैं। मुझे थोड़ा सा डल करते हैं लोग। क्या करते हो डल करने के बता जरा। मेकअप में मुझे टोन डाउन कर दिया गया। तब तक जब तक ये मेकअप हो रहा है तब तक मैं आपको अपने शो के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। शो का नाम है कैसी तेरी दिल लगी और इस शो में मैं कजरी और काजल दो कैरेक्टर प्ले करूँगी। जैसा कि आपने प्रोमो में देखा होगा, काजल इज़ अ वेरी पॉइज्ड और मतलब दी एलिगेंट लड़की दिखाया गया है काजल को, और कजरी थोड़ी सी स्लम गर्ल है, बहुत ही बिंदास फ्री माइंडेड फ्री स्पिरिटेड गर्ल जो जिसको किसी की चिंता नहीं है, कुछ भी बोल देती है, कैसी भी बातें कर लेती है। अच्छा आज तो हम कजरी से मिल रहे हैं, आप देखो ना मुझे टोन डाउन किया जा रहा है। आज हम कजरी से मिलेंगे। कजरी ऐसे कपड़े पहनती है, वेरी वेरी ऐसा खुले खुले एकदम

0: भाई कजरी का मेकअप और हेयर स्टाइलिंग तो हो चुकी है, लेकिन अब बारी ज्वेलरी पहनने की, जिससे कजरी का ये पूरा लुक कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या कुछ ज्वेलरी कजरी पहनती है।
1: कजरी के लुक पे मुझे बैंगल्स दी गई हैं, जो कि बहुत ही ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, जैसे कि मतलब यूजुअली जो थोड़ा सा गांव की लड़कियां हैं ये ऐसे पहनती हैं ऑक्सीडाइज। मैं भी ऑक्सीडाइज पहनती हूँ, मुझे ऑक्सीडाइज बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे ऐसा ही लुक दिया गया। मेरी जितनी भी ज्वेलरी हैं सब ऑक्सीडाइज हैं। ये मेरे इयररिंग्स हैं, और इयररिंग्स ऐसे वाले नहीं हैं, इयररिंग में दिखाती हूँ ऐसे करके, और ये सो ये है मेरी ज्वेलरी और इयररिंग्स। कजरी नोज पिन हमेशा पहनती है, तो ये रही नोज पिन। और फिर ये रहा हमारे गले।

0: कचरी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, अब बारी सेट पर जाने की, क्योंकि शूटिंग भी तो शुरू करनी है। लेकिन सीन शूट करने से पहले कचरी ने हमें मिलवाया आकाश से, जिनके साथ इनकी बॉन्डिंग अभी से ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है।
1: अभी हम सेट पे आ गए हैं और हमारा शॉट रेडी है, हम शूट करने जा रहे हैं। और आज मेरा जो सीन है वो आकाश के साथ है, मीट आकाश।
2: दोनों बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। मनप्रीत थोड़ी सी अपने में रहती है, कजरी उतनी ही मुंहफट है, तो इसलिए मेरी इसके साथ थोड़ी ज्यादा बनती है, क्योंकि मैं भी थोड़ा अपने में रहने वाला इंसान हूँ।
1: आकाश और विश्वास के बीच में देखा जाए तो मुझे लगता है कि विश्वास भी बहुत अपने में रहते हैं, आकाश भी बहुत अपने में रहते हैं, लेकिन आकाश के अंदर वो रॉब ज़्यादा है वो, लेकिन आकाश मतलब बहुत ही ऐसा है कि बहुत बाउंड्री रखता है। विश्वास थोड़ा सा घुल मिल जाता है लोगों से और सेट पे बहुत प्यार से रहता है और बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है मेरा।
0: तो भाई आप सब भी हो जाइए तैयार कैसी तेरी दिल लगी में कजरी और काजल की ये कहानी देखने के लिए, क्योंकि नया सीरियल है और नई कहानी है।
1: तो कजरी को बहुत ढेर सारा प्यार देना, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ढेर सारा प्यार देना, और आई लव यू। और आप भी कजरी को उतना ही प्यार दो जितना मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज मेरा शो देखो, ठीक है? चलो बाय बाय, लव यू। और मैं सेट पे जा रही हूँ, बाय।
0: मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: हिम्मत और हौसले की कहानी जब इमोशन से जुड़ जाती है ना, तो उसके रंग और भी खास हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर जगदात्री और शिवाय की कहानी में। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इन दोनों के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में। आज लेकर चलते हैं आप सबको जगदात्री के सेट पर।
4: बहारा, बहारा, हुआ दिल।
0: जगदात्री बनी दुल्हन। शिवाय के लिए जगधात्री का 16 श्रृंगार। शादी के मौके पर शामिल जगधात्री का पूरा परिवार। जी टीवी के सीरियल जगधात्री में आज होने वाली है जगधात्री और शिवाय की शादी। ऐसे में आज जगधात्री बनेंगी शिवाय की दुल्हन, करेंगी शिवाय के नाम का 16 श्रृंगार। ऐसे में सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सीन शुरू होने से पहले ही जगधात्री के सेट पर, जहां पर आज जगधात्री कैमरे के सामने ही सोनाक्षी से जगधात्री बनेंगी और करेंगी दुल्हन का मेकअप।

0: हाय एवरीवन, मैं हूँ सोनाक्षी बत्रा, यानी कि आपकी जगधात्री। जिनको नहीं पता, हमारा एक शो आता है जगधात्री ऑन जी टीवी 10 बजे रात को। एंड आज हमारे शो में ब्राइडल लुक है, मेरी शादी होने वाली है शिवाय के साथ। एंड उसी के लिए मैं रेडी होने वाली हूँ। एक हमारा जो थीम है बेसिकली एक रेड साड़ी का है, टेम्पल ज्वेलरी होगी, बन बनाया होगा, बन के अराउंड गजरा लगाया होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। आई टेक यू, वील टेक यू थ्रू द प्रोसेस। हर एक चीज़ जैसे जैसे हो रही होगी आपको दिखाई देता रहेगा। तो आइए पार्ट बनिए मेरी इस शादी का, एंड आई होप यू रियली लाइक द लुक। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है ये रेडी होने का। तो मेहंदी लग रही है, जो कि ऑलरेडी लग चुकी थी, बट शो के दौरान जो शादी होती है वो बहुत लंबे वक्त तक चलती है, तो यहाँ पर जो मेहंदी लगी थी वो हट चुकी है, इसीलिए उसको रिन्यू किया जा रहा है। एंड साथ ही साथ बाल होंगे, हेयरडू किया जाएगा, मेकअप किया जाएगा। मेकअप का प्रेप मैं ऑलरेडी करके आती हूँ घर से, क्योंकि उसको थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है, 15 मिनट। जो मॉइस्चराइज़र है, सनस्क्रीन है, कुछ और जो क्रीम्स हैं स्किन के लिए जो अच्छी होती हैं, वो मैं लगा के ऑलरेडी आ जाती हूँ, जिससे कि दादा और हमें वेट ना करना पड़े एंड हम आते ही शुरू हो जाए काम के लिए। तो यस,
1: मेकअप शुरू करने से पहले स्किन को प्रेप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेकअप के केमिकल से स्किन बैरियर डिस्ट्रॉय हो सकता है। खैर, जगधात्री का मेकअप शुरू हो गया है और सबसे पहले इनकी आंखों को चमकाया जा रहा है, क्योंकि आंखों के मेकअप में सबसे ज्यादा समय लगता है। ऐसे में शुरुआत आंखों के मेकअप से की जा रही है। साथ ही साथ जगधात्री के हाथों में मेहंदी भी लग रही है, वो भी शिवाय के नाम की। आंखों का शुरुआती मेकअप तो हो गया, अब बारी है कंसीलर लगाने की, जिससे स्किन के दाग धब्बों को मिटाया जाता है। और कंसीलर लगाने के बाद लगाया जाता है बेस, ताकि पूरी स्किन टोन इवन लगे। को पूरे फेस पर अच्छे से मर्ज करने के बाद बारी आती है चेहरे की कटिंग की। कैमरे के सामने चेहरे के फीचर्स को अगर शार्प दिखाना है तो कटिंग करना बहुत जरूरी है। ऐसे में चेहरे की कॉन्टूरिंग की जा रही है, साथ ही साथ आईब्रोज को भी शार्प किया जा रहा है।
0: सब कुछ चल रहा है, आधा आधा सब कुछ हो चुका है, आधा फेस मेकअप हो चुका है, एक हाथ की मेहंदी लग चुकी है, दूसरे हाथ की बची है, आधी साइड का हेयर हो गया है, आधी साइड का बचा है। पर साथ साथ सब कुछ हम कर रहे हैं, क्योंकि टाइम की हमेशा शॉर्टेज रहती है। आई मेकअप हो चुका है, बेस हो चुका है, ब्लश हो चुका है, आईलाइनर बचा है अभी, और थोड़े बहुत जितने भी टचअप्स होंगे वो बचे हैं मेकअप में, और बाल भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। हालांकि बस मेहंदी में थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपको हम मैजिक दिखाएंगे। यहाँ की सेट वाली मेहंदी जो है वो 5-10 मिनट में रच जाती है। एक हाथ में तो हमने मेहंदी लगाई है, जो इस हाथ में वो है झटपट मेहंदी, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, 5-10 मिनट में ये रच जाएगी और हम रेडी होंगे। बट दूसरे हाथ में मैं ओरिजिनल लगाऊंगी, क्योंकि इस हाथ से मैं खाती हूँ, खाना खाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं इसमें क्या केमिकल्स हैं या क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए दूसरे हाथ में थोड़ा टाइम लगेगा, बट वील बी रेडी सून। आई शैडो मैंने वो प्रेफर किया है जो मेरी और राहुल दादा की सहमति से हो, क्योंकि मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट है राहुल दादा, उनका ओपिनियन कुछ और रहता है, मेरा कुछ और रहता है, तो जहाँ पर हमारा मिलाप होता है, ठीक है, हमारे ओपिनियंस ठीक लगते हैं हमें, उसका हम कुछ बीच का निकाल लेते हैं, ना आपकी ना मेरी। तो क्योंकि हमारी रेड साड़ी है, इसलिए हमने थोड़ा सा पिंक आई शैडो दिया है, और ग्लिटर थोड़ा सा है। कौन सा ग्लिटर है, कौन से कलर का राहुल दादा? ब्राउन का ग्लिटर है, ब्रॉन्ज ग्लिटर है, और पिंक आई शैडो दी है, तो ये है। राहुल दादा का पस चले तो वो थोड़ा हैवी करेंगे, वो चाहते भी हैं कि ब्राइडल मतलब ब्राइडल मैम, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सिंपल सोबर अच्छा लगे, क्योंकि आधा काम ज्वेलरी कर देती है, आधा काम हेयर और ड्रेस कर ही देता है, तो फेस जितना नाइस सिंपल सोबर लगे उतना अच्छा है। वैसे हमने थोड़ा ज्यादा ही किया है, नॉर्मल लुक से थोड़ा ज्यादा ही है ये मेकअप।
1: मेकअप का पहला स्टेप तो हो गया है, गालों में ब्लशर भी लगा लिए गए हैं जिससे गाल गुलाबी लगते हैं। अब बारी है आंखों को और भी निखारने की, और ये निखार आता है आईलाइनर से, क्योंकि आईलाइनर लगाने के बाद आंखें बोलने लगती हैं। आईलाइनर के साथ साथ काजल भी बहुत जरूरी है, जो जगधात्री यानी कि सोनाक्षी खुद अपने हाथों से लगाना पसंद करती है। इसी के साथ वो खुद मस्कारा भी लगाती है, क्योंकि मस्कारा लगाते वक्त पलकें ज्यादा झपकती हैं। ऐसे में कोई और अगर आंखों में मस्कारा लगाता है तो लगाने में दिक्कतें आती हैं। इसीलिए सोनाक्षी मस्कारा लगाना खुद प्रेफर करती है।
2: इट्स नॉट इजी एट ऑल एक आईलाइनर लगाना, क्योंकि कुछ ना कुछ मिसमैच होता रहता है, बट इसीलिए मैं बहुत ही हल्का सा लगाती हूँ। अगर कुछ भी करना है मेकअप में तो मैं बहुत ही हल्का सा नेचुरल सा ही रखती हूँ, जहाँ पर जो मिस्टेक्स है उसकी गुंजाइश बहुत ही कम हो। एक हाथ की मेहंदी रच गई है, दूसरे की लगानी है, देखेंगे वो रचेगी, कल तक रच जाएगी अगर ये नेचुरल वाली लगाती हूँ। बट देखते हैं, समय की जरा पाबंदी है, देखते हैं कि मैं लगा पाती हूँ, कौन सी लगाती हूँ, कैसा होता है, बट अभी मैं चेंज करूंगी जल्दी से।
1: मेकअप शेकअप तो हो गया, अब बारी आती है दुल्हन बनने की, और दुल्हन का पहला रंग होता है लाल। ऐसे में जगधात्री के लिए लाल साड़ी आई है, जिसे पहनकर जगधात्री तैयार है बाकी का साज श्रृंगार करने के लिए।
2: बहुत अच्छा है, रेड इज द कलर सारे वेडिंग्स, और इनमें जितना भी आप रेड पहनो मरून पहनो ये बहुत ही अच्छा लगता है। आई एम नॉट अ वेरी पेस्टल पर्सन, मुझे ऐसा लगता है अगर शादी है तो रेडी पहनना चाहिए, एंड टेम्पल ज्वेलरी है वो भी बहुत सुंदर है।
1: भाई दुल्हन के कपड़ों के साथ साथ ज्वेलरीज भी उतने ही मायने रखती है, जितना ट्रेडिशनल ड्रेस होता है उतनी ही ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी होती है। और जगधात्री के लिए चुनी गई है टेम्पल वाली ज्वेलरी, जिसे जगधात्री एक एक कर पहन रही हैं और अपने लुक को और भी निखार रही हैं।

0: मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि ये सिर्फ ब्राइडल लुक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ शादी नहीं है, यहाँ पर एक्चुअली शूट है. तो शूट में जितना कम टाइम लगे, बाहर प्रोडक्शन वेट कर रही होती है कि हम जितना जल्दी तैयार होंगे उतनी जल्दी सेट पे आएंगे. बट आपको बहुत सारी चीज़ें करते रहने भी हैं. अब ये भी करना है, बालों में गजरा भी लग रहा है, एक हाथ में मेहंदी भी लग रही है, मेकअप भी हो रहा है, ये मांग टीका लगाएंगी, कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें बची रहती हैं. तो जैसे बोलते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू गेट रेडी, तो वैसा ही कुछ है. इतने लोगों का पार्टिसिपेशन होता है एक ब्राइड को तैयार करने में, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है. बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, साथ में स्क्रिप्ट भी पढ़नी होती है, प्रिपेयर करना होता है, मूड में भी घुसना होता है, एक इंटरव्यू भी देना होता है. ब्राइड जैसा मैं जब एक्शन रोल एक्शन के बीच में मैं ब्राइड जैसा फील कर लेती हूँ, बाकी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा होता क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है कि कुछ सोचने का टाइम नहीं चल रहा होता. जब वेडिंग होगी तो ऑफ कोर्स ऐसी हैवी ज्वेलरी मैं पहनना पसंद करूँगी, बालों में गजरा, फ्लावर्स, आई रियली लाइक फ्लावर्स, तो रोजेज होंगे, गजरा होगा, कुछ अलग होगा. और गजरा तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, उसकी फ्रेग्रेंस सेंट भी बहुत ज्यादा पसंद है.
1: गहनों के साथ साथ जगधात्री के बालों का जूड़ा भी बन गया और जूड़े में गजरा भी लग गया. लेकिन इस पूरे लुक में सबसे ज्यादा जरूरी है हरे कांच की चूड़ियां और नाक की नथनी, जो कि एक पारंपरिक है. ऐसे में हरे कांच की चूड़ियां पहनकर और नाक की नथनी लगाकर जगधात्री बन चुकी है महाराष्ट्रियन ब्राइड. इसी के साथ साथ जगधात्री तैयार तो है सीन फिल्माने के लिए, लेकिन एक हाथ अभी बाकी है. ऐसे में झटपट जगधात्री ने न सिर्फ अपने हाथों में मेहंदी रचाई, वो भी शिवाई के नाम की, साथ ही साथ ये भी बताया कि उनका ये लुक कितना प्यारा है और उन्हें कितना पसंद है.
0: आई थिंक जो आपके लिए बना हो, जो जब भी कोई चीज़ आपके लिए बनी होती है और अच्छे से बनी होती है, वो चीज़ आप पे सूट कर ही जाती है. एंड ब्राइड्स का तो ऐसा होता है, चाहे वो रियल लाइफ हो या रियल लाइफ हो, ब्राइड्स ऑलवेज लुक गुड. ओ गॉड, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती क्योंकि हमेशा शादी के दिन कोई ना कोई एक जो राइटर्स हैं या स्टोरी लाइन में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है. तो शादी की खुशी से ज़्यादा किसी चीज़ का गम ही बन रहा होता है, तो कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है. सीन की तैयारी हो रही होती है और सीन पे फोकस करते हैं हम लोग. मुझे आई रियली लाइक नथ अच्छी लगती है मुझे. ज्वेलरी जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है. बट आज सब कुछ बहुत अच्छा है, हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम, मेहंदी, ज्वेलरी, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट. शिवाय के नाम की मेहंदी लग रही है, उनका नाम लिखा जा रहा है, जो कि अभी फ़िलहाल लापता हैं. देखना पड़ेगा कि शिवाय आएंगे कि नहीं आएंगे, उन्होंने अपने मन में क्या डिसीशन लिया है.
1: लीजिए सांस श्रृंगार कर, जगधात्री तैयार है अपना सीन फिल्माने के लिए.
0: बहुत अच्छा लग रहा है. ऑफ कोर्स ब्राइड बनने में मज़ा आता है, यहाँ पर जितनी भी अरेंजमेंट्स होती है वो एक फ़ील आता है क्योंकि आप वैसे ही सजे धजे होते हो, मेहंदी होती है आपके हाथों में, तो वो कहीं ना कहीं फील कनेक्ट हो ही जाती है. 2 घंटे तो लगते ही हैं किसी भी ब्राइड को, उससे ज़्यादा लगते होंगे. मुझे यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी तो 2 घंटे लग गए. बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने पूरा लुक देखा. आई होप हमारी ऑडियंस को भी ये लुक पसंद आए. और इतना सांबरा ड्रामा होने वाला है जो शादी के दिन पे, वो देखना ना भूलिए.
1: सेट पर शादी का माहौल है, पूरा घर सज चुका है और साथ ही साथ शादी का मंडप भी तैयार है. घर वाले भी साज श्रृंगार कर जगधात्री का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच जगधात्री भी आ जाती है अपना दुल्हन वाला सोलह श्रृंगार करके. ऐसे में जगधात्री के पापा जगधात्री को देखकर होने लगते हैं इमोशनल, क्योंकि अब उनकी बिटिया रानी उनसे विदा लेगी. और तो और आजी भी अपनी जगधात्री की न सिर्फ नजर उतार रही है बल्कि उस पर प्यार भी लुटा रही है और हो रही है इमोशनल. इतना ही नहीं, पहली बार संपदा और रेखा, जो कि जगधात्री को हमेशा टारगेट बनाती हैं, आज वो भी जगधात्री के लिए खुश हो रही हैं.
2: मेरी पोती जिसकी शादी हो वो खुश रहे हमेशा सोचा है जिस आजी ने, तो उसके लिए तो वो वही दिन है जब आने वाला है और खुशी तो होगी और आंसू है, वो खुशी के हैं. इतनी सारी कठिनाइयों के बाद, इतने सारे कष्टों के बाद अगर ये हासिल हो रहा है उसको, उसके लिए खुश भी हैं. और हमारा छूटेगा साथ तो थोड़ी दूरी होगी तो उसका गम भी है. जो आपने देखा अभी, आंसू निकल आए आँखों में, इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, तो मतलब there are no words to describe.
3: जो

0: तकता है।
1: भाई इमोशनल होना तो बनता है, लेकिन जगधात्री उसके चेहरे पर इमोशंस में कश्मकश दिखाई दे रही है, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि इस शादी में शिवाय आएगा या नहीं। ऐसे में घर वालों की रजामंदी से वो शादी के मंडप में बैठ भी जाती है और घर वाले शादी के मंडप में जगधात्री को मुंडा वलिया भी पहनाते हैं। लेकिन जगधात्री उसके मन में तो शिवाय का इंतजार है। इसी बीच घर वाले भी शिवाय के न आने पर परेशान हो रहे हैं, यहाँ तक कि माया वो भी जगधात्री से जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर शिवाय कहाँ है। इसी बीच तपस्या भी आकर सभी घर वालों को बताती है कि वो शिवाय को कॉल तो कर रही है पर शिवाय फोन नहीं उठा रहा। ऐसे में परेशानी का माहौल बन गया है। जगधात्री घबरा रही है इस बात को लेकर कि शिवाय के न आने पर वो अपनी माँ को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगी और ना ही असली मूसा को पकड़ पाएगी।

0: खैर जगधात्री को आज लग रहा है कि वो अकेली है, ऐसे में ये बात आजी ने भी भांप ली है और वो जगधात्री को सहारा दे रही है।
1: जगधात्री के पीछे मैं हूँ हमेशा और मेरा विश्वास है कि शिवाय आएगा, वो जिम्मेदार लड़का है, वो जरूर आएगा।
0: अब देखना होगा क्या शिवाय जगधात्री से शादी करने के लिए मान जाएगा और जगधात्री का साथ निभाने के लिए आ जाएगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अगर बरकरार रहे तो सफर और भी खूबसूरत बन जाता है, लेकिन जब गलत फहमी आ जाती है तो रिश्तों में आ जाती है कड़वाहट। तो चलिए फिर पता कर आते हैं कैसे हैं यहाँ पर इनके रिश्तों के रंग। लेकर चलते हैं आप सबको ये रिश्ता क्या कहलाता है किस सेट पर, और दिखाते हैं क्या कुछ हो रहा है नया आज यहाँ।

0: अभीरा के लिए अरमान का सरप्राइज किटी पार्टी में अभीरा को मिला तोहफा। प्यार और परिवार पाकर अभीरा है बेहद खुश। स्टारप्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज अरमान ने पूरी दीवार में सिर्फ अभीरा का नाम लिख दिया है। हर जगह नीली स्याही से सिर्फ अभीरा ही अभीरा लिखा हुआ है। ऐसे में अभीरा जैसे ही कमरे में आती है ये देखकर हैरान होती है और वो अरमान से सवाल भी पूछती है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है। ऐसे में अरमान ने बताया कि कहीं वो भविष्य में उसका नाम भूल ना जाए, इसीलिए हर दीवार पर सिर्फ अभीरा का नाम लिखना चाहता है। ऐसे में अभीरा भी उससे वादा करती है कि वो अरमान को भूलने नहीं देगी। इतना ही नहीं, अरमान अभीरा से एक वादा भी मांगता है और वो वादा है अभीरा के करियर को लेकर। ऐसे में अभीरा अपनी नौकरी के लिए मना कर देती है क्योंकि वो हर पल अरमान के साथ रहना चाहती है, इसीलिए गले मिलकर उस पर अपना प्यार जता रही है। अब अभीरा से इतना प्यार अरमान को मिल रहा है, अरमान खुश तो है लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में सिर्फ एक गम है कि उसी के चलते अभीरा ने अपने करियर को दांव पर लगा दिया है। ऐसे में अरमान ने नया आइडिया ढूंढा और पूरे घर में रखी है किटी पार्टी, वो भी अभीरा के लिए। इसलिए देखिए कैसे इस किटी पार्टी में उसने पूरे घर को सजाया है और हर लेडीज को दिया है स्पेशल थीम, जहाँ पर सभी ने पहने हैं डेनिम्स, चाहे वो डेनिम ड्रेस हो, डेनिम साड़ी हो या फिर हो इंडो वेस्टर्न डेनिम डिजाइनर। हर कोई अरमान के लिए सजा धजा है और खुश भी हो रहा है। और इन सब की खुशी में खुद अरमान भी शामिल हो जाता है। तभी तो देखिए कैसे वो अपने परिवार की लेडीज और बाहर की लेडीजों के साथ बैठकर गेम खेलने लगता है। आफ्टर ऑल व्हाई शुड वुमेन्स हैव ऑल द फन, भाई किटी पार्टी का मजा तो एक आदमी भी ले सकता है ना।
1: रोना भी तूने सिखाया, इतने करीब बुला कर।
2: किटी पार्टी रखी है पापा ने, एक सरप्राइज किटी पार्टी रखी है, तो सारी आंटीज को बुलाया है उन्होंने। तो पहले पापा ने सब कुछ अरेंज किया है, सब आते हैं और सब कुछ डेकोरेशन माँ को पसंद आती है वगैरह वगैरह। हम फन करते हैं, गेम खेलते हैं। आज का थीम है डायमंड्स एंड डेनिम, मोस्टली डेनिम, तो सबको अलग अलग डेनिम के कपड़े से सबकी अलग अलग ड्रेपिंग साड़ीज वगैरह बनाई है। मेरी ये स्कर्ट है डेनिम की, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, बहुत ही लाइक वेरी मॉडर्न, वेरी जेन जी जेन अल्फा स्टाइल की है एंड बहुत ही कूल है ये स्कर्ट, मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड सबका लुक बहुत क्रेजी लग रहा है आज, मुझे अपना लुक भी बहुत पसंद आया। और मेरा लुक तो वन पीस है, पूरा वन पीस है एंड साथ में दिस हाई पोनी विद द एक्सेसरीज और विद दिस मेकअप ज्वेलरी। तो मेरा लुक तो ओवरऑल है, बहुत कंफर्टेबल है और वही डेनिम एंड डायमंड्स वाला है। और सबके लुक की बात करी जाए तो मुझे सबके लुक बहुत अच्छे लगे, सबका कुछ ना कुछ डिफरेंट है, किसी का भी सेम नहीं है। ओवरऑल फंक्शंस में क्या होता है, सबका वेस्टर्न होता है या तो फिर सब इंडियन पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, गोल्ड ज्वेलरीज एंड ऑल, बट आज का इट्स डेनिम एंड डायमंड्स, तो सबका लुक बहुत डिफरेंट है। सबकी साड़ीज बहुत डिफरेंट तरीके से उन्हें पहनाई गई है, ड्रेप करी गई है, तो सबका लुक बहुत डिफरेंट एंड बहुत यूनिक और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे सबका लुक बहुत अच्छा लगा।
0: भाई फन गेम्स तो हो गया, अरमान भी वहाँ से निकल गया और वहाँ पर दिशा भी आ गई अभीरा के लिए सैंडविच लेकर। लेकिन दोनों के बीच अभी भी कहीं न कहीं हिचकिचाहट है क्योंकि दिशा को अपनी गलती का एहसास है और अभीरा को गुस्सा। खैर तभी आता है एक और कहानी में ट्विस्ट, घर की लाइट चली जाती है और ऊपर से एक होर्डिंग आती है और उस होर्डिंग में अभीरा का करियर नामा लिखा हुआ है। ये देख अभीरा और सभी लोग बेहद खुश हैं और तभी वहाँ पर अरमान वापस आता है क्योंकि अरमान का ये सबसे बड़ा सरप्राइज है। और तो और वो सभी के सामने अभीरा से गुजारिश करता है कि वो अपना करियर फिर से शुरू करे, जिसे सुनकर अभीरा इमोशनल हो जाती है।

0: वो उन्हें फोर्स करते हैं कि आप मतलब इस करियर में आओ, आप अपना काम मतलब शुरू करो. और बेसिकली वो चाहते हैं कि अभीरा वापस से लॉयर बन जाए, वापस से केसेस अटेंड करना स्टार्ट करे, रेस्ट करे, घूमने जाए, हमेशा उनके साथ स्टिक ना रहे, क्योंकि उन्हें भी स्पेस चाहिए. और प्लस वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से अभीरा पीछे रहे. अभीरा माँ का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मैं काम में लग जाऊँगी तो अरमान का ध्यान कौन रखेगा. और अरमान का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर अभीरा बाहर नहीं जाएगी, वो अपनी लाइफ नहीं जिएगी, तो वो पीछे रह जाएगी. और वो अपनी वाइफ को पीछे नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि वो जाए, क्योंकि वो क्योंकि घर पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनका ध्यान रख सकते हैं. तो उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है.
1: अब अभीरा अरमान की बातें मान तो जाती है, लेकिन इस किटी पार्टी में एक और ट्विस्ट आता है, जहाँ पर अभीरा बाकी औरतों के सवालों के जवाब दे ही रही थी कि तभी अरमान गिरने वाला होता है और अभीरा उसे संभाल लेती है. ऐसे में उन औरतों ने अभीरा के सामने एक और सवाल खड़ा कर दिया है.
2: अभी तेरी उम्र ही क्या है, पति, दो बच्चियाँ, सबका बोझ तेरे कंधों पे आ गया है.
3: ओ, तो यानी आपको अपने पति और बच्चे बोझ लगते हैं अंजू आंटी?
2: अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं.
3: आप पकड़ी गई. देखिए, पति और बच्चे को बोझ कोई ऐसे ही नहीं बुला देता. आपके मुँह से आपके मन के जज्बात निकल ही गए.
1: अब देखना होगा क्या उन सवाल के चलते अभीरा अपने करियर को दांव पे लगा देगी या फिर अरमान की खुशी के लिए आगे बढ़ेगी. मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
4: बिल्कुल एक सरप्राइज चॉकलेट बॉक्स की तरह होती है. कब कौन सी खबर आने वाली है इसका हमें अंदाजा होता ही नहीं. क्या आएगी कोई एक ऐसी खबर जो लेकर आएगी हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट, या हमें मिल जाएगा एक शॉकिंग सरप्राइज. चलिए फिर दिखाते हैं आपको ये इंटरेस्टिंग सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग. रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज.
5: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें. बात करते हैं सीरियल सैराब की. देख लीजिए बिहाइंड द सीन नजारे, जहां पर बारिश का मजा ले रहे हैं नयनिका और ईशान. भाई एक तरफ नयनिका यानी कि मदिराक्षी, देखिए कैसे बारिश में इन बच्चों संग डांस करती नजर आई. तो वहीं दूसरी तरफ ऋतिक रोशन का फीवर चढ़ गया है रोहित चंदेल पर. इन दिनों मुंबई में काफी बारिश हो रही है, ऐसे में सेट पर भी भर गया है पानी. कुछ यही बिहाइंड द सीन नज़ारे शेयर किए हैं हुनर हाली ने, जहां इतनी भरी बारिश और भरे पानी में भी शूटिंग बंद नहीं हो रही, क्योंकि फैंस को एंटरटेन तो करना है. ऐसे में हुनर हाली ने शेयर किए हैं ये नज़ारे, जहां वो भरे पानी में शूटिंग करने के लिए तैयार है. ईशा मालविया और विशाल पांडे बारिश में डांस करते नजर आए साथ साथ. वैसे साथ में ईशा मालविया और विशाल पांडे एक प्रोजेक्ट में भी नजर आने वाले हैं.

मिसेस परशुराम यानी कि शांभवी सिंह ने खरीद ली है अपने लिए नई कार। ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस संग ये खुशी बांटी।

0: आने वाला है सारेगामा पा का नया सीजन। ऐसे में सामने आया है इसका प्रोमो, जहां शुरू होने वाले हैं ऑडिशंस।
1: कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है।
2: जहां सुर नए रिश्तों की शुरुआत करें, वहां की आवाजों को अब पूरा देश सुनेगा।
0: मौका है अद्रिजा रॉय के बर्थडे का, ऐसे में वो पहुंच गई हैं स्विट्जरलैंड अपने फियोंसे विग्नेश अय्यर संग। देख लीजिए इनके वेकेशन के ये नज़ारे।

6 जुलाई को अंशुला शादी के बंधन में बंध गई है रोहन ठक्कर के साथ। ऐसे में सामने आई है कुछ तस्वीरें और वीडियोस जहां संपन्न हो चुका है इनका विवाह और शामिल है पूरा परिवार।

मोनिका शर्मा ने शेयर किए हैं ये नज़ारे जहां वो शहर की शूटिंग कर रही हैं कश्मीर में।

दीपिका सिंह अपने फैमिली संग एंजॉय कर रही है मॉनसून। ऐसे में वो परिवार संग पहुंच गई है इस मॉनसून ट्रिप पर, जहां वो बारिश का मजा लेती नजर आई।

टीम खतरों के खिलाड़ी 15 का रियूनियन। ऐसे में देख लीजिए इनका ये मस्ती भरा वीडियो। एक इवेंट पर साथ साथ नजर आए रणवीर सिंह और श्रीलीला। ऐसे में देख लीजिए इनकी ये तस्वीर जो फैंस को खूब पसंद आ रही है। सतलुज की कंट्रोवर्सी के चलते उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी निकाल दिया गया है। ऐसे में दिलजीत दोसांझ ने शेयर किया है ये वीडियो जहां पर गांव में इस फिल्म को डाउनलोड कर सभी लोग बैठकर फिल्म देख रहे हैं।

0: और इसी मिठास के साथ वर्ल्ड चॉकलेट डे स्पेशल का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। उम्मीद करते हैं एंटरटेनमेंट के इस चॉकलेट हैम्पर ने आपकी जिंदगी में भी खुशियों की मिठास खोल दी हो। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए टीवी की दुनिया से एक्सक्लूसिव अपडेट्स, आपके फेवरेट शोज के नए नए ट्विस्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग गॉसिप और ढेर सारा एंटरटेनमेंट। तब तक आप रखिए अपना अच्छे से ख्याल, हमेशा खुश रहिए और अपनी जिंदगी में भी खोलिए स्वीटनेस जैसी मिठास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती।

0: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
1: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
3: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। Sage University, transforming your passion into profession.
12: दिल्ली NCR में जबरदस्त बारिश, गुड़गांव और फरीदाबाद में तेज हवाओं के साथ बरसे बादल। मौसम विभाग ने दिल्ली में जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। मैदानों से पहाड़ों तक मानसून की बरसात, पूरे महाराष्ट्र और गुजरात में तेज बारिश, कई शहर हुए जलमग्न। जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे भक्तों की सेहत का रखा जा रहा पूरा ख्याल। सीआरपीएफ 84 बटालियन मुहैया करवा रही स्वास्थ्य सेवाएं। रूट पर तैनात है मोबाइल मेडिकल वैन। मथुरा में चंदा चढ़ावा को लेकर बढ़ती जा रही सतर्कता। गणना कक्ष में बढ़ाई जा रही सीसीटीवी कैमरों की संख्या। सुपरवाइजर की संख्या भी बढ़ाई जा रही। पैंतालीस साल के हुए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। रांची में फैंस ने केक काट कर मनाया जन्मदिन। फार्म हाउस के बाहर दिखा उत्साह। इंडोनेशिया में IIM खोलेगा अपना पहला विदेशी कैंपस। AI और स्पेस टेक्नोलॉजी को मिलेगी मजबूती। UPI की सुविधा भी होगी शुरू। EVM ब्रह्मोस की बड़ी टीम।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
12: दिल्ली NCR में बरसे राहत वाले बदरा। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। राहत वाली बारिश से बदला दिल्ली के मौसम का मिजाज। तापमान में आई गिरावट। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। मौसम हुआ खुशनुमा। बिहार की राजधानी पटना में हुई झमाझम बारिश। लोगों को भीषण गर्मी और उमस से मिली बड़ी राहत। बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। ठंडी हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के दौरान मुंबई पुणे हाईवे पर लोगों को बड़ी राहत मिली। लैंडस्लाइड के कारण करीब 18 घंटे बंद रहने के बाद मिसिंग लिंक की 2 लेन यातायात के लिए खोली। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में लगातार 4 दिनों से मूसलाधार बारिश। नदियों में जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा। नदी में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। सूरत में भारी बारिश के कारण पानी जमा होने से स्कूल में फंसे 7 टीचर 12 छात्र। फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ। मौसम विभाग ने अभी और बारिश का अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के कारण बाढ़ से नेशनल हाईवे 244 हुआ बंद। राहत बचाव कार्य जारी। डल लेक में पर्यटकों की रौनक बढ़ी। श्रीनगर में पर्यटन सीजन ने पकड़ी रफ्तार। शिकारा सैर का लुत्फ उठाते पर्यटकों से झील गुलजार हुई। वहीं पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले। देश विदेश से पहुंचे सैलानियों को खूबसूरती का मजा लेते हुए देखा जा रहा डल लेक।

के साथ हुआ खूंटी पूजा अनुष्ठान। कोलकाता की मशहूर चोर बागान दुर्गा पूजा समिति में भव्य समारोह, दुर्गा पूजा उत्सव का काउंटडाउन शुरू। दुर्गा पूजा उत्सव से जुड़े समारोह में इस साल की थीम अकाल बोधन का अनावरण किया गया, रामायण के प्रसंग से प्रेरित थीम। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित विशाल कलाकृति का अनावरण भी किया गया। दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान पंडाल में किया जाएगा प्रदर्शन। इस बार पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव की भव्य तैयारियां, 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक मनाया जाएगा उत्सव। हरिद्वार के कणखल में श्री गुरु गोरखनाथ अलख अखाड़ा परिषद ने 11 संतों का पट्टाभिषेक किया, संतों ने उन्हें धर्म सेवा का संदेश दिया। फूलों की बारिश के बीच में हुआ समारोह, महामंडलेश्वरों को चादर विधि से सम्मानित किया गया। नए महामंडलेश्वरों से सनातन धर्म, गायों की रक्षा, लोगों की मदद करने के लिए कहा गया, संतों ने आशीर्वाद देकर उनकी नई जिम्मेदारी सौंपी। श्री गुरु गोरखनाथ अलख अखाड़ा परिषद ने 51 महामंडलेश्वर बनाने का संकल्प लिया, अब तक 41 बनाए जा चुके हैं। अखाड़ा परिषद बाकी 10 महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी कर रहा है, ये काम कुंभ से पहले पूरा करने की प्लानिंग। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली में महिला समृद्धि योजना होगी लागू, आर्थिक रूप से कमजोर 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया अपने देश का सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रपति भवन में हुआ ऐतिहासिक स्वागत। भारत इंडोनेशिया के बीच में हुई द्विपक्षीय वार्ता में ब्रह्मोस की सबसे बड़ी डील पर मोहर लगी, 10 से ज्यादा समझौतों पर बनी बात। विशाखापट्टनम तट के पास फंसे एक मछुआरे के साथ भारतीय नौसेना बनी देवदूत, ईस्टर्न नेवल कमांड के ALHMK-3 हेलीकॉप्टर ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत प्रो लीग में शानदार प्रदर्शन के बाद अपने परिवार के साथ गोल्डन टेंपल में उन्होंने मत्था टेका, भारतीय हॉकी टीम की सफलता के लिए अरदास। जम्मू कश्मीर के रामबन में CRPF की 84वीं बटालियन ने श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल कैंप लगाया, यहां पर दी जा रही है 24 घंटे मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की सेहत का CRPF रख रही खास ख्याल, मोबाइल हेल्थ कैंप से यात्रियों को तुरंत मिल रहा इलाज। चंद्रकोट में CRPF जवान बने यात्रियों के मददगार, बीमार और जरूरतमंद श्रद्धालुओं का ख्याल रखा जा रहा। इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे सफल कैप्टन में शुमार महेंद्र सिंह धोनी मना रहे हैं अपना 45वां जन्मदिन, रांची में धोनी के फैंस ने उनके फार्म हाउस के बाहर की काटा। इस खास मौके पर हैप्पी बर्थडे माही के नारों से माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया, धोनी के लाखों फैंस ने अपने पसंदीदा क्रिकेटर को शुभकामनाएं दी। दिल्ली NCR में जबरदस्त बारिश, गुड़गांव फरीदाबाद में तेज हवाओं के साथ बरसे बादल। धूमधाम से मनाया गया दलाई लामा का जन्मदिन। तिब्बती समुदाय ने दलाई लामा को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, लोगों ने पूजा पाठ किया। धर्मशाला में दलाई लामा के जन्मदिन पर उत्सव जैसा माहौल, तिब्बती समुदाय के लोगों ने मिलकर समारोह आयोजित किया। तिब्बती समुदाय ने ऊटी में 4वें दलाई लामा का 91वें जन्मदिन मनाया, लोगों ने उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। दलाई लामा के जन्मदिन के मौके पर इसको धूमधाम से मनाया गया, चोगलम सर के लोगों ने प्रार्थना और कार्यक्रम के साथ जश्न भी मनाया। अब पौधे भी बताएंगे अपनी भावनाएं, कोटा के छात्र आर्य सिंह ने बनाया स्मार्ट इमोशन बॉट। ये स्मार्ट इमोशन पॉट पौधे की स्थिति को इमोजी के माध्यम से प्रदर्शित करता है, ताकि कोई व्यक्ति आसानी से समझ पाए कि पौधे को इस समय किस तरह की देखभाल की जरूरत है। इस अत्याधुनिक स्मार्ट पॉट में लगाए गए हैं सॉयल मॉइस्चर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट एंड वाटर लेवल जैसे अत्याधुनिक सेंसर्स। ये सिर्फ एक स्मार्ट गमला नहीं बल्कि एक डिजिटल प्लांट कंपेनियन है, जिसका उद्देश्य पौधों और इंसानों के बीच भावनात्मक रिश्ता मजबूत करना। अब रोज दौड़ेगी
बरहमपुर सूरत अमृत भारत एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने

0: ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच में तीसरा T20 मैच नॉटिंघम में खेला जाएगा ये मैच। आज मैच के समय में हुआ बदलाव, भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा ये मैच, 9:30 बजे पर होगा टॉस। 5 मैचों की सीरीज में भारत जीत का खाता खोलने के लिए बेकरार है। पहले मैच बारिश से धुल जाने के बाद दूसरे मैच में मिली हार। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान, 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान। 4 नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह की टीम में वापसी, सिमरन सिंह, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, अशोक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के पास सीरीज में अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका। चिली के एरियल ओसेस ने बचपन के स्टिकर एल्बम के सपने को अपनी कार पर पूरा किया। उन्होंने अपनी नई कार को पूरी तरह से स्टिकर से ढका। 33 वर्षीय एरियल ओसेस ने सिर्फ 2 हफ्तों में अपनी कार पर 373 स्टिकर्स लगवाए। ये अनोखा मिशन 3 दिन पहले पूरा हुआ। एरियल ने इंस्टाग्राम के जरिए लोगों को इस अभियान का हिस्सा बनाया। कमेंट करने वालों को उन्होंने स्टिकर्स उपहार में दिए। एरियल की इस अनोखी पहल को दुनिया भर में मिल रही सराहना, कई देशों के लोग उन्हें अपनी कार लेकर आने का निमंत्रण दे रहे। स्टिकर बनाने वाली कंपनी ने एरियल और सेफ के इस खास अभियान का समर्थन किया। उनकी स्टिकर से सजी कार अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
3: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आप सबको कुछ ऐसे वीडियोस दिखाने का जिनको देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
3: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी। बच्चा भी सड़क पर चल रहे दोपहिया वाहन पर बहन के साथ बैठा है। बहन नींद में और बच्चा बहन के हाथ में रखी आइसक्रीम का लुत्फ लेने पर उतारू है। मुंह में बस आइसक्रीम का स्वाद लेने को ही था, लेकिन तभी पीछे की गाड़ी ने इतनी तेज हॉर्न बजा दिया कि बच्चे ने कमाल का रिएक्शन दिया। बच्चे ने हॉर्न बजाने वाली गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर आइसक्रीम ही दे मारी। अब बच्चे का ये आखिरी वाला रिएक्शन यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है। अब इस मदर डक और उसके ट्रिक्स को ही जरा देख लीजिए। देखने पर ये मदर डक आपको एक सख्त माँ लगेगी, लेकिन अपने बच्चों को मजबूत, काबिल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदर डक बता रही हैं कि ऐसे बनते हैं बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंट, और तभी कर पाते हैं मुश्किलों का सामना, वरना तो कमजोर पड़ जाएंगे। यूजर्स को अपने बच्चों को सिखाने का मदर डक का ये स्टाइल बहुत पसंद आ रहा है। कई यूजर्स कह रहे हैं कि इंसानों में इसी चीज की कमी होती है, वो अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं जिससे वो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और मुश्किलों का सामना करने में कमजोर पड़ जाते हैं। ये माँ हमें सिखा रही है कि कैसे मजबूत और काबिल बच्चे तैयार किए जाएं जो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सके।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: में किस तरह से समस्याएं पैदा कर सकता है? क्या है मंगल की समस्याओं का समाधान और मंगल की समस्याओं को दूर करने के लिए करें कौन सा दान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
2: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
1: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश, गुड़गांव और फरीदाबाद में भी तेज हवाओं के साथ बरसे बादल। मौसम विभाग ने दिल्ली में जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। मैदानों से पहाड़ों तक मानसून की बरसात, पूरे महाराष्ट्र और गुजरात में तेज बारिश, कई शहर हुए जलमग्न। जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड हुआ। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे भक्तों की सेहत का रखा जा रहा पूरा ख्याल। सीआरपीएफ 84 बटालियन मुहैया करवा रही स्वास्थ्य सेवाएं, रूट पर तैनात है मोबाइल मेडिकल वैन। मथुरा में चंदा चढ़ावा को लेकर बरती जा रही सतर्कता, गणना कक्ष में बढ़ाई जा रही सीसीटीवी कैमरों की संख्या, सुपरवाइजर की संख्या भी बढ़ाई जा रही। 45 साल के हुए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, रांची में फैंस ने केक काट के मनाया जन्मदिन, फार्म हाउस के बाहर दिखा उत्साह। इंडोनेशिया में IIM खोलेगा अपना पहला विदेशी कैंपस, AI और स्पेस टेक्नोलॉजी को मिलेगी मजबूती, UPI की सुविधा भी होगी शुरू, EVM ब्रह्मोस की बड़ी टीम।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं प्रार्थना स्वीकार, आपके साथ मैं हूँ पूजा पराशर। इस मंदिर को भारत का सबसे धनी मंदिर कहा जाता है, जिसका संचालन आज भी त्रावणकोर शाही परिवार के वंशजों के प्रशासनिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। दावा किया जाता है कि जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसके 5 तहखानों को खोला गया तो उसमें से इतनी धन संपदा निकली कि देखने वालों की आंखें चौंधिया गई। लेकिन इस मंदिर के 6 तहखाने को क्यों नहीं खोला गया, आखिर क्या है रहस्य उस तहखाने का? श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप को समर्पित ये मंदिर अपने आप में कई रहस्यों और मान्यताओं से भरा हुआ है, देखिए।

0: पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो भारत के सबसे धनी मंदिरों में है शुमार। रहस्यमयी हैं इसके गुप्त तहखाने जिसमें राज छिपे हैं बेशुमार। क्या त्रावणकोर के राजाओं का अकूत खजाना वॉल्ट बी यानी तहखाने नंबर 6 में आज भी छिपा हुआ है? आखिर इस मंदिर का ये रहस्यमय द्वार अब तक क्यों नहीं खोला गया? दावा किया जाता है कि जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मंदिर के द्वार को खोला गया था तो इसमें इतनी धन संपदा निकली जो किसी छोटे देश की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा थी। अपने अस्तित्व में कई हैरान करने वाली पहेलियों को समेटे है केरल का ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको इस मंदिर का धार्मिक और पौराणिक महत्व बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्यों खास है यहाँ विश्राम कर रहे श्री हरि का स्वरूप। साथ ही जानेंगे इस मंदिर के तहखानों से जुड़ा रहस्य। दावा किया जाता है कि मंदिर में कितनी अकूत दौलत थी ये दुनिया को तब मालूम चला जब कोर्ट के आदेश से इसके तहखानों को खोलने का काम शुरू किया गया। दावा किया जाता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह के नीचे बड़े बड़े गुप्त वॉल्ट या तहखाने बने हुए हैं। कहते हैं कि 2011 में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी सुंदराजन ने मंदिर के खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने खजाने के बारे में पता लगाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। तलाशी लेने पर उन्होंने 6 तहखानों की तलाशी ली जिनके दरवाजे लोहे के बने थे। कमेटी द्वारा उन्हें ABCDE और F नाम दिया गया था। तब उन्हें वहाँ हीरे और अन्य कीमती रत्नों और पत्थरों के साथ कीमती धातुओं से बनी मूर्तियाँ और सिंहासन मिले। दावा किया जाता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 5 तहखानों को खोलने के बाद बहुत सारा खजाना मिला था। ये सभी तहखाने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोले गए थे, मगर 6ठे तहखाने के संबंध में मंदिर प्रशासन का कहना है कि भगवान नहीं चाहते कि 6ठा तहखाना खुले और मंदिर की संपत्ति बाहर आए। लोक आस्था कहती है कि अगर 6ठे तहखाने को खोला गया तो प्राकृतिक आपदा आ सकती है, बाढ़ से विनाश हो सकता है या कुदरत का कहर टूट सकता है, लिहाजा 6ठा तहखाना आज भी रहस्य के घेरे में है। दावा किया जाता है कि साल 2011 में CAG की निगरानी में पद्मनाभ स्वामी मंदिर से करीब 1,00,000 करोड़ रुपए मूल्य का खजाना निकाला गया था। हालांकि उस वक्त कई मान्यताओं के चलते मंदिर के 6ठे तहखाने को नहीं खोला गया था। दावा किया गया है कि आस्था के चलते ये संभव नहीं है क्योंकि इस 6ठे तहखाने की रक्षा नाग करते हैं और किसी को तहखाने में जाने की इजाजत नहीं है।
1: तो अभी तक ऐसा माना जाता है कि 7 कक्ष हैं, 6 कक्षों में जितना धन संपत्ति अकूत संपत्ति है वो खोलने से ही पता लगता है कि $1 trillion से भी अधिक की संपत्ति गिनी जाती है। और उसका ये माना जाता है कि जो 7वां कक्ष है उसमें शायद इससे भी अधिक धन संपत्ति मौजूद है। परंतु ऐसा भी माना जाता है कि वो विशेष नाग मंत्रों से बंद किया हुआ दरवाजा है। ऐसा माना जाता है कि उसको खोल देने से साक्षात प्रलय के संकेत मिलते हैं, शायद ये पूरा वो क्षेत्र ही समुद्र में डूब जाए, इस कारण से उसको खोलने की मनाही है।
0: मान्यता है कि तहखाने की रक्षा नागों के द्वारा की जा रही है, उन्हें तहखाने का संरक्षक माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई भी दरवाजे को खोलने का प्रयास करेगा वो अपने लिए कई समस्याओं को आमंत्रित करेगा। कहते हैं कि सदियों पहले जब मंदिर प्रबंधन ने तहखाना बी को खोलने की कोशिश की तो उन्हें लहरों की आवाजें सुनाई दी। जब ये तहखाना रहस्यमय और डरावना लगने लगा तब उन्होंने इसे बंद करने का निर्णय लिया। 1930 के दशक में जब लुटेरों का एक गिरोह मंदिर को लूटने गया तो उन्होंने देखा कि सांप उनकी ओर आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नागपाशम मंत्र का जाप करके कक्ष के प्रवेश द्वार को सील कर दिया था। कहते हैं कि केवल सबसे सटीक समझ वाला पुजारी ही गरुण मंत्र का जाप करके इसे खोल सकता है। माना यह भी जाता है कि किसी जमाने में यह मंदिर पूरा का पूरा सोने का था। दावा किया जाता है कि इस मंदिर के पास इतना अकूत खजाना है जितना दुनिया के किसी भी धर्मस्थल या मंदिर में नहीं है। तिरुवनंतपुरम में मौजूद भगवान विष्णु का यह मंदिर धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। चलिए आपको बताते हैं कैसी है श्री हरि की प्रतिमा। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की बड़ी मूर्ति रखी है। इसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजे हैं। भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है, इसी वजह से मंदिर को पद्मनाभ स्वामी कहते हैं। भगवान के अनंत नाग से शहर को तिरुवनंतपुरम नाम मिला था। मंदिर में जाने के लिए पुरुषों को धोती पहनना होता है, साथ ही महिलाओं को साड़ी पहनना जरूरी है।
1: ऐसा कहा जाता है इस मंदिर में जो व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार दान करता है उसको उसके फलस्वरूप कई हजार गुना तो फल मिलता है वापस में। और उसकी धन संपत्ति उतनी ही और बढ़ती है, साथ में उसको मोक्ष, उसके पुरखों का कल्याण हो जाता है, उनको भी मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान केवल योग निद्रा में जाता है, भगवान कभी शयन में जाते ही नहीं। उस स्वरूप में जो भगवान की पूजा करता है तो वो माया से मुक्त हो जाता है।
0: माना यह भी जाता है कि इस मंदिर की वास्तुकला बेमिसाल है, जहां शालिग्राम पत्थरों से बनी श्री हरि की शयन मुद्रा वैकुंठ का आभास करवाती है। हम आगे आपको मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा भी बताएंगे, साथ ही मंदिर के वास्तुशिल्प से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जिक्र इतिहास में मिलता है तो पुराणों में भी है। माना जाता है कि एक जमाने में पूरा का पूरा मंदिर सोने का था। आखिर यहाँ भगवान पद्मनाभ की मूर्ति कैसे आई, चलिए आपको भगवान की मूर्ति से जुड़ी वो पौराणिक कथा सुनाते हैं।

0: अद्भुत है यहाँ श्री हरि की योग मुद्रा, अलौकिक है भगवान पद्मनाभ स्वामी का दीदार। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जहाँ शेषनाग की शैया पर लेते हैं श्रीमन नारायण। माना जाता है कि चातुर्मास में श्री हरि की जो योग मुद्रा है वो भगवान पद्मनाभ स्वामी की ही है। मान्यता है कि इस मंदिर का वर्णन ब्रह्मवर्त पुराण, मत्स्य पुराण, बराह पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। इस मंदिर में भगवान पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति कैसे आई इसकी भी एक कथा यहाँ कही जाती है, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है जहाँ भगवान की मूर्ति मिली थी। कथा कहती है कि दिवाकर मुनि नाम के एक तुलु ब्राह्मण ने मंदिर की स्थापना की थी। वे विष्णु के परम भक्त थे। कथा कहती है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु एक छोटे बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। कहते हैं उस दिव्य बालक से अपने आश्रम में रहने का अनुरोध किया। कथा कहती है कि मुनि के अनुरोध को माना गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि यदि ऋषि ने उनका सम्मान नहीं किया तो वो वहाँ से लुप्त हो जाएगा। एक दिन जब दिवाकर मुनि गहन ध्यान में थे तब उस बच्चे ने पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाला शालिग्राम उठा लिया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जब ऋषि को इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। इसके बाद बच्चा गायब हो गया। पश्चाताप से व्याकुल होकर ऋषि समुद्र तट के निकट एक वन क्षेत्र में पहुंचे। वहीं दिवाकर ने बच्चे को एक विशाल इलप्पा वृक्ष में विलीन होते देखा। वृक्ष वहीं गिर पड़ा और उस पर दिव्य सर्प लिपटे हुए थे। उसने श्री विष्णु का रूप धारण कर लिया। कथा ये भी कहती है कि मंदिर में रखी वही प्रतिमा आज भी भक्तों का कल्याण कर रही है।
1: इसके विषय में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान नारायण की ये प्रतिमा महाभारत कालीन में भी वर्णन आता है और पुराणों में तो वर्णन है। ये भगवान का ऐसा स्वरूप है जिसमें भगवान योग निद्रा में जब लेटे थे तब भगवान के भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए वही स्वरूप उनका भगवान का वहां स्थापित हो गया था। और ये मंदिर की जो भगवान की प्रतिमा है वो साक्षात शालिग्राम शिला की बनी हुई है, अर्थात ये प्राचीन से प्राचीनतम है।
0: अब दावा किया जाता है कि भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ स्वामी मंदिर को त्रावणकोर के राजाओं ने बनाया। इसका जिक्र 9वीं सदी के ग्रंथों में मिलता है, लेकिन मंदिर के मौजूदा स्वरूप को 18वीं शताब्दी में बनाया गया। मान्यता है कि इस जगह भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी। बाद में राजा मार्तंड ने यहाँ मंदिर बनवाया। सन 1750 में महाराज मार्तंड ने खुद को पद्मनाभ दास बताया, जिसके बाद त्रावणकोर शाही परिवार ने खुद को भगवान के लिए समर्पित कर दिया।
1: इस सबसे दुनिया का सबसे धनाढ्य मंदिर कहा गया है, ये इसके लिए वर्णन है। परंतु इतना पुण्यदायी और इतना शक्ति पुंज है ये मंदिर कि महाराजों ने राजाओं ने अपना पूरा का पूरा राज भगवान को अर्पण कर दिया अपने पुण्य की चाह में। अपने यहाँ से जितना भी कर एकत्र होता था, जितना स्वर्ण उनके यहाँ उपस्थित होता था, जमीन में से निकाला जाता था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इस मंदिर को ही अर्पण किया जाता था। और वहां के राजा अपना सर्वस्व अर्पण इसी को कर देते, उसके पुण्य स्वरूप उनके पुरखों तक को उनको स्वयं को तो ही मोक्ष प्रदान होता था।
0: माना जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी सारी दौलत पद्मनाभ मंदिर को सौंप दी थी। दावा यह भी किया जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक राज किया। आजादी के बाद ये भारत देश का हिस्सा हो गया, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने कब्जे में नहीं लिया। इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया। तब से मंदिर का कामकाज शाही परिवार के तहत एक प्राइवेट ट्रस्ट चलाता आ रहा है।
1: इस समय का जो दिव्य स्वरूप हमें दर्शन होते हैं इसको त्रावणकोर के महाराज मार्तंड वर्मा ने बनवाया था, और उनका अपने पितरों में और नारायण में अगाध श्रद्धा थी। तो अपने नारायण की प्रीति प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व, अपना पूरा राज्य ही इस भगवान नारायण को समर्पण कर दिया था। पूरा राज्य ही भगवान के समक्ष रख दिया गया था, परंतु उन्होंने अपने आप को भी और अपने राज्य को भी भगवान को ही अर्पण कर दिया। तो स्वामी नारायण है और वे उसके अपने को सेवक मान के सेवा भाव से राज्य करते थे।
0: त्रावणकोर के शाही परिवार के इस मंदिर से आस्था का पता इस बात से चलता है कि राजघराने में हर पुरुष के नाम में पद्मनाभ दास लगा होता है, जबकि महिलाओं के नाम में पद्मनाभ सेविनी लगाना जरूरी है। यानी जो पुरुष हैं वो पद्मनाभ स्वामी के दास हैं और महिलाएं पद्मनाभ स्वामी की सेविकाएं। आगे हम आपको मंदिर से जुड़ी और भी दिलचस्प जानकारी देंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।
2: द्रविड़ और केरल शैली को समर्पित ये मंदिर वास्तुकला की बेमिसाल धरोहर है। दावा किया जाता है कि त्रावणकोर रियासत ने भगवान पद्मनाभ के इस मंदिर में अपना सारा वैभव न्योछावर कर दिया। चलिए आपको बताते हैं कि कैसा है भगवान पद्मनाभ का स्वरूप और कैसी है मंदिर से जुड़ी मान्यताएं।

0: केरल और द्रविड़ वास्तुशिल्प शैली का अनुपम उदाहरण है पद्मनाभ स्वामी का ये मंदिर। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को श्री विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहते हैं। दिव्य देशम भगवान विष्णु का सबसे पवित्र निवास स्थान है, जिसका उल्लेख तमिल संतों द्वारा लिखे गए पांडुलिपियों में मिलता है। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु हैं, जो भुजंग सर्प अनंत पर लेटे हुए हैं। माना जाता है कि त्रावणकोर के प्रसिद्ध राजा मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, जो आज के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रूप में हमें दिखता है। मार्तंड वर्मा ने ही इस मंदिर में मुरचपम और भद्र दीपम त्योहारों की शुरुआत की थी। मुरचपम, जिसका अर्थ प्रार्थना मंत्रोच्चार करना होता है, जो इस मंदिर में 6 वर्षों में एक बार अब भी किया जाता है। भद्र दीपम, मंदिर में विशेष अखंड दीपक जलाया जाता है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य राज्य और भक्तों के जीवन में ज्ञान और दिव्य प्रकाश को बनाए रखना है। साल 1750 में मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। मार्तंड वर्मा ने ये घोषणा की कि राज परिवार भगवान की ओर से राज्य का शासन करेगा और वे स्वयं और उनके वंशज राज्य की सेवा पद्मनाभ के दास या सेवक के रूप में करेंगे।
1: चूंकि त्रावणकोर के महाराज के अतिरिक्त और आसपास के जैसे मैसूर के आदि बहुत सारे महाराजों ने अपने आप को भगवान को अर्पण किया, अपने स्वर्ण को, अपनी धन संपत्ति को भगवान के अर्पण किया, तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार के नीचे गुप्त तहखाने बने हुए थे, जिनमें उनके दान की हुई वस्तुएं रखी गई थी कि जब आवश्यकता होगी तो केवल जनता की सेवा के लिए ही राज्य की आज्ञा से उसको उनके निमित्त लगा दिया जाएगा।
0: माना जाता है कि तब से ही त्रावणकोर के प्रत्येक राजा के नाम से पहले पद्मनाभ दास पुकारा जाता है। पद्मनाभ स्वामी को त्रावणकोर राज्य द्वारा दिए गए दान को त्रिपड़ी दानम कहा जाता है। मार्तंड वर्मा ने अपना पूरा राज्य भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया था। राजा द्वारा भगवान को अपना राज्य और संपत्ति सौंपने की इस ऐतिहासिक क्रिया या समर्पण को ही त्रिपड़ी दानम कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह की प्रतिमा भी बहुत अद्भुत है।
1: इसमें भगवान शयन मुद्रा में है, नाग के ऊपर, शेष नाग के ऊपर विराजते हैं। 3 द्वार से भगवान के अलग अलग प्रकार से भगवान का मुख का, भगवान के चरणों के और भगवान के नाभि चक्र, जिसमें कमल स्वरूप भगवान का दर्शन होते हैं, किए जाते हैं। ऐसा दिव्य अनुभव वाला मंदिर है, जहां दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को नारायण की शक्ति और उनके प्रताप का अनुभव होने लगता है।
0: श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता की प्रतिमा अपने निर्माण के लिए जानी जाती है, जिसमें 1208 शालिग्राम है, जिन्हें नेपाल की नदी गंडकी के किनारों से लाया गया था। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गर्भगृह एक चट्टान पर स्थित है और मुख्य प्रतिमा, जो लगभग 18 फीट लंबी है, इसे अलग अलग दरवाजों से देखा जा सकता है। पहले दरवाजे से सिर और सीना देखा जा सकता है, जबकि दूसरे दरवाजे से हाथ और तीसरे दरवाजे से पैर देखे जा सकते हैं। मंदिर का वास्तुशिल्प पत्थर और कांसे पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदरूनी हिस्सों में सुंदर चित्र उकेरे गए हैं। इनमें से कुछ चित्र भगवान विष्णु की लेटी हुई मुद्रा, नरसिंह स्वामी, भगवान गणपति और गजलक्ष्मी की छवियां हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में मलयालम महीने में मीनम और तुलम के दौरान आयोजित वार्षिक 10 दिवसीय त्योहार में केरल की प्रसिद्ध कला कथकली का प्रदर्शन किया जाता है। तो आप भी श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप के दर्शन अपने जीवन काल में एक बार अवश्य करने का प्रयत्न करें, जिससे आपका भी कल्याण हो सके।
2: चलिए इसी के साथ प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही सच्ची और अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
4: It's Stormy and previously on my show Carly Pierce shared why she loves award show season.
5: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
4: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: स्पेन का पैम्पलोना शहर इन दिनों रोमांच, उत्साह और अनोखी परंपरा का साक्षी बन रहा है। यहां 10,000 से ज्यादा लोग विश्व प्रसिद्ध सैन फर्मिन उत्सव में शामिल हुए। अगले 9 दिन तक चलने वाले इस जश्न में सबसे बड़ा आकर्षण होगा बुल रन, यानी वो दौड़ जहां इंसानों और बुल के बीच में रोमांचक मुकाबला देखने के लिए मिलेगा।
11: हजारों लोगों का सैलाब, हवा में लहराता लाल रुमाल, आसमान छूते रंग बिरंगे बैलून, ये इस बात का प्रमाण है कि स्पेन के पैम्पलोना शहर में सैन फर्मिन महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो चुकी है। पैम्पलोना के ऐतिहासिक कॉन्सिस्टोरियल स्क्वायर में करीब 10,000 से ज्यादा लोग जुटे। इस मौके पर आतिशबाजी और गीत संगीत के साथ 9 दिनों तक चलने वाले मशहूर उत्सव का आगाज हुआ। सफेद कपड़े और लाल स्कार्फ इस त्योहार की पहचान है। जैसे ही उत्सव की शुरुआत हुई, लोगों ने एक दूसरे पर पानी की बौछार कर जश्न मनाया, साथ ही पूरा चौक उत्साह, संगीत और उल्लास से सराबोर नजर आया। सैन फर्मिन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि स्पेन की सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। अब अगले 9 दिनों तक पैम्पलोना की सकरी गलियों में रनिंग ऑफ द बुल्स के नाम से मशहूर रोमांचक परंपरा निभाई जाएगी, जो इस उत्सव की सबसे बड़ी पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: 1000 मीटर की ऊंचाई, हवा में संतुलन, खाई के ऊपर साहस और सदियों पुरानी कहानी का आधुनिक मंचन। अब आपको लेकर चलते हैं चीन, जहां एक अनोखा प्रदर्शन ये साबित करता है कि जब संस्कृति और रोमांच साथ में आते हैं तो नजारा यादगार बन जाता है।

0: हजार मीटर गहरी खाई, हवा में तनी एक पतली सी रस्सी और उस पर करतब दिखाते मंकी किंग और उनके साथी। चीन में मशहूर महाकाव्य जर्नी टू द वेस्ट के किरदारों को इस अंदाज में जिंदा किया गया है कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। चीन के गुआंगशी प्रांत के बेईदी माउंटेन सीनिक एरिया में रोमांच, संस्कृति और हैरत का ये संगम देखने को मिला। संतुलन की ऐसी नुमाइश शायद ही कहीं देखने को मिले। लेकिन कलाकार सिर्फ रस्सी पर चले ही नहीं, बल्कि हवा में कलाबाजियां, साइकिल चलाना, पुशअप्स करना, रस्सी पर लेट जाना जैसे कई अजब गजब करतब दिखाकर लोगों को हैरान कर रहे थे। बेईदी माउंटेन की ऊंचाइयों पर पेश किया गया ये रोमांचक शो सिर्फ एडवेंचर का प्रदर्शन नहीं, बल्कि चीन की सांस्कृतिक विरासत को नए अंदाज में दुनिया के सामने लाने की अनोखी पहल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब तक आपने बाजारों में खाने पीने और खरीदारी के स्टॉल्स तो खूब देखे होंगे, लेकिन अगर सड़क किनारे लगा एक स्टॉल आपको किसी की जान बचाना सिखाए तो सुनने में कैसा लगेगा। चीन में इन दिनों ऐसे ही लाइफ सेविंग स्ट्रीट स्टॉल लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहां निशुल्क सीपीआर से लेकर घुटन की स्थिति में बचाव और घाव पर फर्स्ट एड देने की ट्रेनिंग दी जा रही है।
0: कोई सीपीआर देना सिखा रहा है तो कोई घुटन से बचने का उपचार बता रहा है। सड़क किनारे लगे इन स्टॉल्स पर ना तो कोई सामान बेचा जा रहा है, ना ही किसी तरह की कोई नुमाइश हो रही है, बल्कि यहाँ लोगों को जिंदगी बचाने की कला सिखाई जा रही है। चीन के हेनान प्रांत के झेंगझोउ शहर में ये अनोखा लाइफ सेविंग स्ट्रीट स्टॉल लगा है, जिसके जरिए लोगों को मुफ्त में प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जा रही है। वॉलंटियर्स लोगों को सीपीआर, गले में खाना फंसने पर अपनाई जाने वाली हाई मिलिख तकनीक, घाव पर पट्टी बांधने के सही तरीके और गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक और डूबने जैसी घटनाओं से बचाव के उपाय सिखा रहे हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई इन स्टॉल्स पर रुक कर जीवन बचाने का गुर सीखने में दिलचस्पी दिखा रहा है, क्योंकि अगर हर कोई ये समझ जाए कि आपात स्थिति में कैसे फर्स्ट एड देना है तो एम्बुलेंस या डॉक्टर के पहुंचने से पहले किसी की जान बचाई जा सकती है। इन स्टॉल्स के जरिए समाज के हर व्यक्ति को लाइफ सेवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि सड़क हो या घर या फिर कोई पब्लिक प्लेस, कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। ऐसे में फर्स्ट एड की छोटी सी जानकारी भी किसी को जीवन दान दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: क्यूबा इन दिनों आर्थिक संकट, ईंधन की कमी और बिजली कटौती जैसी मुश्किलों से जूझ रहा है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच में राजधानी हवाना के नेशनल जू से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने जू कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। चार बंगाल टाइगर के बच्चों का यहां जन्म हुआ है, जिनमें एक बेहद दुर्लभ सफेद बंगाल टाइगर भी शामिल है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
0: छोटे छोटे कदम, मासूम शरारतें और हर तरफ बिखरी जिंदगी की नई उम्मीद। हवाना के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में चार बंगाल टाइगर के बच्चों का जन्म सिर्फ एक खुशखबरी नहीं, बल्कि मुश्किल दौर में उम्मीद की नई किरण बनकर आया है। जन्म के बाद सभी शावकों का वजन किया जा रहा है, उनकी सेहत की बारीकी से निगरानी रखी जा रही है ताकि उनकी बेहतर परवरिश सुनिश्चित की जा सके।
2: Tratamos de garantizar los estándares de bienestar animal para la especie, el tigre de bengala, con lo más alto posible en dependencia de las condiciones que tengamos.
0: कभी एक दूसरे के पीछे भागते, कभी उछलते कूदते, तो कभी अपनी माँ के इर्द गिर्द मस्ती करते। इन नन्हे शावकों की हर अदा जू कर्मचारियों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। उनके लिए ये सिर्फ चार नए मेहमान नहीं, बल्कि मुश्किल दौर में उम्मीद की नई मुस्कान है। करीब 44 साल से जू में काम कर रहे एंजल पैची कॉरिडोर के लिए ये पल किसी सपने के सच होने जैसा है। अपने लंबे करियर में दूसरी बार उन्होंने सफेद बंगाल टाइगर का जन्म देखा है।
3: Muy difícil, muy intenso. En cuanto al bloqueo férreo que se nos ha impuesto y que ahora se ha recrudecido.
0: Zebra, दरियाई घोड़े, अफ्रीकन सवाना और अब इन नन्हे टाइगर शावकों की किलकारियां. मुश्किल हालात के बावजूद क्यूबा का ये जू एक संदेश दे रहा है कि अगर जज्बा और समर्पण मजबूत हो तो उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है. चार नए मेहमानों की आमद ने न सिर्फ एक दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण की उम्मीद बढ़ाई है बल्कि ये भी साबित किया है कि चुनौतियों के बीच भी जिंदगी अपना रास्ता बना ही लेती है. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों.
5: मंगल जीवन में किस तरह से समस्याएं पैदा कर सकता है, क्या है मंगल की समस्याओं का समाधान और मंगल की समस्याओं को दूर करने के लिए करें कौन सा दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में.
6: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
7: continue to face political pressure to reach a peace deal,
6: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
1: दिल्ली NCR में हुई झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट. प्रधानमंत्री मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया, अस्त्र मिसाइल की भी डील. जम्मू कश्मीर में धूमधाम से जारी पवित्र अमरनाथ यात्रा, शिव भक्तों को CRPF 84 बटालियन मुहैया करा रही स्वास्थ्य सेवाएं, रूट पर तैनात मोबाइल मेडिकल वैन. पैंतालीस साल के हुए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, रांची में फैंस ने केक काटकर मनाया जन्मदिन, फार्म हाउस के बाहर दिखा उत्साह. चीन के शोंगकिंग जू में पांडा का बर्थडे बना मेगा सेलिब्रेशन, चिड़ियाघर में उमड़ी भीड़. फल सब्जियों से बना शानदार केक।

अब रटना नहीं सुनना समझना भी जरूरी है, आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। दरअसल सीबीएसई ने जो नई भाषा नीति लागू की है जिसके तहत अब नौवीं क्लास के लिए भी 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी होगा, इसमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं शामिल हैं। धीरे धीरे ये सिस्टम लागू किया जा रहा है और इतना ही नहीं अब अंक भी जुड़ेंगे जिसमें बोलना और समझना भी शामिल होगा, यानी क्या वो उस भाषा को बोल सकते हैं, क्या उसे समझ सकते हैं, अगर हाँ तो उस हिसाब से आपको अंक मिलेंगे। इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आई, नए नियम लेकर आई, सीबीएसई की तीसरी भाषा बनाएगी ज्ञानवान 9वीं क्लास के लिए। ये कितना फिट है फॉर्मूला और किन 8 पैमानों पर तय होगा भाषा का ज्ञान, ऐसे तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े तमाम एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ पेरेंट्स से भी इसको लेकर बातचीत करेंगे।

0: 8 पैमाने बनाए गए हैं। स्कूल में 8 गतिविधियां करवानी होंगी ताकि छात्रों को परखा जा सके और उन्हें उस हिसाब से ही अंक दिए जा सके। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो 8 एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी, क्या क्या है, जिसमें 40 नंबर मिलेंगे, जिस हिसाब से यानी कि मूल्यांकन किया जाएगा। दरअसल इसमें अपना आपको परिचय देना होगा, किसी भी स्थान का ब्यौरा आपको बताना होगा, किसी तस्वीर का वर्णन आप कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग होगा, रोल प्ले होगा, डिस्कशन होगा, डिबेट्स होंगे और ओरल प्रेजेंटेशन भी इसमें शामिल होगा। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर शिखा दरबारी हमारे साथ इस वक्त मेसा स्टूडियो मौजूद है, फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन से और एजुकेशनिस्ट भी हैं खुद। अनिल अग्रवाल जी हैं, प्रेसिडेंट हैं अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन से। हमारे साथ सीमा त्यागी जी, प्रेसिडेंट इंडियन पेरेंट एसोसिएशन, और साथ ही साथ हमारे साथ रुचिका राय मदान जी, एजुकेशनिस्ट मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शिखा, मैं क्योंकि आप इस पूरे पैटर्न के साथ जुड़ी रही हैं, इस पूरी प्रक्रिया के साथ शुरू से जुड़ी हुई है, 2-3 सवाल पहले आपसे जो मैं समझना चाहूंगी पेरेंट्स के नजरिए से भी। पहली बात, तो जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है जो अभी तक चर्चा हो रही थी कि 9th क्लास में लागू नहीं होगा, जो कि अब लागू हो रहा है, क्या हम इससे ये समझें कि ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो 9th में अब लागू किया गया वो केवल 9th क्लास तक होगा, 10th में उसका कोई एग्जाम नहीं होगा? पहले तो इसको क्लियर कर दीजिए।
1: बिल्कुल, अभी जो नई क्लेरिफिकेशन भी दिया है उन्होंने यही कहा है कि हम प्रोस्पेक्टिव वे में इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो 9th के लिए अप्लाई होगा। और क्योंकि ये सिर्फ एक 3rd लैंग्वेज सिखाने की बात है, हम बच्चों को एक तरह से कॉग्निटिव लैंग्वेज सिखाने के लिए, उनको एक सेंसिटाइजेशन करने के लिए 3rd लैंग्वेज के लिए, कि वो सुन सकें, उसको समझ सकें और थोड़ा सा बोल सकें। ये नहीं है कि उनको कोई बहुत लिटरेरी अचीवमेंट करना है उसमें। तो उस पॉइंट से जब हम जा रहे हैं तो हम लोगों ने ये किया है, जो CBSE ने भी क्लेरिफिकेशन दिया है कि 9th के लिए भी ये होगा, पर 10th में इसके लिए बोर्ड एग्जाम नहीं होगा।
0: बोर्ड एग्जाम,
1: तो इंटरनल असेसमेंट ही होगा और बोर्ड एग्जाम नहीं होगा।
0: अब एक और चीज, क्या इसी तरह का फॉर्मूला क्लास 6 से भी, क्योंकि 3rd लैंग्वेज अब लागू हो गया है, क्या हम ये माने कि यही फॉर्मूला क्लास 6 से लेकर आगे क्लास 9 तक रहेगा और फिर 10th में एग्जेम्प्ट होगा, यानी कि बोर्ड एग्जाम नहीं होगा?
1: बिल्कुल,
0: वो बच्चे जो अब शुरू कर रहे हैं क्लास 6 में,
1: जो अभी जो ये नया फॉर्मूला लाया है, और क्लेरिफिकेशन भी अभी आपने देखा होगा कि 29 जून को दिया है CBSE ने, उसने यही दिया है कि हाँ, हम ये जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है वो 6th ऑनवर्ड्स अप्लाई कर रहे हैं। पर क्या हो रहा था कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है जहां पे, कि स्पेशली जो मेट्रो सिटीज होते हैं और जहां पे कि 3rd लैंग्वेज बच्चे जो है फ्रेंच और जर्मन पढ़ रहे होते थे, उनको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो बच्चे 7th, 8th, 9th में ऑलरेडी फ्रेंच पढ़ रहे हैं उनके लिए ये कैसे करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने एक अलग तरह से कि भाई जो हमारी जो नई लैंग्वेज होगी उसको हम बहुत स्ट्रिक्ट नहीं बना रहे हैं, बहुत डीप नहीं बना रहे हैं, एक सिंपल, वो जैसे कहते हैं ना ओरल पेडागॉजी, उसको में लेके आ रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने भी बताया शुरू में ही कि हम 8 एक्टिविटीज भी रखेंगे।
0: मैं उस पर आती हूं। हाँ, लेकिन एक और चीज, क्योंकि इसको लेकर ना मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, पेरेंट्स में भी, स्कूलों में भी बहुत कंफ्यूजन है। अभी हो ये रहा था कि समर वेकेशन से पहले तक बच्चे जर्मन पढ़ रहे थे और अब अचानक से उनको बोल दिया गया, क्योंकि तीसरी भाषा भारतीय भाषा होनी चाहिए, तो अचानक से उनको संस्कृत लगा दी गई है। अब हम एक और चीज, अब जो बच्चे ऑलरेडी, अब मैं इसमें बात करूं कि क्लास 6 से आपने इसको 3 लैंग्वेज जो भारतीय भाषा उसको लागू किया गया है, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी 7th, 8th या 9th में जर्मन, फ्रेंच या इस तरह की कोई भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, क्या 10th में उनका उसका बोर्ड एग्जाम होगा या फिर उसमें भी वो एग्जाम नहीं होगा? और क्या इनको भी वो भाषा पढ़नी पड़ेगी स्पेसिफिकली 7th और 8th के बच्चों के?
1: नहीं, 7th, 8th और 9th के लिए ये एग्जेम्पशन दे दिया गया है, क्योंकि कहते हैं ना कोई भी लॉ आप किसी भी कंट्री में लाते हैं वो हमेशा पर्सपेक्टिव होता है, आप रिट्रोस्पेक्टिवली कोई भी चीज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और खासतौर से जब इतने सारे बच्चों को वो चीज इफेक्ट कर रही थी, पेरेंट्स भी परेशान हो रहे थे, तो आई थिंक CBSE ने बहुत अच्छा क्लेरिफिकेशन निकाला है कि हम 7th, 8th, 9th में जहां पे जो बच्चे ऑलरेडी फ्रेंच, जर्मन या कोई भी अगर फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे थे, तो वहां पे ये कंपलसरी नहीं होगा कि वो अब 2 इंडियन लैंग्वेजेस करें ही करें। हाँ, लेकिन अगर 6th में हम हैं तो 6th में ये प्रॉपरली, जिसे कहते हैं कि इन टोटो, हम अप्लाई करेंगे कि हाँ 2 इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, और इसका असेसमेंट प्रोसेस सभी क्लासेस में एक सा ही रहेगा। और 10th का जो उन्होंने कहा कि बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, देखिए अगर आप देखिए इंटेंशन क्या है 3rd लैंग्वेज पॉलिसी की, वो ये है कि भी देखिए हिंदी को हम कहीं इम्पोज नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज पढ़िए, कि बच्चे जो हैं जो अच्छा सोच सकते हैं वो जो उनकी मदर टंग होती है ना वो उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यह है कि भी आप अपनी मदर टंग पढ़िए, उसके बाद

0: आप अपनी कोई एक इंडियन लैंग्वेज कर लीजिए, तो वो कोई इंडियन लैंग्वेज आपकी, अगर आप नॉर्थ में रहते तो नॉर्दर्न लैंग्वेज भी हो सकती है, और इफ यू हैव इंटरेस्ट कि हम एक कोई तमिल या मलयालम या तेलुगु पढ़े तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से कोई इम्पोजिशन नहीं है, आपको सिर्फ दो इंडियन लैंग्वेज, तो अगर आपके पास, आप देखिए 8th शेड्यूल में 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उसमें से आप कोई भी दो तो ले ही सकते हैं। और उसमें संस्कृत को लोग किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि संस्कृत मोस्टली सभी स्कूल्स में वो 8th तक पढ़ाई ही जाती है, तो जब वो 8th तक पढ़ाई जाती है तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर चिल्ड्रन कि आप उसी भाषा को आगे पढ़ लें।
1: नहीं, उसका उसका स्कूल के नजरिए से देखा जाए तो संस्कृत टीचर इजीली मिल जाते हैं। अगर आप नॉर्थ में कहेंगे कि कोई तमिल तेलुगु वाला टीचर अगर आप ढूंढेंगे तो शायद उस हिसाब से आपको वैसे टीचर्स नहीं मिलेंगे। अनिल अग्रवाल जी, क्या स्कूल्स में इस बात को लेकर अब क्लैरिटी आ गई, क्योंकि अभी तक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा चल रहा था।
2: एग्जैक्टली मैम, इस चीज को लेकर क्लैरिटी हुई है जो मैम ने इतना डिटेल एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आती थी वो एट रैंडम अगर आप किसी चीज को लागू करते हैं तो वो सभी के लिए बहुत दिक्कत वाला होता है, वो चाहे टीचर्स स्कूल के चाहे पेरेंट्स हो, और बच्चों के लिए तो खासतौर से बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो अब चूंकि ये क्लियरिटी है, और जैसा कि मैम ने कहा कि 7th, 6th, 7th, 8th में, बल्कि 5th से ही संस्कृत स्टार्ट हो जाती है, तो जनरली स्कूल मिडिल स्कूल तक तीन लैंग्वेजेस लेके चलते ही थे। अब रीजनल लैंग्वेज का इम्प्लीमेंटेशन, और अभी अभी जैसा कि बता रही 10th बोर्ड नहीं होगा इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेके, इस बात को सुन के थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी है, तो फिर इस लैंग्वेज को पढ़ाने का बेनिफिट क्या होगा अगर ये बोर्ड में नहीं होगी, बच्चे के ऊपर एक एडिशनल सब्जेक्ट का क्या बर्डन रहेगा पहली चीज, और 5 से 6 सब्जेक्ट्स, वो कितने सब्जेक्ट्स फाइनली 10th बोर्ड में, अगर मैं सीबीएसई की बात करूं।
1: अनिल जी बहुत वाजिब सवाल है, मेरा ये सवाल था शिखा जी, मैं क्योंकि हमारे साथ दो और गेस्ट हैं, पेरेंट्स का भी सवाल ले लेते हैं और रुचिका जी भी हमारे साथ मौजूद है उनको भी ले लेते हैं, तीनों का जवाब आप दीजिएगा। अब सवाल ये है, पहली जो आपको देना है जब आपकी 10वीं में यानी कि 10th क्लास में, फिर कितने सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम दिया जाएगा, पहली बात ये। एक बार जल्दी से रुचिका जी, क्लैरिटी हुई है क्या स्कूल्स को या फिर अभी भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है?
3: क्योंकि काफी हद तक स्कूल्स को क्लैरिटी है, बट उसको जब तक कि हमें रिटर्न में प्रॉपरली उसको और ज्यादा संक्षिप्त में आप उसको क्लैरिटी में नहीं लाते हैं, तब तक स्कूल को क्लियर है। सीबीएसई की मीटिंग्स में, एनसीईआरटी से हमारे रिलेशंस में, हमें सबको क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसको आपको लागू क्या क्या हुआ है, क्या एग्जैक्टली करना है, क्योंकि फाइनली लोगों का दिमाग यही है कि अगर बोर्ड के एग्जाम्स में उसका रिजल्ट नहीं है तो क्या सिर्फ लाइफ स्किल्स जो शिक्षा पे है उसी पे हम उसका जो है पूरी एक्टिविटीज कराएं, तब तो उसका कोई बेनिफिट भी है कि हम उसको भाषा भी सिखा रहे हैं और साथ ही साथ हम लाइफ स्किल्स बच्चों को उसी भाषा को इनकलकेट करके दोनों को मिक्स एंड मैच करके एक अच्छे तरीके से इसको लागू किया जा सकता है।
1: एक बार सीमा त्यागी जी, पेरेंट्स में इसको लेकर काफी कंफ्यूजन था, पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज है कि क्या थर्ड लैंग्वेज पढ़ाई जाए, कौन सी पढ़ाई जाए, इसको लेकर कंफ्यूजन अभी तक चल रहा था, क्या इसके बाद शिखा जी ने जो पूरा एक्सप्लेन किया इसके बाद कुछ क्लैरिटी आपको हो रही है या स्कूल्स की तरफ से आपको इस बात को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन मिला है?
4: नवजोत जी, अभी शिखा जी ने जो समझाया वो पिछले 6 महीने से निकल के आ रहा है, ऐसा होना है ऐसा होना है, लेकिन ना तो स्कूल सभी क्लियर है और ना पेरेंट्स ही क्लियर है। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें, जैसे अभी सीबीएसई ने ये कहा कि 7th to 9th के लिए कंपलसरी नहीं है, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उसी लैंग्वेज को पढ़ते रहेंगे और 6th में हम 6 लैंग्वेज का फॉर्मूला स्टार्ट कर देंगे। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये देखिए,
1: 3 लैंग्वेज का
4: करेंगे। अब आप ये देखिए कि 6th क्लास में कोई बच्चा जिसके फादर जो नेटिव रहने वाले साउथ के हैं और वो जॉब करते हैं दिल्ली में और वो ये चाहते हैं अरे एनईपी ने बहुत अच्छा कर दिया, अब मैं अपने बच्चे को मलयालम भी पढ़ा सकता हूँ, और वो स्कूल से कहते हैं कि मैं थर्ड लैंग्वेज मलयालम ले रहा हूँ, तो स्कूल के पास मलयालम का टीचर है क्या? नहीं है। और अगर स्कूल हायर भी करेगा तो 6 के ज्यादा से ज्यादा 3 सेक्शन या 2 सेक्शन या 1 सेक्शन, तो 1 क्लास को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल मलयालम के टीचर को हायर नहीं करेगा, तो उस लैंग्वेज को पढ़ाएगा कौन? जो पहले से एग्जिस्टिंग टीचर है उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि आप पहले इसमें कंफर्टेबल हो और फिर बच्चों तक पढ़ाओ। दूसरी चीज नवजोत जी, होता क्या है कि सीबीएसई ने स्कूलों को कुछ प्रैक्टिकल का एक लैब बना लिया है। सीबीएसई ने एनईपी के अकॉर्डिंग वोकेशनल सब्जेक्ट्स के नाम पे लगभग 1 दर्जन सब्जेक्ट स्कूल के ऊपर थोप दिए, बच्चों के ऊपर थोप दिए, पेरेंट्स के ऊपर थोप दिए, और उन 12 सब्जेक्ट के टीचर्स कौन से स्कूलों में है? यहाँ तो एडेड स्कूल के ऑनर बैठे हैं तो ये बता सकते हैं, सरकारी स्कूलों में तो इवन नहीं है। अगर मैं केंद्रीय विद्यालयों की भी बात करूं जो कि एक मॉडल स्कूल है हमारे लिए, उनमें भी अगर एआई और आईटी पढ़ाया जा रहा है तो नवजोत जी सच्चाई ये है कि एनसीईआरटी की किताबें नहीं है वहाँ, एनसीईआरटी अपनी किताबें ऑनलाइन देता है। ये बताइए कि केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा क्या ऑनलाइन सारी किताबें पढ़ सकेगा?
1: सीमा जी ये दूसरा जो आपका सवाल है मेरे ख्याल से उसका, सीमा जी ये दूसरे सवाल का जवाब हम रुचिका जी से और अनिल जी से लेंगे, लेकिन पहले उस बात को क्लियर कर लेते हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि तीसरी भाषा। अब शिखा जी ये तीनों का जवाब आप दे दीजिए। पहला सवाल सीधे तौर पर यह है कि फिर उस तीसरी भाषा को पढ़ाने का मकसद क्या जब आप टेंथ में एग्जाम नहीं ले रहे हैं? दूसरी बात यह कि क्या ये बच्चों पर एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं पड़ेगा? शायद आपको याद हो कि पिछली डिबेट जब हमारी इसको लेकर हुई थी चर्चा, मैंने आपसे यही सवाल किया था। और चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्स क्लास का बच्चा जब जाएगा टेंथ में तो कितने सब्जेक्ट उसके पास होंगे बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली जिसका वो एग्जाम वहां देगा?
0: देखिए इसमें यही किया गया है, देखिए अगर सीबीएसई का अभी प्रेस रिलीज आया है 29 जून को और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से ये क्लेरिफाई किया है कि हम सिक्स से ये इंप्लीमेंट करेंगे जो थ्री लैंग्वेज का फॉर्मूला है, और जो बच्चे पहले से फ्रेंच कोई भी थर्ड लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सेवन्थ एट्थ नाइन्थ वालों पे उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। और बोर्ड में जो ये बात हो रही है कि हम बोर्ड में इसका एग्जाम नहीं लेंगे, वो जो है ये इस बात को एड्रेस कर रहा है कि क्या होता है ना कि बोर्ड में बच्चे बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अब इसका भी मुझे बोर्ड का पेपर देना है। तो यहाँ इंटेंशन खाली ये है कि बच्चे एक लैंग्वेज को सीख लें, उसमें बोर्ड का उनका एग्जाम नहीं होगा, बस वो जो इंटरनल असेसमेंट का एक क्राइटेरिया दिया है उसी इंटरनल असेसमेंट के क्राइटेरिया पे उनको नंबर दे दिए जाएंगे। और देखिए हमको ये नहीं देखना है कि बच्चों पे कोई बहुत बर्डन आ जाएगा। मैं हमेशा इस बात की पक्षधर रही हूँ कि लैंग्वेज जो होती है, मतलब दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरीबडी, कि जो बच्चे बचपन में आप जो भी लैंग्वेज सीख लेते हैं ना, वो आप कभी भी, आज मैं सीखना चाहूँ कि मैं मलयालम सीख लूँ तो शायद मैं नहीं सीख सकती हूँ इतनी आसानी से जितना कि एक छोटा बच्चा किसी भी लैंग्वेज को सीख लेता है। तो हमें पता नहीं, पेरेंट्स को मुझे सच में समझ में नहीं आता ये क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे बच्चे पे कितना प्रेशर पड़ रहा है। अरे लैंग्वेज सीखना तो एक आपकी एक लिंग्विस्टिक जिसे कहते हैं एक नई कैपेबिलिटी आ रही है। और मैं तो कभी कभी सोचती हूँ, जैसे अगर मेरे को कभी लगता है मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पढ़नी है, कभी भी आप ट्रांसलेशन करिए ना तो कोई भी लिटरेरी चीज जो है उसका पूरा भाव बदल जाता है।
1: मैम जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मैं समझ पाई हूं अभी, क्योंकि यहां पर अनिल जी ने भी ये बात रखी और सीमा जी ने भी ये बात रखी, आपने कहा कि ऐसा क्यों लग रहा है पेरेंट्स को कि उन पर बच्चों पर बोझ पड़ रहा है, क्योंकि देखिए उनकी बात पर जाइए, अब बच्चों को आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी देंगे, यानी कि एनईपी के तहत जो अभी सीमा जी जिक्र कर रही थी, बच्चों को एआई भी पढ़ना है, इसके अलावा और दूसरी एक्टिविटीज भी हैं जो बच्चों को करवानी है, तो ये कुल मिलाकर 10 से 12 सब्जेक्ट बन जाते हैं। इसी को लेकर कि कितना, अनिल जी भी यही सवाल कर रहे थे कि क्या ये बच्चों पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं, सीमा जी भी कह रही थी कि क्या इस चीज को क्लियर किया जा रहा है।
0: मुझे ये कभी भी एक्स्ट्रा बोझ नहीं लगता है, बल्कि बच्चे जो है ना सारी चीजें खेल खेल में सीख लेते हैं। अगर आप देखिए आज भी स्मार्टफोन होता है या चाहे लैपटॉप होता है, जिस आसानी से बच्चे उसको यूज कर लेते हैं, आजकल मैं छोटे छोटे बच्चे को देखती हूँ कोडिंग भी कर लेते हैं, एआई एजेंट्स बना रहे हैं। हमको अभी तक नहीं पता कि क्लाउड पे एआई एजेंट कैसे बनाना है, पर छोटे छोटे बच्चे आराम से बना लेते हैं। तो जो चीज हमें करनी नहीं आती, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर बच्चे वो कर रहे हैं तो बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है। शायद हम उसको पढ़ते हैं तो हमें वो प्रेशर लगता है कि अरे हम मलयालम कैसे पढ़ेंगे,
1: लेकिन
0: बच्चा दो मिनट में सीख लेगा।
1: सीमा जी की बात भी सही है, क्या ये सारे स्कूल्स में इतने स्किल्ड टीचर्स अवेलेबल हैं? ये इसका जवाब,
0: मैंने पिछली बार भी बोला था कि पहली बात तो जो लैंग्वेज के लिए होता है कि लैंग्वेज हमेशा जो है वो स्कूल डिसाइड करेगा वो कौन सी लैंग्वेज प्रोवाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू किस तरह के टीचर्स उसके पास अवेलेबल है। तो अगर एक पेरेंट कहता है कि नहीं मैं मलयालम पढ़ाना चाहता हूँ, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि हम उसको मलयालम का ऑप्शन देंगे। इट इज द ऑप्शन ऑफ द स्कूल कि वो कौन सा सब्जेक्ट देना चाहता है। और दूसरी बात ये कि अगेन आज के जमाने में जब ऑनलाइन एजुकेशन इतनी इजी हो गई है, हम बहुत आसानी से ऑनलाइन टीचर्स ढूंढ सकते हैं अगर हम डिसाइड करते हैं किसी भी लैंग्वेज को देने का। और सबसे बड़ी बात, संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है हमारे 8th शेड्यूल में जो सभी स्कूल्स में ऑल ओवर इंडिया पढ़ाई जाती है। अगर आप देखिए ये जो पॉलिसी है ना, अब आज की डेट में भी 98.5% बच्चे इसको ऑलरेडी 3 लैंग्वेज पॉलिसी कर रहे हैं। इट्स ओनली 30,000 चिल्ड्रन जो कि मेट्रोज में है या
1: और क्या सीबीएसई की तरफ से स्कूल्स को क्लैरिटी दे दी गई?
0: बिल्कुल
1: ठीक है, अभी रुचिका जी जल्दी से इसका जवाब रखिए।
0: जो प्रेस रिलीज आया है उसमें सारा कुछ बहुत क्लैरिटी से लिखा हुआ है।
1: अनिल जी और रुचिका जी जवाब रख ले, फिर उसके बाद सीमा जी आपके जवाब लूंगी इन दोनों से। जी रुचिका जी जल्दी से, अनिल जी आ रही है एक सेकेंड।
3: ये जो कह रहे हैं क्लैरिटी दी जा चुकी है, उसमें काफी सारी कमियां है। अगर आप देखेंगे कि उसमें कितने भी स्किल्स के सब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, और जो ये बात कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स में, केंद्रीय स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में इतना ज्यादा डिफरेंसिएशन। और किसी पेरेंट, आप एक तरफ तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम उनको तेलुगु पढ़ाना चाहते हैं, हम उनको पेरेंट मलयालम पढ़ाना चाहते हैं, और फिर ये बात आएगी कि किसी स्कूल ने उनके ऊपर ये सब्जेक्ट थोप दिया, दोनों ऑप्शंस इन्होंने खुले रखे हुए हैं।
1: नहीं नहीं, ये नहीं रुचिका जी, ये कहा गया कि स्कूल डिसाइड करेगा कि वो थर्ड लैंग्वेज कौन सी होगी।
3: दैट इज व्हाट ना, हम स्कूल यानी कि पेरेंट्स पे थोप रहा है, जबकि एक पेरेंट ये चाहता है कि मैं मलयालम पढ़ाऊं, दूसरा चाहता है तेलुगु पढ़ाऊं, यही तो बात करी थी सीमा जी। तो यानी कि स्कूल एक जो कौन सा स्कूल जो है, कोई भी आप ले लीजिए किसी भी जगह पे वो स्कूल होगा, वो तो ये देखेगा ना उसको कौन सी टीचर मिल रही है, इजीली अवेलेबल है, कौन से सब्जेक्ट पीरियड में इजीली लगाए जा सकते हैं, उस तरीके की ऐसी 5-6 चीजों की सोच से मिलाते हुए थक हार के फिर हम वही एक कोई सब्जेक्ट को बच्चों को ऊपर थोप ही रहे हैं ना, यही तो हुआ।
1: ठीक है अनिल जी, अनिल जी
2: ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब हम पढ़ा ही रहे हैं बच्चों को तो बोर्ड एग्जाम लेने में दिक्कत क्या है? ऑलरेडी वो बच्चा पढ़ेगा, एंड इन आर इंडियन सिस्टम वी ऑल नो कि जब तक एग्जाम का प्रेशर नहीं होता बच्चा पढ़ता नहीं है। मैम ने बार बार ऑनलाइन की बात करी, कोविड उसका बेस्ट उदाहरण है। ऑनलाइन एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बट ऑनलाइन एक रेगुलर टीचिंग का विकल्प ना हुआ था ना कभी हो पाएगा, क्योंकि स्कूल आने का मकसद बच्चों का सिंसियरिटी होती है। तो मेरा कहना है कि बच्चा जब पढ़ेगा ही तो उसका बोर्ड एग्जाम क्यों ना हो और उसको बेनिफिट। और हाँ। बाकी जो सब्जेक्ट्स में हमारे बर्डन आ रहे हैं जो 11th 12th में आने के बाद, जो मेरा सवाल था कि 10th में अभी हम अगर ब्रेकअप कर दें, अगर मैं आईसीएसई की बात करूं तो उसमें साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीन होता है, सोशल स्टडीज में हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी अलग होता है, उसके बाद हिंदी इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो गया और मैथमेटिक्स हो गया, और उसके बाद अगर हमारा फिजिकल एजुकेशन है या अदर योगा है या कंप्यूटर्स है इस तरह से करके, तो लगभग 11 सब्जेक्ट से 12 सब्जेक्ट के बच्चे पेपर देते हैं। तो इसी में से मेरा जो बोर्ड से क्वेश्चन है कि फाइनली 10th में बच्चे कितने में बोर्ड देंगे, और जो जिसमें बोर्ड देना, बिकॉज 9th एंड 10th का सिलेबस लिंक होता है, ऐसा नहीं कि 9th का पढ़ा हुआ बिल्कुल खत्म हो गया, बेस प्रिपरेशन 10th बोर्ड के लिए 9th में होती है, ये सभी लोग जानते हैं, 12th के लिए 11th में होती है, वो बात अलग है कि हम ब्रेकअप में 9th का करके कहते हैं खत्म है, लेकिन 10th का कोई भी चैप्टर 9th से लिंक ना हो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
1: ठीक है, यानी आप ये जानना चाह रहे हैं कि 10th में ओवरऑल कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दिया जाएगा, और दूसरा ये कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो फिर उसका एग्जाम क्यों नहीं। शिखा जी जल्दी से।
0: बिल्कुल, देखिए एग्जाम जो हम लैंग्वेज का 10th में बोर्ड का नहीं ले रही है सरकार, वो आई थिंक एक बच्चे के ऊपर, आप एक तरफ लगातार कहने की बहुत प्रेशर बढ़ रहा है, देखिए बोर्ड का कभी भी एग्जाम होता है तो बच्चे के ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है, तो अगर हम कभी भी ये कह देते कि आपको इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा या कोई एक चीज है जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर बच्चे के ऊपर कम हो जाता है। तो ये एक जो है एक सोची समझी, एक ये सोची समझी आई वुड से स्ट्रेटजी है कि हाँ बच्चे लैंग्वेज सीख भी ले पर साथ के साथ बच्चों के ऊपर प्रेशर ना हो कि मुझे अब इसमें बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि कहते हैं सुनना पढ़ना बहुत इजी होता है, लिखने में किसी भी नई लैंग्वेज को इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, तो वो हम बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं,
1: यानी थोड़ा रिलैक्सिंग, पूरे रूल को थोड़ा सा रिलैक्सिंग किया गया है 3 लैंग्वेज को। अब सीमा जी बताइए। जी
4: नवजोत जी, आपका कहना है कि रिलैक्सिंग किया गया है, लेकिन थोड़ा सा सोचिए तो लगेगा कि रिलैक्सिंग है क्या। शिखा जी की खुद बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि स्कूल डिसाइड करेगा कि कौन सी लैंग्वेज देनी है, तो बच्चों को और पेरेंट्स को कोई चॉइस नहीं मिली। मेरे एक जानकार हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं और उनकी पोस्टिंग मद्रास में है, तो मद्रास में जो भी स्कूल होगा वो साउथ की लैंग्वेज लगाएगा, और दिल्ली वाले चाहेंगे कि नहीं मैं उस लैंग्वेज का क्या करूंगा अपने बच्चे को पढ़ा के, लेकिन उसके ऊपर थोपी जाएगी तो उसे पढ़नी पड़ेगी। तो बच्चों को तो कहीं कुछ नहीं मिला, पेरेंट्स को कहीं कुछ नहीं मिला, सिर्फ पेपरों में और मीडिया में ये न्यूज आई, सीबीएसई ने चला दिया। दूसरी बात, शिखा जी ने खुद ही कह दी कि ये 3R फॉर्मूला ऑलरेडी सरकारी स्कूलों में चल रहा था, इसमें सीबीएसई ने या एनईपी ने या एनसीईआरटी ने कोई नया नहीं किया। जो केंद्रीय विद्यालय हैं या सीबीएसई बोर्ड के सरकारी स्कूल हैं उनमें नवजोत जी ऑलरेडी, आप अपना भी टाइम ध्यान करेंगी तो आपको याद आ जाएगा कि ऑलरेडी वो हिंदी पढ़ रहे थे, इंग्लिश पढ़ रहे थे, और थर्ड लैंग्वेज में उनको उर्दू या संस्कृत में च्वाइस थी, और कहीं कहीं पंजाबी में भी च्वाइस थी जो पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र था। तो ये 3R फॉर्मूला पहले से ही था, ये कोई नया नहीं है, लेकिन अब इस फॉर्मूले को इतना हाइक कर दिया और सीबीएसई नई नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई नई चीजें डाल रहा है कि 6 से चलाएंगे, 7 से चलाएंगे, 8 से चलाएंगे। अनिल जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि एक बच्चे को, एक तरफ तो हम कहते हैं कि बैग का वजन कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम उसे 10-11 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और इसको शिखा जी नाराज मत होइएगा, इसको शिखा जी डिमांड कर रही है कि ऑनलाइन बहुत कुछ है वहां से पढ़ लें। तो पहली बात तो अगर ऑनलाइन ही पढ़ना है तो उसमें सीबीएसई का क्या रोल है? जो पेरेंट चाहता है मैं इस भाषा को पढ़ा लूं वो अपने आप पढ़ा लेगा, उसमें सीबीएसई को इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अनिल जी ने कहा आप तो खुद शिक्षाविद हैं, आप समझ सकती हैं कि ऑनलाइन टीचिंग नहीं होती। ऑनलाइन टीचिंग जो है वो टीचर्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, टीचर्स चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तीसरी बात, अगर आप बोर्ड का एग्जाम नहीं ले रहे, इंटरनल असेसमेंट ही लेंगे, तो अभी शुरुआत में हमने देखा कि आपने जो एनसीईआरटी का सिलेबस उसका सिर्फ 30% रखा है और बाकी सब एक्टिविटीज हैं, जबकि पीरियड का जो सिलेबस, जो पीरियड का टाइम पीरियड होता है वो सबका, हिंदी का भी वही 45 मिनट्स, 35 मिनट्स, मैथ्स का भी वही 30 मिनट्स, 35 मिनट्स। तो हिंदी को जब इतना दे देंगे कि बोलने की भी प्रैक्टिस और सुनाने की भी प्रैक्टिस, इंटरव्यू देने की भी प्रैक्टिस, तो हिंदी को कितने पीरियड दिए जाएंगे? और जो बच्चे का मेन सब्जेक्ट है मैथ्स वो चला जाएगा। नवजोत जी एक मजे की बात सुनिए कि नाइन्थ का बच्चा मैथ्स में तो इंटरनल मिला के पास नहीं होता, उसको वहां मैथ्स में 80 में से 27 चाहिए तभी पास होगा, जो उसका मेन सब्जेक्ट है जिससे आगे उसको कैरियर बनाना है। और जिसका उसके कैरियर में कोई रोल नहीं है, सिर्फ सीबीएसई अपना एक तामझाम दिखाने के लिए कर रहा है कि हम सारी भारतीय भाषाएं इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें वो पेपर सिर्फ 30% का देगा, बाकी सिर्फ वो बोलने में और ओवरऑल प्रेजेंटेशन देने में पास हो जाएगा।
1: सीमा जी, ये वही सवाल सीमा जी ने शिखा जी पूछा है जो पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि ये बर्डन नहीं होगा क्या नाइन्थ में बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है?
0: आई विल अगेन इंसिस्ट ऑन दिस कि ये कोई बर्डन नहीं है, जैसे सीमा जी खुद ही कह रही थी।
1: ये भी तो बताइए ना, देखिए अब उनकी बात
0: इंग्लिश और एक थर्ड लैंग्वेज संस्कृत या उर्दू सब लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, और इस वक्त सिर्फ मेट्रो के 30,000 बच्चों की एक क्वेश्चन है कि ये 30,000 बच्चों को हम क्या लैंग्वेज पढ़ाएं। तो इसमें कहीं पे भी एक क्या होता है ना, जब एक नई पॉलिसी आती है तो वही पुरानी चीजों को आप नए तरीके से उसको सोचना या समझना शुरू करते हैं।
4: हमारे यहाँ पे पॉलिसी आए जाती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कोई नहीं देखता, और आप जैसे लर्नड लोग भी बैठकर उसको डिफेंड करते हैं उसकी प्रैक्टिकल।
0: अब इसमें मैं एक इंटेंशन बताऊं, देखिए ये जो थ्री लैंग्वेज पॉलिसी का फॉर्मूला हमेशा से आया है वो इस वजह से आया है कि हम चाहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन हो, बच्चे जो हैं वो लिंग्विस्टिक कल्चरली ज्यादा वो एनरिचमेंट हो उनको लैंग्वेज का, इस चीज के लिए आया है। और एक्चुअली जो ओरिजिनल इंटेंशन थी, मैं एक बार बता
1: दूं, एक सेकंड शिखा जी पूरी बात रख ले।
0: हाँ, ओरिजिनल इंटेंशन जो थी वो नेशनल इंटीग्रेशन थी।
1: सीमा जी एक सेकंड,
0: इंटेंशन नेशनल इंटीग्रेशन की थी, उसमें यह सोचा गया था कि जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं वो एक साउथ इंडियन लैंग्वेज पढ़े और जो साउथ इंडियन लोग हैं वो एक नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज पढ़े। पर क्योंकि इसमें थोड़ा इशू आया, और इसीलिए मैं कह रही थी जो ऑनलाइन वाली बात है कि अगर आपको इमीडिएट टीचर्स नहीं मिल रहे तो आप ऑनलाइन कर देते हैं, रोज के लिए नहीं है।
1: एक बार रुचिका जी को इंक्लूड कर लेते हैं। सीमा जी एक सेकंड, सीमा जी प्लीज, बाकी और खास मेहमान भी यहाँ बैठे हुए, आपने जो सवाल किया ना सीमा जी, हमारा इससे पहले डिस्कशन ऑलरेडी इसको लेकर हम गुड न्यूज स्टूडियो पे डिस्कशन कर चुके हैं जब ये 3R फॉर्मूला आया था, शिखा जी हमारे साथ थी, मैंने भी बिल्कुल यही सवाल उनसे किया था कि नाइन्थ क्लास ऐसी क्लास होती है जहां पर बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने लग जाते हैं, तो क्या ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा? इसका जवाब मिला था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि दोनों स्कूल रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद है जो प्रैक्टिकली में बता सकते हैं कि वाकई किस तरह की दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है रुचिका जी कि क्लैरिटी अभी तक स्कूल्स को हुई है या नहीं हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ सर्कुलर्स का आदान प्रदान चल रहा है।
3: अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं हुई है। आप देख रहे हैं कि हमारा प्रश्न क्या रहा है कि आप 10वीं के बोर्ड के एग्जाम्स में क्या करना चाहते हैं, उसके अलावा अगर हम ये जो अभी जो तानन फानन में आपने बोला कि इम्प्लीमेंटेशन हुआ, लेकिन हमारे रोकने पे ये चीजें रुकी और बोला गया कि अभी इसको लागू नहीं किया जाता लेकिन एक समय के बाद, क्योंकि आपने देखा है अभी जब 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स हुए हमने कौन सी चीजें अप्लाई कर दी कि वो सारा एक टोटल फेलियर बनने के बजाय उसको रोका जाए। तो इसके लिए इनको क्लैरिटी ये देना बहुत जरूरी है स्टेप वाइज अभी भी सीबीएसई की तरफ से कि 6, 7, 8, 9, 10 टोटैलिटी में आप इसको क्या मकसद से पढ़ाना चाह रहे हैं, क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें हमारे को स्कूल्स में उन्होंने किस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन, देखिए स्कूल्स तो अपने एंड पे कर लेगा, ये नहीं है कि स्कूलों को आता नहीं है या स्कूल्स की टीचर्स कर नहीं पाएंगी या उनके लोगों को उनको करना आता नहीं है या पेरेंट्स को हमें समझाना नहीं आता, बट अगर हम एक तरह की क्लैरिटी जो बिल्कुल क्लियर स्टेप ऑन स्टेप सीबीएसई से और एनसीईआरटी के करिकुलम भी आप देखेंगे जाके, अभी हिंदी और संस्कृत का तो एनसीईआरटी की किताबों पे उन्होंने इसको R3 लैंग्वेज फॉर्मूला के हिसाब से जो उन्होंने सिलेबस डाला है वो इन इटसेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी डाल रही है लागू कर और जो सीबीएसई कह रही है उसमें काफी फर्क है, तो क्लैरिटी लाने के लिए एक स्टेप ऑन वो बता दें कि कितना रिटर्न में जाएगा, कितना ओरल में जाएगा, कितनी मार्किंग जाएगी,
1: इसी का जवाब शिखा जी से लेंगे। अनिल जी, अनिल जी मैं लौटती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है, तुरंत लौटेंगे क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, सवाल स्कूलों के भी हैं, सवाल पेरेंट्स के भी हैं, अभी तक क्लैरिटी इसको लेकर आई नहीं है और चीजों को क्लियर करने की कोशिश शिखा जी हमारे साथ हैं, लगातार कर ही रही। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।
5: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop

0: Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: अब रचना नहीं सुनना समझना होगा सीबीएसई की थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला और उस पर जिस तरह की अभी अमेंडमेंट्स हुई उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि क्लैरिटी अभी फिलहाल ना स्कूल्स के पास है ना पेरेंट्स के पास है. एक्चुअली सीबीएसई के उस नोटिस में क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर शिखा दरपारी से. लेकिन उससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले रुचिका जी ने कुछ सवाल उठाए थे. अनिल जी आपका भी एक सवाल था, जरा सवाल अपना कर लीजिए फिर शिखा जी से जवाब लेते हैं.
2: मैम मेरे तीन बातें मैं सीबीएसई को, सीबीएसई के साथ में एक्सपेरिमेंट करना इज ऑलवेज अ गुड थिंग. सीबीएसई करता चला आ रहा है. पहली चीज, सीबीएसई ने कुछ साल पहले नो बोर्ड 10th का बोर्ड हटाया था और उसके बाद रिजल्ट्स देखे गए और सारी चीजें हुई, वापस बोर्ड को लागू करना. अभी जिस चेकिंग का जिक्र रुचिका जी ने किया, सीबीएसई ने सडनली एक्सपेरिमेंट किया, पीडीएफ स्कैन हुए, मार्किंग हुई और ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में सारे बच्चों का जो लॉस हुआ वो विजिबल है. सीबीएसई एक्सपेरिमेंट करता है, बहुत अच्छी बात है. क्लास 8 तक वैसे भी पैन इंडिया अगर मैं बात कर लूं, तीन लैंग्वेजेस बच्चे पढ़ते चले आ रहे, कोई नई बड़ी बात नहीं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो. मेरे दो सवाल उनसे और हैं. अगर हम बच्चों की कंसर्न रखते हुए सोच रहे हैं तो जो मैंने कहा था 9th और 10th में कितने बच्चे सब्जेक्ट्स पढ़े जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो. एनईपी ने बोला कि स्ट्रीम स्पेसिफिक नहीं रह जाएगा, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स जैसी कोई स्ट्रीम नहीं होगी, कॉमन होगा. लेकिन नीट और जेई का पेपर आज भी वही बच्चा दे सकता है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़े वो जेई, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े वो नीट का एग्जाम. ये कंपल्सरी आज भी है. तो उस स्ट्रीम को डिसाइड करके करने का तो सीबीएसई इन चीजों पर जोर दे के फोकस करे. ये जो नए एक्सपेरिमेंट करने भी हैं, पुरानी चीज को नया रैप अप करके पैकेजिंग करके जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो कंफ्यूजन बढ़ा रहा है, उससे बेनिफिट कोई नहीं हो रहा, इसका जवाब दे देना.
1: ठीक है शिखा जी.
3: मैं ये कहूंगी यहाँ पे सीबीएसई कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा. एक हमारी पुरानी पॉलिसी अगर आप देखिए, कोठारी कमीशन से 1960 से हमारी चली आ रही है थ्री लैंग्वेज पॉलिसी, एंड वी ऑल नो कि तमिलनाडु हमेशा उस थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को हिंदी के लिए वो हमेशा अपोज करता था. पर अगर आप ये नई पॉलिसी देखें एनईपी की 2020 की जो है, उसमें कहीं पे हिंदी का इम्पोजिशन नहीं है. यहाँ पे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे 8th शेड्यूल की जो 22 भाषाएं हैं जिनको हम इंडियन भाषाएं कहते हैं उनमें से आप कोई सी दो कर लीजिए. और वो इसलिए भी देखिए, अगर आप यूरोप में देखिए, यूरोप में आपका इटालियन, फ्रेंच और जर्मन होता है, वहां पे मोस्टली सब लोगों को ये 3-4 लैंग्वेजेस आती हैं. वेयरएज हम इंडिया में रहते हुए जब हम अपने भारतवर्ष के किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं हम वहां की भाषा को समझ नहीं पा रहे होते. हम इतने दिनों से दिल्ली में रह रहे हैं, बहुत बार होता है कि हम पंजाबी नहीं समझ पा रहे होते हैं. तो ऐसे में अगर हम स्कूल में पंजाबी टीचर लगा के बच्चों को पंजाबी सिखाएं तो ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है. ये बच्चों की एक भाषा की जिसे कहते हैं शैली को विकसित करने का तरीका है. और जब हम बोर्ड में उसका एग्जाम नहीं ले रहे तो हम बच्चों का प्रेशर जो एक नई लैंग्वेज की वजह से हो सकता है उस प्रेशर को हम बिल्कुल डाल ही नहीं रहे हैं. हम जैसे कह रहे हैं कि खेल खेल में आप अपना नई लैंग्वेज को सीखिए जो कि बच्चे सच में खुशी खुशी सीखना चाहते हैं.
1: रुचिका जी के सवाल का जवाब कि क्लैरिटी सीबीएसई की तरफ से नहीं आ रही है,
3: क्लैरिटी नहीं आई है, उसके लिए मैं कहूंगी यो प्लीज कि आप जो है अभी 29 जून को फिर से सीबीएसई ने ये एक देखिए सीबीएसई का पूरा हमारा ये प्रेस रिलीज आया है. इस प्रेस रिलीज में इवन सिचुएशंस दे देके एक एक चीज समझाई गई है. तो मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि स्कूलों को ये क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही कि ये किस तरह से.
1: रुचिका जी 29 जून वाले सर्कुलर को आपने पढ़ा है?
4: आप ये देखेंगे कि मैम उसके अंदर असेसमेंट स्किल्स क्लैरिटी है, लेकिन किस तरीके से स्कूल ने उसको कंडक्ट करना है क्लैरिटी है. लेकिन आपका जो सवाल हमारे और अनिल अग्रवाल जी के और सीमा जी के, उनके आप सवालों पे ध्यान देंगे तो उसका हमें बेनिफिट क्या है? 10th के बोर्ड के एग्जाम्स में उसके क्या रूल्स हैं? क्या आपको
3: है ही नहीं 10th के बोर्ड में? 10th के बोर्ड में ले ही नहीं रहे हम टेस्ट को.
4: कोई भी स्कूल आपको संस्कृत के अलावा कोई और भाषा पढ़ाएगा? वो नहीं पढ़ाएगा. वो वही फिर हमारी वही पॉलिसी चलती आ रही है थ्री लैंग्वेज जो पुरानी चलती आ रही थी,
1: ठीक है,
4: संस्कृत और एक फॉरेन लैंग्वेज.
1: ठीक है, अब एक सेकंड अब चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं. अनिल जी, रुचिका जी, जो आप बात कर रहे हैं कि इसका मकसद क्या है, डॉक्टर शिखा ने इसको क्लियर किया है कि मकसद सीधा यह है कि बच्चा नई भाषा सीखे। अब सीमा जी का सवाल भी वाजिब है कि ये तो ऑलरेडी चलता आ रहा है, अनिल जी ने भी अभी बात कही कि ये तो ऑलरेडी चलता आ रहा है, तो फिर इसको इतना इम्प्लीमेंट करने की क्या जरूरत थी। शिखा जी का कहने का मतलब और यही है कि बच्चा कोई नई भाषा सीखे, लेकिन शिखा जी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए नई भाषा के लिए, आप अगर नदर इंडिया में है, आपका मकसद जो इसको इम्प्लीमेंट करने का था R1, R2, R3 का, उसका सीधे तौर पर मतलब ये था कि दक्षिण भारत के किसी बच्चे को उत्तर भारत की भाषा है, उत्तर भारत के बच्चों को दक्षिण भारत की भाषा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये स्कूल में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। एंड ऑफ द डे ये हो रहा है कि सुनिए मैम, एंड ऑफ द डे ये हो रहा है कि उत्तर भारत के, जहां तक मैं जानती हूं, एटलीस्ट दिल्ली NCR के तमाम स्कूलों में फाइनली अब संस्कृत लागू कर दी जा रही है। बच्चे जो समर वेकेशन से पहले तक फ्रेंच जर्मन पढ़ रहे थे, अब उनको ये कह दिया गया कि अब आप वापस से संस्कृत ले लीजिए।
4: पहले आपकी संस्कृत हिंदी चल रही थी, आपने उसको फॉरेन लैंग्वेज पे लाए, अब आप फॉरेन लैंग्वेज से हटा के फिर हमें दिल्ली के स्कूल तो संस्कृत लगाएंगे, नॉर्थ स्टेट्स अपनी लगाएंगी, पंजाब अपनी
1: भाषा, पंजाब में ऑलरेडी पंजाबी है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, वहाँ ऑलरेडी थर्ड लैंग्वेज है। प्रॉब्लम जो है रुचिका जी, जहां तक मैं समझ रही हूँ, मेरे ख्याल से आप भी क्लियर कीजिएगा, आप एक एजुकेशनिस्ट भी है, नॉर्थ इंडिया स्पेशली दिल्ली NCR के लोगों में ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर अब अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं और यहाँ पर CBSE के स्कूल में मोस्टली इंग्लिश हिंदी पढ़ाई जाती है, थर्ड लैंग्वेज के नाम पर आप जर्मन, फ्रेंच या स्पेनिश पढ़ते हैं,
3: और इसीलिए ये एग्जेम्पशन दे दिया गया ना कि आप 7th, 8th, 9th, 10th में अगर वो फ्रेंच पढ़ रहे हैं तो दे कैन कंटिन्यू टू रीड फ्रेंच, उनके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं है कि उनको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं।
1: अब वो अभी तो आप कह रहे थे कि वो संस्कृत पढ़ सकते हैं,
3: नहीं नहीं, उनका ये है 6th से हम जो है वो पूरी लैंग्वेज हम लोग उसको 6th से तो थर्ड लैंग्वेज लाएंगे, पर जो 7th, 8th, 9th में जो बच्चे ऑलरेडी एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसमें इस सर्कुलर में ये क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है कि आप वही कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके लिए आपके ऊपर कोई वो नहीं है कि अब आप ये अलग से दूसरी,
1: यानी जो 6th का बच्चा है अगर वो इंग्लिश हिंदी पढ़ रहा है तो उसको थर्ड लैंग्वेज के तौर पर संस्कृत ही पढ़नी पड़ेगी,
3: जरूरी नहीं है जो वो स्कूल दे रहा होगा कोई भी लैंग्वेज।
1: नहीं नहीं, इसके साथ एक और चीज है, वो जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश कुछ पढ़ सकता है,
3: वो फोर्थ लैंग्वेज हो जाएगी फिर, 6th वाले के लिए फोर्थ लैंग्वेज हो जाएगी,
1: तो वही फिर वही सवाल है ना मैम, बर्डन बच्चों पर
3: आना पड़ेगा, 6th वाले के लिए तो हो जाएगी पर 7th, 8th, 9th में जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं
1: ठीक है,
3: उनके उनके लिए एक और फोर्थ लैंग्वेज नहीं ला रहे हैं हम,
1: एक एक करके नहीं नहीं, आप तीनों के क्वेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है,
3: जर्मन, फ्रेंच या इसको पढ़ने का, आप बताइए फ्रेंच पढ़ के किसको क्या फायदा मिल रहा है।
1: अरे मैम कैसी बातें कर रही हैं,
3: सच में इंडिया में इंग्लिश, जब आपको इंग्लिश आती है ना
1: बच्चे, ग्रेजुएशन में आप जाके देखिए आपका वोकेशनल स्टडीज क्या है, कितनी चीजें वहाँ पर पढ़ाई जाती है, अलग भाषा पढ़ाई जाती है,
5: नहीं कह सकती कि फ्रेंच पढ़ के क्या फायदा मिलेगा, लैंग्वेज लैंग्वेज है, आप अपने आप को इंडिया में तो कह रही है कि भारत की भाषा पढ़े, अगर आप ये कह रही है फ्रेंच पढ़ के क्या फायदा मिलेगा तो मलयालम पढ़ के क्या फायदा मिलेगा, जिस बच्चे को
1: IR का स्टूडेंट है उसके लिए कहा जाता है कि अगर आप IR कर रहे हैं तो IR के लिए आपको एक फॉरेन लैंग्वेज मस्ट होती है, और बच्चा अगर अभी से सीख रहा है
3: फॉरेन लैंग्वेज मस्ट है वो आप अलग चीज होती है, जब आप इंग्लिश पढ़ ही रहे हैं तो एक आप ग्लोबल लैंग्वेज ऑलरेडी आपको, ये इंडिया का एक जिसे कहते हैं ना कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि वी ऑल नो इंग्लिश, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे पास पहले से है, तो जब तक एक बहुत बड़ी मतलब आपको वो लैंग्वेज कोई आपको इंटरप्रिटेशन में नहीं जाना अगर फ्रेंच के, तो हम 6th के बच्चे को फ्रेंच क्यों पढ़ाना शुरू कर देते हैं, 6th के बच्चे को हम पहले नेशनल इंटीग्रेशन के रूप में अपनी आसपास की भाषा पढ़ाए ना, और अभी ये जो नई पॉलिसी है उसमें इन्होंने कर दिया है कि ये नहीं कि आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज पढ़नी है, नॉर्थ वाला अपने आसपास की भाषा पढ़े, तो पंजाबी पढ़ लो या गुजराती पढ़ लो या राजस्थानी पढ़ लो,
5: पहले CBSE को खुद डिसाइड नहीं है नवजोत जी, NCERT को खुद डिसाइड नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं, कि नए जो अनिल जी ने कहा नए एक्सपेरिमेंट के नाम पे पुरानी चीजों पे लिपा पोती करके उनको,
3: ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, मैं अगेन ये चीज एम्फसाइज करूंगी, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, हमारी थ्री लैंग्वेज पॉलिसी सालों साल से चल रही है, उस थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं,
5: साथ ही 11th 12th तो ऐसा किया जाता है कि जो बच्चा सरकारी प्राइवेट स्कूलों से पढ़ के ही नीट और JEE क्लियर कर लेता उसको प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना जाना पड़ता, एक्सपेरिमेंट इस बात पे होने चाहिए शिखा जी कि जो हमारी एजुकेशन है वो कंपटीशन के अकॉर्डिंग क्यों नहीं है 12th तक की, हमारी 11th 12th में बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और उसको कंपटीशन देने के लिए 15-20 लाख रुपए खर्च करके नीट और JEE के लिए कोटा जाना पड़ता है, आप एक्सपेरिमेंट यहाँ क्यों नहीं करते कि अपने
1: ठीक है। सीमा जी एक सेकंड, अनिल जी का सवाल भी ले लेते हैं। हाँ अनिल जी,
2: मैम देखिए, जो अभी सीमा जी ने बात बोली, हमारी एजुकेशन का मोटिव क्या है ये सीबीएसई को क्लियर करना पड़ेगा। पैन इंडिया बोर्ड है ये। जो बात मैंने पूछी कि जेई का एग्जाम देने के लिए या नीट का एग्जाम देने के लिए उस बच्चे को आगे बायोलॉजी और केमिस्ट्री काम आनी, फिजिक्स काम नहीं आनी है, आज तक वो चीज का रिफॉर्म क्यों नहीं हुआ है एजुकेशन सिस्टम में? जिसको इंजीनियर बनना है उसको केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है, बट केमिस्ट्री की उसको, अब आप बोलेंगे टेक्निकल ब्रांचेस की बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हमने सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्यों बना रखा है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब हमारा क्या है? सीबीएसई उस चीज की स्किल्स को, हम अपनी अब्रॉड स्टडीज की अगर हम बात करते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, वहां पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होके कोई इस तरह के एंट्रेंस नहीं होते जहां पर बच्चे को उसको जो पढ़ना है उसकी बेसिक जो आप बात कर रही हैं, क्या हम उस रिफॉर्म के बारे में सोच रहे हैं? और अगर आज से 10 साल बाद भी वो होता है तो दैट विल बी गुड फॉर, जो बात बार बार मैं पूछ रहा हूँ। नहीं मैम, आप लोगों को देखिए, ये बात ये कह के शांत नहीं बैठा जा सकता। हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अगर हम एनईपी लेके आए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आज भी हमारी स्ट्रीम बची हुई है साइंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज की, वो खत्म हो गई है।
1: शिखा जी देखिए, आप उस कमेटी की मेंबर रही हैं, इसलिए ये एक एजुकेशनिस्ट का या कहें कि एक सवाल हो सकता है, ये हर पेरेंट का सवाल हो सकता है। आपको नहीं लगता है कि इस पे भी विचार होना चाहिए?
3: नहीं, बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ सीमा जी की बात से, कि हम जो है ये जो नीट के एग्जाम कर रहे हैं या ये हम इस तरह के एग्जाम करते हैं जिसमें कि 12th तक का सिलेबस नहीं होता, वो एक बहुत हायर लेवल का सिलेबस होता है जिसकी वजह से हमें कोचिंग में बच्चों को भेजना पड़ता है। सो दिस इज नॉट द राइट एजुकेशन पॉलिसी। हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अगर हम उसमें ये कह रहे हैं कि 12th तक का आएगा, तो हमें ये रिफॉर्म अपने सिस्टम में लाना चाहिए कि 12th तक का ही आए। बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर हम चाहे एनडीए की बात करें, चाहे हम नीट की बात करें, चाहे हम आईआईटी की बात करें और इवन यूपीएससी की भी बात करें, तो वो जिस लेवल का आपका पेपर आता है उसकी वजह से ही ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो फ्लरिश करते हैं, क्योंकि वो 12th तक का नहीं पूछ रहे। अगर आप सीसेट का पेपर देखें, अभी प्रीलिम्स का पेपर होके चुका है, तो उसमें यही हुआ कि सीसेट का इस लेवल का आ रहा है कि आदमी प्रीलिम्स का सब्जेक्ट का पेपर तो कर पाता है पर सीसेट का नहीं कर पाता है, जबकि वहां पे लिखा होता है कि भाई 10th तक का या 12th तक का ही जो है वो सिलेबस होगा, पर वो आ जाता है पूरा इंजीनियरिंग तक का। तो यहां पे तो कहीं एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बिल्कुल जरूरत है, और खासतौर से जो बच्चों के ऊपर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर है, वो हमें जब हम 12th की बात कर रहे हैं, मैं अपना अगर याद रखा रूं कि जब हम अपने 12th के बाद हम अपना मेडिकल का एग्जाम दे रहे थे या इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे थे, तो वी वर वेरी श्योर कि 11th 12th में जो भी पढ़ाया जा रहा है हमारे स्कूल में, हम उसको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें किसी कोटा या कोचिंग या कहीं और नहीं जाना है। पर आज इतने हायर लेवल का कॉम्पिटिशन हो गया है कि आपको कोचिंग में जाना पड़ता है, तो ये रिफॉर्म तो जरूरी है। पर यहां हम बात कर रहे हैं 3 लैंग्वेज की, हम यहां पे बात कर रहे हैं एक डिफरेंट नेशनल इंटीग्रेशन की, और इनिशियली चाहे ये शुरू हुआ था कि हम साउथ का नॉर्थ में पढ़ाएं, नॉर्थ का साउथ में पढ़ाएं, पर ये एक रिलैक्सेशन पूरी पॉलिसी में लाया गया कि वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें टीचर्स नहीं मिलेंगे, और इसलिए ये एक क्लेरिफिकेशन दे दिया है सीबीएसई ने कि भाई स्कूल डिसाइड करेगा क्या लैंग्वेज वो पढ़ा सकता है, ताकि उसका जो अच्छा टीचर है वही लैंग्वेज वो दे और बच्चे वही लैंग्वेज पढ़े।
1: ठीक है, अब रुचिका जी बताइए। अब एक सेकंड में मैं तीनों का जवाब लेती हूँ। सीमा जी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज सीमा जी, अनिल जी, एक एक करके तीनों का इस पे जवाब लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर। अब इस नए सर्कुलर में जो कहा गया है कि रिलैक्सेशन दिया गया है कि उसका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, केवल सोचने समझने के लिए ही इस भाषा को पढ़ाया जाएगा। रुचिका जी, आपसे शुरू करूंगी, क्या चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं स्कूल एंड से, और क्या स्कूल पेरेंट्स को बिल्कुल चीजें क्लियर कर रहा है, क्योंकि अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ था।
4: जिस सर्कुलर की 29 जून की बात कर रहे हैं वो सभी के पास है, सब उसको पढ़ चुके हैं, सब उसको समझ चुके हैं, लेकिन उसमें काफी ऐसी सारी चीजें हैं जो इनको, अभी मैंने जो अपने प्रश्न उठाए हैं वो इनको बताने की जरूरत रहेगी। उसमें स्टेप ऑन स्टेप क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले इन्होंने कहा ये स्टार्ट कर रहे हैं, अब इन्होंने कहा कि हम इनसे स्टार्ट नहीं कर रहे, अब हम 6 से रुकेंगे, 7, 8, 9।
1: एक सेकंड बोलने दीजिए। हाँ जी, हाँ जी।
4: और उसके बाद जो है प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है, उसकी प्रॉब्लम ये है, अगर आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स और करिकुलम R3 लैंग्वेज के लिए स्टार्ट की गई है, क्या वो कंप्लीट हो चुकी है? नहीं, वो कंप्लीट नहीं हुई है। हिंदी और संस्कृत का लैंग्वेज जो वो स्किल्स हमको पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, और दिल्ली का हर स्कूल मैं कहती हूँ हिंदी संस्कृत के अलावा तीसरा कोई और सब्जेक्ट नहीं उठाएगा। ऐसे ही अगर मैं नॉर्थ इंडियन स्टेट, साउथ इंडियन स्टेट्स कहीं पे भी चली जाऊंगी, वो अपनी ही भाषा पढ़ा के खुश है, और उनके लिए तो इन्होंने बहुत ईजी कर दिया, पहले भी यही था और उसी को हम मैं कहूंगी
1: उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं हुआ है बेसिकली। अब यहाँ से रुचिका जी दूसरी बात, उस सर्कुलर के जवाब में मेरे ख्याल से स्कूल्स ने भी अपना डाउट भेजा होगा सीबीएसई को, भेजा ठीक है। अनिल जी
2: मैम, 6, 7, 8 में ऑलरेडी जब 3 लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं बच्चे, तो 9th में बर्डन क्यों बढ़ाना, मेरा सवाल फिर वही आके टिकता है। 1 साल में पढ़ के बेनिफिट ऐसा क्या मिल जाएगा, 8th तक तो ऑलरेडी वो 3 लैंग्वेज पढ़ रहा है, 9th से वो कंपटीशन और उसके लिए ऑलरेडी प्रेशर है, तो 9th में सीबीएसई क्यों जिद के साथ।
1: ठीक है ठीक है ठीक है अनिल जी, हाँ जल्दी से सीमा जी छोटा सा सवाल।
5: क्योंकि मेरा सवाल सिर्फ यही है कि सीबीएसई एक्सपेरिमेंट के नाम पे उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, और ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ऑलरेडी चल रहा था, इसका बिना मतलब का रायता फैलाया गया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली एनसीआर के स्कूल संस्कृत के अलावा कुछ नहीं उठाएंगे, और संस्कृत ऑलरेडी पढ़ाई जा रही है और वही पढ़ाई जाएगी। तो जो इसके पीछे मकसद बताया जा रहा है कि हम नेशनल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और उन स्कूलों को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है नवजोत जी, कि जिन स्कूलों में 8th, 9th और 7th का बच्चा तो फ्रेंच पढ़ रहा है, और जो 6th में नए एडमिशन आ रहे हैं उनको वो कहें कि नहीं संस्कृत प्रो, फ्रेंच, जर्मन और रशियन नहीं मिलेगी, तो उन पेरेंट्स को समझाना उनके लिए मुश्किल है। उसके बाद जब उन्हें कहो कि इनका बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, तो 9th के पेरेंट कह रहे हैं तो फिर नई चीज क्यों इंट्रोड्यूस की जा रही है।
1: बिल्कुल वैलिड सवाल है आपका और अनिल जी का, देखिए ये बात गलत भी नहीं है। देखिए शिखा जी अब आप सोचिए, जुलाई मंथ में हम लोग हैं और फरवरी में मेरे ख्याल से एग्जाम हो जाएंगे 9th वालों के, और हमारे पास गिने चुने 6 महीने हैं। क्यों इस 6 महीने के लिए 9th क्लास पर ये चीज आपको लग रहा नहीं है कि थोपी गई है?
3: नहीं देखिए क्या होता है जब एक पॉलिसी
1: नहीं, मैम एक और चीज मैं इंक्लूड करती हूँ, हाँ। आप बार बार इस बात को एम्फसाइज कर रहे हैं कि इस पॉलिसी को लाने का मकसद जो था ठीक है, आपके मकसद पर हम गलत नहीं, आप गलत नहीं है, मकसद सही था कि पूरे देश में हर किसी को अपने नॉर्थ को साउथ की, साउथ को नॉर्थ की, ईस्ट वेस्ट तमाम भाषाएं हमें आनी चाहिए, हम कहीं भी जाएं हम उस भाषा से अच्छे तरीके से वाकिफ हो। लेकिन जब वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं, चाहे अब आप देख लीजिए स्कूल्स हैं, पेरेंट्स हैं, सबको ऐसा लग रहा है कि ये चीज थोपी जा रही है। 9th के लिए क्यों जरूरी था, अब आपने एक अमेंडमेंट उसमें कर दिया है, थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया है, क्या ये कवर अप करने के लिए नहीं हुआ है?
3: नहीं कवर अप करने के लिए, देखिए क्या थी इंटेंशन, ये थी कि हम 6, 7, 8, 9 सब जगह करें, पर जब ये पेरेंट्स का ये व्यू आया और स्कूल्स का ये व्यू आया कि हाँ भाई ये शायद उनको प्रैक्टिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, और यही वाली बात कि जो बच्चे 7th, 8th, 9th में ऑलरेडी एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसको वो डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो सीबीएसई ने आई वुड से कि इस बात को समझा और इसलिए ही ये क्लैरिफिकेशन दिया कि अच्छा ठीक है आप जो 7th, 8th, 9th में कर रहे हैं आप मत करिए। मैं इस बात से, सीमा जी की बात से सहमत हूँ कि हाँ जब 6 में बच्चा आता है बहुत लोगों के में होता है कि नहीं हम फ्रेंच पढ़ना चाहते हैं, और अब ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी में क्योंकि वो 4th लैंग्वेज हो जाएगी फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसका स्कोप नहीं रह जाता है फिर 6th में, तो ये ही एक पॉलिसी हमारी है। और ये जो एक्सपेरिमेंट की हम बार बार बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कहाँ नया है, आप खुद ही कह रहे हैं ना कि इतने सालों से हम 3 लैंग्वेज पॉलिसी करते चले आ रहे थे, खाली 3rd लैंग्वेज में हम एक
1: फॉरेन कोटा की आपने
3: और इंग्लिश के साथ नॉर्थ में फ्रेंच लैंग्वेज आ रही है।
1: अच्छा अब एक मैम सीमा जी मैं आप ही का सवाल पूछ रही हूँ शिखा जी, जब हम 10th में बोर्ड एग्जाम में इस भाषा को रख ही नहीं रहे हैं तो क्यों ना ये स्कूल्स और पेरेंट्स पे डिसाइड छोड़ दिया जाए कि आप कौन सी भाषा पढ़ाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि अगर मैम एक सेकेंड हाँ। ऐसा तो है नहीं कि अगर बच्चा स्पैनिश, फ्रेंच या जर्मन पढ़ेगा तो आगे काम नहीं आएगी? हम और आप सभी जानते हैं भारत में ही कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इन भाषाओं की जरूरत है।
3: नहीं ये बात बिल्कुल सही है कि हम पेरेंट्स पे छोड़ सकते हैं, पर लेकिन पेरेंट्स पे छोड़ने से क्या है, देखिए एक क्लास में 30 बच्चे हैं, अब अगर 30 बच्चे 30 लैंग्वेज बोलेंगे तो वो तो एक स्कूल नहीं पढ़ा
1: सकता। ऑप्शंस चार ही देते हैं, स्कूल भी चार ही ऑप्शंस देते हैं।
3: तो नहीं तो जो ऑप्शन वो देंगे स्कूल, फिर वही तो है ना कि जो उस स्कूल के पास कौन सा अच्छा टीचर मौजूद है।
1: अगर एक स्कूल के पास तीनों टीचर हैं, आपका सेक्शन
3: तमिल का टीचर नहीं है तो मैं तमिल कैसे सिखा सकती हूँ, या मेरे पास अगर स्पेनिश का भी टीचर नहीं है तो मैं स्पेनिश कैसे सिखा सकती
1: हूँ? पर मैम वो पेरेंट्स भी रेडी होने चाहिए ना कि वो अपने बच्चे को तमिल सिखाना चाहेंगे या स्पेनिश सिखाना चाहेंगे।
3: नहीं तो तमिल और स्पेनिश में फिर उसके पास जो हमारी पॉलिसी है उसमें यह है कि आपको 2 इंडियन लैंग्वेज इसलिए लेनी है कि हम एक ये जो मदर टंग में शुरू से आपको पढ़ाना है इसलिए लेके चल रहे हैं कि शुरू की भाषा जो है वो मदर टंग में हो, तो मदर टंग रहे आपकी एक, और एक और कोई इंडियन लैंग्वेज रहे, और इंग्लिश आपकी हमेशा जनरली आपकी होती है, एंड दिस इज द रीजन कि हम जो है एक 3 लैंग्वेज पॉलिसी में
1: आपका मकसद जो है ना मैम हर स्टेट में पूरा हो रहा है। देखिए
3: हाँ,
1: हर जगह पे हो रहा
3: है,
1: मैं वही कह रही हूँ,
3: एक्सपेरिमेंट भाई ये हमेशा से चलता ही आ रहा है, 98%
1: प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली एनसीआर वालों को आ रही है, क्यों नहीं सीबीएसई दिल्ली एनसीआर वालों को लिबर्टी दे देता कि ठीक है आप डिसाइड कीजिए, जब आप 10th में बोर्ड करवा ही नहीं रहे हैं तो फिर लिबर्टी देने में क्या दिक्कत है?
3: इसीलिए तो इस क्लैरिफिकेशन में लिबर्टी अभी तो आई है ना 7th, 8th, 9th के लिए कि अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे थे आप पढ़ते रहिए, वी आर नॉट सेइंग कि आपको कोई एक और लैंग्वेज।
1: ठीक है चलिए, हालांकि वक्त की कमी है, सवाल बहुत ज्यादा है, जिस मकसद से लाया गया था मकसद नहीं था, लेकिन बात यह है कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर्स भेज दिए गए हैं स्कूल्स को, लेकिन स्कूल को में स्कूल लेवल पर स्कूल एंड में अभी भी क्लैरिटी नहीं है इसको लेकर, लेकिन सीबीएसई का कहना है कि थर्ड लैंग्वेज मतलब भारतीय भाषा ही होनी चाहिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio. Now on TuneIn. Search audio on TuneIn to start exploring.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: कोटा के एक स्टूडेंट ने ऐसा स्मार्ट प्लांट पॉट तैयार किया है जो पौधों की जरूरतों को आसान तरीके से समझने में मदद करता है। ये स्मार्ट इमोशन पॉट सेंसर और तकनीक की मदद से पौधे की स्थिति पर नजर रखता है और पानी धूप या फिर देखभाल की जरूरत होने पर मोबाइल पर इमोजी के जरिए अलर्ट भेजता है। इस अनोखे इनोवेशन का मकसद पौधों की देखभाल को आसान, रोचक और तकनीक से जोड़ना है।
12: जरा सोचिए, अगर आपके घर का पौधा बोल पाता तो शायद आपको अपना हाल बताता और आप उसकी जरूरत को पूरा कर पाते। अब तक ये सिर्फ कल्पना थी, लेकिन कोटा के एक युवा इनोवेटर ने इस कल्पना को हकीकत में बदलने की पहल की है। आजाद पब्लिक स्कूल के छात्र और वेल्ट्रियोनेक्स स्मार्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक आर्यन सिंह ने ऐसा स्मार्ट इमोशन पॉट बनाया है जो पौधों की खामोशी को इमोजी की भाषा में बदल देता है।
13: जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जान आ गई है, जहाँ पे प्लांट जो है अपने इमोशन शो कर सकता है कि हाँ उसको प्यास लगने में वो रो रहा है, अंदर रहने पे अगर अकेला है तो उसको डर लग रहा है, या मोशन सेंस कर रहा है तो डर लग रहा है, नाइट में वो सो रहा है, तो जहाँ पे हम उसको देख सकें कि वो एक हमारा फ्रेंड है, हम एज अ फ्रेंड ट्रीट कर सकें उसको।
12: आज के दौर में लोग बड़े जोश से पौधे तो घर ले आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद भागदौड़ भरी जिंदगी में वही पौधे एक कोने में अकेले छूट जाते हैं। पौधों को कभी समय पर पानी नहीं मिलता, कभी धूप नहीं मिल पाती। जब पौधा मुरझाने लगता है तब हमें पेड़ों की तकलीफ पता चलती है। इसी प्रॉब्लम के हल के तौर पर आर्यन को इस स्मार्ट गमले का आइडिया आया।
13: हमने कि कुछ ना कुछ एक ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि वो किसी इंसान से इंटरेक्ट करते हैं, कर सके। जैसे कि हमें पता है आज इंसान आपस में बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो जाता है, लोग एक दूसरे से काफी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो ये हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा प्लांट के साथ किया जाए, ताकि उसको एज अपना फ्रेंड ही उसको ट्रीट करें और अपनी सारी बातें उसको शेयर कर सकें, उसके इमोशन देख सकें कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है एक चीज में।
12: ये सिर्फ एक स्मार्ट गमला नहीं बल्कि एक डिजिटल प्लांट कंपेनियन है। इसमें लगे सेंसर मिट्टी में नमी, पौधों के हिसाब से तापमान, पानी की जरूरत और रोशनी की आवश्यकता को भाप लेते हैं, और ये स्मार्ट गमला अपने एक्सप्रेशन से हमें पौधों की जरूरत के बारे में बता देता है। जैसे जैसे पौधे की जरूरत बदलती है, वैसे वैसे स्क्रीन पर उसके चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं।
13: ध्यान में रखकर इसको बनाया, इसके अंदर अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं जो कि अलग अलग चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर मॉइस्चर लेवल या मॉइस्चर या वाटर लेवल है तो उसको वो सेंसर देख रहा है, मोशन को मोशन सेंसर डिटेक्ट करने के लिए कर रहा है कि उसके साथ अगर कोई है तो उसको। पूरा बच्चों से फ्रेंडली बनाया है कि अगर वो इतना अभी से ही इतना केयरिंग बन जाते हैं तो आने वाले टाइम पे कुछ वो बेटर आउटपुट दे सकते हैं इस एनवायरमेंट को।
12: आज की पीढ़ी मोबाइल और गैजेट्स के साथ तो जल्दी जुड़ रही है, लेकिन प्रकृति से उनका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में ये स्मार्ट इमोशन पॉट इंसानों और पौधों के बीच दोस्ती का पुल बन सकता है। आर्यन का कहना है कि आने वाले समय में इस स्मार्ट इमोशन पॉट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और API मॉडल से और स्मार्ट बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में ये सिर्फ चेहरे के भाव ही ना दिखाए बल्कि यूजर से बात भी कर सके। कोटा से चेतन गुर्जर, गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: मंगल जीवन में किस तरह से समस्याएं पैदा कर सकता है, क्या है मंगल की समस्याओं का समाधान, और मंगल की समस्याओं को दूर करने के लिए करें कौन सा दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
3: तो देखिए चाय आ गई, चाय के साथ दिल्ली वालों को जिस बड़ी गुड न्यूज का इंतजार था वो भी आ गई, मतलब बारिश आ गई है। हमने चाय पी, चाय कैसी लगी है?
4: चाय बहुत अच्छी है और थैंकफुली आजकल कुछ दिनों से जब से मौसम बदला है ना, ये लॉन्ग वाली चाय हमें भेज रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है।
3: मौसम वाली चाय
4: अमेजिंग है ना, अमेजिंग,
3: मजा ही आ गया ना।
5: चाय तो एक ही अच्छी है यार, अदरक मिस कर देते हो।
4: कौन सी?
5: मेरी वाली चाय।
4: आप मुझे बोलिए मत, आप लेके नहीं आ रही है, ऐसे चलेगा
5: काफी वक्त
3: नहीं। मैं मौसम की बात कर रही थी तो आज मेरा वैसे जलेबी खाने का मन कर रहा था।
5: हाँ, किसी ने बोला जलेबी, जलेबी के साथ तो वैसे समोसा ही कॉम्बिनेशन
3: ऐसा होता है ना। मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे ऐसा होता था ना, तो अक्सर मन करता था शाम में बस जलेबी मिल जाए तो बेटर है।
4: समोसा और जलेबी का कॉम्बिनेशन ज्यादा, समोसा या फिर वो भजिए बड़े तले जाते हैं, है ना, गर्मा गर्म
5: पकौड़े जिसको हम बोलते हैं,
4: पकौड़ा और चाय हमारे यहाँ फेवरेट।
6: चाय की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे पिला दो अदरक और लौंग वाली।
5: मैं अभी आपको सर्व करती हूँ, अभी हेडलाइन जाएगी।
3: देखिए चाय वाला मॉल हमने आपको हमने बना दिया है, तो आप भी भजिया का मजा ले रहे होंगे, कोई जलेबी का ले रहा है, कोई समोसे का ले रहा है, हम लोग चाय के साथ साथ खबरों का मजा लेंगे।
4: बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। और देखिए जिस तरह से अभी हमने आपको कहा, मौसम तो यहाँ का एकदम से बहुत ही सुहाना हो गया, क्यों अमेजिंग हो गया है मौसम, तो उसकी बात करेंगे ही, साथ ही हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की भी, जहां पर श्रद्धालुओं को सेहत की सौगात देने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। प्रशासन ने दोनों बेस कैंप पर अस्पताल बनाए हैं जहां लोगों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है, तो चर्चा हम इस पर भी करेंगे।
5: बिल्कुल, देखिए साथ ही बात होगी माँ दुर्गा के 400 साल पुराने धाम की, इस धाम से जुड़ी कई दिलचस्प बातें भी आपको बताएंगे, साथ ही आपको मिलवाएंगे 116 साल की एक अनोखी भक्त के साथ।
6: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, मॉनसून के बारे में बात होगी और इसके साथ ही बॉलीवुड के धुरंधर की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे, कैसे रणवीर ने धुरंधर की तैयारी की। तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: दिल्ली NCR में हुई झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया, अस्त्र मिसाइल की भी दी। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की जोरदार तैयारी, पुलिस के जवानों ने की मेगा मॉक ड्रिल, 16 जुलाई से शुरू होगी भव्य रथ यात्रा। पैंतालीस साल के हुए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, रांची में फैंस ने केक काटकर मनाया जन्मदिन, फार्म हाउस के बाहर दिखा उत्साह। चीन के चोंकिंग जू में पांडा का बर्थडे बना मेगा सेलिब्रेशन, चिड़ियाघर में उमड़ी भीड़, फल सब्जियों से बना शानदार केक।

0: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए इंतजार दिल्ली एनसीआर के लोगों का खत्म हो गया है और हम सभी जो बार बार कह रहे थे कि उफ ये गर्मी, तो उस गर्मी से हमें राहत मिल गई है। झमाझम बारिश हुई है आज सुबह से ही, हम सभी जो है वो देख रहे हैं
1: दोपहर से सुबह बड़ी गर्मी टॉर्चर झेली मैंने
0: सुबह, लेकिन माहौल बन गया था बिल्कुल बारिश वाला। साढ़े
2: बारह मुझे लगता है 10 के बाद हुआ है, 11 के बाद।
0: मैं अर्ली मॉर्निंग एक बार सुबह 6:30 के आसपास मैंने देखा था, तो कल से तो कूल था एटलीस्ट, और मुझे लग रहा था कि शायद बेहतर होगा आज मौसम, हवा चल रही थी।
3: बारिश तो आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, लेकिन बड़ी रुक रुक के आ रही थी, तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब फुल फ्लेज बारिश आ गई है, तो हम सबको बारिश का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा।
0: और आप लोगों को ये भी बता दें कि इससे पहले कि हम आप लोगों को खबर बता दे, यहाँ शगुफ्ता का कोई गाना वाना गाने का मन कर रहा था,
3: कह तो रही
0: बारिश को लेकर के। शगुफ्ता कौन सा गाना, बारिश देखती है तो कौन सा गाना जहन में आता है आपके सबसे पहले बताइए।
2: ये वैसे तो बहुत सारे आते हैं, बट मेरे मुंह में जो गाना आता है गाने के लिए वो एक ही गाना आता है।
0: कौन सा?
2: जिसमें आप लोग मेरा साथ दोगे।
0: हाँ,
2: क्योंकि मैं सरगम को तो नहीं गाऊंगी, ज्योति और श्वेता जो है आप कोरस में हो सकते हैं, है ना? वैसे
3: मन से गाऊंगी मैं।
2: श्वेता
0: हाँ बताइए कौन सा।
2: मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा। आगे
0: देखिए किसी के दिल पे काबू नहीं है, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ना, हर कोई एंजॉय करना चाह रहा है इस बारिश को। लेकिन हाँ, साथ ही साथ हम ये भी आपको बता दें, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जैसे कि आप मुंबई ले लें, महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में और जगह, वहां पर तो देखिए मुसीबतें भी साथ वो लेकर के आती है, लेकिन हाँ रेस्क्यू ऑपरेशन भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम गुरुग्राम की, गाजियाबाद की, नोएडा की दिखा रहे हैं। बहुत लोग, शगुफ्ता आपको बताओ, जब मैं ऑफिस आ रही थी तो वहां पर कई बच्चे मुझे लिटरली मस्ती करते हुए दिखे, पानी में भीगते दिखे, और मजा आ गया उन्हें देखकर।
1: अच्छा, मैं एक और बात बताती हूँ। ये मैंने ना अपने फोन पे वो वेदर वाला खोला है, आई वांट आप सब लोग इसको देखो, मजा आ जाएगा। क्या बिजली चमक रही है इस वेदर वाली साइट पे,
2: कितना बारिश दिखा रहा
1: है। 26 डिग्री टेम्परेचर, मैक्सिमम इज 36 डिग्री, एयर क्वालिटी बहुत अच्छा है, बिंदास है भाई। आज बारिश है, कल बारिश, पूरा हफ्ता बारिश, और ठीक ठाक बारिश।
2: गुड न्यूज है यार। तो चलिए चिलचिलाते

0: तो उनको फाइनली थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से बादलों की आग में चोली लगातार जारी थी। फाइनली आज जिस घड़ी का इंतजार था वो आप सबके सामने है। बादल जमकर बरसे हैं, आसपास के इलाकों में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें, मजेदार सी तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन मुसीबतें जाहिर सी बात है तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन वहां पर भी राहत बचाव कार्य लगातार जारी है।
1: दिल्ली में मानसून की पहली जमाजम बारिश की शुरुआत हो गई है। समय मैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में खड़ा हूं और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे इस समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घने बादल छाए हुए हैं और पानी जमाजम बरस रहा है, क्योंकि 2 जुलाई से देखा गया था मौसम विभाग का जो अनुमान था कि दिल्ली में मानसून दस्तक देगा, मानसून ने दस्तक दी और पर देखा गया कि बारिश नहीं हो रही थी, उमस भरे दिन थे। इसी बीच एक तरफ तो देश के कई राज्यों में जो बारिश है इस समय लोगों के लिए मुसीबत, पर वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बारिश एक उमस वाले दिनों में सौगात बनकर आई है। और वहीं बारिश को देखते हुए अभी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जो है इशू किया है, सुबह देखा गया कि ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया, फिर दिल्ली को देखते हुए रेड अलर्ट इशू किया गया। उसी बीच तस्वीरें आप मेरे साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस की देख रहे हैं, जहां लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं। एक तरफ तो उमस से राहत और वहीं दूसरी तरफ झमाझम बरसते हुए बादल। और वहीं मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि ट्रैफिक मूवमेंट भी अगर आप देखें बारिश के कारण, उस पर भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं उनकी जो रफ्तार है धीमी हो गई है, और अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रही तो शाम को देखा जाएगा कि जब लोग अपने घरों की तरफ जाएंगे, अपने काम खत्म कर घरों की तरफ निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक पर भी इसका असर पड़ता दिखेगा। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट इशू किया और साथ ही लोगों को चेतावनी दी है कि अगर आप किसी जर्जर इमारत के पास रहते हैं, जर्जर इमारत में रहते हैं, किसी जर्जर पेड़ के पास खड़े हैं, तो किसी सुरक्षित स्थान पर जाके खड़े हो जाएं या सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि आने वाले 1-2 दिन में देखा जाएगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे ही बारिश पड़ने का अनुमान है। और साथ ही अगर बात की जाए साउथ वेस्ट मानसून की, तो देखा जा रहा है कि मानसून ने अभी रफ्तार पकड़ी है और उत्तर भारत के कई राज्यों में देखा जाएगा कि 1-2 दिन तक जो मानसून के बादल हैं वो दस्तक देंगे, जहां देखा जा सकता है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई राज्यों में भी झमाझम बारिश होने के आसार पैदा हो सकते हैं। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ अनमोल नाथवाली की दिल्ली से रिपोर्ट।
2: वाह, बस ये तस्वीरें देख के मजा आ जाता नहीं।
0: आज तो वैसे ऐसे ही मूड है ना कि ऐसे बस तस्वीरें दिखाते जाएं और
2: आज, लेकिन मैं बताती हूँ हुआ क्या। हम बाहर निकले बारिश देखने के लिए, बंदा रील नहीं बना पाया।
0: कौन नहीं बना पाया? मैंने बोला था, मैंने किसी को बोला था कि आप जाइए आज मैं आपके सिनेमैटिक शॉट्स लूंगी, बट कोई नहीं गया।
3: शगुफ्ता की एक बात मैं बताती हूँ, वो इतनी मशगूल हो जाती हैं अपनी रील्स बनाने में, बारिश आए रील बनाओ, फोन करो उठाएंगे नहीं, क्योंकि वो कह रही है बस और क्या चाहिए, बारिश
0: का फोन ऐसे टाइम पे आ रहा होता है ना जब मेरा सिनेमैटिक शॉट मिड में होता है और वहां पे सामने बजे अगर सरगम उसको मुझे काटना ही पड़ता है।
4: आपने जो किया वो आप सही किया कि देखिए इतने लंबे इंतजार के बाद जब मौसम इतना सुहाना होगा तो आपको लगेगा किसी और से बात करें, सारे एंजॉय करने का समय तो एंजॉय ही करना
2: चाहिए। रील भी नहीं बनी ना इसी में,
4: हाँ, ये बहुत। लेकिन चिंता मत करिए, अभी जैसे हमने बताया ना कि पूरे हफ्ते अभी बारिश होने वाली है,
0: टाइम आएगा
4: आपको पूरा मौका मिलेगा।
2: ट्यूजडे वाली बारिश, ये वेडनेसडे वाली बारिश, ये थर्सडे वाली बारिश, तो कुल मिलाकर
0: विद डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स
2: बारिश बारिश
4: वो कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि बारिश उत्तर भारत में तो हो ही रही है, पश्चिम भारत में भी मॉनसून अपने कई रंग यहां दिखा रहा है। जाहिर है ये बरखा बहार, गर्मी और उमस से राहत दे रही है, तपती धरती को भी तर कर रही है।
0: बिल्कुल, देखिए आसमान में उमड़ घुमड़ कर रहे काले घने बादलों की आवाजाही को लेकर देश के नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट जोन के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और क्या कुछ खास है दिखाते हैं आपको।

0: पश्चिम और उत्तर भारत में मॉनसून के मुख्तलिफ अंदाज कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल बना रहे हैं। बारिश का सबसे प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र और गुजरात में। मुंबई और उसके आसपास के जिलों में सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद मौसम विभाग ने मंगलवार को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद प्रशासन ने मंगलवार को मुंबई के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों कॉलेजों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। मंगलवार को मुंबई के आसमान में सुबह से ही काले घने बादलों ने उमड़ घुमड़ करना शुरू कर दिया था।
1: काले काले बादल जरूर मंडरा रहे हैं, तेज हवाएं समुद्र किनारे खासतौर से चल रही हैं और

0: यही वजह है कि कोस्टल एरिया में आप देख लीजिए, यहाँ पे पुलिस के लोग खड़े हैं और कोशिश इनकी यही है कि ज्यादा लोग समुद्र के किनारे नहीं जाएं। दरअसल हाई टाइड भी बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3.5 मीटर की हाई टाइड बताई जा रही है, लेकिन फिर भी ऑन ए प्रिकॉशनरी नोट लोगों को कहा गया था कि जैसे स्कूल्स जो मुंबई में खासतौर से बंद किए गए थे, और साथ ही कहा गया था लोगों को वर्क फ्रॉम होम एनकरेज करने के लिए। ऐसा ही कुछ हाल नासिक में भी देखने को मिला, जहां पर की वार्निंग दी गई थी कि तेज बरसात होगी, लेकिन बीच बीच में मध्यम मध्यम बरसात हो रही है, ज्यादा बरसात नहीं हो रही है।
1: मुंबई में बादलों की लुका छिपी का खेल चल रहा है, तो पुणे में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पुणे जिले में स्थित जाने माने हिल स्टेशन लोनावला में रविवार और सोमवार के बीच 24 घंटे में 670 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं पुणे महानगर में भी लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जलजमाव हो गया है, कहीं कहीं आवासीय परिसर और सोसाइटीज में भी पानी घुस गया है। हालात ऐसे हैं कि स्थानीय लोग अपने जनप्रतिनिधियों से खुलकर शिकवा कर रहे हैं।
2: पानी आया, लाइट गया, पीने का पानी नहीं, कुछ नहीं, गाड़ियां खराब। अभी कल तो, और हम किधर जाएंगे, हमारा घर ही इधर है, गांव हमारा 500 किलोमीटर दूर है, और इधर पेशेंट है, ये कैसा करने का कुछ ये नहीं, कोई भी आया नहीं देखने को कि क्या चल रहा है क्या नहीं, और सब गंदगी बहा के आती है। कुछ तो इमीडिएट इलाज करना चाहिए, और सबने बताया, मीटिंग हुआ है, सब हुआ है, सब बताया। जब भी इलेक्शन रहता है तभी हमारे सोसाइटी में आते हैं, हम बोलते हैं उसका सॉल्यूशन बोलते हैं, फिर भी किया नहीं अभी तक, ये 30 साल से हम रह रहे।
1: महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी बीते 24 घंटे में जबरदस्त बारिश हुई है। गुजरात के सभी 34 जिलों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश देखी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश सूरत और वलसाड जिले में रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात जिलों के लिए ऑरेंज और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: सूरत और वलसाड की भी अगर बात करें, नवसारी की बात करें, तो बारिश का रेड अलर्ट आज भी जारी है। बीते 24 घंटों के बाद एक बार फिर से अगले 24 घंटों के लिए दक्षिण गुजरात के सूरत, वलसाड, तापी के अंदर बारिश का रेड अलर्ट, और साथ ही में भावनगर और सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ में बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है।
1: पश्चिम भारत की तरह उत्तर भारत के भी कई हिस्सों, खासकर पहाड़ी हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। जम्मू संभाग के कई हिस्सों में बारिश ने लोगों की दुश्वारियां बढ़ा दी, कहीं मकान ढह गए हैं तो कहीं सड़कों पर मलबा आने से यातायात ठप हो गया है।
4: अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की, तो डोडा और किश्तवाड़ जिलों में इस भारी वर्षा के कारण काफी तबाही हुई है। डोडा जिले के ठाठरी इलाके में बारिश के कारण बाढ़ आ गई, और साथ ही में सड़क पर जो है मलबा आ गया, और इस बाढ़ और बारिश के कारण ठाठरी में कई मकान ढह गए, कई दुकानों को भी क्षति हुई, और कई जो गाड़ियां हैं वो बाढ़ के पानी के कारण बह गए। प्रशासन जो है लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है, और प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाई जा रही है।
1: पहाड़ी इलाकों में बारिश जहां मुसीबत का सबब बन रही है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को प्रचंड गर्मी के साथ ही उमस से भी राहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: अब देखिए, देश के कुछ हिस्सों में तो आपको सुकून भरी तस्वीरें नजर आएंगी, लेकिन वो इलाकों में जहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तैनाती है, जवान लगातार डटे हुए, हैट्स ऑफ टू देम। इस सिचुएशन में आम लोगों को बाहर निकालना और इतनी चुनौतियों का सामना करना कितना मुश्किल होगा,
5: लेकिन साथ ही साथ लोगों को ये भी बोलेंगे, जो बार बार सरकार की तरफ से भी अलर्ट होता है कि जिन इलाकों में आपको नहीं जाना है, आपको बोला गया है जहां पर ऐसे है ना पहाड़ी झरने या इस तरह की चीजें हैं, आप मत जाइए, तो प्लीज आप सुनिए। ये अलग बात है, हमारे ये देवदूत बनकर आते हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान बचा लेते हैं उन्हें, लेकिन खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
6: अभी दो दिन पहले अगर आपने तस्वीर देखी हो लोनावला में, जहां पर बहुत तेज बहाव आया था, लोग जानबूझकर उस एरिया में जा रहे थे, लोग कहने को तो ये एक एडवेंचर है उनके लिए, लेकिन फिर उसके बाद वही है कि अपनी जान जोखिम में डाल।
7: देखो, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते थे ना पहले जमाने में, पता नहीं मेरे घर में कहते थे कि नदी नालों से दूर रहना चाहिए, खासतौर पर जो बारिश हो रही है, इसीलिए जो लोग बाहर निकल रहे हैं, अपनों के साथ घूमने जा रहे हैं, मुझे लगता है ये भी मौसम नहीं है, और सोच समझ के निकल, जैसे बता रहे हैं लोनावला हो गया या फिर कोई हिल स्टेशन
6: की उत्तराखंड में देखिए अभी लैंडस्लाइड की
7: बिल्कुल।
8: अब देखिए बारिश का मौसम ही ऐसा है, तस्वीरें लगातार आपको दिखाई रहे हैं, आलम यह है कि मूसलाधार बारिश की वजह से हालात कई इलाकों में बहुत मुश्किल हो गए हैं।
6: बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पानी बहुत ज्यादा है, लोग पानी में फंसे हुए हैं, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके से हमारे जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं वो लोगों को यहां से बचा रहे हैं। रेस्क्यू मिशन की तस्वीर आपको दिखाते हैं।
9: तेज बहाव, चारों तरफ पानी और हर पल जिंदगी बचाने की जंग। पुणे, मुंबई, पालघर और गुजरात के अमरेली समेत कई जगह पर राहत और बचाव दल दिन रात मोर्चे पर डटे हैं। बात करें महाराष्ट्र के पुणे की, तो यहाँ इतनी बारिश हुई कि कई हाउसिंग सोसाइटी में पानी भर गया। यहाँ पहुँचने का एक ही जरिया थी नाव। रेस्क्यू टीम नाव के सहारे ही फंसे हुए लोगों तक पहुँची और फिर शुरू हुआ मिशन जिंदगी। छाती तक आ चुके पानी में रेस्क्यू टीम ने एक एक कर फंसे लोगों को निकाला और सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को निकाला गया। इसके बाद इमारत में दूसरे फ्लोर पर फंसे लोगों को बाहर नाव तक लाया गया। इस दौरान कई बुजुर्गों को उठाकर नाव में बैठाना पड़ा। मुंबई के पास लोनावला तक मूसलाधार बारिश हो रही है, कई घरों में पानी भरा तो एनडीआरएफ के जवान मदद के लिए पहुंचे। नाव के जरिए टीमों ने पूरे इलाकों का मुआयना किया और एक एक कर बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। इसी तरह लोनावला में एक अकेडमी में भी पानी घुस गया, जिसके बाद यहां 20 से ज्यादा लोग फंसे रह गए थे, लेकिन डिजास्टर रिलीफ फोर्स ने यहां भी पहुंचकर सभी का रेस्क्यू किया। बारिश के मौसम में हमेशा नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जाती है, लेकिन कर्नाटक के कोडगु में कॉलेज के कुछ छात्र सुरक्षा बैरिकेड पार कर झरने के प्रतिबंधित इलाके में पहुंच गए। तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके बाद सभी छात्र बीच में एक चट्टान पर फंस गए। हालांकि खबर मिलते ही राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाल लिया और सभी ने मिलकर फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं गुजरात के अमरेली में भी कुछ ऐसा ही हुआ, भारी बारिश के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल पाया। ऐसे में अमरेली के राजूला में बारिश के बीच डॉक्टर्स की टीम ने एक महिला मरीज की जान बचाई। हुआ ये कि गांव में बीमार महिला तक पहुंचने के लिए डॉक्टर पानी के बहाव के बीच ट्रैक्टर से गए, फिर जेसीबी की मदद से उसे बाहर लेकर आए। बादल, बारिश और उफनती लहरों में एनडीआरएफ के जवान किसी देवदूत से कम नहीं हैं, लेकिन इस मौसम में सही समझ, सावधानी और हिम्मत आपका सबसे बड़ा हथियार है। पुणे से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और बारिश के बीच एक दिलचस्प तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर से आई है, जहां पर शादी के इंतजामों के बीच अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। जबरदस्त बारिश की वजह से मंडप के साथ पूरे मैरिज हाउस में पानी भर गया, लेकिन इस पानी के बीच दूल्हा दुल्हन ने शादी की रस्में निभाई और जलमग्न मंडप में ही सात फेरे लिए। यही नहीं, शादी के बाद दूल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाया और फिर मैरिज हॉल में जमा पानी से बचाकर बाहर ले गया। इस शादी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा भी हो रही
10: है। वाह भाई वैभव, ये कोई नहीं रिकॉर्ड कर पाया, मैंने कर लिया।
7: देखिए अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हमारे जवान दिन रात मुस्तैद हैं,
8: लेकिन देखिए साथ ही तीर्थयात्रियों की सेहत का हमारी सिक्योरिटी फोर्स पूरी ख्याल रख रही है। ये बेस अस्पताल अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्थानीय लोगों के लिए, यात्रियों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। अमरनाथ यात्रा बालटाल और पहलगाम रूट से चल रही है, ऐसे में दोनों ही रास्तों पर बने ये बेस अस्पताल लोगों की सेहत की सौगात देने का काम कर रहे हैं।

मन में आस्था का समंदर, जुबां पर भोलेनाथ के जयकारे और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते कदम। हिमालय के ये ऊंचे पहाड़ इन दिनों शिव भक्ति के रंग से सराबोर हैं। पूरे देश से भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। नौजवानों का जोश यात्रा का उत्साह बढ़ा रहा है। बुजुर्गों का अनुभव इस यात्रा को सुलभ बना रहा है। बाबा अमरनाथ के दर्शन की ये यात्रा आसान नहीं होती। यहाँ कदम कदम पर चुनौतियाँ हैं, लेकिन भक्त की शक्ति के आगे सारी चुनौतियाँ घुटने टेक देती हैं। इस बार अमरनाथ यात्रियों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं।

0: बाबा अमरनाथ की गुफा समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर कई बार बुजुर्गों और कुछ नौजवानों को सेहत से जुड़ी समस्या भी होने लगती है। इस समस्या से निपटने के लिए ही प्रशासन ने बेस कैंप पर अस्पतालों का निर्माण कराया है। अमरनाथ यात्रा बालटाल और पहलगाम रूट से जारी है। ऐसे में दोनों रास्तों पर बने ये बेस अस्पताल लोगों को सेहत की सौगात देने के काम में जुटे हैं। बालटाल में बना ये बेस अस्पताल अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। ये बेस अस्पताल तमाम आधुनिक तकनीक से लैस हैं और इनमें पर्याप्त संख्या में बेड भी मौजूद हैं। इन अस्पतालों में हर तरह की जांच के साथ मरीजों को जरूरी दवाएं भी मुफ्त दी जा रही हैं।
1: यहाँ पे घोड़े से गिर जाते हैं और किसी को चोट लग जाती है, किसी को डंडा लग गया, किसी को घोड़े उनके ऊपर गिर गया, इस तरह से हुआ, और किसी का हार्ट अटैक हुआ, और किसी को ऊंचाई पे चढ़ के जो दिक्कत आती है वो भी हुआ। तो सब चीज़ों के इलाज के लिए हमारे पास सुविधा है और ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ECG के आगे अल्ट्रासाउंड भी मशीन बहुत बढ़िया मशीन है। हमारी आपको सामने दिख रहा है, बहुत बढ़िया मशीन है और इस पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिख जाती हैं। तो हमारे पास जैसे रोज़ काफ़ी मरीज आते हैं और उन सब का हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं और इसी तरह से एक्सरे भी होता है और हम एक्सरेज पे क्लाविकल फ्रैक्चर मिला है और गॉल ब्लैडर की पत्थरी मिली है, गॉल स्टोन्स मिले हैं।
2: हमारी हर जगह पे कैंपस हैं, मेडिकल कैंपस हर जगह पे हैं और गुफा तक, मोहली केव तक पूरे कैंपस हैं मेडिकल के। हर जगह अच्छी फैसिलिटीज़ है, ये तो मेन बेस है, यहाँ पे तो पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट है हर चीज़ का। वेल क्वालिफाइड डॉक्टर आते हैं, बाहर बाहर से आते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल से आते हैं, यात्रा ड्यूटी लगती है उनकी, सब बहुत अच्छे से आते हैं, सबका बहुत अच्छे से देखना। हाँ, टेस्ट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे पूरा फैसिलिटी अवेलेबल है,
3: हर चीज़ की सुविधाएँ दी हुई हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में। हर व्यक्ति के लिए फ्री है यहाँ पे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग बोलते हैं कुछ यहाँ पे जो बंदा आता है वो देख के आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है, बाहर से इतनी हमारे दुनिया आती है।
4: मतलब यहाँ के लोग इतना ध्यान रख रहे हैं सब एक दूसरे के लिए, मतलब कि बहुत अच्छे से बताते भी हैं और दवाई वगैरह सब कुछ अच्छे हैं, अच्छी फैसिलिटी कर रखी है। वैसे कोई मुश्किल काम नहीं है, यात्रा भी इनकी लगभग सफल ही रहेगी लोगों की, सब कुछ अच्छे से मैनेजमेंट कर रखा है सरकार ने।
0: सिर्फ बालटाल रूट पर ही नहीं, पहलगाम रास्ते पर चंदनवाड़ी में भी बेस अस्पताल अमरनाथ यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने में जुटा है। चंदनवाड़ी का अस्पताल भी आधुनिक सुविधाओं से भरपूर है। यहाँ मरीजों को 2400 घंटे मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान कई बार यात्रियों को बीच रास्ते में ही मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ती है। यात्रा रूट पर ये जिम्मेदारी CRPF के ये जवान उठा रहे हैं। चंद्रकोट में CRPF 84 बटालियन के जवान तीर्थ यात्रियों को हर तरह की मेडिकल सहायता मुहैया करा रहे हैं।
5: हर दिन 20 से 30 से बीच में और उससे ज्यादा यात्री हमारा से इलाज और ये ले रहा है। मोस्टली फीवर हो गया, लूज मोशन, फिर हाई ऑल्टीट्यूड वाला इश्यूज, हर दिन तो उसका ही ट्रीटमेंट हम दे रही है। यात्री का ये फैसिलिटीज का ऊपर यात्री भी बहुत खुश है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी, JNK पुलिस भी और CRP हमारा 84 बटालियन इस रामबन AOR में अच्छी खासा व्यवस्था कर चुके हैं। सुरक्षा का साथ साथ उनका हेल्थ को भी हम उसी हिसाब से इम्पोर्टेंस दे रहा है।
0: कोशिश यही है कि अमरनाथ यात्रा पर आए हर श्रद्धालु को बाबा बर्फानी के दर्शन बिना किसी दिक्कत के हों और ये यात्रा उनके लिए यादगार बन जाए। पहलगाम से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: अमरनाथ यात्रा में पवित्रता के साथ स्वच्छता का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीर्थयात्रियों से स्वच्छता समेत जिन 5 संकल्पों को अपनाने का आह्वान किया था उसका पूरा पालन हो रहा है।
7: एक और आपको बता दें, यात्रा मार्ग पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को अमल में लाया जा रहा है, तो दूसरी ओर आस्था की इस यात्रा को पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाए रखने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। ग्रामीण स्वच्छता विभाग के 300 से ज्यादा कर्मचारी यात्रा मार्ग को साफ, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए कचरा निस्तारण में निरंतर जुटे हुए हैं।

0: सत्य की यात्रा हर गुजरते दिन के साथ बड़ी होती जा रही है। महज 4 दिनों में 65,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में दर्शन का आंकड़ा और भी बढ़ता जाएगा और इसके साथ ही बढ़ती जाएगी तीर्थयात्रियों की जिम्मेदारी। जिम्मेदारी यात्रा की पवित्रता के साथ साथ स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने की। भारत के प्राचीन आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रतीक अमरनाथ यात्रा को इको फ्रेंडली बनाने पर प्रशासन का पूरा जोर है। यात्रा मार्गों और बेस कैंपों में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए पॉलिथीन, थर्माकोल और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अमरनाथ यात्रा को प्रदूषण मुक्त बनाने की मुहिम लगातार जारी है। खुद ग्रामीण स्वच्छता विभाग व्यापक सफाई अभियान चला रहा है। विभाग के 300 से ज्यादा कर्मचारी कचरा निस्तारण में निरंतर लगे हैं। ये कर्मचारी हर तरह के कचरे को इकट्ठा कर निर्धारित कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं और वहां से कचरा रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है ताकि पूरे मार्ग पर स्वच्छता बनी रहे।
1: सारा वेस्ट जो निकलता है श्री अमरनाथ जी यात्रा में पूरे एक्सिस में, वो हम पूरा कलेक्ट करके अपने प्लांट पर लाते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर उसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि हमारे पास दो टाइप के वेस्ट यहाँ आते हैं, एक तो ड्राई वेस्ट आता है, एक वेट वेस्ट आता है। तो जो ड्राई वेस्ट आता है तो उसका हम यहाँ पर प्रॉपर सेग्रीगेशन करते हैं, बोटल्स अलग निकाल कर, कार्डबोर्ड अलग निकालते हैं, पेपर अलग निकालते हैं। जो हमारा पूरा ट्रैक है जो वाई जंक्शन से लेकर अपर केव तक, होली केव तक स्टार्ट होता है, तो इसमें हमें 318 बंदे रखे हैं जो कि पूरा कचरा जमा करके पहाड़ों से जमा करके पूरा हम इसको प्रोसेस कर लेते हैं।
0: इस अभियान का मकसद यात्रा मार्ग और बेस कैंपों को साफ सुथरा रखते हुए हिमालय पर्यावरण का संरक्षण करना है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अमरनाथ यात्रा के आगाज से पहले सभी तीर्थयात्रियों से इस पावन यात्रा के दौरान 5 संकल्पों का पालन करने कहा था, जिसमें प्रमुख है स्वच्छता, जिसकी जिम्मेदारी हर भारतवासी की है।
2: सैकड़ों की तादाद में सफाई कर्मचारी अमरनाथ गुफा के हर हिस्से और हर पड़ाव और हर रास्ते से कचरा एकजुट करके यहाँ जमा करते हैं। उसके बाद उसकी सेग्रीगेशन होती है और साथ ही साथ उसकी फिर पैकिंग होती है और रिसाइकलिंग के लिए इस पूरे कचरे को अलग अलग फैक्ट्रीज में भेजा जाता है और जो लिक्विड वेस्ट है उसको यहीं पर खाद में तब्दील भी किया जाता है। इससे न सिर्फ अमरनाथ यात्रा स्वच्छ बन रही है बल्कि साथ ही साथ पर्यावरण के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए ये बहुत बड़ा प्रयास माना जा रहा है। गुड न्यूज टुडे के लिए तारिक लोन के साथ अशरफ आनी।
3: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 400 साल पुराना माँ दुर्गा का धाम।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more. All in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
6: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
5: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: दिल्ली NCR में हुई झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। पीएम मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया, अस्त्र मिसाइल की भी डील। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की जोरदार तैयारी, पुलिस के जवानों ने की मेगा मॉक ड्रिल, 16 जुलाई से शुरू होगी भव्य रथ यात्रा। 45 साल के हुए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, रांची में फैंस ने केक काट कर मनाया जन्मदिन, फार्म हाउस के बाहर दिखा उत्साह। चीन के चोंगकिंग जू में पांडा का बर्थडे, बना एक मेगा सेलिब्रेशन, चिड़ियाघर में उमड़ी भीड़, फल सब्जियों से बनाया शानदार केक। चलिए अब आपको महाराष्ट्र के चिखलदरा लिए चलते हैं, जहां पहाड़ियों के बीच मौजूद एक ऐसी गुफा है जहां पर आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ दिखाई देते हैं।
11: बिल्कुल, करीब 400 साल पुराने मां अंबे के इस गुफा मंदिर की सबसे खास बात है कि यहां साल के 365 दिन प्राकृतिक जलधारा लगातार बहती रहती है और शिवलिंग का अपने आप अभिषेक करती रहती है।

0: बादलों से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, हरियाली से सराबोर घाटियाँ और इन्हीं चट्टानों के बीच सदियों पुरानी एक रहस्यमय गुफा, जहाँ प्रकृति खुद माँ शक्ति की आराधना करती दिखाई देती है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के चिखलदरा में स्थित माँ अम्बे का प्राचीन गुफा मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और प्राकृतिक चमत्कार का अद्भुत संगम है।
1: कि महाभारत काल से भी अधिक पुरानी ये गुफा, मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर ये गुफा है और इस गुफा के अंदर अब यहाँ जो है अम्बा देवी संस्थान के चलते जो है देवी माँ की मूर्ति लगभग 400 साल से भी अधिक समय से यहाँ पर उसको स्थापित किया गया है।
0: इस गुफा में प्रवेश करते ही भक्ति की शक्ति का एहसास होता है। ये गुफा जितनी ऐतिहासिक है उसे लेकर पौराणिक मान्यताएं भी उतनी ही गहरी हैं। इस गुफा को पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम पड़ाव भी माना जाता है और यहाँ विराजमान माँ अम्बे की यह आकर्षक प्रतिमा श्रद्धालुओं को पहली ही नजर में अपनी ओर खींच लेती है।
1: इस रूप को आप देख सकते हो कितना सुंदर है माँ का रूप, लेकिन माँ के इसी गुफा में बैठी इस माँ के सामने जो है निरंतर 12 ही महीने जो है निरंतर इस गुफा में जो पानी है वो पानी निरंतर यहाँ पर गिरता है और इसी बीच जो है यहाँ पर दूसरा भी मंदिर है जो भोलेनाथ का मंदिर है, वो भोलेनाथ के मंदिर पर इसी गुफा के अंदर आप देख सकते हो कि निरंतर जलाभिषेक जो है वो यहाँ पर इस जो पहाड़ी के अंदर से जो पानी आता है वो निरंतर इसे जलाभिषेक में यहाँ पर रूपांतर होता है। ऐसी ही ये जो गुफा है वो अपने आप में अलग है।
0: इस गुफा की सबसे अनोखी पहचान है यहाँ बहने वाली प्राकृतिक जलधारा। विशाल चट्टानों के बीच से निकलने वाला निर्मल जल बिना रुके पूरे साल इसी तरह 2400 घंटे बहता है। यही जलधारा सीधे मंदिर परिसर में गिरती है और फिर स्वयं भगवान शिव के शिवलिंग का निरंतर जलाभिषेक करती रहती है। श्रद्धालु इसे प्रकृति और परमात्मा के अद्भुत मिलन का जीवंत प्रमाण मानते हैं।
1: देवी माँ के मंदिर के अंदर इस गुफा के अंदर निरंतर जो है पानी गिरता है और यही जो यहाँ पर भक्तों की भक्ति है, आराधना है, साधना है, वो यहाँ पर बड़े भाव से यहाँ पर भक्त जो है अपनी आराधना साधना पूजा करने के लिए और अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं। अमरावती के चिखलदरा से धनंजय साबले, गुड न्यूज़ टुडे।

0: अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर या फिर कुछ और पर्यटन स्थलों को देखने के लिए सैलानी आए, तो आप अपने आसपास की उन खूबसूरत जगहों की तस्वीरें जीएनटी को भेजिए।
1: बिल्कुल, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को दिखा पाए। हमारे दर्शक भी बड़े ही उत्साह के साथ अपनी जगहों के खूबसूरत वीडियो हमें भेज रहे हैं। तो चलिए, आज आपको हम लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के एक अनछुए पर्यटन स्थल चूड़धार पीक पर, जहां पर अध्यात्म का एहसास है तो ट्रेकिंग का एडवेंचर भी। यहाँ की खूबसूरती को हमारे एक दर्शक ने कैद किया है अपने कैमरे में और आपको हम दिखा रहे हैं।

आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे ट्रैक पर जो एक आध्यात्मिक ट्रैक है। इसका नाम है चूरधार पीक। और इस शिखर तक पहुंचने के लिए आपको मेरी तरह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर आना होगा, जहां नोहराधार से होते हुए घने जंगलों, पहाड़ी रास्तों और खूबसूरत घाटियों को पार करते हुए हम इस चूरधार शिखर तक पहुंचते हैं। कहते हैं कि चूरधार सिरमौर में शिवालिक माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और ये पीक हिमाचल उत्तराखंड के लोगों के आराध्य देव शिरगुल महाराज की तपोभूमि भी है। इसलिए यहाँ बने भोलेनाथ के मंदिर का भी आस्थावानों के बीच काफी महत्व रहा है। जब आप तकरीबन 8 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई कर यहाँ पहुँचते हैं तो नेचर अपने कई रंगों के साथ आपका स्वागत करेगी। कहीं बुरान से लदे पौधे तो कहीं सर्दियों में बर्फ का दीदार भी होगा। नेचुरल ब्यूटी से भरे चूरधारा पीक का नजारा न केवल अध्यात्म का एहसास देता आया है बल्कि तन मन को भी सुकून देता है। तो अगर आप देश के अनछुए पर्यटक स्थलों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरी नजर में चूरधार पीक द बेस्ट प्लेस है।

0: तो जीएनटी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि विदेश दौरों से बचें और अपने ही देश में सैर सपाटा करें, तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। बस आपको करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, तो बस उठाइए कैमरा, बनाइए एक ब्लॉग और भेज दीजिए हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप करके। हम आपका ये ब्लॉग गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए रणवीर सिंह के धुरंधर बनने की इनसाइड स्टोरी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: मंगल जीवन में किस तरह से समस्याएं पैदा कर सकता है, क्या है मंगल की समस्याओं का समाधान और मंगल की समस्याओं को दूर करने के लिए करें कौन सा दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: चलिए बात करते हैं फिल्मी सफर की, और सबसे पहले इस सेगमेंट में बात करते हैं धुरंधर रणवीर सिंह की, जिनकी मस्कुलर बॉडी का राज क्या है वो फाइनली सामने आ गया है।
3: बिल्कुल, धुरंधर में आपने रणवीर सिंह को हमजा के रोल में देखा होगा, हमजा अली मजारी का किरदार निभाने के लिए कैसे खुद को झोंक दिया था और महज 6 हफ्तों में 10 किलो वजन बढ़ाकर मस्कुलर बॉडी बनाई, और फिर जसकीरत सिंह रंगी के किरदार के लिए कैसे 15 किलो वजन घटाए भी, इसका खुलासा सामने हो चुका है, सामने आ चुका है, देखिए इस रिपोर्ट में।
4: धुरंधर के हमजा अली मजारी की स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी हो या जसकीरत सिंह रंगी की स्लिम टोन्ड बॉडी, रणवीर सिंह ने अपनी दमदार एक्टिंग से न सिर्फ दोनों किरदारों में जान डाली बल्कि इन दोनों किरदार को पर्दे पर प्रभावशाली दिखाने के लिए खुद को ही पूरी तरह झोंक दिया था। रणवीर सिंह ने हमजा और जसकीरत के किरदार से न्याय करने के लिए किस कदर खुद को समर्पित कर दिया था, इसका कुछ अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हमजा के किरदार के लिए रणवीर सिंह ने महज 6 हफ्तों में 10 किलो वजन बढ़ाया, रोज 4000 कैलोरीज, 240 ग्राम प्रोटीन और कड़ी ट्रेनिंग से पूरा लुक बदल दिया, तो जसकीरत के रोल के लिए उन्होंने 15 किलो वजन घटाया। रणवीर सिंह के इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में धुरंधर में उनके साथ अंडरकवर भारतीय एजेंट का किरदार निभाने वाले रिजवान शाह का बड़ा योगदान रहा है। रिजवान का रोल मुस्तफा अहमद ने निभाया था, जो असल जिंदगी में एक जाने माने सेलिब्रिटी जिम ट्रेनर और फिटनेस कोच हैं, और ऋतिक रोशन, विकी कौशल और यामी गौतम जैसे सितारों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। धुरंधर में रणवीर सिंह को ट्रेंड करने की जिम्मेदारी मुस्तफा अहमद ने ही निभाई थी। एक इंटरव्यू में मुस्तफा अहमद ने खुलासा किया कि रणवीर सिंह रोजाना 3600 से 4000 कैलोरीज लेते थे। उनकी डाइट में भरपूर मात्रा में चिकन, चावल और रेड मीट शामिल था। इसके अलावा वो हर दिन लगभग 240 ग्राम प्रोटीन लेते थे। रणवीर सिंह दिन में 2 प्रोटीन शेक पीते थे। हर शेक से उन्हें करीब 600 से 700 कैलोरीज मिलती थी, यानी केवल प्रोटीन शेक से ही रोजाना लगभग 1200 से 1500 कैलोरीज पूरी हो जाती थी, बाकी कैलोरी हाई प्रोटीन खाने के जरिए पूरी की जाती थी। अपने शरीर को बिना थकाए और बिना किसी अकड़न के मस्कुलर बनाने के लिए रणवीर दिन में 2 बार वर्कआउट करते थे, यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान भी टेक के बीच वर्कआउट करते रहते थे ताकि उनका शरीर हर समय किरदार के अनुरूप दिखाई दे। सुबह के समय अपनी सहन शक्ति और फुर्ती बढ़ाने के लिए कलारी पायर 2 सेशन और मोबिलिटी एक्सरसाइज करते थे, और शाम को उनका फोकस हैवी वेट ट्रेनिंग पर होता था ताकि मसल्स का साइज बढ़ सके। मुस्तफा ने बताया कि रणवीर सिर्फ शरीर फुलाने के लिए वेट ट्रेनिंग नहीं करते, वो इसे कलाकार की तरह अपनाते हैं। उन्हें समझ आ गया कि इससे उनकी सांस लेने की क्षमता बेहतर होती है, शरीर मजबूत बनता है और किरदार में गहराई आती है। मुस्तफा ने आगे बताया कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले रणवीर सिंह के पास केवल 6 हफ्तों का समय था, उस दौरान उनका शुरुआती वजन करीब 76 से 77 किलो था, लेकिन शूटिंग शुरू होते होते उनका वजन बढ़कर 87 से 88 किलो पहुंच गया था। धुरंधर पार्ट 2 की शुरुआत रणवीर सिंह के दूसरे किरदार जसकीरत सिंह रंगी से होती है। इस किरदार को निभाने के लिए रणवीर सिंह को अपना वजन काफी कम करना पड़ा था। जसकीरत के रोल में रणवीर सिंह को काफी स्लिम दिखना था। इस किरदार की शूटिंग हमजा के किरदार की शूटिंग के बाद की गई थी। इसके लिए रणवीर सिंह ने पूरे 15 किलो वजन घटाया ताकि कैमरे पर बॉडी बिल्कुल रियलिस्टिक लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर इंद्र कुमार के बेटे हीरो बन गए हैं। अमन इंद्र कुमार की अपकमिंग फिल्म तेरा यार हूं मैं का ट्रेलर एक दिन पहले रिलीज हुआ, जिसे सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला है।
5: बिल्कुल, क्या है पूरी खबर अगर आप भी सोच रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक।
6: तेरी जगह अगर कोई सच्चा दोस्त होता तो पता है वो क्या करता?
7: क्या करता?
6: हवा निकाल।
8: अरे बेटा, टायर पंचर हो गया।
9: पापा, मुझे लगता है स्कूटर पंचर नहीं हुआ है, किसी गधे ने टायर की हवा निकाल दी।
10: दोस्ती, प्यार और प्यार को पाने की शिद्दत से कोशिश।
6: ले जाऊं?
11: अरे मार दूंगा जान से।
10: एक लाइन में कहे तो तेरा यार हूं मैं की कुछ यही कहानी फिल्म के ट्रेलर से समझ आती है।
12: अब अपने इसी यार के लिए तुझे इतना मारूंगा कि तेरे जख्म देखकर मरहम भी कहेगा कि उन्हें ठीक करने की उसकी औकात नहीं है।
10: इंद्र कुमार के बेटे अमन कुमार और आकांक्षा शर्मा की डेब्यू फिल्म का ट्रेलर एक दिन पहले रिलीज हुआ। रोमांस, ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर तेरा यार हूँ मैं एक ऐसे कपल की कहानी है जहाँ प्यार एक तरफा दिख रहा है।
6: बहुत महंगा।
13: फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड।
6: लेकिन एक लड़की की लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसे सॉल्व करने वाला लवर ही होता है।
10: लड़की के लिए बॉयफ्रेंड से अधिक पिता का प्यार अहमियत रखता है। हालांकि लड़का खुद लड़की के पिता से उनकी बेटी का दिल जीतने के लिए कुछ वक्त मांगता है।
14: कि अनु तुझसे प्यार ही नहीं करती है भाई।
6: एक महीने, अगर इस एक महीने में तुझे लगे कि मैं अनु के लिए बेस्ट।
10: और यही वक्त फिल्म की कहानी का आधार है। कहने का मतलब ये कि प्यार को पाने की कोशिश के इर्द गिर्द ही इस फिल्म की कहानी रची बुनी गई है।
12: कि तेरे जख्म देखकर
10: ट्रेलर से कम यही अंदाजा लगता है। फिल्म में परेश रावल ने एक्ट्रेस के पिता का किरदार निभाया है और अपनी चिर परिचित कॉमेडी से छाप छोड़े हुए कामयाब रहे हैं।
15: लगता है ये नया फ्रेंड आगे जाके काफी
10: देखा जाए तो फिल्म की कहानी नई नहीं है। ऐसे सब्जेक्ट पर कई सारी बॉलीवुड फिल्में पहले भी बन चुकी है। इस लिहाज से तेरा यार हूँ मैं कोई नई बोतल में पुरानी शराब कही जा सकती है। फिल्म के हीरो अमन कुमार बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर इंद्र कुमार के बेटे हैं, जिन्होंने दिल, बेटा, राजा, मस्ती, धमाल जैसी कई हिट फिल्में दी। लेकिन जब बेटे को लॉन्च करने की बारी आई तो इसकी जिम्मेदारी मिलाप मिलन जावेदी ने उठा ली।
16: यार बोल।
10: ट्रेलर को सोशल मीडिया पर वैसे मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। एक यूजर ने कहा है कि अच्छा लग रहा है ये देखकर कि इंद्र कुमार के बेटे को फाइनली बॉलीवुड में एंट्री मिली। तो किसी ने कहा रीमेक मूवी को इतना पॉजिटिव रिस्पांस, बाकी सब तो ठीक है लेकिन किस एंगल से ये हीरो लग रहा है। एक और यूजर ने लिखा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म को डिजास्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वहीं किसी ने कहा, जितनी मेहनत रीमेक बनाने में की इससे अच्छा कोई फ्रेश मूवी बना लेते।
17: इसका मतलब ये है कि तेरे यार ही तेरी बेटी को घुमा रहे ले।
18: अरे तू भेजा मत घुमाना यार, गाड़ी घुमा चल।
10: मतलब जितने मुंह उतनी बातें। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म तेलुगु की सुपरहिट रोमांटिक फिल्म नेला टिकट की रीमेक बताई जा रही है। फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: देखिए, इस महीने एक फिल्म बड़े पर्दे पर भी सामने आ रही है। नाम है उसका उत्तरदा पुत्र, जो एक हिंदी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसका ट्रेलर हाल में एक्टर मनोज वाजपेयी ने रिलीज भी किया है, जो दर्शकों को एक ऐसी अनोखी कहानी की झलक देता है जिसमें हंसी, फैमिली फीलिंग्स को बड़े ही मनोरंजक अंदाज में पेश किया गया है। फिल्म में अनु कपूर लीड रोल में है, जबकि इनके अलावा रुखसार रहमान, ब्रजेंद्र काला, पवन मल्होत्रा, इश्तियाक खान, जीवेशु अहलावत, राजेंद्र सेठी, सुमित गुलाटी और नितिन अरोड़ा जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
0: वैसे देखिए फिल्म की खास थीम है करम बड़े या किस्मत, जिसको आगे बढ़ाते हुए ट्रेलर सवाल को हल्के फुल्के और एंटरटेनिंग स्टाइल में पेश करता है कि इंसान की जिंदगी उसके कर्म तय करते हैं या फिर उसकी किस्मत। फिल्म के डायरेक्टर रविंदर सिवाच हैं और प्रोड्यूसर संदीप कपूर, और ये फिल्म 24 जुलाई को थिएटर्स में आपको एंटरटेन करने के लिए आ रही है।
7: मतलब लाइक कंट्रोल।
5: तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: मंगल जीवन में किस तरह से समस्याएं पैदा कर सकता है, क्या है मंगल की समस्याओं का समाधान और मंगल की समस्याओं को दूर करने के लिए करें कौन सा दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
11: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: चलिए अब बात फीफा की कर लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि टूर्नामेंट में इस बार मैदान में जितनी चर्चा मैच की हो रही है, उससे कई ज्यादा सुर्खियां एक प्रशासनिक फैसले ने बटोरी है। दरअसल अमेरिका के स्ट्राइकर फॉलोरिन बालोगुन का रेड कार्ड रद्द किए जाने के बाद विश्व फुटबॉल में जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है। ऐसे में यूरोपीय फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था यूईएफए ने इस फैसले को अकल्पनीय, अनुचित और खेल की निष्पक्षता पर सीधा हमला करार देते हुए फीफा पर तीखा हमला बोला है।
0: देखिए विवाद जो शुरू हुआ है वो क्यों हुआ ये भी आपको बता देते हैं। रेड कार्ड रद्द किए जाने का ये पूरा विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से इस पूरे फैसले के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कथित तौर पर उनकी दखलअंदाजी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो से बातचीत की और ये पर्सनल बातचीत थी और इसी बातचीत के बाद बालोगुन के मामले की समीक्षा करने का उन्होंने अनुरोध किया जिसके बाद मामला पलट गया। अब तक आपने बाजारों में खाने पीने और खरीदारी के स्टॉल्स तो बहुत देखे होंगे लेकिन अगर सड़क किनारे लगा एक स्टॉल आपको किसी की जान बचाना सिखाए तो सुनने में कैसा लगेगा।
3: बिल्कुल आपको बता दें कि चीन में इन दिनों ऐसे ही लाइफ सेविंग स्ट्रीट स्टॉल लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहां निःशुल्क सीपीआर से लेकर घुटन तक की स्थिति में बचाव और घाव पर फर्स्ट एड देने की ट्रेनिंग दी जा रही है।
20: कोई सीपीआर देना सिखा रहा है तो कोई घुटन से बचने का उपचार बता रहा है। सड़क किनारे लगे इन स्टॉल्स पर ना तो कोई सामान बेचा जा रहा है ना ही किसी तरह की कोई नुमाइश हो रही है बल्कि यहाँ लोगों को जिंदगी बचाने की कला सिखाई जा रही है। चीन के हेनान प्रांत के झेंगझो शहर में ये अनोखा लाइफ सेविंग स्ट्रीट स्टॉल लगा है जिसके जरिए लोगों को मुफ्त में प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जा रही है। वॉलंटियर्स लोगों को सीपीआर गले में खाना फंसने पर अपनाई जाने वाली हाई मिलिख तकनीक घाव पर पट्टी बांधने के सही तरीके और गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक और डूबने जैसी घटनाओं से बचाव के उपाय सिखा रहे हैं। बच्चे हों या बड़े हर कोई इन स्टॉल्स पर रुक कर जीवन बचाने का गुर सीखने में दिलचस्पी दिखा रहा है क्योंकि अगर हर कोई ये समझ जाए कि आपात स्थिति में कैसे फर्स्ट एड देना है तो एम्बुलेंस या डॉक्टर के पहुंचने से पहले किसी की जान बचाई जा सकती है। इन स्टॉल्स के जरिए समाज के हर व्यक्ति को लाइफ सेवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है क्योंकि सड़क हो या घर या फिर कोई पब्लिक प्लेस कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। ऐसे में फर्स्ट एड की छोटी सी जानकारी भी किसी को जीवन दान दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
0: तो चलिए चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। कल की कड़क चाय का इंतजार कीजिएगा। हमारे साथ शाम 5 बजे मुलाकात होगी गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: मंगल जीवन में किस तरह से समस्याएं पैदा कर सकता है, क्या है मंगल की समस्याओं का समाधान और मंगल की समस्याओं को दूर करने के लिए करें कौन सा दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच TIT भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
0: दिल्ली NCR में हुई झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। पीएम मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया, अस्त्र मिसाइल की भी डील। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाभियान का शुभारंभ, नानकपुरा रिज में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण, गृह मंत्री अमित शाह ने की शुरुआत। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की जोरदार तैयारी, पुलिस के जवानों ने की मेगा मॉक ड्रिल, 16 जुलाई से शुरू होगी भव्य रथ यात्रा। पूर्णिया बना देश का नंबर वन जिला, डेल्टा रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जारी डेटा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की।
0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस मेड इन इंडिया दम की, जिसकी धाक आज सारी दुनिया में जम चुकी है। आज पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई दे रही है। हाल ही के सालों में भारत का डिफेंस सेक्टर सुपर फास्ट स्पीड के साथ आगे बढ़ा है। एक दशक से भी कम वक्त में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है, बल्कि अब उनके इम्पोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। दो तस्वीरें आपके सामने, ये आज की तारीख में भारत के मेक इन इंडिया मिशन की कामयाबी बयां करने वाली तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि भारतीय नेवी का अपना महेंद्र बाहुबली, ये नीलगिरी क्लास का मेड इन इंडिया युद्धपोत है। ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट इसी हफ्ते भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। नाम है INS महेंद्रगिरी। तो वहीं दूसरी तस्वीर है उस मेड इन इंडिया धाकड़ मिसाइल की, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है, भारत का ब्रह्मोस अस्त्र। जल्द ही इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल खरीदने जा रहा है। पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और आज इस डील से जुड़ा MOU साइन किया गया। तो चलिए आपको बताते हैं क्यों खास है भारत की ये मिसाइल और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के वर्तमान हालात को देखते हुए ये डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है।

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर पल एक नई ऊंचाई को छू रहा है। देश में ही ऐसे ऐसे हथियार गढ़े जा रहे हैं जो ताकत और तकनीक के मामले में बेहतरीन है। आज हिंदुस्तान के हथियार ग्लोबल हो रहे हैं। इंडियन वेपन की ताकत को दुनिया महसूस कर रही है और इसी का नतीजा है कि भारत डिफेंस सेक्टर में वेपन एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बढ़ा रहा है। इसकी सबसे ताजा तस्वीर आई है इंडोनेशिया से।
1: एयर टू एयर मिसाइल कोऑपरेशन अग्रीमेंट बिटवीन भारत डायनामिक्स एंड रिपब्लिक कॉर्प।
0: दुनिया की सबसे खतरनाक और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की अतिरिक्त बैटरियां खरीदने के लिए इंडोनेशिया ने फाइनल डील पर मुहर लगा दी है। पहले से ही भारत के ब्रह्मोस का खरीदार इंडोनेशिया ऑपरेशन सिंदूर में इस अचूक मिसाइल की ताकत को देख चुका है। भारत ने इसी मिसाइल के हमले से पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए थे। मुरीद के में लश्कर और बहावलपुर में जैश के ठिकानों को ब्रह्मोस ने धूल में मिला दिया था। अब Mach 3 की विनाशकारी गति से उड़ने वाली ब्रह्मोस जब इंडोनेशिया के तटीय इलाकों में तैनात होगी तो साउथ चाइना सी में चीन दादागिरी करने से पहले 100 बार सोचेगा।
2: देखिए, ब्रह्मोस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इस समय विश्व में रशिया और इंडिया के अलावा किसी देश के पास नहीं है और इंडो पैसिफिक रीजन में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। महत्व इसलिए है कि ये शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है, हवाई जहाज से भी लॉन्च किया जा सकता है और ग्राउंड से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के अगर हम उसकी सुरक्षा की बात करते हैं तो इसका इंडोनेशिया और भारत दोनों के पास होना एक तरह का एक जो मिलके हम जो है उस खतरे का सामना कर सकते हैं उसके लिए ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा।
0: दरअसल ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे कैसे भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस की स्पीड ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा होती है। हर मोर्चे पर भी ब्रह्मोस की तैनाती संभव है। इसे जमीन, समंदर, हवा कहीं से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। ये मूविंग यानी चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। इसकी स्ट्राइक क्षमता इतनी कमाल है कि ये 400 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। ब्रह्मोस में दूसरे स्टेज का रैमजेट इंजन लगा है जो इसे सुपरसोनिक स्पीड देता है और फ्यूल की खपत को कम करता है।

0: ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसका अचूक निशाना है। सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर यह मिसाइल सटीक वार करते हुए 1 मीटर के दायरे में जाकर गिरती है, यानी इसकी अचूक मारक क्षमता के आगे दुश्मन के किसी भी टारगेट का बचना नामुमकिन है। अचूक मारक क्षमता के साथ साथ ब्रह्मोस की रफ्तार इसकी एक और बड़ी ताकत है।
1: क्या इसकी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि 300 से ज्यादा, अब तो अभी तो इसका दूसरा वर्षन जो है वो 450 किलोमीटर तक भी जाता है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वो शिप्स को बिल्कुल खत्म कर सकता है। और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, सुपरसोनिक है कि कोई इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, सैटेलाइट से डिटेक्शन नहीं हो

0: अगर आज दुनिया मिसाइल पावर के मामले में भारत की ताकत का लोहा मान रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ब्रह्मोस है। खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो ब्रह्मोस दुनिया भर की नजर में आ गई है। वैसे भारत के तर्कश में ब्रह्मोस नाम का यह कमाल का ब्रह्मास्त्र 25 साल पहले ही शामिल हो चुका था, क्योंकि यह मिसाइल भारत और रूस के साझा मिशन का नतीजा है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था। इस मिसाइल के निर्माण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के तत्कालीन प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और रूस के उप रक्षा मंत्री NV मिखाइलोव ने 12 फरवरी 1998 को हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद इसका पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। और आज ये मेड इन इंडिया मिसाइल दुनिया भर के देशों में अपना लोहा मनवा रही है।
1: इंडोनेशिया और भारत के बीच ये समझौता एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसका प्रोडक्शन भी वहाँ हो सकता है और वहाँ हमारे यहाँ भी इसका प्रोडक्शन होता है, और भारत के लिए एक्सपोर्ट होने से एक इकोनॉमिक गेन भी है। तो सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक गेन के लिए अच्छा है, और इंडोनेशिया और भारत के जो सामरिक रिलेशनशिप है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा समझौता, एक बहुत बड़ा कदम है। मैं सोचता हूँ कि इसको आगे ले जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमें इंडोनेशियन एयरफोर्स या उनकी आर्मी के साथ मिलकर उसका प्रोडक्शन वहां करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो इंडो पैसिफिक सुरक्षा है उसको बढ़ावा मिले।

0: आपको बता दें कि फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया के साथ इस डील से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत ने एक बड़े रक्षा साझेदार के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया है। इंडोनेशिया और चीन के संबंधों पर नजर डाले तो ये साफ होता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के बावजूद रणनीतिक असहमति बनी हुई है। वहीं भारत और इंडोनेशिया अब दोस्ती के नए मुकाम की ओर चल रहे हैं। इस तरह इंडोनेशिया का भारत के पाले में आना बीजिंग के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और इसी दौरान ये इस डील के एमयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वैसे आपको बता दें, ब्रह्मोस के अलावा इंडोनेशिया ने अपनी पुरानी रूसी R-77 मिसाइलों को हटाकर भारत की इस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को खरीदने का ऐतिहासिक फैसला भी किया है।
2: एयर टू एयर मिसाइल कोऑपरेशन अग्रीमेंट बिटवीन भारत डायनामिक्स एंड रिपब्लिक कॉर्प।
0: मैक 4 प्लस की सुपरसोनिक रफ्तार और 110 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल जब इंडोनेशिया के फाइटर जेट से उड़ेगी तो दुश्मनों को संभलने का एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI ने अस्त्र से पाकिस्तानी जेट्स को निशाना बनाया और उसे जमीन पर ला दिया। इंडोनेशिया ने भी देखा कि भारत का अस्त्र पाकिस्तान की चीनी PL-15E मिसाइलों से कई गुना बेहतर साबित हुआ। उसी कामयाबी को देखते हुए इंडोनेशिया ने ये डील की है।
3: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में बने हथियारों का लोहा पूरी दुनिया ने माना और पाकिस्तान के भीतर आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करने वाली ब्रह्मोस और अस्त्रा जैसी मिसाइलों ने अपनी विश्वसनीयता और अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाई और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ोतरी मिली है। अब इंडोनेशिया ने फैसला किया है कि वो ब्रह्मोस के साथ एस्ट्रा मिसाइल भी खरीदेगा। एस्ट्रा यानी भारत में बनने वाली वो मिसाइल जो एयर टू एयर के लिए जानी जाती है, एस्ट्रा मैक 1, जिसे सुखोई 30 में इंटीग्रेट किया गया है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया अब भारत से ये मिसाइल लेना चाहता है क्योंकि इंडोनेशिया के पास भी सु-30 विमान है और अब वो अपने विमानों में एस्ट्रा मिसाइल

0: लगाना चाहता है, जिसको अब ये देखा जा रहा है कि किस तरह से भारत के जो हथियार हैं वो लगातार पूरी दुनिया में अपनी मांग बढ़ा रहे हैं। हालांकि इंडोनेशिया वो पहला देश है जिसने अस्त्रा मिसाइल के लिए बातचीत की है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है, लेकिन ब्रह्मोस को खरीदने वाला इंडोनेशिया अब तीसरा देश होगा, क्योंकि फिलीपींस के बाद वियतनाम से और अब इंडोनेशिया से इसकी बातचीत चल रही है। तो लगातार भारत के हथियार पूरी दुनिया में अपनी धमक दिखा रहे हैं और भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ रहा है, और इंडोनेशिया अब ब्रह्मोस के साथ साथ एस्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स भारत से खरीदेगा।
1: इंडोनेशिया से यह समझौता गवाह है कि भारत अब रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि ग्लोबल एक्सपोर्टर बन चुका है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब बात भारत के महेंद्र बाहुबली की। अब से 3 दिन बाद विशाखापट्टनम में INS महेंद्र गिरी का कमिश्निंग समारोह है, जहां इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के बेड़े में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया जाएगा। महेंद्र गिरी एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसके आने से भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत और सामर्थ्य हासिल होगा।

0: कृत प्रज्ञ रणेशु अपराजित, यानी वो जिसकी बुद्धि स्थिर है, अडिग है, वो जो युद्धों और संघर्षों में अपराजित रहता है। अपने आदर्श वाक्य की तरह ही सागर की लहरों पर सदा अपराजित रहने का दम और सामर्थ्य लेकर आ रहा है नौसेना का महेंद्र बाहुबली। सागर का वो बाहुबली जिसे देश के पूर्वी घाट पर मौजूद प्रसिद्ध महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर अपना नाम मिला है। वो महेंद्रगिरी पर्वत जो शक्ति, धैर्य और अडिग संकल्प का प्रतीक है, भारतीय नौसेना के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी युद्धपोत को महेंद्रगिरी नाम दिया गया है। 11 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना के लिए इस नए अध्याय की शुरुआत होगी, जब नौसेना के बेड़े में INS महेंद्रगिरी को शामिल किया जाएगा। INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तैयार किया गया 6th गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसका डिजाइन भारतीय नौसेना के WDB यानी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है।
1: भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत अपना 6th वॉरशिप महेंद्रगिरी मिलने वाला है। महेंद्रगिरी विशाखापट्टनम में 11 जुलाई को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। इसकी कमिशनिंग की जाएगी। प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत भारत में बनने वाला ये 6th वॉरशिप है। इसके पहले 5 दूसरे वॉरशिप्स भी भारतीय नौसेना का हिस्सा बन चुके हैं। महेंद्रगिरी को भारत में MDL ने बनाया है और नेवल वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसे डिजाइन किया है। तेजी से आत्मनिर्भर होती भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने वाले महेंद्रगिरी की ताकत की अगर हम बात करें तो इसमें बराक मिसाइल्स के साथ साथ ब्रह्मोस और टॉर्पीडोज की ताकत है। 6,600 टन के डिस्प्लेसमेंट वाला ये जहाज अत्याधुनिक सिस्टम से लैस है और भारतीय नौसेना को भारत में निर्मित होने वाले जहाजों की ताकत में इजाफा करने वाला ये जहाज बेहद कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के दौरान भारतीय जहाजों की तैनाती, हर तरफ भारतीय नौसेना लगातार सशक्त हुई है।
0: ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। INS महेंद्रगिरी में सुपर एडवांस्ड कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आधुनिक सेंसर, एंटी सबमरीन वेपन्स और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और पनडुब्बियों से ये एक साथ मुकाबला कर सकता है। महेंद्रगिरी फ्रिगेट स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जो दुश्मन के रडार को चुनौती देगा समुद्र में चुपचाप आगे बढ़ने और जरूरत पड़ने पर घातक प्रहार करने में इसका कोई मुकाबला नहीं। सबसे अहम बात ये कि महेंद्रगिरी के निर्माण में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
2: भारत की नेवी की ताकत में और इजाफा हो रहा है। INS महेंद्रगिरी अगर देखा जाए तो अत्यधिक ताकतवर फ्रिगेट है, जो कि देश में ही बना है। 75% हिस्से इसके देश में बने हुए हैं। इसके अंदर आधुनिक स्टेल्थ है, यानी कि एक रडार को द्वारा इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सामने का इसका हल्का क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है। ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है जो कि रडार को देखने के लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अत्याधुनिक हथियार इसके ऊपर लगे हुए हैं। आप देखिए, इसके ऊपर ब्रह्मोस है जो जमीन से ज़मीन पर मार करता है, यानी कि शिप से ज़मीन पर। इसमें बराक है जो कि शिप से एयर हवाई में मार करेगा। एंटी सबमरीन इसमें मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, टॉर्पीडो लगे हैं, जो कि आधुनिक सबमरीन को खत्म करने के लिए है।
0: महेंद्रगिरी भले ही एक वॉरशिप है, लेकिन इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल युद्ध के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान, समुद्री सुरक्षा गश्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिशंस में किया जा सकेगा। समुद्र में फंसे लोगों की सहायता से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने तक ये कई अहम जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है।
1: लगातार भारतीय नौसेना की ताकत आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ रही है और 2047 तक भारतीय नौसेना 100% आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखती है। अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो ये 75% इंडिजनाइज है। अगर इसकी क्षमताओं की बात करें तो ये कंबाइंड डीजल और गैस टेक्नोलॉजी के इंजन के साथ लैस है। किसी भी तरह के एंटी एयर वॉरफेयर या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैयार है और अपने क्लास के तमाम दूसरे शिप्स की तरह ये भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा कर रहा है।
0: आपको बता दें कि जिस प्रोजेक्ट 17A के तहत INS महेंद्रगिरी कमीशन होने वाला है उसका इतिहास लगभग 2 दशक पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने साल 2009 के जून महीने में इसका कॉन्सेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था।
2: देखा जाए तो प्रोजेक्ट 17A भारत की नेवी का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें नीलगिरी क्लास के शिप बनाए जा रहे हैं, फ्रिगेट्स हैं, जो कि 2 शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं, मझगांव में और गार्डनरीच में, मुंबई और कोलकाता में बन रहे हैं, और टोटल 7 शिप बन रहे हैं। ये शिप्स की खासियत यह है कि ये स्टेल्थ से लैस है, यानी कि इनका रडार को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है।
0: साल 2013 तक ही प्रोजेक्ट 17A के प्राइमरी डिजाइन तैयार कर लिए गए थे। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी को 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 के बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी को 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स को लॉन्च कर दिया था। 17A प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं। इनमें 4 फ्रिगेट मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि 3 फ्रिगेट बनाने की जिम्मेदारी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता को मिली थी, जिसमें हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी शामिल हैं।
1: तो प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत इसे भारत में बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा जिसके तहत 45,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 वॉरशिप्स को भारत में बनाया गया, जिन्हें MDL और GRSE ने मिलकर बनाया है। हाल ही में महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, जिसके बाद तमाम सी ट्रायल्स हुए, हर तरह के परीक्षण हुए और अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए महेंद्रगिरी पूरी तरह से तैयार है। महेंद्रगिरी से पहले दूनागिरी और तमाम दूसरे जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। पिछले महीने एक ट्रिपल कमीशनिंग के तहत इस पूरे प्रोजेक्ट के 5वें जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और अब 6ठा यानी कि महेंद्रगिरी भी भारतीय नौसेना में कमीशन हो रहा है।
0: निश्चित रूप से भारत का ये महेंद्र बाहुबली नौसेना की शक्ति में कई गुना इजाफा करने वाला है। INS महेंद्रगिरी की कमीशनिंग के बाद भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिलेगी। समंदर की सीमा की रक्षा में सागर का ये प्रहरी मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अब बात तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की। वायुसेना जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस साल सितंबर अक्टूबर के महीने में जोधपुर में होने वाली इस एयर कॉम्बैट ड्रिल का नाम ऑपरेशन तरंग शक्ति है। ऑपरेशन तरंग शक्ति 2026 में कई देशों की वायुसेनाएं इसमें हिस्सा लेंगी। ये तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण होगा। इससे पहले साल 2024 में भारतीय सेना ये मेगा युद्धाभ्यास कर चुकी है। तरंग शक्ति मेगा युद्धाभ्यास में वायुसेना के जवानों को दुनिया के दूसरे वायु सैनिकों की काबिलियत परखने का मौका मिलेगा। तरंग शक्ति जैसे युद्धाभ्यास से भारत के हवाई योद्धाओं को दूसरे देशों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का मौका मिलता है। ये कोशिशें भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए वायुसेना को पहले से तैयार करने की अहम पहल है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा।
1: भारतीय वायुसेना अब तक की सबसे बड़ी एयर कॉम्बैट ड्रिल तरंग शक्ति के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार इतनी बड़ी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जोधपुर में होने वाली है। 28 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच तरंग शक्ति अपने तमाम वायुसेनाओं के साथ भारत की वायुसेना की ताकत दिखाएगी। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि 2024 में तरंग शक्ति का पहला एडिशन भारतीय वायुसेना ने होस्ट किया था, जिसे दो फेजेस में किया गया था, जोधपुर और सुलूर। और अब दूसरी बार यानी 2026 में तरंग शक्ति होने वाला है, जिसमें एक बार फिर दो दर्जन से ज़्यादा पूरी दुनिया की वायुसेनाएं हिस्सा लेंगी, जिसमें तमाम देश, चाहे वो यूके, जर्मनी, यूएस हो, उन सभी को न्योता भेजा गया है। यानी भारतीय वायुसेना अपनी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में कॉम्बैट कैपेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी दोनों दिखाएगी, और वो भी पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक। कैमरा पर्सन प्रेमचंद्र के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए शिवानी, दिल्ली।
3: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
3: अब बात पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक बेहद शानदार और पॉजिटिव खबर की करेंगे। दिल्ली में मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान की भव्य शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस महाअभियान का आगाज किया। इस अभियान के तहत नई दिल्ली नगर पालिका परिषद राजधानी के 34 प्रमुख स्थानों पर मेगा वृक्षारोपण अभियान चलाएगी। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को एक सरकारी योजना से बदलकर जन आंदोलन का रूप देना है। इस महाअभियान के तहत दिल्ली के करीब 2 लाख लोगों को सीधे तौर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जोड़ा जाएगा, ताकि पर्यावरण के प्रति लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी हो सके। इस अभियान की शुरुआत पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली रिच को देसी प्रजातियों के वृक्षों से हरा भरा किया जा रहा है।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: इंडोनेशिया दौरे पर भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जकार्ता में देखी भारतीय संस्कृति की झलक, भारत वंशियों में खुशी की लहर। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ, नानकपुरा ब्रिज में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण, गृहमंत्री अमित शाह ने शुरुआत की। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की जोरदार तैयारियां, पुलिस के जवानों ने की मेगा मॉक ड्रिल, 16 जुलाई से शुरू होगी भव्य रथ यात्रा। पूर्णिया बना देश का नंबर वन जिला, डेल्टा रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान, नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जारी हुआ डेटा।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की राहत वाली बारिश, कई इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। बारिश ने उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को दी बड़ी राहत, ठंडी हवाओं और बरसाती बूंदों से तापमान में गिरावट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी जमकर बरसे बदरा, गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ धीम हुई ट्रैफिक की रफ्तार। गुरुग्राम में भी जोरदार बारिश ने दी दस्तक, बरसात के बाद कई इलाकों में जलजमाव, लगा जाम। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए जारी कर दिया रेड अलर्ट, अगले दो दिनों तक तेज बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। 11 की राजधानी पटना में हुई झमाझम बारिश, लोगों को भीषण गर्मी और उमस भरी गर्मी से मिली राहत। बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, तापमान में दर्ज की गई गिरावट, ठंडी हवाओं ने बदल दिया मौसम का मिजाज। हरिद्वार में भी जमकर बरसे बदरा, भारी बारिश के साथ सड़कों पर जलजमाव, ट्रैफिक और जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के नवसारी में भी बारिश के बाद जगह जगह भर गया पानी, जलजमाव की स्थिति हुई उत्पन्न। सूरत में भारी बारिश के कारण पानी जमा होने से स्कूल में फंसे 7 टीचर और 12 छात्र, फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया। मॉनसून की जबरदस्त बारिश के बाद उफान पर तापी नदी, उकाई बांध में बढ़ा जलस्तर। महाराष्ट्र में हो रही जोरदार बारिश के बीच नासिक में भी जनजीवन अस्त व्यस्त, जबरदस्त जल जमाव से ट्रैफिक की रफ्तार हुई धीमी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में लगातार 4 दिनों से मूसलाधार बारिश, नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा, उल्हास नदी में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। भारी बारिश के दौरान मुंबई पुणे हाईवे पर लोगों को बड़ी राहत, लैंडस्लाइड के कारण करीब 18 घंटे बंद रहने के बाद मिसिंग लिंक की 2 लेन यातायात के लिए खोल दी गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, राहत और बचाव कार्य जारी। सिक्किम में लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 10 बाधित, सिलीगुड़ी को सिक्किम से जोड़ने वाली अहम सड़क हुई बाधित। केरल के वायनाड में मीनाक्षी ब्रिज के पास टनल प्रोजेक्ट साइट पर बारिश के बाद भूस्खलन। पुलिस के साथ फायर एंड रेस्क्यू सर्विस और एनडीआरएफ की टीमों ने युद्ध स्तर पर शुरू किया अभियान। रेस्क्यू मिशन पर केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन लगातार नजर बनाए हुए हैं, बचाव कार्यों में तेजी। विशाखापट्टनम पर तट के पास फंसे एक मछुआरे के लिए भारतीय नौसेना बनी देवदूत, ईस्टर्न नेवल कमांड के ALH-M के हेलीकॉप्टर ने सुरक्षित बाहर निकाला। डल लेक में पर्यटकों की रौनक बढ़ी, श्रीनगर में पर्यटन सीजन ने पकड़ी रफ्तार। शिकारा सैर का लुत्फ उठाते हुए पर्यटकों से झील गुलजार, वहीं पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले। देश विदेश से पहुंचे सैलानी झील की खूबसूरती का ले रहे आनंद, आनंद डल लेक बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। डल लेक में बढ़ती चहल पहल में पर्यटन गतिविधियों को मिला इजाफा। शिकारा और स्थानीय कारोबार से जुड़े लोगों में उत्साह, पर्यटकों की लगातार बढ़ती आमद से होटल व्यापारी खुश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को किया संबोधित, बोले इंडोनेशिया की संसद में आना मेरे लिए सौभाग्य। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के इतिहास के गहरे संबंधों को भी उजागर किया, बोले रामायण और महाभारत की विरासत में हमारे रिश्तों की जड़ें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान मिला, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगी इंडोनेशिया, ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल, भारतीय अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का भी फैसला। इंडोनेशिया को ईवीएम विकसित करने में मदद करेगा भारत, स्वास्थ्य और डिजिटल तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में करीब 20 समझौते हस्ताक्षर। तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा भारत। 11 और 12 जुलाई को नागपुर में होगा आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का किया अनावरण। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और रिज इलाकों को ग्रीन बेल्ट करने की शुरुआत। मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान के तहत राष्ट्रपति अंगरक्षक दल परिसर में वृक्षारोपण। रक्षाबंधन पर दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा। दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना शुरू करने की तैयारी। भारतीय रेलवे ने लखनऊ से मैजेस्टिक का साउदर्न मैसूर टू कोयंबटूर हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में पूर्णिया ने रच दिया इतिहास। पूरे देश में हासिल किया पहला स्थान। देश के सभी 112 जिलों को पछाड़ते हुए पूर्णिया ने हासिल किया पहला पायदान। नीति आयोग की इस डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ने हासिल किया दूसरा स्थान। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल कैंप लगाया। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की सेहत का सीआरपीएफ रख रही है विशेष ख्याल। मोबाइल हेल्थ कैंप से यात्रियों को तुरंत मिल रही है सहूलियत। अमरनाथ यात्रा का आज पांचवां दिन। बाबा बर्फान के दर्शन करने के लिए बालटाल और पहलगाम बेस कैंप में जुटे श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा के लिए देश विदेश से पहुंच रहे लगातार तीर्थयात्री। हर हर महादेव। अमरनाथ यात्रा में पिछले साल के मुकाबले इस साल श्रद्धालुओं की तादाद में इजाफा। 4 दिन में 65,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। तीर्थयात्रियों की बढ़ती तादाद के कारण 9 जुलाई तक सभी रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुक। बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों से अपनी यात्रा कुछ दिन आगे बढ़ाने की अपील। इस साल 57 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। 4 लाख श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए अनोखी यात्रा पर निकला उत्तर प्रदेश का 20 साल का युवक। रोलर स्केट्स पर पूरे भारत का सफर करते हुए दक्षिण कश्मीर के काजीकुंड पहुंचा। पिछले साल अक्टूबर में कन्हैया कुमार ने शुरू की थी यात्रा। 10 महीनों में 14 राज्यों का सफर किया। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की जोरदार तैयारियां। पवित्र यात्रा से पहले पुलिस के जवानों ने मेगा मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल में स्पेशल टैक्टिकल यूनिट, बम डिस्पोजल स्क्वाड, रॉक स्क्वाड, फायर और इमरजेंसी सर्विस जैसी एजेंसियां शामिल हुई। 16 जुलाई से शुरू होगी भव्य रथ यात्रा। देश विदेश से शामिल होंगे लाखों श्रद्धालु। हरिद्वार के कनखल में श्री गुरु गोरखनाथ अलख अखाड़ा परिषद ने 11 संतों का पट्टाभिषेक किया। फूलों की बारिश के बीच हुआ समारोह। मां मंडलेश्वरों को चादर विधि विधान के साथ सम्मानित। नए महामंडलेश्वरों से सनातन धर्म गायों की रक्षा और लोगों की मदद करने के लिए कहा गया। श्री गुरु गोरखनाथ अलख अखाड़ा परिषद ने 51 महामंडलेश्वर बनाने का संकल्प लिया। अब तक 41 बनाए जा चुके हैं महामंडलेश्वर। अखाड़ा परिषद की बाकी 10 महामंडलेश्वर बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। ये काम कुंभ से पहले पूरा करने की योजना। कोलकाता में दुर्गा पूजा की उत्सव की तैयारियां का शुभारंभ हो चुका है। पारंपरिक ढोल की गूंज के साथ हुआ खूंटी पूजा अनुष्ठान। कोलकाता की मशहूर चोर बागन दुर्गा पूजा समिति में भव्य समारोह। दुर्गा पूजा उत्सव का काउंटडाउन शुरू। दुर्गा पूजा उत्सव से जुड़े समारोह में साल की थीम अकाल बोधन। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित विशाल कलाकृति का अनावरण भी किया गया। दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान पंडाल में भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस बार पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव की भव्य तैयारियां। 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक मनाया जाएगा मुख्य उत्सव। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमन प्रो लीग में शानदार प्रदर्शन के बाद अपने परिवार के साथ गोल्डन टेंपल में टेका उन्होंने मत्था। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शुमार। महेंद्र सिंह धोनी मना रहे हैं अपना 45वां बर्थडे। इस खास मौके पर हैप्पी बर्थडे माही के नारों से माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया गया। धोनी के लाखों फैंस ने अपने पसंदीदा क्रिकेटर को शुभकामनाएं दी। आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच नॉटिंघम में खेला जाएगा मैच। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत जीत के साथ खाता खोलने पर रहेगा बेकरार। लौटा है इमरान हाशमी का जादू। फिल्म आवारापन 2 का पहला गाना बेजुनून रिलीज। Oh My God 2 के डायरेक्टर अमित राय की अगली फिल्म Oh My Dog का टीजर हुआ रिलीज। रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण की ट्रेलर रिलीज की तारीख आ गई सामने। 18 जुलाई को ट्रेलर लॉन्च होगा। फिल्म मेकर बोनी कपूर की बड़ी बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने रचाई शादी। मीरा राजपूत कपूर ने शादी के सालगिरह पर पति शाहिद कपूर के लिए लिखी प्यारी विश। चीन के चिड़ियाघर में पांडा मैंग कैनकैन का तीसरा बर्थडे धूमधाम के साथ मनाया गया। 3 साल के पांडा मैंग कैनकैन की बर्थडे पार्टी में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। कैमरे में किया कैद। चीन में पांडा के जन्मदिन पर अनोखा फल सब्जी वाला केक तैयार किया गया। केक पर कद्दू की गाड़ी और खरबूजे से फूलों की टोकरी सजाई गई। गर्मी से बचाने के लिए पांडा की पार्टी में बर्फ का भी इंतजाम किए गए। चिड़ियाघर में खास सजावट ने बर्थडे को बनाया स्पेशल। पांडा बैंक का कैन बना आकर्षण का केंद्र। कीपरों ने उसके जन्मदिन पर प्यारा और शुभकामनाओं का जश्न मनाया। एजीबॉट के रोबोट का दमदार डेमो फैक्ट्री से लेकर शॉपिंग और लॉजिस्टिक तक के कर सकता है काम। एजीबॉट का ग्लोबल मिशन। कंपनी का लक्ष्य इस साल कुल कमाई में 30-40% हिस्सा विदेशी बाजारों से। दुनिया में बढ़ा है एजीबॉट का नेटवर्क। यूरोप अमेरिका एशिया पैसिफिक मिडल ईस्ट जापान और दक्षिण कोरिया तक एजीबॉट ने अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। लेबर की कमी का समाधान बने हैं ये रोबोट। विदेशी ग्राहक खरीद रहे हैं रोबोट। एजीबॉट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक रोबोट को सीधे खरीद रहे हैं। चिली की एरियल ओसिस ने बचपन के स्केटर एल्बम के सपने को अपनी कार पर पूरा किया। तैतीस वर्षीय एरियल ओसिस ने सिर्फ 2 हफ्तों में अपनी कार पर 373 स्केटर्स लगवाए। एरियल ने इंस्टाग्राम के जरिए लोगों को भी इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए कहा। कमेंट करने वालों को उन्होंने स्टिकर्स उपहार में दिए। एरियल के इस अनोखी पहल को दुनिया भर से मिल रहा है सपोर्ट। कई देशों के लोगों ने भेज रहे हैं स्टिकर्स। स्टिकर बनाने वाली कंपनी ने भी एरियल ओसिस के इस खास अभियान का समर्थन किया। पैम्पलोना में सैन फॉर्मिन फेस्टिवल हो गई शुरुआत। इसकी 10,000 से ज्यादा लोगों ने लाल रुमाल लहराकर जश्न मनाया। पटाखों की आवाज के साथ स्पेन के मशहूर फेस्टिवल की हो गई शुरुआत। सफेद कपड़ों और लाल स्कार्फ में नजर आए लोग। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के उपन्यास से मशहूर हुआ यह फेस्टिवल दुनिया भर में बन रहा है चर्चा का विषय। आने वाले दिनों में हजारों लोग बैलों के साथ दौड़ते हुए नजर आएंगे। परंपरा रोमांच का एक अद्भुत संग। सैन फॉर्मिन के उद्घाटन में लोगों ने जमकर उत्साह मनाया। पानी की बौछारों के बीच जश्न। क्यूबा के नेशनल जू में खुशखबरी। ईंधन संकट के बीच चार बंगाल टाइगर शावकों का हुआ जन्म। सफेद बाघ का बच्चा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। डीजल की कमी से जानवरों की देखभाल मुश्किल हो रही है। कर्मचारी घोड़ा गाड़ी से चला रहे हैं काम। हजारों जानवरों को बचाने के लिए जू स्टाफ रूस कर रहा है जी तोड़ मेहनत। निजी कंपनियां भी कर रही हैं सपोर्ट। चवालीस साल के केयरटेकर की उम्मीद। मुश्किल दौर में टाइगर शावक का जन्म बड़ी राहत। बिजली कटौती और ईंधन की कमी के बावजूद जू में जानवरों की संख्या स्थिर रखने की कोशिश। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खास शख्स 140 मीटर ऊंचे पुल टावर पर चढ़ गया। उसने वहां कार्टून पक्षी की बड़ी पेंटिंग बना दी। पुल पर चढ़े शख्स ने नीचे आने से पहले की अनोखी डिमांड। ड्रोन से पीनट बटर सैंडविच पहुंचाने की मांग। इस घटना के कारण मेलबर्न के बोल्टे ब्रिज की एक लेन बंद करनी पड़ी। पुल पर शख्स ने बनाया पैम द बर्ड जैसा चित्र। पुल पर बने बड़े कार्टून पक्षी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। शहर में इस अनोखी घटना की चर्चा तेजी से फैल गई।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
3: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
4: After multiple assassination attempts, they can't even get...
5: They're reliable.
6: Always when I need them.
3: To live sports action.
7: One hand jam by LeBron on the break.
8: That's another three, Steph Curry.
3: And your favorite music.
9: Well, the dawn begins to crack.
3: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है।
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: जम्मू कश्मीर में धूमधाम से पवित्र अमरनाथ यात्रा जारी है, हर कोई बाबा बर्फानी के दर्शन की आस लिए घाटी पहुंच रहा है। इस सब के बीच एक खास श्रद्धालु भी अपने अनोखे अंदाज में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचा। तस्वीरें देखिए, उत्तर प्रदेश के 20 साल के कन्हैया कुमार रोलर स्केटस से इस पवित्र यात्रा करने के लिए पहुंचे हैं। कहते हैं कि अगर मन में अटूट श्रद्धा और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। कन्हैया पिछले साल 29 अक्टूबर को घर से निकले थे। पिछले 10 महीनों में कन्हैया ने एक या दो नहीं बल्कि पूरे 14 राज्यों का सफर अपने रोलर स्केट्स पर तय किया है। 10 महीने के इस सफर के बाद कन्हैया अब अपनी मंजिल यानी दक्षिण कश्मीर के काजीकुंड पहुंच चुके हैं और उनकी अमरनाथ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है। कन्हैया का कहना यह है कि उनकी ये अनोखी यात्रा भगवान शिव को समर्पित है। कन्हैया की इस अनोखी भक्ति को देखकर रास्ते में आने वाले आम श्रद्धालु और स्थानीय लोग भी हैरान हैं, उनके इस जज्बे को सलाम भी कर रहे हैं। कश्मीर के लोगों को भी मेहमान नवाजी करने का एक मौका मिला है। बस कुछ ही दिनों बाद कन्हैया पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। अब आपको चीन के चोंगकिंग जू में सबसे खास मेहमान से मिलवाते हैं। दरअसल यहां पर जायंट पांडा मांग कान के तीसरे जन्मदिन का जश्न जबरदस्त तरीके से मनाया गया। पांडा के लिए किसी शाही दावत से कम नहीं इंतजाम हुए और देखभाल करने वालों ने फलों और सब्जियों से खूबसूरत केक तैयार किया, जिसमें देखिए कद्दू और खरबूजे से बनी फूलों की टोकरी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हुई नजर आई। आलम यह था कि जैसे ही बर्थडे ट्रीट सामने आई, मांग कान भी पूरे मजे से अपने पसंदीदा फल और सब्जियों का आनंद लेने के लिए पहुंचा। वहीं पर देखिए इसके साथ ही गर्मी से राहत देने के लिए बर्फ और मिस्ट स्प्रे का इंतजाम भी किया गया, ताकि बर्थडे बॉय पूरे आराम से अपना दिन एंजॉय कर सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ के ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर या फिर कुछ और पर्यटन स्थलों को देखने के लिए सैलानी पहुंचे, तो आप अपने आसपास उन खूबसूरत जगहों की तस्वीरें गुड न्यूज टुडे को भेजिए, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को दिखा पाएं। हमारे दर्शक भी बड़े ही उत्साह के साथ अपनी जगहों की खूबसूरत वीडियोस भेज रहे हैं। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के एक अनछुए पर्यटन स्थल चूड़धार पीक पर, जहां पर आध्यात्म का एहसास है तो ट्रैकिंग का एडवेंचर भी है। यहाँ की खूबसूरती को हमें हमारे एक दर्शक ने कुछ तस्वीरें के जरिए भेजा है, देखिए।

आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे ट्रैक पर जो एक आध्यात्मिक ट्रैक है। इसका नाम है चूरधार पीक और इस शिखर तक पहुंचने के लिए आपको मेरी तरह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर आना होगा, जहां नोहराधार से होते हुए घने जंगलों, पहाड़ी रास्तों और खूबसूरत घाटियों को पार करते हुए हम इस चूरधार शिखर तक पहुंचते हैं। कहते हैं कि चूरधार सिरमौर में शिवालिक माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और ये पीक हिमाचल उत्तराखंड के लोगों के आराध्य देव शिरगुल महाराज की तपोभूमि भी है। इसलिए यहाँ बने भोलेनाथ के मंदिर का भी आस्थावानों के बीच काफी महत्व रहा है। जब आप तकरीबन 8 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई कर यहाँ पहुँचते हैं तो नेचर अपने कई रंगों के साथ आपका स्वागत करेगी। कहीं बुरान से लदे पौधे तो कहीं सर्दियों में बर्फ का दीदार भी होगा। नेचुरल ब्यूटी से भरे चूरधारा पीक का नजारा न केवल अध्यात्म का एहसास देता आया है बल्कि तन मन को भी सुकून देता है। तो अगर आप देश के अनछुए पर्यटक स्थलों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरी नजर में चूरधार पीक द बेस्ट प्लेस है।

0: देखिए, G&T लगातार आपसे अपील कर रहा है कि विदेश दौरों की जगह अगर अपने ही देश की जगहों को प्रमोट करेंगे तो हमारे देश का टूरिज्म और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। बस आपको इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है, कैमरा उठाइए, व्लॉग बनाइए, हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: मंगल जीवन में किस तरह से समस्याएं पैदा कर सकता है, क्या है मंगल की समस्याओं का समाधान और मंगल की समस्याओं को दूर करने के लिए करें कौन सा दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया में प्रेम और अपनापन मिला। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाभियान का शुभारंभ, नानकपुरा रिज में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण, गृहमंत्री अमित शाह ने की शुरुआत। दिल्ली NCR में हुई झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की जोरदार तैयारी, पुलिस के जवानों ने की मेगा मॉक ड्रिल, 16 जुलाई से शुरू होगी भव्य रथ यात्रा। पूर्णिया बना देश का नंबर वन जिला, डेल्टा रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान, नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जारी डेटा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार।
5: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, बाबा बर्फानी की पावन यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है आस्था की राह में नो पॉल्यूशन। जी हाँ, आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा में इस बार सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यात्रा मार्ग से लेकर बेस कैंपों तक व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है ताकि हिमालय की वादियां सुरक्षित रहे और श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण मिल सके।

0: बाबा बर्फानी के दर्शन की आस लिए हजारों श्रद्धालु रोजाना कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर रहे हैं। कोई बालटाल मार्ग से आगे बढ़ रहा है तो कोई पहलगाम के रास्ते से। इस बार यात्रा सिर्फ आस्था के साथ ही नहीं हो रही बल्कि जिम्मेदारी के साथ पूरी की जा रही है। यात्रा को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए ग्रामीण स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बड़े स्तर पर सफाई अभियान शुरू किया है।
1: इस साल की अमरनाथ यात्रा को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ में आने वाले यात्रियों को न सिर्फ बधाई दी बल्कि साथ ही साथ उन्हें 5 बातों को लेकर सहयोग करने का मशवरा दिया। उनमें से सबसे बड़ा सहयोग जो यात्रियों से प्रधानमंत्री ने मांगा था कि वो यही मांगा था कि अमरनाथ यात्रा स्वच्छ यात्रा बने, उसमें हर एक अपना जो योगदान है वो दे। और उस योगदान में रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस यात्रा को भी पोल्यूशन फ्री और प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए पिछले कई सालों से प्रयास चल रहे हैं।
0: यात्रा मार्ग और बेस कैंपों पर 300 से ज्यादा सफाई कर्मी दिन रात तैनात हैं। ये कर्मचारी यात्रा के दौरान निकलने वाले हर तरह के कचरे को इकट्ठा कर निर्धारित कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं ताकि पूरे मार्ग पर साफ सफाई बनी रहे।
1: सैकड़ों की तादाद में सफाई कर्मचारी अमरनाथ गुफा के हर हिस्से और हर पड़ाव और हर रास्ते से कचरा एकजुट करके यहाँ जमा करते हैं। उसके बाद उसकी सेग्रीगेशन होती है और साथ ही साथ उसकी फिर पैकिंग होती है और रिसाइकलिंग के लिए इस पूरे कचरे को अलग अलग फैक्ट्रीज में भेजा जाता है और जो लिक्विड वेस्ट है उसको यहीं पर खाद में तब्दील भी किया जाता है।
0: ग्रामीण स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत की जा रही ये कोशिश पवित्र अमरनाथ यात्रा को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
2: जैसे क्या आप मैं बोल दूं, जो हमारा पूरा ट्रैक है जो वाई जंक्शन से लेकर अपर केव तक, होली केव तक स्टार्ट होता है, तो इसमें हमें 318 बंदे रखे है जो कि पूरा कचरा जमा करके पहाड़ों से जमा करके पूरा हम इसको प्रोसेस कर लेते हैं, नीचे लाते हैं, यहाँ पर उनके बेलस बनाते हैं। हमारा यही मकसद है कि जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है वो कचरा फ्री यात्रा हो जाए।
0: बेस कैंप में डस्टबिन लगाए गए हैं, कचरे को अलग अलग श्रेणियों में इकट्ठा किया जा रहा है और प्लास्टिक के इस्तेमाल को न्यूनतम रखने पर विशेष जोर है। मकसद साफ है, श्रद्धालुओं की सुविधा भी बनी रहे और हिमालय का प्राकृतिक संतुलन भी सुरक्षित रहे। वैसे ये पहल केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी हर स्तर पर खास ख्याल रखा जा रहा है। यात्रा मार्ग से लेकर कई बेस कैंप्स तक कई स्थानों पर मेडिकल टीम्स 24 घंटे तैनात हैं।
3: हमारा चिकित्सा विभाग 84 बटालियन CRPF का इधर चंद्रकोट लंगर पॉइंट पे 2 तारीख से तैनात है। हम यात्री का कोई भी दिक्कत, परेशानी हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, उसका पूरा मेडिसिंस और ये पूरा हम इधर दे रहा है। पूरा बेसिक मेडिसिंस, इमरजेंसी मेडिसिंस, ऑक्सीजन सपोर्ट सब के साथ हमारा मेडिकल और पैरामेडिकल टीम 84 का इस चंद्रकोट पॉइंट पे 2 तारीख से तैनात है।
0: डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने पर उसे तुरंत उपचार मिल पाए।
4: जब भी आता हूँ बहुत अच्छी सुविधा आर्मी द्वारा, BSF, CRPF द्वारा बहुत अच्छी सुविधा हर बार मिलती है और भंडारों में भी बहुत अच्छी सुविधा हर बार मिलती है। चंद्रकोट में बहुत अच्छी सुविधा है और कोई भी सोशल मीडिया के बहकावे में ना आए, और यहाँ पर हमारे ये CRPF के जवान और मिलिट्री की बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा जा रहा है, पीछे मेडिकल वैन है हमारे यहाँ।
0: जाहिर है, जहाँ एक ओर जवान श्रद्धालुओं की सुरक्षा में दिन रात तैनात है, वहीं दूसरी तरफ उनका ये मोबाइल हेल्थ कैंप हर संकट की घड़ी में जीवन रक्षक बन रहा है। बर्फीले रास्तों पर चल रहे इस सेवा अभियान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वर्दी सिर्फ सुरक्षा की नहीं बल्कि सेवा और समर्पण की भी प्रतीक है। बालटाल से अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: इस साल जुलाई महीने के 30 तारीख से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो रही है। इस मौके पर कांवड़ मेले की सफलता को लेकर आज श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने मालवीय घाट पर मां गंगा के तट पर मां गंगा की पूजा की। इस मौके पर श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने एक 16 नियमों वाला पोस्टर भी जारी किया, जिसमें कांवड़ियों को कांवड़ उठाने के नियम बताए गए हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली

0: अखाड़े ने सभी भक्तों से अनुरोध किया है कि वो बड़े बड़े डीजे लेकर ना आए, क्योंकि वो एक दिखावा है और साधना और भक्ति दिखावे की नहीं होती। भोजन और भजन हमेशा पर्दे में किया जाता है। जो भोजन और भजन पर्दे में करता है उसका फल ज्यादा मिलता है, और जो दिखावा करता है उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता।
1: ये भूमि पवित्र भूमि है और माँ गंगा जी का प्रांगण मोक्षदायी श्री गंगा जी है। शिव भक्तों का आगमन होने वाला हरिद्वार में, जो हर वर्ष हम पूजा करते हैं, माँ गंगा जी से प्रार्थना करते हैं, शिव भक्तों पर अपना आशीष बना के रखें। और जो हमारा मेला है, सावन का मेला है, प्रशासन सभी द्वारा मेला सफल हो, कुशल से हमारा मेला संबंध हो, ये हमने माँ गंगा जी से प्रार्थना की है। क्योंकि शिव भक्त दूर दूर से आते हैं। ये 16 नेम का हमने एक पोस्टर बनाया है, हर बार हम लॉन्च करते हैं कि नेम के अनुसार कामल उठानी चाहिए।
2: हमारी किसी आस्था से, किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं है, ना हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। हम सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं, जो बड़े डीजे हैं वो नहीं आने चाहिए, वो एक दिखावा है, और साधना और भक्ति दिखावे की नहीं होती। भोजन और भजन हमेशा पर्दे में किया जाता है। जो भोजन और भजन पर्दे में करता है उसका फल ज्यादा मिलता है, और जो दिखावा करता है उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। ये जो डीजे का जो पैसा वो व्यर्थ खराब करते हैं, किसी गरीब की कन्या की शादी में या किसी गरीब को भोजन कराते हैं, उसका ज्यादा फल मिलेगा।
0: उत्तराखंड में मॉनसून अब धीरे धीरे सक्रिय होता जा रहा है। बद्रीनाथ धाम सहित आसपास के इलाकों में लगातार रात के समय बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बनी हुई है। यात्रा में पहले की तुलना में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन मॉनसून सीजन में भी हर दिन 9 से 10 हजार श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है बद्रीनाथ में बादलों की बाधाओं से परे आस्था। जी हाँ, बद्रीनाथ धाम आस्था और विश्वास से गुलजार है। बारिश हो या धूप, भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस समय में बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को बिना ज्यादा प्रतीक्षा के सहज और सुगम दर्शन हो रहे हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ स्थानों पर भूस्खलन और मलबा आने से आवागमन प्रभावित हो रहा है, लेकिन प्रशासन और बीआरओ की टीमें तत्काल मार्ग खोलकर यात्रा को सुचारू बनाए रखने में जुटी हुई हैं। वहीं मॉनसून की बारिश के चलते बद्रीनाथ धाम से होकर बहने वाली अलकनंदा नदी भी पूरे वेग और उफान के साथ बह रही है। नदी विकराल रूप में दिखाई दे रही है। वहीं धाम में सुबह से शाम तक ठंडी हवाओं, बादलों और रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच मनमोहक वातावरण श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति करा रहा है। दरअसल मॉनसून शुरू होने के साथ ही हिमालयी क्षेत्रों में घने बादलों का डेरा बना रहता है, लेकिन इसके बावजूद बद्रीनाथ यात्रा निरंतर जारी है। अब तक 14,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं।
3: इस बार बद्रीनाथ धाम में अब तक रिकॉर्ड श्रद्धालु 14,50,000 से अधिक, 14.5 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। वहीं मौसम की बात करें तो रोजाना रात्रि में पहाड़ों में जमकर बारिश हो रही है, हर तरफ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी कुछ जगहों पर बाधित हो रहा है, हालांकि इसे समय पर खोल भी दिया जा रहा है। वहीं सड़कों पर आप थोड़ी सी वीरानी जरूर देखने को मिल रही है, मानसून शुरू होने के साथ ही यात्रा पर इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो इस बार की यात्रा रही है वो रिकॉर्ड श्रद्धालु अभी भी, क्योंकि अभी भी रोजाना 9 से 10 हजार श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे हैं, भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। इस बार इस समय सबसे अच्छे दर्शन श्रद्धालुओं को हो रहे हैं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में भी बारिश का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है, जहाँ यहाँ बहने वाली जो अलकनंदा है अपने पूरे उफान और वेग के साथ अब दिखाई देने लगी है। क्योंकि ऊपरी इलाकों सहित पूरे बद्रीनाथ में जो बारिश हो रही है उसके साथ ही अलकनंदा नदी लगातार उफान पर बनी हुई है। इस कारण अब कहीं ना कहीं जो मानसून है पहाड़ों में वो कहीं ना कहीं यात्रा में थोड़ी सी कमी जरूर लाता है, लेकिन जो श्रद्धालु इस समय बद्रीनाथ पहुँच रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा समय ये देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्ग बंद हो रहे हैं, जिला प्रशासन की जो टीमें हैं, आपदा प्रबंधन है, वो लगातार लगा हुआ है और मार्ग को 2 से 3 घंटों के अंदर खोल दिया जा रहा है।
0: इंदौर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है, लेकिन जहां उत्साह भरपूर हो वहां किसी काम में कोई देरी नहीं है। इंदौर में एक शादी ऐसी भी रही जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कैंट रोड स्थित एक गार्डन में जलभराव के बीच हुई शादी में मंडप के चारों ओर पानी ही पानी था, लेकिन ना दूल्हा दुल्हन का उत्साह कम हुआ और ना ही शादी की रस्में रुकी। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है बारिश में जलमग्न मंडप में 7 फेरे। जी हाँ, इंदौर में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जुलाई के पहले सप्ताह

में ही महीने की आधी से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। वहीं इंदौर में इस बार अधिक मास के कारण जुलाई तक विवाह मुहूर्त निकले। इसी बीच कैंट रोड के एक गार्डन में दुल्हन पूर्वा और दिल्ली के वैभव की शादी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं दिखी। तेज बारिश के कारण गार्डन में करीब 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया। मेहमान पानी से बचते हुए किसी तरह भोजन स्थल तक पहुंचे, जबकि कई जगह जूते चप्पल पानी में तैरते नजर आए। सबसे खास पल वो रहा जब दूल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाकर जलमग्न मंडप तक पहुंचाया और दोनों ने बरसते पानी के लिए साथ फेरे लिए। रस्में पूरी होने के बाद भी दूल्हे ने दुल्हन को फिर गोद में उठाया और भोजन स्थल तक पहुंचा। मुश्किल हालात के बावजूद दोनों के चेहरे की मुस्कान ने शादी को यादगार बना दिया और अब ये अनोखी वेडिंग सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के एक छात्र ने एक अनोखा पॉट तैयार किया है जिसमें रखे पौधों की भावनाएं नजर आएंगी। इस पॉट में रखे पौधे अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकेंगे और वो बता सकेंगे कि कब उन्हें भूख लगी है और कब उन्हें प्यास लगी है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है स्मार्ट पॉट से पौधे बताएंगे अपनी भावनाएं। दरअसल स्मार्ट पॉट में कई तरह के इमोजी और एनिमेटेड एक्सप्रेशंस लगे हुए हैं जो बिना किसी तकनीकी जानकारी के भी किसी भी व्यक्ति को आसानी से समझ में आ सके कि पौधे को इस समय किस तरह की देखभाल की आवश्यकता है।

0: पौधे बोल नहीं सकते, लेकिन अगर वो इंसानों की तरह बोलते तो बता सकते थे कि कब उन्हें पानी चाहिए या कब उन्हें धूप की जरूरत है। पौधों में भावनाओं की इस कमी को पूरा किया है कोटा के एसआर पब्लिक स्कूल के छात्र आर्यन सिंह ने। आर्यन सिंह और उनकी टीम ने एक अनोखा स्मार्ट इमोशन पॉट तैयार किया है। इस स्मार्ट पॉट से पौधे अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, जैसे उन्हें कब पानी की जरूरत है या फिर कब उन्हें धूप चाहिए। दरअसल अधिकांश लोग बड़े उत्साह के साथ पौधे तो लगा देते हैं, लेकिन व्यस्त जीवन शैली के कारण समय के साथ उनकी नियमित देखभाल नहीं कर पाते। कई बार उन्हें समय पर पानी नहीं मिल पाता, कभी पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती। इससे कई बार पौधे की वास्तविक स्थिति का पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए स्मार्ट इमोशन पॉट का विकास किया गया है।
1: इसको बनाने का रीजन यही था कि प्लांट को एक ऐसी आवाज देना और उसको एक ऐसा फील करवाना कि लोग देख सकें कि वो सच में एक ह्यूमन बींग है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जान आ गई है, जहाँ पे प्लांट जो है अपने इमोशन शो कर सकता है कि हाँ उसको प्यास लगने में वो रो रहा है, अंदर रहने पे अगर अकेला है तो उसको डर लग रहा है, या मोशन सेंस कर रहा है तो डर लग रहा है, नाइट में वो सो रहा है, तो जहाँ पे हम उसको देख सकें कि वो एक हमारा फ्रेंड है, हम एज अ फ्रेंड ट्रीट कर सकें उसको।
0: ये केवल एक स्मार्ट गमला नहीं बल्कि एक डिजिटल प्लांट कंपेनियन है, जिसका उद्देश्य पौधों और इंसानों के बीच भावनात्मक रिश्ता मजबूत करना है। ये गमला पौधे की स्थिति को इमोजी और एनिमेटेड एक्सप्रेशन के माध्यम से प्रदर्शित करता है, ताकि बिना किसी तकनीकी जानकारी के भी कोई व्यक्ति आसानी से समझ सके कि पौधे को इस समय किस तरह की देखभाल की आवश्यकता है।
1: के अंदर अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं जो कि अलग अलग चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर मॉइस्चर लेवल या मॉइस्चर या वाटर लेवल है तो उसको वो सेंसर देख रहा है, मोशन को मोशन सेंसर डिटेक्ट करने के लिए कर रहा है कि उसके साथ अगर कोई है तो उसको। पूरा बच्चों से फ्रेंडली बनाया है कि अगर वो इतना अभी से ही उतना केयरिंग बन जाते हैं तो आने वाले टाइम पे कुछ वो बेटर आउटपुट दे सकते हैं इस एनवायरमेंट को।
0: इस अत्याधुनिक स्मार्ट पॉट में मिट्टी की नमी, तापमान, आर्द्रता, रोशनी और पानी का स्तर बताने वाले आधुनिक सेंसर लगाए गए हैं। ये सेंसर लगातार पौधे की स्थिति का विश्लेषण करते रहते हैं। जैसे ही किसी भी पैरामीटर में बदलाव आता है, गमले की डिजिटल स्क्रीन पर पौधे के चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं। यदि पौधे को पानी की जरूरत होती है तो स्क्रीन पर वो उदास दिखाई देगा। यदि उसे पर्याप्त धूप नहीं मिल रही होगी तो उसका एक्सप्रेशन बदल जाएगा। वहीं जब पौधा पूरी तरह स्वस्थ होगा और सभी आवश्यक परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तब वो मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा।
1: जैसे कि हमें पता है आज इंसान आपस में बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो जाता है, लोग एक दूसरे से काफी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो ये हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा प्लांट के साथ किया जाए, ताकि उसको एज अपना फ्रेंड ही उसको ट्रीट करें और अपनी सारी बातें उसको शेयर कर सकें, उसके इमोशन देख सकें कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है।
0: इस पॉट में परिस्थितियों के मुताबिक 70 से अधिक एनिमेटेड इमोशन प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्मार्ट पॉट को तैयार करने वाले आर्यन सिंह के मुताबिक इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है, जिससे आने वाले समय में पौधे संवाद करने, अपनी स्थिति को आवाज में समझाने और देखभाल से जुड़े सुझाव देने में एक वर्चुअल प्लांट असिस्टेंट के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे। चेतन गुर्जर, कोटा, गुड न्यूज टुडे।
2: पंजाब के फरीदकोट में दस्तार यानी कि पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता धूमधाम के साथ संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में 60 बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी संस्कृति, विरासत, अनुशासन और मानव सेवा का संदेश दिया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता। फरीदकोट में सोमवार को उत्सवी माहौल में पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 6 से 15 साल के 60 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने खुद से अपने सर पर पगड़ियां सजाई और रंग बिरंगी पगड़ियों में वो बेहद खूबसूरत नजर आए। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने पगड़ी बांधने की कला, आत्मविश्वास, अनुशासन तथा अपनी समृद्ध सिख विरासत के प्रति समर्पण का शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में पहला स्थान संगरूर के प्रांशु वर्मा ने हासिल किया, जबकि दूसरे स्थान पर फरीदकोट के गुरनिवास सिंह रहे। विजेताओं को नगद और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विजेताओं का चयन पगड़ी बांधने की कला, प्रस्तुति, संतुलन, आत्मविश्वास, पारंपरिक शैली, फिनिशिंग तथा प्रभावशाली प्रदर्शन सहित कई महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर किया गया। इस प्रतियोगिता में युवाओं ने अपनी विरासत, अपने संस्कार और अपनी पहचान को गर्व के साथ अपनाया तथा मंच पर पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। यमुना, जिसकी सफाई को लेकर सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, अभियान चला रही है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब एक आम नागरिक जिम्मेदारी उठाता है। दिल्ली में एक ऐसा ही नाम है, चिन्मय, यानी कि चीनू क्वात्रा का, जिन्होंने यमुना घाटों और उसके आसपास पड़े प्लास्टिक कचरे को सिर्फ उठाया ही नहीं बल्कि उसे एक नई जिंदगी भी दी। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है यमुना की सफाई के साथ कचरे की रिसाइकिलिंग। यमुना की सफाई के बाद इकट्ठा किया गया कचरा और बेकार प्लास्टिक अब स्कूलों की बेंच, प्लांटर्स और कई उपयोगी सामान में बदल रहा है।
3: यमुना के घाट जहां कभी आस्था का सैलाब उमड़ता है तो कभी वहां पूजा सामग्री के साथ प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथिन और दूसरे कचरे का अंबार भी दिखाई देता है। लेकिन इन दिनों इन्हीं घाटों पर हर हफ्ते एक शख्स अपने साथियों के साथ सफाई में जुट जाता है जिसका नाम है चीनू क्वात्रा। चीनू और उनकी टीम यमुना घाटों और आसपास के इलाकों से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करती है ताकि ये कचरा दोबारा नदी में ना जाए और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए।
4: यमुना जो कभी दिल्ली की जीवन रेखा थी, आज वो प्लास्टिक और कचरे के बोझ से जूझ रही है। हालांकि दिल्ली सरकार जो है वो यमुना पर सफाई अभियान लगातार चला रही है बड़े स्तर पर ताकि यमुना को जो है साफ किया जा सके, लेकिन दिल्ली में एक ऐसे शख्स भी है जो सिर्फ यमुना की सफाई तक सीमित नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, आपको मैं यमुना नदी की पहले तस्वीरें दिखा रही हूँ, ITO घाट पर इस वक्त हम मौजूद है और आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना आपको नजर आने वाली है। हालांकि पहले से ये बेहतर है बिकॉज सरकार जो है लगातार अभियान चला रही है तो प्लास्टिक उस तरीके से आपको बड़े स्तर पर नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी अगर हम सफाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार सफाई के बाद भी आपको यहां पर बहुत सारा कचरा नजर आएगा और वो भी लोगों की वजह से, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो पूजा पाठ के लिए यहां पर आते हैं और पूजा की जितनी भी सामग्री होती है वो यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे उसकी जो संख्या है कचरे की वो बढ़ती जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सफाई अभियान जो है सरकार लगातार चला रही है।
3: इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत केवल सफाई नहीं बल्कि सफाई के बाद शुरू होने वाला सफर है। इकट्ठा किए गए प्लास्टिक को अलग अलग श्रेणियों में छांटा जाता है, फिर उसे रिसाइकलिंग की प्रक्रिया से गुजारा जाता है।
5: मुंबई, दिल्ली या कोई और शहर, ये प्लास्टिक हमारे रिवर्स को, हमारे ओशंस को, हमारे माउंटेन्स को बर्बाद कर रहा है। सो इसको हम सिर्फ डेस्टिनेशन चेंज नहीं करना है, यहाँ से प्लास्टिक उठा लिया, आज क्लीन अप हो गया, इसको उठा के वहाँ रख दिया, हमें इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि ये शीट है, ये शीट 4x4 की शीट बनती है, इससे स्कूल बेंच बनते हैं, इससे दरवाजे बनते हैं, इससे टेबल बनता है, इससे जो फर्नीचर, इन शॉर्ट ये प्लाईवुड को रिप्लेस कर रहा है। प्लाईवुड को रिप्लेस करना मतलब पेड़ों को बचाना।
4: लेकिन ये सबसे पहले कचरा दिखाते हैं, आप ये देखिए, ये प्लास्टिक का कचरा है,
5: यहीं से उठाया हुआ कचरा है एंड यहाँ पे बहुत ऐसे कचरे दिखे हैं मुझे जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसी कचरे को साफ सुथरा बना के इसको हम रिसाइकल करके स्कूल बेंचेस बना सकते हैं।
3: जो प्लास्टिक कभी कूड़े का ढेर बनकर यमुना को प्रदूषित कर रहा था, आज वही नई पहचान के साथ काम में आ रहा है। अत्याधुनिक तकनीक से बेकार प्लास्टिक को मजबूत और टिकाऊ स्कूल बेंच, प्लांटर्स, गार्डन फर्नीचर, डस्टबिन और कई अन्य उपयोगी उत्पादों में बदला जा रहा है। यानी जो प्लास्टिक कभी पर्यावरण के लिए खतरा था, वही अब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मॉडल बनकर लोगों की जिंदगी को आसान बना रहा है।
5: ये जो गमले देख रहे हैं ना, ये यमुना रिवर के प्लास्टिक से बना है। 24 अप्रैल को हमने क्लीनअप किया था, जहाँ से वो क्लीनअप करने के बाद कुछ 4-5 kg प्लास्टिक में होटल लेके आया, उसको साफ किया एंड साफ करने के बाद उसको बैग में पैक करके मैं बॉम्बे लेके गया। जब मैं मुंबई पहुंचा और मैंने उसको अपनी फैक्ट्री और यूनिट में प्रोसेस किया एंड ये गमले बनाए।
3: यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार भी लगातार अभियान चला रही है। बड़े स्तर पर सफाई अभियान, जन भागीदारी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनके काम की सराहना करते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण और सर्कुलर इकोनॉमी का बेहतरीन उदाहरण बताया, क्योंकि ये पहल सिर्फ कचरा हटाने तक सीमित नहीं है बल्कि लोगों को ये संदेश भी देती है कि अगर प्लास्टिक का सही प्रबंधन हो तो वही कचरा समाज के लिए एक उपयोगी संसाधन बन सकता है।
5: ऐसी चीज है ना जिसको ऑलमोस्ट हमें इग्नोरेंट बोल के जला दिया जाता है, तो वो जब जलाते हैं तो ऑब्वियसली सिटी को भी इफेक्ट होता है और साथ साथ में हमें खुद को इफेक्ट हो रहा है। इट इज नॉट हम वही प्लास्टिक ब्रीथ करेंगे जब प्लास्टिक जलाया जाएगा, तो हेंस ऐसी सब चीजें बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको लग्जरी मार्केट में ना लेके जाए, इसको घर घर तक पहुंचाएं, वो ज्यादा जरूरी है।
4: तो अब जितने भी आप स्कूल बेंचेस वगैरह बनाते हो तो अभी स्कूलों में दिखती है या नहीं, मतलब अभी शुरुआत है इस चीज़?
5: स्कूल में दिखते हैं, लास्ट ईयर स्केचर्स ने हमें सपोर्ट किया था 300 बेंचेस के साथ, और भी दो तीन कॉर्पोरेट्स थी जो आया था जिन्होंने सपोर्ट किया था। दी प्लस पॉइंट इज जो हम स्कूल बेंचेस बना रहे हैं वो पहला फोकस रहता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को मिले।
3: यमुना से निकला यही प्लास्टिक कभी प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह था, लेकिन आज यही प्लास्टिक बच्चों के स्कूल की बेंच बनकर उनके भविष्य को सवार रहा है। चीनू क्वात्रा की ये पहल बताती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कचरा भी संसाधन बन सकता है और सफाई सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन सकती है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
7: आक्रोशित भीड़ के निशाने पर खाकी क्यों? भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद पुलिसकर्मी पिटे। तेहरान में IRGC मुख्यालय पर हमले का सच क्या? देखिए एस्केलेटर पर भरतनाट्यम। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
8: College shouldn't waste your time or your money. That's why WGU's programs are built with input from industry experts and updated regularly. So what you learn is what employers need right now. Practical skills, recognized certifications, real-world relevance that opens doors. Get an education that actually delivers. It's one that prepares you for the career you're chasing today and the opportunities that will shape your tomorrow. Learn more at wgu.edu.
9: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
10: Swing and a foul out of play off to the left.
9: Big 12 Radio.
11: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
9: Talk Sport.
12: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
9: And more. Search sports to find the stations covering your team.
6: को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की 9:00
6: गुड न्यूज। चुनी चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
2: Jack, you're killing me.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया में प्रेम और अपनापन मिला। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ, नानकपुरा रिज में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण, गृहमंत्री अमित शाह ने शुरुआत की। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर कुछ ही सेकेंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है और कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, लेकिन हम आपके सामने लाते हैं ऐसी खबरों की सच्चाई फैक्ट चेक के जरिए। तो आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले पड़ताल होगी वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद का है और पुलिस और लोगों के बीच में टकराव हुआ। सच्चाई क्या आगे आपको बताएंगे, साथ ही साथ अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसके जरिए कहा जा रहा है कि इसराइल ने ईरान के तेहरान में फिर से हमला किया है, इसकी सच्चाई आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लोगों को पुलिस कर्मियों को दौड़ाकर पीटते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि यह भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद का वीडियो है, पुलिस और लोगों के बीच में टकराव बढ़ गया है, वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
5: बिहार के भोजपुर जिले के भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर का मामला लगातार सुर्खियों में है। भरत तिवारी के फेसबुक लाइव, सरेंडर के दावे और न्यायिक जांच के आदेश ने इस घटना को फर्जी एनकाउंटर से एनकाउंटर राज की बहस तक पहुंचा दिया है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोगों को पुलिस कर्मी को दौड़ाकर पीटते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि ये भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद का है और पुलिस और लोगों में टकराव बढ़ रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए इसे भरत तिवारी मुठभेड़ मामले से संबंधित बताया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
4: बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद सियासी सरगर्मी काफी बढ़ गई, लोग निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि मामले की जांच जारी है लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद का और पुलिस और लोगों में टकराव काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ये वही वीडियो है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें एक जगह पर कटिहार लिखा हुआ नजर आया। इससे हमें यह इशारा मिला कि वायरल वीडियो बिहार के कटिहार जिले का हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने बिहार के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं मिली जो कि इस दावे की पुष्टि कर सके कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद कटिहार में आक्रोशित लोगों ने पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ऐसे में हमें यह शक हुआ कि मामला किसी और घटना का हो सकता है, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो बिहार के किस हिस्से का है। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित वीडियो को भरत तिवारी एनकाउंटर से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
5: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक एक्स का 6 अप्रैल 2026 को पोस्ट किया वीडियो मिला, जो हूबहू वायरल वीडियो जैसा ही था। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने बिहार की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। सर्च के दौरान हमें एक न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल पर इससे संबंधित वीडियो न्यूज मिला। 4 अप्रैल 2026 को अपलोड किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक कटिहार में 3 अप्रैल को एक युवक राकेश कुमार यादव की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रात में पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने इसे सुसाइड का मामला बताया था। इस मामले में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था। वहीं युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने बवाल कर दिया। उन्होंने सड़क जाम की, थाने में तोड़फोड़ की और पुलिस कर्मियों की पिटाई की। एक वेबसाइट पर 4 अप्रैल 2026 को छपी रिपोर्ट में भी वायरल क्लिप देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक फलका थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में राकेश यादव की मौत के बाद ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए थे। युवक को लूटपाट के एक मामले में संदिग्ध मानकर हिरासत में लिया गया था। उसकी तबीयत बिगड़ने पर पुलिस उसे फलका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां से उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई। इस मामले में कटिहार SP ने कहा था कि युवक ने थाने में फांसी लगाकर सुसाइड का प्रयास किया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। दरअसल बिहार के कटिहार में अप्रैल 2026 में एक युवक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद बवाल हो गया था। उस घटना के वीडियो को भरत तिवारी मुठभेड़ मामले से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक बहुमंजिला इमारत जलती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि इसराइल ने ईरान के तेहरान में IRGC मुख्यालय पर बहुत बड़ा हमला किया है। हमला इतना खतरनाक था कि IRGC का मुख्यालय पूरी तरह से तबाह हो गया। लेकिन वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है रिपोर्ट।
6: सोशल मीडिया पर ऊंची बिल्डिंग में भीषण आग लगने का ये वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बहुमंजिला इमारत धू धू कर जल रही है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर ईरान का बताकर शेयर किया गया है और दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने तेहरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुख्यालय पर हमला किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा कि इसराइल ने ईरान के तेहरान में IRGC मुख्यालय पर बहुत बड़ा हमला किया है। हमला इतना खतरनाक था कि IRGC का मुख्यालय तबाह हो गया है। पंडित बेंजामिन नेतन्याहू इज ऑन फायर। एक एक्स यूजर ने वीडियो को अमेरिकी एयरफोर्स का IRGC हेडक्वार्टर पर हमले का बताते हुए शेयर किया है। इस यूजर ने कैप्शन में लिखा, अमेरिका के एयरफोर्स हमले में IRGC के तेहरान स्थित मुख्यालय सार अल्लाह मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। कमांड फैसिलिटी का ये जलता हुआ दृश्य है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
4: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि इसराइल ने ईरान के तेहरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉप्स यानी कि IRGC मुख्यालय पर बहुत बड़ा हमला किया है। हमला इतना खतरनाक था कि IRGC का मुख्यालय तबाह हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो की पड़ताल की। लगातार सर्च के दौरान हमें यह जानकारी मिली कि हाल फिलहाल में अभी फिलहाल इसराइल ने ईरान पर कोई हमला नहीं किया है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और फॉरेन मिनिस्ट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के ट्विटर हैंडल को भी खंगाला। हाल फिलहाल में इस खबर की पुष्टि करती ना तो ऐसी कोई पोस्ट और ना ही तस्वीर हमें मिली जिससे इस दावे की सच्चाई का पता चल सके। इसके अलावा वीडियो में जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो IRGC का मुख्यालय नहीं है, लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही, सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
6: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक अंग्रेजी अखबार के यूट्यूब चैनल पर 16 सितंबर 2022 को अपलोड हुआ एक वीडियो मिला जिसका टाइटल था चांगशा शहर में एक ऊंची इमारत में आग लगने के बाद चीन की गगनचुंबी इमारत आग की लपटों में घिर गई। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि चीन के चांगशा शहर में एक ऊंची इमारत में आग लग गई। अधिकारियों का कहना था कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आग 42 मंजिल इमारत में लगी जिसमें सरकारी टेलीकॉम कंपनी चाइना टेलीकॉम का ऑफिस है। सर्च के दौरान हमें इस बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स भी मिली। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हुनान प्रांत के चांगशा शहर में एक 42 मंजिला गगनचुंबी इमारत में भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया था। साफ है कि सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वीडियो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर इजरायली सेना के हमले या अमेरिकी एयरफोर्स के हमले का नहीं है। ये वीडियो साल 2022 में चीन के चांगशा शहर में एक बिल्डिंग में आग लगने की घटना का है, इसीलिए यूजर्स का दावा भ्रामक है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार लौटेंगे, आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
7: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
8: continue to face political pressure to reach a peace deal,
7: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: और अब वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं। ये इमोशनल वीडियो लोगों के बीच छाया हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पिता परिवार चलाने के लिए सड़क किनारे बलून बेच रहा है, वहीं अपनी बच्ची को साइकिल पर बिठाकर खाना भी खिला रहा है। एक पिता की इस बेबसी को देखकर लोग भावुक हो गए हैं। वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं, जबकि 67,000 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है। इतना ही नहीं, काफी संख्या में लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। अक्सर कहा जाता है कि घर में भाई से ज्यादा बहन को प्यार मिलता है। ये बात कहीं न कहीं बच्चों के दिल में घर कर जाती है।
12: घर का राक्षस जानवर मारे समाज वहाँ बहन भाई को मारे, मुक्का मारे, घूंसा मारे, जो भी मारे, कोई बात नहीं, माता रानी का रूप है।
4: ऐसा ही कुछ इन दिनों वायरल हो रहे वीडियो में देखने को मिल रहा है। यहाँ बच्चा अपने दिल का दर्द बयां करते हुए बताता है कि कैसे समाज में सिर्फ लड़कियों को प्यार दुलार और लड़कों को पापा की बेल्ट मिलती है। हालांकि उसके बोलने के अंदाज ने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया।
12: वारे समाज तेरा दुर्लभम बहन घर की लक्ष्मी और भाई राक्षस घर का राक्षस जानवर वारे समाज वहाँ बहन भाई को मारे, मुक्का मारे, घूंसा मारे, जो भी मारे, कोई बात नहीं, माता रानी का रूप है, होता रहता है। और अगर भाई मारे, पापा की बेल्ट निकलती है बेल्ट। बहन रोए, कोई बात नहीं, पापा की परी है, रो सकती है। भाई रोए, मर्द को कभी दर्द नहीं होता
13: भाई का,
12: मर्द को दर्द नहीं होता कभी। वाह समाज वाह।
4: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक वॉश बेसिन में से पानी निकलने वाली जगह को ब्लॉक करके उसमें पानी भर दिया है। इसके बाद उसमें एक तकिया लगाकर बच्चे को लेटा दिया है। अब बच्चा वॉश बेसिन में भरे पानी में मजे से लेटा हुआ है और आराम से मजे ले रहा है। उसी वॉश बेसिन के पास में उसकी माँ काम कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा माँ को परेशान न करे इसलिए ऐसा जुगाड़ लगाया है। मगर इसमें सावधानी रखने की भी जरूरत है।

0: हुनर उम्र या परिस्थिति देखकर नहीं आता। कुछ लोग नन्ही उम्र में हुनर के रंग में रंगे होते हैं। ऐसा ही बच्चा इस वक्त इंस्टाग्राम पर छाया हुआ है। यह बच्चा गजल गा रहा है, वो भी पूरी सुर और ताल के साथ। उसके गायकी को बॉलीवुड से भी शाबाशी मिल रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो में एक युवती रस्सी पर मलखम का शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। उसके कठिन स्टंट, बेहतरीन संतुलन और आत्मविश्वास ने इंटरनेट यूजर को हैरान कर दिया है। यही वजह है कि ये वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती ऊंचाई पर बंधी रस्सी पर बेहद मुश्किल मलखम के करतब दिखाती है। एक के बाद एक वो ऐसे मूव्स करती है जिन्हें देखकर कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, लेकिन हर बार वो पूरी सहजता और नियंत्रण के साथ खुद को संभाल लेती है। उसका बैलेंस और फुर्ती देखकर लोग उसकी मेहनत और अभ्यास की जमकर सराहना कर रहे हैं। वीडियो में युवती का आत्मविश्वास भी साफ नजर आता है। बिना किसी घबराहट के वो रस्सी पर अलग अलग पोज और मूव्स करती है। कई बार उसे देखकर दर्शकों की सांसें थम जाती है, लेकिन वो हर बार शानदार तरीके से करतब पूरा कर लेती है। यही कारण है कि लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने बारिश में ऐसा टैलेंट दिखाया जिसे देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि झमाझम बारिश हो रही है, वहीं बारिश के बीच एक शख्स अनोखे अंदाज में करतब दिखा रहा है। जिस तरह से वो करतब दिखा रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि बंदर है। वीडियो को अब तक करोड़ों लोग देख चुके हैं। वीडियो पर लोग जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं। किसी का कहना है कि इस अनोखे टैलेंट ने दिल जीत लिया, किसी का कहना है कि काफी अनोखा नजारा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में सड़क पर अपनी जिंदगी काट रहे एक बुजुर्ग और उनके छोटे से पिल्ले के बीच की जो कमाल की बॉन्डिंग दिख रही है, उसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है। वायरल हो रहे इस छोटी सी क्लिप में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग सड़क किनारे बैठे हुए हैं और उनका एक बेहद नन्हा सा पिल्ला उनके साथ मस्ती कर रहा है। वो छोटा सा पिल्ला कभी बुजुर्ग के कंधों पर चढ़ जाता है तो कभी उनके सिर पर बैठकर उनके बाल खींचने लगता है। अपनी इस तंगहाली और दुखों के बीच भी वो बुजुर्ग उस पिल्ले की नादान हरकतों को देखकर बच्चों की तरह खिलखिला रहे हैं। उनके चेहरे पर जो सच्ची और बेफिक्र हंसी है, उसे कोई भी इंसान पैसों से खरीद नहीं सकता। इस वीडियो को देखने के बाद लोग भावुक हो रहे हैं और कह रहे हैं कि सच्चा प्यार और सुकून किसी महंगे बंगले का मोहताज नहीं होता। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये बेहद खूबसूरत वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भारतीय संस्कृति और कला की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो में कुछ भरतनाट्यम कलाकार रेलवे स्टेशन के एस्केलेटर पर ऐसा शानदार प्रदर्शन करते नजर आते हैं कि वहां मौजूद लोग भी कुछ पल के लिए ठहर कर उन्हें देखने लगते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कलाकार चलते हुए एस्केलेटर पर भरतनाट्यम कर रहे हैं। एस्केलेटर पर भी उनके हर कदम में शानदार बैलेंस दिख रहा है। उनके हाथों की मुद्राएं, चेहरों के भाव और शरीर की हर हरकत भरतनाट्यम की खूबसूरती को बखूबी दिखा रही है। इनके परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एस्केलेटर भी उनके हिसाब से चल रहा है। जैसे पिता का प्रेम, वैसे ही माँ का प्रेम, क्योंकि माँ माँ होती है, इंसान की हो या पशु की। इन वायरल तस्वीरों में इस माँ को देखिए, कैसे बार बारिश में एक खूंटे पर लटकी है और जब तक मदद नहीं मिलती बच्चे को कस कर पकड़े हुए है, और जब मददगार आते हैं तो वो तुरंत उनकी भावना समझते हुए उनका साथ देती है और अपने बच्चे के साथ बोट पर आ जाती है। सच है, इंसान हो या जानवर, सभी बस सुरक्षित रहना चाहते हैं। यूजर्स इन तस्वीरों को देख न सिर्फ भावुक हो रहे हैं बल्कि बचाने वालों का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: मंगल जीवन में किस तरह से समस्याएं पैदा कर सकता है, क्या है मंगल की समस्याओं का समाधान और मंगल की समस्याओं को दूर करने के लिए करें कौन सा दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
0: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढकर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में मॉनसून की बात होगी सबसे पहले, क्योंकि मॉनसून की दस्तक के बीच जिंदगी बचाने की जंग के लिए उतरे हैं जल्दी। इमारतों में आग की लपटें भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, पहली बार मेड इन इंडिया फायर सूट को भी दिखाएंगे। और साथ ही साथ E20 पर आज हर सवाल का जवाब मिलेगा, E20 फ्यूल पर सरकारी जोर की वजह भी जानिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ,
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
0: जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया में प्रेम और अपनापन मिला। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ, नानकपुरा रिज में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण, गृहमंत्री अमित शाह ने की शुरुआत। दिल्ली NCR में हुई झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की जोरदार तैयारी, पुलिस के जवानों ने की मेगा मॉक ड्रिल, 16 जुलाई से शुरू होगी भव्य रथ यात्रा। पूर्णिया बना देश का नंबर वन जिला, डेल्टा रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान, नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जारी डेटा। चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन की। देश में मॉनसून आने से एक तरफ गर्मी से लोगों को राहत मिली है तो ज्यादा बारिश से चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। मूसलाधार बारिश होने से देश के कई हिस्सों में हालात मुश्किल बने हुए हैं। पानी ज्यादा बरसने से कई शहरों में जलभराव जैसी समस्याएं भी हैं, जिसमें लोग बाढ़ के बीच भी फंसे हुए हैं। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच राहत और बचाव दल लगातार मोर्चे पर डटा हुआ है और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहा है। दूसरी तरफ मौसम की आंख मिचोली भी जारी है, कहीं ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं।

0: पहले तो मॉनसून का इंतजार, अब झमाझम बारिश के बीच जिंदगी बचाने की जंग। चारों तरफ पानी, तेज बहाव। जिन इलाकों में ये हाल है वहाँ पर राहत और बचाव दल दिन रात मोर्चे पर डटे हुए हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र के पुणे की। यहाँ इतनी बारिश हुई कि कई हाउसिंग सोसाइटीज में पानी भर गया। यहाँ पहुँचने का एक ही जरिया था नाव। रेस्क्यू टीम नाव के सहारे फंसे हुए लोगों तक पहुँची और फिर शुरू हुई लोगों को बचाने की जद्दोजहद। छाती तक आ चुके पानी में रेस्क्यू टीम ने एक एक कर फंसे हुए लोगों को निकाला। सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को निकाला गया।
1: उसको गोद में ले लेंगे सर, गोद में ले लेंगे उसको। इधर दे दो, मुझे दे दो।
0: इसके बाद इमारत में दूसरे फ्लोर पर फंसे लोगों को बाहर नाव तक लाया गया। इस दौरान कई बुजुर्गों को उठाकर नाव में बैठाना पड़ा।
1: देखो सर बचाना ऊपर।
0: मुंबई के पास लोनावला में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई घरों में पानी भरा तो एनडीआरएफ के जवान मदद के लिए पहुंचे। बोट के जरिए टीमों ने पूरे इलाकों का मुआयना किया और एक एक कर बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। इसी तरह लोनावला में एक एकेडमी में पानी घुसने के बाद 20 से ज्यादा लोग फंस गए थे, लेकिन डिजास्टर रिलीफ फोर्स ने मौके पर पहुंचकर सभी का रेस्क्यू कर लिया। बारिश के मौसम में हमेशा नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जाती है, लेकिन कर्नाटक के कोडगु में कॉलेज के कुछ छात्र सुरक्षा बैरिकेड पार कर झरने के प्रतिबंधित इलाके में पहुंच गए। तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके बाद सभी छात्र बीच में एक चट्टान पर फंस गए। खबर मिलते ही राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाल लिया और सभी ने मिलकर फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गुजरात के अमरेली में भी भारी बारिश के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल पाया। ऐसे में अमरेली के राजुला में बारिश के बीच डॉक्टरों की टीम ने एक महिला मरीज की जान बचाई। यहाँ के राजुला में बीमार महिला तक पहुँचने में एम्बुलेंस सक्षम नहीं थी, तब एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर पानी के बहाव के बीच ट्रैक्टर से मरीज के पास पहुँचे, फिर जेसीबी की मदद से उसे बाहर लेकर आए। सूरत के पर्वतगाम इलाके में एक स्कूल में भारी बारिश की वजह से शिक्षक और छात्राएं फंस गई थी, जिन्हें फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया। मॉनसून के पहुंचने के बाद बादल, बारिश और उफनती लहरों में एनडीआरएफ के जवान किसी देवदूत से कम नहीं है, लेकिन इस मौसम में खुद भी सावधान रहने की जरूरत है। मॉनसून के आने के बाद देश के कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में इस पूरे हफ्ते मध्यम से हल्की बारिश होती रहेगी, बादलों का बसेरा बना रहेगा। हालांकि दिल्ली में आज बारिश से मौसम सुहाना हो गया है।
2: देखिए आने वाले 7 दिनों की बात करें तो दिल्ली में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा आने वाले 2 दिनों में पूरी पूरी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं, और उसके बाद हल्के स्तर की वर्षा भी जारी रह सकती है। तो जहां तक रिकवरी का सवाल है तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी सीजन की शुरुआत ही है। आने वाले समय में हाँ ये जरूर हो सकता है वीक 2 वीक 3 में वर्षा थोड़ी सी कम दिखाई देती है ओवरऑल, परंतु फिर भी हल्के स्तर की वर्षा दिल्ली को मिलती रहने की संभावना आने वाले 4 से 5 दिनों में दिखाई देती है।
0: मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लिए आने वाले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, यानी जमकर बरसात होने वाली है।
3: सबसे ज्यादा जो अलर्ट है वो इस वक्त गुजरात, महाराष्ट्र के लिए जो है दिया गया है, और तभी वहां पर एक क्लाउडी पैच जो है आपको नजर आ जाएगा। उसके साथ ही ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करें तो वहां पर भी एक अच्छा खासा क्लाउड पैच नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वहां पर बारिश की जो संभावना है वो तेजी से बढ़ती हुई और नजर आ रही है।
4: देखा जा रहा है कि मॉनसून ने अभी रफ्तार पकड़ी है और उत्तर भारत के कई राज्यों में देखा जाएगा कि 1-2 दिन तक जो मॉनसून के बादल है वो दस्तक देंगे, जहां देखा जा सकता है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई राज्यों में भी झमाझम बारिश होने के आसार पैदा हो सकते हैं।
0: गुजरात के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर जलभराव देखा जा रहा है।
5: खास करके मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के अलग अलग शहर और जिलों में ऑरेंज और बारिश का रेड अलर्ट जारी है। अब तक हुई गुजरात की बारिश की बात करें तो अब तक गुजरात में कुल मौसम की 21% बारिश दर्ज हो चुकी है। सबसे कम बारिश कच्छ में मात्र 2% दर्ज हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश अब तक जो हुई है वो सौराष्ट्र में 27% और दक्षिण गुजरात के हिस्सों में 25% जितनी बारिश दर्ज हुई है।
0: अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। आसमान में काले काले बादलों ने डेरा जमाया हुआ है। अगर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही है, जिससे चंडीगढ़ में उमस और गर्मी का माहौल बना हुआ है।
6: आखिरकार उत्तर भारत में जुलाई के पहले हफ्ते मानसून दस्तक दे चुका है। चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए गए हैं। इस समय हम सुखना लेक पर हैं, जहां पर बारिश इस समय तो नहीं है, लेकिन बादल छाए हुए हैं और एक तपस, एक ह्यूमिडिटी जरूर मौसम में है। अगर यहां पर बाहर कोई भी निकलता है तो ह्यूमिडिटी जरूर परेशान करती है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से, चाहे वो हिमाचल है जिसमें 4 जिले मंडी, कांगड़ा, शिमला और सोलन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और वहीं पर बिलासपुर और सिरमौर में येलो अलर्ट है, बाकी जगह मौसम साफ रहने का अनुमान है।
0: हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत में पूरे हफ्ते में बारिश की संभावना जताई है, जिससे जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। पुणे से श्रीकृष्ण पांचाल, चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, अहमदाबाद से अतुल तिवारी और दिल्ली से मनीषा लड्डा और अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और अब बात फायर फाइटर्स की, जो जान पर खेलकर लोगों की जिंदगी बचाते हैं। अब इन फायर फाइटर्स को एक ऐसे फायर फाइटिंग सूट का तोहफा

जो जान पर खेलकर लोगों की जिंदगी बचाते हैं। अब इन फायर फाइटर्स को एक ऐसे फायर फाइटिंग सूट का तोहफा मिलने वाला है जो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेगा, उनके पास आग फटक भी नहीं पाएगी। इस हाईटेक सूट को पहनकर वो आग के बीच जाकर लोगों को बचा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है, जिससे आयात पर निर्भरता भी कम होगी और कम कीमत में उपलब्ध भी हो पाएगा।

0: भीषण आग में इमारत के भीतर प्रवेश कर लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, कई बार जान पर भी बनाती है। लेकिन अब दमकल कर्मियों के लिए मेड इन इंडिया फायर एंट्री सूट की सौगात मिलने वाली है, जिससे वो आग में फंसे लोगों की जान तो बचा ही सकते हैं, उनकी अपनी सुरक्षा भी दांव पर नहीं लगेगी। दमकल कर्मियों के लिए नित्रा नाम की स्वदेशी कंपनी ने ये अत्याधुनिक स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग सूट तैयार किया है।
1: ऐसी ही एक तकनीक को ढूंढ निकाला है नित्रा, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन ने। उन्होंने एक ऐसा सूट तैयार किया है जिसको पहनकर हमारे फायर फाइटर्स के जवान सीधे आग के अंदर घुस सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं और लोगों का रेस्क्यू कर सकते हैं।
0: आग की लपटों के बीच से लोगों को बचाने का काम किसी भी फायर फाइटर के लिए जोखिम भरा होता है। ऐसे हालात में उनकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाला स्पेशलाइज्ड फायर एंट्री सूट अब भारत में ही विकसित कर लिया गया है। कपड़ा मंत्रालय के राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत इसे तैयार किया गया है।
2: हमें ये प्रोजेक्ट मिला था कि क्यों ना ऐसा सूट डेवलप किया जाए इंडिया में, जो अभी तक नहीं बना है, जिससे कि हमारे जो फायर फाइटर्स हैं या जो भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले हैं या डिफेंस में काम करने वाले हैं, जिनका रोजमर्रा ऐसी दुर्घटनाओं से सामना होता है, उनको कैसे बचाया जा सके। तो उसी को देखते हुए हमने ये सूट डेवलप किया और इंडिया में ये पहला सूट है जो यहाँ पर बनाया गया है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सूट को पहनकर फायर फाइटर सूट्स आग के अंदर जा सकता है, 2000 डिग्री सेल्सियस तक भी ये आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उस आग में करीब 120 सेकंड तक आराम से रह सकता है और वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करके वापस आ सकता है।
0: करीब 2.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस अत्याधुनिक फायर एंट्री सूट को तैयार किया गया। सूट में लगभग 7 अलग अलग प्रकार की सुरक्षा लेयर्स दी गई है, जो गर्मी और आंख पर पड़ने वाले असर को कम करने में प्रभावी है। लेयर्स में ग्लास फाइबर समेत कई विशेष फाइबर्स का उपयोग किया गया है। इसके अलावा सूट की बाहरी सतह पर एल्युमिनियम कोटिंग की गई है, जो बाहरी गर्मी को शरीर तक पहुंचने से रोकता है। यानी यह सूट 2000 डिग्री तक के तापमान पर फायर फाइटर्स को 120 सेकंड तक सुरक्षा दे सकता है। यही नहीं, इस स्पेशल सूट में विशेष ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिया गया है, ताकि आग के बीच पहुंचने पर धुएं और जहरीली गैस से बचाव हो सके।
2: ये इंडिया में ही बना है और इसमें आप देखेंगे कि सिर से लेके पैर तक सब जगह आपने इसको सिक्योरिटी दी है, हर जगह से है। आपको आंखों की भी सिक्योरिटी है, आपकी गैस से रिलेटेड अगर आप ये सूट पहन के अंदर जा रहे हैं तो आपका दम घुट सकता है, तो दम ना घुटे उसके लिए ऑक्सीजन की इसमें फैसिलिटीज है। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा हुआ है, आप उसमें आपको ब्रीदिंग सिस्टम भी पूरा दिया गया है।
0: स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग सूट को भारत में पहली बार बनाया गया है और इसकी सूट है, जबकि आम तौर पर दमकल कर्मी प्रॉक्सिमिटी सूट का इस्तेमाल करते हैं, यानी आग के पास जाकर रेस्क्यू करना, जबकि देसी स्पेशल फायर फाइटर सूट में आग में जाने की सुविधा है।
2: फायर फाइटर्स के लिए बहुत तरह के सूट्स इस्तेमाल होते हैं, वो इस पे निर्भर करता है कि किस तरह की आग है, ठीक है। जिनको हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी सूट्स मतलब आग के पास में रहते हैं, जैसे फायर फाइटर जनरली यूज़ करते हैं, बाहर खड़े हैं और पानी से वो आग को बुझा रहे हैं, तो उनके बचाव के लिए प्रॉक्सिमिटी सूट्स बोले जाते हैं। लेकिन इसको जिसका एक्चुअल में नेम है फायर एंट्री सूट, मतलब आप इसको पहन के आग के अंदर जा सकते हैं और अपने को बचा सकते हैं, तो इस तरह का इसमें सारा सिस्टम अवेलेबल है सर।
1: इस तरह का सूट अवेलेबल है अभी?
2: इस तरह का सूट अभी इंडिया में नहीं है अवेलेबल, बाहर से ही ले रहे हैं और बहुत बहुत कॉस्टली है सूट। 10 लाख से लेके 22 लाख तक आपको एक पीस सूट का मिलता है, तो यानी कि आपको इम्पोर्ट करना है, बाहर से लाना है। तो ये सूट यहाँ पर बन गया है। अब बनने से हमें एडवांटेज ये हो गया कि हम इंडिया में ही ये बना पाएंगे और इसका इफेक्ट ये होगा कि हम जो

0: करेंसी एक हमारी बाहर जा रही थी फॉरेन करेंसी का, उसको हम सेव कर पाएंगे।
1: आमतौर पर फायर फाइटिंग सूट 18 से 20 किलो के होते हैं, जबकि देसी स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग सूट करीब 15 किलो का ही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक बार फायर फाइटिंग सूट इस्तेमाल करने के बाद इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर लगे एल्यूमिनियम कोटिंग खराब हो जाते हैं।
0: इस तरह के जो सूट हैं सेफ्टी से रिलेटेड है, तो इसमें एडवाइस तो यही दी जाती है कि आप एक बार उसे यूज़ करके और उसको आप नेक्स्ट टाइम ना यूज़ करें, मतलब उतनी आग में ना यूज़ करें। तो हो सकता है कि क्योंकि इसका जैसे ऊपर इसमें एल्युमिनाइज का एक वो लेयर दिया है, अगर आप देख रहे हैं एल्युमिनाइज की लेयर है, तो अगर हाई टेम्परेचर पर होगा तो धीरे धीरे ये एल्युमिनाइज की लेयर उतर जाएगी। उतरने से क्या प्रोटेक्शन कम हो जाएगा। आप कर तो सकते हैं लेकिन हाई टेम्परेचर पर इसको यूज़ ना करें, ये हमारी एडवाइस हमेशा रहती है।
1: ये सूट सिर्फ दमकल कर्मियों के लिए नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, एरोस्पेस, एविएशन, पावर प्लांट और थर्मल इंडस्ट्री जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
2: फिलहाल ये पहला मेड इन इंडिया सूट है जो कि हमारे फायर फाइटर्स के जवानों के लिए या कोई भी जो ऐसे सिचुएशन में काम करता है उनके लिए तैयार हो गया है। उम्मीद यही कि आने वाले वक्त में जब ये मार्केट में आएगा, हमारे सैनिकों के पास आएगा, तो उनका काम भी काफी हद तक आसान हो जाएगा।
1: इसके अलावा नित्रा ने एक ऐसी मशीन भी लगाई है जो किसी तरह के फायर सूट की टेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर कर सकती है। ये मशीन पहले सिर्फ विदेशों में मौजूद थी, जिसमें टेस्टिंग के लिए 2 से 2.5 लाख तक का खर्च आता था और टेस्टिंग की रिपोर्ट आने में भी 3 हफ्ते से ज्यादा का समय लगता था। ऐसे में सूट को बनाने वाली एजेंसी के रिसर्च के काम में बहुत वक्त लगता था, लेकिन अब इस मशीन को विदेश से लाकर पहली बार भारत में ही लगाया गया है, जिससे किसी भी टेस्टिंग की कीमत 60 से 65 हजार रुपए हो गई है और टेस्ट रिपोर्ट भी जल्दी मिल जाती है। मनीष रसिया, गाजियाबाद, गुड न्यूज टुडे।
3: बात E20 फ्यूल की, वाहनों पर खासकर 2023 से पहले की गाड़ियों पर जिसके असर को लेकर सोशल मीडिया में तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। पूरे देश में E20 पेट्रोल अब सामान्य पेट्रोल के रूप में मिल रहा है और अब हर जगह यही पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के विरोध के बीच आज उससे जुड़े हर सवाल का जवाब हम जानेंगे। E20 फ्यूल पर सरकारी जोर की वजह समझने की भी कोशिश की जाएगी।

0: देश के किसी भी फ्यूल स्टेशन में पेट्रोल भरवाने वाले वाहन मालिक एक ही तरह के असमंजस में दिख रहे हैं। उनकी ये उलझन E20 पेट्रोल यानी 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल के मिश्रण को लेकर है, जिसकी वजह से देश के हर छोटे बड़े शहर में इन दिनों एथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। देश के सभी पेट्रोल पंप पर अनिवार्य रूप से 20% एथेनॉल मिला पेट्रोल मिल रहा है। अब सामान्य पेट्रोल के विकल्प के रूप में सिर्फ केवल E20 ही उपलब्ध है, जिसकी कीमत करीब 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। अलग अलग राज्य या शहरों में इसकी कीमतों में फर्क हो सकता है। सोशल मीडिया से जुड़े कई वीडियो में ऐसा दावा है कि E20 पेट्रोल भरवाने की वजह से गाड़ियों के इंजन में खराबी के साथ माइलेज में कमी आई है। E10 ईंधन की तुलना में E20 ईंधन का इस्तेमाल करने पर वाहनों की ईंधन खपत बढ़ने का दावा किया गया है। इस दौरान E20 पेट्रोल भरवाने वाले कई मोटरसाइकिल चालकों ने अपनी मोटरबाइक में अचानक गड़बड़ी आने की शिकायत की है। 5 से 10% तक माइलेज ड्रॉप होने का भी दावा है।
1: 2 महीने पहले आपने खरीदा, माइलेज पर कितना असर दिख रहा है आपको?
2: सर 5 से 10% का
1: इतना गिरा है। तो सरकार कह रही है कि 3 से 5% मैक्सिमम हो सकता है, लोग जो एक्सपर्ट कह रहे
2: हैं 5 से 10% है सर।
1: तो मतलब पेट्रोल ज्यादा लग रहा है यार।
2: हाँ।
1: इंजन को कोई तकलीफ?
2: हाँ सर, अब ये 14 दिन से मिसिंग ले रही है।
1: अच्छा, हाँ। तो आपने किसी को दिखाया, कुछ बता?
2: सर कल लेके जाऊंगा, कल उन्होंने टाइम दिया है शोरूम वालों ने, एक दिन छोड़नी पड़ेगी तब वो बताएंगे
1: क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा। 2 महीने ही तो है भाई।
2: हाँ नहीं सर, कल ही पता लगेगा। तो
1: कितना फर्क पड़ा है, मतलब पहले कितना लगता था पेट्रोल, अब कितना लगता है?
3: ऐसा लगता है कि आधा हो गया।
1: आधा का फर्क पड़ा
3: एवरेज का।
1: इंजन पर किसी तरह का असर?
3: इंजन पर तो जब सर्विस करवाते हैं जब पता लगता है इंजन के बारे में। तो
1: अभी तक हुआ एक भी बार?
3: हाँ।
1: तो क्या बताते हैं उसमें, किस तरह की शिकायत?
3: यही रुकावट आ रही है, तेल प्रॉपर नहीं जाता है उसमें।
1: तो कितना पेट्रोल पहले लगता था दिन में और अब कितना लगता है?
3: पहले तो 210 में काम हो जाता था
1: और अब
3: 300-350 रुपये डलवाने पड़ते
1: हैं। आपको 50% का फर्क पड़ा। आपको आपका इंजन कैसा चल रहा है? ये तो E20 सपोर्ट है ना ये तो?
4: जी हाँ बिल्कुल, ये मेरी गाड़ी मैं पहले महीने में 1.5 महीने में सर्विस कराता था, इस बार मुझे 15 दिन में दूसरी बार कल सर्विस करवानी पड़ी है। वजह
1: कहाँ पे, दिल्ली में या बाहर कहीं?
4: दिल्ली में ही। वजह इसकी ये है कि मैं कल जब इसे चला रहा था तो मुझे पिछले कई हफ्तों से हल्का हल्का सा झटका महसूस हो रहा था चलते चलते, तो कल मैंने जब मिस्त्री को दिखाई वो कह रहा भैया एक बार दोबारा सर्विस करवा लो।
1: तो आपकी गाड़ी कैसी चल रही है
3: अभी तक? तो फिलहाल ठीक चल रही है।
1: इसी तरह का माइलेज पर असर, इंजन पर असर?
3: लोड तो पड़ रहा है लेकिन इतना कोई खास नहीं है।
1: ठीक है, बहुत मामूली है।
3: मामूली है।
0: 4 पहिया वाहन चलाने वाले मालिकों की तरफ से भी कुछ ऐसी ही शिकायत सुनाई दे रही है। कुछ का दावा है कि गाड़ी की माइलेज में 10 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का फर्क दिख रहा है।
1: अभी जो E20 पेट्रोल है आपकी गाड़ी पर कितना फर्क आप लोगों ने देखा?
4: सर फर्क तो मुझे लग रहा है क्योंकि मेरी जो एवरेज थी गाड़ी की वो पहले कुछ ज्यादा थी और अब मैं देख रहा हूँ कि अभी मैंने 5x1 का एक पेट्रोल डलवाया है कि जिसमें कि मेरी एवरेज जो पहले जितनी आती थी उससे कम एवरेज अभी आ रही है। सर
1: लगभग कितना फर्क पड़ा एवरेज में?
4: सर लगभग मुझे लग रहा है कि कम से कम 10 से 20 लीटर में, मतलब किलोमीटर में फर्क पड़ रहा है मेरे गाड़ी पे पर उसमें।
1: मतलब जेब पर अब ज्यादा खर्चा पड़ गया, ज्यादा
4: खर्चा हो रहा है लग रहा है सर।
1: इंजन की प्रॉब्लम कई लोग शिकायत कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट अथॉरिटी कह रही है कि इंजन की प्रॉब्लम है। आपको भी इंजन की किसी तरह की प्रॉब्लम मिली है?
4: सर अभी तक तो नहीं है पर जैसे कि मुझे भी सुनने में आ रहा है कि गाड़ी पे इफेक्ट पड़ रहा है तो लग रहा है कि जैसे कि मैं कंटिन्यू चलाता हूं गाड़ी तो कुछ तो इफेक्ट हो रहा है सर इंजन पे।
0: देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर आरोप प्रत्यारोप और असमंजस के बीच ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पूर्व CMD वर्तिका शुक्ला, बजाज ऑटो के सर्कल हेड मनप्रीत सिंह, TVS के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत कृष्णन, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी, मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती, ह्यूंडई इंडिया के पुनीत आनंद और हीरो मोटो के आशुतोष वर्मा भी शामिल हुए थे, जिन्होंने एक सुर में बड़े पैमाने पर हुई टेस्टिंग में गाड़ियों को नुकसान पहुंचने का कोई सबूत नहीं मिलने का दावा किया था।
5: E20 के और BS6 गैसोलीन के, उसमें केवल जो एथेनॉल की वजह से ऑक्टेन बढ़ी है हमारी, उसमें चेंज है, बाकी सल्फर हो, वाटर कंटेंट हो, गम कंटेंट हो, डिस्टिलेशन हो और बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो समान हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये कहना कि E20 हमने जब 20% उसमें एथेनॉल डाला गैसोलीन में, तो उससे जो है वो पानी का उसमें कंटेंट बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
6: पहले तो मैं आश्वस्त करना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को कि उनको कोई फिक्र करने की बात नहीं है। जो E20 का माइग्रेशन हुआ है वो काफी कैलिब्रेटेड रहा है और काफी टेस्टिंग और सब कुछ देख के किया गया है, और उसमें काफी मतलब कि सोच समझ के सब फैक्टर्स को देख के गवर्नमेंट ने, टेस्टिंग एजेंसीज ने टेस्टिंग करने के बाद इसको लागू किया है। 2023 के बाद में जितनी भी गाड़ियां बिक रही हैं वो E23 मटेरियल कंप्लायंट है, E20 मटेरियल कंप्लायंट है, और उससे पहले भी जो गाड़ी थी उनके टेस्टिंग से ये दिखा कि गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप E20 डालते हैं।
0: जुलाई 2017 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में मौजूद ऑटोमोबाइल कंपनियों से फ्लेक्सी फ्यूल इंजन बनाने की अपील की थी, जिसके तहत पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाने पर जोर दिया गया। दरअसल एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसको बनाने के लिए गन्ना, मक्का और धान जैसे पौधों का इस्तेमाल होता है। इन पौधे से निकलने वाले स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से ही एथेनॉल बनता है। फ्लेक्सी फ्यूल इंजन में इस्तेमाल होने वाले तेल में कुछ फीसदी एथेनॉल की और कुछ प्रतिशत पेट्रोल की होती है। E20 फ्यूल का मतलब है 20% एथेनॉल के साथ 80% पेट्रोल। E20 पेट्रोल लॉन्च करते वक्त सरकार का दावा था कि एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ेगा तो गन्ना और मक्का पैदा करने वाले किसानों को भी फायदा पहुंचेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी ये फायदेमंद साबित होगा। भारत में अभी इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन 35% ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा क्रूड ऑयल के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता भी कुछ ज्यादा ही है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार ने E20 को लॉन्च किया है, जिसका इस्तेमाल शुरू होते ही गाड़ियों के इंजन को नुकसान पहुंचने जैसे दावे कर दिए गए।
7: देखिए सर, E20 जो 2018 के बाद से कुछ मैन्युफैक्चर की गाड़ियां आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली E20 कंपैटिबल हैं और उनसे इंजन पे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ गाड़ियां जो 2015 की बात करें, VS4 की जो गाड़ियां हैं पहले वाली, उनमें अगर आप इम्पैक्ट आ सकता है इंजन के ऊपर, क्योंकि वो गाड़ियां E20 कंपैटिबल नहीं है, और अगर लॉन्ग टर्म में चलेंगे तो उनमें फ्यूल से रिलेटेड कुछ कंसर्न आ सकता है, रस्ट आ सकता है फ्यूल लाइन्स के अंदर, और माइलेज भी 3-7% तक कम रहता है।
0: एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत कार इंजन बनाने वाली कंपनियों को E20 पेट्रोल के लिए इंजन बनाने के निर्देश हैं। यही वजह है कि नए मॉडल की सभी गाड़ियों में एथेनॉल से बने पेट्रोल का इस्तेमाल हो सकता है। उसकी वजह देश में बन रही ज्यादातर गाड़ियों में इंजन BS4 से BS6 स्टेज के हैं। एथेनॉल बेस्ड फ्यूल को ऐसे वक्त में बढ़ावा दिया जा रहा है जब कई देशों में फ्लेक्सी फ्यूल का चलन पहले से शुरू हो चुका है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सुंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहे गुड न्यूज, देखते रहे गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
10: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune In has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की समस्याओं से बचने के लिए कौन से दान आपको करने चाहिए, मंगल की किस समस्या के लिए आप कौन सा दान करेंगे, आज इस विषय पर बात होगी। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 12:21 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, शाम के 4 बजे तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 4 बजे तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं कि मंगल अगर आपकी कुंडली में निगेटिव है, मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब है, तो मंगल के खराब होने के क्या परिणाम होते हैं। देखिए, मंगल हमारे जीवन में साहस को और सुरक्षा को नियंत्रित करता है। मंगल के कमजोर होने पर व्यक्तित्व व्यक्ति का कमजोर हो जाता है और मंगल के गड़बड़ होने पर व्यक्ति को संपत्ति और जमीन के मामलों में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मंगल के गड़बड़ होने पर व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं, ब्लड संबंधी प्रॉब्लम परेशान करती हैं और मंगल अगर ज्यादा गड़बड़ हो तो कर्ज और मुकदमेबाजी लगी रहती है, कभी कभी जेल के दर्शन हो जाते हैं, कभी कभी व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ता है। अगर विवाह के स्थान से मंगल का नकारात्मक संबंध हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। यानी अगर मंगल नकारात्मक है तो आपके अंदर साहस नहीं होगा, आपके स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा नहीं होगी, दुर्घटनाएं होंगी, मुकदमेबाजी होगी और वैवाहिक जीवन में झगड़े, झंझट और विवाद आपको परेशान करेंगे। मंगल पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मेहनत से भरा दिन रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति हो सकती है, परिवार में अशांति से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है, भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर कुंडली में मंगल अशुभ है, कुंडली में अगर मंगल खराब है तो कौन कौन से उपाय करने से लाभ होगा? मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए, मंगल की समस्याओं को दूर करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। अपने आचरण को बेहतर करके, मंत्र का जप करके, रत्न का प्रयोग करके और मंगल की वस्तुओं का दान करके आप मंगल की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इन सब को करने से आपका मंगल शुभकारी हो जाता है, मंगल के परिणाम बेहतर होते हैं। लेकिन इन तमाम उपायों में अगर आप दान करें तो दान करने के आपको शीघ्र लाभ होंगे। मंगल अगर खराब है या मंगल अगर निगेटिव है और अगर आप दान करते हैं तो दान के प्रभाव ज्यादा बेहतर होंगे। और मंगल के लिए अगर आप दान करते हैं तो किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें या हनुमान जी के मंदिर में अगर दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मंगल की किस समस्या के लिए क्या दान करेंगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्रा में सावधानी रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी, संतान की चिंता दूर होगी, चोट चपेट से सावधान रहें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, गणेश जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि मंगल की किस समस्या के लिए कौन सा दान आपको करना चाहिए। अगर मंगल के कारण स्वास्थ्य की समस्या है, बार बार ऑपरेशन होता है, ब्लड की कोई प्रॉब्लम है, बोन मैरो या मसल्स की कोई प्रॉब्लम है, तो लाल फल का दान करना अच्छा रहेगा। अगर मंगल की वजह से आत्मविश्वास की समस्या है, कॉन्फिडेंस की दिक्कत है, तो हर मंगलवार को बूंदी का दान करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर कोई संपत्ति की समस्या है या जमीन की समस्या है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई दिक्कत है, तो मंगलवार को लाल मसूर की दाल या जौ का दान करना बेहतर होगा। अगर मंगल की वजह से आप कर्ज में फंसे हुए हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, तो तांबे की वस्तुओं का या लाल कपड़े का दान करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर मुकदमे की कोई समस्या है या अगर कोई विवाद है, कोई झगड़ा झंझट है, उसकी कोई समस्या है, तो मंगलवार को मीठी चीज का जैसे गुड़ का या बूंदी का दान करिए, आपको लाभ होगा। मंगल आपकी कुंडली में कभी भी अगर समस्या दे, किसी भी मामले में अगर समस्या दे, तो मंगलवार को गुड़ का दान करिए। और सबसे बेहतर होगा कि मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो मंगल की किसी भी तरह की समस्या हल हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में अशांति हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर में परिवर्तन के योग हैं, नया काम शुरू हो सकता है, पारिवारिक तनाव हो सकता है। गणेश जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की मंगल ग्रह की समस्याओं को दूर करने के लिए दान के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अगर मुकदमे से और विवादों से मुक्ति चाहते हैं तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी को लाल फूल, गुड़हल का या गुलाब का अर्पित करें तो बहुत बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल गणेश जी को गुड़ का भोग लगाइएगा, घर से निकलते समय इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music, your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: खाद्य पदार्थ चंद्रमा को बेहतर कर देता है, मन को शांत कर देता है? कौन सा खाद्य पदार्थ आपको शारीरिक रूप से मजबूती देता है? और कौन सा खाद्य पदार्थ आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को तेज कर देता है? अनाज का और मसालों का आपके भाग्य से, आपके जीवन से क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। टीआईटी भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: पुणे में धूमधाम से निकली जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी, हरिनाम के जय घोष से गूंजा शहर, ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक वेशभूषा में दिखे लोग। गुजरात के कई इलाकों में जमकर बरस रहे बादल, सूरत नवसारी में भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया में प्रेम और अपनापन मिला। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ, नानकपुरा रिज में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण, गृहमंत्री अमित शाह ने की शुरुआत। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा अमरनाथ यात्रा और श्रद्धालुओं की सुविधा की भी है।
5: बम बम भोले, हर हर महादेव और जय बर्फानी बाबा के जयकारों से अमरनाथ यात्रा मार्ग गूंज रहा है। श्रद्धालु पवित्र गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए इस साल अब तक का सबसे बड़ा श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। इस जत्थे में शामिल 8,815 श्रद्धालुओं में 31 विदेशी भी यात्रा का हिस्सा बने हैं। यात्रा के शुरुआती चार दिनों में ही 93,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा के साथ ही श्रद्धालु की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बालटाल बेस कैंप से लेकर रामबन के चंद्रकोट तक यात्रियों को मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जा रही है। पवित्र अमरनाथ यात्रा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए ग्रामीण स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर हलचल शुरू हो गई है। 30 जुलाई से शुरू होने वाला कांवड़ मेला सकुशल होने की कामना को लेकर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा की ओर से मालवीय घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ आरती की गई। इस विशेष अवसर पर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने नियमों वाला एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें कांवड़ियों को कांवड़ उठाने के नियम बताए गए हैं। इस पोस्टर में कांवड़ियों से कांवड़ उठाने के नियमों का पालन करते हुए कांवड़ उठाने और अपने गंतव्य तक ले जाने के साथ ही वजनी कांवड़ नहीं उठाने का आग्रह किया गया है। अखाड़े से जुड़े साधु संतों और पंडितों ने शिव भक्तों से तीर्थ नगरी की मर्यादा बनाए रखने के लिए भी निवेदन किया है। श्रद्धालुओं को बड़े बड़े डीजे लेकर आने से बचने की सलाह दी गई है ताकि उसकी तेज आवाज और धमक से किसी को किसी भी तरह की असुविधा या परेशानी का सामना न करना पड़े। श्री गुरु गोरखनाथ अलक अखाड़ा परिषद की ओर से हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में 11 महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक किया गया। समारोह में सभी महामंडलेश्वरों को चादर विधि करके पट्टाभिषेक किया गया और संतों ने फूलों की बारिश करके आशीर्वाद प्रदान किया। इस अखाड़ा परिषद ने 51 महामंडलेश्वर बनाने का लक्ष्य रखा है और अब तक 41 महामंडलेश्वर बनाए जा चुके हैं और बाकी 10 महामंडलेश्वरों को बनाने की तैयारी हो रही है। कुंभ से पहले इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। जिन 11 महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक किया गया है उन्हें गुरु गोरखनाथ अलग अखाड़े से जुड़े हुए 4-5 वर्ष हो गए हैं और अब बतौर महामंडलेश्वर वो अपने कर्तव्य को निभाएंगे। ये तस्वीरें पंजाब के फरीदकोट की हैं जहां आयोजित दस्तार प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 6 से 15 साल की उम्र के 60 बच्चे शामिल हुए जिन्होंने दस्तार यानी पगड़ी बांधने की कला का पूरे आत्मविश्वास, अनुशासन और अपनी सिख विरासत के प्रति समर्पण का पूरी कुशलता से प्रदर्शन किया। इन छोटे छोटे बच्चों ने खुद से पगड़ी बांधी। रंग बिरंगी पगड़ियों में ये बच्चे बेहद सुंदर लग रहे थे। प्रतियोगिता में विजेताओं का चयन दस्तार बांधने की कला, साफ सुथरापन, प्रस्तुति, संतुलन, आत्मविश्वास, पारंपरिक शैली, फिनिशिंग और समग्र प्रभावशाली प्रदर्शन सहित कई महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित शमशान घाट की अपन पाठशाला में बच्चे पढ़ाई करने के साथ साथ मशहूर मिथिला पेंटिंग भी सीख रहे हैं और आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये खूबसूरत पेंटिंग इन बच्चों ने ही बनाई है। अपनी इस शानदार कला के जरिए बच्चे अपनी पढ़ाई का खर्च भी निकाल रहे हैं। इस पाठशाला में पढ़ने वाले 28 बच्चे नियमित शिक्षा के साथ ही मिथिला पेंटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं जिसमें ये छठ महापर्व, राधा कृष्ण, मछली, मोर, पक्षियों और बिहार की लोक संस्कृति पर आधारित आकर्षक पेंटिंग्स तैयार कर रहे हैं जिनके स्थानीय लोगों के बीच अच्छी खासी डिमांड है। एक पेंटिंग तैयार करने में बच्चों को करीब 2 दिन लग जाते हैं जो 150 से 200 रुपए तक में बिक जाती है। खरीदार इसे सम्मान समारोह में स्मृति चिन्ह के रूप में भी भेंट करते हैं। इससे बच्चों को आर्थिक मदद मिलने के साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
3: और अब बात करते हैं मॉनसून की। बारिश का मौसम जितना सुहाना होता है उतना ही चुनौतियां भी लेकर आता है। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली लेकिन कहीं शहर पानी में डूबे हैं तो कहीं लोग बाढ़ के बीच फंस गए। हालांकि राहत कर्मी और बचाव दल मुश्किल में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। वहीं पूरे देश में मॉनसून की दस्तक से कहीं बारिश हो रही है तो कहीं भारी बारिश होने की खबर है। जबकि लंबे इंतजार के बाद राजधानी दिल्ली में भी मॉनसून मेहरबान हुआ और जमकर बारिश हुई।

0: मॉनसून के बादल और तेज बारिश के बीच जलजमाव और उफनती नदियाँ। बारिश के दिनों में ये नज़ारे बेहद आम हैं, लेकिन मॉनसून में बारिश के बाद लोगों को उमस और गर्मी से तो राहत मिल जाती है, लेकिन बाढ़ वाले इलाकों में बारिश मुसीबतें भी लेकर आती है। फिलहाल ऐसे हालात से निपटने के लिए देवदूत के रूप में बचाव दल हमेशा तैयार रहते हैं। मुंबई, ठाणे, पुणे और पालघर समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश ने तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। महाराष्ट्र के पालघर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वीरेंद्र नगर में पानी से घिरे एक घर में फंसे 9 महीने के मासूम बच्चे को स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चे को सुरक्षित देखते ही उसके माता पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े।
1: पालघर जिले में सुबह 5 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू है। उस बारिश का असर पालघर में देखने को मिला है। पालघर के वीरेंद्र नगर में जहां सब सो रहे थे, उसी समय उनके घरों में पानी भराया। उन घर वालों को बाहर कैसे निकला जाए, सब परेशान थे। उसी समय सूरत धोत्रे अपनी टीम लेकर के उस जगह पहुंचे और उन लोगों को बाहर निकालने की पूरी मशक्कत की। क्या कहोगे आप, क्या क्या स्थिति थी जब आप लोग अंदर?
2: रात में से ही बारिश होने लगा तो अपन उठे तो देखे तो बारिश ज्यादा बढ़ गया था, तो इसके लिए हमारा दिल घबराने लगा। मैं बोला अभी क्या करने का, तो फिर हमने बैठे थे तो वहाँ पे संजू भाई ने आया, उसने बोला कि भाई आप लोग का मदद मैं करता हूँ।
3: जब यहाँ पे हम आए तो ऐसा माहौल था यहाँ पे कि अंदर हम जा नहीं सकते थे, तो लेकिन हमारा सब टीम लोग थे, बच्चे लोग सब लोग ने तय किया नहीं आप लोग जाना पड़ेगा वहाँ पे अंदर निकलने के लिए, नहीं जाएंगे तो बच्चे फंस जाएंगे वहाँ पे।
0: सिर्फ इस मासूम को ही नहीं बल्कि रस्सी और ट्यूब की मदद से करीब 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेज बहाव और जलभराव के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना युवाओं ने राहत अभियान चलाया और कई परिवारों की जान बचाई। पालघर के इस संकट के बीच इन युवाओं ने उम्मीद और इंसानियत की एक नई मिसाल पेश की है। महाराष्ट्र के पुणे में इतनी बारिश हुई कि कई हाउसिंग सोसाइटी में पानी भर गया, लिहाजा लोग यहां फंस गए। छाती तक आ चुके पानी में रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए लोगों को एक एक कर बाहर निकाला। सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को निकाला गया, इसके बाद इमारत में दूसरे फ्लोर पर फंसे लोगों को बाहर नाव तक लाया गया। इस दौरान कई बुजुर्गों को उठाकर नाव में बैठाना पड़ा।
4: देखो सर बचाना ऊपर।
0: मुंबई के पास लोनावला में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई घरों में पानी भरा तो एनडीआरएफ के जवान मदद के लिए पहुंच गए। नाव के जरिए टीमों ने पूरे इलाके का मुआयना किया और बाढ़ में फंसे लोगों को

0: उसके बाद सभी छात्र बीच में एक चट्टान पर फंस गए। खबर मिलते ही राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला और फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं देश के 23 से अधिक राज्यों में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है, जिससे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार और दिल्ली NCR में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण और मध्य भारत में भारी बारिश हो रही है, जिससे कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अखनूर में चेनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जबकि डोडा और किश्तवाड़ में भारी तबाही हुई है।
1: पिछले दो दिनों से जम्मू संभाग के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई है। इसके कारण कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की, तो डोडा और किश्तवाड़ जिलों में इस भारी वर्षा के कारण काफी तबाही हुई है। डोडा जिले के ठाठरी इलाके में बारिश के कारण बाढ़ आ गई और साथ ही में सड़क पर जो है मलबा आ गया, और इस बाढ़ और बारिश के कारण ठाठरी में कई मकान ढह गए, कई दुकानों को भी क्षति हुई और कई जो गाड़ियां हैं वो बाढ़ के पानी के कारण बह गए। प्रशासन जो है लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाई जा रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में काफी तबाही देखी जा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि डोडा के ठाठरी इलाके में कई जो मकान है वो ढह गए हैं इस बारिश और बाढ़ के कारण, और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। डोडा किश्तवाड़ जो राजमार्ग है फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, कई स्थानों पर पत्थर गिराए हैं और मलबा भी जमा कई स्थानों पर हुआ है।
0: मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी के बीच मौसम विज्ञान विभाग ने समुद्र में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया है।
2: मुंबई और महाराष्ट्र के कई सारे हिस्सों में बताया गया था कि आज ऑरेंज अलर्ट है और बहुत तेज बारिश होने वाली है। हालांकि बारिश इस वक्त ज्यादा नहीं हो रही है, काले काले बादल जरूर मंडरा रहे हैं, तेज हवाएं समुद्र किनारे खासतौर से चल रही हैं, और यही वजह है कि कोस्टल एरिया में आप देख लीजिए यहाँ पे पुलिस के लोग खड़े हैं और कोशिश इनकी यही है कि ज्यादा लोग समुद्र के किनारे नहीं जाएं। दरअसल हाई टाइड भी बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3.5 मीटर की हाई टाइड बताई जा रही है, लेकिन फिर भी ऑन ए प्रिकॉशनरी नोट लोगों को कहा गया था कि जैसे स्कूल जो मुंबई में खासतौर से बंद किए गए थे, और साथ ही कहा गया था लोगों को वर्क फ्रॉम होम एनकरेज करने के लिए। ऐसा ही कुछ हाल नासिक में भी देखने को मिला, जहां पर की वार्निंग दी गई थी कि तेज बरसात होगी, लेकिन बीच बीच में मध्यम बरसात हो रही है, ज्यादा बरसात नहीं हो रही है। ज्यादातर अगर IMD के जो इमेजेस अगर आप देखें तो ज्यादातर जो चक्र जो बादलों का जो क्लाउड है वो ज्यादा से ज्यादा गुजरात और मध्य प्रदेश की तरफ चला गया है, ऐसा दिख रहा है। और इस वक्त हालांकि IMD की वार्निंग है और कहा गया है कि तेज बरसात होगी।
0: हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज के साथ तेज हवाएं चलने और कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है।
3: आखिरकार उत्तर भारत में जुलाई के पहले हफ्ते मॉनसून दस्तक दे चुका है। चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए गए हैं। इस समय हम सुखना लेक पर हैं, जहां पर बारिश इस समय तो नहीं है, लेकिन बादल छाए हुए हैं और एक तपस, एक ह्यूमिडिटी जरूर मौसम में है। अगर यहां पर बाहर कोई भी निकलता है तो ह्यूमिडिटी जरूर परेशान करती है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से, चाहे वो हिमाचल है जिसमें 4 जिले मंडी, कांगड़ा, शिमला और सोलन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और वहीं पर बिलासपुर और सिरमौर में येलो अलर्ट है, बाकी जगह मौसम साफ रहने का अनुमान है। और पंजाब का मानसा हो, जहां पर एक कच्चा बांध नदी के किनारे टूटा, 300 एकड़ फसल खराब हुई पिछले दिनों में पहली बारिश से, और साथ साथ पठानकोट हो या वो शहरी इलाका हो जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या इस इक्का दुक्का बरसात से ही सामने आई है। हरियाणा में भी पंजाब के साथ जैसे ऑरेंज अलर्ट पंजाब में है, तो वैसे ही येलो अलर्ट हरियाणा में जारी किया गया है। 9 जुलाई का अनुमान है और अगले 2 से 3 दिन हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया गया है।
0: वहीं दिल्ली NCR में लंबे इंतजार के बाद ठंडी हवाओं और झमाझम बरसाती बूंदों के कारण तापमान में कमी आई है और मौसम सुहाना हो गया है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को इस बारिश ने बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र के पालघर से मोहम्मद हुसैन खान, मुंबई से विद्या, चंडीगढ़ से अमन भरद्वाज और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ अखनूर से

0: नीरजी भट्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम तक भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बारिश का क्या है हाल, देखिए हमारे संवाददाता अनमोल बाली की रिपोर्ट।
2: दिल्ली में मानसून की पहली झमाझम बारिश की शुरुआत हो गई है। समय मैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में खड़ा हूँ और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे इस समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घने बादल छाए हुए हैं और पानी झमाझम बरस रहा है, क्योंकि 2 जुलाई से देखा गया था मौसम विभाग का जो अनुमान था कि दिल्ली में मानसून दस्तक देगा, मानसून ने दस्तक दी और पर देखा गया कि बारिश नहीं हो रही थी, उमस भरे दिन थे। इसी बीच एक तरफ तो देश के कई राज्यों में जो बारिश है इस समय लोगों के लिए मुसीबत, पर वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बारिश एक उमस वाले दिनों में सौगात बनकर आई है। और वहीं बारिश को देखते हुए अभी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जो है इशू किया है, सुबह देखा गया कि ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया, फिर दिल्ली को देखते हुए रेड अलर्ट इशू किया गया। उसी बीच तस्वीरें आप मेरे साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस की देख रहे हैं, जहां लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं। एक तरफ तो उमस से राहत और वहीं दूसरी तरफ झमाझम बरसते हुए बादल। और वहीं मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि ट्रैफिक मूवमेंट भी अगर आप देखें बारिश के कारण, उस पर भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं उनकी जो रफ्तार है धीमी हो गई है। विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट इशू किया और साथ ही लोगों को चेतावनी दी है कि अगर आप किसी जर्जर इमारत के पास रहते हैं, जर्जर इमारत में रहते हैं, किसी जर्जर पेड़ के पास खड़े हैं, तो किसी सुरक्षित स्थान पर जाके खड़े हो जाएं या सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि आने वाले 1-2 दिन में देखा जाएगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे ही बारिश पड़ने का अनुमान है। और साथ ही अगर बात की जाए साउथ वेस्ट मानसून की, तो देखा जा रहा है कि मानसून ने अभी रफ्तार पकड़ी है और उत्तर भारत के कई राज्यों में देखा जाएगा कि 1-2 दिन तक जो मानसून के बादल हैं वो दस्तक देंगे, जहां देखा जा सकता है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई राज्यों में भी झमाझम बारिश होने के आसार पैदा हो सकते हैं। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।
1: दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: उत्तर प्रदेश के रहने वाले कन्हैया कुमार रोलर स्केट्स के जरिए अमरनाथ यात्रा पर निकले हैं। 20 साल के कन्हैया कुमार पिछले साल 29 अक्टूबर को अपने घर से रवाना हुए थे और बीते 10 महीनों में 14 राज्यों से होते हुए कश्मीर के काजीगुंड पहुंचे हैं। कन्हैया कुमार ने बताया कि उनकी ये अनोखी यात्रा भगवान शिव को समर्पित है और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देगी। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था की जमकर तारीफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली को 300 ई बसों की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने 11 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी की। दिल्ली के 2 लाख लोगों को एक पेड़ माँ के नाम से जोड़ा जाएगा। वहीं दिल्ली के 250 वार्ड और 70 विधानसभा क्षेत्र में जन भागीदारी के साथ पौधारोपण कराया जा रहा है। फेंसिंग के साथ ही पौधों की जियो टैगिंग कराई गई है ताकि निगरानी सुनिश्चित हो। अगर पौधों को किसी प्रकार नुकसान हो तो वहाँ नए सिरे से पौधे लगाए जा सकें। ओडिशा के पुरी में होने वाली सालाना जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पुलिस ने मेगा मॉक ड्रिल की। पुलिस ने पुरी रेलवे स्टेशन समेत कई महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया ताकि रथ यात्रा के दौरान जुटने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुरी में 16 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत होगी।
1: अब बात अमरावती की माँ अंबे देवी मंदिर की। महाराष्ट्र के चिखलदरा में पहाड़ियों के बीच मौजूद एक ऐसी गुफा है जहां पर आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ दिखाई देते हैं। करीब 400 साल पुराने मां अंबे देवी की इस गुफा मंदिर में सबसे खास बात यह है कि यहां साल के 365 दिन प्राकृतिक जलधारा लगातार बहती रहती है और शिवलिंग का निरंतर जलाभिषेक होता रहता है।

0: महाराष्ट्र के अमरावती जिले का चिखलदरा विदर्भ का एकमात्र हिल स्टेशन ही नहीं बल्कि महाभारत कालीन इतिहास प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम भी है। बादलों से ढकी ऊंची पहाड़ियाँ, हरियाली से ढकी घाटियाँ और इन्हीं चट्टानों के बीच सदियों पुरानी एक रहस्यमयी गुफा जहाँ प्रकृति खुद माँ शक्ति की आराधना करती दिखाई देती है। इस गुफा में प्रवेश करते ही भक्ति की अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। ये गुफा जितनी ऐतिहासिक है उसे लेकर पौराणिक मान्यताएं भी उतनी ही गहरी और पुरानी है। इस गुफा को पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम पड़ाव भी माना जाता है और यहाँ विराजमान माँ अम्बे की संगमरमर की ये आकर्षक प्रतिमा श्रद्धालुओं को पहली ही नजर में अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। दोनों हाथों में तलवार धारण किए माँ का दिव्य स्वरूप शक्ति साहस और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। खास बात ये है कि इस मंदिर में आदिवासी समाज गवली समुदाय सहित दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में माथा टेकने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना यहाँ पूरी होती है।
1: अमरावती के हिल स्टेशन चिखलदरा में एक जो है यहाँ पर गुफा है, वो गुफा बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी कि महाभारत काल से भी अधिक पुरानी ये गुफा। मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर ये गुफा है और इस गुफा के अंदर अब यहाँ जो है अम्बा देवी संस्थान के चलते जो है देवी माँ की मूर्ति लगभग 400 साल से भी अधिक समय से यहाँ पर उसको स्थापित किया गया है। और सबसे अहम बात यही है कि ये देवी माँ का जो स्वरूप है और जो मूर्ति है वो संगमरमर की मूर्ति है और माँ के इस रूप को आप देख सकते हो कितना सुंदर है माँ का रूप। लेकिन माँ के इसी गुफा में बैठी इस माँ के सामने जो है निरंतर 12 ही महीने जो है निरंतर इस गुफा में जो पानी है वो पानी निरंतर यहाँ पर गिरता है। माता रानी का ये दर्शन लेकर और इस गुफा में किस तरह का पानी निरंतर गिरता है, क्या देखा है तुमने?
2: हमने अभी देखे चंद्रपुर के हम आए, चंद्रपुर जिला वरोरा, हमने देखे चिखलदरा देखे, हमने पानी आप गिर रहा है, पूरा पानी बंद है अभी, पानी बरसात भी बंद है तो अभी पानी गिर रहा है, बोला 12 महीना पानी गिर रहा है।
1: okay. क्या मांगा माता से?
2: माता के माने माना हमें पूरी इच्छा पूरी करो।
0: इस गुफा की सबसे अनोखी पहचान है यहाँ बनने वाली प्राकृतिक जलधारा। विशाल चट्टानों के बीच से निकलने वाला निर्मल जल बिना रुके पूरे साल इसी तरह 2400 घंटे झरने की तरह बहता रहता है। यही जलधारा सीधे मंदिर परिसर में गिरती है और फिर स्वयं भगवान शिव के शिवलिंग का निरंतर जलाभिषेक करती है। श्रद्धालु इसे प्रकृति और परमात्मा के अद्भुत मिलन का जीवंत प्रमाण मानते हैं। सवाल है कि आखिर ये पानी कहाँ से आता है, तो इसका कोई निश्चित वैज्ञानिक उत्तर आज तक सामने नहीं आया है। हालांकि मंदिर के पुजारियों के अनुसार इसे चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित घटनाओं और अमरावती के सरकारी गजेटियर के अनुसार चिखलदरा वह क्षेत्र है जहां विराट राजा के साले और सेनापति कीचक का वध महाबली भीम ने किया था। युद्ध के बाद भीम ने अपने रक्त रंजित हाथ जिस कुंड में धोए वो आज भी भीम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसी घटना के कारण इस स्थान का नाम पहले कीचक धारा पड़ा जो समय के साथ अब भ्रंश होकर चिखलदरा बन गया है। महाभारत की अमर गाथा 400 वर्षों से जलती आस्था की लौ और 12 महीने निरंतर बहने वाली प्राकृतिक जलधारा चिखलदरा की ये पांडवकालीन गुफा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि इतिहास संस्कृति और प्रकृति का ऐसा अद्भुत संगम है जो हर आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक को रोमांच श्रद्धा और आध्यात्मिक अनुभूति से भर देता है। यही कारण है कि विदर्भ के इस अनोखे तीर्थ की पहचान लगातार बढ़ती जा रही है।
1: इसी बीच जो है यहाँ पर दूसरा भी मंदिर है जो भोलेनाथ का मंदिर है, वो भोलेनाथ के मंदिर पर इसी गुफा के अंदर आप देख सकते हो कि निरंतर जलाभिषेक जो है वो यहाँ पर इस जो पहाड़ी के अंदर से जो पानी आता है वो निरंतर इसे जलाभिषेक में यहाँ पर रूपांतर होता है। ऐसी ही ये जो गुफा है वो अपने आप में अलग है, और सबसे अहम बात यही है कि इस गुफा के ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है एक नदी का उगम है और उगम स्थान है। और सबसे दूसरी महत्व की बात है कि निरंतर यहाँ पर जो है वो देवी माँ के मंदिर के अंदर इस गुफा के अंदर निरंतर जो है पानी गिरता है, और यही जो यहाँ पर भक्तों की भक्ति है, आराधना है, साधना है, वो यहाँ पर बड़े भाव से यहाँ पर भक्त जो है अपनी आराधना साधना पूजा करने के लिए और अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं। अमरावती के चिखलदरा से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे।
0: न्यूज पत्र आगे है धनबाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपके जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धनबाजार। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 104 अंकों की गिरावट के साथ 78,180 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 31 अंकों की गिरावट के साथ 24,398 पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में सुस्ती और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होने की वजह से आज गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में गिरावट मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1400 रुपए गिरकर 149,250 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 200 रुपए लुढ़ककर 239,800 रुपए पर पहुंच गई। 7 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में मजबूती देखने को मिली। मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 48 पैसे मजबूत होकर 94.95 के स्तर पर बंद हुआ। न्यूज पत्र में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: पुणे में धूमधाम से निकली जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी, हरिनाम के जय घोष से गूंजा शहर, ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक वेशभूषा में दिखे लोग। गुजरात के कई इलाकों में जमकर बरस रहे बादल, सूरत नवसारी में भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। जकार्ता में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन, भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया में प्रेम और अपनापन मिला। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाभियान का शुभारंभ, नानकपुरा रिज में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण, गृह मंत्री अमित शाह ने की शुरुआत। न्यूज पत्र में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, उससे पहले हमें रुकना होगा यहां यानी कि वायरल चौक पर। यहां देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
4: घर के बड़े सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि संस्कारों की सबसे मजबूत नींव होते हैं। दादी की मुस्कान, उनका सलीके से तैयार होना और माथे पर पल्लू, दादी की मुस्कान, उनका सलीके से तैयार होना और माथे पर पल्लू रखना आज भी अपनापन और सम्मान का एहसास कराता है। ये कोई पुराना फैशन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की खूबसूरत पहचान है। बदलते दौर में भी ऐसे नजर दादी की मुस्कान, उनका सलीके से तैयार होना और माथे पर पल्लू रखना आज भी अपनापन और सम्मान का एहसास कराता है। ये कोई पुराना फैशन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की खूबसूरत पहचान है। बदलते दौर में भी ऐसे नज़ारे रिश्तों की गर्माहट और परंपराओं की मिठास को जीवंत रखते हैं। यही संस्कार हर घर को परिवार बनाते हैं। कला और हुनर किसी पहचान या मंच के मोहताज नहीं होते। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला सिर पर पानी से भरा मटका रखकर जिस संतुलन और आत्मविश्वास के साथ घूम रही है, वो हर किसी को हैरान कर रहा है। बिना एक बूंद पानी गिराए किया गया ये प्रदर्शन उसकी सालों की मेहनत और अभ्यास की कहानी कहता है। लोग महिला के टैलेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसले और एकजुटता से भी लड़े जाते हैं। वियतनाम युद्ध के दौरान जब बमबारी में पुल तबाह हो गए, तब सैनिकों को नदी पार कराने के लिए महिलाओं ने खुद पानी में उतरकर मानव पुल बना दिया। ये नजारा साहस, टीम वर्क और देशभक्ति का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। इतिहास गवाह है कि जिस देश के लोगों में ऐसा जज्बा हो उसे हराना किसी भी ताकत के लिए आसान नहीं होता। माँ की ममता अनमोल होती है लेकिन पिता का त्याग भी किसी मिसाल से कम नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक डिलीवरी बॉय अपनी छोटी बच्ची को सीने से बांध कर काम करता नजर आ रहा है। बच्चे की माँ अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन पिता ने उसकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाई है। रोजी रोटी और बेटी दोनों का फर्ज निभाता ये पिता लोगों का दिल जीत रहा है। बचपन में लंबे लंबे पैरों पर चलते कलाकारों को देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। तब समझ नहीं आता था कि आखिर वे इतनी ऊंचाई पर संतुलन कैसे बना लेते हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक कलाकार बड़ी सहजता से स्टिल्ट यानी लंबे खम्भों पर चढ़कर चलता नजर आ रहा है। सालों की मेहनत, अभ्यास और बेहतरीन संतुलन का ये प्रदर्शन लोगों को बचपन की यादों में भी ले जा रहा है।
5: न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हरिद्वार के एक बड़े मंदिर में चढ़ावा चोरी रोकने के लिए की गई व्यवस्था की। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला तूल पकड़ने के बाद देश के दूसरे बड़े मंदिरों को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। उत्तराखंड में हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में चढ़ावा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कुछ कदम उठाए गए। नए नियमों के तहत मंदिर में रहने वाले पुजारियों को बिना जेब वाले कुर्ते पहनकर ही परिसर में जाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे की निगरानी के लिए 7 सदस्यों की पर्यवेक्षण समिति का भी गठन किया गया है। मनसा देवी मंदिर प्रशासन का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य श्रद्धालुओं के विश्वास को मजबूत करना और चढ़ावे के प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता लाना है। अगर जांच के दौरान किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। समिति के सभी सदस्यों को इस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए शपथ भी दिलाई गई। मंदिर प्रशासन ने बताया कि जितना भी प्रसाद मंदिर का है, चाहे वो नारियल हो, फूल हो या फिर चुन्नी, रिसाइकल किसी भी प्रसाद का नहीं होगा। हरिद्वार में माँ गंगा नदी के किनारे बिल्वा पर्वत पर बसा मनसा देवी धाम हिंदुओं की आस्था से जुड़ा बड़ा मंदिर है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविन्द्रपुरी महाराज ने मंदिर परिसर में इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था सबसे ऊपर है, इसलिए चढ़ावे के प्रबंधन को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और व्यवस्थित बनाने के लिए ये पहल की गई है।
6: देवी निर्देश दिए हैं, जो भी ड्यूटी पे जाएगा वो बिना जेब के ड्यूटी पे जाएगा और 2-3 दिन में उनकी यूनिफॉर्म हम सी देंगे और बिना जेब के जो है वो ड्यूटी पे बैठेगा ताकि जेब में कोई वो चढ़ावा ना रख पाए। पूरा प्रयास किया जा रहा है और हमारा जो भी पैसा, जो मंदिर का पैसा है, उत्तराखंड का पैसा, उत्तराखंड के हित में लगे, हमारे बच्चों के हित में लगे, हमारी बहनों के हित में लगे, एजुकेशन पे लगे, बहुत अच्छी बात है।
5: जाहिर है अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। ऐसे में मनसा देवी मंदिर में उठाया गया ये कदम भक्तों की आस्था को और मजबूत करेगा। इस फैसले को लेकर हमने हरिद्वार में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
7: वैसे मंदिरों में पैसे की लूट को लेकर खबरें आ रही हैं, तो कल मेरी उनसे वार्ता भी इस चीज को लेकर, उन्होंने अपने मनसा देवी मंदिर में चारों तरफ से उन्होंने स्ट्रिक्टनेस करी है। उन्होंने जाकर सभी पुजारियों को वहां पे शपथ दिलवाई है और इन्होंने निर्णय लिया है कि मंदिर के अंदर जो पुजारी हैं वो बिना जेब के कुर्ते पहनेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई चीज जो है वो मंदिर से बाहर ना जा सके। और चढ़ावे का, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर लोग जो है वो श्रद्धा के साथ जो पैसा मंदिर में ट्रस्ट में दान करते हैं उस पैसे का सदुपयोग हो और वो पैसा किसी एक आदमी के हत्थे ना चढ़े, या कहना चाहिए थे कि वो पैसा जो है वो किसी के द्वारा लूटा ना जाए, उस चीज को लेकर जो उन्होंने निर्णय लिया है वो स्वागत हो गया है। मैं इसके लिए महाराज श्री रविंद्रपुरी जी को बहुत साधुवाद कर देता हूँ।
8: ये बहुत ही सराहनीय और अच्छा निर्णय है, मैं इसकी जितनी भी प्रशंसा करूँ वो कम है। और अखाड़ा परिषद के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री रविंद्रपुरी जी द्वारा ये जो कदम उठाया गया है ये बहुत ही बढ़िया है, ये और ये आस्था बनी रहे लोगों की, इसीलिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं और ये आगे भविष्य के लिए हमारे सनातन धर्म को और मजबूत करेंगे।
9: इस तरह के हम बहुत सारे मंदिरों में लगातार खबरें सुनते हुए आ रहे हैं कि कहीं पुजारी द्वारा जो है धन लूटा जा रहा है, तो उनका बहुत ये जो निर्णय है बहुत स्वागत योग्य है। और रविंद्रपुरी जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद भी देना चाहूंगा इस विषय के ऊपर, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है।
5: अमित रॉय की फिल्म ओ माय डॉग का टीजर हुआ रिलीज, इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
10: ओ माय गॉड फिल्म के डायरेक्टर अमित राय अब अपनी अगली फिल्म ओ माय डॉग लेकर आ रहे हैं। उनकी इस नई फिल्म का टीजर भी रिलीज कर दिया गया है जिसमें इंसान और डॉग के बीच बिना शर्त प्यार और वफादारी की कहानी की झलक दिखती है। टीजर की शुरुआत अमिताभ बच्चन के मशहूर गाने मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो से होती है। फिल्म ओ माय डॉग में पंकज त्रिपाठी, पवन मल्होत्रा, माही राय, राजेश कुमार, गीता अग्रवाल शर्मा, विजय मिश्रा, सुलक्षणा बरुआ नजर आएंगे। इसके अलावा इस फिल्म में 250 से ज्यादा डॉग्स भी आपको दिखाई देंगे। फिल्म ओ माय डॉग 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
11: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था।
10: इमरान हाशमी की फिल्म अबारापन 2 का पहला गाना रिलीज हो गया है। इस फिल्म के टीजर के बाद अब पहला गाना वो जुनून भी रिलीज हो चुका है। सईद कादरी के लिखे इस गाने को मिथुन ने कंपोज किया है जिसे सुबोध शर्मा ने अपनी आवाज दी है। ये गाना वही आवारापन वाला जादू क्रिएट कर रहा है। गाने में इमरान हाशमी और दिशा पाटनी का दर्द भी झलक रहा है। साल 2007 में आई फिल्म आवारापन का अगला पार्ट आवारापन 2 है। विशेष फिल्म्स और मुकेश भट्ट की बनाई गई आवारापन 2 को नितिन कक्कड़ ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में इमरान हाशमी, दिशा पाटनी के अलावा शबाना आजमी, सुविंदर विक्की, विजयंत कोहली समेत कई स्टार्स आपको नजर आएंगे। ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

रणबीर कपूर स्टारर माइथोलॉजिकल फिल्म रामायण के ट्रेलर रिलीज की तैयारी की चर्चा जोरों पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायण के मेकर्स फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने के लिए खास प्लानिंग कर रहे हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च इवेंट में इसका आयोजन हो सकता है। बताया जा रहा है कि 14 जुलाई को रामायण पार्ट 1 का ट्रेलर रिलीज किया जा सकता है। डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की 4000 करोड़ रुपए की मेगा बजट फिल्म रामायण को दो भागों में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगा, जबकि इसका दूसरा पार्ट 2027 की दिवाली पर आएगा। इस फिल्म में रणबीर के अलावा यश, सनी देओल, साई पल्लवी, अरुण गोविल जैसे कई कलाकार भी नजर आएंगे।

0: रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्लास्टिक के कचरे का निस्तारण एक बड़ी समस्या है, लेकिन उसी कचरे का सही प्रबंधन हो तो वो एक उपयोगी संसाधन भी बन सकता है। दिल्ली में यमुना किनारे बिखरे कचरे की सफाई कर एक युवा स्वच्छ यमुना मुहिम में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। खास बात यह है कि प्लास्टिक के कचरे से उपयोगी सामान भी बनाए जा रहे हैं।
1: दृढ़ संकल्प और अटूट इच्छा शक्ति के बल पर एक अकेला व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है। ऐसे ही एक युवा हैं चीनू क्वात्रा, जो अब दिल्ली में यमुना घाटों के आसपास बिखरे कचरे की सफाई में जुटे हुए हैं। चीनू अपनी टीम के साथ इसी तरह हर हफ्ते यमुना के घाटों की सफाई करते नजर आ जाते हैं। ये सभी यमुना घाटों और आसपास के इलाकों से प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करते हैं, ताकि ये कचरा नदी में जाकर पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। चीनू अपनी टीम के साथ मुंबई समेत दूसरे राज्यों में समंदर से लेकर नदियों, झीलों के आसपास से प्लास्टिक का कचरा समेटने का काम करते आ रहे हैं, और अब दिल्ली में यमुना को साफ रखने की मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं। खास बात यह है कि चीनू इस कचरे को कहीं और ले जाकर यूं ही नहीं छोड़ देते, बल्कि इसी प्लास्टिक के कचरे से उपयोगी सामान भी बनाते हैं।
2: तो पिछले 9 सालों से हम मुंबई में 4 बीचेस क्लीन कर रहे हैं, एंड वो बीचेस से जो कचरा निकलता है वो हमेशा रिजेक्ट हुआ है। वो बोला गया है कि डंपिंग आउट में जाना चाहिए या उसे जला देना चाहिए। पिछले 3 साल से एक पायलट प्रोजेक्ट रन किया एंड इट इज़ सुपर सक्सेसफुल नाउ। अभी तक हमने 600 बेंचेस, स्कूल बेंचेस, इस प्लास्टिक से जो प्लास्टिक हमें जिसे बोल जला दिया जाता है या डंपिंग यार्ड में फेंक दिया जाता है कलेक्शन के बाद, उस प्लास्टिक से हम वहाँ पे स्कूल बेंच बना रहे हैं। एंड सेम चीज़ यहाँ पे लेके आया, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट मुंबई, दिल्ली या कोई और शहर। ये प्लास्टिक हमारे रिवर्स को, हमारे ओशंस को, हमारे माउंटेन्स को बर्बाद कर रहा है। सो इसको हम सिर्फ डेस्टिनेशन चेंज नहीं करना है, यहाँ से प्लास्टिक उठा लिया, आज क्लीनअप हो गया, इसको उठा के वहाँ रख दिया। हमें इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि ये शीट है, ये शीट 4x4 की शीट बनती है, इससे स्कूल बेंच बनते हैं, इससे दरवाजे बनते हैं, इससे टेबल बनता है, इससे जो फर्नीचर, इन शॉर्ट ये प्लाईवुड को रिप्लेस कर रहा है। प्लाईवुड को रिप्लेस करना मतलब पेड़ों को बचाना।
1: मुंबई के चीनू क्वात्रा गैर सरकारी संस्था चलाते हैं और अपनी टीम के साथ प्लास्टिक का कचरा जमा करते हैं, जिन्हें पहले अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से छांटा जाता है, फिर रिसाइकलिंग प्रोसेस से वही प्लास्टिक का कचरा जिसे बेकार और नुकसानदायक माना जाता है वो उपयोगी सामानों में बदल जाता है। मसलन मजबूत और टिकाऊ बेंच, प्लांटर्स, गार्डन फर्नीचर, डस्टबिन और दूसरे कई काम की चीजें उन कचरों से बनाई जाती हैं।
3: कचरा जो है उसको इस तरीके से बनाया जाता है पहले, और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है वो नहीं दिखने वाली है। ये आपको प्लांटर दिख जाएगा, चाहे फिर वो स्कूल बेंचेस की बात की जाए, स्कूल टेबल्स की बात की जाए, तो कुछ इस तरीके का जो नया रूप है वो ये प्लास्टिक का कचरा लेता है। लेकिन दिल्ली की जो सफाई है, यमुना की जो सफाई की हम बात कर रहे हैं, उस पर लगातार जो है सरकार काम कर रही है, और आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी को साफ करने की जो मशीन है वो लगातार यहाँ पर रहती है, यहाँ पर चलती हुई जो है वो नजर आती है।
1: यमुना सफाई को लेकर दिल्ली सरकार का अभियान भी जारी है, इसको लेकर जन भागीदारी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन सब के बीच चीनू क्वात्रा भी अपनी टीम के साथ योगदान दे रहे हैं, जिसकी तारीफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी की है, और इसे पर्यावरण संरक्षण और सर्कुलर इकोनॉमी का बेहतरीन उदाहरण करार दिया है।
2: मैंने सिर्फ एक रील डाली थी जहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा था सीएम जी, रेखा गुप्ता जी, वी वांट योर सपोर्ट, एंड उस रील पे 7 आवर्स के अंदर अंदर रेखा मैम कमेंटेड, एंड मुझे उसके 48 घंटे बाद मिलने बुला लिया था एट द क्लीन अप। तो संडे को मैं उनसे जब मिला तो उनको मैंने ये प्रेजेंट किए, कुछ लेटर्स प्रेजेंट किए, प्रपोजल प्रेजेंट किया। हमें दिल्ली सरकार से कुछ नहीं चाहिए, वी डोंट नीड मनी, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें एक जगह चाहिए जहाँ पे वो जगह हमें दे सके और ताकि हम उसको ईजिली काम कर सके गवर्नमेंट के साथ मिलके। एंड इनफैक्ट रेखा मैम ने तो उसको अप्रिशिएट भी किया, आई होप इन दिस कमिंग वीक और कमिंग डेज हमें यहीं कहीं पे भी घाट के पास एक पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए मिल जाए, एंड देन सारे घाटों के पास हम ऐसे ही जगह बना के उसको प्रोसेस कर सकते हैं, और जो भी यहाँ से प्लास्टिक निकल रहा है कम से कम उसका हम डेस्टिनेशन वापस कोई बर्निंग या डंपिंग ग्राउंड में नहीं डालते।
1: जाहिर है चीनू क्वात्रा की यमुना किनारे की जा रही ये पहल सिर्फ कचरा हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को ये संदेश भी देती है कि अगर प्लास्टिक का सही प्रबंधन हो तो वही कचरा समाज के लिए एक उपयोगी संसाधन बन सकता है।
3: अगर हम चीनू क्वात्रा की बात करें जो प्लास्टिक जितना भी यमुना तट से वो उठा रहे, यमुना किनारे से वो उठा रहे और उसको रिसाइकल कर रहा है, जब एक शख्स इस तरीके की चीज़ें कर सकता है तो अगर इसमें हर किसी का योगदान रहे तो ये बदलाव वाकई में एक बड़ा हो सकता है, जो आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो समाधान का रूप ले सकती है।
1: चीनू क्वात्रा पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर तो काम कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ इनकी मंशा बेहतर शिक्षा से लेकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी है। इसी उद्देश्य से सरकारी स्कूलों में प्लास्टिक के कचरे से बनाई गई बेंच भी मुहैया कराई गई है।
2: हम स्कूल बेंचेस बना रहे हैं, वो पहला फोकस रहता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को मिले ताकि उनको बैठक उनकी बेटर हो। ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए तरफ जा रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट द सर्कल। इससे क्या हो रहा है, इससे 10 जन को नौकरी मिली अभी तक। अगर सोचो ये स्केल अप होगा तो कितने जनों को नौकरी मिलेगी, एंड देन उतने ही बच्चों को स्कूल बेंच मिल रहे हैं, तो एजुकेशन उनको कंफर्टेबल एजुकेशन हो रहा है। सो दिस इज नॉट ओनली क्लीन अप कि कचरा उठाया और खत्म कर दिया, हम एक सर्कल जिसे बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, और बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मार्ट सिटीज कैसे बन सकती जब हम कुछ ज्यादा स्मार्ट बने और उसके ऊपर काम करें।
1: पर्यावरण विशेषज्ञ भी मानते हैं कि रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल का मॉडल ही प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है, और चीनू क्वात्रा यमुना किनारे से प्लास्टिक कचरे को समेटकर ऐसा ही करने की कोशिश में जुटे हैं। दिल्ली से मनीषा लंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: क्यूबा इन दिनों आर्थिक संकट, ईंधन की कमी और बिजली कटौती जैसी मुश्किलों से जूझ रहा है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच राजधानी हवाना के नेशनल जू से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने जू कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी। चार बंगाल टाइगर के बच्चों का जन्म यहां हुआ है, जिनमें एक बेहद दुर्लभ सफेद बंगाल टाइगर भी शामिल है। देखिए एक खास रिपोर्ट।
4: छोटे छोटे कदम, मासूम शरारतें और हर तरफ बिखरी जिंदगी की नई उम्मीद। हवाना के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में चार बंगाल टाइगर के बच्चों का जन्म सिर्फ एक खुशखबरी नहीं बल्कि मुश्किल दौर में उम्मीद की नई किरण बनकर आया है। जन्म के बाद सभी शावकों का वजन किया जा रहा है, उनकी सेहत की बारीकी से निगरानी रखी जा रही है ताकि उनकी बेहतर परवरिश सुनिश्चित की जा सके।
5: Tratamos de garantizar los estándares de bienestar animal para la especie, el tigre bengala, con lo más alto posible en dependencia de las condiciones que tengamos.
4: कभी एक दूसरे के पीछे भागते, कभी उछलते कूदते, तो कभी अपनी माँ के इर्द गिर्द मस्ती करते। इन नन्हे शावकों की हर अदा जू कर्मचारियों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। उनके लिए ये सिर्फ चार नए मेहमान नहीं बल्कि मुश्किल दौर में उम्मीद की नई मुस्कान है। करीब 44 साल से जू में काम कर रहे एंजल पैची कॉरिडो के लिए ये पल किसी सपने के सच होने जैसा है। अपने लंबे करियर में दूसरी बार उन्होंने सफेद बंगाल टाइगर का जन्म देखा है। ज़ेब्रा, दरियाई घोड़े, अफ्रीकन सवाना और अब इन नन्हे टाइगर शावकों की किलकारियां। मुश्किल हालात के बावजूद क्यूबा का ये जू एक संदेश दे रहा है कि अगर जज्बा और समर्पण मजबूत हो तो उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। चार नए मेहमानों की आमद ने न सिर्फ एक दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण की उम्मीद बढ़ाई है बल्कि ये भी साबित किया है कि चुनौतियों के बीच भी जिंदगी अपना रास्ता बना ही लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
7: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say Open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
0: टीम इंडिया के व्यस्त शेड्यूल को लेकर बटी कोचिंग की जिम्मेदारी, खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
11: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर है। टीम इंडिया के लिहाज से ये बेहद अहम मुकाबला है। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। ऐसे में तीसरे मैच में जीत दर्ज कर भारत के पास इंग्लैंड से सीरीज में बराबरी करने का मौका है। इसके साथ ही भारत की सीरीज जीतने की उम्मीदें भी बनी रहेंगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण को बीसीसीआई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्मण जिम्बाब्वे टूर के साथ साथ एशियन गेम्स 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। टीम इंडिया के व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल की वजह से गौतम गंभीर और लक्ष्मण के बीच कोचिंग की जिम्मेदारी बांटने का फैसला किया गया है। लक्ष्मण को अनुभवी सपोर्ट स्टाफ भी मिलेगा। पूर्व भारतीय बल्लेबाज ऋषिकेश कानिटकर टीम के बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी गेंदबाजी कोच की भूमिका निभाएंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्हें हर तरफ से बधाई मिल रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी उन्हें सोशल मीडिया के जरिए खास अंदाज में बधाई दी। बीसीसीआई ने अपने पोस्ट में धोनी के इंटरनेशनल 538 मैचों 17,266 रन और विकेट के पीछे के योगदान का जिक्र किया है। साथ ही तीन बड़े आईसीसी खिताब T20 वर्ल्ड कप 2007, वनडे वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीतने वाला कप्तान बताते हुए उन्हें खेल का एक बड़ा आइकन करार दिया है।
0: तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज के लिए।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
12: कौन सा खाद्य पदार्थ चंद्रमा को बेहतर कर देता है, मन को शांत कर देता है? कौन सा खाद्य पदार्थ आपको शारीरिक रूप से मजबूती देता है? और कौन सा खाद्य पदार्थ आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को तेज कर देता है? अनाज का और मसालों का आपके भाग्य से, आपके जीवन से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
13: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
0: कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports, so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium, and start listening now.
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: पुणे में धूमधाम से निकली जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी, हरिनाम के जयघोष से गूंजा शहर, ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक वेशभूषा में दिखे लोग। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन, काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना। गुजरात के कई इलाकों में जमकर बरस रहे हैं बदरा, सूरत नवसारी में भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया में प्रेम और अपनापन मिला। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाभियान का शुभारंभ, नानकपुरा रिज में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण, गृहमंत्री अमित शाह ने शुरुआत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
3: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, स्वागत है हम आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम बात कर रहे हैं बाबा बर्फानी की और उनके दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की। यात्रा शुरू होने के बाद चार दिनों में ही शिव भक्तों का आंकड़ा 65,000 के पार अब जा चुका है। हालांकि इस बीच बाबा बर्फानी अंतर ध्यान हो चुके हैं, बर्फ से बने शिवलिंग का आकार 90% अब तक कम हो चुका है, लेकिन बाबा के भक्तों की आस्था अपरंपार है, उनके उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आज आपको बेस कैंप से पवित्र गुफा की ओर जा रहे भक्तों का जोश भी दिखाएंगे, इसके साथ ही एक ऐसे शिव भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जो स्केटिंग से बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए पहुंचा है। अमरनाथ के रास्ते में तमाम सुविधाओं के अलावा ट्रेन और मेडिकल सुविधा कैसी है, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। ऐसे सफाई कर्मियों से भी आपको बात कराने जा रहे हैं जो दिन रात काम करते हुए यात्रा मार्ग को साफ सुथरा करने में लगातार जुटे हुए हैं। बर्फीले पहाड़, कठिन चढ़ाई और ठंडी हवाओं के बीच अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा है। देश भर से पहुंचे भक्त पैदल, घोड़े, खच्चर और पालकी के जरिए पवित्र गुफा तक पहुंच रहे हैं। दर्शन के बाद भक्त भाव विभोर होकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, जबकि रेलवे, स्वास्थ्य और प्रशासन की बेहतर व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ा रही है। इस बीच स्केटिंग करते बाबा बर्फानी का दर्शन करने पहुंचे कन्हैया कुमार की तस्वीरों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। रिपोर्ट देखिए।

0: जब विश्वास अटूट हो तो रास्ते की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, तेज ठंडी हवाएं और लंबा सफर, इन सब के बावजूद श्रद्धालुओं के कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। किसी के चेहरे पर थकान नहीं, किसी के मन में डर नहीं, बस बाबा बर्फानी तक पहुंचने की ललक है। पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। बुजुर्ग हों, युवा हों, महिलाएं हों या बच्चे, हर कोई अपने अपने तरीके से इस कठिन चढ़ाई को पूरा कर रहा है। कोई पैदल आगे बढ़ रहा है, कोई घोड़े और खच्चर की मदद ले रहा है, तो कुछ श्रद्धालु पालकी से सफर तय कर रहे हैं। सभी के चेहरे पर एक ही भाव दिखाई देता है, महादेव से मिलने की खुशी।
1: मैं मनोज गुप्ता, मैं यूपी बुलंदशहर से आया हूँ। सबसे बड़ी बात की जो देखा यहाँ पर, मतलब कल्पना से बाहर है वो चीजें। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि जो हमारे जो सेना के जवान हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, जम्मू कश्मीर, देखा बड़ा अच्छा मतलब लगा। एक बार तो मैं कम से कम पूरे सभी अपने सनातनी भाइयों से एक बार ये अपील करना चाहूंगा कि जीवन में कम से कम एक बार जो आके लगा है मुझे कि एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जरूर आए।
0: गुफा तक पहुंचने के बाद माहौल और भी भावुक हो जाता है। जैसे ही भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं, वैसे ही लंबे इंतजार की खुशी आंखों में साफ झलकती है। कई लोग हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं, कुछ ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं, तो कई परिवार एक साथ भगवान शिव का स्मरण करते हैं। यहीं आकर महीनों की तैयारी और कठिन सफर सफल महसूस होता है। इस पूरी यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सुरक्षा बल लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और दूसरे सुरक्षा जवान रास्ते के हर महत्वपूर्ण स्थान पर तैनात हैं। पहाड़ों के बीच बने संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बचाव दल, चिकित्सा टीमें और सहायता केंद्र भी तैयार हैं। यही वजह है कि श्रद्धालु पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दौरान सुविधा बढ़ाने के लिए प्रशासन ने इस बार कई नई व्यवस्थाएं भी की हैं। भारतीय रेलवे ने जम्मू से श्रीनगर के बीच विशेष ट्रेन सेवाएं शुरू की हैं। इसका उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना और यात्रियों को आरामदायक सफर देना है। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं ताकि हर व्यक्ति को जरूरी जानकारी समय पर मिल सके। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, विश्राम स्थल और सहायता केंद्र भी सक्रिय हैं।
2: अच्छी सुविधा है, रेलवे की बहुत ही अच्छी सुविधा है, और ये जो वंदे भारत डायरेक्ट जम्मू से कर दिया गया है उससे और ज़्यादा सुविधा बढ़ गई है, जो कि डायरेक्ट हम लोग श्रीनगर पहुंच जा रहे हैं बिना किसी थकान के। हम लोग सुबह उतरे हैं और वहाँ से डायरेक्ट हम लोग यहाँ आ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुगम यात्रा रहा। आगे
3: हम लोग यहाँ से वंदे भारत से आए, बहुत ही सुविधा सुंदर थी। जो हमारे पहले यात्रीगण हैं उन्होंने बताया कि जब वो पहले ट्रैवल करते थे तो बहुत ही कठिनाइयाँ आती थी। तचुड़ अभी वंदे भारत के कारण एसी और होने के कारण जो उन लोगों ने बताया, जो उन लोगों को झेलना पड़ रहा था, तचुड़ हम लोगों को नहीं झेलना पड़ा।
4: वंदे भारत ट्रेन प्लस जो सुविधाएं हैं, जो सिक्योरिटी है, उसको देख के अभी फील हो रहा है कि कभी कोई भी यहाँ पे डर नहीं है, आराम से आ सकते हैं और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी अरेंजमेंट और रहना चाहिए और इसमें कोई 1% की भी गुंजाइश नहीं की और कुछ करें, काफ़ी बेटर है।
5: और आने वाले दिनों में मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगा, सभी लोग आइए, भोले बाबा के दर्शन कीजिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेफ हो,

0: महीनों में 14 राज्यों का सफर स्केटिंग करते हुए पूरा किया। अब उनका अंतिम लक्ष्य बाबा बर्फानी के दर्शन करना है।
1: राम 12 ज्योतिर्लिंग ऑल इंडिया राइड कर रहा हूँ, और जो कि मैंने 9 ज्योतिर्लिंग, 2 धाम, और ये 14 नंबर स्टेट है। और जो कि अभी मैं जा रहा हूँ अमरनाथ के लिए, और जो कि मेरा पहला ज्योतिर्लिंग था महाकाल, दूसरा ओंकारेश्वर, उसके बाद त्रिंबकेश्वर, घृष्णेश्वर और भीमा शंकर, रामेश्वरम, श्रीशैलम और जगन्नाथपुरी, उसके बाद मैं फिर देवघर आया, उसके बाद फिर काशी विश्वनाथ, और मैं उधर से निकलते श्री पूरी तीर्थ स्थलों को मैं दर्शन कर रहा हूँ, और उसके बाद जा रहा हूँ जो कि अभी अमरनाथ की यात्रा के लिए। और 29 अक्टूबर 2025 आज मेरे घर से निकले हुए 10 महीने हो गया, और मैं कंटिन्यू 10 महीने से मैं इन सड़कों में स्केटिंग चला रहा हूँ। गाड़ी घोड़े पे मेरा नियम नहीं है, मैं क्यों, मैं पैदल निकला हूँ। मैं घर पे जब निकला था मैं संकल्प लिया था कि मैं गाड़ी घोड़ा पे नहीं बैठेंगे।
2: और तो स्केटिंग करते हैं कितना कठिन है ये?
1: बहुत कठिन है, बहुत डेंजर, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सब तब हो जाता है।
0: जम्मू कश्मीर में किए गए सुरक्षा इंतजामों की खुलकर उन्होंने सराहना की। उनका कहना था कि सभी मार्ग पर सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। साथ ही कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी और सहयोग ने उनके इस सफर को और यादगार बनाया हुआ है।
1: उनके लिए संदेश सही है, आइए यात्रा करिए, बहुत सेफ्टी है इधर, क्योंकि आर्मी लोग सर जो है बहुत इज्जत दे रहे हैं और बहुत सेफ्टी है, पूरी सेफ्टी के साथ, और हर एक 10 कदम पे आप लोग को सर जवान खड़े मिलेंगे रोड पे, और बहुत सेफ्टी है, पूरी सेफ्टी के साथ यात्रा हो रहा है, कोई खतरा नहीं है इधर।
2: तो ये मुझे पता है कि आप जो इस पे चल रहे हैं?
1: हाँ, इस पे ही,
2: मतलब कंटिन्यू चल रहे हैं। गर्मी है?
1: कंटिन्यू गर्मी है, सबका मैं आदत हो गया है अपना।
0: ये यात्रा सिर्फ पहाड़ों तक पहुंचने का नाम नहीं, ये विश्वास की उस ताकत का एहसास है जो हर चुनौती को छोटा बना देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

देखिए, अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। रामन के चंद्रकूट यात्री निवास में ठहरने, भोजन और चिकित्सा की व्यवस्थाएं की गई हैं। सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन मेडिकल सहायता भी उपलब्ध करा रही है। यात्रा के पहले कुछ दिनों में करीब 65,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जो पिछले साल से ज्यादा है। दोनों यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, एम्बुलेंस, डॉक्टर और सहायता दल लगातार तैनात है ताकि हर यात्री सुरक्षित सफर कर सके।

0: जम्मू से ये सड़क जो पहलगाम या बालथल के लिए जाती है, उस पर इन दिनों गाड़ियों का सिलसिला बंद नहीं होता। नेशनल हाईवे 44 पर मौजूद है रामबन, जहाँ चंद्रकोट में एक बड़ा यात्री निवास है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्री यही ठहरते हैं और लंगर भी खाते हैं। ये इलाका संवेदनशील माना जाता है, इसीलिए सुरक्षा के तो यहाँ पुख्ता इंतजाम है ही। CRPF की 84 बटालियन यहाँ यात्रियों को और लंगर लगाने वालों को मेडिकल सुविधा भी मुहैया करा रही है।
1: दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम जितेंद्र बोर है। हम यहाँ चंद्रकोट में लंगर लगाया दिल्ली वृंदावन के नाम से। यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छी है, CRPF बहुत अच्छा हमारा सपोर्ट कर रही है, बहुत हमारी हेल्प कर रहे हैं। सुरक्षा के अंदर हमारे किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ की स्वस्थता यहाँ पे फैसिलिटी पूरी अच्छी है। बाकी हर चीज की जो यहाँ का प्रशासन हर चीज की फैसिलिटी हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ का जितना भी आर्मी जितनी हमारी CRPF लगी हुई है वो हमारी बहुत हेल्प करती है, हमारे को किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आने दे रहे। यहाँ पे लंगर वालों को बहुत सुविधा अच्छी मिल रही है, हम लोगों को किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आने दे रहे और बहुत ही अच्छा से अच्छा प्रबंधन यहाँ पे किया जा रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे CRPF जवान जो हमारे लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी रखते हैं, सिक्योरिटी के साथ साथ हमारे को मेडिकल मेडिसिन के हर चीज की फैसिलिटी उपलब्ध करके रखते हैं एट ए टाइम। किसी यात्री को किसी को भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए बहुत जल्द से जल्द मेडिसिन का उपलब्ध करते हैं, ट्रीटमेंट बहुत जल्द करते हैं, किसी को किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते।
0: अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा है और उसी हिसाब से प्रशासन सुविधाओं को लेकर संजीदा भी है। हर संभव मदद करने में सुरक्षा बल भी पीछे नहीं है।
2: आपको पता है CRP तो

0: प्रोटेक्शन का मेन रोल पे हम इधर तैनात है। उसके साथ साथ हमारा चिकित्सा विभाग 84 बटालियन सीआरपीएफ का इधर चंद्रकोट लंगर पॉइंट पे 2 तारीख से तैनात है। हम यात्री का कोई भी दिक्कत परेशानी हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, उसका पूरा मेडिसिन और ये पूरा हम इधर दे रहा है।
1: यहाँ मेडिकल कैंप में जरूरी दवाएं हैं, एम्बुलेंस की सुविधा है, जरा भी परेशानी हो तो इलाज के लिए हर वक्त डॉक्टर मौजूद है। यात्रा पर निकले लोग इस सुविधा का लाभ भी उठा रहे हैं।
2: मैं आपके यहाँ चौथी बार अमरनाथ यात्रा पर आ रहा हूँ। मुझे यहाँ पे जब भी आता हूँ बहुत अच्छी सुविधा आर्मी द्वारा, बीएसएफ, सीआरपीएफ द्वारा बहुत अच्छी सुविधा हर बार मिलती है, और भंडारों में भी बहुत अच्छी सुविधा हर बार मिलती है। चिकित्सा सुविधा आरपीएफ की तरफ से भी दी जा रही है, बहुत अच्छी।
3: और यहाँ पर चंद्रकोट में बहुत अच्छी सुविधा है, और कोई भी सोशल मीडिया के बहकावे में ना आए, और यहाँ पर हमारे ये सीआरपीएफ के जवान और मिलिट्री के बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा जा रहा है। पीछे मेडिकल वैन है हमारे यहाँ, कोई भी समस्या हो तो ये हमारे साथ खड़े हैं हरदम। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यात्रा करने आए लेकिन धैर्य बना के रखें और जल्दबाजी ना करें, सबको बाबा दर्शन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और
1: रामबन से आगे रहा पहलगाम और बालटाल दोनों बेस कैंप तक जाती है, और दोनों ही रूटों पर यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 3 जुलाई को यात्रा की शुरुआत हुई थी और अभी तक करीब 65,000 लोग पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल की तुलना में ये तादाद 20% ज्यादा है। हालांकि इसी दौरान बाबा बर्फानी का आकार घटकर 1 फीट हो गया। 23 मई को बीएसएफ के जवानों ने जो तस्वीर जारी की थी उसमें शिवलिंग का आकार करीब 7 फीट था। प्रथम पूजा के दिन भी ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा थी, पर 6 जुलाई को सामने आई तस्वीर में हिमलिंग 10% ही नजर आ रहा है। इसे पहाड़ी इलाकों में ग्लोबल वार्मिंग का असर और मौसम में आए बदलाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
4: जम्मू कश्मीर के या हिमाचल प्रदेश या एडजॉइनिंग उत्तराखंड, ये सारा जो हिमालयन बेल्ट है, यहाँ पे भी जो है टेम्परेचर्स सिग्निफिकेंटली राइज हो गए हैं पिछले लगभग कहीं दहाइयों से। तो गर्मियां जब भी खासकर समर्स में ऐसे बढ़ जाते हैं तो ग्लेशियर्स का रिसीशन जो है काफी ज्यादा इंक्रीजिंगली, मतलब बहुत रैपिड रेट से जो है ग्लेशियर्स जो है रिसीट कर रहे हैं। तो ओवर द टाइम लास्ट कई सालों से ऐसे बर्फ भी नहीं पड़ रहा है, विंटर्स में जो है बर्फ भी जो है काफी कम जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उस कारण से भी जो है आपका ग्लेशियर जो है काफी एक अलार्मिंग रेट पे जो है श्रिंक हो रहे हैं, नॉट ओनली इन जम्मू कश्मीर, बाकी जो आपके हिमालयन रीजन है वहां पे भी जो है रिसीट हो रहे हैं। तो गर्मी का इम्पैक्ट तो है ही, साथ साथ में आपका जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म है उसमें भी कहीं ना कहीं चेंज है। यहाँ पे भी जो है आपका जो बर्फ है, जो रेजिडुअल आपके ग्लेशियर्स हैं या बाकी जो छोटे छोटे एवलांच के रेजिडुअल पार्ट्स हैं, ये भी जो है अब गर्मियों में खासकर जुलाई अगस्त के महीने में पिघल के लगभग खत्म हो जाते।
1: आपको बता दें कि पवित्र गुफा का हिम शिवलिंग एक प्राकृतिक आइस स्टेलेगमाइट है, जिसका आकार हर साल मौसम, तापमान और पानी की उपलब्धता के मुताबिक ही अलग अलग होता है। जब बाबा बर्फानी अंधराधुन हो गए हैं तो उनके दोबारा आकार देने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इससे लाखों शिव भक्तों के जोश पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इस साल करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, और मौसम साथ देता रहा तो अमरनाथ जाने का उत्साह यूं ही बना रहेगा। वादी में मौसम के मिजाज का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, हाँ, पर यात्रा को पवित्रता के साथ साथ स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की कोशिश पूरी है। यात्रा मार्गों और बेस कैंपों में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए पॉलीथीन, थर्मोकोल और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके लिए ग्रामीण स्वच्छता विभाग व्यापक सफाई अभियान चला रहा है। विभाग के 300 से ज्यादा कर्मचारी कचरा निस्तारण में निरंतर लगे हैं। ये कर्मचारी हर तरह के कचरे को इकट्ठा कर निर्धारित कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं, और वहां से कचरा रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है ताकि पूरे मार्ग पर स्वच्छता बनी रहे।
5: जो निकलता है श्री अमरनाथ जी यात्रा में पूरे एक्सिस में, वो हम पूरा कलेक्ट करके अपने प्लांट पर लाते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर उसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि हमारे पास 2 टाइप के वेस्ट यहाँ आते हैं, एक तो ड्राई वेस्ट आता है, एक वेट वेस्ट आता है। तो जो ड्राई वेस्ट आता है तो उसका हम यहाँ पर प्रॉपर सेग्रीगेशन करते हैं, बोटल्स अलग निकाल कर, कार्डबोर्ड अलग निकालते हैं, पेपर अलग निकालते हैं। जो हमारा पूरा ट्रैक है जो वाई जंक्शन से लेकर अपर केव तक, होली केव तक स्टार्ट होता है, तो इसमें हमें 318 बंदे रखे हैं, जो कि पूरा कचरा जमा करके, पहाड़ों से जमा करके पूरा हम इसको प्रोसेस कर लेते हैं।
1: इस अभियान का मकसद यात्रा मार्ग और बेस कैंपों को साफ सुथरा रखते हुए हिमालयी पर्यावरण का संरक्षण करना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा के आगाज से पहले सभी तीर्थ यात्रियों से इस पावन यात्रा के दौरान 5 संकल्पों का पालन करने के लिए कहा था, जिसमें प्रमुख है स्वच्छता, जिसकी जिम्मेदारी हर भारतवासी की है।
6: सैकड़ों की तादाद में सफाई कर्मचारी अमरनाथ गुफा के हर हिस्से और हर पड़ाव और हर रास्ते से कचरा एकजुट करके यहाँ जमा करते हैं, उसके बाद उसकी सेग्रीगेशन होती है और साथ ही साथ उसकी फिर पैकिंग होती है और रिसाइकलिंग के लिए इस पूरे कचरे को अलग अलग फैक्ट्रीज में भेजा जाता है और जो लिक्विड वेस्ट है उसको यहीं पर खाद में तब्दील भी किया जाता है। इससे न सिर्फ अमरनाथ यात्रा स्वच्छ बन रही है बल्कि साथ ही साथ पर्यावरण के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए ये बहुत बड़ा प्रयास माना जा रहा है। गुड न्यूज टुडे के लिए तारिक लोन के साथ अशरफ वानी।
7: अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जवान दिन रात मुस्तैद हैं, लेकिन साथ ही तीर्थयात्रियों की सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बेस कैंप पर बने अस्पताल स्थानीय लोगों के साथ ही यात्रियों के लिए भी वरदान साबित हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।

हिमालय के ये ऊंचे पहाड़ इन दिनों शिव भक्ति के रंग से सराबोर हैं। पूरे देश से भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। नौजवानों का जोश यात्रा का उत्साह बढ़ा रहा है। बुजुर्गों का अनुभव इस यात्रा को सुलभ बना रहा है। बाबा अमरनाथ के दर्शन की ये यात्रा आसान नहीं होती। यहाँ कदम कदम पर चुनौतियाँ हैं, लेकिन भक्त की शक्ति के आगे सारी चुनौतियाँ घुटने टेक देती हैं। इस बार अमरनाथ यात्रियों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं।

0: बाबा अमरनाथ की गुफा समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर कई बार बुजुर्गों और कुछ नौजवानों को सेहत से जुड़ी समस्या भी होने लगती है। इस समस्या से निपटने के लिए ही प्रशासन ने बेस कैंप पर अस्पतालों का निर्माण कराया है। अमरनाथ यात्रा बालटाल और पहलगाम रूट से जारी है। ऐसे में दोनों रास्तों पर बने ये बेस अस्पताल लोगों को सेहत की सौगात देने के काम में जुटे हैं। बालटाल में बना ये बेस अस्पताल अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। ये बेस अस्पताल तमाम आधुनिक तकनीक से लैस हैं और इनमें पर्याप्त संख्या में बेड भी मौजूद हैं। इन अस्पतालों में हर तरह की जांच के साथ मरीजों को जरूरी दवाएं भी मुफ्त दी जा रही हैं।
1: यहाँ पे घोड़े से गिर जाते हैं और किसी को चोट लग जाती है, किसी को डंडा लग गया, किसी को घोड़े उनके ऊपर गिर गया, इस तरह से हुआ, और किसी का हार्ट अटैक हुआ, और किसी को ऊंचाई पे चढ़ के जो दिक्कत आती है वो भी हुआ। तो सब चीज़ों के इलाज के लिए हमारे पास सुविधा है, और ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी के आगे अल्ट्रासाउंड भी मशीन बहुत बढ़िया मशीन है हमारी, आपको सामने दिख रहा है, बहुत बढ़िया मशीन है और इस पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिख जाती हैं। तो हमारे पास जैसे रोज़ काफ़ी मरीज आते हैं और उन सब का हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, और इसी तरह से एक्सरे भी होता है, और हम एक्सरेज पे क्लाविकल फ्रैक्चर मिला है, और गॉल ब्लैडर की पत्थरी मिली है, गॉल स्टोन्स मिले हैं।
2: हमारी हर जगह पे कैंपस हैं, मेडिकल कैंपस हर जगह पे हैं, और गुफा तक, मोहली केव तक पूरे कैंपस हैं मेडिकल के, हर जगह अच्छी फैसिलिटीज है। ये तो मेन बेस है, यहाँ पे तो पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट है हर चीज़ का। वेल क्वालिफाइड डॉक्टर आते हैं, बहुत बाहर बाहर से आते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल से आते हैं, यात्रा ड्यूटी लगती है उनकी, सब बहुत अच्छे से आते हैं, सबका बहुत अच्छे से देखना। हाँ, टेस्ट वगैरह सारा कुछ यहाँ पूरा फैसिलिटी अवेलेबल है,
3: हर चीज़ की सुविधाएँ दी हुई हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, हर व्यक्ति के लिए फ्री है यहाँ पे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग बोलते हैं कुछ यहाँ पे, जो बंदा आता है वो देख के आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है, बाहर से इतनी इतनी हमारे दुनिया आती है।
4: यहाँ के लोग इतना ध्यान रख रहे हैं सब एक दूसरे के लिए, मतलब कि बहुत अच्छे से बताते भी हैं, और दवाई वगैरह सब कुछ अच्छे हैं, अच्छी फैसिलिटी कर रखी है, वैसे कोई मुश्किल काम नहीं है, यात्रा भी इनकी लगभग सफल ही रहेगी लोगों की, सब कुछ अच्छे से मैनेजमेंट कर रखा है सरकार ने।
0: सिर्फ बालटाल रूट पर ही नहीं, पहलगाम रास्ते पर चंदनवाड़ी में भी बेस अस्पताल अमरनाथ यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने में जुटा है। चंदनवाड़ी का अस्पताल भी आधुनिक सुविधाओं से भरपूर है, यहाँ मरीजों को 2400 घंटे मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान कई बार यात्रियों को बीच रास्ते में ही मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ती है। यात्रा रूट पर ये जिम्मेदारी CRPF के ये जवान उठा रहे हैं। कोशिश यही है कि अमरनाथ यात्रा पर आए हर श्रद्धालु को बाबा बर्फानी के दर्शन बिना किसी दिक्कत के हों, और ये यात्रा उनके लिए यादगार बन जाए। पहलगाम से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: खास कार्यक्रम में इतने ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।

0: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
1: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune In has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
4: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: पुणे में धूमधाम से निकली जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी, हरि नाम के जयघोष से गूंजा शहर, ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक वेशभूषा में दिखे लोग। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन, काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना। गुजरात के कई इलाकों में जमकर बरस रहे हैं बदरा, सूरत, नवसारी में भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया में प्रेम और अपनापन मिला। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ, नानकपुर रिज में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण, गृहमंत्री अमित शाह ने की शुरुआत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: दिल्ली में आज जमकर बरसे बदरा, कल भी आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए जारी कर दिया रेड अलर्ट, अगले दो दिनों तक तेज बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। बारिश ने उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत दी, ठंडी हवाओं और बरसती बूंदों से तापमान गिरा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी जमकर बरसे बदरा, गर्मी से राहत के बीच कुछ धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार। गुरुग्राम में भी जोरदार बारिश ने दी दस्तक, बरसात के बाद कई इलाकों में जलजमाव। कुल्लू की ऊंची पहाड़ियों में फटा बादल, उफान पर आई खड्डा, दो पुलियां बही, फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं। तेज बहाव की चपेट में आने से खड्ड पर बनी दो पुलियां बह गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के थाथरी कस्बे में भारी बारिश और बादल फटने के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन। डोडा किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर आया मलबा, जिससे वाहनों की आवाजाही हुई ठप। दक्षिण भारत में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कन्नूर भारी बारिश के बीच डूबा वायथूर पुल। सिक्किम में लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 10 बाधित, सिलीगुड़ी को सिक्किम से जोड़ने वाली अहम सड़क हुई बाधित। केरल के वायनाड में मीनाक्षी ब्रिज के पास टनल प्रोजेक्ट साइट पर बारिश के बाद भूस्खलन। पुलिस के साथ फायर एंड रेस्क्यू सर्विस और एनडीआरएफ की टीमों ने युद्ध स्तर पर किया काम शुरू। रेस्क्यू मिशन पर केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन लगातार नजर बनाए हुए हैं, बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। विशाखापट्टनम तट पर उसके पास फंसे एक मछुआरे के लिए भारतीय नौसेना बनी देवदूत, हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला। सूरत में भारी बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में घुस गया पानी, पुलिस ने बीमार बुजुर्ग महिला समेत 200 लोगों का रेस्क्यू किया। पानी के तेज बहाव के बीच देवदूत बने रेस्क्यू टीम के जवान, लोगों को कमर तक भरे पानी से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए। मॉनसून की जबरदस्त बारिश के बाद उफान पर तापी नदी, उकाई बांध में बढ़ा जलस्तर। जलगांव में भारी बारिश की वजह से हथनूर डैम से बड़ी मात्रा में छोड़ा गया पानी। पूरे महाराष्ट्र में मॉनसून की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, मुंबई में भारी बारिश से वसई विरार रेल सेवाएं बाधित। डल लेक में पर्यटकों की रौनक बढ़ी, श्रीनगर में पर्यटन सीजन में पकड़ी रफ्तार। शिकारा शहर का लुत्फ उठाते हुए पर्यटकों से झील हुई गुलजार, वहीं ये पर्यटन कारोबारियों से चेहरे खिले। देश विदेश से पहुंचे सैलानी झील की खूबसूरती का ले रहे हैं आनंद, डल लेक बनी पर्यटकों की पहली पसंद। डल लेक में बढ़ती चहल पहल ने पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया। शिकारा और से यादगार बन रही है पर्यटन। शिकारा और स्थानीय कारोबार से जुड़े लोगों में उत्साह, पर्यटकों की लगातार बढ़ रही है आमद। इसरो ने अपने नाम की एक और उपलब्धि हासिल की। अपने अगले एलवीएम 3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल फ्लाइट एक्सेप्टेंस किया। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया टेस्ट। इसरो का सबसे भारी रॉकेट है एलवीएम 3। ये अपने ऊपरी हिस्से को पावर देने के लिए करता है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल। अमित शाह की मौजूदगी में नर्मदा परियोजना विवाद पर चार राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के बीच सुलझा दशकों पुराना मुद्दा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का किया अनावरण। इंडोनेशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय समुदाय को किया संबोधित। बोले, इंडोनेशिया से जो प्रेम मिला है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इस दौरान भारत के पारंपरिक लोक नृत्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के संसद में संबोधन किया। बोले, इंडोनेशिया की संसद में आना मेरे लिए सौभाग्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया, ऑपरेशनल सिंदूर में इस्तेमाल हुआ था। वाराणसी दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीकाल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। वाराणसी विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई मीटिंग। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और रेड इलाकों को ग्रीन बेल्ट करने की हो गई शुरुआत। मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान के तहत राष्ट्रपति अंगरक्षक दल परिसर में वृक्षारोपण। रक्षाबंधन पर दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा। दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना शुरू करने की तैयारी में। भारतीय रेलवे ने लखनऊ से मैजेस्टिक का साउदर्न मैसूर टू कोयंबटूर हवाई टूर पैकेज किया लॉन्च। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में पूर्णिया ने रच दिया इतिहास। पूरे देश में हासिल किया पहला पायदान। देश के सभी 112 जिलों को पछाड़ते हुए पूर्णिया ने हासिल किया है पहला पायदान। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में मारी बाजी। नीति आयोग की इस डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ने हासिल किया दूसरा पायदान। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन ने श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल कैंप लगाया। चंद्रकूट में दी जा रही है 24 घंटे मुफ्त स्वास्थ्य मदद। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की सेहत का सीआरपीएफ लगा रही है खास ख्याल। मोबाइल हेल्थ कैंप से यात्रियों को तुरंत मिल रही है मदद। पुणे के तेहू से पंढरपुर के लिए रवाना हुई संत तुकाराम महाराज की पालकी, हरिनाम के जयघोष। पूरे शान से निकली जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की 341वीं पालकी प्रस्थान की यात्रा। मुख्य मंदिर परिसर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। टाल और मृदंग की थाप पर वारकरी भक्ति में डूबे नजर आए। आज रात पालकी इनामदार बाड़ा में विश्राम करेगी। महाराष्ट्र की सबसे पवित्र और भव्य आषाढ़ी वारी परंपरा का एक अहम हिस्सा है जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी। पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए एक अनोखी यात्रा पर निकला उत्तर प्रदेश का 20 साल का युवक। का रोलर स्केट्स से पूरा करके सफर किया है। पिछले साल अक्टूबर में कन्हैया कुमार ने शुरू कर दी थी यात्रा। 10 महीनों में 14 राज्यों में स्केटिंग की। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की जबरदस्त तैयारियां। पवित्र यात्रा से पहले पुलिस ने जवानों की मेगा मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल में स्पेशल टेक्टिकल यूनिट, बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, फायर और इमरजेंसी सर्विस जैसी एजेंसियां हुई शामिल। 16 जुलाई से शुरू होगी भव्य रथ यात्रा। देश विदेश से लाखों लोग होंगे शामिल। अमरनाथ यात्रा का आज पांचवा दिन, बाबा बर्फान के दर्शन करने के लिए बालटाल और पहलगाम बेस कैंप में जुटे तीर्थयात्री। अमरनाथ यात्रा के लिए देश विदेश से पहुंच रहे हैं लगातार तीर्थयात्री, हर हर महादेव के जयकारों की गूंज। अमरनाथ यात्रा में पिछले साल के मुकाबले इस साल श्रद्धालुओं की तादाद में इजाफा। तीर्थयात्रियों की बढ़ती तादाद के कारण 9 जुलाई तक सभी रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुक, बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों से अपनी यात्रा कुछ दिन आगे बढ़ाने की अपील। इस साल 57 दिनों तक चलने जा रही अमरनाथ यात्रा, अब तक 4,00,000 श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। हरिद्वार के कनखल में श्री गुरु गोरखनाथ अलख अखाड़ा परिषद ने 11 संतों का पट्टाभिषेक किया। फूलों की बारिश के बीच हुआ समारोह, मां मंडलेश्वर को चादर विधि से सम्मानित किया गया। नए महामंडलेश्वरों से सनातन धर्म, गायों की रक्षा और लोगों की मदद करने के लिए कहा गया। श्री गुरु गोरखनाथ अलख अखाड़ा परिषद ने 51 महामंडलेश्वर बनाने का संकल्प लिया है। अखाड़ा परिषद बाकी 10 महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी में जुटा हुआ, ये काम कुंभ से पहले पूरा करने की योजना। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम की गई लॉन्च, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच होगा आयोजन। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने पोस्ट करके भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमन प्रो लीग में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अपने परिवार के साथ गोल्डन टेम्पल में पहुंचे मत्ता टेका। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शुमार, महेंद्र सिंह धोनी मना रहे हैं अपना 45वां बर्थडे, रांची में धूमधाम से मना। इस खास मौके पर हैप्पी बर्थडे माही के नारों से माहौल हुआ उत्साहपूर्ण। लौट आया इमरान हाशमी का जादू, फिल्म आवारापन 2 का पहला गाना वे जुनून रिलीज। ओ माय गॉड 2 के डायरेक्टर अमित राय की अगली फिल्म है ओ माय डॉग। रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण के ट्रेलर रिलीज की तारीख हो गई सामने, 18 जुलाई को ट्रेलर लॉन्च योजना। फिल्मेकर बोनी कपूर की बड़ी बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने रचाई शादी। मीरा राजपूत कपूर ने शादी की सालगिरह पर पति शाहिद कपूर के लिए लिखी प्यारी विश। चीन के चिड़ियाघर में पांडा मैंग कैनकैन का 3रा जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, छोटे पांडा के लिए फल और सब्जियों का केक तैयार। 3 साल के पांडा मैंग कैनकैन की बर्थडे पार्टी में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, कैमरों में कैद किया। चीन में पांडा के जन्मदिन पर अनोखा फल सब्जी वाला केक तैयार किया गया, केक पर कद्दू की गाड़ी और खरबूजे पर फूलों की टोकरी सजाई गई। गर्मी से बचाने के लिए पांडा की पार्टी में बर्फ का इंतजाम किया गया, चिड़ियाघर में खास सजावट। पांडा मैंग कैनकैन बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, कीपरों ने उसके जन्मदिन पर प्यार और शुभकामनाएं दी। एजी बॉट के रोबोट का दमदार डेमो फैक्ट्री से लेकर शॉपिंग और लॉजिस्टिक्स तक के सभी काम कर रहा है। एजी बॉट का ग्लोबल मिशन, कंपनी का लक्ष्य इस साल कुल कमाई में 30-40% हिस्सा विदेशी बाजारों से। दुनिया में बढ़ा एजी बॉट का नेटवर्क, यूरोप, अमेरिका, एशिया, पैसिफिक, मिडल ईस्ट, जापान और दक्षिण कोरिया तक एजी बॉट की पहुंच। लेबर की कमी का समाधान बने हैं रोबोट, कंपनी का कहना है कि विदेशी बाजारों में रोबोट मैन पावर की कमी दूर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की कमी। विदेशी ग्राहक खरीद रहे हैं रोबोट, एजी बॉट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक रोबोट को सीधे खरीद सकते हैं। चिली के एरियल ओसिस ने बचपन के स्टिकर एल्बम के सपने को किया साकार। 35 वर्षीय एरियल ओसिस ने सिर्फ 2 हफ्तों में अपनी कार पर 373 स्टिकर्स लगवाए। एरियल ने इंस्टाग्राम के जरिए लोगों को भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की, कमेंट करने वालों को उन्होंने स्टिकर्स उपहार में दिए। एरियल के सरों की पहल को दुनिया भर से मिल रहा समर्थन, कई देशों के लोग उन्हें अपनी कार लेकर आने की निमंत्रण दे रहे हैं। स्पीकर बनाने वाली कंपनी ने भी एरियल ओसिस के इस खास अभियान का किया समर्थन। पैम्पलोना में सैन फोमिन फेस्टिवल की हो गई शुरुआत, 10,000 से ज्यादा लोगों ने की शिरकत। पटाखों की आवाज के साथ स्पेन के मशहूर रॉफ फेस्टिवल की हो गई शुरुआत, सफेद कपड़ों और लाल स्कार्फ में नजर आए। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के उपन्यास से मशहूर हुआ यह फेस्टिवल। आने वाले दिनों में हजारों लोग बैलों के साथ दौड़ में लेंगे हिस्सा, यह परंपरा रोमांच और विवादों में रहती है। सैन फर्मिन के उद्घाटन में लोगों ने जमकर उत्सव मनाया, पानी की बौछारों के बीच हुआ जश्न। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक शख्स 140 मीटर ऊंचे पुल टावर पर चढ़ गया, उसने वहां कार्टून पक्षी का निर्माण किया। पुल पर चढ़े शख्स ने नीचे आने से पहले अनोखी डिमांड की, ड्रोन से पीनट बटर सैंडविच पहुंचाने की मांग की। इस घटना के कारण मेलबर्न के बोल्टे ब्रिज की एक लेन बंद करनी पड़ी। पुल पर शख्स ने बनाया पैम द बोर्ड जैसा चित्र। पुल पर बने बड़े कार्टून पक्षी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। शहर में इस तरह की घटना की चर्चा खूब तेजी से फैली।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: कौन सा खाद्य पदार्थ चंद्रमा को बेहतर कर देता है, मन को शांत कर देता है? कौन सा खाद्य पदार्थ आपको शारीरिक रूप से मजबूती देता है? और कौन सा खाद्य पदार्थ आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को तेज कर देता है? अनाज का और मसालों का आपके भाग्य से, आपके जीवन से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Jack FM now playing what we want commercial free on TuneIn Premium.
5: What you got for me, Jack?
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
6: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ के ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर या फिर कुछ और पर्यटन स्थलों को देखने के लिए सैलानी पहुंचे, तो आप अपने आसपास उन खूबसूरत जगहों की तस्वीरें गुड न्यूज टुडे को भेजिए, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को दिखा पाएं। हमारे दर्शक भी बड़े ही उत्साह के साथ अपनी जगहों की खूबसूरत वीडियोस भेज रहे हैं। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के एक अनछुए पर्यटन स्थल चूड़धार पीक पर, जहां पर अध्यात्म का एहसास है तो ट्रैकिंग का एडवेंचर भी है। यहाँ की खूबसूरती को हमें हमारे एक दर्शक ने कुछ तस्वीरें के जरिए भेजा है, देखिए।

आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे ट्रैक पर जो एक आध्यात्मिक ट्रैक है। इसका नाम है चूरधार पीक और इस शिखर तक पहुंचने के लिए आपको मेरी तरह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर आना होगा, जहां नोहराधार से होते हुए घने जंगलों, पहाड़ी रास्तों और खूबसूरत घाटियों को पार करते हुए हम इस चूरधार शिखर तक पहुंचते हैं। कहते हैं कि चूरधार सिरमौर में शिवालिक माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और ये पीक हिमाचल उत्तराखंड के लोगों के आराध्य देव शिरगुल महाराज की तपोभूमि भी है। इसलिए यहाँ बने भोलेनाथ के मंदिर का भी आस्थावानों के बीच काफी महत्व रहा है। जब आप तकरीबन 8 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई कर यहाँ पहुँचते हैं तो नेचर अपने कई रंगों के साथ आपका स्वागत करेगी। कहीं बुरान से लदे पौधे तो कहीं सर्दियों में बर्फ का दीदार भी होगा। नेचुरल ब्यूटी से भरे चूरधारा पीक का नजारा न केवल अध्यात्म का एहसास देता आया है बल्कि तन मन को भी सुकून देता है। तो अगर आप देश के अनछुए पर्यटक स्थलों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरी नजर में चूरधार पीक द बेस्ट प्लेस है।

0: देखिए, जी एन टी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि विदेश दौरों की जगह अगर अपने ही देश की जगहों को प्रमोट करेंगे तो हमारे देश का टूरिज्म और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। बस आपको इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है, कैमरा उठाइए, व्लॉग बनाइए, हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: कौन सा खाद्य पदार्थ चंद्रमा को बेहतर कर देता है, मन को शांत कर देता है? कौन सा खाद्य पदार्थ आपको शारीरिक रूप से मजबूती देता है? और कौन सा खाद्य पदार्थ आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को तेज कर देता है? अनाज का और मसालों का आपके भाग्य से, आपके जीवन से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks. Breakout anthems. And chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's K-pop to start listening now.
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: पुणे में धूमधाम से निकली जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी, हरिनाम के जयघोष से गूंजा शहर, ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक वेशभूषा में दिखे लोग। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन, काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना। गुजरात के कई इलाकों में जमकर बरस रहे हैं बदरा, सूरत नवसारी में भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया में प्रेम और अपनापन मिला। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाभियान का शुभारंभ, नानकपुरा रिज में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण, गृहमंत्री अमित शाह ने शुरुआत की।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के गुड लक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अनाज और मसालों के बारे में, किस तरह से अनाज और मसाले जो हैं वो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपका भाग्य बदल सकते हैं, उस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आप अच्छा मेडिटेशन करना चाहते हैं, अगर आप ध्यान में मन लगाना चाहते हैं, तो तीखा भोजन और मसालेदार भोजन, तीखा और गरिष्ठ भोजन आपको नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए।
0: और आइए अब जान लेते हैं 8 जुलाई 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 12:21 तक, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र शाम के 4 बजे तक, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4 बजे तक, राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए जानते हैं कि किस तरह भोजन ग्रहों से और हमारी किस्मत से जुड़ा हुआ है।
1: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आपका भोजन, आपका खाद्य पदार्थ और खाए जाने वाले मसाले आपके जीवन पर कैसा असर डालते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भोजन का ग्रहों से और किस्मत से क्या संबंध है। देखिए, हर खाद्य पदार्थ, चावल, दाल, गेहूं, आटा अपने रंग और गुणों के कारण अलग अलग ग्रहों से संबंध रखता है। जिस तरह का खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, उससे संबंधित ग्रह को जीवन में शक्ति मिलती है। इसलिए जीवन में जिस ग्रह को मजबूत करना है, उससे संबंधित भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। अलग अलग ग्रह के अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं, अलग अलग ग्रह के फूड आइटम्स अलग अलग हैं। तो जब आप वो भोजन करते हैं, तो जिस ग्रह से आपका भोजन संबंधित है, उस ग्रह से संबंधित होने की वजह से उस ग्रह को ताकत मिलती है। और ये भी देखा गया है कि जो ग्रह कुंडली में प्रबल होता है, उसकी तरह का भोजन और उसकी तरह का आहार आप ग्रहण करते हैं।
0: और आइए अब जान लेते हैं चावल के बारे में कि चावल किन ग्रहों से संबंध रखता है और उसके खाने के हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं।
1: देखिए, अगर हम चावल की बात करें, तो चावल चंद्रमा से संबंध रखने वाला खाद्य पदार्थ है। चावल का संबंध होता है चंद्रमा के साथ। चावल शरीर और मन को शीतल बनाए रखता है। अगर कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करना हो, चंद्रमा को बेहतर करना हो, तो चावल खाना लाभकारी होता है। जिन लोगों को ज्यादा क्रोध आता हो या तनाव पालने की आदत हो, उन्हें चावल का सेवन करना चाहिए। लेकिन अगर चंद्रमा राहु या केतु से पीड़ित है, तो तनाव की वजह से आपको डायबिटीज हो सकती है। ऐसी स्थिति में चावल कम खाना चाहिए।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, मेहनत से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग हैं। धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में अशांति से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का लाभ हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए जान लेते हैं कि दाल किस ग्रह से संबंध रखती है और उसे खाने से हमें किस तरह से लाभ हो सकता है, क्या क्या लाभ हैं जो हमें मिल सकते हैं।
1: चावल के बाद बात करते हैं अब दाल की। देखिए, अलग अलग रंग की दालें अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती हैं। जैसे पीली दाल अरहर की या चने की दाल बृहस्पति से संबंध रखती है। लाल दाल मंगल से, काली दाल शनि से, हरी दाल बुध से संबंध रखती है। हालांकि टोटली अगर आप देखें, कुल मिलाकर अगर आप देखें, तो दाल बृहस्पति से संबंध रखती है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए अरहर की दाल खाइए, चने की दाल खाइए, मंगल के लिए मसूर की दाल खाइए, शनि के लिए काली उड़द की दाल खाइए और बुध के लिए हरी मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए। जिनकी कुंडलियों में शनि खराब है उनको दाल के सेवन से बचना चाहिए। कारण ये है कि दाल ज्यादा खाने से गैस्ट्रिक ट्रबल या गैस की तकलीफें होती हैं।

0: आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्रा में सावधानी रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी, संतान की चिंता दूर होगी, लेकिन चोट चपेट से सावधान रहिएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और गुडलक में अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी किसका लेने वाले हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न रीशु त्यागी ने हमें लिखा है, मेरठ से लिखती हैं। 8 अगस्त 2004 का जन्म है, 9:30 रात को, मेरठ उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं MBA की पढ़ाई कर रही हूँ, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, HR में, किस क्षेत्र में MBA करूँ और क्या आगे मैं गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कर सकती हूँ। रिशु, आपकी कुंडली के हिसाब से फाइनेंस में MBA करना सबसे बेहतर है, उसके बाद आप HR में विचार कर सकती हैं। और आप MBA करके फाइनेंस में या बैंकिंग में करियर बनाइए, गवर्नमेंट जॉब की तरफ मत जाइए, वहां पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपकी कुंडली के हिसाब से आपका करियर अच्छा दिखाई दे रहा है और करियर में आप सफलता भी पाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह एक बार, शाम को एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें अपने सवाल ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानेंगे पंडित जी से ही कि आज का दूसरा सवाल वो किसका लेंगे।
0: जी,

विक्की मिश्रा जी ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 17 जुलाई 2009, 9:10 प्रातः, हावड़ा पश्चिम बंगाल। ये पूछ रही हैं कि मेरा बेटा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, क्या 2027 में मेरा बेटा नीट क्वालिफाई कर पाएगा और मेडिकल के क्षेत्र में उसका करियर कैसा रहेगा। पिंकी जी, आपके पुत्र की कुंडली में मेडिकल में जाने की संभावनाएं अच्छी हैं और आपका बेटा मेडिकल में अच्छी सफलता पाएगा, लेकिन

0: कम लगती है, ज्यादा संभावना है कि 2028 में आपका बेटा सेलेक्ट होगा। आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह के समय 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें और अपने बेटे के नाम से हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं तो काफी बेहतर होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि गेहूं किस ग्रह से संबंध रखता है और उसे खाने से हमें किस तरह से लाभ हो सकता है उसके बारे में।
0: अब जानते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं का संबंध सूर्य नामक ग्रह के साथ होता है, चाहे वो गेहूं का आटा हो या दलिया हो या गेहूं की बनी कोई भी चीज हो, उसका संबंध होता है सूर्य के साथ। गेहूं की बनी चीजें खाने से सूर्य मजबूत होता है। जिनको जीवन में शारीरिक शक्ति चाहिए, मान सम्मान चाहिए, उनको गेहूं की बनी हुई चीजें खानी चाहिए। गेहूं की बनी हुई रोटियां नियमित रूप से खाने पर पारिवारिक रिश्ते बेहतर हो जाते हैं और गेहूं की रोटियों का अगर आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इनको दोपहर में खाना ज्यादा बेहतर होगा। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है और आप सूर्य को प्रबल करना चाहते हैं तो आपको गेहूं की रोटियां, गेहूं का दलिया खाना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य को शक्ति मिलेगी।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में अशांति हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65% जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उतना ही साथ देगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि अलग अलग तरह के मसाले किन ग्रहों से संबंध रखते हैं और इसे खाने से हमें किस तरह से लाभ हो सकता है।
0: अब बात करते हैं मसालों की। देखिए, अलग अलग तरह के मसाले अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मसालों का संबंध होता है शनि और राहु के साथ। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आपको हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। जीरा, लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची, इनका प्रयोग करने से शनि ताकतवर होता है, शनि को शक्ति मिलती है। मसाले में लाल मिर्च का प्रयोग करने से मंगल मजबूत हो जाता है। हरी इलायची और हरी सौंफ का प्रयोग करने से बुध मजबूत होता है। हींग, अजवाइन और जीरे का प्रयोग करने से राहु की समस्याएं दूर होती हैं। कुंडली में अगर राहु से संबंधित कोई दोष है तो मसालों का प्रयोग कम करना चाहिए। और जैसा कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि अगर आप एकाग्रता चाहते हैं, ध्यान में मन लगाना चाहते हैं, तो स्पाइसी खाना, बहुत ज्यादा मसालेदार खाने से बचना चाहिए।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, नया काम शुरू हो सकता है, पारिवारिक तनाव हो सकता है। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और गुड लक में अब जानेंगे आज का तीसरा सवाल, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न दीप माला जी ने हमें लिखा है, बूंदी राजस्थान से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं, 9 नवंबर 2016 का जन्म है, 10:23 रात को अजमेर राजस्थान। ये कह रही हैं कि मेरे बच्चे की आंखों में स्क्विंट की समस्या है और डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके लिए सर्जरी करानी पड़ेगी, तो क्या बेटे के स्क्विंट की समस्या के लिए सर्जरी कराना उचित रहेगा। देखिए दीपमाला जी, आपके पुत्र के स्क्विंट की समस्या को दूर करने के लिए आप सर्जरी करा सकती हैं इस साल के आखिरी में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2026 में। अगर आप अपने बेटे की सर्जरी कराएं तो आपके बेटे के लिए बेहतर होगा। आप अपने बेटे को बोलिए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए, 8-10 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, लाल धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनके गले में पहनाना बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी अंतिम प्रश्न सीमा शर्मा जी ने मुरादाबाद से हमें लिखा है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं, उनकी जन्म की तारीख है 3 अक्टूबर 1993, 1:40 दोपहर में, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे की नौकरी में बार बार उतार चढ़ाव आता है, नौकरी और जीवन में मेरा बेटा कब तक स्थिर हो पाएगा और मेरे बेटे का भविष्य कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सीमा जी, अभी तो आपका पुत्र नौकरी कर रहा है लेकिन भविष्य में ऐसा दिखाई देता है कि 2028 के बाद ये अपना कोई काम करेंगे, अपना कोई व्यापार करेंगे। अगले साल इनके विवाह की संभावना बनती है और उसके बाद से इनका जीवन ज्यादा बेहतर होगा। आप अपने बेटे को एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको धारण करवाइए और इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, इनको लाभ होगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 8 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, करियर के निर्णयों में सावधानी रखिए, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी और अविवाहितों के विवाह के योग भी बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर शनि मंत्र का जप करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानेंगे पंडित जी से कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा करने के दौरान अगर प्यास लग जाए तो पानी पी सकते हैं। देखिए, पूजा के दौरान अपने बगल में किसी साफ बर्तन में, लोटे में या गिलास में पानी भरकर रखिए। अगर पूजा के दौरान प्यास लगे तो कुछ घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन जब मंत्र जप समाप्त कर लें उसके अगले 10 मिनट तक जल पीने से आपको बचना चाहिए।
1: और चलिए अब जान लेते हैं 8 जुलाई 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 8 जुलाई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो आइए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुडलक राशि है तुला। इस समय अपने करियर और स्थान में आप परिवर्तन कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, लेकिन लिखा पढ़ी के मामले में, बोलने और वाणी के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, अगर कोई व्यक्ति जीवन में आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको परेशान कर रहा है और आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो क्या करेंगे? शाम को स्नान करके दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए। अपने सामने एक मोमबत्ती जला लीजिए और जिस व्यक्ति से पीछा छुड़ाना हो उसका चेहरा सोचिए, उसका ध्यान करिए और इसके बाद मोमबत्ती को एक फूंक में बुझा दीजिए। ये प्रयोग लगातार 11 दिन तक करिए। जो अनवांटेड व्यक्ति है आपके जीवन में, वो आपके जीवन से हट जाएगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बात करेंगे फायर फाइटर्स की, जो जान पर खेलकर लोगों की जिंदगी बचाते हैं। अब इन फायर फाइटर्स को एक ऐसे फायर फाइटिंग सूट का तोहफा मिलने जा रहा है। इस हाईटेक सूट को पहनकर वो आग के बीच जाकर लोगों को बचा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है।

0: भीषण आग में इमारत के भीतर प्रवेश कर लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। कई बार जान पर भी बनाती है, लेकिन अब दमकल कर्मियों के लिए मेड इन इंडिया फायर एंट्री सूट की सौगात मिलने वाली है, जिससे वो आग में फंसे लोगों की जान तो बचा ही सकते हैं, उनकी अपनी सुरक्षा भी दांव पर नहीं लगेगी। दमकल कर्मियों के लिए नित्रा नाम की स्वदेशी कंपनी ने ये अत्याधुनिक स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग सूट तैयार किया है।
1: ऐसी ही एक तकनीक को ढूंढ निकाला है नित्रा यानी कि नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन ने। उन्होंने एक ऐसा सूट तैयार किया है जिसको पहनकर हमारे फायर फाइटर्स के जवान सीधे आग के अंदर घुस सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं और लोगों का रेस्क्यू कर सकते हैं।
0: आग की लपटों के बीच से लोगों को बचाने का काम किसी भी फायर फाइटर के लिए जोखिम भरा होता है। ऐसे हालात में उनकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाला स्पेशलाइज्ड फायर एंट्री सूट अब भारत में ही विकसित कर लिया गया है। कपड़ा मंत्रालय के राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत इसे तैयार किया गया है।
2: हमें ये प्रोजेक्ट मिला था कि क्यों ना ऐसा सूट डेवलप किया जाए इंडिया में जो अभी तक नहीं बना है, जिससे कि हमारे जो फायर फाइटर्स हैं या जो भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले हैं या डिफेंस में काम करने वाले हैं, जिनका रोजमर्रा ऐसी दुर्घटनाओं से सामना होता है, उनको कैसे बचाया जा सके, तो उसी को देखते हुए हमने ये सूट डेवलप किया। और इंडिया में ये पहला सूट है जो यहाँ पर बनाया गया है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सूट को पहनकर फायर फाइटर सूट्स आग के अंदर जा सकता है, 2000 डिग्री सेल्सियस तक भी ये आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उस आग में करीब 120 सेकंड तक आराम से रह सकता है और वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करके वापस आ सकता है।
0: करीब 2.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस अत्याधुनिक फायर एंट्री सूट को तैयार किया गया। सूट में लगभग 7 अलग अलग प्रकार की सुरक्षा लेयर्स दी गई है जो गर्मी और आंख पर पड़ने वाले असर को कम करने में प्रभावी है। लेयर्स में ग्लास फाइबर समेत कई विशेष फाइबर्स का उपयोग किया गया है। इसके अलावा सूट की बाहरी सतह पर एल्युमिनियम कोटिंग की गई है जो बाहरी गर्मी को शरीर तक पहुंचने से रोकता है। यानी यह सूट 2000 डिग्री तक के तापमान पर फायर फाइटर्स को 120 सेकंड तक सुरक्षा दे सकता है। यही नहीं, इस स्पेशल सूट में विशेष ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिया गया है ताकि आग के बीच पहुंचने पर धुएं और जहरीली गैस से बचाव हो सके।
2: ये इंडिया में ही बना है और इसमें आप देखेंगे कि सिर से लेके पैर तक सब जगह आपने इसको सिक्योरिटी दी है, हर जगह से है। आपको आंखों की भी सिक्योरिटी है, आपकी गैस से रिलेटेड अगर आप ये सूट पहन के अंदर जा रहे हैं तो आपका दम घुट सकता है, तो दम ना घुटे उसके लिए ऑक्सीजन की इसमें फैसिलिटीज है। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा हुआ है, आप उसमें आपको ब्रीदिंग सिस्टम भी पूरा दिया गया है।
0: स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग सूट को भारत में पहली बार बनाया गया है और इसकी कीमत भी विदेशों से आने वाले इस तरह के सूट से काफी कम रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फायर एंट्री सूट है, जबकि आम तौर पर दमकल कर्मी प्रॉक्सिमिटी सूट का इस्तेमाल करते हैं यानी आग के पास जाकर रेस्क्यू करना, जबकि देसी स्पेशल फायर फाइटर सूट में आग में जाने की सुविधा है।
2: फायर फाइटर्स के लिए बहुत तरह के सूट्स इस्तेमाल होते हैं, वो इस पे निर्भर करता है कि किस तरह की आग है, ठीक है। जिनको हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी सूट्स मतलब आग के पास में रहते हैं, जैसे फायर फाइटर जनरली यूज करते हैं, बाहर खड़े हैं और पानी से वो आग को बुझा रहे हैं, तो उनके बचाव के लिए प्रॉक्सिमिटी सूट्स बोले जाते हैं। लेकिन इसको जिसका एक्चुअल में नेम है फायर एंट्री सूट, मतलब आप इसको पहन के आग के अंदर जा सकते हैं और अपने को बचा सकते हैं, तो इस तरह का इसमें सारा सिस्टम अवेलेबल है सर।
1: इस तरह का सूट अवेलेबल है अभी?
2: इस तरह का सूट अभी इंडिया में नहीं है अवेलेबल, बाहर से ही ले रहे हैं और बहुत बहुत कॉस्टली है सूट। 10 लाख से लेके 22 लाख तक आपको एक पीस सूट का मिलता है, तो यानी कि आपको इम्पोर्ट करना है, बाहर से लाना है। तो ये सूट यहाँ बन गया है, अब बनने से हमें एडवांटेज ये हो गया कि हम इंडिया में ही ये बना पाएंगे और इसका इफेक्ट ये होगा कि हम जो करेंसी एक हमारी बाहर जा रही थी फॉरेन करेंसी का, उसको हम सेव कर पाएंगे।
0: आमतौर पर फायर फाइटिंग सूट 18 से 20 किलो के होते हैं, जबकि देसी स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग सूट करीब 15 किलो का ही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक बार फायर फाइटिंग सूट इस्तेमाल करने के बाद इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर लगे एल्युमिनियम कोटिंग खराब हो जाते हैं।
2: इस तरह के जो सूट हैं सेफ्टी से रिलेटेड है, तो इसमें एडवाइस तो यही दी जाती है कि आप एक बार उसे यूज करके और उसको आप नेक्स्ट टाइम ना यूज करें, मतलब उतनी आग में ना यूज करें। तो हो सकता है कि क्योंकि इसका जैसे ऊपर इसमें एल्युमिनाइज का एक वो लेयर दिया है, अगर आप देख रहे हैं एल्युमिनाइज की लेयर है, तो अगर हाई टेम्परेचर पे होगा तो धीरे धीरे ये एल्युमिनाइज की लेयर उतर जाएगी, उतरने से क्या प्रोटेक्शन कम हो जाएगा। आप कर तो सकते हैं लेकिन हाई टेम्परेचर पे इसको यूज ना करें, ये हमारी एडवाइस हमेशा रहती है।
0: ये सूट सिर्फ दमकल कर्मियों के लिए नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, एरोस्पेस, एविएशन, पावर प्लांट और थर्मल इंडस्ट्री जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
1: फिलहाल ये पहला मेड इन इंडिया सूट है जो कि हमारे फायर फाइटर्स के जवानों के लिए या कोई भी जो ऐसे सिचुएशन में काम करता है उनके लिए तैयार हो गया है। उम्मीद यही कि आने वाले वक्त में जब ये मार्केट में आएगा, हमारे सैनिकों के पास आएगा, तो उनका काम भी काफी हद तक आसान हो जाएगा।
0: इसके अलावा नित्रा ने एक ऐसी मशीन भी लगाई है जो किसी तरह के फायर सूट की टेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर कर सकती है। ये मशीन पहले सिर्फ विदेशों में मौजूद थी जिसमें टेस्टिंग के लिए 2 से 2.5 लाख तक का खर्च आता था और टेस्टिंग की रिपोर्ट आने में भी 3 हफ्ते से ज्यादा का समय लगता था। ऐसे में सूट को बनाने वाली एजेंसी के रिसर्च के काम में बहुत वक्त लगता था, लेकिन अब इस मशीन को विदेश से लाकर पहली बार भारत में ही लगाया गया है जिससे किसी भी टेस्टिंग की कीमत 60 से 65 हजार रुपए हो गई है और टेस्ट रिपोर्ट भी जल्दी मिल जाती है। मनीष रसिया, गाजियाबाद, गुड न्यूज टुडे।
3: बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण की। देखिए, प्लास्टिक के कचरे का निस्तारण एक बड़ी समस्या है, लेकिन उसी कचरे का सही प्रबंधन हो तो वो एक उपयोगी संसाधन भी बन सकता है। दिल्ली में यमुना किनारे बिखरे कचरे की सफाई कर एक युवा स्वच्छ यमुना मुहिम में अपना अहम योगदान दे रहा है। खास बात इसमें यह है कि प्लास्टिक के कचरे से उपयोगी सामान भी बनाए जा रहे हैं।
4: संकल्प और अटूट इच्छा शक्ति के बल पर एक अकेला व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है। ऐसे ही एक युवा है चीनू क्वात्रा, जो अब दिल्ली में यमुना घाटों के आसपास बिखरे कचरे की सफाई में जुटे हुए हैं। चीनू अपनी टीम के साथ इसी तरह हर हफ्ते यमुना के घाटों की सफाई करते नजर आ जाते हैं। ये सभी यमुना घाटों और आसपास के इलाकों से प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करते हैं ताकि ये कचरा नदी में जाकर पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। चीनू अपनी टीम के साथ मुंबई समेत दूसरे राज्यों में समंदर से लेकर नदियों, झीलों के आसपास से प्लास्टिक का कचरा समेटने का काम करते आ रहे हैं और अब दिल्ली में यमुना को साफ रखने की मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं। खास बात यह है कि चीनू इस कचरे को कहीं और ले जाकर यूं ही नहीं छोड़ देते बल्कि इसी प्लास्टिक के कचरे से उपयोगी सामान भी बनाते हैं।
5: तो पिछले 9 सालों से हम मुंबई में 4 बीचेस क्लीन कर रहे हैं एंड वो बीचेस से जो कचरा निकलता है वो हमेशा रिजेक्ट हुआ है। वो बोला गया है कि डंपिंग आउट में जाना चाहिए या उसे जला देना चाहिए। पिछले 3 साल से एक पायलट प्रोजेक्ट रन किया एंड इट इज़ सुपर सक्सेसफुल नाउ। अभी तक हमने 600 बेंचेस, स्कूल बेंचेस इस प्लास्टिक से, जो प्लास्टिक हमें जिसे जला दिया जाता है या डंपिंग यार्ड में फेंक दिया जाता है कलेक्शन के बाद, उस प्लास्टिक से हम वहाँ पे स्कूल बेंच बना रहे हैं एंड सेम चीज़ यहाँ पे लेके आए। बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट मुंबई, दिल्ली या कोई और शहर। ये प्लास्टिक हमारे रिवर्स को, हमारे ओशंस को, हमारे माउंटेन्स को बर्बाद कर रहा है। सो इसको हम सिर्फ डेस्टिनेशन चेंज नहीं करना है, यहाँ से प्लास्टिक उठा लिया, आज क्लीनअप हो गया, इसको उठा के वहाँ रख दिया। हमें इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि ये शीट है, ये शीट 4x4 की शीट बनती है, इससे स्कूल बेंच बनते हैं, इससे दरवाजे बनते हैं, इससे टेबल बनता है, इससे जो फर्नीचर, इन शॉर्ट ये प्लाईवुड को रिप्लेस कर रहा है। प्लाईवुड को रिप्लेस करना मतलब पेड़ों को बचाना।
4: मुंबई के चीनू क्वात्रा गैर सरकारी संस्था चलाते हैं और अपनी टीम के साथ प्लास्टिक का कचरा जमा करते हैं जिन्हें पहले अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से छांटा जाता है, फिर रिसाइकलिंग प्रोसेस से वही प्लास्टिक का कचरा जिसे बेकार और नुकसानदायक माना जाता है वो उपयोगी सामानों में बदल जाता है। मसलन मजबूत और टिकाऊ बेंच, प्लांटर्स, गार्डन फर्नीचर, डस्टबिन और दूसरे कई काम की चीजें उन कचरों से बनाई जाती हैं।
6: कचरा जो है उसको इस तरीके से बनाया जाता है पहले, और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है वो नहीं दिखने वाली है। ये आपको प्लांटर दिख जाएगा, चाहे फिर वो स्कूल बेंचेस की बात की जाए, स्कूल टेबल्स की बात की जाए, तो कुछ इस तरीके का जो नया रूप है वो ये प्लास्टिक का कचरा लेता है। लेकिन दिल्ली की जो सफाई है, यमुना की जो सफाई की हम बात कर रहे हैं, उस पर लगातार जो है सरकार काम कर रही है, और आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी को साफ करने की जो मशीन है वो लगातार यहाँ पर रहती है, यहाँ पर चलती हुई जो है वो नजर आती है।
7: यमुना सफाई को लेकर दिल्ली सरकार का अभियान भी जारी है। इसको लेकर जन भागीदारी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन सबके बीच चीनू पोत्रा भी अपनी टीम के साथ योगदान दे रहे हैं, जिसकी तारीफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी की है, और इसे पर्यावरण संरक्षण और सर्कुलर इकोनॉमी का बेहतरीन उदाहरण करार दिया है।
5: मैंने सिर्फ एक रील डाली थी जहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा था सीएम जी रेखा गुप्ता जी, वी वांट योर सपोर्ट, एंड उस रील पे 7 आवर्स के अंदर अंदर रेखा मैम कमेंटेड, एंड मुझे उसके 48 घंटे बाद मिलने बुला लिया था एट द क्लीन अप। तो संडे को मैं उनसे जब मिला तो उनको मैंने ये प्रेजेंट किए, कुछ लेटर्स प्रेजेंट किए, प्रपोजल प्रेजेंट किया। हमें दिल्ली सरकार से कुछ नहीं चाहिए, वी डोंट नीड मनी, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें एक जगह चाहिए जहाँ पे वो जगह हमें दे सके और ताकि हम उसको ईजिली काम कर सके गवर्नमेंट के साथ मिलके। एंड इनफैक्ट रेखा मैम ने तो उसको अप्रिशिएट भी किया है। होप इन दिस कमिंग वीक और कमिंग डेज हमें यहीं कहीं पे भी घाट के पास एक पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए मिल जाए, एंड देन सारे घाटों के पास हम ऐसे ही जगह बना के उसको प्रोसेस कर सकते हैं, और जो भी यहाँ से प्लास्टिक निकल रहा है कम से कम उसका हम डेस्टिनेशन वापस कोई बर्निंग या डंपिंग ग्राउंड में नहीं डाल सकते।
7: जाहिर है चीनू क्वात्रा की यमुना किनारे की जा रही ये पहल सिर्फ कचरा हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को ये संदेश भी देती है कि अगर प्लास्टिक का सही प्रबंधन हो तो वही कचरा समाज के लिए एक उपयोगी संसाधन बन सकता है।
6: अगर हम चीनू क्वात्रा की बात करें, जो प्लास्टिक जितना भी यमुना तट से वो उठा रहे, यमुना किनारे से वो उठा रहे और उसको रिसाइकल कर रहा है, जब एक शख्स इस तरीके की चीज़ें कर सकता है तो अगर इसमें हर किसी का योगदान रहे तो ये बदलाव वाकई में एक बड़ा हो सकता है, जो आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो समाधान का रूप ले सकती है।
7: चीनू क्वात्रा पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर तो काम कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ इनकी मंशा बेहतर शिक्षा से लेकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी है। इसी उद्देश्य से सरकारी स्कूलों में प्लास्टिक के कचरे से बनाई गई बेंच भी मुहैया कराई गई है।
5: हम स्कूल बेंचेस बना रहे हैं, वो पहला फोकस रहता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को मिले ताकि उनको बैठक उनकी बेटर हो। ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक तरफ जा रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट द सर्कल। इससे क्या हो रहा है, इससे 10 जन को नौकरी मिली अभी तक। अगर सोचो ये स्केल अप होगा तो कितने जनों को नौकरी मिलेगी, एंड देन उतने ही बच्चों को स्कूल बेंच मिल रहे हैं, तो एजुकेशन उनको कंफर्टेबल एजुकेशन हो रहा है। सो दिस इज नॉट ओनली क्लीन अप कि कचरा उठाया और खत्म कर दिया, हम एक सर्कल जिसे बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, और बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मार्ट सिटीज कैसे बन सकती जब हम कुछ ज्यादा स्मार्ट बने और उसके ऊपर काम करें।
7: पर्यावरण विशेषज्ञ भी मानते हैं कि रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल का मॉडल ही प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है, और चीनू क्वात्रा यमुना किनारे से प्लास्टिक कचरे को समेटकर ऐसा ही करने की कोशिश में जुटे हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: जम्मू कश्मीर में धूमधाम से पवित्र अमरनाथ यात्रा जारी है, हर कोई बाबा बर्फानी के दर्शन की आस लिए घाटी पहुंच रहा है। इस सब के बीच एक खास श्रद्धालु भी अपने अनोखे अंदाज में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचा। तस्वीरें देखिए, उत्तर प्रदेश के 20 साल के कन्हैया कुमार रोलर स्केटस से इस पवित्र यात्रा करने के लिए पहुंचे। कहते हैं कि अगर मन में अटूट श्रद्धा और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। कन्हैया पिछले साल 29 अक्टूबर को घर से निकले थे। पिछले 10 महीनों में कन्हैया ने एक या दो नहीं बल्कि पूरे 14 राज्यों का सफर अपने रोलर स्केट्स पर तय किया है। 10 महीने के इस सफर के बाद कन्हैया अब अपनी मंजिल यानी दक्षिण कश्मीर के काजीकुंड पहुंच चुके हैं, और उनकी अमरनाथ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है। कन्हैया का कहना यह है कि उनकी ये अनोखी यात्रा भगवान शिव को समर्पित है। कन्हैया की इस अनोखी भक्ति को देखकर रास्ते में आने वाले आम श्रद्धालु और स्थानीय लोग भी हैरान हैं, उनके इस जज्बे को सलाम भी कर रहे हैं। कश्मीर के लोगों को भी मेहमान नवाजी करने का एक मौका मिला है। बस कुछ ही दिनों बाद कन्हैया पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। स्पेन का पैम्पलोना शहर इन दिनों रोमांच, उत्साह और अनोखी परंपरा का साक्षी बन रहा है। यहां पर 10,000 से ज्यादा लोग विश्व प्रसिद्ध सैन फर्मिन उत्सव में शामिल हुए। अगले 9 दिनों तक चलने वाले इस जश्न में सबसे बड़ा आकर्षण होगा बुल रन, यानी वो दौड़ जहां पर इंसानों और बुल के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा।
8: हजारों लोगों का सैलाब, हवा में लहराता लाल रुमाल, आसमान छूते रंग बिरंगे बैलून, ये इस बात का प्रमाण है कि स्पेन के पैम्पलोना शहर में सैन फर्मिन महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो चुकी है। पैम्पलोना के ऐतिहासिक कॉन्सिस्टोरियल स्क्वायर में करीब 10,000 से ज्यादा लोग जुटे। इस मौके पर आतिशबाजी और गीत संगीत के साथ 9 दिनों तक चलने वाले मशहूर उत्सव का आगाज हुआ। सफेद कपड़े और लाल स्कार्फ इस त्योहार की पहचान है। जैसे ही उत्सव की शुरुआत हुई, लोगों ने एक दूसरे पर पानी की बौछार कर जश्न मनाया। साथ ही पूरा चौक उत्साह, संगीत और उल्लास से सराबोर नजर आया। सैन फर्मिन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि स्पेन की सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। अब अगले 9 दिनों तक पैम्पलोना की फकरी गलियों में रनिंग ऑफ द बुल्स के नाम से मशहूर रोमांचक परंपरा निभाई जाएगी, जो इस उत्सव की सबसे बड़ी पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बात करेंगे धुरंधर रणवीर सिंह की, जिनकी मस्कुलर बॉडी का राज सामने निकल कर आया। फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह ने हमजा अली मजारी का किरदार निभाने के लिए कैसे खुद को झोंक दिया और महज 6 हफ्तों के भीतर 10 किलो वजन बढ़ाकर मस्कुलर बॉडी बनाई, और फिर जसकीरत सिंह रंगी के किरदार के लिए कैसे 15 किलो वजन घटाया भी, इसका खुलासा सामने हुआ है।
9: धुरंधर के हमजा अली मजारी की स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी हो या जसकीरत सिंह रंगी की स्लिम टोन्ड बॉडी, रणवीर सिंह ने अपनी दमदार एक्टिंग से न सिर्फ दोनों किरदारों में जान डाली बल्कि इन दोनों किरदार को पर्दे पर प्रभावशाली दिखाने के लिए खुद को ही पूरी तरह झोंक दिया था। रणवीर सिंह ने हमजा और जसकीरत के किरदार से न्याय करने के लिए किस कदर खुद को समर्पित कर दिया था, इसका कुछ कुछ अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हमजा के किरदार के लिए रणवीर सिंह ने महज 6 हफ्तों में 10 किलो वजन बढ़ाया। रोज 4000 कैलोरीज, 240 ग्राम प्रोटीन और कड़ी ट्रेनिंग से पूरा लुक बदल दिया। तो जसकीरत के रोल के लिए उन्होंने 15 किलो वजन घटाया। रणवीर सिंह के इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में धुरंधर में उनके साथ अंडरकवर भारतीय एजेंट का किरदार निभाने वाले रिजवान शाह का बड़ा योगदान रहा है। रिजवान का रोल मुस्तफा अहमद ने निभाया था, जो असल जिंदगी में एक जाने माने सेलिब्रिटी, जिम ट्रेनर और फिटनेस कोच हैं, और ऋतिक रोशन, विकी कौशल और यामी गौतम जैसे सितारों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। धुरंधर में रणवीर सिंह को ट्रेंड करने की जिम्मेदारी मुस्तफा अहमद ने ही निभाई थी। एक इंटरव्यू में मुस्तफा अहमद ने खुलासा किया कि रणवीर सिंह रोजाना 3600 से 4000 कैलोरीज लेते थे। उनकी डाइट में भरपूर मात्रा में चिकन, चावल और रेड मीट शामिल था। इसके अलावा वो हर दिन लगभग 240 ग्राम प्रोटीन लेते थे। रणवीर सिंह दिन में 2 प्रोटीन शेक पीते थे। हर शेक से उन्हें करीब 600 से 700 कैलोरीज मिलती थी, यानी केवल प्रोटीन शेक से ही रोजाना लगभग 1200 से 1500 कैलोरीज पूरी हो जाती थी। बाकी कैलोरी हाई प्रोटीन खाने के जरिए पूरी की जाती थी। अपने शरीर को बिना थकाए और बिना किसी अकड़न के मस्कुलर बनाने के लिए रणवीर दिन में 2 बार वर्कआउट करते थे। यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान भी टेक के बीच वर्कआउट करते रहते थे, ताकि उनका शरीर हर समय किरदार के अनुरूप दिखाई दे। सुबह के समय अपनी सहन शक्ति और फुर्ती बढ़ाने के लिए कलारी पायर 2 सेशन और मोबिलिटी एक्सरसाइज करते थे, और शाम को उनका फोकस हैवी वेट ट्रेनिंग पर होता था ताकि मसल्स का साइज बढ़ सके। मुस्तफा ने बताया कि रणवीर सिर्फ शरीर फुलाने के लिए वेट ट्रेनिंग नहीं करते, वो इसे कलाकार की तरह अपनाते हैं। उन्हें समझ आ गया कि इससे उनकी सांस लेने की क्षमता बेहतर होती है, शरीर मजबूत बनता है और किरदार में गहराई आती है। मुस्तफा ने आगे बताया कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले रणवीर सिंह के पास केवल 6 हफ्तों का समय था। उस दौरान उनका शुरुआती वजन करीब 76 से 77 किलो था, लेकिन शूटिंग शुरू होते होते उनका वजन बढ़कर 87 से 88 किलो पहुंच गया था। धुरंधर पार्ट 2 की शुरुआत रणवीर सिंह के दूसरे किरदार जसकीरत सिंह रंगी से होती है। इस किरदार को निभाने के लिए रणवीर सिंह को अपना वजन काफी कम करना पड़ा था। जसकीरत के रोल में रणवीर सिंह को काफी स्लिम दिखना था। इस किरदार की शूटिंग हमजा के किरदार की शूटिंग के बाद की गई थी। इसके लिए रणवीर सिंह ने पूरे 15 किलो वजन घटाया ताकि कैमरे पर बॉडी बिल्कुल रियलिस्टिक लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: पुणे में धूमधाम से निकली जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी, हरिनाम के जय घोष से गूंजा शहर, ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक वेशभूषा में दिखे लोग। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किया बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन, काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना। गुजरात के कई इलाकों में जमकर बरस रहे हैं बदरा, सूरत नवसारी में भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया में प्रेम और अपनापन मिला। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ, नानकपुरा रिज में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण, गृहमंत्री अमित शाह ने शुरुआत की।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस मेड इन इंडिया दम की जिसकी धाक आज सारी दुनिया में जम चुकी है। आज पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई दे रही है। हाल ही के सालों में भारत का डिफेंस सेक्टर सुपर फास्ट स्पीड के साथ आगे बढ़ा है। एक दशक से भी कम वक्त में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है, बल्कि अब उनके इम्पोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। दो तस्वीरें आपके सामने, ये आज की तारीख में भारत के मेक इन इंडिया मिशन की कामयाबी बयां करने वाली तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि भारतीय नेवी का अपना महेंद्र बाहुबली। ये नीलगिरी क्लास का मेड इन इंडिया युद्धपोत है। ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट इसी हफ्ते भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। नाम है INS महेंद्रगिरी। तो वहीं दूसरी तस्वीर है उस मेड इन इंडिया धाकड़ मिसाइल की, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। भारत का ब्रह्मोस अस्त्र। जल्द ही इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल खरीदने जा रहा है। पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और आज इस डील से जुड़ा MOU साइन किया गया। तो चलिए आपको बताते हैं क्यों खास है भारत की ये मिसाइल और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के वर्तमान हालात को देखते हुए ये डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है।

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर पल एक नई ऊंचाई को छू रहा है। देश में ही ऐसे ऐसे हथियार गढ़े जा रहे हैं जो ताकत और तकनीक के मामले में बेहतरीन है। आज हिंदुस्तान के हथियार ग्लोबल हो रहे हैं। इंडियन वेपन की ताकत को दुनिया महसूस कर रही है और इसी का नतीजा है कि भारत डिफेंस सेक्टर में वेपन एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बढ़ा रहा है। इसकी सबसे ताजा तस्वीर आई है इंडोनेशिया से।
1: एयर टू एयर मिसाइल कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन भारत डायनामिक्स एंड रिपब्लिक कॉर्प।
0: दुनिया की सबसे खतरनाक और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की अतिरिक्त बैटरियां खरीदने के लिए इंडोनेशिया ने फाइनल डील पर मुहर लगा दी है। पहले से ही भारत के ब्रह्मोस का खरीदार इंडोनेशिया ऑपरेशन सिंदूर में इस अचूक मिसाइल की ताकत को देख चुका है। भारत ने इसी मिसाइल के हमले से पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए थे। मुरीद के में लश्कर और बहावलपुर में जैश के ठिकानों को ब्रह्मोस ने धूल में मिला दिया था। अब मैक 3 की विनाशकारी गति से उड़ने वाली ब्रह्मोस जब इंडोनेशिया के तटीय इलाकों में तैनात होगी तो साउथ चाइना सी में चीन दादागिरी करने से पहले 100 बार सोचेगा।
2: देखिए, ब्रह्मोस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इस समय विश्व में रशिया और इंडिया के अलावा किसी देश के पास नहीं है और इंडो पैसिफिक रीजन में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। महत्व इसलिए है कि ये शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है, हवाई जहाज से भी लॉन्च किया जा सकता है और ग्राउंड से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के अगर हम उसकी सुरक्षा की बात करते हैं तो इसका इंडोनेशिया और भारत दोनों के पास होना एक तरह का एक जो मिल के हम जो है उस खतरे का सामना कर सकते हैं उसके लिए ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा।
0: दरअसल ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे कैसे भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस की स्पीड ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा होती है। हर मोर्चे पर भी ब्रह्मोस की तैनाती संभव है। इसे जमीन, समंदर, हवा कहीं से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। ये मूविंग यानी चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। इसकी स्ट्राइक क्षमता इतनी कमाल है कि ये 400 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। ब्रह्मोस में दूसरे स्टेज का रैमजेट इंजन लगा है जो इसे सुपरसोनिक स्पीड देता है और फ्यूल की खपत को कम करता है।

0: ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसका अचूक निशाना है। सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर यह मिसाइल सटीक वार करते हुए 1 मीटर के दायरे में जाकर गिरती है, यानी इसकी अचूक मारक क्षमता के आगे दुश्मन के किसी भी टारगेट का बचना नामुमकिन है। अचूक मारक क्षमता के साथ साथ ब्रह्मोस की रफ्तार इसकी एक और बड़ी ताकत है।
1: क्या इसकी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि 300 से ज्यादा, अभी तो इसका दूसरा वर्जन जो है वो 400-450 किलोमीटर तक भी जाता है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वो शिप्स को बिल्कुल खत्म कर सकता है। और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, सुपरसोनिक है, कि कोई इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, सैटेलाइट से डिटेक्शन नहीं हो पाता है, रडार से डिटेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत लो फ्लाइंग है। अगर हम समुद्र से इसके बोलते हैं 5 मीटर की ऊंचाई पर भी समुद्र के ऊपर फ्लाई कर सकता है।

0: अगर आज दुनिया मिसाइल पावर के मामले में भारत की ताकत का लोहा मान रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ब्रह्मोस है। खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो ब्रह्मोस दुनिया भर की नजर में आ गई है। वैसे भारत के तर्कश में ब्रह्मोस नाम का यह कमाल का ब्रह्मास्त्र 25 साल पहले ही शामिल हो चुका था, क्योंकि यह मिसाइल भारत और रूस के साझा मिशन का नतीजा है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था। इस मिसाइल के निर्माण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के तत्कालीन प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और रूस के उप रक्षा मंत्री NV मिखाइलोव ने 12 फरवरी 1998 को हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद इसका पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। और आज ये मेड इन इंडिया मिसाइल दुनिया भर के देशों में अपना लोहा मनवा रही है।
1: इंडोनेशिया और भारत के बीच ये समझौता एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसका प्रोडक्शन भी वहाँ हो सकता है और वहाँ हमारे यहाँ भी इसका प्रोडक्शन होता है, और भारत के लिए एक्सपोर्ट होने से एक इकोनॉमिक गेन भी है। तो सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक गेन के लिए अच्छा है, और इंडोनेशिया और भारत के जो सामरिक रिलेशनशिप है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा समझौता, एक बहुत बड़ा कदम है। मैं सोचता हूँ कि इसको आगे ले जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमें इंडोनेशियन एयरफोर्स या उनकी आर्मी के साथ मिलकर उसका प्रोडक्शन वहां करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो इंडो पैसिफिक सुरक्षा है उसको बढ़ावा मिले।

0: आपको बता दें कि फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया के साथ इस डील से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत ने एक बड़े रक्षा साझेदार के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया है। इंडोनेशिया और चीन के संबंधों पर नजर डाले तो ये साफ होता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के बावजूद रणनीतिक असहमति बनी हुई है। वहीं भारत और इंडोनेशिया अब दोस्ती के नए मुकाम की ओर चल रहे हैं। इस तरह इंडोनेशिया का भारत के पाले में आना बीजिंग के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और इसी दौरान ये इस डील के एमयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वैसे आपको बता दें, ब्रह्मोस के अलावा इंडोनेशिया ने अपनी पुरानी रूसी R-77 मिसाइलों को हटाकर भारत की इस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को खरीदने का ऐतिहासिक फैसला भी किया है।
2: एयर टू एयर मिसाइल कोऑपरेशन अग्रीमेंट बिटवीन भारत डायनामिक्स एंड रिपब्लिक कॉर्प।
0: मैक 4 प्लस की सुपरसोनिक रफ्तार और 110 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल जब इंडोनेशिया के फाइटर जेट से उड़ेगी तो दुश्मनों को संभलने का एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI ने अस्त्र से पाकिस्तानी जेट्स को निशाना बनाया और उसे जमीन पर ला दिया। इंडोनेशिया ने भी देखा कि भारत का अस्त्र पाकिस्तान की चीनी PL-15E मिसाइलों से कई गुना बेहतर साबित हुआ। उसी कामयाबी को देखते हुए इंडोनेशिया ने ये डील की है।
3: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में बने हथियारों का लोहा पूरी दुनिया ने माना और पाकिस्तान के भीतर आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करने वाली ब्रह्मोस और अस्त्रा जैसी मिसाइलों ने अपनी विश्वसनीयता और अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाई और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ोतरी मिली है। अब इंडोनेशिया ने फैसला किया है कि वो ब्रह्मोस के साथ एस्ट्रा मिसाइल भी खरीदेगा। एस्ट्रा यानी भारत में बनने वाली वो मिसाइल जो एयर टू एयर के लिए जानी जाती है, एस्ट्रा मैक 1, जिसे सुखोई 30 में इंटीग्रेट किया गया है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया अब भारत से ये मिसाइल लेना चाहता है क्योंकि इंडोनेशिया के पास भी Su-30 विमान है और अब वो अपने विमानों में एस्ट्रा मिसाइल लगाना चाहता है, जिसको अब ये देखा जा रहा है कि किस तरह से भारत के जो हथियार हैं वो लगातार पूरी दुनिया में अपनी मांग बढ़ा रहे हैं। हालांकि इंडोनेशिया वो पहला देश है जिसने एस्ट्रा मिसाइल के लिए बातचीत की है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है, लेकिन ब्रह्मोस को खरीदने वाला इंडोनेशिया तीसरा देश होगा क्योंकि फिलीपींस के बाद वियतनाम से और अब इंडोनेशिया से इसकी बातचीत चल रही है। तो लगातार भारत के हथियार पूरी दुनिया में अपनी धमक दिखा रहे हैं और भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ रहा है और इंडोनेशिया अब ब्रह्मोस के साथ साथ एस्ट्रा मैक 1 एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स भारत से खरीदेगा।
0: इंडोनेशिया से यह समझौता गवाह है कि भारत अब रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि ग्लोबल एक्सपोर्टर बन चुका है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब बात भारत के महेंद्र बाहुबली की। अब से 3 दिन बाद विशाखापट्टनम में INS महेंद्र गिरी का कमिश्निंग समारोह है, जहां इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के बेड़े में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया जाएगा। महेंद्र गिरी एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसके आने से भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत और सामर्थ्य हासिल होगा।

0: स्थित प्रज्ञ रणेशु अपराजित, यानी वो जिसकी बुद्धि स्थिर है, अडिग है, वो जो युद्धों और संघर्षों में अपराजित रहता है। अपने आदर्श वाक्य की तरह ही सागर की लहरों पर सदा अपराजित रहने का दम और सामर्थ्य लेकर आ रहा है नौसेना का महेंद्र बाहुबली। सागर का वो बाहुबली जिसे देश के पूर्वी घाट पर मौजूद प्रसिद्ध महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर अपना नाम मिला है। वो महेंद्रगिरी पर्वत जो शक्ति, धैर्य और अडिग संकल्प का प्रतीक है, भारतीय नौसेना के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी युद्धपोत को महेंद्रगिरी नाम दिया गया है। 11 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना के लिए इस नए अध्याय की शुरुआत होगी, जब नौसेना के बेड़े में INS महेंद्रगिरी को शामिल किया जाएगा। INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तैयार किया गया 6th गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसका डिजाइन भारतीय नौसेना के WDB यानी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है।
1: भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत अपना 6th वॉरशिप महेंद्रगिरी मिलने वाला है। महेंद्रगिरी विशाखापट्टनम में 11 जुलाई को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। इसकी कमिशनिंग की जाएगी। प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत भारत में बनने वाला ये 6th वॉरशिप है। इसके पहले 5 दूसरे वॉरशिप्स भी भारतीय नौसेना का हिस्सा बन चुके हैं। महेंद्रगिरी को भारत में MDL ने बनाया है और नेवल वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसे डिजाइन किया है। तेजी से आत्मनिर्भर होती भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने वाले महेंद्रगिरी की ताकत की अगर हम बात करें तो इसमें बराक मिसाइल्स के साथ साथ ब्रह्मोस और टॉर्पीडोज की ताकत है। 6,600 टन के डिस्प्लेसमेंट वाला ये जहाज अत्याधुनिक सिस्टम से लैस है और भारतीय नौसेना को भारत में निर्मित होने वाले जहाजों की ताकत में इजाफा करने वाला ये जहाज बेहद कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के दौरान भारतीय जहाजों की तैनाती, हर तरफ भारतीय नौसेना लगातार सशक्त हुई है।
0: ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। INS महेंद्रगिरी में सुपर एडवांस्ड कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आधुनिक सेंसर, एंटी सबमरीन वेपन्स और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और पनडुब्बियों से ये एक साथ मुकाबला कर सकता है। महेंद्रगिरी फ्रिगेट स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जो दुश्मन के रडार को चुनौती देगा समुद्र में चुपचाप आगे बढ़ने और जरूरत पड़ने पर घातक प्रहार करने में इसका कोई मुकाबला नहीं। सबसे अहम बात ये कि महेंद्रगिरी के निर्माण में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
2: भारत की नेवी की ताकत में और इजाफा हो रहा है। INS महेंद्रगिरी अगर देखा जाए तो अत्यधिक ताकतवर फ्रिगेट है, जो कि देश में ही बना है। 75% हिस्से इसके देश में बने हुए हैं। इसके अंदर आधुनिक स्टेल्थ है, यानी कि एक रडार को द्वारा इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सामने का इसका हल्का क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है। ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है जो कि रडार को देखने के लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अत्याधुनिक हथियार इसके ऊपर लगे हुए हैं। आप देखिए, इसके ऊपर ब्रह्मोस है जो जमीन से ज़मीन पर मार करता है, यानी कि शिप से ज़मीन पर। इसमें बराक है जो कि शिप से एयर हवाई में मार करेगा। एंटी सबमरीन इसमें मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, टॉर्पीडो लगे हैं, जो कि आधुनिक सबमरीन को खत्म करने के लिए है।
0: महेंद्रगिरी भले ही एक वॉरशिप है, लेकिन इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल युद्ध के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान, समुद्री सुरक्षा गश्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिशंस में किया जा सकेगा। समुद्र में फंसे लोगों की सहायता से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने तक ये कई अहम जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है।
1: लगातार भारतीय नौसेना की ताकत आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ रही है और 2047 तक भारतीय नौसेना 100% आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखती है। अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो ये 75% इंडिजनाइज है। अगर इसकी क्षमताओं की बात करें तो ये कंबाइंड डीजल और गैस टेक्नोलॉजी के इंजन के साथ लैस है। किसी भी तरह के एंटी एयर

0: से लैस है, यानी कि इनका रडार को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है।
1: साल 2013 तक ही प्रोजेक्ट 17A के प्राइमरी डिजाइन तैयार कर लिए गए थे। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी को 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स को लॉन्च कर दिया था। 17A प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं। इनमें 4 फ्रिगेट मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि 3 फ्रिगेट बनाने की जिम्मेदारी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता को मिली थी, जिसमें हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी शामिल हैं।
2: तो प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत इसे भारत में बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा जिसके तहत 45,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 वॉरशिप्स को भारत में बनाया गया, जिन्हें MDL और GRSE ने मिलकर बनाया है। हाल ही में महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, जिसके बाद तमाम सी ट्रायल्स हुए, हर तरह के परीक्षण हुए और अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए महेंद्रगिरी पूरी तरह से तैयार है। महेंद्रगिरी से पहले दूनागिरी और तमाम दूसरे जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। पिछले महीने एक ट्रिपल कमिशनिंग के तहत इस पूरे प्रोजेक्ट के 5वें जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और अब 6ठा यानी कि महेंद्रगिरी भी भारतीय नौसेना में कमीशन हो रहा है।
1: निश्चित रूप से भारत का ये महेंद्र बाहुबली नौसेना की शक्ति में कई गुना इजाफा करने वाला है। INS महेंद्रगिरी की कमीशनिंग के बाद भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिलेगी। समंदर की सीमा की रक्षा में सागर का ये प्रहरी मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अब बात तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की। वायुसेना जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस साल सितंबर अक्टूबर के महीने में जोधपुर में होने वाली इस एयर कॉम्बैट ड्रिल का नाम ऑपरेशन तरंग शक्ति है। ऑपरेशन तरंग शक्ति 2026 में कई देशों की वायुसेनाएं इसमें हिस्सा लेंगी। ये तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण होगा। इससे पहले साल 2024 में भारतीय सेना ये मेगा युद्धाभ्यास कर चुकी है। तरंग शक्ति मेगा युद्धाभ्यास में वायुसेना के जवानों को दुनिया के दूसरे वायु सैनिकों की काबिलियत परखने का मौका मिलेगा। तरंग शक्ति जैसे युद्धाभ्यास से भारत के हवाई योद्धाओं को दूसरे देशों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का मौका मिलता है। ये कोशिशें भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए वायुसेना को पहले से तैयार करने की अहम पहल है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा।
2: भारतीय वायुसेना अब तक की सबसे बड़ी एयर कॉम्बैट ड्रिल तरंग शक्ति के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार इतनी बड़ी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जोधपुर में होने वाली है। 28 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच तरंग शक्ति अपने तमाम वायुसेनाओं के साथ भारत की वायुसेना की ताकत दिखाएगी। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि 2024 में तरंग शक्ति का पहला एडिशन भारतीय वायुसेना ने होस्ट किया था, जिसे 2 फेजेस में किया गया था, जोधपुर और सुलूर। और अब दूसरी बार यानी 2026 में तरंग शक्ति होने वाला है, जिसमें एक बार फिर 2 दर्जन से ज्यादा पूरी दुनिया की वायुसेनाएं हिस्सा लेंगी, जिसमें तमाम देश चाहे वो UK, जर्मनी, US हो, उन सभी को न्योता भेजा गया है। यानी भारतीय वायुसेना अपनी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में कॉम्बैट कैपेबिलिटी और इंटर ऑपरेबिलिटी दोनों दिखाएगी, और वो भी पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक। कैमरा पर्सन प्रेमचंद्र के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए शिवानी, दिल्ली।
3: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
6: Good news today is

0: ऐसा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: कोटा के एक स्टूडेंट ने ऐसा स्मार्ट प्लांट पॉट तैयार किया है जो पौधों की जरूरतों को आसान तरीके से समझने में मदद करता है। ये स्मार्ट इमोशन पॉट सेंसर और तकनीक की मदद से पौधे की स्थिति पर नजर रखता है और पानी, धूप या फिर देखभाल की जरूरत होने पर मोबाइल पर इमोजी के जरिए अलर्ट भेजता है। इस अनोखे इनोवेशन का मकसद पौधों की देखभाल को आसान, रोचक और तकनीक से जोड़ना है।
2: जरा सोचिए, अगर आपके घर का पौधा बोल पाता तो शायद आपको अपना हाल बताता और आप उसकी जरूरत को पूरा कर पाते। अब तक ये सिर्फ कल्पना थी, लेकिन कोटा के एक युवा इनोवेटर ने इस कल्पना को हकीकत में बदलने की पहल की है। आजाद पब्लिक स्कूल के छात्र और वेल्ट्रियोनेक्स स्मार्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक आर्यन सिंह ने ऐसा स्मार्ट इमोशन पॉट बनाया है जो पौधों की खामोशी को इमोजी की भाषा में बदल देता है।
3: जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जान आ गई है, जहाँ पे प्लांट जो है अपने इमोशन शो कर सकता है कि हाँ उसको प्यास लगने में वो रो रहा है, अंदर रहने पे अगर अकेला है तो उसको डर लग रहा है, या मोशन सेंस कर रहा है तो डर लग रहा है, नाइट में वो सो रहा है, तो जहाँ पे हम उसको देख सकें कि वो एक हमारा फ्रेंड है, हम एज अ फ्रेंड ट्रीट कर सकें उसको।
2: आज के दौर में लोग बड़े जोश से पौधे तो घर ले आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद भागदौड़ भरी जिंदगी में वही पौधे एक कोने में अकेले छूट जाते हैं। पौधों को कभी समय पर पानी नहीं मिलता, कभी धूप नहीं मिल पाती। जब पौधा मुरझाने लगता है तब हमें पेड़ों की तकलीफ पता चलती है। इसी प्रॉब्लम के हल के तौर पर आर्यन को इस स्मार्ट गमले का आइडिया आया।
3: क्या हमने कि कुछ ना कुछ एक ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि वो किसी इंसान से इंटरेक्ट करते हैं, कर सके। जैसे कि हमें पता है आज इंसान आपस में बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो जाता है, लोग एक दूसरे से काफी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो ये हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा प्लांट के साथ किया जाए ताकि उसको एज अपना फ्रेंड ही उसको ट्रीट करें और अपनी सारी बातें उसको शेयर कर सकें, उसके इमोशन देख सकें कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है चीज में।
2: ये सिर्फ एक स्मार्ट गमला नहीं बल्कि एक डिजिटल प्लांट कंपेनियन है। इसमें लगे सेंसर मिट्टी में नमी, पौधों के हिसाब से तापमान, पानी की जरूरत और रोशनी की आवश्यकता को भाप लेते हैं और ये स्मार्ट गमला अपने एक्सप्रेशन से हमें पौधों की जरूरत के बारे में बता देता है। जैसे जैसे पौधे की जरूरत बदलती है वैसे वैसे स्क्रीन पर उसके चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं।
3: ध्यान में रखकर इसको बनाया, इसके अंदर अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं जो कि अलग अलग चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर मॉइस्चर लेवल या मॉइस्चर या वाटर लेवल है तो उसको वो सेंसर देख रहा है, मोशन को मोशन सेंसर डिटेक्ट करने के लिए कर रहा है कि उसके साथ अगर कोई है, तो उसको पूरा बच्चों से फ्रेंडली बनाया है कि अगर वो इतना अभी से ही उतना केयरिंग बन जाते हैं तो आने वाले टाइम पे कुछ वो बेटर आउटपुट दे सकते हैं इस एनवायरमेंट को।
2: आज की पीढ़ी मोबाइल और गैजेट्स के साथ तो जल्दी जुड़ रही है, लेकिन प्रकृति से उनका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में ये स्मार्ट इमोशन पॉट इंसानों और पौधों के बीच दोस्ती का पुल बन सकता है। आर्यन का कहना है कि आने वाले समय में इस स्मार्ट इमोशन पॉट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और API मॉडल से और स्मार्ट बनाया जाएगा ताकि भविष्य में ये सिर्फ चेहरे के भाव ही ना दिखाए बल्कि यूजर से बात भी कर सके। कोटा से चेतन गुर्जर, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news,
5: after multiple assassination attempts, they can't even get
6: they're reliable.
7: Always when I need them.
4: To live sports action.
8: One hand jam by LeBron on the break.
9: That's another three, Steph Curry.
4: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: पुणे में धूमधाम से निकली जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी, हरिनाम के जयघोष से गूंजा शहर, ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक वेशभूषा में दिखे लोग। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन, काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना। गुजरात के कई इलाकों में जमकर बरस रहे हैं बदरा, सूरत नवसारी में भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया में प्रेम और अपनापन मिला। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाभियान का शुभारंभ, नानकपुरा रिज में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण, गृहमंत्री अमित शाह ने शुरुआत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
6: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा अमरनाथ यात्रा और श्रद्धालुओं की सुविधा की भी है।
7: बम बम भोले, हर हर महादेव और जय बर्फानी बाबा के जयकारों से अमरनाथ यात्रा मार्ग गूंज रहा है। श्रद्धालु पवित्र गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए इस साल अब तक का सबसे बड़ा श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। इस जत्थे में शामिल 8,815 श्रद्धालुओं में 31 विदेशी भी यात्रा का हिस्सा बने हैं। यात्रा के शुरुआती चार दिनों में ही 93,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा के साथ ही श्रद्धालु की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बालचाल बेस कैंप से लेकर रामबन के चंद्रकोट तक यात्रियों को मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जा रही है। पवित्र अमरनाथ यात्रा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए ग्रामीण स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर हलचल शुरू हो गई है। 30 जुलाई से शुरू होने वाला कांवड़ मेला सकुशल होने की कामना को लेकर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा की ओर से मालवीय घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ आरती की गई। इस विशेष अवसर पर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने नियमों वाला एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें कांवड़ियों को कांवड़ उठाने के नियम बताए गए हैं। इस पोस्टर में कांवड़ियों से कांवड़ उठाने के नियमों का पालन करते हुए कांवड़ उठाने और अपने गंतव्य तक ले जाने के साथ ही वजनी कांवड़ नहीं उठाने का आग्रह किया गया है। अखाड़े से जुड़े साधु संतों और पंडितों ने शिव भक्तों से तीर्थ नगरी की मर्यादा बनाए रखने के लिए भी निवेदन किया है। श्रद्धालुओं को बड़े बड़े डीजे लेकर आने से बचने की सलाह दी गई है, ताकि उसकी तेज आवाज और धमक से किसी को किसी भी तरह की असुविधा या परेशानी का सामना न करना पड़े। श्री गुरु गोरखनाथ अलख अखाड़ा परिषद की ओर से हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में 11 महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक किया गया। समारोह में सभी महामंडलेश्वरों को चादर विधि करके पट्टाभिषेक किया गया और संतों ने फूलों की बारिश करके आशीर्वाद प्रदान किया। इस अखाड़ा परिषद ने 51 महामंडलेश्वर बनाने का लक्ष्य रखा है और अब तक 41 महामंडलेश्वर बनाए जा चुके हैं और बाकी 10 महामंडलेश्वरों को बनाने की तैयारी हो रही है। कुंभ से पहले इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। जिन 11 महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक किया गया है, उन्हें गुरु गोरखनाथ अलख अखाड़े से जुड़े हुए 4-5 वर्ष हो गए हैं और अब बतौर महामंडलेश्वर वो अपने कर्तव्य को निभाएंगे। ये तस्वीरें पंजाब के फरीदकोट की हैं, जहां आयोजित दस्तार प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 6 से 15 साल की उम्र के 60 बच्चे शामिल हुए, जिन्होंने दस्तार यानी पगड़ी बांधने की कला का पूरे आत्मविश्वास, अनुशासन और अपनी सिख विरासत के प्रति समर्पण का पूरी कुशलता से प्रदर्शन किया। इन छोटे छोटे बच्चों ने खुद से पगड़ी बांधी। रंग बिरंगी पगड़ियों में ये बच्चे बेहद सुंदर लग रहे थे। प्रतियोगिता में विजेताओं का चयन दस्तार बांधने की कला, साफ सुथरापन, प्रस्तुति, संतुलन, आत्मविश्वास, पारंपरिक शैली, फिनिशिंग और समग्र प्रभावशाली प्रदर्शन सहित कई महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित शमशान घाट की अपन पाठशाला में बच्चे पढ़ाई करने के साथ साथ मशहूर मिथिला पेंटिंग भी सीख रहे हैं और आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये खूबसूरत पेंटिंग इन बच्चों ने ही बनाई है। अपनी इस शानदार कला के जरिए बच्चे अपनी पढ़ाई का खर्च भी निकाल रहे हैं। इस पाठशाला में पढ़ने वाले 28 बच्चे नियमित शिक्षा के साथ ही मिथिला पेंटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें ये छठ महापर्व, राधा कृष्ण, मछली, मोर, पक्षियों और बिहार की लोक संस्कृति पर आधारित आकर्षक पेंटिंग्स तैयार कर रहे हैं, जिनके स्थानीय लोगों के बीच अच्छी खासी डिमांड है। एक पेंटिंग तैयार करने में बच्चों को करीब 2 दिन लग जाते हैं, जो 150 से 200 रुपए तक में बिक जाती है। खरीदार इसे सम्मान समारोह में स्मृति चिन्ह के रूप में भी भेंट करते हैं। इससे बच्चों को आर्थिक मदद मिलने के साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
6: और अब बात करते हैं मानसून की। बारिश का मौसम जितना सुहाना होता है उतना ही चुनौतियां भी लेकर आता है। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन कहीं शहर पानी में डूबे हैं तो कहीं लोग बाढ़ के बीच फंस गए। हालांकि राहत कर्मी और बचाव दल मुश्किल में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। वहीं पूरे देश में मानसून की दस्तक से कहीं बारिश हो रही है तो कहीं भारी बारिश होने की खबर है, जबकि लंबे इंतजार के बाद राजधानी दिल्ली में भी मानसून मेहरबान हुआ और जमकर बारिश हुई।

0: मॉनसून के बादल और तेज बारिश के बीच जलजमाव और उफनती नदियाँ। बारिश के दिनों में ये नज़ारे बेहद आम हैं, लेकिन मॉनसून में बारिश के बाद लोगों को उमस और गर्मी से तो राहत मिल जाती है, लेकिन बाढ़ वाले इलाकों में बारिश मुसीबतें भी लेकर आती है। फिलहाल ऐसे हालात से निपटने के लिए देवदूत के रूप में बचाव दल हमेशा तैयार रहते हैं। मुंबई, ठाणे, पुणे और पालघर समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश ने तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। महाराष्ट्र के पालघर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वीरेंद्र नगर में पानी से घिरे एक घर में फंसे 9 महीने के मासूम बच्चे को स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चे को सुरक्षित देखते ही उसके माता पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े।
1: पालघर जिले में सुबह 5 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू है। उस बारिश का असर पालघर में देखने को मिला है। पालघर के वीरेंद्र नगर में जहां सब सो रहे थे, उसी समय उनके घरों में पानी भराया। उन घर वालों को बाहर कैसे निकला जाए, सब परेशान थे। उसी समय सूरत धोत्रे अपनी टीम लेकर के उस जगह पहुंचे और उन लोगों को बाहर निकालने की पूरी मशक्कत की। क्या कहोगे आप, क्या क्या स्थिति थी जब आप लोग अंदर?
2: रात में से ही बारिश होने लगा तो अपन उठे तो देखे तो बारिश ज्यादा बढ़ गया था, तो इसके लिए हमारा दिल घबराने लगा। मैं बोला अभी क्या करने का, तो फिर हमने बैठे थे तो वहाँ पे संजू भाई ने आया, उसने बोला कि भाई आप लोग का मदद मैं करता हूँ।
3: जब यहाँ पे हम आए तो ऐसा माहौल था यहाँ पे कि अंदर हम जा नहीं सकते थे, तो लेकिन हमारा सब टीम लोग थे, बच्चे लोग सब लोग ने तय किया नहीं आप लोग जाना पड़ेगा वहाँ पे अंदर निकलने के लिए, नहीं जाएंगे तो बच्चे फंस जाएंगे वहाँ पे।
0: सिर्फ इस मासूम को ही नहीं बल्कि रस्सी और ट्यूब की मदद से करीब 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेज बहाव और जल भराव के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना युवाओं ने राहत अभियान चलाया और कई परिवारों की जान बचाई। पालघर के इस संकट के बीच इन युवाओं ने उम्मीद और इंसानियत की एक नई मिसाल पेश की है। महाराष्ट्र के पुणे में इतनी बारिश हुई कि कई हाउसिंग सोसाइटी में पानी भर गया, लिहाजा लोग यहां फंस गए। छाती तक आ चुके पानी में रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए लोगों को एक एक कर बाहर निकाला। सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को निकाला गया, इसके बाद इमारत में दूसरे फ्लोर पर फंसे लोगों को बाहर नाव तक लाया गया। इस दौरान कई बुजुर्गों को उठाकर नाव में बैठाना पड़ा।
4: देखो सर बचाना ऊपर।
0: मुंबई के पास लोनावला में मूसलाधार बारिश हो रही है, कई घरों में पानी भरा तो एनडीआरएफ के जवान मदद के लिए पहुंच गए। नाव के जरिए टीमों ने पूरे इलाके का मुआयना किया और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। गुजरात के अमरेली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारी बारिश के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल पाया। ऐसे में अमरेली के राजुला में बारिश के बीच डॉक्टर्स की टीम ने एक महिला मरीज की जान बचाई। हुआ ये कि गांव में बीमार महिला तक पहुंचने के लिए डॉक्टर पानी के बहाव के बीच ट्रैक्टर से पहुंचे, फिर जेसीबी की मदद से उसे बाहर लेकर आए। बारिश के मौसम में हमेशा नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जाती है, लेकिन कर्नाटक के कोडगु में कॉलेज के कुछ छात्र सुरक्षा बैरिकेड पार कर झरने के प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए। तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके बाद सभी छात्र बीच में एक चट्टान पर फंस गए। खबर मिलते ही राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला और फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं देश के 23 से अधिक राज्यों में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है, जिससे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार और दिल्ली NCR में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण और मध्य भारत में भारी बारिश हो रही है, जिससे कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अखनूर में चेनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जबकि डोडा और किश्तवाड़ में भारी तबाही हुई है।
4: पिछले दो दिनों से जम्मू संभाग के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई है। इसके कारण कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की तो डोडा और किश्तवाड़ जिलों में इस भारी वर्षा के कारण काफी तबाही हुई है। डोडा जिले के ठाठरी इलाके में बारिश के कारण बाढ़ आ गई और साथ ही में सड़क पर जो है मलबा आ गया और इस बाढ़ और बारिश के कारण ठाठरी में कई मकान ढह गए, कई दुकानों को भी क्षति हुई और कई जो गाड़ियां हैं वो बाढ़ के पानी के कारण बह गए। प्रशासन जो है लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाई जा रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में काफी तबाही देखी जा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि डोडा के ठाठरी इलाके में कई जो मकान है वो ढह गए हैं इस बारिश और बाढ़ के कारण और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। डोडा किश्तवाड़ जो राजमार्ग है फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, कई स्थानों पर पत्थर गिराए हैं और मलबा भी जमा कई स्थानों पर हुआ है।
0: मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी के बीच मौसम विज्ञान विभाग ने समुद्र में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया है।
5: मुंबई और महाराष्ट्र के कई सारे हिस्सों में बताया गया था कि आज ऑरेंज अलर्ट है और बहुत तेज बारिश होने वाली है। हालांकि बारिश इस वक्त ज्यादा नहीं हो रही है, काले काले बादल जरूर मंडरा रहे हैं, तेज हवाएं समुद्र किनारे खासतौर से चल रही हैं और यही वजह है कि कोस्टल एरिया में आप देख लीजिए यहाँ पे पुलिस के लोग खड़े हैं और कोशिश इनकी यही है कि ज्यादा लोग समुद्र के किनारे नहीं जाएं। दरअसल हाई टाइड भी बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3.5 मीटर की हाई टाइड बताई जा रही है, लेकिन फिर भी ऑन ए प्रिकॉशनरी नोट लोगों को कहा गया था कि जैसे स्कूल जो मुंबई में खासतौर से बंद किए गए थे और साथ ही कहा गया था लोगों को वर्क फ्रॉम होम एनकरेज करने के लिए, ऐसा ही कुछ हाल नासिक में भी देखने को मिला जहां पर की वार्निंग दी गई थी कि तेज बरसात होगी लेकिन बीच बीच में मध्यम बरसात हो रही है, ज्यादा बरसात नहीं हो रही है। ज्यादातर अगर IMD के जो इमेजेस अगर आप देखें तो ज्यादातर जो चक्र जो बादलों का जो क्लाउड है वो ज्यादा से ज्यादा गुजरात और मध्य प्रदेश की तरफ चला गया है ऐसा दिख रहा है। और इस वक्त हालांकि IMD की वार्निंग है और कहा गया है कि तेज बरसात होगी।
0: हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज के साथ तेज हवाएं चलने और कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है।
6: आखिरकार उत्तर भारत में जुलाई के पहले हफ्ते मॉनसून दस्तक दे चुका है। चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए गए हैं। इस समय हम सुखना लेक पर हैं जहां पर बारिश इस समय तो नहीं है लेकिन बादल छाए हुए हैं और एक तपस एक ह्यूमिडिटी जरूर मौसम में है। अगर यहां पर बाहर कोई भी निकलता है तो ह्यूमिडिटी जरूर परेशान करती है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से चाहे वो हिमाचल है जिसमें 4 जिले मंडी, कांगड़ा, शिमला और सोलन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहीं पर बिलासपुर और सिरमौर में येलो अलर्ट है, बाकी जगह मौसम साफ रहने का अनुमान है। और पंजाब का मानसा हो जहां पर एक कच्चा बांध नदी के किनारे टूटा, 300 एकड़ फसल खराब हुई पिछले दिनों में पहली बारिश से, और साथ साथ पठानकोट हो या वो शहरी इलाका हो जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या इस इक्का दुक्का बरसात से ही सामने आई है। हरियाणा में भी पंजाब के साथ जैसे ऑरेंज अलर्ट पंजाब में है तो वैसे ही येलो अलर्ट हरियाणा में जारी किया गया है। 9 जुलाई का अनुमान है और अगले 2 से 3 दिन हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया गया है।
0: वहीं दिल्ली NCR में लंबे इंतजार के बाद ठंडी हवाओं और झमाझम बरसाती बूंदों के कारण तापमान में कमी आई है और मौसम सुहाना हो गया है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को इस बारिश ने बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र के पालघर से मोहम्मद हुसैन खान, मुंबई से विद्या, चंडीगढ़ से अमन भरद्वाज और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ अखनूर से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम तक भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बारिश का क्या है हाल, देखिए हमारे संवाददाता अनमोल बाली की रिपोर्ट।
7: दिल्ली में मानसून की पहली झमाझम बारिश की शुरुआत हो गई है। समय मैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में खड़ा हूँ और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि कैसे इस समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घने बादल छाए हुए हैं और पानी झमाझम बरस रहा है, क्योंकि 2 जुलाई से देखा गया था मौसम विभाग का जो अनुमान था कि दिल्ली में मानसून दस्तक देगा, मानसून ने दस्तक दी और पर देखा गया कि बारिश नहीं हो रही थी, उमस भरे दिन थे। इसी बीच एक तरफ तो देश के कई राज्यों में जो बारिश है इस समय लोगों के लिए मुसीबत पर, वहीं राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बारिश एक उमस वाले दिनों में सौगात बनकर आई है। और वहीं बारिश को देखते हुए अभी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जो है इशू किया है। सुबह देखा गया कि ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया, फिर दिल्ली को देखते हुए रेड अलर्ट इशू किया गया। उसी बीच तस्वीरें आप मेरे साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस की देख रहे हैं, जहां लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं। एक तरफ तो उमस से राहत और वहीं दूसरी तरफ झमाझम बरसते हुए बादल। और वहीं मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि ट्रैफिक मूवमेंट भी अगर आप देखें बारिश के कारण, उस पर भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं उनकी जो रफ्तार है धीमी हो गई है। विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट इशू किया और साथ ही लोगों को चेतावनी दी है कि अगर आप किसी जर्जर इमारत के पास रहते हैं, जर्जर इमारत में रहते हैं, किसी जर्जर पेड़ के पास खड़े हैं, तो किसी सुरक्षित स्थान पर जाके खड़े हो जाएं या सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि आने वाले एक दो दिन में देखा जाएगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे ही बारिश पड़ने का अनुमान है। और साथ ही अगर बात की जाए साउथ वेस्ट मॉनसून की, तो देखा जा रहा है कि मॉनसून ने अभी रफ्तार पकड़ी है और उत्तर भारत के कई राज्यों में देखा जाएगा कि एक दो दिन तक जो मॉनसून के बादल हैं वो दस्तक देंगे, जहां देखा जा सकता है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई राज्यों में भी झमाझम बारिश होने के आसार पैदा हो सकते हैं। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ अनमोल नाथवाली की दिल्ली से रिपोर्ट।
0: दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
8: उत्तर प्रदेश के रहने वाले कन्हैया कुमार रोलर स्केट्स के जरिए अमरनाथ यात्रा पर निकले हैं। 20 साल के कन्हैया कुमार पिछले साल 29 अक्टूबर को अपने घर से रवाना हुए थे और बीते 10 महीनों में 14 राज्यों से होते हुए कश्मीर के काजीगुंड पहुंचे हैं। कन्हैया कुमार ने बताया कि उनकी ये अनोखी यात्रा भगवान शिव को समर्पित है और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देगी। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था की जमकर तारीफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली को 300 ई बसों की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने 11 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी की। दिल्ली के 2 लाख लोगों को एक पेड़ माँ के नाम से जोड़ा जाएगा। वहीं दिल्ली के 250 वार्ड और 70 विधानसभा क्षेत्र में जन भागीदारी के साथ पौधारोपण कराया जा रहा है। फेंसिंग के साथ ही पौधों की जियो टैगिंग कराई गई है ताकि निगरानी सुनिश्चित हो। अगर पौधों को किसी प्रकार नुकसान हो तो वहां नए सिरे से पौधे लगाए जा सकें। ओडिशा के पुरी में होने वाली सालाना जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पुलिस ने मेगा मॉक ड्रिल की। पुलिस ने पुरी रेलवे स्टेशन समेत कई महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया ताकि रथ यात्रा के दौरान जुटने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुरी में 16 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत होगी।
0: अब बात अमरावती की मां अंबे देवी मंदिर की। महाराष्ट्र के चिखलदरा में पहाड़ियों के बीच मौजूद एक ऐसी गुफा है जहां पर आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ दिखाई देते हैं। करीब 400 साल पुराने मां अंबे देवी की इस गुफा मंदिर में सबसे खास बात यह है कि यहां साल के 365 दिन प्राकृतिक जलधारा लगातार बहती रहती है और शिवलिंग का निरंतर जलाभिषेक होता रहता है।

0: महाराष्ट्र के अमरावती जिले का चिखलदरा विदर्भ का एकमात्र हिल स्टेशन ही नहीं बल्कि महाभारत कालीन इतिहास प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम भी है। बादलों से ढकी ऊंची पहाड़ियाँ, हरियाली से ढकी घाटियाँ और इन्हीं चट्टानों के बीच सदियों पुरानी एक रहस्यमयी गुफा जहाँ प्रकृति खुद माँ शक्ति की आराधना करती दिखाई देती है। इस गुफा में प्रवेश करते ही भक्ति की अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। ये गुफा जितनी ऐतिहासिक है उसे लेकर पौराणिक मान्यताएं भी उतनी ही गहरी और पुरानी है। इस गुफा को पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम पड़ाव भी माना जाता है और यहाँ विराजमान माँ अम्बे की संगमरमर की ये आकर्षक प्रतिमा श्रद्धालुओं को पहली ही नजर में अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। दोनों हाथों में तलवार धारण किए माँ का दिव्य स्वरूप शक्ति साहस और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। खास बात यह है कि इस मंदिर में आदिवासी समाज गवली समुदाय सहित दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में माथा टेकने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना यहां पूरी होती है।
1: अमरावती के हिल स्टेशन चिखलदरा में एक जो है यहां पर गुफा है, वो गुफा बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी कि महाभारत काल से भी अधिक पुरानी ये गुफा मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर ये गुफा है। और इस गुफा के अंदर अब यहाँ जो है अम्बा देवी संस्थान के चलते जो है देवी माँ की मूर्ति लगभग 400 साल से भी अधिक समय से यहाँ पर उसको स्थापित किया गया है। और सबसे अहम बात यही है कि ये देवी माँ का जो स्वरूप है और जो मूर्ति है वो संगमरमर की मूर्ति है और माँ के इस रूप को आप देख सकते हो कितना सुंदर है माँ का रूप। लेकिन माँ के इसी गुफा में बैठी इस माँ के सामने जो है निरंतर 12 ही महीने जो है निरंतर इस गुफा में जो पानी है वो पानी निरंतर यहाँ पर गिरता है। माता रानी का ये दर्शन लेकर और इस गुफा में किस तरह का पानी निरंतर गिरता है, क्या देखा है तुमने?
2: हमने अभी देखे चंद्रपुर के हम आए, चंद्रपुर जिला वरोरा, हमने देखे चिखलदरा देखे, हमने पानी आप गिर रहा है, पूरा पानी बंद है अभी, पानी बरसात भी बंद है तो अभी पानी गिर रहा है, बोला 12 महीना पानी गिर रहा है।
1: क्या मांगा माता से?
2: माता के माने माना हमें पूरी इच्छा पूरी करो।
0: इस गुफा की सबसे अनोखी पहचान है यहाँ बनने वाली प्राकृतिक जलधारा। विशाल चट्टानों के बीच से निकलने वाला निर्मल जल बिना रुके पूरे साल इसी तरह 2400 घंटे झरने की तरह बहता रहता है। यही जलधारा सीधे मंदिर परिसर में गिरती है और फिर स्वयं भगवान शिव के शिवलिंग का निरंतर जलाभिषेक करती है। श्रद्धालु इसे प्रकृति और परमात्मा के अद्भुत मिलन का जीवंत प्रमाण मानते हैं। सवाल है कि आखिर ये पानी कहाँ से आता है, तो इसका कोई निश्चित वैज्ञानिक उत्तर आज तक सामने नहीं आया है। हालांकि मंदिर के पुजारियों के अनुसार इसे चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित घटनाओं और अमरावती के सरकारी गजेटियर के अनुसार चिखलदरा वह क्षेत्र है जहां विराट राजा के साले और सेनापति कीचक का वध महाबली भीम ने किया था। युद्ध के बाद भीम ने अपने रक्त रंजित हाथ जिस कुंड में धोए वो आज भी भीम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसी घटना के कारण इस स्थान का नाम पहले कीचक धारा पड़ा जो समय के साथ अब भ्रंश होकर चिखलदरा बन गया है। महाभारत की अमर गाथा 400 वर्षों से जलती आस्था की लौ और 12 महीने निरंतर बहने वाली प्राकृतिक जलधारा चिखलदरा की ये पांडवकालीन गुफा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि इतिहास संस्कृति और प्रकृति का ऐसा अद्भुत संगम है जो हर आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक को रोमांच श्रद्धा और आध्यात्मिक अनुभूति से भर देता है। यही कारण है कि विदर्भ के इस अनोखे तीर्थ की पहचान लगातार बढ़ती जा रही है।
1: इसी बीच जो है यहाँ पर दूसरा भी मंदिर है जो भोलेनाथ का मंदिर है, वो भोलेनाथ के मंदिर पर इसी गुफा के अंदर आप देख सकते हो कि निरंतर जलाभिषेक जो है वो यहाँ पर इस जो पहाड़ी के अंदर से जो पानी आता है वो निरंतर इसे जलाभिषेक में यहाँ पर रूपांतर होता है। ऐसी ही ये जो गुफा है वो अपने आप में अलग है, और सबसे अहम बात यही है कि इस गुफा के ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है एक नदी का उगम है और उगम स्थान है। और सबसे दूसरी महत्व की बात है कि निरंतर यहाँ पर जो है वो देवी माँ के मंदिर के अंदर इस गुफा के अंदर निरंतर जो है पानी गिरता है, और यही जो यहाँ पर भक्तों की भक्ति है, आराधना है, साधना है, वो यहाँ पर बड़े भाव से यहाँ पर भक्त जो है अपनी आराधना साधना पूजा करने के लिए और अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं। अमरावती के चिखलदरा से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे।
0: न्यूज पेपर आगे है धनबाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपके जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धनबाजार। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 104 अंकों की गिरावट के साथ 78,180 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 31 अंकों की गिरावट के साथ 24,398 पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में सुस्ती और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होने की वजह से आज गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में गिरावट मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1400 रुपए गिरकर 149,250 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 200 रुपए लुढ़ककर 239,800 रुपए पर पहुंच गई। 7 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में मजबूती देखने को मिली। मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 48 पैसे मजबूत होकर 94.95 के स्तर पर बंद हुआ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
4: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे।
6: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
7: पुणे में धूमधाम से निकली जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी, हरिनाम के जय घोष से गूंजा शहर, ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक वेशभूषा में दिखे लोग। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन, काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना। गुजरात के कई इलाकों में जमकर बरस रहे हैं बदरा, सूरत नवसारी में भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया में प्रेम और अपनापन मिला। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाभियान का शुभारंभ, नानकपुरा रिज में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण, गृहमंत्री अमित शाह ने शुरुआत की।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस मेड इन इंडिया दम की जिसकी धाक आज सारी दुनिया में जम चुकी है। आज पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई दे रही है। हाल ही के सालों में भारत का डिफेंस सेक्टर सुपर फास्ट स्पीड के साथ आगे बढ़ा है। एक दशक से भी कम वक्त में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है, बल्कि अब उनके इम्पोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। दो तस्वीरें आपके सामने, ये आज की तारीख में भारत के मेक इन इंडिया मिशन की कामयाबी बयां करने वाली तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि भारतीय नेवी का अपना महेंद्र बाहुबली। ये नीलगिरी क्लास का मेड इन इंडिया युद्धपोत है। ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट इसी हफ्ते भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। नाम है INS महेंद्रगिरी। तो वहीं दूसरी तस्वीर है उस मेड इन इंडिया धाकड़ मिसाइल की, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। भारत का ब्रह्मोस अस्त्र। जल्द ही इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल खरीदने जा रहा है। पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और आज इस डील से जुड़ा MOU साइन किया गया। तो चलिए आपको बताते हैं क्यों खास है भारत की ये मिसाइल और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के वर्तमान हालात को देखते हुए ये डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है।

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर पल एक नई ऊंचाई को छू रहा है। देश में ही ऐसे ऐसे हथियार गढ़े जा रहे हैं जो ताकत और तकनीक के मामले में बेहतरीन है। आज हिंदुस्तान के हथियार ग्लोबल हो रहे हैं। इंडियन वेपन की ताकत को दुनिया महसूस कर रही है और इसी का नतीजा है कि भारत डिफेंस सेक्टर में वेपन एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बढ़ा रहा है। इसकी सबसे ताजा तस्वीर आई है इंडोनेशिया से।
1: एयर टू एयर मिसाइल कोऑपरेशन अग्रीमेंट बिटवीन भारत डायनामिक्स एंड रिपब्लिक कॉर्प।
0: दुनिया की सबसे खतरनाक और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की अतिरिक्त बैटरियां खरीदने के लिए इंडोनेशिया ने फाइनल डील पर मुहर लगा दी है। पहले से ही भारत के ब्रह्मोस का खरीदार इंडोनेशिया ऑपरेशन सिंदूर में इस अचूक मिसाइल की ताकत को देख चुका है। भारत ने इसी मिसाइल के हमले से पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए थे। मुरीद के में लश्कर और बहावलपुर में जैश के ठिकानों को ब्रह्मोस ने धूल में मिला दिया था। अब Mach 3 की विनाशकारी गति से उड़ने वाली ब्रह्मोस जब इंडोनेशिया के तटीय इलाकों में तैनात होगी तो साउथ चाइना सी में चीन दादागिरी करने से पहले 100 बार सोचेगा।
2: देखिए, ब्रह्मोस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इस समय विश्व में रशिया और इंडिया के अलावा किसी देश के पास नहीं है और इंडो पैसिफिक रीजन में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। महत्व इसलिए है कि ये शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है, हवाई जहाज से भी लॉन्च किया जा सकता है और ग्राउंड से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के अगर हम उसकी सुरक्षा की बात करते हैं तो इसका इंडोनेशिया और भारत दोनों के पास होना एक तरह का एक जो मिलके हम जो है उस खतरे का सामना कर सकते हैं उसके लिए ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा।
0: दरअसल ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे कैसे भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस की स्पीड ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा होती है। हर मोर्चे पर भी ब्रह्मोस की तैनाती संभव है। इसे जमीन, समंदर, हवा कहीं से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। ये मूविंग यानी चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। इसकी स्ट्राइक क्षमता इतनी कमाल है कि ये 400 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। ब्रह्मोस में दूसरे स्टेज का रैमजेट इंजन लगा है जो इसे सुपरसोनिक स्पीड देता है और फ्यूल की खपत को कम करता है।

0: ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसका अचूक निशाना है। सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर यह मिसाइल सटीक वार करते हुए 1 मीटर के दायरे में जाकर गिरती है, यानी इसकी अचूक मारक क्षमता के आगे दुश्मन के किसी भी टारगेट का बचना नामुमकिन है। अचूक मारक क्षमता के साथ साथ ब्रह्मोस की रफ्तार इसकी एक और बड़ी ताकत है।
1: क्या इसकी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि 300 से ज्यादा, अभी तो इसका दूसरा वर्जन जो है वो 400-450 किलोमीटर तक भी जाता है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वो शिप्स को बिल्कुल खत्म कर सकता है। और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, सुपरसोनिक है, कि कोई इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, सैटेलाइट से डिटेक्शन नहीं हो पाता है, रडार से डिटेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत लो फ्लाइंग है। अगर हम समुद्र से इसके बोलते हैं 5 मीटर की ऊंचाई पर भी समुद्र के ऊपर फ्लाई कर सकता है।

0: अगर आज दुनिया मिसाइल पावर के मामले में भारत की ताकत का लोहा मान रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ब्रह्मोस है। खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो ब्रह्मोस दुनिया भर की नजर में आ गई है। वैसे भारत के तर्कश में ब्रह्मोस नाम का यह कमाल का ब्रह्मास्त्र 25 साल पहले ही शामिल हो चुका था, क्योंकि यह मिसाइल भारत और रूस के साझा मिशन का नतीजा है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था। इस मिसाइल के निर्माण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के तत्कालीन प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और रूस के उप रक्षा मंत्री NV मिखाइलोव ने 12 फरवरी 1998 को हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद इसका पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। और आज ये मेड इन इंडिया मिसाइल दुनिया भर के देशों में अपना लोहा मनवा रही है।
1: इंडोनेशिया और भारत के बीच ये समझौता एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसका प्रोडक्शन भी वहाँ हो सकता है और वहाँ हमारे यहाँ भी इसका प्रोडक्शन होता है, और भारत के लिए एक्सपोर्ट होने से एक इकोनॉमिक गेन भी है। तो सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक गेन के लिए अच्छा है, और इंडोनेशिया और भारत के जो सामरिक रिलेशनशिप है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा समझौता, एक बहुत बड़ा कदम है। मैं सोचता हूँ कि इसको आगे ले जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमें इंडोनेशियन एयरफोर्स या उनकी आर्मी के साथ मिलकर उसका प्रोडक्शन वहां करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो इंडो पैसिफिक सुरक्षा है उसको बढ़ावा मिले।

0: आपको बता दें कि फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया के साथ इस डील से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत ने एक बड़े रक्षा साझेदार के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया है। इंडोनेशिया और चीन के संबंधों पर नजर डाले तो ये साफ होता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के बावजूद रणनीतिक असहमति बनी हुई है। वहीं भारत और इंडोनेशिया अब दोस्ती के नए मुकाम की ओर चल रहे हैं। इस तरह इंडोनेशिया का भारत के पाले में आना बीजिंग के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और इसी दौरान ये इस डील के एमयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वैसे आपको बता दें, ब्रह्मोस के अलावा इंडोनेशिया ने अपनी पुरानी रूसी R-77 मिसाइलों को हटाकर भारत की इस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को खरीदने का ऐतिहासिक फैसला भी किया है।
2: एयर टू एयर मिसाइल कोऑपरेशन अग्रीमेंट बिटवीन भारत डायनामिक्स एंड रिपब्लिक कॉर्प।
0: मैक 4 प्लस की सुपरसोनिक रफ्तार और 110 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल जब इंडोनेशिया के फाइटर जेट से उड़ेगी तो दुश्मनों को संभलने का एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI ने अस्त्र से पाकिस्तानी जेट्स को निशाना बनाया और उसे जमीन पर ला दिया। इंडोनेशिया ने भी देखा कि भारत का अस्त्र पाकिस्तान की चीनी PL-15E मिसाइलों से कई गुना बेहतर साबित हुआ। उसी कामयाबी को देखते हुए इंडोनेशिया ने ये डील की है।
3: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में बने हथियारों का लोहा पूरी दुनिया ने माना और पाकिस्तान के भीतर आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करने वाली ब्रह्मोस और अस्त्रा जैसी मिसाइलों ने अपनी विश्वसनीयता और अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाई और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ोतरी मिली है। अब इंडोनेशिया ने फैसला किया है कि वो ब्रह्मोस के साथ एस्ट्रा मिसाइल भी खरीदेगा। एस्ट्रा यानी भारत में बनने वाली वो मिसाइल जो एयर टू एयर के लिए जानी जाती है, एस्ट्रा मैक 1, जिसे सुखोई 30 में इंटीग्रेट किया गया है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया अब भारत से ये मिसाइल लेना चाहता है क्योंकि इंडोनेशिया के पास भी Su-30 विमान है और अब वो अपने विमानों में एस्ट्रा मिसाइल लगाना चाहता है, जिसको अब ये देखा जा रहा है कि किस तरह से भारत के जो हथियार हैं वो लगातार पूरी दुनिया में अपनी मांग बढ़ा रहे हैं। हालांकि इंडोनेशिया वो पहला देश है जिसने एस्ट्रा मिसाइल के लिए बातचीत की है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है, लेकिन ब्रह्मोस को खरीदने वाला इंडोनेशिया अब तीसरा देश होगा क्योंकि फिलीपींस के बाद वियतनाम से और अब इंडोनेशिया से इसकी बातचीत चल रही है। तो लगातार भारत के हथियार पूरी दुनिया में अपनी धमक दिखा रहे हैं और भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ रहा है और इंडोनेशिया अब ब्रह्मोस के साथ साथ एस्ट्रा मैक 1 एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स भारत से खरीदेगा।
0: इंडोनेशिया से यह समझौता गवाह है कि भारत अब रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि ग्लोबल एक्सपोर्टर बन चुका है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब बात भारत के महेंद्र बाहुबली की। अब से 3 दिन बाद विशाखापट्टनम में INS महेंद्र गिरी का कमिश्निंग समारोह है, जहां इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के बेड़े में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया जाएगा। महेंद्र गिरी एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसके आने से भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत और सामर्थ्य हासिल होगा।

0: स्थित प्रज्ञः रणेषु अपराजितः, यानी वो जिसकी बुद्धि स्थिर है, अडिग है, वो जो युद्धों और संघर्षों में अपराजित रहता है। अपने आदर्श वाक्य की तरह ही सागर की लहरों पर सदा अपराजित रहने का दम और सामर्थ्य लेकर आ रहा है नौसेना का महेंद्र बाहुबली। सागर का वो बाहुबली जिसे देश के पूर्वी घाट पर मौजूद प्रसिद्ध महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर अपना नाम मिला है। वो महेंद्रगिरी पर्वत जो शक्ति, धैर्य और अडिग संकल्प का प्रतीक है, भारतीय नौसेना के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी युद्धपोत को महेंद्रगिरी नाम दिया गया है। 11 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना के लिए इस नए अध्याय की शुरुआत होगी, जब नौसेना के बेड़े में INS महेंद्रगिरी को शामिल किया जाएगा। INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तैयार किया गया 6th गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसका डिजाइन भारतीय नौसेना के WDB यानी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है।
1: भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत अपना 6th वॉरशिप महेंद्रगिरी मिलने वाला है। महेंद्रगिरी विशाखापट्टनम में 11 जुलाई को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। इसकी कमिश्निंग की जाएगी। प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत भारत में बनने वाला ये 6th वॉरशिप है। इसके पहले 5 दूसरे वॉरशिप्स भी भारतीय नौसेना का हिस्सा बन चुके हैं। महेंद्रगिरी को भारत में MDL ने बनाया है और नेवल वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसे डिजाइन किया है। तेजी से आत्मनिर्भर होती भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने वाले महेंद्रगिरी की ताकत की अगर हम बात करें तो इसमें बराक मिसाइल्स के साथ साथ ब्रह्मोस और टॉर्पीडोज की ताकत है। 6,600 टन के डिस्प्लेसमेंट वाला ये जहाज अत्याधुनिक सिस्टम से लैस है और भारतीय नौसेना को भारत में निर्मित होने वाले जहाजों की ताकत में इजाफा करने वाला ये जहाज बेहद कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के दौरान भारतीय जहाजों की तैनाती, हर तरफ भारतीय नौसेना लगातार सशक्त हुई है।
0: ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। INS महेंद्रगिरी में सुपर एडवांस्ड कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आधुनिक सेंसर, एंटी सबमरीन वेपन्स और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और पनडुब्बियों से ये एक साथ मुकाबला कर सकता है। महेंद्रगिरी फ्रिगेट स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जो दुश्मन के रडार को चुनौती देगा समुद्र में चुपचाप आगे बढ़ने और जरूरत पड़ने पर घातक प्रहार करने में इसका कोई मुकाबला नहीं। सबसे अहम बात ये कि महेंद्रगिरी के निर्माण में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
2: भारत की नेवी की ताकत में और इजाफा हो रहा है। INS महेंद्रगिरी अगर देखा जाए तो अत्यधिक ताकतवर फ्रिगेट है, जो कि देश में ही बना है। 75% हिस्से इसके देश में बने हुए हैं। इसके अंदर आधुनिक स्टेल्थ है, यानी कि एक रडार को द्वारा इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सामने का इसका हल्का क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है। ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है जो कि रडार को देखने के लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अत्याधुनिक हथियार इसके ऊपर लगे हुए हैं। आप देखिए, इसके ऊपर ब्रह्मोस है जो जमीन से ज़मीन पर मार करता है, यानी कि शिप से ज़मीन पर। इसमें बराक है जो कि शिप से एयर हवाई में मार करेगा। एंटी सबमरीन इसमें मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, टॉर्पीडो लगे हैं, जो कि आधुनिक सबमरीन को खत्म करने के लिए है।
0: महेंद्रगिरी भले ही एक वॉरशिप है, लेकिन इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल युद्ध के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान, समुद्री सुरक्षा गश्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिशंस में किया जा सकेगा। समुद्र में फंसे लोगों की सहायता से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने तक ये कई अहम जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है।
1: लगातार भारतीय नौसेना की ताकत आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ रही है और 2047 तक भारतीय नौसेना 100% आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखती है। अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो ये 75% इंडिजनाइज है। अगर इसकी क्षमताओं की बात करें तो ये कंबाइंड डीजल और गैस टेक्नोलॉजी के इंजन के साथ लैस है। किसी भी तरह के एंटी एयर वॉरफेयर या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैयार है और अपने क्लास के तमाम दूसरे शिप्स की तरह ये भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा कर रहा है।
0: आपको बता दें कि जिस प्रोजेक्ट 17A के तहत INS महेंद्रगिरी कमीशन होने वाला है उसका इतिहास लगभग 2 दशक पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने साल 2009 के जून महीने में इसका कॉन्सेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था।

0: प्राप्त नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स को लॉन्च कर दिया था। 17A प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं। इनमें 4 फ्रिगेट मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि 3 फ्रिगेट बनाने की जिम्मेदारी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता को मिली थी, जिसमें हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी शामिल हैं।
1: तो प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत इसे भारत में बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा जिसके तहत 45,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 वॉरशिप्स को भारत में बनाया गया, जिन्हें MDL और GRSE ने मिलकर बनाया है। हाल ही में महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, जिसके बाद तमाम सी ट्रायल्स हुए, हर तरह के परीक्षण हुए और अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए महेंद्रगिरी पूरी तरह से तैयार है। महेंद्रगिरी से पहले दूनागिरी और तमाम दूसरे जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। पिछले महीने एक ट्रिपल कमिशनिंग के तहत इस पूरे प्रोजेक्ट के 5वें जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और अब 6ठा यानी कि महेंद्रगिरी भी भारतीय नौसेना में कमीशन हो रहा है।
0: निश्चित रूप से भारत का ये महेंद्र बाहुबली नौसेना की शक्ति में कई गुना इजाफा करने वाला है। INS महेंद्रगिरी की कमीशनिंग के बाद भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिलेगी। समंदर की सीमा की रक्षा में सागर का ये प्रहरी मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब बात तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की। वायुसेना जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस साल सितंबर अक्टूबर के महीने में जोधपुर में होने वाली इस एयर कॉम्बैट ड्रिल का नाम ऑपरेशन तरंग शक्ति है। ऑपरेशन तरंग शक्ति 2026 में कई देशों की वायुसेनाएं इसमें हिस्सा लेंगी। ये तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण होगा। इससे पहले साल 2024 में भारतीय सेना ये मेगा युद्धाभ्यास कर चुकी है। तरंग शक्ति मेगा युद्धाभ्यास में वायुसेना के जवानों को दुनिया के दूसरे वायु सैनिकों की काबिलियत परखने का मौका मिलेगा। तरंग शक्ति जैसे युद्धाभ्यास से भारत के हवाई योद्धाओं को दूसरे देशों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का मौका मिलता है। ये कोशिशें भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए वायुसेना को पहले से तैयार करने की अहम पहल है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा।
1: भारतीय वायुसेना अब तक की सबसे बड़ी एयर कॉम्बैट ड्रिल तरंग शक्ति के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार इतनी बड़ी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जोधपुर में होने वाली है। 28 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच तरंग शक्ति अपने तमाम वायुसेनाओं के साथ भारत की वायुसेना की ताकत दिखाएगी। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि 2024 में तरंग शक्ति का पहला एडिशन भारतीय वायुसेना ने होस्ट किया था, जिसे 2 फेजेस में किया गया था, जोधपुर और सुलूर। और अब दूसरी बार यानी 2026 में तरंग शक्ति होने वाला है, जिसमें एक बार फिर 2 दर्जन से ज़्यादा पूरी दुनिया की वायुसेनाएं हिस्सा लेंगी, जिसमें तमाम देश चाहे वो UK, जर्मनी, US हो, उन सभी को न्योता भेजा गया है। यानी भारतीय वायुसेना अपनी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में कॉम्बैट कैपेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी दोनों दिखाएगी और वो भी पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक। कैमरा पर्सन प्रेमचंद्र के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए शिवानी, दिल्ली।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: You hear it once and remember everything. Too sexy for your party. Too sexy for your party. One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: कोटा के एक स्टूडेंट ने ऐसा स्मार्ट प्लांट पॉट तैयार किया है जो पौधों की जरूरतों को आसान तरीके से समझने में मदद करता है। ये स्मार्ट इमोशन पॉट सेंसर और तकनीक

0: की मदद से पौधे की स्थिति पर नजर रखता है और पानी, धूप या फिर देखभाल की जरूरत होने पर मोबाइल पर इमोजी के जरिए अलर्ट भेजता है। इस अनोखे इनोवेशन का मकसद पौधों की देखभाल को आसान, रोचक और तकनीक से जोड़ना है।
1: जरा सोचिए, अगर आपके घर का पौधा बोल पाता तो शायद आपको अपना हाल बताता और आप उसकी जरूरत को पूरा कर पाते। अब तक ये सिर्फ कल्पना थी, लेकिन कोटा के एक युवा इनोवेटर ने इस कल्पना को हकीकत में बदलने की पहल की है। आजाद पब्लिक स्कूल के छात्र और वेल्ट्रियोनेक्स स्मार्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक आर्यन सिंह ने ऐसा स्मार्ट इमोशन पॉट बनाया है जो पौधों की खामोशी को इमोजी की भाषा में बदल देता है।
2: जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जान आ गई है, जहाँ पे प्लांट जो है अपने इमोशन शो कर सकता है कि हाँ उसको प्यास लगने में वो रो रहा है, अंदर रहने पे अगर अकेला है तो उसको डर लग रहा है, या मोशन सेंस कर रहा है तो डर लग रहा है, नाइट में वो सो रहा है, तो जहाँ पे हम उसको देख सकें कि वो एक हमारा फ्रेंड है, हम एज अ फ्रेंड ट्रीट कर सकें उसको।
1: आज के दौर में लोग बड़े जोश से पौधे तो घर ले आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद भागदौड़ भरी जिंदगी में वही पौधे एक कोने में अकेले छूट जाते हैं। पौधों को कभी समय पर पानी नहीं मिलता, कभी धूप नहीं मिल पाती। जब पौधा मुरझाने लगता है तब हमें पेड़ों की तकलीफ पता चलती है। इसी प्रॉब्लम के हल के तौर पर आर्यन को इस स्मार्ट गमले का आइडिया आया।
2: हमने कि कुछ ना कुछ एक ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि वो किसी इंसान से इंटरेक्ट करते हैं, कर सके। जैसे कि हमें पता है आज इंसान आपस में बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो जाता है, लोग एक दूसरे से काफी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो ये हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा प्लांट के साथ किया जाए ताकि उसको एज अपना फ्रेंड ही उसको ट्रीट करें और अपनी सारी बातें उसको शेयर कर सकें, उसके इमोशन देख सकें कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है हर एक चीज में।
1: ये सिर्फ एक स्मार्ट गमला नहीं बल्कि एक डिजिटल प्लांट कंपेनियन है। इसमें लगे सेंसर मिट्टी में नमी, पौधों के हिसाब से तापमान, पानी की जरूरत और रोशनी की आवश्यकता को भाप लेते हैं और ये स्मार्ट गमला अपने एक्सप्रेशन से हमें पौधों की जरूरत के बारे में बता देता है। जैसे जैसे पौधे की जरूरत बदलती है वैसे वैसे स्क्रीन पर उसके चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं।
2: ध्यान में रखकर इसको बनाया, इसके अंदर अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं जो कि अलग अलग चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर मॉइस्चर लेवल या मॉइस्चर या वाटर लेवल है तो उसको वो सेंसर देख रहा है, मोशन को मोशन सेंसर डिटेक्ट करने के लिए कर रहा है कि उसके साथ अगर कोई है, तो उसको पूरा बच्चों से फ्रेंडली बनाया है कि अगर वो इतना अभी से ही उतना केयरिंग बन जाते हैं तो आने वाले टाइम पे कुछ वो बेटर आउटपुट दे सकते हैं इस एनवायरमेंट को।
1: आज की पीढ़ी मोबाइल और गैजेट्स के साथ तो जल्दी जुड़ रही है, लेकिन प्रकृति से उनका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में ये स्मार्ट इमोशन पॉट इंसानों और पौधों के बीच दोस्ती का पुल बन सकता है। आर्यन का कहना है कि आने वाले समय में इस स्मार्ट इमोशन पॉट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और API मॉडल से और स्मार्ट बनाया जाएगा ताकि भविष्य में ये सिर्फ चेहरे के भाव ही ना दिखाए बल्कि यूजर से बात भी कर सके। कोटा से चेतन गुर्जर, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
5: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
6: Keep it on smooth jazz.
7: This is Roots Reggae
8: exclusively on TuneIn.
9: This is classic hip hop
10: exclusively on TuneIn.
4: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music and news you love anytime you want.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: पुणे में धूमधाम से निकली जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी, हरिनाम के जयघोष से गूंजा शहर, ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक वेशभूषा में दिखे लोग। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन, काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना। गुजरात के कई इलाकों में जमकर बरस रहे हैं बदरा। सूरत नवसारी में भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेजों में छुट्टी। प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया में प्रेम और अपनापन मिला। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाभियान का शुभारंभ। नानकपुरा रिज में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण गृहमंत्री अमित शाह ने शुरुआत।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
7: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा अमरनाथ यात्रा और श्रद्धालुओं की सुविधा की भी है।
0: बम बम भोले, हर हर महादेव और जय बर्फानी बाबा के जयकारों से अमरनाथ यात्रा मार्ग गूंज रहा है। श्रद्धालु पवित्र गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए इस साल अब तक का सबसे बड़ा श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। इस जत्थे में शामिल 8,815 श्रद्धालुओं में 31 विदेशी भी यात्रा का हिस्सा बने हैं। यात्रा के शुरुआती चार दिनों में ही 93,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा के साथ ही श्रद्धालु की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बालटाल बेस कैंप से लेकर रामबन के चंद्रकोट तक यात्रियों को मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जा रही है। पवित्र अमरनाथ यात्रा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए ग्रामीण स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर हलचल शुरू हो गई है। 30 जुलाई से शुरू होने वाला कांवड़ मेला सकुशल होने की कामना को लेकर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा की ओर से मालवीय घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ आरती की गई। इस विशेष अवसर पर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने नियमों वाला एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें कांवड़ियों को कांवड़ उठाने के नियम बताए गए हैं। इस पोस्टर में कांवड़ियों से कांवड़ उठाने के नियमों का पालन करते हुए कांवड़ उठाने और अपने गंतव्य तक ले जाने के साथ ही वजनी कांवड़ नहीं उठाने का आग्रह किया गया है। अखाड़े से जुड़े साधु संतों और पंडितों ने शिव भक्तों से तीर्थ नगरी की मर्यादा बनाए रखने के लिए भी निवेदन किया है। श्रद्धालुओं को बड़े बड़े डीजे लेकर आने से बचने की सलाह दी गई है, ताकि उसकी तेज आवाज और धमक से किसी को किसी भी तरह की असुविधा या परेशानी का सामना न करना पड़े। श्री गुरु गोरखनाथ अलक अखाड़ा परिषद की ओर से हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में 11 महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक किया गया। समारोह में सभी महामंडलेश्वरों को चादर विधि करके पट्टाभिषेक किया गया और संतों ने फूलों की बारिश करके आशीर्वाद प्रदान किया। इस अखाड़ा परिषद ने 51 महामंडलेश्वर बनाने का लक्ष्य रखा है और अब तक 41 महामंडलेश्वर बनाए जा चुके हैं और बाकी 10 महामंडलेश्वरों को बनाने की तैयारी हो रही है। कुंभ से पहले इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। जिन 11 महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक किया गया है, उन्हें गुरु गोरखनाथ अलग अखाड़े से जुड़े हुए 4-5 वर्ष हो गए हैं और अब बतौर महामंडलेश्वर वो अपने कर्तव्य को निभाएंगे। ये तस्वीरें पंजाब के फरीदकोट की हैं, जहां आयोजित दस्तार प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 6 से 15 साल की उम्र के 60 बच्चे शामिल हुए, जिन्होंने दस्तार यानी पगड़ी बांधने की कला का पूरे आत्मविश्वास, अनुशासन और अपनी सिख विरासत के प्रति समर्पण का पूरी कुशलता से प्रदर्शन किया। इन छोटे छोटे बच्चों ने खुद से पगड़ी बांधी। रंग बिरंगी पगड़ियों में ये बच्चे बेहद सुंदर लग रहे थे। प्रतियोगिता में विजेताओं का चयन दस्तार बांधने की कला, साफ सुथरापन, प्रस्तुति, संतुलन, आत्मविश्वास, पारंपरिक शैली, फिनिशिंग और समग्र प्रभावशाली प्रदर्शन सहित कई महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित शमशान घाट की अपन पाठशाला में बच्चे पढ़ाई करने के साथ साथ मशहूर मिथिला पेंटिंग भी सीख रहे हैं और आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये खूबसूरत पेंटिंग इन बच्चों ने ही बनाई है। अपनी इस शानदार कला के जरिए बच्चे अपनी पढ़ाई का खर्च भी निकाल रहे हैं। इस पाठशाला में पढ़ने वाले 28 बच्चे नियमित शिक्षा के साथ ही मिथिला पेंटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें ये छठ महापर्व, राधा कृष्ण, मछली, मोर, पक्षियों और बिहार की लोक संस्कृति पर आधारित आकर्षक पेंटिंग्स तैयार कर रहे हैं, जिनके स्थानीय लोगों के बीच अच्छी खासी डिमांड है। एक पेंटिंग तैयार करने में बच्चों को करीब 2 दिन लग जाते हैं, जो 150 से 200 रुपए तक में बिक जाती है। खरीदार इसे सम्मान समारोह में स्मृति चिन्ह के रूप में भी भेंट करते हैं। इससे बच्चों को आर्थिक मदद मिलने के साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
7: और अब बात करते हैं मानसून की। बारिश का मौसम जितना सुहाना होता है उतना ही चुनौतियां भी लेकर आता है। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन कहीं शहर पानी में डूबे हैं तो कहीं लोग बाढ़ के बीच फंस गए। हालांकि राहत कर्मी और बचाव दल मुश्किल में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। वहीं पूरे देश में मानसून की दस्तक से कहीं बारिश हो रही है तो कहीं भारी बारिश होने की खबर है, जबकि लंबे इंतजार के बाद राजधानी दिल्ली में भी मानसून मेहरबान हुआ और जमकर बारिश हुई।

0: मॉनसून के बादल और तेज बारिश के बीच जलजमाव और उफनती नदियाँ। बारिश के दिनों में ये नज़ारे बेहद आम हैं, लेकिन मॉनसून में बारिश के बाद लोगों को उमस और गर्मी से तो राहत मिल जाती है, लेकिन बाढ़ वाले इलाकों में बारिश मुसीबतें भी लेकर आती है। फिलहाल ऐसे हालात से निपटने के लिए देवदूत के रूप में बचाव दल हमेशा तैयार रहते हैं। मुंबई, ठाणे, पुणे और पालघर समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश ने तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। महाराष्ट्र के पालघर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वीरेंद्र नगर में पानी से घिरे एक घर में फंसे 9 महीने के मासूम बच्चे को स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चे को सुरक्षित देखते ही उसके माता पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े।
1: पालघर जिले में सुबह 5 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू है। उस बारिश का असर पालघर में देखने को मिला है। पालघर के वीरेंद्र नगर में जहां सब सो रहे थे, उसी समय उनके घरों में पानी भराया। उन घर वालों को बाहर कैसे निकला जाए, सब परेशान थे। उसी समय सूरत धोत्रे अपनी टीम लेकर के उस जगह पहुंचे और उन लोगों को बाहर निकालने की पूरी मशक्कत की। क्या कहोगे आप, क्या क्या स्थिति थी जब आप लोग अंदर?
2: रात में से ही बारिश होने लगा तो अपन उठे तो देखे तो बारिश ज्यादा बढ़ गया था, तो इसके लिए हमारा दिल घबराने लगा। मैं बोला अभी क्या करने का, तो फिर हमने बैठे थे तो वहाँ पे संजू भाई ने आया, उसने बोला कि भाई आप लोग का मदद मैं करता हूँ।
3: जब यहाँ पे हम आए तो ऐसा माहौल था यहाँ पे कि अंदर हम जा नहीं सकते थे, तो लेकिन हमारा सब टीम लोग थे, बच्चे लोग सब लोग ने तय किया नहीं आप लोग जाना पड़ेगा वहाँ पे अंदर निकलने के लिए, नहीं जाएंगे तो बच्चे फंस जाएंगे वहाँ पे।
0: सिर्फ इस मासूम को ही नहीं बल्कि रस्सी और ट्यूब की मदद से करीब 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेज बहाव और जलभराव के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना युवाओं ने राहत अभियान चलाया और कई परिवारों की जान बचाई। पालघर के इस संकट के बीच इन युवाओं ने उम्मीद और इंसानियत की एक नई मिसाल पेश की है। महाराष्ट्र के पुणे में इतनी बारिश हुई कि कई हाउसिंग सोसाइटी में पानी भर गया, लिहाजा लोग यहां फंस गए। छाती तक आ चुके पानी में रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए लोगों को एक एक कर बाहर निकाला। सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को निकाला गया, इसके बाद इमारत में दूसरे फ्लोर पर फंसे लोगों को बाहर नाव तक लाया गया। इस दौरान कई बुजुर्गों को उठाकर नाव में बैठाना पड़ा।
4: देखो सर बचाना ऊपर।
0: मुंबई के पास लोनावला में मूसलाधार बारिश हो रही है, कई घरों में पानी भरा तो एनडीआरएफ के जवान मदद के लिए पहुंच गए। नाव के जरिए टीमों ने पूरे इलाके का मुआयना किया और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। गुजरात के अमरेली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारी बारिश के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल पाया। ऐसे में अमरेली के राजुला में बारिश के बीच डॉक्टर्स की टीम ने एक महिला मरीज की जान बचाई। हुआ ये कि गांव में बीमार महिला तक पहुंचने के लिए डॉक्टर पानी के बहाव के बीच ट्रैक्टर से पहुंचे, फिर जेसीबी की मदद से उसे बाहर लेकर आए। बारिश के मौसम में हमेशा नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जाती है, लेकिन कर्नाटक के कोडगु में कॉलेज के कुछ छात्र सुरक्षा बैरिकेड पार कर झरने के प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए। तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके बाद सभी छात्र बीच में एक चट्टान पर फंस गए। खबर मिलते ही राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला और फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं देश के 23 से अधिक राज्यों में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है, जिससे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और दिल्ली NCR में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण और मध्य भारत में भारी बारिश हो रही है, जिससे कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अखनूर में चेनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जबकि डोडा और किश्तवाड़ में भारी तबाही हुई है।
4: पिछले दो दिनों से जम्मू संभाग के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई है। इसके कारण कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की तो डोडा और किश्तवाड़ जिलों में इस भारी वर्षा के कारण काफी तबाही हुई है। डोडा जिले के ठाठरी इलाके में बारिश के कारण बाढ़ आ गई और साथ ही में सड़क पर जो है मलबा आ गया और इस बाढ़ और बारिश के कारण ठाठरी में कई मकान ढह गए, कई दुकानों को भी क्षति हुई और कई जो गाड़ियां हैं वो बाढ़ के पानी के कारण बह गए। प्रशासन जो है लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाई जा रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में काफी तबाही देखी जा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि डोडा के ठाठरी इलाके में कई जो मकान हैं वो ढह गए हैं इस बारिश और बाढ़ के कारण और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। डोडा किश्तवाड़ जो राजमार्ग है फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, कई स्थानों पर पत्थर गिराए हैं और मलबा भी जमा कई स्थानों पर हुआ है।
0: मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी के बीच मौसम विज्ञान विभाग ने समुद्र में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया है।
5: मुंबई और महाराष्ट्र के कई सारे हिस्सों में बताया गया था कि आज ऑरेंज अलर्ट है और बहुत तेज बारिश होने वाली है। हालांकि बारिश इस वक्त ज्यादा नहीं हो रही है, काले काले बादल जरूर मंडरा रहे हैं, तेज हवाएं समुद्र किनारे खासतौर से चल रही हैं और यही वजह है कि कोस्टल एरिया में आप देख लीजिए यहाँ पे पुलिस के लोग खड़े हैं और कोशिश इनकी यही है कि ज्यादा लोग समुद्र के किनारे नहीं जाएं। दरअसल हाई टाइड भी बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3.5 मीटर की हाई टाइड बताई जा रही है, लेकिन फिर भी ऑन ए प्रिकॉशनरी नोट लोगों को कहा गया।
6: दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम तक भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बारिश का क्या है हाल, देखिए हमारे संवाददाता अनमोल बाली की रिपोर्ट।
7: दिल्ली में मानसून की पहली जमाजम बारिश की शुरुआत हो गई है। समय मैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में खड़ा हूं और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे इस समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घने बादल छाए हुए हैं और पानी जमाजम बरस रहा है, क्योंकि 2 जुलाई से देखा गया था मौसम विभाग का जो अनुमान था कि दिल्ली में मानसून दस्तक देगा, मानसून ने दस्तक दी और पर देखा गया कि बारिश नहीं हो रही थी, उमस भरे दिन थे। इसी बीच एक तरफ तो देश के कई राज्यों में जो बारिश है इस समय लोगों के लिए मुसीबत, पर वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बारिश एक उमस वाले दिनों में सौगात बनकर आई है। और वहीं बारिश को देखते हुए अभी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जो है इशू किया है, सुबह देखा गया कि ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया, फिर दिल्ली को देखते हुए रेड अलर्ट इशू किया गया। उसी बीच तस्वीरें आप मेरे साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस की देख रहे हैं जहां लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं। एक तरफ तो उमस से राहत और वहीं दूसरी तरफ झमाझम बरसते हुए बादल। और वहीं मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि ट्रैफिक मूवमेंट भी अगर आप देखें बारिश के कारण उस पर भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं उनकी जो रफ्तार है धीमी हो गई है। विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट इशू किया और साथ ही लोगों को चेतावनी दी है कि अगर आप किसी जर्जर इमारत के पास रहते हैं, जर्जर इमारत में रहते हैं, किसी जर्जर पेड़ के पास खड़े हैं तो किसी सुरक्षित स्थान पर जाके खड़े हो जाएं या सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि आने वाले 1-2 दिन में देखा जाएगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे ही बारिश पड़ने का अनुमान है। और साथ ही अगर बात की जाए साउथ वेस्ट मॉनसून की तो देखा जा रहा है कि मॉनसून ने अभी रफ्तार पकड़ी है और उत्तर भारत के कई राज्यों में देखा जाएगा कि 1-2 दिन तक जो मॉनसून के बादल हैं वो दस्तक देंगे, जहां देखा जा सकता है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई राज्यों में भी झमाझम बारिश होने के आसार पैदा हो सकते हैं। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ अनमोल नाथवाली की दिल्ली से रिपोर्ट।
6: दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू हुआ। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
8: उत्तर प्रदेश के रहने वाले कन्हैया कुमार रोलर स्केट्स के जरिए अमरनाथ यात्रा पर निकले हैं। 20 साल के कन्हैया कुमार पिछले साल 29 अक्टूबर को अपने घर से रवाना हुए थे और बीते 10 महीनों में 14 राज्यों से होते हुए कश्मीर के काजीगुंड पहुंचे हैं। कन्हैया कुमार ने बताया कि उनकी ये अनोखी यात्रा भगवान शिव को समर्पित है और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देगी। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था की जमकर तारीफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली को 300 ई बसों की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने 11 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी की। दिल्ली के 2 लाख लोगों को एक पेड़ माँ के नाम से जोड़ा जाएगा। वहीं दिल्ली के 250 वार्ड और 70 विधानसभा क्षेत्र में जन भागीदारी के साथ पौधारोपण कराया जा रहा है। फेंसिंग के साथ ही पौधों की जियो टैगिंग कराई गई है ताकि निगरानी सुनिश्चित हो। अगर पौधों को किसी प्रकार नुकसान हो तो वहाँ नए सिरे से पौधे लगाए जा सकें। ओडिशा के पुरी में होने वाली सालाना जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पुलिस ने मेगा मॉक ड्रिल की। पुलिस ने पुरी रेलवे स्टेशन समेत कई महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया ताकि रथ यात्रा के दौरान जुटने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुरी में 16 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत होगी।
6: अब बात अमरावती की माँ अंबे देवी मंदिर की। महाराष्ट्र के चिखलदरा में पहाड़ियों के बीच मौजूद एक ऐसी गुफा है जहां पर आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ दिखाई देते हैं। करीब 400 साल पुराने मां अंबे देवी की इस गुफा मंदिर में सबसे खास बात यह है कि यहां साल के 365 दिन प्राकृतिक जलधारा लगातार बहती रहती है और शिवलिंग का निरंतर जलाभिषेक होता रहता है।

0: महाराष्ट्र के अमरावती जिले का चिखलदरा विदर्भ का एकमात्र हिल स्टेशन ही नहीं बल्कि महाभारत कालीन इतिहास प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम भी है। बादलों से ढकी ऊंची पहाड़ियाँ, हरियाली से ढकी घाटियाँ और इन्हीं चट्टानों के बीच सदियों पुरानी एक रहस्यमयी गुफा जहाँ प्रकृति खुद माँ शक्ति की आराधना करती दिखाई देती है। इस गुफा में प्रवेश करते ही भक्ति की अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। ये गुफा जितनी ऐतिहासिक है उसे लेकर पौराणिक मान्यताएं भी उतनी ही गहरी और पुरानी है। इस गुफा को पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम पड़ाव भी माना जाता है और यहाँ विराजमान माँ अम्बे की संगमरमर की ये आकर्षक प्रतिमा श्रद्धालुओं को पहली ही नजर में अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। दोनों हाथों में तलवार धारण किए माँ का दिव्य स्वरूप शक्ति साहस और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। खास बात यह है कि इस मंदिर में आदिवासी समाज गवली समुदाय सहित दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में माथा टेकने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना यहां पूरी होती है।
1: अमरावती के हिल स्टेशन चिखलदरा में एक जो है यहाँ पर गुफा है वो गुफा बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि महाभारत काल से भी अधिक पुरानी ये गुफा। मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर ये गुफा है और इस गुफा के अंदर अब यहाँ जो है अम्बा देवी संस्थान के चलते जो है देवी माँ की मूर्ति लगभग 400 साल से भी अधिक समय से यहाँ पर उसको स्थापित किया गया है। और सबसे अहम बात यही है कि ये देवी माँ का जो स्वरूप है और जो मूर्ति है वो संगमरमर की मूर्ति है और माँ के इस रूप को आप देख सकते हो कितना सुंदर है माँ का रूप। लेकिन माँ के इसी गुफा में बैठी इस माँ के सामने जो है निरंतर 12 ही महीने जो है निरंतर इस गुफा में जो पानी है वो पानी निरंतर यहाँ पर गिरता है। माता रानी का ये दर्शन लेकर और इस गुफा में किस तरह का पानी निरंतर गिरता है, क्या देखा है तुमने?
2: हमने अभी देखे चंद्रपुर के, हम आए चंद्रपुर जिला वरोरा, हमने देखे चिखलदरा देखे, हमने पानी आप गिर रहा है, पूरा पानी बंद है अभी, पानी बरसात भी बंद है तो अभी पानी गिर रहा है, बोला 12 महीना पानी गिर रहा है इधर।
1: क्या मांगा माता से?
2: माता के माने माना हमें पूरी इच्छा पूरी करो।
0: इस गुफा की सबसे अनोखी पहचान है यहाँ बनने वाली प्राकृतिक जल धारा, विशाल चट्टानों के बीच से निकलने वाला निर्मल जल बिना रुके पूरे साल इसी तरह 2400 घंटे झरने की तरह बहता रहता है। यही जलधारा सीधे मंदिर परिसर में गिरती है और फिर स्वयं भगवान शिव के शिवलिंग का निरंतर जलाभिषेक करती है। श्रद्धालु इसे प्रकृति और परमात्मा के अद्भुत मिलन का जीवंत प्रमाण मानते हैं। सवाल है कि आखिर ये पानी कहां से आता है, तो इसका कोई निश्चित वैज्ञानिक उत्तर आज तक सामने नहीं आया है। हालांकि मंदिर के पुजारियों के अनुसार इसे चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित घटनाओं और अमरावती के सरकारी गजेटियर के अनुसार चिखलदरा वह क्षेत्र है जहां विराट राजा के साले और सेनापति कीचक का वध महाबली भीम ने किया था। युद्ध के बाद भीम ने अपने रक्त रंजित हाथ जिस कुंड में धोए वो आज भी भीम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसी घटना के कारण इस स्थान का नाम पहले कीचक धारा पड़ा जो समय के साथ अब भ्रंश होकर चिखलदरा बन गया है। महाभारत की अमर गाथा 400 वर्षों से जलती आस्था की लौ और 12 महीने निरंतर बहने वाली प्राकृतिक जलधारा चिखलदरा की ये पांडवकालीन गुफा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि इतिहास संस्कृति और प्रकृति का ऐसा अद्भुत संगम है जो हर आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक को रोमांच श्रद्धा और आध्यात्मिक अनुभूति से भर देता है। यही कारण है कि विदर्भ के इस अनोखे तीर्थ की पहचान लगातार बढ़ती जा रही है।
1: इसी बीच जो है यहाँ पर दूसरा भी मंदिर है जो भोलेनाथ का मंदिर है। वो भोलेनाथ के मंदिर पर इसी गुफा के अंदर आप देख सकते हो कि निरंतर जलाभिषेक जो है वो यहाँ पर इस जो पहाड़ी के अंदर से जो पानी आता है वो निरंतर इसे जलाभिषेक में यहाँ पर रूपांतर होता है। ऐसी ही ये जो गुफा है वो अपने आप में अलग है। और सबसे अहम बात यही है कि इस गुफा के ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है एक नदी का उगम है और उगम स्थान है। और सबसे दूसरी महत्व की बात है कि निरंतर यहाँ पर जो है वो देवी माँ के मंदिर के अंदर इस गुफा के अंदर निरंतर जो है पानी गिरता है। और यही जो यहाँ पर भक्तों की भक्ति है, आराधना है, साधना है, वो यहाँ पर बड़े भाव से यहाँ पर भक्त जो है अपनी आराधना साधना पूजा करने के लिए और अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं। अमरावती के चिखलदरा से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे।
0: न्यूज पद पर आगे है धनबाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपके जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धनबाजार। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 104 अंकों की गिरावट के साथ 78,180 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 31 अंकों की गिरावट के साथ 24,398 पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में सुस्ती और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होने की वजह से आज गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में गिरावट मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1400 रुपए गिरकर 1,49,250 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 200 रुपए लुढ़ककर 2,39,800 रुपए पर पहुंच गई। 7 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में मजबूती देखने को मिली। मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 48 पैसे मजबूत होकर 94.95 के स्तर पर बंद हुआ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
4: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: पुणे में धूमधाम से निकली जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी, हरिनाम के जय घोष से गूंजा शहर, ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक वेशभूषा में दिखे लोग। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन, काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना। गुजरात के कई इलाकों में जमकर बरस रहे हैं बदरा, सूरत नवसारी में भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया में प्रेम और अपनापन मिला। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाभियान का शुभारंभ, नानकपुरा रिज में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण, गृहमंत्री अमित शाह ने शुरुआत की।

की जिसकी धाक आज सारी दुनिया में जम चुकी है। आज पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई दे रही है। हाल ही के सालों में भारत का डिफेंस सेक्टर सुपर फास्ट स्पीड के साथ आगे बढ़ा है। एक दशक से भी कम वक्त में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है, बल्कि अब उनके इम्पोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। दो तस्वीरें आपके सामने, ये आज की तारीख में भारत के मेक इन इंडिया मिशन की कामयाबी बयां करने वाली तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि भारतीय नेवी का अपना महेंद्र बाहुबली, ये नीलगिरी क्लास का मेड इन इंडिया युद्धपोत है। ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट इसी हफ्ते भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। नाम है INS महेंद्र गिरी। तो वहीं दूसरी तस्वीर है उस मेड इन इंडिया धाकड़ मिसाइल की, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। भारत का ब्रह्मोस अस्त्र, जल्द ही इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल खरीदने जा रहा है। पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और आज इस डील से जुड़ा MOU साइन किया गया। तो चलिए आपको बताते हैं क्यों खास है भारत की ये मिसाइल और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के वर्तमान हालात को देखते हुए ये डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है।

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर पल एक नई ऊंचाई को छू रहा है। देश में ही ऐसे ऐसे हथियार गढ़े जा रहे हैं जो ताकत और तकनीक के मामले में बेहतरीन है। आज हिंदुस्तान के हथियार ग्लोबल हो रहे हैं। इंडियन वेपन की ताकत को दुनिया महसूस कर रही है और इसी का नतीजा है कि भारत डिफेंस सेक्टर में वेपन एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बढ़ा रहा है। इसकी सबसे ताजा तस्वीर आई है इंडोनेशिया से।
1: एयर टू एयर मिसाइल कोऑपरेशन अग्रीमेंट बिटवीन भारत डायनामिक्स एंड रिपब्लिक कॉर्प।
0: दुनिया की सबसे खतरनाक और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की अतिरिक्त बैटरियां खरीदने के लिए इंडोनेशिया ने फाइनल डील पर मुहर लगा दी है। पहले से ही भारत के ब्रह्मोस का खरीदार इंडोनेशिया ऑपरेशन सिंदूर में इस अचूक मिसाइल की ताकत को देख चुका है। भारत ने इसी मिसाइल के हमले से पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए थे। मुरीद के में लश्कर और बहावलपुर में जैश के ठिकाने को ब्रह्मोस ने धूल में मिला दिया था। अब Mach 3 की विनाशकारी गति से उड़ने वाली ब्रह्मोस जब इंडोनेशिया के तटीय इलाकों में तैनात होगी तो साउथ चाइना सी में चीन दादागिरी करने से पहले 100 बार सोचेगा।
2: देखिए, ब्रह्मोस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इस समय विश्व में रशिया और इंडिया के अलावा किसी देश के पास नहीं है और इंडो पैसिफिक रीजन में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। महत्व इसलिए है कि ये शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है, हवाई जहाज से भी लॉन्च किया जा सकता है और ग्राउंड से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के अगर हम उसकी सुरक्षा की बात करते हैं तो इसका इंडोनेशिया और भारत दोनों के पास होना एक तरह का एक जो मिलके हम जो है उस खतरे का सामना कर सकते हैं, उसके लिए ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा।
0: दरअसल ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे कैसे भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस की स्पीड ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा होती है। हर मोर्चे पर भी ब्रह्मोस की तैनाती संभव है। इसे जमीन, समंदर, हवा, कहीं से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। ये मूविंग यानी चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। इसकी स्ट्राइक क्षमता इतनी कमाल है कि ये 400 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। ब्रह्मोस में दूसरे स्टेज का रैमजेट इंजन लगा है जो इसे सुपरसोनिक स्पीड देता है और फ्यूल की खपत को कम करता है।

0: ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसका अचूक निशाना है। सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर यह मिसाइल सटीक वार करते हुए 1 मीटर के दायरे में जाकर गिरती है, यानी इसकी अचूक मारक क्षमता के आगे दुश्मन के किसी भी टारगेट का बचना नामुमकिन है। अचूक मारक क्षमता के साथ साथ ब्रह्मोस की रफ्तार इसकी एक और बड़ी ताकत है।
1: क्या इसकी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि 300 से ज्यादा, अब तो अभी तो इसका दूसरा वर्जन जो है वो 450 किलोमीटर तक भी जाता है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वो शिप्स को बिल्कुल खत्म कर सकता है। और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, सुपरसोनिक है कि कोई इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, सैटेलाइट से डिटेक्शन नहीं हो पाता है, रडार से डिटेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत लो फ्लाइंग है। अगर हम समुद्र से इसके बोलते हैं 5 मीटर की ऊंचाई पर भी समुद्र के ऊपर फ्लाई कर सकता है।

0: अगर आज दुनिया मिसाइल पावर के मामले में भारत की ताकत का लोहा मान रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ब्रह्मोस है। खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो ब्रह्मोस दुनिया भर की नजर में आ गई है। वैसे भारत के तरकश में ब्रह्मोस नाम का यह कमाल का ब्रह्मास्त्र 25 साल पहले ही शामिल हो चुका था, क्योंकि यह मिसाइल भारत और रूस के साझा मिशन का नतीजा है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था। इस मिसाइल के निर्माण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के तत्कालीन प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और रूस के उप रक्षा मंत्री NV मिखाइलोव ने 12 फरवरी 1998 को हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद इसका पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। और आज ये मेड इन इंडिया मिसाइल दुनिया भर के देशों में अपना लोहा मनवा रही है।
1: इंडोनेशिया और भारत के बीच ये समझौता एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसका प्रोडक्शन भी वहाँ हो सकता है और वहाँ हमारे यहाँ भी इसका प्रोडक्शन होता है, और भारत के लिए एक्सपोर्ट होने से एक इकोनॉमिक गेन भी है। तो सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक गेन के लिए अच्छा है, और इंडोनेशिया और भारत के जो सामरिक रिलेशनशिप है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा समझौता, एक बहुत बड़ा कदम है। मैं सोचता हूँ कि इसको आगे ले जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमें इंडोनेशियन एयरफोर्स या उनकी आर्मी के साथ मिलकर उसका प्रोडक्शन वहां करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो इंडो पैसिफिक सुरक्षा है उसको बढ़ावा मिले।

0: आपको बता दें कि फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया के साथ इस डील से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत ने एक बड़े रक्षा साझेदार के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया है। इंडोनेशिया और चीन के संबंधों पर नजर डाले तो ये साफ होता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के बावजूद रणनीतिक असहमति बनी हुई है। वहीं भारत और इंडोनेशिया अब दोस्ती के नए मुकाम की ओर चल रहे हैं। इस तरह इंडोनेशिया का भारत के पाले में आना बीजिंग के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और इसी दौरान ये इस डील के एमयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वैसे आपको बता दें, ब्रह्मोस के अलावा इंडोनेशिया ने अपनी पुरानी रूसी R-77 मिसाइलों को हटाकर भारत की इस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को खरीदने का ऐतिहासिक फैसला भी किया है।
2: एयर टू एयर मिसाइल कोऑपरेशन अग्रीमेंट बिटवीन भारत डायनामिक्स एंड रिपब्लिक कॉर्प।
0: मैक 4 प्लस की सुपरसोनिक रफ्तार और 110 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल जब इंडोनेशिया के फाइटर जेट से उड़ेगी तो दुश्मनों को संभलने का एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI ने अस्त्र से पाकिस्तानी जेट्स को निशाना बनाया और उसे जमीन पर ला दिया। इंडोनेशिया ने भी देखा कि भारत का अस्त्र पाकिस्तान की चीनी PL-15E मिसाइलों से कई गुना बेहतर साबित हुआ। उसी कामयाबी को देखते हुए इंडोनेशिया ने ये डील की है।
3: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में बने हथियारों का लोहा पूरी दुनिया ने माना और पाकिस्तान के भीतर आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करने वाली ब्रह्मोस और अस्त्रा जैसी मिसाइलों ने अपनी विश्वसनीयता और अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाई और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ोतरी मिली है। अब इंडोनेशिया ने फैसला किया है कि वो ब्रह्मोस के साथ अस्त्रा मिसाइल भी खरीदेगा। अस्त्रा यानी भारत में बनने वाली वो मिसाइल जो एयर टू एयर के लिए जानी जाती है, अस्त्रा Mk-1, जिसे सुखोई 30 में इंटीग्रेट किया गया है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया अब भारत से ये मिसाइल लेना चाहता है क्योंकि इंडोनेशिया के पास भी Su-30 विमान है और अब वो अपने विमानों में अस्त्रा मिसाइल लगाना चाहता है, जिसको अब ये देखा जा रहा है कि किस तरह से भारत के जो हथियार हैं वो लगातार पूरी दुनिया में अपनी मांग बढ़ा रहे हैं। हालांकि इंडोनेशिया वो पहला देश है जिसने अस्त्रा मिसाइल के लिए बातचीत की है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है, लेकिन ब्रह्मोस को खरीदने वाला इंडोनेशिया अब तीसरा देश होगा क्योंकि फिलीपींस के बाद वियतनाम से और अब इंडोनेशिया से इसकी बातचीत चल रही है। तो लगातार भारत के हथियार पूरी दुनिया में अपनी धमक दिखा रहे हैं और भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ रहा है और इंडोनेशिया अब ब्रह्मोस के साथ साथ अस्त्रा Mk-1 एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स भारत से खरीदेगा।
0: इंडोनेशिया से यह समझौता गवाह है कि भारत अब रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि ग्लोबल एक्सपोर्टर बन चुका है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब बात भारत के महेंद्र बाहुबली की। अब से 3 दिन बाद विशाखापट्टनम में INS महेंद्र गिरी का कमिश्निंग समारोह है, जहां इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के बेड़े में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया जाएगा। महेंद्र गिरी एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसके आने से भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत और सामर्थ्य हासिल होगा।

0: कृत प्रज्ञ रणेशु अपराजित, यानी वो जिसकी बुद्धि स्थिर है, अडिग है, वो जो युद्धों और संघर्षों में अपराजित रहता है। अपने आदर्श वाक्य की तरह ही सागर की लहरों पर सदा अपराजित रहने का दम और सामर्थ्य लेकर आ रहा है नौसेना का महेंद्र बाहुबली। सागर का वो बाहुबली जिसे देश के पूर्वी घाट पर मौजूद प्रसिद्ध महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर अपना नाम मिला है। वो महेंद्रगिरी पर्वत जो शक्ति, धैर्य और अडिग संकल्प का प्रतीक है, भारतीय नौसेना के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी युद्धपोत को महेंद्रगिरी नाम दिया गया है। 11 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना के लिए इस नए अध्याय की शुरुआत होगी, जब नौसेना के बेड़े में INS महेंद्रगिरी को शामिल किया जाएगा। INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तैयार किया गया 6th गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसका डिजाइन भारतीय नौसेना के WDB यानी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है।
1: भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत अपना 6th वॉरशिप महेंद्रगिरी मिलने वाला है। महेंद्रगिरी विशाखापट्टनम में 11 जुलाई को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। इसकी कमिशनिंग की जाएगी। प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत भारत में बनने वाला ये 6th वॉरशिप है। इसके पहले 5 दूसरे वॉरशिप्स भी भारतीय नौसेना का हिस्सा बन चुके हैं। महेंद्रगिरी को भारत में MDL ने बनाया है और नेवल वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसे डिजाइन किया है। तेजी से आत्मनिर्भर होती भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने वाले महेंद्रगिरी की ताकत की अगर हम बात करें तो इसमें बराक मिसाइल्स के साथ साथ ब्रह्मोस और टॉर्पीडोज की ताकत है। 6,600 टन के डिस्प्लेसमेंट वाला ये जहाज अत्याधुनिक सिस्टम से लैस है और भारतीय नौसेना को भारत में निर्मित होने वाले जहाजों की ताकत में इजाफा करने वाला ये जहाज बेहद कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के दौरान भारतीय जहाजों की तैनाती, हर तरफ भारतीय नौसेना लगातार सशक्त हुई है।
0: ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। INS महेंद्रगिरी में सुपर एडवांस्ड कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आधुनिक सेंसर, एंटी सबमरीन वेपन्स और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और पनडुब्बियों से ये एक साथ मुकाबला कर सकता है। महेंद्रगिरी फ्रिगेट स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जो दुश्मन के रडार को चुनौती देगा समुद्र में चुपचाप आगे बढ़ने और जरूरत पड़ने पर घातक प्रहार करने में इसका कोई मुकाबला नहीं। सबसे अहम बात ये कि महेंद्रगिरी के निर्माण में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
2: भारत की नेवी की ताकत में और इजाफा हो रहा है। INS महेंद्रगिरी अगर देखा जाए तो अत्यधिक ताकतवर फ्रिगेट है, जो कि देश में ही बना है। 75% हिस्से इसके देश में बने हुए हैं। इसके अंदर आधुनिक स्टेल्थ है, यानी कि एक रडार को द्वारा इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सामने का इसका हल्का क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है। ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है जो कि रडार को देखने के लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अत्याधुनिक हथियार इसके ऊपर लगे हुए हैं। आप देखिए, इसके ऊपर ब्रह्मोस है जो जमीन से ज़मीन पर मार करता है, यानी कि शिप से ज़मीन पर। इसमें बराक है जो कि शिप से एयर हवाई में मार करेगा। एंटी सबमरीन इसमें मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, टॉर्पीडो लगे हैं जो कि आधुनिक सबमरीन को खत्म करने के लिए है।
0: महेंद्रगिरी भले ही एक वॉरशिप है, लेकिन इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल युद्ध के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान, समुद्री सुरक्षा गश्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिशंस में किया जा सकेगा। समुद्र में फंसे लोगों की सहायता से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने तक ये कई अहम जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है।
1: लगातार भारतीय नौसेना की ताकत आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ रही है और 2047 तक भारतीय नौसेना 100% आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखती है। अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो ये 75% इंडिजनाइज है। अगर इसकी क्षमताओं की बात करें तो ये कंबाइंड डीजल और गैस टेक्नोलॉजी के इंजन के साथ लैस है। किसी भी तरह के एंटी एयर वॉरफेयर या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैयार है और अपने क्लास के तमाम दूसरे शिप्स की तरह ये भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा कर रहा है।
0: आपको बता दें कि जिस प्रोजेक्ट 17A के तहत INS महेंद्रगिरी कमीशन होने वाला है उसका इतिहास लगभग 2 दशक पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने साल 2009 के जून महीने में इसका कॉन्सेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था।
2: देखा जाए तो प्रोजेक्ट 17A भारत की नेवी का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें नीलगिरी क्लास के शिप बनाए जा रहे हैं, फ्रिगेट्स हैं, जो कि 2 शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं, मझगांव में और गार्डनरीच में, मुंबई और कोलकाता में बन रहे हैं और टोटल 7 शिप बन रहे हैं। ये शिप्स की खासियत यह है कि ये स्टेल्थ से लैस है, यानी कि इनका रडार को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है।
0: साल 2013 तक ही प्रोजेक्ट 17A के प्राइमरी डिजाइन तैयार कर लिए गए थे। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी को 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स को लॉन्च कर दिया था। 17A प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं। इनमें 4 फ्रिगेट मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि 3 फ्रिगेट बनाने की जिम्मेदारी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता को मिली थी, जिसमें हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी शामिल हैं।
1: तो प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत इसे भारत में बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा जिसके तहत 45,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 वॉरशिप्स को भारत में बनाया गया, जिन्हें MDL और GRSE ने मिलकर बनाया है। हाल ही में महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, जिसके बाद तमाम सी ट्रायल्स हुए, हर तरह के परीक्षण हुए और अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए महेंद्रगिरी पूरी तरह से तैयार है। महेंद्रगिरी से पहले दूनागिरी और तमाम दूसरे जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। पिछले महीने एक ट्रिपल कमीशनिंग के तहत इस पूरे प्रोजेक्ट के 5वें जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और अब 6ठा यानी कि महेंद्रगिरी भी भारतीय नौसेना में कमीशन हो रहा है।
0: निश्चित रूप से भारत का ये महेंद्र बाहुबली नौसेना की शक्ति में कई गुना इजाफा करने वाला है। INS महेंद्रगिरी की कमीशनिंग के बाद भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिलेगी। समंदर की सीमा की रक्षा में सागर का ये प्रहरी मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अब बात तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की। वायुसेना जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस साल सितंबर अक्टूबर के महीने में जोधपुर में होने वाली इस एयर कॉम्बैट ड्रिल का नाम ऑपरेशन तरंग शक्ति।

0: शक्ति अपने तमाम वायुसेनाओं के साथ भारत की वायुसेना की ताकत दिखाएगी। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि 2024 में तरंग शक्ति का पहला एडिशन भारतीय वायुसेना ने होस्ट किया था, जिसे दो फेजेस में किया गया था, जोधपुर और सुलूर। और अब दूसरी बार यानी 2026 में तरंग शक्ति होने वाला है, जिसमें एक बार फिर दो दर्जन से ज्यादा पूरी दुनिया की वायुसेनाएं हिस्सा लेंगी, जिसमें तमाम देश, चाहे वो यूके, जर्मनी, यूएस हो, उन सभी को न्योता भेजा गया है। यानी भारतीय वायुसेना अपनी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में कॉम्बैट कैपेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी दोनों दिखाएगी, और वो भी पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक। कैमरा पर्सन प्रेमचंद्र के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए शिवानी, दिल्ली।
1: और चलिए इसी के साथ जी एन डी स्पेशल की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: कोटा के एक स्टूडेंट ने ऐसा स्मार्ट प्लांट पॉट तैयार किया है जो पौधों की जरूरतों को आसान तरीके से समझने में मदद करता है। ये स्मार्ट इमोशन पॉट सेंसर और तकनीक की मदद से पौधे की स्थिति पर नजर रखता है और पानी, धूप या फिर देखभाल की जरूरत होने पर मोबाइल पर इमोजी के जरिए अलर्ट भेजता है। इस अनोखे इनोवेशन का मकसद पौधों की देखभाल को आसान, रोचक और तकनीक से जोड़ना है।
4: जरा सोचिए, अगर आपके घर का पौधा बोल पाता तो शायद आपको अपना हाल बताता और आप उसकी जरूरत को पूरा कर पाते। अब तक ये सिर्फ कल्पना थी, लेकिन कोटा के एक युवा इनोवेटर ने इस कल्पना को हकीकत में बदलने की पहल की है। आजाद पब्लिक स्कूल के छात्र और वेल्ट्रियोनेक्स स्मार्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक आर्यन सिंह ने ऐसा स्मार्ट इमोशन पॉट बनाया है जो पौधों की खामोशी को इमोजी की भाषा में बदल देता है।
5: जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जान आ गई है, जहाँ पे प्लांट जो है अपने इमोशन शो कर सकता है कि हाँ उसको प्यास लगने में वो रो रहा है, अंदर रहने पे अगर अकेला है तो उसको डर लग रहा है, या मोशन सेंस कर रहा है तो डर लग रहा है, नाइट में वो सो रहा है, तो जहाँ पे हम उसको देख सकें कि वो एक हमारा फ्रेंड है, हम एज अ फ्रेंड ट्रीट कर सकें उसको।
4: आज के दौर में लोग बड़े जोश से पौधे तो घर ले आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद भागदौड़ भरी जिंदगी में वही पौधे एक कोने में अकेले छूट जाते हैं। पौधों को कभी समय पर पानी नहीं मिलता, कभी धूप नहीं मिल पाती। जब पौधा मुरझाने लगता है तब हमें पेड़ों की तकलीफ पता चलती है। इसी प्रॉब्लम के हल के तौर पर आर्यन को इस स्मार्ट गमले का आइडिया आया।
5: क्या हमने कि कुछ ना कुछ एक ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि वो किसी इंसान से इंटरेक्ट करते हैं, कर सके। जैसे कि हमें पता है आज इंसान आपस में बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो जाता है, लोग एक दूसरे से काफी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो ये हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा प्लांट के साथ किया जाए ताकि उसको एज अपना फ्रेंड ही उसको ट्रीट करें और अपनी सारी बातें उसको शेयर कर सकें, उसके इमोशन देख सकें कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है हर चीज में।
4: ये सिर्फ एक स्मार्ट गमला नहीं बल्कि एक डिजिटल प्लांट कंपेनियन है। इसमें लगे सेंसर मिट्टी में नमी, पौधों के हिसाब से तापमान, पानी की जरूरत और रोशनी की आवश्यकता को भाप लेते हैं, और ये स्मार्ट गमला अपने एक्सप्रेशन से हमें पौधों की जरूरत के बारे में बता देता है। जैसे जैसे पौधे की जरूरत बदलती है, वैसे वैसे स्क्रीन पर उसके चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं।
5: ध्यान में रखकर इसको बनाया, इसके अंदर अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं जो कि अलग अलग चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर मॉइस्चर लेवल या मॉइस्चर या वाटर लेवल है तो उसको वो सेंसर देख रहा है, मोशन को मोशन सेंसर डिटेक्ट करने के लिए कर रहा है कि उसके साथ अगर कोई है तो उसको। पूरा बच्चों से फ्रेंडली बनाया है कि अगर वो इतना अभी से ही उतना केयरिंग बन जाते हैं तो आने वाले टाइम पे कुछ वो बेटर

0: आउटपुट दे सकते हैं इस एनवायरनमेंट को।
1: आज की पीढ़ी मोबाइल और गैजेट्स के साथ तो जल्दी जुड़ रही है, लेकिन प्रकृति से उनका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में ये स्मार्ट इमोशन पॉट इंसानों और पौधों के बीच दोस्ती का पुल बन सकता है। आर्यन का कहना है कि आने वाले समय में इस स्मार्ट इमोशन पॉट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और API मॉडल से और स्मार्ट बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में ये सिर्फ चेहरे के भाव ही ना दिखाए बल्कि यूजर से बात भी कर सके। कोटा से चेतन गुर्जर, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: पुणे में धूमधाम से निकली जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी, हरिनाम के जय घोष से गूंजा शहर, ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक वेशभूषा में दिखे लोग। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन, काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना। गुजरात के कई इलाकों में जमकर बरस रहे हैं बदरा, सूरत नवसारी में भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया में प्रेम और अपनापन मिला। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाभियान का शुभारंभ, नानकपुरा रिज में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण, गृहमंत्री अमित शाह ने शुरुआत।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
5: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा अमरनाथ यात्रा और श्रद्धालुओं की सुविधा की भी है।
6: बम बम भोले, हर हर महादेव और जय बर्फानी बाबा के जयकारों से अमरनाथ यात्रा मार्ग गूंज रहा है। श्रद्धालु पवित्र गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए इस साल अब तक का सबसे बड़ा श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। इस जत्थे में शामिल 8,815 श्रद्धालुओं में 31 विदेशी भी यात्रा का हिस्सा बने हैं। यात्रा के शुरुआती 4 दिनों में ही 93,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा के साथ ही श्रद्धालु की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बालटाल बेस कैंप से लेकर रामबन के चंद्रकोट तक यात्रियों को मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जा रही है। पवित्र अमरनाथ यात्रा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए ग्रामीण स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर हलचल शुरू हो गई है। 30 जुलाई से शुरू होने वाला कांवड़ मेला सकुशल होने की कामना को लेकर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा की ओर से मालवीय घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ आरती की गई। इस विशेष अवसर पर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने नियमों वाला एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें कांवड़ियों को कांवड़ उठाने के नियम बताए गए हैं। इस पोस्टर में कांवड़ियों से कांवड़ उठाने के नियमों का पालन करते हुए कांवड़ उठाने और अपने गंतव्य तक ले जाने के साथ ही वजनी कांवड़ नहीं उठाने का आग्रह किया गया है। अखाड़े से जुड़े साधु संतों और पंडितों ने शिव भक्तों से तीर्थ नगरी की मर्यादा बनाए रखने के लिए भी निवेदन किया है। श्रद्धालुओं को बड़े बड़े DJ लेकर आने से बचने की सलाह दी गई है, ताकि उसकी तेज आवाज और धमक से किसी को किसी भी तरह की असुविधा या परेशानी का सामना न करना पड़े। श्री गुरु गोरखनाथ अलख अखाड़ा परिषद की ओर से हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में 11 महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक किया गया। समारोह में सभी महामंडलेश्वरों को चादर विधि करके पट्टाभिषेक किया गया और संतों ने फूलों की बारिश करके आशीर्वाद प्रदान किया। इस अखाड़ा परिषद ने 51 महामंडलेश्वर बनाने का लक्ष्य रखा है और अब तक 41 महामंडलेश्वर बनाए जा चुके हैं और बाकी 10 महामंडलेश्वरों को बनाने की तैयारी हो रही है। कुंभ से पहले इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। जिन 11 महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक किया गया है उन्हें गुरु गोरखनाथ अलख अखाड़े से जुड़े हुए 4-5 वर्ष हो गए हैं और अब बतौर महामंडलेश्वर वो अपने कर्तव्य को निभाएंगे। ये तस्वीरें पंजाब के फरीदकोट की हैं, जहां आयोजित दस्तार प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 6 से 15 साल की उम्र के 60 बच्चे शामिल हुए, जिन्होंने दस्तार यानी पगड़ी बांधने की कला का पूरे आत्मविश्वास, अनुशासन और अपनी सिख विरासत के प्रति समर्पण का पूरी कुशलता से प्रदर्शन किया। इन छोटे छोटे बच्चों ने खुद से पगड़ी बांधी। रंग बिरंगी पगड़ियों में ये बच्चे बेहद सुंदर लग रहे थे। प्रतियोगिता में विजेताओं का चयन दस्तार बांधने की कला, साफ सुथरापन, प्रस्तुति, संतुलन, आत्मविश्वास, पारंपरिक शैली, फिनिशिंग और समग्र प्रभावशाली प्रदर्शन सहित कई महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित शमशान घाट की अपन पाठशाला में बच्चे पढ़ाई करने के साथ साथ मशहूर मिथिला पेंटिंग भी सीख रहे हैं और आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये खूबसूरत पेंटिंग इन बच्चों ने ही बनाई है। अपनी इस शानदार कला के जरिए बच्चे अपनी पढ़ाई का खर्च भी निकाल रहे हैं। इस पाठशाला में पढ़ने वाले 28 बच्चे नियमित शिक्षा के साथ ही मिथिला पेंटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें ये छठ महापर्व, राधा कृष्ण, मछली, मोर, पक्षियों और बिहार की लोक संस्कृति पर आधारित आकर्षक पेंटिंग्स तैयार कर रहे हैं, जिनके स्थानीय लोगों के बीच अच्छी खासी डिमांड है। एक पेंटिंग तैयार करने में बच्चों को करीब 2 दिन लग जाते हैं, जो 150 से 200 रुपए तक में बिक जाती है। खरीदार इसे सम्मान समारोह में स्मृति चिन्ह के रूप में भी भेंट करते हैं। इससे बच्चों को आर्थिक मदद मिलने के साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
5: और अब बात करते हैं मॉनसून की। बारिश का मौसम जितना सुहाना होता है उतना ही चुनौतियां भी लेकर आता है। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन कहीं शहर पानी में डूबे हैं तो कहीं लोग बाढ़ के बीच फंस गए। हालांकि राहत कर्मी और बचाव दल मुश्किल में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। वहीं पूरे देश में मॉनसून की दस्तक से कहीं बारिश हो रही है तो कहीं भारी बारिश होने की खबर है, जबकि लंबे इंतजार के बाद राजधानी दिल्ली में भी मॉनसून मेहरबान हुआ और जमकर बारिश हुई।

0: मानसून के बादल और तेज बारिश के बीच जलजमाव और उफनती नदियाँ। बारिश के दिनों में ये नज़ारे बेहद आम हैं, लेकिन मानसून में बारिश के बाद लोगों को उमस और गर्मी से तो राहत मिल जाती है, लेकिन बाढ़ वाले इलाकों में बारिश मुसीबतें भी लेकर आती है। फिलहाल ऐसे हालात से निपटने के लिए देवदूत के रूप में बचाव दल हमेशा तैयार रहते हैं। मुंबई, ठाणे, पुणे और पालघर समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश ने तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। महाराष्ट्र के पालघर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वीरेंद्र नगर में पानी से घिरे एक घर में फंसे 9 महीने के मासूम बच्चे को स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चे को सुरक्षित देखते ही उसके माता पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े।
1: पालघर जिले में सवेरे 5 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू है। उस बारिश का असर पालघर में देखने को मिला है। पालघर के वीरेंद्र नगर में जहां सब सो रहे थे, उसी समय उनके घरों में पानी भर आया। उन घर वालों को बाहर कैसे निकला जाए, सब परेशान थे। उसी समय सूरत धोत्रे अपनी टीम लेकर के उस जगह पहुंचे और उन लोगों को बाहर निकालने की पूरी मशक्कत की। क्या कहोगे आप, क्या क्या स्थिति थी जब आप लोग अंदर?
2: रात में से ही बारिश होने लगा, तो अपन उठे तो देखे तो बारिश ज्यादा बढ़ गया था, तो इसके लिए हमारा दिल घबराने लगा। मैं बोला अभी क्या करने का, तो फिर हमने बैठे थे तो वहाँ पे संजू भाई ने आया, उसने बोला कि भाई आप लोग का मदद मैं करता हूँ।
3: जब यहाँ पे हम आए तो ऐसा माहौल था यहाँ पे कि अंदर हम जा नहीं सकते थे, तो लेकिन हमारा सब टीम लोग थे, बच्चे लोग सब लोग ने तय किया नहीं आप लोग जाना पड़ेगा वहाँ पे अंदर निकलने के लिए, नहीं जाएंगे तो बच्चे फंस जाएंगे वहाँ पे।
0: सिर्फ इस मासूम को ही नहीं बल्कि रस्सी और ट्यूब की मदद से करीब 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेज बहाव और जल भराव के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना युवाओं ने राहत अभियान चलाया और कई परिवारों की जान बचाई। पालघर के इस संकट के बीच इन युवाओं ने उम्मीद और इंसानियत की एक नई मिसाल पेश की है। महाराष्ट्र के पुणे में इतनी बारिश हुई कि कई हाउसिंग सोसाइटी में पानी भर गया, लिहाजा लोग यहां फंस गए। छाती तक आ चुके पानी में रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए लोगों को एक एक कर बाहर निकाला। सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को निकाला गया, इसके बाद इमारत में दूसरे फ्लोर पर फंसे लोगों को बाहर नाव तक लाया गया। इस दौरान कई बुजुर्गों को उठाकर नाव में बैठाना पड़ा।
4: देखो सर बचाना ऊपर।
0: मुंबई के पास लोनावला में मूसलाधार बारिश हो रही है, कई घरों में पानी भरा तो एनडीआरएफ के जवान मदद के लिए पहुंच गए। नाव के जरिए टीमों ने पूरे इलाके का मुआयना किया और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। गुजरात के अमरेली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारी बारिश के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल पाया। ऐसे में अमरेली के राजुला में बारिश के बीच डॉक्टर्स की टीम ने एक महिला मरीज की जान बचाई। हुआ ये कि गांव में बीमार महिला तक पहुंचने के लिए डॉक्टर पानी के बहाव के बीच ट्रैक्टर से पहुंचे, फिर जेसीबी की मदद से उसे बाहर लेकर आए। बारिश के मौसम में हमेशा नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जाती है, लेकिन कर्नाटक के कोडगु में कॉलेज के कुछ छात्र सुरक्षा बैरिकेड पार कर झरने के प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए। तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके बाद सभी छात्र बीच में एक चट्टान पर फंस गए। खबर मिलते ही राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला और फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं देश के 23 से अधिक राज्यों में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है, जिससे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार और दिल्ली NCR में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण और मध्य भारत में भारी बारिश हो रही है, जिससे कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अखनूर में चेनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जबकि डोडा और किश्तवाड़ में भारी तबाही हुई है।
4: पिछले दो दिनों से जम्मू संभाग के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई है। इसके कारण कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की तो डोडा और किश्तवाड़ जिलों में इस भारी वर्षा के कारण काफी तबाही हुई है। डोडा जिले के ठाठरी इलाके में बारिश के कारण बाढ़ आ गई और साथ ही में सड़क पर जो है मलबा आ गया और इस बाढ़ और बारिश के कारण ठाठरी में कई मकान ढह गए, कई दुकानों को भी क्षति हुई और कई जो गाड़ियां हैं वो बाढ़ के पानी के कारण बह गए। प्रशासन जो है लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाई जा रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में काफी तबाही देखी जा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि डोडा के ठाठरी इलाके में कई जो मकान है वो ढह गए हैं इस बारिश और बाढ़ के कारण और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। डोडा किश्तवाड़ जो राजमार्ग है फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, कई स्थानों पर पत्थर गिराए हैं और मलबा भी जमा कई स्थानों पर हुआ है।
0: मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी के बीच मौसम विज्ञान विभाग ने समुद्र में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया है।
5: मुंबई और महाराष्ट्र के कई सारे हिस्सों में बताया गया था कि आज ऑरेंज अलर्ट है और बहुत तेज बारिश होने वाली है। हालांकि बारिश इस वक्त ज्यादा नहीं हो रही है, काले काले बादल जरूर मंडरा रहे हैं, तेज हवाएं समुद्र किनारे खासतौर से चल रही हैं और यही वजह है कि कोस्टल एरिया में आप देख लीजिए यहाँ पे पुलिस के लोग खड़े हैं और कोशिश इनकी यही है कि ज्यादा लोग समुद्र के किनारे नहीं जाएं। दरअसल हाई टाइड भी बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3.5 मीटर की हाई टाइड बताई जा रही है, लेकिन फिर भी ऑन ए प्रिकॉशनरी नोट लोगों को कहा गया था कि जैसे स्कूल जो मुंबई में खासतौर से बंद किए गए थे और साथ ही कहा गया था लोगों को वर्क फ्रॉम होम एनकरेज करने के लिए, ऐसा ही कुछ हाल नासिक में भी देखने को मिला जहां पर की वार्निंग दी गई थी कि तेज बरसात होगी लेकिन बीच बीच में मध्यम बरसात हो रही है, ज्यादा बरसात नहीं हो रही है। ज्यादातर अगर IMD के जो इमेजेस अगर आप देखें तो ज्यादातर जो चक्र जो बादलों का जो क्लाउड है वो ज्यादा से ज्यादा गुजरात और मध्य प्रदेश की तरफ चला गया है, ऐसा दिख रहा है। और इस वक्त हालांकि IMD की वार्निंग है और कहा गया है कि तेज बरसात होगी।
0: हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज के साथ तेज हवाएं चलने और कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है।
6: आखिरकार उत्तर भारत में जुलाई के पहले हफ्ते मॉनसून दस्तक दे चुका है। चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए गए हैं। इस समय हम सुखना लेक पर हैं जहां पर बारिश इस समय तो नहीं है लेकिन बादल छाए हुए हैं और एक तपस एक ह्यूमिडिटी जरूर मौसम में है। अगर यहां पर बाहर कोई भी निकलता है तो ह्यूमिडिटी जरूर परेशान करती है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से चाहे वो हिमाचल है जिसमें 4 जिले मंडी, कांगड़ा, शिमला और सोलन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहीं पर बिलासपुर और सिरमौर में येलो अलर्ट है, बाकी जगह मौसम साफ रहने का अनुमान है। और पंजाब का मानसा हो जहां पर एक कच्चा बांध नदी के किनारे टूटा, 300 एकड़ फसल खराब हुई पिछले दिनों में पहली बारिश से, और साथ साथ पठानकोट हो या वो शहरी इलाका हो जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या इस इक्का दुक्का बरसात से ही सामने आई है। हरियाणा में भी पंजाब के साथ जैसे ऑरेंज अलर्ट पंजाब में है तो वैसे ही येलो अलर्ट हरियाणा में जारी किया गया है। 9 जुलाई का अनुमान है और अगले 2 से 3 दिन हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया गया है।
0: वहीं दिल्ली NCR में लंबे इंतजार के बाद ठंडी हवाओं और झमाझम बरसाती बूंदों के कारण तापमान में कमी आई है और मौसम सुहाना हो गया है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को इस बारिश ने बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र के पालघर से मोहम्मद हुसैन खान, मुंबई से विद्या, चंडीगढ़ से अमन भरद्वाज और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ अखनूर से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम तक भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बारिश का क्या है हाल, देखिए हमारे संवाददाता अनमोल बाली की रिपोर्ट।
7: दिल्ली में मानसून की पहली झमाझम बारिश की शुरुआत हो गई है। समय मैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में खड़ा हूं और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे इस समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घने बादल छाए हुए हैं और पानी झमाझम बरस रहा है, क्योंकि 2 जुलाई से देखा गया था मौसम विभाग का जो अनुमान था कि दिल्ली में मानसून दस्तक देगा, मानसून ने दस्तक दी और पर देखा गया कि बारिश नहीं हो रही थी, उमस भरे दिन थे। इसी बीच एक तरफ तो देश के कई राज्यों में जो बारिश है इस समय लोगों के लिए मुसीबत, पर वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बारिश एक उमस वाले दिनों में सौगात बनकर आई है। और वहीं बारिश को देखते हुए अभी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जो है इशू किया है। सुबह देखा गया कि ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया, फिर दिल्ली को देखते हुए रेड अलर्ट इशू किया गया। उसी बीच तस्वीरें आप मेरे साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस की देख रहे हैं, जहां लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं। एक तरफ तो उमस से राहत और वहीं दूसरी तरफ झमाझम बरसते हुए बादल। और वहीं मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि ट्रैफिक मूवमेंट भी अगर आप देखें बारिश के कारण, उस पर भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं उनकी जो रफ्तार है धीमी हो गई है। विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट इशू किया और साथ ही लोगों को चेतावनी दी है कि अगर आप किसी जर्जर इमारत के पास रहते हैं, जर्जर इमारत में रहते हैं, किसी जर्जर पेड़ के पास खड़े हैं, तो किसी सुरक्षित स्थान पर जाके खड़े हो जाएं या सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि आने वाले एक दो दिन में देखा जाएगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे ही बारिश पड़ने का अनुमान है। और साथ ही अगर बात की जाए साउथ वेस्ट मॉनसून की, तो देखा जा रहा है कि मॉनसून ने अभी रफ्तार पकड़ी है और उत्तर भारत के कई राज्यों में देखा जाएगा कि एक दो दिन तक जो मॉनसून के बादल हैं वो दस्तक देंगे, जहां देखा जा सकता है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई राज्यों में भी झमाझम बारिश होने के आसार पैदा हो सकते हैं। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ अनमोल नाथवाली की दिल्ली से रिपोर्ट।
8: दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
9: उत्तर प्रदेश के रहने वाले कन्हैया कुमार रोलर स्केट्स के जरिए अमरनाथ यात्रा पर निकले हैं। 20 साल के कन्हैया कुमार पिछले साल 29 अक्टूबर को अपने घर से रवाना हुए थे और बीते 10 महीनों में 14 राज्यों से होते हुए कश्मीर के काजीगुंड पहुंचे हैं। कन्हैया कुमार ने बताया कि उनकी ये अनोखी यात्रा भगवान शिव को समर्पित है और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देगी। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था की जमकर तारीफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली को 300 ई बसों की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने 11 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी की। दिल्ली के 2 लाख लोगों को एक पेड़ माँ के नाम से जोड़ा जाएगा। वहीं दिल्ली के 250 वार्ड और 70 विधानसभा क्षेत्र में जन भागीदारी के साथ पौधारोपण कराया जा रहा है। फेंसिंग के साथ ही पौधों की जियो टैगिंग कराई गई है ताकि निगरानी सुनिश्चित हो। अगर पौधों को किसी प्रकार नुकसान हो तो वहां नए सिरे से पौधे लगाए जा सकें। ओडिशा के पुरी में होने वाली सालाना जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पुलिस ने मेगा मॉक ड्रिल की। पुलिस ने पुरी रेलवे स्टेशन समेत कई महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया ताकि रथ यात्रा के दौरान जुटने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुरी में 16 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत होगी।
8: अब बात अमरावती की मां अंबे देवी मंदिर की। महाराष्ट्र के चिखलदरा में पहाड़ियों के बीच मौजूद एक ऐसी गुफा है जहां पर आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ दिखाई देते हैं। करीब 400 साल पुराने मां अंबे देवी की इस गुफा मंदिर में सबसे खास बात यह है कि यहां साल के 365 दिन प्राकृतिक जलधारा लगातार बहती रहती है और शिवलिंग का निरंतर जलाभिषेक होता रहता है।

0: महाराष्ट्र के अमरावती जिले का चिखलदरा विदर्भ का एकमात्र हिल स्टेशन ही नहीं बल्कि महाभारत कालीन इतिहास प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम भी है। बादलों से ढकी ऊंची पहाड़ियाँ, हरियाली से ढकी घाटियाँ और इन्हीं चट्टानों के बीच सदियों पुरानी एक रहस्यमयी गुफा जहाँ प्रकृति खुद माँ शक्ति की आराधना करती दिखाई देती है। इस गुफा में प्रवेश करते ही भक्ति की अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। ये गुफा जितनी ऐतिहासिक है उसे लेकर पौराणिक मान्यताएं भी उतनी ही गहरी और पुरानी है। इस गुफा को पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम पड़ाव भी माना जाता है और यहाँ विराजमान माँ अम्बे की संगमरमर की ये आकर्षक प्रतिमा श्रद्धालुओं को पहली ही नजर में अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। दोनों हाथों में तलवार धारण किए माँ का दिव्य स्वरूप शक्ति साहस और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। खास बात ये है कि इस मंदिर में आदिवासी समाज गवली समुदाय सहित दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में माथा टेकने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना यहां पूरी होती है।
1: अमरावती के हिल स्टेशन चिखलदरा में एक जो है यहां पर गुफा है, वो गुफा बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी कि महाभारत काल से भी अधिक पुरानी ये गुफा। मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर ये गुफा है और इस गुफा के अंदर अब यहाँ जो है अम्बा देवी संस्थान के चलते जो है देवी माँ की मूर्ति लगभग 400 साल से भी अधिक समय से यहाँ पर उसको स्थापित किया गया है। और सबसे अहम बात यही है कि ये देवी माँ का जो स्वरूप है और जो मूर्ति है वो संगमरमर की मूर्ति है और माँ के इस रूप को आप देख सकते हो कितना सुंदर है माँ का रूप। लेकिन माँ के इसी गुफा में बैठी इस माँ के सामने जो है निरंतर 12 ही महीने जो है निरंतर इस गुफा में जो पानी है वो पानी निरंतर यहाँ पर गिरता है। माता रानी का ये दर्शन लेकर और इस गुफा में किस तरह का पानी निरंतर गिरता है, क्या देखा है तुमने?
2: हमने अभी देखे चंद्रपुर के, हम आए चंद्रपुर जिला वरोरा, हमने देखे चिखलदरा, देखे हमने पानी आप आप गिर रहा है, पूरा पानी बंद है अभी, पानी बरसात भी बंद है तो अभी पानी गिर रहा है, बोला 12 महीना पानी गिर रहा है इधर।
1: क्या मांगा माता से?
2: माता के माने माना हमें पूरी इच्छा पूरी करो।
0: इस गुफा की सबसे अनोखी पहचान है यहाँ बनने वाली प्राकृतिक जलधारा। विशाल चट्टानों के बीच से निकलने वाला निर्मल जल बिना रुके पूरे साल इसी तरह 2400 घंटे झरने की तरह बहता रहता है। यही जलधारा सीधे मंदिर परिसर में गिरती है और फिर स्वयं भगवान शिव के शिवलिंग का निरंतर जलाभिषेक करती है। श्रद्धालु इसे प्रकृति और परमात्मा के अद्भुत मिलन का जीवंत प्रमाण मानते हैं। सवाल है कि आखिर ये पानी कहां से आता है, तो इसका कोई निश्चित वैज्ञानिक उत्तर आज तक सामने नहीं आया है। हालांकि मंदिर के पुजारियों के अनुसार इसे चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित घटनाओं और अमरावती के सरकारी गजेटिया के अनुसार चिखलदरा वह क्षेत्र है जहां विराट राजा के साले और सेनापति कीचक का वध महाबली भीम ने किया था। युद्ध के बाद भीम ने अपने रक्त रंजित हाथ जिस कुंड में धोए वो आज भी भीम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसी घटना के कारण इस स्थान का नाम पहले कीचक धारा पड़ा जो समय के साथ अब भ्रंश होकर चिखलदरा बन गया है। महाभारत की अमर गाथा 400 वर्षों से जलती आस्था की लौ और 12 महीने निरंतर बहने वाली प्राकृतिक जलधारा चिखलदरा की ये पांडवकालीन गुफा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि इतिहास संस्कृति और प्रकृति का ऐसा अद्भुत संगम है जो हर आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक को रोमांच श्रद्धा और आध्यात्मिक अनुभूति से भर देता है। यही कारण है कि विदर्भ के इस अनोखे तीर्थ की पहचान लगातार बढ़ती जा रही है।
1: इसी बीच जो है यहाँ पर दूसरा भी मंदिर है जो भोलेनाथ का मंदिर है, वो भोलेनाथ के मंदिर पर इसी गुफा के अंदर आप देख सकते हो कि निरंतर जलाभिषेक जो है वो यहाँ पर इस जो पहाड़ी के अंदर से जो पानी आता है वो निरंतर इसे जलाभिषेक में यहाँ पर रूपांतर होता है। ऐसी ही ये जो गुफा है वो अपने आप में अलग है, और सबसे अहम बात यही है कि इस गुफा के ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है एक नदी का उगम है और उगम स्थान है। और सबसे दूसरी महत्व की बात है कि निरंतर यहाँ पर जो है वो देवी माँ के मंदिर के अंदर इस गुफा के अंदर निरंतर जो है पानी गिरता है, और यही जो यहाँ पर भक्तों की भक्ति है, आराधना है, साधना है, वो यहाँ पर बड़े भाव से यहाँ पर भक्त जो है अपनी आराधना साधना पूजा करने के लिए और अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं। अमरावती के चिखलदरा से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे।
0: न्यूज पेपर आगे है धनबाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपके जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धनबाजार। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 104 अंकों की गिरावट के साथ 78,180 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 31 अंकों की गिरावट के साथ 24,398 पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में सुस्ती और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होने की वजह से आज गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में गिरावट मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1400 रुपए गिरकर 149,250 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 200 रुपए लुढ़ककर 239,800 रुपए पर पहुंच गई। 7 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में मजबूती देखने को मिली। मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 48 पैसे मजबूत होकर 94.95 के स्तर पर बंद हुआ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
4: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now. From today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: पुणे में धूमधाम से निकली जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी, हरिनाम के जयघोष से गूंजा शहर, ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक वेशभूषा में दिखे लोग। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन, काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना। गुजरात के कई इलाकों में जमकर बरस रहे हैं बदरा, सूरत नवसारी में भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया में प्रेम और अपनापन मिला। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ, नानकपुरा रिज में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण, गृहमंत्री अमित शाह ने शुरुआत की।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस मेड इन इंडिया दम की जिसकी धाक आज सारी दुनिया में जम चुकी है। आज पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई दे रही है। हाल ही के सालों में भारत का डिफेंस सेक्टर सुपर फास्ट स्पीड के साथ आगे बढ़ा है। एक दशक से भी कम वक्त में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है, बल्कि अब उनके इम्पोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। दो तस्वीरें आपके सामने, ये आज की तारीख में भारत के मेक इन इंडिया मिशन की कामयाबी बयां करने वाली तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि भारतीय नेवी का अपना महेंद्र बाहुबली, ये नीलगिरी क्लास का मेड इन इंडिया युद्धपोत है। ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट इसी हफ्ते भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। नाम है INS महेंद्रगिरी। तो वहीं दूसरी तस्वीर है उस मेड इन इंडिया धाकड़ मिसाइल की, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है, भारत का ब्रह्मोस अस्त्र। जल्द ही इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल खरीदने जा रहा है। पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और आज इस डील से जुड़ा MOU साइन किया गया। तो चलिए आपको बताते हैं क्यों खास है भारत की ये मिसाइल और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के वर्तमान हालात को देखते हुए ये डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है।

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर पल एक नई ऊंचाई को छू रहा है। देश में ही ऐसे ऐसे हथियार गढ़े जा रहे हैं जो ताकत और तकनीक के मामले में बेहतरीन है। आज हिंदुस्तान के हथियार ग्लोबल हो रहे हैं। इंडियन वेपन की ताकत को दुनिया महसूस कर रही है और इसी का नतीजा है कि भारत डिफेंस सेक्टर में वेपन एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बढ़ा रहा है। इसकी सबसे ताजा तस्वीर आई है इंडोनेशिया से।
1: एयर टू एयर मिसाइल कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन भारत डायनामिक्स एंड रिपब्लिक कॉर्प।
0: दुनिया की सबसे खतरनाक और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की अतिरिक्त बैटरियां खरीदने के लिए इंडोनेशिया ने फाइनल डील पर मुहर लगा दी है। पहले से ही भारत के ब्रह्मोस का खरीदार इंडोनेशिया ऑपरेशन सिंदूर में इस अचूक मिसाइल की ताकत को देख चुका है। भारत ने इसी मिसाइल के हमले से पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए थे। मुरीद के में लश्कर और बहावलपुर में जैश के ठिकानों को ब्रह्मोस ने धूल में मिला दिया था। अब मैक 3 की विनाशकारी गति से उड़ने वाली ब्रह्मोस जब इंडोनेशिया के तटीय इलाकों में तैनात होगी तो साउथ चाइना सी में चीन दादागिरी करने से पहले 100 बार सोचेगा।
2: देखिए, ब्रह्मोस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इस समय विश्व में रशिया और इंडिया के अलावा किसी देश के पास नहीं है और इंडो पैसिफिक रीजन में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। महत्व इसलिए है कि ये शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है, हवाई जहाज से भी लॉन्च किया जा सकता है और ग्राउंड से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के अगर हम उसकी सुरक्षा की बात करते हैं तो इसका इंडोनेशिया और भारत दोनों के पास होना एक तरह का एक जो मिलके हम जो है उस खतरे का सामना कर सकते हैं उसके लिए ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा।
0: दरअसल ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे कैसे भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस की स्पीड ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा होती है। हर मोर्चे पर भी ब्रह्मोस की तैनाती संभव है। इसे जमीन, समंदर, हवा कहीं से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। ये मूविंग यानी चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। इसकी स्ट्राइक क्षमता इतनी कमाल है कि ये 400 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। ब्रह्मोस में दूसरे स्टेज का रैमजेट इंजन लगा है जो इसे सुपरसोनिक स्पीड देता है और फ्यूल की खपत को कम करता है।

0: ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसका अचूक निशाना है। सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर यह मिसाइल सटीक वार करते हुए 1 मीटर के दायरे में जाकर गिरती है, यानी इसकी अचूक मारक क्षमता के आगे दुश्मन के किसी भी टारगेट का बचना नामुमकिन है। अचूक मारक क्षमता के साथ साथ ब्रह्मोस की रफ्तार इसकी एक और बड़ी ताकत है।
1: क्या इसकी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि 300 से ज्यादा, अभी तो इसका दूसरा वर्जन जो है वो 400-450 किलोमीटर तक भी जाता है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वो शिप्स को बिल्कुल खत्म कर सकता है। और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, सुपरसोनिक है, कि कोई इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, सैटेलाइट से डिटेक्शन नहीं हो पाता है, रडार से डिटेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत लो फ्लाइंग है। अगर हम समुद्र से इसके बोलते हैं 5 मीटर की ऊंचाई पर भी समुद्र के ऊपर फ्लाई कर सकता है।

0: अगर आज दुनिया मिसाइल पावर के मामले में भारत की ताकत का लोहा मान रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ब्रह्मोस है। खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो ब्रह्मोस दुनिया भर की नजर में आ गई है। वैसे भारत के तर्कश में ब्रह्मोस नाम का यह कमाल का ब्रह्मास्त्र 25 साल पहले ही शामिल हो चुका था, क्योंकि यह मिसाइल भारत और रूस के साझा मिशन का नतीजा है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था। इस मिसाइल के निर्माण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के तत्कालीन प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और रूस के उप रक्षा मंत्री NV मिखाइलोव ने 12 फरवरी 1998 को हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद इसका पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। और आज ये मेड इन इंडिया मिसाइल दुनिया भर के देशों में अपना लोहा मनवा रही है।
1: इंडोनेशिया और भारत के बीच ये समझौता एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसका प्रोडक्शन भी वहाँ हो सकता है और वहाँ हमारे यहाँ भी इसका प्रोडक्शन होता है, और भारत के लिए एक्सपोर्ट होने से एक इकोनॉमिक गेन भी है। तो सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक गेन के लिए अच्छा है, और इंडोनेशिया और भारत के जो सामरिक रिलेशनशिप है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा समझौता, एक बहुत बड़ा कदम है। मैं सोचता हूँ कि इसको आगे ले जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमें इंडोनेशियन एयरफोर्स या उनकी आर्मी के साथ मिलकर उसका प्रोडक्शन वहां करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो इंडो पैसिफिक सुरक्षा है उसको बढ़ावा मिले।

0: आपको बता दें कि फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया के साथ इस डील से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत ने एक बड़े रक्षा साझेदार के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया है। इंडोनेशिया और चीन के संबंधों पर नजर डाले तो ये साफ होता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के बावजूद रणनीतिक असहमति बनी हुई है। वहीं भारत और इंडोनेशिया अब दोस्ती के नए मुकाम की ओर चल रहे हैं। इस तरह इंडोनेशिया का भारत के पाले में आना बीजिंग के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और इसी दौरान ये इस डील के एमयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वैसे आपको बता दें, ब्रह्मोस के अलावा इंडोनेशिया ने अपनी पुरानी रूसी R-77 मिसाइलों को हटाकर भारत की इस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को खरीदने का ऐतिहासिक फैसला भी किया है।
2: एयर टू एयर मिसाइल कोऑपरेशन अग्रीमेंट बिटवीन भारत डायनामिक्स एंड रिपब्लिक कॉर्प।
0: मैक 4 प्लस की सुपरसोनिक रफ्तार और 110 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल जब इंडोनेशिया के फाइटर जेट से उड़ेगी तो दुश्मनों को संभलने का एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI ने अस्त्र से पाकिस्तानी जेट्स को निशाना बनाया और उसे जमीन पर ला दिया। इंडोनेशिया ने भी देखा कि भारत का अस्त्र पाकिस्तान की चीनी PL-15E मिसाइलों से कई गुना बेहतर साबित हुआ। उसी कामयाबी को देखते हुए इंडोनेशिया ने ये डील की है।
3: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में बने हथियारों का लोहा पूरी दुनिया ने माना और पाकिस्तान के भीतर आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करने वाली ब्रह्मोस और अस्त्रा जैसी मिसाइलों ने अपनी विश्वसनीयता और अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाई और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ोतरी मिली है। अब इंडोनेशिया ने फैसला किया है कि वो ब्रह्मोस के साथ एस्ट्रा मिसाइल भी खरीदेगा। एस्ट्रा यानी भारत में बनने वाली वो मिसाइल जो एयर टू एयर के लिए जानी जाती है, एस्ट्रा मैक 1, जिसे सुखोई 30 में इंटीग्रेट किया गया है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया अब भारत से ये मिसाइल लेना चाहता है क्योंकि इंडोनेशिया के पास भी Su-30 विमान है और अब वो अपने विमानों में एस्ट्रा मिसाइल लगाना चाहता है, जिसको अब ये देखा जा रहा है कि किस तरह से भारत के जो हथियार हैं वो लगातार पूरी दुनिया में अपनी मांग बढ़ा रहे हैं। हालांकि इंडोनेशिया वो पहला देश है जिसने एस्ट्रा मिसाइल के लिए बातचीत की है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है, लेकिन ब्रह्मोस को खरीदने वाला इंडोनेशिया तीसरा देश होगा क्योंकि फिलीपींस के बाद वियतनाम से और अब इंडोनेशिया से इसकी बातचीत चल रही है। तो लगातार भारत के हथियार पूरी दुनिया में अपनी धमक दिखा रहे हैं और भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ रहा है और इंडोनेशिया अब ब्रह्मोस के साथ साथ एस्ट्रा मैक 1 एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स भारत से खरीदेगा।
0: इंडोनेशिया से यह समझौता गवाह है कि भारत अब रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि ग्लोबल एक्सपोर्टर बन चुका है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब बात भारत के महेंद्र बाहुबली की। अब से 3 दिन बाद विशाखापट्टनम में INS महेंद्र गिरी का कमिशनिंग समारोह है, जहां इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के बेड़े में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया जाएगा। महेंद्र गिरी एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसके आने से भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत और सामर्थ्य हासिल होगा।

0: स्थित प्रज्ञ रणेशु अपराजित, यानी वो जिसकी बुद्धि स्थिर है, अडिग है, वो जो युद्धों और संघर्षों में अपराजित रहता है। अपने आदर्श वाक्य की तरह ही सागर की लहरों पर सदा अपराजित रहने का दम और सामर्थ्य लेकर आ रहा है नौसेना का महेंद्र बाहुबली। सागर का वो बाहुबली जिसे देश के पूर्वी घाट पर मौजूद प्रसिद्ध महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर अपना नाम मिला है। वो महेंद्रगिरी पर्वत जो शक्ति, धैर्य और अडिग संकल्प का प्रतीक है, भारतीय नौसेना के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी युद्धपोत को महेंद्रगिरी नाम दिया गया है। 11 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना के लिए इस नए अध्याय की शुरुआत होगी, जब नौसेना के बेड़े में INS महेंद्रगिरी को शामिल किया जाएगा। INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तैयार किया गया 6th गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसका डिजाइन भारतीय नौसेना के WDB यानी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है।
1: भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत अपना 6th वॉरशिप महेंद्रगिरी मिलने वाला है। महेंद्रगिरी विशाखापट्टनम में 11 जुलाई को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। इसकी कमिशनिंग की जाएगी। प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत भारत में बनने वाला ये 6th वॉरशिप है। इसके पहले 5 दूसरे वॉरशिप्स भी भारतीय नौसेना का हिस्सा बन चुके हैं। महेंद्रगिरी को भारत में MDL ने बनाया है और नेवल वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसे डिजाइन किया है। तेजी से आत्मनिर्भर होती भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने वाले महेंद्रगिरी की ताकत की अगर हम बात करें तो इसमें बराक मिसाइल्स के साथ साथ ब्रह्मोस और टॉर्पीडोज की ताकत है। 6,600 टन के डिस्प्लेसमेंट वाला ये जहाज अत्याधुनिक सिस्टम से लैस है और भारतीय नौसेना को भारत में निर्मित होने वाले जहाजों की ताकत में इजाफा करने वाला ये जहाज बेहद कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के दौरान भारतीय जहाजों की तैनाती, हर तरफ भारतीय नौसेना लगातार सशक्त हुई है।
0: ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। INS महेंद्रगिरी में सुपर एडवांस्ड कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आधुनिक सेंसर, एंटी सबमरीन वेपन्स और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और पनडुब्बियों से ये एक साथ मुकाबला कर सकता है। महेंद्रगिरी फ्रिगेट स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जो दुश्मन के रडार को चुनौती देगा समुद्र में चुपचाप आगे बढ़ने और जरूरत पड़ने पर घातक प्रहार करने में इसका कोई मुकाबला नहीं। सबसे अहम बात ये कि महेंद्रगिरी के निर्माण में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
2: भारत की नेवी की ताकत में और इजाफा हो रहा है। INS महेंद्रगिरी अगर देखा जाए तो अत्यधिक ताकतवर फ्रिगेट है, जो कि देश में ही बना है। 75% हिस्से इसके देश में बने हुए हैं। इसके अंदर आधुनिक स्टेल्थ है, यानी कि एक रडार को द्वारा इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सामने का इसका हल्का क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है। ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है जो कि रडार को देखने के लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अत्याधुनिक हथियार इसके ऊपर लगे हुए हैं। आप देखिए, इसके ऊपर ब्रह्मोस है जो जमीन से ज़मीन पर मार करता है, यानी कि शिप से ज़मीन पर। इसमें बराक है जो कि शिप से एयर हवाई में मार करेगा। एंटी सबमरीन इसमें मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, टॉर्पीडो लगे जो कि आधुनिक सबमरीन को खत्म करने के लिए है।
0: महेंद्रगिरी भले ही एक वॉरशिप है, लेकिन इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल युद्ध के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान, समुद्री सुरक्षा गश्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिशंस में किया जा सकेगा। समुद्र में फंसे लोगों की सहायता से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने तक ये कई अहम जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है।
1: लगातार भारतीय नौसेना की ताकत आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ रही है और 2047 तक भारतीय नौसेना 100% आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखती है। अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो ये 75% इंडिजनाइज है। अगर इसकी क्षमताओं की बात करें तो ये कंबाइंड डीजल और गैस टेक्नोलॉजी के इंजन के साथ लैस है। किसी भी तरह के एंटी एयर वॉरफेयर या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैयार है और अपने क्लास के तमाम दूसरे शिप्स की तरह ये भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा कर रहा है।
0: आपको बता दें कि जिस प्रोजेक्ट 17A के तहत INS महेंद्रगिरी कमीशन होने वाला है उसका इतिहास लगभग 2 दशक पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने साल 2009 के जून महीने में इसका कॉन्सेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था।
2: देखा जाए तो प्रोजेक्ट 17A भारत की नेवी का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें नीलगिरी क्लास के शिप बनाए जा रहे हैं, फ्रिगेट्स हैं, जो कि 2 शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं, मझगांव में और गार्डनरीच में, मुंबई और कोलकाता में बन रहे हैं, और टोटल 60 शिप बन रहे हैं। ये शिप्स की खासियत यह है कि ये स्टेल्थ से लैस है, यानी कि इनको रडार को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है।
0: साल 2013 तक ही प्रोजेक्ट 17A के प्राइमरी डिजाइन तैयार कर लिए गए थे। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी को 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स को लॉन्च कर दिया था। 17A प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं। इनमें 4 फ्रिगेट मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि 3 फ्रिगेट बनाने की जिम्मेदारी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता को मिली थी, जिसमें हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी शामिल हैं।
1: तो प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत इसे भारत में बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा जिसके तहत 45,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 वॉरशिप्स को भारत में बनाया गया, जिन्हें MDL और GRSE ने मिलकर बनाया है। हाल ही में महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, जिसके बाद तमाम सी ट्रायल्स हुए, हर तरह के परीक्षण हुए और अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए महेंद्रगिरी पूरी तरह से तैयार है। महेंद्रगिरी से पहले दूनागिरी और तमाम दूसरे जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। पिछले महीने एक ट्रिपल कमीशनिंग के तहत इस पूरे प्रोजेक्ट के 5वें जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और अब 6ठा यानी कि महेंद्रगिरी भी भारतीय नौसेना में कमीशन हो रहा है।
0: निश्चित रूप से भारत का ये महेंद्र बाहुबली नौसेना की शक्ति में कई गुना इजाफा करने वाला है। INS महेंद्रगिरी की कमीशनिंग के बाद भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिलेगी। समंदर की सीमा की रक्षा में सागर का ये प्रहरी मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अब बात तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की। वायुसेना जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस साल सितंबर अक्टूबर के महीने में जोधपुर में होने वाली इस एयर कॉम्बैट ड्रिल का नाम ऑपरेशन तरंग शक्ति है। ऑपरेशन तरंग शक्ति 2026 में कई देशों की वायुसेनाएं इसमें हिस्सा लेंगी। ये तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण होगा। इससे पहले साल 2024 में भारतीय सेना ये मेगा युद्धाभ्यास कर चुकी है। तरंग शक्ति मेगा युद्धाभ्यास में वायुसेना के जवानों को दुनिया के दूसरे वायु सैनिकों की काबिलियत परखने का मौका मिलेगा। तरंग शक्ति जैसे युद्धाभ्यास से भारत के हवाई योद्धाओं को दूसरे देशों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का मौका मिलता है। ये कोशिशें भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए वायुसेना को पहले से तैयार करने की अहम पहल है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा।
1: भारतीय वायुसेना अब तक की सबसे बड़ी एयर कॉम्बैट ड्रिल तरंग शक्ति के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार इतनी बड़ी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जोधपुर में होने वाली है। 28 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच तरंग शक्ति अपने तमाम वायुसेनाओं के साथ भारत की वायुसेना की ताकत दिखाएगी। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि 2024 में तरंग शक्ति का पहला एडिशन

0: अपनी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में कॉम्बैट कैपेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी दोनों दिखाएगी, और वो भी पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक। कैमरा पर्सन प्रेमचंद्र के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए शिवानी, दिल्ली।
1: और चलिए इसी के साथ जी एनडी स्पेशल की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: कोटा के एक स्टूडेंट ने ऐसा स्मार्ट प्लांट पॉट तैयार किया है जो पौधों की जरूरतों को आसान तरीके से समझने में मदद करता है। ये स्मार्ट इमोशन पॉट सेंसर और तकनीक की मदद से पौधे की स्थिति पर नजर रखता है और पानी, धूप या फिर देखभाल की जरूरत होने पर मोबाइल पर एमओजी के जरिए अलर्ट भेजता है। इस अनोखे इनोवेशन का मकसद पौधों की देखभाल को आसान, रोचक और तकनीक से जोड़ना है।
5: जरा सोचिए, अगर आपके घर का पौधा बोल पाता तो शायद आपको अपना हाल बताता और आप उसकी जरूरत को पूरा कर पाते। अब तक ये सिर्फ कल्पना थी, लेकिन कोटा के एक युवा इनोवेटर ने इस कल्पना को हकीकत में बदलने की पहल की है। आजाद पब्लिक स्कूल के छात्र और वेल्ट्रियोनेक्स स्मार्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक आर्यन सिंह ने ऐसा स्मार्ट इमोशन पॉट बनाया है जो पौधों की खामोशी को इमोजी की भाषा में बदल देता है।
6: जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जान आ गई है, जहाँ पे प्लांट जो है अपने इमोशन शो कर सकता है कि हाँ, उसको प्यास लगने में वो रो रहा है, अंदर रहने पे अगर अकेला है तो उसको डर लग रहा है, या मोशन सेंस कर रहा है तो डर लग रहा है, नाइट में वो सो रहा है, तो जहाँ पे हम उसको देख सके कि वो एक हमारा फ्रेंड है, हम एज अ फ्रेंड ट्रीट कर सके उसको।
5: आज के दौर में लोग बड़े जोश से पौधे तो घर ले आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद भागदौड़ भरी जिंदगी में वही पौधे एक कोने में अकेले छूट जाते हैं। पौधों को कभी समय पर पानी नहीं मिलता, कभी धूप नहीं मिल पाती। जब पौधा मुरझाने लगता है तब हमें पेड़ों की तकलीफ पता चलती है। इसी प्रॉब्लम के हल के तौर पर आर्यन को इस स्मार्ट गमले का आइडिया आया।
6: किया हमने कि कुछ ना कुछ एक ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि वो किसी इंसान से इंटरेक्ट करते हैं, कर सके। जैसे कि हमें पता है आज इंसान आपस में बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो जाता है, लोग एक दूसरे से काफी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो ये हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा प्लांट के साथ किया जाए ताकि उसको एज अपना फ्रेंड ही उसको ट्रीट करें और अपनी सारी बातें उसको शेयर कर सकें, उसके इमोशन देख सकें कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है चीज में।
5: ये सिर्फ एक स्मार्ट गमला नहीं बल्कि एक डिजिटल प्लांट कंपेनियन है। इसमें लगे सेंसर मिट्टी में नमी, पौधों के हिसाब से तापमान, पानी की जरूरत और रोशनी की आवश्यकता को भाप लेते हैं, और ये स्मार्ट गमला अपने एक्सप्रेशन से हमें पौधों की जरूरत के बारे में बता देता है। जैसे जैसे पौधे की जरूरत बदलती है, वैसे वैसे स्क्रीन पर उसके चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं।
6: ध्यान में रखकर इसको बनाया, इसके अंदर अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं जो कि अलग अलग चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर मॉइस्चर लेवल या मॉइस्चर या वाटर लेवल है तो उसको वो सेंसर देख रहा है, मोशन को मोशन सेंसर डिटेक्ट करने के लिए कर रहा है कि उसके साथ अगर कोई है तो उसको। पूरा बच्चों से फ्रेंडली बनाया है कि अगर वो इतना अभी से ही उतना केयरिंग बन जाते हैं तो आने वाले टाइम पे कुछ वो बेटर आउटपुट दे सकते हैं इस एनवायरनमेंट को।
5: आज की पीढ़ी मोबाइल और गैजेट्स के साथ तो जल्दी जुड़ रही है, लेकिन प्रकृति से उनका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में ये स्मार्ट इमोशन पॉट इंसानों और पौधों के बीच दोस्ती का पुल बन सकता है। आर्यन का कहना है कि आने वाले समय में इस स्मार्ट इमोशन पॉट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और API मॉडल से और स्मार्ट बनाया जाएगा ताकि भविष्य में ये सिर्फ चेहरे के भाव ही ना दिखाए बल्कि यूजर से बात भी कर सके। कोटा से चेतन गुर्जर, गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
1: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
2: पुणे में धूमधाम से निकली जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी, हरिनाम के जयघोष से गूंजा शहर, ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक वेशभूषा में दिखे लोग. वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन, काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना. गुजरात के कई इलाकों में जमकर बरस रहे हैं बदरा, सूरत नवसारी में भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील. जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया में प्रेम और अपनापन मिला. दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाभियान का शुभारंभ, नानकपुरा रिज में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण, गृहमंत्री अमित शाह ने शुरुआत.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ.
3: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है. ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा अमरनाथ यात्रा और श्रद्धालुओं की सुविधा की भी है.
4: बम बम भोले, हर हर महादेव और जय बर्फानी बाबा के जयकारों से अमरनाथ यात्रा मार्ग गूंज रहा है. श्रद्धालु पवित्र गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं. अमरनाथ यात्रा के लिए इस साल अब तक का सबसे बड़ा श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ. इस जत्थे में शामिल 8,815 श्रद्धालुओं में 31 विदेशी भी यात्रा का हिस्सा बने हैं. यात्रा के शुरुआती चार दिनों में ही 93,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं. यात्रा के दौरान सुरक्षा के साथ ही श्रद्धालु की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है. बालटाल बेस कैंप से लेकर रामबन के चंद्रकोट तक यात्रियों को मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जा रही है. पवित्र अमरनाथ यात्रा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए ग्रामीण स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है. हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर हलचल शुरू हो गई है. 30 जुलाई से शुरू होने वाला कांवड़ मेला सकुशल होने की कामना को लेकर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा की ओर से मालवीय घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ आरती की गई. इस विशेष अवसर पर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने नियमों वाला एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें कांवड़ियों को कांवड़ उठाने के नियम बताए गए हैं. इस पोस्टर में कांवड़ियों से कांवड़ उठाने के नियमों का पालन करते हुए कांवड़ उठाने और अपने गंतव्य तक ले जाने के साथ ही वजनी कांवड़ नहीं उठाने का आग्रह किया गया है. अखाड़े से जुड़े साधु संतों और पंडितों ने शिव भक्तों से तीर्थ नगरी की मर्यादा बनाए रखने के लिए भी निवेदन किया है. श्रद्धालुओं को बड़े बड़े डीजे लेकर आने से बचने की सलाह दी गई है, ताकि उसकी तेज आवाज और धमक से किसी को किसी भी तरह की असुविधा या परेशानी का सामना न करना पड़े. श्री गुरु गोरखनाथ अलख अखाड़ा परिषद की ओर से हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में 11 महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक किया गया. समारोह में सभी महामंडलेश्वरों को चादर विधि करके पट्टाभिषेक किया गया और संतों ने फूलों की बारिश करके आशीर्वाद प्रदान किया. इस अखाड़ा परिषद ने 51 महामंडलेश्वर बनाने का लक्ष्य रखा है और अब तक 41 महामंडलेश्वर बनाए जा चुके हैं और बाकी 10 महामंडलेश्वरों को बनाने की तैयारी हो रही है. कुंभ से पहले इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा. जिन 11 महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक किया गया है, उन्हें गुरु गोरखनाथ अलग अखाड़े से जुड़े हुए 4-5 वर्ष हो गए हैं और अब बतौर महामंडलेश्वर वो अपने कर्तव्य को निभाएंगे. ये तस्वीरें पंजाब के फरीदकोट की हैं, जहां आयोजित दस्तार प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 6 से 15 साल की उम्र के 60 बच्चे शामिल हुए, जिन्होंने दस्तार यानी पगड़ी बांधने की कला का पूरे आत्मविश्वास, अनुशासन और अपनी सिख विरासत के प्रति समर्पण का पूरी कुशलता से प्रदर्शन किया। इन छोटे छोटे बच्चों ने खुद से पगड़ी बांधी। रंग बिरंगी पगड़ियों में ये बच्चे बेहद सुंदर लग रहे थे। प्रतियोगिता में विजेताओं का चयन दस्तार बांधने की कला, साफ सुथरापन, प्रस्तुति, संतुलन, आत्मविश्वास, पारंपरिक शैली, फिनिशिंग और समग्र प्रभावशाली प्रदर्शन सहित कई महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित शमशान घाट की अपन पाठशाला में बच्चे पढ़ाई करने के साथ साथ मशहूर मिथिला पेंटिंग भी सीख रहे हैं और आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये खूबसूरत पेंटिंग इन बच्चों ने ही बनाई है। अपनी इस शानदार कला के जरिए बच्चे अपनी पढ़ाई का खर्च भी निकाल रहे हैं। इस पाठशाला में पढ़ने वाले 28 बच्चे नियमित शिक्षा के साथ ही मिथिला पेंटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें ये छठ महापर्व, राधा कृष्ण, मछली, मोर, पक्षियों और बिहार की लोक संस्कृति पर आधारित आकर्षक पेंटिंग्स तैयार कर रहे हैं, जिनके स्थानीय लोगों के बीच अच्छी खासी डिमांड है। एक पेंटिंग तैयार करने में बच्चों को करीब 2 दिन लग जाते हैं, जो 150 से 200 रुपए तक में बिक जाती है। खरीदार इसे सम्मान समारोह में स्मृति चिन्ह के रूप में भी भेंट करते हैं। इससे बच्चों को आर्थिक मदद मिलने के साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
3: और अब बात करते हैं मानसून की। बारिश का मौसम जितना सुहाना होता है, उतना ही चुनौतियां भी लेकर आता है। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन कहीं शहर पानी में डूबे हैं तो कहीं लोग बाढ़ के बीच फंस गए। हालांकि राहत कर्मी और बचाव दल मुश्किल में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। वहीं पूरे देश में मॉनसून की दस्तक से कहीं बारिश हो रही है तो कहीं भारी बारिश होने की खबर है, जबकि लंबे इंतजार के बाद राजधानी दिल्ली में भी मॉनसून मेहरबान हुआ और जमकर बारिश हुई।

0: मॉनसून के बादल और तेज बारिश के बीच जलजमाव और उफनती नदियाँ। बारिश के दिनों में ये नज़ारे बेहद आम हैं, लेकिन मॉनसून में बारिश के बाद लोगों को उमस और गर्मी से तो राहत मिल जाती है, लेकिन बाढ़ वाले इलाकों में बारिश मुसीबतें भी लेकर आती है। फिलहाल ऐसे हालात से निपटने के लिए देवदूत के रूप में बचाव दल हमेशा तैयार रहते हैं। मुंबई, ठाणे, पुणे और पालघर समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश ने तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। महाराष्ट्र के पालघर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वीरेंद्र नगर में पानी से घिरे एक घर में फंसे 9 महीने के मासूम बच्चे को स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चे को सुरक्षित देखते ही उसके माता पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े।
1: पालघर जिले में सुबह 5 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू है। उस बारिश का असर पालघर में देखने को मिला है। पालघर के वीरेंद्र नगर में जहां सब सो रहे थे, उसी समय उनके घरों में पानी भर आया। उन घर वालों को बाहर कैसे निकला जाए, सब परेशान थे। उसी समय सूरत धोत्रे अपनी टीम लेकर के उस जगह पहुंचे और उन लोगों को बाहर निकालने की पूरी मशक्कत की। क्या कहोगे आप, क्या स्थिति थी जब आप लोग अंदर?
2: रात में से ही बारिश होने लगा तो अपन उठे तो देखे तो बारिश ज्यादा बढ़ गया था, तो इसके लिए हमारा दिल घबराने लगा। मैं बोला अभी क्या करने का, तो फिर हमने बैठे थे तो वहाँ पे संजू भाई ने आया, उसने बोला कि भाई आप लोग का मदद मैं करता हूँ।
3: जब यहाँ पे हम आए तो ऐसा माहौल था यहाँ पे कि अंदर हम जा नहीं सकते थे, तो लेकिन हमारा सब टीम लोग थे, बच्चे लोग सब लोग ने तय किया नहीं आप लोग जाना पड़ेगा वहाँ पे अंदर निकलने के लिए, नहीं जाएंगे तो बच्चे फंस जाएंगे वहाँ पे।
0: सिर्फ इस मासूम को ही नहीं बल्कि रस्सी और ट्यूब की मदद से करीब 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेज बहाव और जल भराव के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना युवाओं ने राहत अभियान चलाया और कई परिवारों की जान बचाई। पालघर के इस संकट के बीच इन युवाओं ने उम्मीद और इंसानियत की एक नई मिसाल पेश की है। महाराष्ट्र के पुणे में इतनी बारिश हुई कि कई हाउसिंग सोसाइटी में पानी भर गया, लिहाजा लोग यहां फंस गए। छाती तक आ चुके पानी में रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए लोगों को एक एक कर बाहर निकाला। सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को निकाला गया, इसके बाद इमारत में दूसरे फ्लोर पर फंसे लोगों को बाहर नाव तक लाया गया। इस दौरान कई बुजुर्गों को उठाकर नाव में बैठाना पड़ा।
4: देखो सर बचाना ऊपर।
0: मुंबई के पास लोनावला में मूसलाधार बारिश हो रही है, कई घरों में पानी भरा तो एनडीआरएफ के जवान मदद के लिए पहुंच गए। नाव के जरिए टीमों ने पूरे इलाके का मुआयना किया और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। गुजरात के अमरेली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारी बारिश के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल पाया। ऐसे में अमरेली के राजला में बारिश के बीच डॉक्टर्स की टीम ने एक महिला मरीज की जान बचाई। हुआ ये कि गांव में बीमार महिला तक पहुंचने के लिए डॉक्टर पानी के बहाव के बीच ट्रैक्टर से पहुंचे, फिर जेसीबी की मदद से उसे बाहर लेकर आए। बारिश के मौसम में हमेशा नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जाती है, लेकिन कर्नाटक के कोडगु में कॉलेज के कुछ छात्र सुरक्षा बैरिकेड पार कर झरने के प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए। तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके बाद सभी छात्र बीच में एक चट्टान पर फंस गए। खबर मिलते ही राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला और फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं देश के 23 से अधिक राज्यों में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है, जिससे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और दिल्ली NCR में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण और मध्य भारत में भारी बारिश हो रही है, जिससे कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अखनूर में चेनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जबकि डोडा और किश्तवाड़ में भारी तबाही हुई है।
4: पिछले दो दिनों से जम्मू संभाग के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई है। इसके कारण कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की तो डोडा और किश्तवाड़ जिलों में इस भारी वर्षा के कारण काफी तबाही हुई है। डोडा जिले के ठाठरी इलाके में बारिश के कारण बाढ़ आ गई और साथ ही में सड़क पर जो है मलबा आ गया और इस बाढ़ और बारिश के कारण ठाठरी में कई मकान ढह गए, कई दुकानों को भी क्षति हुई और कई जो गाड़ियां हैं वो बाढ़ के पानी के कारण बह गए। प्रशासन जो है लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाई जा रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में काफी तबाही देखी जा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि डोडा के ठाठरी इलाके में कई जो मकान हैं वो ढह गए हैं इस बारिश और बाढ़ के कारण और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। डोडा किश्तवाड़ जो राजमार्ग है फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, कई स्थानों पर पत्थर गिराए हैं और मलबा भी जमा कई स्थानों पर हुआ है।
0: मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी के बीच मौसम विज्ञान विभाग ने समुद्र में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया है।
5: मुंबई और महाराष्ट्र के कई सारे हिस्सों में बताया गया था कि आज ऑरेंज अलर्ट है और बहुत तेज बारिश होने वाली है। हालांकि बारिश इस वक्त ज्यादा नहीं हो रही है, काले काले बादल जरूर मंडरा रहे हैं, तेज हवाएं समुद्र किनारे खासतौर से चल रही हैं और यही वजह है कि कोस्टल एरिया में आप देख लीजिए यहाँ पे पुलिस के लोग खड़े हैं और कोशिश इनकी यही है कि ज्यादा लोग समुद्र के किनारे नहीं जाएं। दरअसल हाई टाइड भी बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3.5 मीटर की हाई टाइड बताई जा रही है, लेकिन फिर भी ऑन ए प्रिकॉशनरी नोट लोगों को कहा गया था कि जैसे स्कूल्स जो मुंबई में खासतौर से बंद किए गए थे और साथ ही कहा गया था लोगों को वर्क फ्रॉम होम एनकरेज करने के लिए, ऐसा ही कुछ हाल नासिक में भी देखने को मिला जहां पर की वार्निंग दी गई थी कि तेज बरसात होगी लेकिन बीच बीच में मध्यम मध्यम बरसात हो रही है, ज्यादा बरसात नहीं हो रही है। ज्यादातर अगर IMD के जो इमेजेस अगर आप देखें तो ज्यादातर जो चक्र जो बादलों का जो क्लाउड है वो ज्यादा से ज्यादा गुजरात और मध्य प्रदेश की तरफ चला गया है, ऐसा दिख रहा है। और इस वक्त हालांकि IMD की वार्निंग है और कहा गया है कि तेज बरसात होगी।
0: हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज के साथ तेज हवाएं चलने और कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है।
6: आखिरकार उत्तर भारत में जुलाई के पहले हफ्ते मॉनसून दस्तक दे चुका है। चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए गए हैं। इस समय हम सुखना लेक पर हैं जहां पर बारिश इस समय तो नहीं है लेकिन बादल छाए हुए हैं और एक तपस एक ह्यूमिडिटी जरूर मौसम में है। अगर यहां पर बाहर कोई भी निकलता है तो ह्यूमिडिटी जरूर परेशान करती है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से चाहे वो हिमाचल है जिसमें 4 जिले मंडी, कांगड़ा, शिमला और सोलन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहीं पर बिलासपुर और सिरमौर में येलो अलर्ट है, बाकी जगह मौसम साफ रहने का अनुमान है। और पंजाब का मानसा हो जहां पर एक कच्चा बांध नदी के किनारे टूटा, 300 एकड़ फसल खराब हुई पिछले दिनों में पहली बारिश से, और साथ साथ पठानकोट हो या वो शहरी इलाका हो जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या इस इक्का दुक्का बरसात से ही सामने आई है। हरियाणा में भी पंजाब के साथ जैसे ऑरेंज अलर्ट पंजाब में है तो वैसे ही येलो अलर्ट हरियाणा में जारी किया गया है। 9 जुलाई का अनुमान है और अगले 2 से 3 दिन हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया गया है।
0: वहीं दिल्ली NCR में लंबे इंतजार के बाद ठंडी हवाओं और झमाझम बरसाती बूंदों के कारण तापमान में कमी आई है और मौसम सुहाना हो गया है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को इस बारिश ने बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र के पालघर से मोहम्मद हुसैन खान, मुंबई से विद्या, चंडीगढ़ से अमन भरद्वाज और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ अखनूर से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम तक भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बारिश का क्या है हाल, देखिए हमारे संवाददाता अनमोल बाली की रिपोर्ट।
7: दिल्ली में मानसून की पहली झमाझम बारिश की शुरुआत हो गई है। समय मैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में खड़ा हूँ और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे इस समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घने बादल छाए हुए हैं और पानी झमाझम बरस रहा है, क्योंकि 2 जुलाई से देखा गया था मौसम विभाग का जो अनुमान था कि दिल्ली में मानसून दस्तक देगा, मानसून ने दस्तक दी और पर देखा गया कि बारिश नहीं हो रही थी, उमस भरे दिन थे। इसी बीच एक तरफ तो देश के कई राज्यों में जो बारिश है इस समय लोगों के लिए मुसीबत, पर वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बारिश एक उमस वाले दिनों में सौगात बनकर आई है। और वहीं बारिश को देखते हुए अभी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जो है इशू किया है, देखा गया कि ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया, फिर दिल्ली को देखते हुए रेड अलर्ट इशू किया गया। उसी बीच तस्वीरें आप मेरे साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस की देख रहे हैं, जहां लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं। एक तरफ तो उमस से राहत और वहीं दूसरी तरफ झमाझम बरसते हुए बादल। और वहीं मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि ट्रैफिक मूवमेंट भी अगर आप देखें बारिश के कारण, उस पर भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं उनकी जो रफ्तार है धीमी हो गई है। विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट इशू किया और साथ ही लोगों को चेतावनी दी है कि अगर आप किसी जर्जर इमारत के पास रहते हैं, जर्जर इमारत में रहते हैं, किसी जर्जर पेड़ के पास खड़े हैं, तो किसी सुरक्षित स्थान पर जाके खड़े हो जाएं या सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि आने वाले एक दो दिन में देखा जाएगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे ही बारिश पड़ने का अनुमान है। और साथ ही अगर बात की जाए साउथ वेस्ट मॉनसून की, तो देखा जा रहा है कि मॉनसून ने अभी रफ्तार पकड़ी है और उत्तर भारत के कई राज्यों में देखा जाएगा कि एक दो दिन तक जो मॉनसून के बादल हैं वो दस्तक देंगे, जहां देखा जा सकता है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई राज्यों में भी झमाझम बारिश होने के आसार पैदा हो सकते हैं। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ अनमोल नाथवाली की दिल्ली से रिपोर्ट।
0: दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
8: उत्तर प्रदेश के रहने वाले कन्हैया कुमार रोलर स्केट्स के जरिए अमरनाथ यात्रा पर निकले हैं। 20 साल के कन्हैया कुमार पिछले साल 29 अक्टूबर को अपने घर से रवाना हुए थे और बीते 10 महीनों में 14 राज्यों से होते हुए कश्मीर के काजीगुंड पहुंचे हैं। कन्हैया कुमार ने बताया कि उनकी ये अनोखी यात्रा भगवान शिव को समर्पित है और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देगी। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था की जमकर तारीफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली को 300 ई बसों की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने 11 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी की। दिल्ली के 2 लाख लोगों को एक पेड़ माँ के नाम से जोड़ा जाएगा। वहीं दिल्ली के 250 वार्ड और 70 विधानसभा क्षेत्र में जन भागीदारी के साथ पौधारोपण कराया जा रहा है। फेंसिंग के साथ ही पौधों की जियो टैगिंग कराई गई है ताकि निगरानी सुनिश्चित हो। अगर पौधों को किसी प्रकार नुकसान हो तो वहाँ नए सिरे से पौधे लगाए जा सकें। ओडिशा के पुरी में होने वाली सालाना जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पुलिस ने मेगा मॉक ड्रिल की। पुलिस ने पुरी रेलवे स्टेशन समेत कई महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया ताकि रथ यात्रा के दौरान जुटने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुरी में 16 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत होगी।
0: अब बात अमरावती की माँ अंबे देवी मंदिर की। महाराष्ट्र के चिखलदरा में पहाड़ियों के बीच मौजूद एक ऐसी गुफा है जहां पर आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ दिखाई देते हैं। करीब 400 साल पुराने माँ अंबे देवी की इस गुफा मंदिर में सबसे खास बात यह है कि यहां साल के 365 दिन प्राकृतिक जलधारा लगातार बहती रहती है और शिवलिंग का निरंतर जलाभिषेक होता रहता है।

0: महाराष्ट्र के अमरावती जिले का चिखलदरा विदर्भ का एकमात्र हिल स्टेशन ही नहीं बल्कि महाभारत कालीन इतिहास प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम भी है। बादलों से ढकी ऊंची पहाड़ियाँ, हरियाली से ढकी घाटियाँ और इन्हीं चट्टानों के बीच सदियों पुरानी एक रहस्यमयी गुफा जहाँ प्रकृति खुद माँ शक्ति की आराधना करती दिखाई देती है। इस गुफा में प्रवेश करते ही भक्ति की अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। ये गुफा जितनी ऐतिहासिक है उसे लेकर पौराणिक मान्यताएं भी उतनी ही गहरी और पुरानी है। इस गुफा को पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम पड़ाव भी माना जाता है और यहाँ विराजमान माँ अम्बे की संगमरमर की ये आकर्षक प्रतिमा श्रद्धालुओं को पहली ही नजर में अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। दोनों हाथों में तलवार धारण किए माँ का दिव्य स्वरूप शक्ति साहस और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। खास बात ये है कि इस मंदिर में आदिवासी समाज गवली समुदाय सहित दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में माथा टेकने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना यहाँ पूरी होती है।
1: अमरावती के हिल स्टेशन चिखलदरा में एक जो है यहाँ पर गुफा है, वो गुफा बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि महाभारत काल से भी अधिक पुरानी ये गुफा। मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर ये गुफा है और इस गुफा के अंदर अब यहाँ जो है अम्बा देवी संस्थान के चलते जो है देवी माँ की मूर्ति लगभग 400 साल से भी अधिक समय से यहाँ पर उसको स्थापित किया गया है। और सबसे अहम बात यही है कि ये देवी माँ का जो स्वरूप है और जो मूर्ति है वो संगमरमर की मूर्ति है और माँ के इस रूप को आप देख सकते हो कितना सुंदर है माँ का रूप। लेकिन माँ के इसी गुफा में बैठी इस माँ के सामने जो है निरंतर 12 ही महीने जो है निरंतर इस गुफा में जो पानी है वो पानी निरंतर यहाँ पर गिरता है। माता रानी का ये दर्शन लेकर और इस गुफा में किस तरह का पानी निरंतर गिरता है, क्या देखा है तुमने?
2: हमने अभी देखे चंद्रपुर के हम आए, चंद्रपुर जिला वरोरा, हमने देखे चिखलदरा देखे, हमने पानी आप गिर रहा है, पूरा पानी बंद है अभी, पानी बरसात भी बंद है तो अभी पानी गिर रहा है, बोला 12 महीना पानी गिर रहा है।
1: क्या मांगा माता से?
2: माता के माने माना हमें पूरी इच्छा पूरी करो।
0: इस गुफा की सबसे अनोखी पहचान है यहाँ बनने वाली प्राकृतिक जलधारा। विशाल चट्टानों के बीच से निकलने वाला निर्मल जल बिना रुके पूरे साल इसी तरह 2400 घंटे झरने की तरह बहता रहता है। यही जलधारा सीधे मंदिर परिसर में गिरती है और फिर स्वयं भगवान शिव के शिवलिंग का निरंतर जलाभिषेक करती है। श्रद्धालु इसे प्रकृति और परमात्मा के अद्भुत मिलन का जीवंत प्रमाण मानते हैं। सवाल है कि आखिर ये पानी कहाँ से आता है, तो इसका कोई निश्चित वैज्ञानिक उत्तर आज तक सामने नहीं आया है। हालांकि मंदिर के पुजारियों के अनुसार इसे चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित घटनाओं और अमरावती के सरकारी गजेटियर के अनुसार चिखलदरा वह क्षेत्र है जहां विराट राजा के साले और सेनापति कीचक का वध महाबली भीम ने किया था। युद्ध के बाद भीम ने अपने रक्त रंजित हाथ जिस कुंड में धोए वो आज भी भीम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसी घटना के कारण इस स्थान का नाम पहले कीचक धारा पड़ा जो समय के साथ अब भ्रंश होकर चिखलदरा बन गया है। महाभारत की अमर गाथा 400 वर्षों से जलती आस्था की लौ और 12 महीने निरंतर बहने वाली प्राकृतिक जलधारा चिखलदरा की ये पांडवकालीन गुफा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि इतिहास संस्कृति और प्रकृति का ऐसा अद्भुत संगम है जो हर आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक को रोमांच श्रद्धा और आध्यात्मिक अनुभूति से भर देता है। यही कारण है कि विदर्भ के इस अनोखे तीर्थ की पहचान लगातार बढ़ती जा रही है।
1: इसी बीच जो है यहाँ पर दूसरा भी मंदिर है जो भोलेनाथ का मंदिर है, वो भोलेनाथ के मंदिर पर इसी गुफा के अंदर आप देख सकते हो कि निरंतर जलाभिषेक जो है वो यहाँ पर इस जो पहाड़ी के अंदर से जो पानी आता है वो निरंतर इसे जलाभिषेक में यहाँ पर रूपांतर होता है। ऐसी ही ये जो गुफा है वो अपने आप में अलग है, और सबसे अहम बात यही है कि इस गुफा के ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है एक नदी का उगम है और उगम स्थान है। और सबसे दूसरी महत्व की बात है कि निरंतर यहाँ पर जो है वो देवी माँ के मंदिर के अंदर इस गुफा के अंदर निरंतर जो है पानी गिरता है, और यही जो यहाँ पर भक्तों की भक्ति है, आराधना है, साधना है, वो यहाँ पर बड़े भाव से यहाँ पर भक्त जो है अपनी आराधना साधना पूजा करने के लिए और अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं। अमरावती के चिखलदरा से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे।
0: न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धन बाजार। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 104 अंकों की गिरावट के साथ 78,180 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 31 अंकों की गिरावट के साथ 24,398 पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में सुस्ती और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होने की वजह से आज गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में गिरावट मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1400 रुपए गिरकर 149,250 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 200 रुपए लुढ़ककर 239,800 रुपए पर पहुंच गई। 7 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में मजबूती देखने को मिली। मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 48 पैसे मजबूत होकर 94.95 के स्तर पर बंद हुआ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
4: Take it easy with soft hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now. Time after time.
0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: पुणे में धूमधाम से निकली जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी, हरिनाम के जय घोष से गूंजा शहर, ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक वेशभूषा में दिखे लोग। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन, काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना। गुजरात के कई इलाकों में जमकर बरस रहे हैं बदरा, सूरत नवसारी में भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया में प्रेम और अपनापन मिला। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाभियान का शुभारंभ, नानकपुरा रिज में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण, गृहमंत्री अमित शाह ने शुरुआत की।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस मेड इन इंडिया दम की जिसकी धाक आज सारी दुनिया में जम चुकी है। आज पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई दे रही है। हाल ही के सालों में भारत का डिफेंस सेक्टर सुपर फास्ट स्पीड के साथ आगे बढ़ा है। एक दशक से भी कम वक्त में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है, बल्कि अब उनके इम्पोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। दो तस्वीरें आपके सामने, ये आज की तारीख में भारत के मेक इन इंडिया मिशन की कामयाबी बयां करने वाली तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि भारतीय नेवी का अपना महेंद्र बाहुबली, ये नीलगिरी क्लास का मेड इन इंडिया युद्धपोत है। ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट इसी हफ्ते भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। नाम है INS महेंद्र गिरी। तो वहीं दूसरी तस्वीर है उस मेड इन इंडिया धाकड़ मिसाइल की, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। भारत का ब्रह्मोस अस्त्र, जल्द ही इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल खरीदने जा रहा है। पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और आज इस डील से जुड़ा MOU साइन किया गया। तो चलिए आपको बताते हैं क्यों खास है भारत की ये मिसाइल और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के वर्तमान हालात को देखते हुए ये डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है।

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर पल एक नई ऊंचाई को छू रहा है। देश में ही ऐसे ऐसे हथियार गढ़े जा रहे हैं जो ताकत और तकनीक के मामले में बेहतरीन है। आज हिंदुस्तान के हथियार ग्लोबल हो रहे हैं। इंडियन वेपन की ताकत को दुनिया महसूस कर रही है और इसी का नतीजा है कि भारत डिफेंस सेक्टर में वेपन एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बढ़ा रहा है। इसकी सबसे ताजा तस्वीर आई है इंडोनेशिया से।
1: एयर टू एयर मिसाइल कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन भारत डायनामिक्स एंड रिपब्लिक कॉर्प।
0: दुनिया की सबसे खतरनाक और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की अतिरिक्त बैटरियां खरीदने के लिए इंडोनेशिया ने फाइनल डील पर मुहर लगा दी है। पहले से ही भारत के ब्रह्मोस का खरीदार इंडोनेशिया ऑपरेशन सिंदूर में इस अचूक मिसाइल की ताकत को देख चुका है। भारत ने इसी मिसाइल के हमले से पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए थे। मुरीद के में लश्कर और बहावलपुर में जैश के ठिकानों को ब्रह्मोस ने धूल में मिला दिया था। अब Mach 3 की विनाशकारी गति से उड़ने वाली ब्रह्मोस जब इंडोनेशिया के तटीय इलाकों में तैनात होगी तो साउथ चाइना सी में चीन दादागिरी करने से पहले 100 बार सोचेगा।
2: देखिए, ब्रह्मोस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इस समय विश्व में रशिया और इंडिया के अलावा किसी देश के पास नहीं है और इंडो पैसिफिक रीजन में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। महत्व इसलिए है कि ये शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है, हवाई जहाज से भी लॉन्च किया जा सकता है और ग्राउंड से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के अगर हम उसकी सुरक्षा की बात करते हैं तो इसका इंडोनेशिया और भारत दोनों के पास होना एक तरह का एक जो मिलके हम जो है उस खतरे का सामना कर सकते हैं, उसके लिए ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा।
0: दरअसल ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे कैसे भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस की स्पीड ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा होती है। हर मोर्चे पर भी ब्रह्मोस की तैनाती संभव है। इसे जमीन, समंदर, हवा, कहीं से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। ये मूविंग यानी चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। इसकी स्ट्राइक क्षमता इतनी कमाल है कि ये 400 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। ब्रह्मोस में दूसरे स्टेज का रैमजेट इंजन लगा है जो इसे सुपरसोनिक स्पीड देता है और फ्यूल की खपत को कम करता है।

0: ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसका अचूक निशाना है। सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर यह मिसाइल सटीक वार करते हुए 1 मीटर के दायरे में जाकर गिरती है, यानी इसकी अचूक मारक क्षमता के आगे दुश्मन के किसी भी टारगेट का बचना नामुमकिन है। अचूक मारक क्षमता के साथ साथ ब्रह्मोस की रफ्तार इसकी एक और बड़ी ताकत है।
1: क्या इसकी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि 300 से ज्यादा, अब तो अभी तो इसका दूसरा वर्षन जो है वो 450 किलोमीटर तक भी जाता है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वो शिप्स को बिल्कुल खत्म कर सकता है। और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, सुपरसोनिक है, कि कोई इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, सैटेलाइट से डिटेक्शन नहीं हो पाता है, रडार से डिटेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत लो फ्लाइंग है। अगर हम समुद्र से इसके बोलते हैं 5 मीटर की ऊंचाई पर भी समुद्र के ऊपर फ्लाई कर सकता है।

0: अगर आज दुनिया मिसाइल पावर के मामले में भारत की ताकत का लोहा मान रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ब्रह्मोस है। खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो ब्रह्मोस दुनिया भर की नजर में आ गई है। वैसे भारत के तर्कश में ब्रह्मोस नाम का यह कमाल का ब्रह्मास्त्र 25 साल पहले ही शामिल हो चुका था, क्योंकि यह मिसाइल भारत और रूस के साझा मिशन का नतीजा है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था। इस मिसाइल के निर्माण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के तत्कालीन प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और रूस के उप रक्षा मंत्री NV मिखाइलोव ने 12 फरवरी 1998 को हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद इसका पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। और आज ये मेड इन इंडिया मिसाइल दुनिया भर के देशों में अपना लोहा मनवा रही है।
1: इंडोनेशिया और भारत के बीच ये समझौता एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसका प्रोडक्शन भी वहाँ हो सकता है और वहाँ हमारे यहाँ भी इसका प्रोडक्शन होता है, और भारत के लिए एक्सपोर्ट होने से एक इकोनॉमिक गेन भी है। तो सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक गेन के लिए अच्छा है, और इंडोनेशिया और भारत के जो सामरिक रिलेशनशिप है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा समझौता, एक बहुत बड़ा कदम है। मैं सोचता हूँ कि इसको आगे ले जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमें इंडोनेशियन एयरफोर्स या उनकी आर्मी के साथ मिलकर उसका प्रोडक्शन वहां करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो इंडो पैसिफिक सुरक्षा है उसको बढ़ावा मिले।

0: आपको बता दें कि फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया के साथ इस डील से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत ने एक बड़े रक्षा साझेदार के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया है। इंडोनेशिया और चीन के संबंधों पर नजर डाले तो ये साफ होता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के बावजूद रणनीतिक असहमति बनी हुई है। वहीं भारत और इंडोनेशिया अब दोस्ती के नए मुकाम की ओर चल रहे हैं। इस तरह इंडोनेशिया का भारत के पाले में आना बीजिंग के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और इसी दौरान ये इस डील के एमयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वैसे आपको बता दें, ब्रह्मोस के अलावा इंडोनेशिया ने अपनी पुरानी रूसी R-77 मिसाइलों को हटाकर भारत की इस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को खरीदने का ऐतिहासिक फैसला भी किया है।
2: एयर टू एयर मिसाइल कोऑपरेशन अग्रीमेंट बिटवीन भारत डायनामिक्स एंड रिपब्लिक कॉर्प।
0: मैक 4 प्लस की सुपरसोनिक रफ्तार और 110 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल जब इंडोनेशिया के फाइटर जेट से उड़ेगी तो दुश्मनों को संभलने का एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI ने अस्त्र से पाकिस्तानी जेट्स को निशाना बनाया और उसे जमीन पर ला दिया। इंडोनेशिया ने भी देखा कि भारत का अस्त्र पाकिस्तान की चीनी PL-15E मिसाइलों से कई गुना बेहतर साबित हुआ। उसी कामयाबी को देखते हुए इंडोनेशिया ने ये डील की है।
3: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में बने हथियारों का लोहा पूरी दुनिया ने माना और पाकिस्तान के भीतर आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करने वाली ब्रह्मोस और अस्त्रा जैसी मिसाइलों ने अपनी विश्वसनीयता और अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाई और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ोतरी मिली है। अब इंडोनेशिया ने फैसला किया है कि वो ब्रह्मोस के साथ एस्ट्रा मिसाइल भी खरीदेगा। एस्ट्रा यानी भारत में बनने वाली वो मिसाइल जो एयर टू एयर के लिए जानी जाती है, एस्ट्रा मैक 1, जिसे सुखोई 30 में इंटीग्रेट किया गया है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया अब भारत से ये मिसाइल लेना चाहता है क्योंकि इंडोनेशिया के पास भी Su-30 विमान है और अब वो अपने विमानों में एस्ट्रा मिसाइल लगाना चाहता है, जिसको अब ये देखा जा रहा है कि किस तरह से भारत के जो हथियार हैं वो लगातार पूरी दुनिया में अपनी मांग बढ़ा रहे हैं। हालांकि इंडोनेशिया वो पहला देश है जिसने एस्ट्रा मिसाइल के लिए बातचीत की है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है, लेकिन ब्रह्मोस को खरीदने वाला इंडोनेशिया अब तीसरा देश होगा क्योंकि फिलीपींस के बाद वियतनाम से और अब इंडोनेशिया से इसकी बातचीत चल रही है। तो लगातार भारत के हथियार पूरी दुनिया में अपनी धमक दिखा रहे हैं और भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ रहा है और इंडोनेशिया अब ब्रह्मोस के साथ साथ एस्ट्रा मैक 1 एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स भारत से खरीदेगा।
0: इंडोनेशिया से यह समझौता गवाह है कि भारत अब रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि ग्लोबल एक्सपोर्टर बन चुका है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब बात भारत के महेंद्र बाहुबली की। अब से 3 दिन बाद विशाखापट्टनम में INS महेंद्र गिरी का कमिशनिंग समारोह है, जहां इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के बेड़े में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया जाएगा। महेंद्र गिरी एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसके आने से भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ताकत और सामर्थ्य हासिल होगा।

0: स्थित प्रज्ञ रणेशु अपराजित, यानी वो जिसकी बुद्धि स्थिर है, अडिग है, वो जो युद्धों और संघर्षों में अपराजित रहता है। अपने आदर्श वाक्य की तरह ही सागर की लहरों पर सदा अपराजित रहने का दम और सामर्थ्य लेकर आ रहा है नौसेना का महेंद्र बाहुबली। सागर का वो बाहुबली जिसे देश के पूर्वी घाट पर मौजूद प्रसिद्ध महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर अपना नाम मिला है। वो महेंद्रगिरी पर्वत जो शक्ति, धैर्य और अडिग संकल्प का प्रतीक है, भारतीय नौसेना के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी युद्धपोत को महेंद्रगिरी नाम दिया गया है। 11 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना के लिए इस नए अध्याय की शुरुआत होगी, जब नौसेना के बेड़े में INS महेंद्रगिरी को शामिल किया जाएगा। INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तैयार किया गया 6th गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसका डिजाइन भारतीय नौसेना के WDB यानी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है।
1: भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत अपना 6th वॉरशिप महेंद्रगिरी मिलने वाला है। महेंद्रगिरी विशाखापट्टनम में 11 जुलाई को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। इसकी कमिश्निंग की जाएगी। प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत भारत में बनने वाला ये 6th वॉरशिप है। इसके पहले 5 दूसरे वॉरशिप्स भी भारतीय नौसेना का हिस्सा बन चुके हैं। महेंद्रगिरी को भारत में MDL ने बनाया है और नेवल वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसे डिजाइन किया है। तेजी से आत्मनिर्भर होती भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने वाले महेंद्रगिरी की ताकत की अगर हम बात करें तो इसमें बराक मिसाइल्स के साथ साथ ब्रह्मोस और टॉर्पीडोज की ताकत है। 6,600 टन के डिस्प्लेसमेंट वाला ये जहाज अत्याधुनिक सिस्टम से लैस है और भारतीय नौसेना को भारत में निर्मित होने वाले जहाजों की ताकत में इजाफा करने वाला ये जहाज बेहद कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के दौरान भारतीय जहाजों की तैनाती, हर तरफ भारतीय नौसेना लगातार सशक्त हुई है।
0: ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। INS महेंद्रगिरी में सुपर एडवांस्ड कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आधुनिक सेंसर, एंटी सबमरीन वेपन्स और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और पनडुब्बियों से ये एक साथ मुकाबला कर सकता है। महेंद्रगिरी फ्रिगेट स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जो दुश्मन के रडार को चुनौती देगा, समुद्र में चुपचाप आगे बढ़ने और जरूरत पड़ने पर घातक प्रहार करने में इसका कोई मुकाबला नहीं। सबसे अहम बात ये कि महेंद्रगिरी के निर्माण में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
2: भारत की नेवी की ताकत में और इजाफा हो रहा है। INS महेंद्रगिरी अगर देखा जाए तो अत्यधिक ताकतवर फ्रिगेट है, जो कि देश में ही बना है। 75% हिस्से इसके देश में बने हुए हैं। इसके अंदर आधुनिक स्टेल्थ है, यानी कि एक रडार को द्वारा इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सामने का इसका हल्का क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है। ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है जो कि रडार को देखने के लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अत्याधुनिक हथियार इसके ऊपर लगे हुए हैं। आप देखिए, इसके ऊपर ब्रह्मोस है जो जमीन से ज़मीन पर मार करता है, यानी कि शिप से ज़मीन पर। इसमें बराक है जो कि शिप से एयर हवाई में मार करेगा। एंटी सबमरीन इसमें मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, टॉर्पीडो लगे जो कि आधुनिक सबमरीन को खत्म करने के लिए है।
0: महेंद्रगिरी भले ही एक वॉरशिप है, लेकिन इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल युद्ध के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान, समुद्री सुरक्षा गश्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिशंस में किया जा सकेगा। समुद्र में फंसे लोगों की सहायता से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने तक ये कई अहम जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है।
1: लगातार भारतीय नौसेना की ताकत आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ रही है और 2047 तक भारतीय नौसेना 100% आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखती है। अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो ये 75% इंडिजनाइज है। अगर इसकी क्षमताओं की बात करें तो ये कंबाइंड डीजल और गैस टेक्नोलॉजी के इंजन के साथ लैस है। किसी भी तरह के एंटी एयर वॉरफेयर या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैयार है और अपने क्लास के तमाम दूसरे शिप्स की तरह ये भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा कर रहा है।
0: आपको बता दें कि जिस प्रोजेक्ट 17A के तहत INS महेंद्रगिरी कमीशन होने वाला है उसका इतिहास लगभग 2 दशक पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने साल 2009 के जून महीने में इसका कॉन्सेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था।
2: देखा जाए तो प्रोजेक्ट 17A भारत की नेवी का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें नीलगिरी क्लास के शिप बनाए जा रहे हैं, फ्रिगेट्स हैं, जो कि 2 शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं, मझगांव में और गार्डनरीच में, मुंबई और कोलकाता में बन रहे हैं, और टोटल 7 शिप बन रहे हैं। ये शिप्स की खासियत यह है कि ये स्टेल्थ से लैस हैं, यानी कि इनका रडार को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है।
0: साल 2013 तक ही प्रोजेक्ट।
3: अब बात तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की। वायुसेना जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस साल सितंबर अक्टूबर के महीने में जोधपुर में होने वाली इस एयर कॉम्बैट ड्रिल का नाम ऑपरेशन तरंग शक्ति है। ऑपरेशन तरंग शक्ति 2026 में कई देशों की वायुसेना इसमें हिस्सा लेंगी। ये तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण होगा। इससे पहले साल 2024 में भारतीय सेना ये मेगा युद्धाभ्यास कर चुकी है। तरंग शक्ति मेगा युद्धाभ्यास में वायुसेना के जवानों को दुनिया के दूसरे वायु सैनिकों की काबिलियत परखने का मौका मिलेगा। तरंग शक्ति जैसे युद्धाभ्यास से भारत के हवाई योद्धाओं को दूसरे देशों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का मौका मिलता है। ये कोशिशें भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए वायुसेना को पहले से तैयार करने की अहम पहल है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा।
1: भारतीय वायुसेना अब तक की सबसे बड़ी एयर कॉम्बैट ड्रिल तरंग शक्ति के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार इतनी बड़ी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जोधपुर में होने वाली है। 28 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच तरंग शक्ति अपने तमाम वायुसेनाओं के साथ भारत की वायुसेना की ताकत दिखाएगी। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि 2024 में तरंग शक्ति का पहला एडिशन भारतीय वायुसेना ने होस्ट किया था, जिसे 2 फेजेस में किया गया था, जोधपुर और सुलूर। और अब दूसरी बार यानी 2026 में तरंग शक्ति होने वाला है, जिसमें एक बार फिर 2 दर्जन से ज्यादा पूरी दुनिया की वायुसेनाएं हिस्सा लेंगी, जिसमें तमाम देश, चाहे वो UK, जर्मनी, US हो, उन सभी को न्योता भेजा गया है। यानी भारतीय वायुसेना अपनी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में कॉम्बैट कैपेबिलिटी और इंटर ऑपरेबिलिटी दोनों दिखाएगी, और वो भी पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक। कैमरा पर्सन प्रेमचंद्र के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए शिवानी, दिल्ली।
3: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: कोटा के एक स्टूडेंट ने ऐसा स्मार्ट प्लांट पॉट तैयार किया है जो पौधों की जरूरतों को आसान तरीके से समझने में मदद करता है। ये स्मार्ट इमोशन पॉट सेंसर और तकनीक की मदद से पौधे की स्थिति पर नजर रखता है और पानी, धूप या फिर देखभाल की जरूरत होने पर मोबाइल पर इमोजी के जरिए अलर्ट भेजता है। इस अनोखे इनोवेशन का मकसद पौधों की देखभाल को आसान, रोचक और तकनीक से जोड़ना है।
5: जरा सोचिए, अगर आपके घर का पौधा बोल पाता तो शायद आपको अपना हाल बताता और आप उसकी जरूरत को पूरा कर पाते। अब तक ये सिर्फ कल्पना थी, लेकिन कोटा के एक युवा इनोवेटर ने इस कल्पना को हकीकत में बदलने की पहल की है। आजाद पब्लिक स्कूल के छात्र और वेल्ट्रियोनेक्स स्मार्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक आर्यन सिंह ने ऐसा स्मार्ट इमोशन पॉट बनाया है जो पौधों की खामोशी को इमोजी की भाषा में बदल देता है।
6: जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जान आ गई है, जहाँ पे प्लांट जो है अपने इमोशन शो कर सकता है कि हाँ उसको प्यास लगने में वो रो रहा है, अंदर रहने पे अगर अकेला है तो उसको डर लग रहा है या मोशन सेंस कर रहा है तो डर लग रहा है।

0: उसको।
1: आज के दौर में लोग बड़े जोश से पौधे तो घर ले आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद भागदौड़ भरी जिंदगी में वही पौधे एक कोने में अकेले छूट जाते हैं। पौधों को कभी समय पर पानी नहीं मिलता, कभी धूप नहीं मिल पाती। जब पौधा मुरझाने लगता है तब हमें पेड़ों की तकलीफ पता चलती है। इसी प्रॉब्लम के हल के तौर पर आर्यन को इस स्मार्ट गमले का आइडिया आया।
0: किया हमने कि कुछ ना कुछ एक ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि वो किसी इंसान से इंटरेक्ट करते हैं कर सके। जैसे कि हमें पता है आज इंसान आपस में बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो जाता है, लोग एक दूसरे से काफी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो ये हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा प्लांट के साथ किया जाए, ताकि उसको एज अपना फ्रेंड ही उसको ट्रीट करें और अपनी सारी बातें उसको शेयर कर सकें, उसके इमोशन देख सकें कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है हर एक चीज में।
1: ये सिर्फ एक स्मार्ट गमला नहीं बल्कि एक डिजिटल प्लांट कंपेनियन है। इसमें लगे सेंसर मिट्टी में नमी, पौधों के हिसाब से तापमान, पानी की जरूरत और रोशनी की आवश्यकता को भाप लेते हैं, और ये स्मार्ट गमला अपने एक्सप्रेशन से हमें पौधों की जरूरत के बारे में बता देता है। जैसे जैसे पौधे की जरूरत बदलती है, वैसे वैसे स्क्रीन पर उसके चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं।
0: ध्यान में रखकर इसको बनाया, इसके अंदर अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं जो कि अलग अलग चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर मॉइस्चर लेवल या मॉइस्चर या वाटर लेवल है तो उसको वो सेंसर देख रहा है, मोशन को मोशन सेंसर डिटेक्ट करने के लिए कर रहा है कि उसके साथ अगर कोई है तो। उसको पूरा बच्चों से फ्रेंडली बनाया है कि अगर वो इतना अभी से ही इतना केयरिंग बन जाते हैं तो आने वाले टाइम पे कुछ वो बेटर आउटपुट दे सकते हैं इस एनवायरमेंट को।
1: आज की पीढ़ी मोबाइल और गैजेट्स के साथ तो जल्दी जुड़ रही है, लेकिन प्रकृति से उनका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में ये स्मार्ट इमोशन पॉट इंसानों और पौधों के बीच दोस्ती का पुल बन सकता है। आर्यन का कहना है कि आने वाले समय में इस स्मार्ट इमोशन पॉट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और API मॉडल से और स्मार्ट बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में ये सिर्फ चेहरे के भाव ही ना दिखाए बल्कि यूजर से बात भी कर सके। कोटा से चेतन गुर्जर, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: खबरें तो आराम से। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: पुणे में धूमधाम से निकली जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी, हरिनाम के जय घोष से गूंजा शहर, ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक वेशभूषा में दिखे लोग। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन, काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना। गुजरात के कई इलाकों में जमकर बरस रहे हैं बदरा, सूरत नवसारी में भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया में प्रेम और अपनापन मिला। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाभियान का शुभारंभ, नानकपुरा रिज में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण, गृहमंत्री अमित शाह ने शुरुआत।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।

0: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा अमरनाथ यात्रा और श्रद्धालुओं की सुविधा की भी है।
1: बम बम भोले, हर हर महादेव और जय बर्फानी बाबा के जयकारों से अमरनाथ यात्रा मार्ग गूंज रहा है। श्रद्धालु पवित्र गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए इस साल अब तक का सबसे बड़ा श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। इस जत्थे में शामिल 8,815 श्रद्धालुओं में 31 विदेशी भी यात्रा का हिस्सा बने हैं। यात्रा के शुरुआती चार दिनों में ही 93,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा के साथ ही श्रद्धालु की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बालटाल बेस कैंप से लेकर रामबन के चंद्रकोट तक यात्रियों को मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जा रही है। पवित्र अमरनाथ यात्रा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए ग्रामीण स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर हलचल शुरू हो गई है। 30 जुलाई से शुरू होने वाला कांवड़ मेला सकुशल होने की कामना को लेकर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा की ओर से मालवीय घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ आरती की गई। इस विशेष अवसर पर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने नियमों वाला एक पोस्टर भी जारी किया जिसमें कांवड़ियों को कांवड़ उठाने के नियम बताए गए हैं। इस पोस्टर में कांवड़ियों से कांवड़ उठाने के नियमों का पालन करते हुए कांवड़ उठाने और अपने गंतव्य तक ले जाने के साथ ही वजनी कांवड़ नहीं उठाने का आग्रह किया गया है। अखाड़े से जुड़े साधु संतों और पंडितों ने शिव भक्तों से तीर्थ नगरी की मर्यादा बनाए रखने के लिए भी निवेदन किया है। श्रद्धालुओं को बड़े बड़े डीजे लेकर आने से बचने की सलाह दी गई है ताकि उसकी तेज आवाज और धमक से किसी को किसी भी तरह की असुविधा या परेशानी का सामना न करना पड़े। श्री गुरु गोरखनाथ अलक अखाड़ा परिषद की ओर से हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में 11 महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक किया गया। समारोह में सभी महामंडलेश्वरों को चादर विधि करके पट्टाभिषेक किया गया और संतों ने फूलों की बारिश करके आशीर्वाद प्रदान किया। इस अखाड़ा परिषद ने 51 महामंडलेश्वर बनाने का लक्ष्य रखा है और अब तक 41 महामंडलेश्वर बनाए जा चुके हैं और बाकी 10 महामंडलेश्वरों को बनाने की तैयारी हो रही है। कुंभ से पहले इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। जिन 11 महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक किया गया है उन्हें गुरु गोरखनाथ अलग अखाड़े से जुड़े हुए 4-5 वर्ष हो गए हैं और अब बतौर महामंडलेश्वर वो अपने कर्तव्य को निभाएंगे। ये तस्वीरें पंजाब के फरीदकोट की हैं जहां आयोजित दस्तार प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 6 से 15 साल की उम्र के 60 बच्चे शामिल हुए जिन्होंने दस्तार यानी पगड़ी बांधने की कला का पूरे आत्मविश्वास अनुशासन और अपनी सिख विरासत के प्रति समर्पण का पूरी कुशलता से प्रदर्शन किया। इन छोटे छोटे बच्चों ने खुद से पगड़ी बांधी। रंग बिरंगी पगड़ियों में ये बच्चे बेहद सुंदर लग रहे थे। प्रतियोगिता में विजेताओं का चयन दस्तार बांधने की कला, साफ सुथरापन, प्रस्तुति, संतुलन, आत्मविश्वास, पारंपरिक शैली, फिनिशिंग और समग्र प्रभावशाली प्रदर्शन सहित कई महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित शमशान घाट की अपन पाठशाला में बच्चे पढ़ाई करने के साथ साथ मशहूर मिथिला पेंटिंग भी सीख रहे हैं और आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये खूबसूरत पेंटिंग इन बच्चों ने ही बनाई है। अपनी इस शानदार कला के जरिए बच्चे अपनी पढ़ाई का खर्च भी निकाल रहे हैं। इस पाठशाला में पढ़ने वाले 28 बच्चे नियमित शिक्षा के साथ ही मिथिला पेंटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं जिसमें ये छठ महापर्व, राधा कृष्ण, मछली, मोर, पक्षियों और बिहार की लोक संस्कृति पर आधारित आकर्षक पेंटिंग्स तैयार कर रहे हैं जिनके स्थानीय लोगों के बीच अच्छी खासी डिमांड है। एक पेंटिंग तैयार करने में बच्चों को करीब 2 दिन लग जाते हैं जो 150 से 200 रुपए तक में बिक जाती है। खरीदार इसे सम्मान समारोह में स्मृति चिन्ह के रूप में भी भेंट करते हैं। इससे बच्चों को आर्थिक मदद मिलने के साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
0: और अब बात करते हैं मॉनसून की। बारिश का मौसम जितना सुहाना होता है उतना ही चुनौतियां भी लेकर आता है। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली लेकिन कहीं शहर पानी में डूबे हैं तो कहीं लोग बाढ़ के बीच फंस गए। हालांकि राहत कर्मी और बचाव दल मुश्किल में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। वहीं पूरे देश में मॉनसून की दस्तक से कहीं बारिश हो रही है तो कहीं भारी बारिश होने की खबर है। जबकि लंबे इंतजार के बाद राजधानी दिल्ली में भी मॉनसून मेहरबान हुआ और जमकर बारिश हुई।